0: यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर गदर मची है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस 150 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस अब इससे आगे की बात कर रही है।
1: इसने किया 150 का, मैंने तो 200 की बात की थी। मैं शुरू से कह रहा हूँ बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत, बराबर का हिस्सा।
0: लेकिन राजेंद्र पाल गौतम को समाजवादी पार्टी के नेता दो टूक जवाब देते हैं।
2: मैं ये कहता हूँ उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। दो तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता?
0: अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जीत ही सीट का आधार है।
3: जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
0: और जीत बोले तो आखिरी चुनाव यानी 2024 लोकसभा में मेरी जीत, और वो जीत कुछ ऐसी थी कि 80 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 6 कांग्रेस को मिली थी। इसे विधानसभा के अनुपात में बांटा जाए तो 37 लोकसभा के हिसाब से अखिलेश के हिस्से 347 सीटें बनती हैं और कांग्रेस के हिस्से 56। लेकिन कांग्रेस की हसरतें 56 से 200 तक पहुंच चुकी हैं और हौसला बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने उन्हीं इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और 403 सीटों पर लड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर कांग्रेस ने अपने पत्ते सामने रख दिए हैं। अब बारी समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लेने की है, और वो कांग्रेस की सीटों वाली शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है या बीजेपी को हराने के मिशन के साथ। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: यूपी में 2027 की सियासी जंग से पहले दलित वोट बैंक पर भी सियासत तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही का नाम संत रविदास नगर भदोही करने का ऐलान कर दिया है। तो योगी सरकार के इस फैसले के पीछे क्या है सम्मान, कल्याण और विकास का सियासी फॉर्मूला, आइए दिखाते हैं आपको।
5: यूपी के चुनावी मौसम में दलित वोटों के लिए हर दल के तरकश में अलग लगती है, और इसी में से एक तीर बीजेपी ने अब यूपी में आजमाया है, जो दलित सियासत में प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसा ही एक ऐलान यूपी में किया, जहां भदोही का नाम संत रविदास के नाम पर किया गया है।
6: कालीन उद्योग के लिए जाना जाने वाला भदोही जनपद आने वाले समय में मध्यकालीन संत जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था, ऐसे सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर भदोही जाना जाएगा।
5: भदोही नहीं, नामकरण की बात हो तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहाल किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर काम होगा। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार ने दलित विरोधी सोच के कारण जिन महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों, संस्थानों के नाम बदल डाले थे, उनका पुनर्नामकरण करके बीजेपी सम्मान दे रही है।
7: पूर्व में भी भदोही का नाम संत रविदास नगर था, किंतु अखिलेश यादव की दलित विरोधी सोच के नाते से उन्होंने संत रविदास नगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के नाम बदले थे, आज उसको सही किया गया है।
8: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है, वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है।
5: मतलब ये कि दलितों को रिझाने के लिए दाव चलाए जाने लगे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: आखिर यूपी में अब्दुल कौन है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब किसी की दरी नहीं उठाएगा, यानी अब्दुल के वोट का अब कोई भी पार्टी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। समस्या यह है कि ओवैसी के इन सवालों से समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा नाराज हो रही है।
9: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा।
10: आप नाम मत लीजिए अब्दुल, अब्दुल क्या होता है, आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कह करके।
11: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा अब्दुल का नाम पर? गाली है अब्दुल, चुनाव से पहले अब्दुल पर घमासान, किसकी तरफ है यूपी का मुसलमान? अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, इस बार किस तरफ जाएगा? यूपी में मुस्लिम वोटों पर हंगामा मचा है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी और ओवैसी के बीच घमासान मचा है कि कौन लेकर जाएगा मुस्लिम वोट, यूपी का मुसलमान किसकी तरफ जाएगा?
12: ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।
11: अपनी रैलियों में ओवैसी अक्सर कहते हैं कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा और इसी अब्दुल पर हंगामा छिड़ गया है। मुस्लिम पॉलिटिक्स में अब्दुल शब्द मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है, खुद ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता इस शब्द यानी अब्दुल का इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है उस मुसलमान से जिसे राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक समझती हैं। इसीलिए ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, यानी अब्दुल अब उन पार्टियों के लिए वोट बैंक नहीं बनेगा जिनके वोटों पर जीत कर ये पार्टियां उन्हें भूल जाती हैं।
9: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा, अब सज्जन टेबल लगाएगा, कुर्सी पर बैठ कर कहेगा बोल इंसाफ करता है या नहीं करता है। इस मिजाज को आपको पैदा करना है नौजवानों, आने वाला मुस्तकबिल आपका है, आने वाला मुस्तकबिल आपका है। बुजुर्गों, आपने बरसों इन जालिमों का साथ दिया, इन्होंने झूठ बोलकर आपके ख्वाबों को मिसमार कर दिया, चिकना चूर कर दिया। एक बार मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को आप अपना वोट देकर यहां से मजलिस के विधायक को कामयाब करिए।
11: ऐसा नहीं है कि ओवैसी ने मुसलमानों के लिए अब्दुल शब्द पहली बार कहा हो, वो पहले भी कहते रहे हैं।
10: अब्दुल क्या होता है?
11: लेकिन इस बार विवाद हुआ है रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी से पूछे गए सवाल पर। असल में रामपुर में मोहिबुल्ला नदवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी में एक पत्रकार ने उनसे अब्दुल के नाम पर ये सवाल पूछ लिया तो नदवी बुरी तरह से भड़क गए।
10: मुसलमान इस देश के सबसे मोहतर शहरी है,
13: और हर पार्टी जो है 27 के चुनाव में अब्दुल को याद करती है, इस वक्त अब्दुल कहाँ है?
10: क्या मतलब, आप नाम मत लीजिए, अब्दुल अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कहकर के?
13: नहीं, हर पार्टी नहीं,
10: आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। अब्दुल प्रिंस क्या होता है?
13: हर पार्टी
10: किसे कहते हैं अब्दुल का? नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात को। अब्दुल अब्दुल लगाया क्या होता है? अब्दुल
13: बताइए,
10: मुसलमान इस देश के सबसे मोहतर शहरी है, जिन्होंने देश की कुर्बानी हजारों साल सैकड़ों साल से देश में कुर्बानियां दी हैं। कांग्रेस पार्टी के आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी पे देख लीजिए, स्थापना सब लोग हैं। आप अब्दुल अब्दुल कहकर के आप खड़ाने की कोशिश करते हैं।
11: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद को लग रहा है कि ऐसे अब्दुल का नाम लेकर मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है, उन्हें आपत्ति है कि मुसलमानों को अब्दुल कहा जा रहा है। ये करीब 5 साल पहले का रामपुर का ही बयान है, और जो ये अब्दुल कह रहे हैं ये कभी आजम खान के करीबी हुआ करते थे और उन्हीं की सभा में इन्होंने ये अब्दुल वाला बयान दिया था। इनका नाम है फसाहत अली शानू, अब ये बीजेपी में है, और अब्दुल के नाम पर जब मौजूदा रामपुर के सांसद को आपत्ति हुई तो इन्होंने उन्हें बताया कि अब्दुल कौन है।
14: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा? अब्दुल के नाम पर गाली है अब्दुल? आपकी घर की दीवारों की रंग पॉलिश करता है वो है अब्दुल, आपकी मोटरों के पंचर जोड़ता है वो है अब्दुल, जिसके नाम के आपकी आपने और आपकी पार्टी ने रोटियां सेकी है वो है अब्दुल, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई उसके वोटों से वो है अब्दुल, जमाने से आज भी थाने में पिटता आ रहा है वो है अब्दुल। आपने तो इमामत की कीमत कबूल ली, आप तो मस्जिद में नमाज पढ़ाते पढ़ाते सांसद बन गए, अब्दुल के वोटों से बने आप सांसद, अब्दुल के नाम पे भड़कते हैं आप, अब्दुल के नाम पे गुस्सा आता है आपको, आपकी पार्टी ने राज्यसभा में किसको भेजा है? नथवानी को भेजा है। और जो राज्यसभा में नथवानी को भेजा है वो भी अब्दुल की वजह से भेजा है। अब्दुल ने आपकी पार्टी की यह हैसियत बनाई कि आपकी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी।
11: यूपी के मुसलमानों के मन में यह भी सवाल है, जिसका जिक्र फसाहत अली शानू भी कर रहे हैं, कि जब राज्यसभा देने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी ने धनराज परिमल नाथवानी को राज्यसभा भेजा, ना कि किसी मुसलमान नेता को। यहीं से यह नैरेटिव बनता है कि अब्दुल इन पार्टियों के लिए कब तक दरी बिछाएगा।
12: पूछेंगे समाजवादी थी तो क्या था? समाजवादी थी तो वाई था, वाई का फायदा था। अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है, टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता। ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है। दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।
11: कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
4: सीसी के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीसी ज्ञानेश कुमार के तुरंत निलंबन करने की मांग से इनकार कर दिया। साथ ही साथ चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बवाल और विरोध प्रदर्शन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब 6 अक्टूबर को ज्ञानेश के खिलाफ उतरेगा इंडिया। चुनाव आयोग तक विपक्षी पार्टियों के सांसदों का मान। इंडिया गठबंधन ने बनाई ज्ञानेश को घेरने की रणनीति। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया का अक्टूबर संग्राम। वोट चोरी की लड़ाई ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई।
1: For an aggressive national wide campaign against vote chori, vote bachao, desh bachao.
0: वोटर चोरी SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का पूरा प्लान आपको बताएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू हुआ संग्राम लगातार जारी है। 2 अक्टूबर को मुंबई में CJP ने विरोध प्रदर्शन किया।
2: मेरा रंग दे बसंती चोला ज्ञान उठा ले छो, मेरा रंग दे बसंती चोला।
0: दिल्ली में आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों और उसकी छात्र विंग ISI SFI ने 2 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को भी इंडिया गेट से जंतर मंतर तक सिटीजन मार्च निकाला। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भड़के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी जान लगा दी। तो 4 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ BJP और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में गर्जना मोर्चा निकाला।
3: हिटलर सर, हिटलर कोणालाही घाबरत नव्हता, पण हिटलर वरती अशी वेळ आली की त्याला स्वतः स्वतःवरती गोळी झाडून आत्महत्या करावी लागली। पण हिटलर गेला आणि हिटलर गेल्यानंतर त्याला एक न्यूरेंबर्ग ट्रायल म्हणून तो एक शब्द आहे। जे अधिकारी त्या हिटलरच्या पापामध्ये सहभागी होते त्यांना शोधून शोधून काढलं, त्यांच्यावरती खटले भरले गेले, काही जणांना फासावर लटकवलं, काही जणांना तुरुंगात चढून टाकलं, तोच क्षण आपल्या देशात उद्या आल्याशिवाय राहणार नाही एवढं भाजप आणि या सगळ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवावं।
4: त्याला एक तर SIR हा रद्द झाला पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत, आणि दुसरं म्हणजे या देशातलं वोटिंग मशीन बंद होऊन बॅलेट पेपरवरती याच्या पुढे मतदान झालं पाहिजे। या दोन गोष्टी झाल्या तर दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल। उद्या कोणाचीही सत्ता येऊ देत काही फरक पडत नाही।
0: और आज यानी 5 अक्टूबर को भी कांग्रेस की छात्र विंग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर रायसीना रोड पर कांग्रेस की छात्र विंग के कार्यकर्ता और नेता लाशें बनकर सड़क पर लेट जाते हैं। और अब इनका संदेश क्या है वो आपको इस पोस्टर से साफ साफ समझ में आ जाएगा। जो प्रदर्शनकारी अर्थी बनकर लेटा है उस पर रखे पोस्टर में लिखा है, जिंदा है हम फिर भी वोटर लिस्ट में मुड़ते क्यों?
5: ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन ने SIR में मुझे मृत घोषित कर दिया है और हमारी लड़ाई यही है कि जो लाखों लोगों का वोट इस SIR में लाखों लोगों को मृत घोषित किया गया है उनके न्याय की लड़ाई है। क्योंकि लोग फोन चला रहे, लोग घूम रहे, लोग खाना खा रहे, लोग पानी पी रहे हैं, परंतु उनको मृत घोषित कर दिया गया है। सोचिए मैं भी बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मेरा नाम भी SIR से कट गया है। सच्चाई है,
0: जिंदा लाश बनने तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही NSUI के कार्यकर्ता और नेता जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हैं रास्ते में दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्सेज से सीधा सामना हो जाता है। ये देखिए कैसे CISF और दिल्ली पुलिस की महिला ब्रिगेड प्रदर्शनकारियों को उठा उठा कर बस में भर रही है। ये भी देखिए कैसे एक प्रदर्शनकारी को 2 CISF और 1 दिल्ली पुलिस का जवान उठा कर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की छात्र विंग के प्रदर्शनकारियों को बस में भर कर हिरासत में ले लिया।
6: शर्म करो। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ चुका है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। बीजेपी और आरएसएस सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है।
7: एक बार फिर से हिंदुत्व पर सियासत सुलग रही है, एक बार फिर हिंदुत्व पर राजनीति तेज हो रही है और ये हो रहा है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व वाले इस बयान में।
8: इस देश में जिस प्रकार सनातन धर्म को हिंदू हिंदू करते रहे, ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुत्व और सावरकर जी ने उसको हिंदुत्व नाम दे दिया, उसकी वजह से पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के अंदर, हिंदू और सिखों के बीच में, हिंदू ईसाइयों के बीच में आपने खाई पैदा कर दी।
7: दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार मध्य प्रदेश से हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय पर निशाना साधा।
9: इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करना बिना तथ्यों के यह आपत्तिजनक भी है और खेदपूर्ण भी है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के इस तरह के तथ्यहीन बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो किन तथ्यों के आधार पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, राम को बदनाम कर रहे।
7: उधर महाराष्ट्र में भी दिग्विजय सिंह के बयान की गूंज सुनाई दी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भड़क उठे।
10: आरएसएस हो, ये सारी जो संगठनाएं हैं, ये महाराष्ट्र, ये देश में, देश को, जो हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, उसको और ताकतवर बनाने के लिए, हिंदुओं को संगठित रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। वो सभी की सभी चीजें हिंदुओं के बारे में बोलना और वहां कभी भी इस्लाम और कुरान पे बोलने की हिम्मत ये कांग्रेस वाले कभी करते नहीं है। इसलिए तो हम लोग कांग्रेस को मुस्लिम लीग के बी लीग बी टीम बुलाते हैं ना।
7: अब चारों ओर से दिग्विजय पर पलटवार हो रहे हैं और हिंदुत्व पर अब सियासत तेज हो रही है। आज तक भी
6: आज तक ये खबर का असर हुआ है। पिछले शुक्रवार को हमने बिहार के जर्जर स्कूलों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाई थी। उसके बाद बिहार सरकार की नींद खुली है, छात्रों को स्कूल से शिफ्ट कर दिया गया है और मरम्मत का काम शुरू हो गया है।
11: अब ये हिस्सा देखिए स्कूल का, ये आप देख के समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। यहाँ खड़ा होना भी कितना, आप कह सकते हैं ये यहाँ पर खतरनाक है, क्योंकि जिस जगह पर आप ये देख रहे होंगे, ये पूरा ये ढांचा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक टेम्पोररी व्यवस्था की गई है पिलर का रूप देने के लिए।
7: बिहार के दरभंगा के इस स्कूल की हालत जिसने भी देखी वो गुस्से से भर गया। आक्रोशित होने वाली बात ये तो थी ही कि कैसे एक स्कूल की इमारत बेंच के भरोसे खड़ी है। उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात बिहार के शिक्षा विभाग की अनदेखी थी, जो बार बार स्कूल प्रिंसिपल की गुहार लगाने के बावजूद सोता रहा।

0: जब कुछ नहीं हुआ तो आज तक ने इस स्कूल को लेकर बिहार सरकार को खबरदार किया। आखिरकार बिहार सरकार हरकत में आई। सालों से सोया बिहार का शिक्षा विभाग भी एकाएक जागा और कीरतपुर प्राथमिक विद्यालय को गोसवा मध्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया। आज तक पर यह खबर दिखाए जाने के बाद ही बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूल शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया। ये देखिए, शुक्रवार को ये आदेश जारी हुआ और रविवार को बच्चे दूसरे स्कूल में जाने लगे।
1: ये झर झर के गिर रहा है, बहुत डर है।
2: हाँ, तो कभी किसी को बच्चे को चोट भी लगा था, इससे गिरा था इसके पहले?
1: गिरता था लेकिन सर बचा लेता।
2: हाँ, जब बरसात होता था
1: तो पानी टपकता था।
2: हाँ, तो मन में डर भी लगा रहता था।
1: हाँ,
2: अब जा रही हो दूसरे स्कूल तो वहाँ ठीक है ना सब?
1: हाँ।
0: 2 अक्टूबर को आज तक संवाददाता रोहित सिंह दरभंगा के इस स्कूल में गए थे। उन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे बच्चों की जान जोखिम में डालकर स्कूल चल रहा है। आज तक पर यह रिपोर्ट चलने के बाद अगले ही दिन बिहार के शिक्षा विभाग ने अपने अफसरों को स्कूल के निरीक्षण के लिए दौड़ाया और मौत के साए में पड़ते बच्चों को राहत मिल गई।
3: इसी खबर को जब आज तक ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया तो बिहार सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और आदेश निकाला गया कि जिला प्रशासन को आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। इस जर्जर भवन पर पठन पाठन का काम जो है वो नहीं हो और आनंद फानंद में एक आदेश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा गया जिसमें यह बताया गया कि स्कूल में पठन पाठन का काम अब अगले दिनों से जब भी स्कूल खुलेगा तो नहीं होगा। इन बच्चों को टीचर यहां से लेके जो है वो गोसवा मध्य विद्यालय लेके जाएंगे जहां स्कूल को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि बच्चे को अभी ये पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। और जो यहां प्रिंसिपल है वो भी हम लोग के साथ है, टीचर लोग भी, अब ये लोग प्रस्थान कर रहे हैं। हम खुद प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, वो अपने कार्यालय में कुछ कागजी खाना पूर्ति करके निकल रहे हैं और वो दूसरे स्कूल की तरफ जाएंगे। सर ये बताइए कि क्या कहेंगे, खबर आज तक ने दिखाई तो क्या हुआ और आप अभी क्या आदेश आया आप लोग को?
4: मुझे आदेश आया है कि विभागीय पत्र के अनुसार मेरा विद्यालय दूसरे जगह शिफ्ट किया गया, मध्य विद्यालय गोसवा में जी।
2: फिर
4: हम लोग तो सभी बच्चे और शिक्षक वहाँ पहुँच जाएंगे जी, जा रहे हैं अभी तुरंत लेकर के।
2: तो क्या यहाँ वाकई क्या स्थिति का खतरा था?
4: हाँ, यहाँ तो खतरा था।
0: आज तक के खबरदार करने के बाद स्कूल की मरम्मत के लिए बजरी भी स्कूल पहुंच चुकी है। बच्चे पासी के दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब बच्चे सुरक्षित होकर पढ़ेंगे। रोहित सिंह के साथ प्रहलाद कुमार, दरभंगा आज तक।
5: पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत और रिहाई को लेकर की जा रही मांगों को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। उनकी पार्टी पीटीआई अब निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुकी है। खैबर के अलग अलग इलाकों से हजारों लोगों को जुटाया जा रहा है और इस्लामाबाद कूच करने की अपील की जा रही है।
6: सड़कों पर इकट्ठा हजारों की भीड़, ढोल नगाड़ों पर नाचते लोग, हाथों में पार्टी के झंडे और जगह जगह लगी इमरान खान की तस्वीरें। दरअसल इमरान खान की पार्टी का ये लॉन्ग मार्च सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होना था। इस बीच सरकार के साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ और कुछ दिनों के लिए मार्च को टाल दिया गया, लेकिन सरकार के साथ बात अब नाकाम हो गई है और पीटीआई ने ये मार्च शुरू कर दिया है। रविवार को खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की ओर शुरू हुए इस मार्च से रास्ते में पड़ने वाले हर इलाके से लोग जुड़ते जा रहे हैं।
7: जब हमारा वजीर आला जो ही लाया अमल तय करेगा उसके अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब वो या इस्लामाबाद की तरफ हो जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे।
6: पार्टी की प्रमुख मांगों में जेल में बंद इमरान खान से तत्काल मुलाकात और उन्हें ऐसे अस्पताल ले जाने का फैसला शामिल है जहां उनके निजी डॉक्टर उनकी जांच कर सकें। इमरान पिछले करीब 3 साल से रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी अदियाला जेल में बंद हैं। उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनकी पार्टी लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रही है। फिलहाल जो हालात हैं, ये हफ्ता शहबाज शरीफ और मुरीद की रातों की नींद उड़ाने वाला हो सकता है।

0: पीटीआई के समर्थक इस्लामाबाद पहुंच पाएं तो भी और ना पहुंच पाएं तो भी, क्योंकि जब जब जुल्म हुए हैं लोगों की बगावत ने सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाई ही हैं। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

इंडिया गठबंधन का आज प्रोटेस्ट मार्च सुबह 10:30 बजे संसद के मकर द्वार से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक मार्च विपक्ष का दावा 146 से ज्यादा सांसद मार्च में लेंगे हिस्सा शामिल नहीं होगी आम आदमी पार्टी। चुनाव आयोग के फॉर्म 6 को लेकर सियासी घमासान तेज सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाने के बाद विपक्ष को मिला मौका राहुल गांधी ने उठाए सवाल कहा बीजेपी सीईसी की साठगांठ का नतीजा आग बबूला बीजेपी का पलटवार।

तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 5 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर आज मतदान। बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर शुभेंदु की पहली परीक्षा, सुबह 7 बजे से मतदान। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जातीय समीकरण साधने में जुटी बीजेपी। लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय के नाम। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा आउट। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग। बागडोगरा से बीएसएफ इन्हें भेजेगी सीमा पार। 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी।

0: पूजा शर्मा बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। फ्लाई दुबई विमान हादसे की जांच में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि इस घटना के पीछे ईरान जिम्मेदार हो सकता है। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेरी वेंस ने कहा है कि अभी तक ईरान की भूमिका को लेकर कोई भी निर्णायक सबूत सामने नहीं आया है। इसी बीच जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाई दुबई के को पायलट ने यूएई के जांचकर्ताओं को बताया है कि उसने विमान के कैप्टन पर हमला करने की योजना एयरलाइन में नौकरी मिलने से पहले ही बना ली थी। आरोप है कि को पायलट ने विमान को क्रैश कराने की कोशिश में कैप्टन पर चाकू से हमला किया था। मामले की जांच जारी है और अब जांच एजेंसियां हमले की साजिश और संभावित ईरानी कनेक्शन दोनों पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। एक और बड़ी खबर, नाइजीरिया में एक बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है। बेनिन सिटी से लागोस जा रहे नाइजीरियाई सैन्य विमान दक्षिण पश्चिमी ओंडो स्टेट में क्रैश हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 25 यात्री और 7 क्रू मेंबर शामिल थे। बताया जा रहा है कि ये ATR-42 विमान नियमित मिशन पर था और तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का विमान से संपर्क टूट गया। बाद में तटीय शहर डगबोगोटा के पास विमान का मलबा मिला। हादसे के बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू टीमों ने भी तलाशी अभियान शुरू किया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करी है। साथ ही शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा हाल के वर्षों में नाइजीरिया के सबसे घातक विमान हादसों में से एक माना जा रहा है। तो वहीं बीजेपी ने यूपी में 8 सीटों के लिए उम्मीदवार उतार दिए। बीजेपी ने उम्मीदवार चुनने में जातिगत समीकरण का खास ख्याल रखा है और साथ ही 27 के चुनाव ध्यान में रखते हुए 2 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया। सभी प्रत्याशी यूपी से ही आते हैं।
1: यूपी में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की जिस लिस्ट का इंतजार था वो खत्म हुआ। बीजेपी ने आज अपने सभी 8 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया। खास बात ये रही कि इस बार सभी 8 उम्मीदवार नए हैं, मतलब किसी भी पुराने चेहरे को रिपीट नहीं किया गया। नए उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय चेहरा है। इनमें 3 ओबीसी उम्मीदवार हैं, 2 एससी उम्मीदवार हैं। ओबीसी में लोधी, पाल, कुर्मी समुदाय के उम्मीदवार हैं। महिला प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है, 2 महिलाओं को टिकट मिला है।
2: ये सिर्फ मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, पूरे महिलाओं को, पूरी नारी शक्ति को एक जिम्मेदारी मिली है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेतागण, हमारे आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट की बात, महिला नेतृत्व की बात, आज उन्होंने इस लिस्ट में 2 महिलाओं के नाम से सिद्ध किया है कि महिलाएं देश की प्रगति में, राष्ट्र को आगे ले जाने में कितनी अहम भूमिका है।
3: मुझ जैसे एक सामान्य पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता को जो अविचल 36 साल से अधिक समय से पार्टी का आहार निष्काम कर रहा था, उसको आज मौका दिया है और प्रदेश में संदेश देने का काम किया है कि कोई भी कार्यकर्ता अगर निष्ठापूर्वक लगे रहेगा तो पार्टी के नेतृत्व का ध्यान उस पर अवश्य है और ये आज मुझे उम्मीदवार बनाने से पार्टी में संदेश जाएगा।
1: मतलब बीजेपी ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है। एक तो जातिगत समीकरण को साधा गया है, दूसरा महिलाओं को मौका मिला है, तीसरा सवर्ण मतदाताओं के लिए भी मैसेज है। 27 में यूपी में चुनाव है और राज्यसभा टिकट बांटने में इसका खासा ख्याल रखा गया है, तभी तो सभी 8 उम्मीदवार यूपी के हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल बीएल वर्मा और हरदीप सिंह पुरी का टिकट काट दिया गया है। बता दें कि यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, इनमें 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होना है। 6 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। आज तक ब्यूरो।
0: तो वहीं यूपी की राजनीति में अगली खबर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर है। दरअसल अब कांग्रेस की ओर से नई डिमांड करती गई है। कांग्रेस कह रही है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस कम से कम 200 सीट चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के लिए 50 सीट भी ज्यादा है।
1: यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर गदर मची है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस 150 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस अब इससे आगे की बात कर रही है।
4: इसने किया 150 का, मैंने तो 200 की बात की थी। मैं शुरू से कह रहा हूँ बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत, बराबर का हिस्सा।
1: लेकिन राजेंद्र पाल गौतम को समाजवादी पार्टी के नेता दो टूक जवाब देते हैं।
5: मैं ये कहता हूँ उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। दो तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता?
1: अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जीत ही सीट का आधार है।
6: जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
1: और जीत बोले तो आखिरी चुनाव यानी 2024 लोकसभा में मेरी जीत, और वो जीत कुछ ऐसी थी कि 80 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 6 कांग्रेस को मिली थी। इसे विधानसभा के अनुपात में बांटा जाए तो 37 लोकसभा के हिसाब से अखिलेश के हिस्से 347 सीटें बनती हैं और कांग्रेस के हिस्से 56। लेकिन कांग्रेस की हसरतें 56 से 200 तक पहुंच चुकी हैं और हौसला बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने उन्हीं इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और 403 सीटों पर लड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर कांग्रेस ने अपने पत्ते सामने रख दिए हैं। अब बारी समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लेने की है, और वो कांग्रेस की सीटों वाली शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है या बीजेपी को हराने के मिशन के साथ। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: तो यूपी में 2027 की सियासी जंग से पहले दलित वोट बैंक पर भी सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही का नाम संत रविदास नगर भदोही करने का ऐलान कर दिया है। तो योगी सरकार के इस फैसले के पीछे क्या है सम्मान, कल्याण और विकास का सियासी फॉर्मूला, आइए देखते हैं।
7: यूपी के चुनावी मौसम में दलित वोटों के लिए हर दल के तर्कश में अलग अलग तीर है, और इसी में से एक तीर बीजेपी ने अब यूपी में आजमाया है, जो दलित सियासत में प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसा ही एक ऐलान यूपी में किया, जहां भदोही का नाम संत रविदास के नाम पर किया गया है।
8: कालीन उद्योग के लिए जाना जाने वाला भदोही जनपद आने वाले समय में मध्यकालीन संत जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था, ऐसे सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर भदोही जाना जाएगा।
7: भदोही नहीं, नामकरण की बात हो तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहाल किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर काम होगा। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार ने दलित विरोधी सोच के कारण जिन महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों, संस्थानों के नाम बदल डाले थे, उनका पुनर्नामकरण करके बीजेपी सम्मान दे रही है।
9: पूर्व में भी भदोही का नाम संत रविदास नगर था, किंतु अखिलेश यादव की दलित विरोधी सोच के नाते से उन्होंने संत रविदास नगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के नाम बदले थे, आज उसको सही किया गया है।
10: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है, वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है।
7: मतलब ये कि दलितों को रिझाने के लिए दाव चलाए जाने लगे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: आखिर यूपी में अब्दुल कौन है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब किसी की दरी नहीं उठाएगा, यानी अब्दुल के वोट का अब कोई भी पार्टी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करेगी। समस्या यह है कि ओवैसी के इन सवालों से समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा नाराज हो रही है।
11: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा।
12: आप नाम मत लीजिए अब्दुल, अब्दुल क्या होता है, आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कहकर के।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा अब्दुल का नाम पर, गाली है अब्दुल।
14: चुनाव से पहले अब्दुल पर घमासान, किसकी तरफ है यूपी का मुसलमान, अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, इस बार किस तरफ जाएगा। यूपी में मुस्लिम वोटों पर हंगामा मचा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ओवैसी के बीच घमासान मचा है कि कौन लेकर जाएगा मुस्लिम वोट। यूपी का मुसलमान किसकी तरफ जाएगा?
15: ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।
14: यहाँ पर उत्तर प्रदेश अपनी रैलियों में ओवैसी अक्सर कहते हैं कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, और इसी अब्दुल पर हंगामा छिड़ गया है। मुस्लिम पॉलिटिक्स में अब्दुल शब्द मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है। खुद ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता इस शब्द यानी अब्दुल का इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है उस मुसलमान से जिसे राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक समझती हैं। इसीलिए ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, यानी अब्दुल अब उन पार्टियों के लिए वोट बैंक नहीं बनेगा जिनके वोटों पर जीत कर ये पार्टियां उन्हें भूल जाती हैं।
11: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सज्जन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा, अब सज्जन टेबल लगाएगा, कुर्सी पर बैठ कर कहेगा बोल इंसाफ करता है या नहीं करता है। इस मिजाज को आपको पैदा करना है। नौजवानों, आने वाला मुस्तकबिल आपका है, आने वाला मुस्तकबिल आपका है। बुजुर्गों, आपने बरसों इन जालिमों का साथ दिया, इन्होंने झूठ बोलकर आपके ख्वाबों को मिसमार कर दिया, चिकना चूर कर दिया। एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप अपना वोट देकर यहां से मजलिस के विधायक को कामयाब करिए।
14: ऐसा नहीं है कि ओवैसी ने मुसलमानों के लिए अब्दुल शब्द पहली बार कहा हो, वो पहले भी कहते रहे हैं।
12: अब्दुल क्या होता है?
14: लेकिन इस बार विवाद हुआ है रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी से पूछे गए सवाल पर। असल में रामपुर में मोहिबुल्ला नदवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी में एक पत्रकार ने उनसे अब्दुल के नाम पर ये सवाल पूछ लिया तो नदवी बुरी तरह से भड़क गए।
12: मुसलमान इस देश के सबसे मोहतर शहरी
16: है, और हर पार्टी जो है 27 के चुनाव में अब्दुल को याद करती है। इस वक्त अब्दुल का
12: क्या मतलब? आप नाम मत लीजिए अब्दुल। अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कहकर के।
16: नहीं, हर पार्टी नहीं,
12: आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। अब्दुल मीन्स क्या होता है?
16: हर पार्टी
12: किसे कहते हैं अब्दुल का? नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात को। अब्दुल अब्दुल लगाया क्या होता है? अब्दुल
16: बताइए,
12: मुसलमान इस देश के सबसे मोहतर शहरी है, जिन्होंने देश की कुर्बानी हजारों साल सैकड़ों साल से देश में कुर्बानियां दी है। कांग्रेस पार्टी के आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी पे देख लीजिए, सब लोग हैं। आप अब्दुल अब्दुल कहकर के आप खड़ाने की कोशिश करते हैं।
14: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद को लग रहा है कि ऐसे अब्दुल का नाम लेकर मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें आपत्ति है कि मुसलमानों को अब्दुल कहा जा रहा है। ये करीब 5 साल पहले का रामपुर का ही बयान है, और जो ये अब्दुल कह रहे हैं ये कभी आजम खान के करीबी हुआ करते थे, और उन्हीं की सभा में इन्होंने ये अब्दुल वाला बयान दिया था। इनका नाम है फसाहत अली शानू। अब ये बीजेपी में है, और अब्दुल के नाम पर जब मौजूदा रामपुर के सांसद को आपत्ति हुई तो इन्होंने उन्हें बताया कि अब्दुल कौन है।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा? अब्दुल के नाम पर गाली है अब्दुल? आपकी घर की दीवारों की रंग पॉलिश करता है वो है अब्दुल, आपकी मोटरों के पंचर जोड़ता है वो है अब्दुल, जिसके नाम के आपकी आपने और आपकी पार्टी ने रोटियां सेकी है वो है अब्दुल, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई उसके वोटों से वो है अब्दुल, जमाने से आज भी थाने में पिटता आ रहा है वो है अब्दुल। आपने तो इमामत की कीमत कबूल ली, आप तो मस्जिद में नमाज पढ़ाते पढ़ाते सांसद बन गए, अब्दुल के वोटों से बने आप सांसद, अब्दुल के नाम पे भड़कते हैं आप, अब्दुल के नाम पे गुस्सा आता है आपको। आपकी पार्टी ने राज्यसभा में किसको भेजा है? नथवानी को भेजा है, और जो राज्यसभा में नथवानी को भेजा है वो भी अब्दुल की वजह से भेजा है। अब्दुल ने आपकी पार्टी की यह हैसियत बनाई कि आपकी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी।
14: यूपी के मुसलमानों के मन में यह भी सवाल है, जिसका जिक्र फसाहत अली शानू भी कर रहे हैं, कि जब राज्यसभा देने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी ने धनराज परिमल नाथवानी को राज्यसभा भेजा, न कि किसी मुसलमान नेता को। यहीं से यह नैरेटिव बनता है कि अब्दुल इन पार्टियों के लिए कब तक दरी बिछाएगा।
15: पूछेंगे समाजवादी थी तो क्या था, समाजवादी थी तो वाई था, वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है, टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता, ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है। दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।
14: कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: वहीं सीएसी के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीएसी ज्ञानेश कुमार के तुरंत निलंबन करने की मांग से इनकार कर दिया। साथ ही चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी भेजा है।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बवाल और विरोध प्रदर्शन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब 6 अक्टूबर को ज्ञानेश के खिलाफ उतरेगा इंडिया। चुनाव आयोग तक विपक्षी पार्टियों के सांसदों का मान। इंडिया गठबंधन ने बनाई ज्ञानेश को घेरने की रणनीति। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया का अक्टूबर संग्राम। वोट चोरी की लड़ाई ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई।
1: फॉर एन एग्रेसिव नेशनल वाइड कैंपेन अगेंस्ट वोट चोरी, वोट बचाओ देश बचाओ।
0: वोटर चोरी, SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का पूरा प्लान आपको बताएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू हुआ संग्राम लगातार जारी है। 2 अक्टूबर को मुंबई में CJP ने विरोध प्रदर्शन किया।
2: मेरा रंग दे बसंती चोला, ज्ञान उठा ले छोला। मेरा रंग दे बसंती चोला,
0: दिल्ली में आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों और उसकी छात्र विंग ISA SFI ने 2 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को भी इंडिया गेट से जंतर मंतर तक सिटीजंस मार्च निकाला। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भड़के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी जान लगा दी। तो 4 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ BJP और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में गर्जना मोर्चा निकाला।
3: हिटलर सर, हिटलर कोणालाही घाबरत नव्हता, पण हिटलर वरती अशी वेळ आली की त्याला स्वतः स्वतःवरती गोळी झाडून आत्महत्या करावी लागली। पण हिटलर गेला आणि हिटलर गेल्यानंतर त्याला एक न्यूरेमबर्ग ट्रायल म्हणून तो एक शब्द आहे। जे अधिकारी त्या हिटलरच्या पापामध्ये सहभागी होते त्यांना शोधून शोधून काढलं, त्यांच्यावरती खटले भरले गेले, काही जणांना फासावर लटकवलं, काही जणांना तुरुंगात चढून टाकलं, तोच क्षण आपल्या देशात उद्या आल्याशिवाय राहणार नाही एवढं भाजप आणि या सगळ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवावं।
4: त्याला एक तर SIR हा रद्द झाला पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत, आणि दुसरं म्हणजे या देशातलं वोटिंग मशीन बंद होऊन बॅलेट पेपरवरती याच्यापुढे मतदान झालं पाहिजे। या दोन गोष्टी झाल्या तर दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल। उद्या कोणाची सत्ता येऊ देत काही फरक पडत नाही।
0: और आज यानी 5 अक्टूबर को भी कांग्रेस की छात्र विंग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर रायसीना रोड पर कांग्रेस की छात्र विंग के कार्यकर्ता और नेता लाशें बनकर सड़क पर लेट जाते हैं। और अब इनका संदेश क्या है वो आपको इस पोस्टर से साफ साफ समझ में आ जाएगा। जो प्रदर्शनकारी अर्थी बनकर लेता है उस पर रखे पोस्टर में लिखा है, जिंदा है हम फिर भी वोटर लिस्ट में मुड़े क्यों।
5: ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन ने SIR में मुझे मृत घोषित कर दिया है और हमारी लड़ाई यही है कि जो लाखों लोगों का वोट इस SIR में लाखों लोगों को मृत घोषित किया गया है उनके न्याय की लड़ाई है। क्योंकि लोग फोन चला रहे, लोग घूम रहे, लोग खाना खा रहे, लोग पानी पी रहे हैं, परंतु उनको मृत घोषित कर दिया गया है। सोचिए मैं भी बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मेरा नाम भी SIR से कट गया है, सच्चाई है।
6: जंतर मंतर से जाने से रोका जा रहा है, हमारे साथियों को डिटेन किया जा रहा है, लाठी चार्ज किए जा रहे हैं, FIR दर्ज की जा रही है, लेकिन हम कहेंगे दिल्ली पुलिस से कि आपकी लाठियां हमारा जिस्म तोड़ सकती हैं, आवाज नहीं, हमारा हौसला नहीं टूटेगा। और ये जो आप लाशें देख रहे हैं ये लोकतंत्र की लाशें हैं, ये उनकी जिंदा लाशें हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। ये चीख चीख के सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी शरीर जिंदा है, हमारी आत्मा जिंदा है, लेकिन वोटर लिस्ट में ज्ञानेश कुमार ने हमें मार दिया है। और इनकी लाशों पे ही, लोकतंत्र की लाशों पे जो है इस देश की सरकार बनी हुई है। जो सरकार लाशों पे बनी हुई हो वो इस देश की तरक्की नहीं कर सकती है। तभी इस देश के अंदर पेपर चोरी हो रहे हैं, इस देश में वोट चोरी हो रहे हैं, इस देश में जो है चंदा चोरी हो रहा है, इस देश में पेट्रोल चोरी हो रहा है, टैक्स चोरी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो इस देश में चोरी नहीं हो रहा हो।
0: जिंदा लाश बनने तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही NSUI के कार्यकर्ता और नेता जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हैं रास्ते में दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस से सीधा सामना हो जाता है। ये देखिए कैसे CISF और दिल्ली पुलिस की महिला ब्रिगेड प्रदर्शनकारियों को उठा उठा कर बस में भर रही है।
7: ये भी देखिए कैसे एक प्रदर्शनकारी को दो CISF और एक दिल्ली पुलिस का जवान उठाकर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की छात्र विंग के प्रदर्शनकारियों को बस में भरकर हिरासत में ले लिया।
8: आप जो है अपनी वर्दी उतार दो और संघ का कच्चा पहन लो। दिल्ली पुलिस संघ का कच्चा पहन लो, शर्म करो। मेरे बेटियों को आप जो है आप कितने
9: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ गया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कहा है कि धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। बीजेपी और आरएसएस सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं।
7: एक बार फिर से हिंदुत्व पर सियासत सुलग रही है, एक बार फिर हिंदुत्व पर राजनीति तेज हो रही है और ये हो रहा है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व वाले इस बयान में।
10: इस देश में जिस प्रकार सनातन धर्म को हिंदू हिंदू करते रहे, ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुत्व और सावरकर जी ने उसको हिंदुत्व नाम दे दिया, उसकी वजह से पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के अंदर, हिंदू और सिखों के बीच में, हिंदू ईसाइयों के बीच में आपने खाई पैदा कर दी।
7: दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार मध्य प्रदेश से हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय पर निशाना साधा।
11: इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करना बिना तथ्यों के यह आपत्तिजनक भी है और खेदपूर्ण भी है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के इस तरह के तथ्यहीन बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो किन तथ्यों के आधार पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, राम को बदनाम कर रहे।
7: उधर महाराष्ट्र में भी दिग्विजय सिंह के बयान की गूंज सुनाई दी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भड़क उठे।
12: आरएसएस हो, ये सारी जो संगठनाएं है, ये महाराष्ट्र, ये देश में, देश को, जो हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, उसको और ताकतवर बनाने के लिए, हिंदुओं को संगठित रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। वो सभी की सभी चीजें हिंदुओं के बारे में बोलना और वहां कभी भी इस्लाम और कुरान पे बोलने की हिम्मत, ये कांग्रेस वाले कभी करते नहीं है। इसलिए तो हम लोग कांग्रेस को मुस्लिम लीग के बी लीग बी टीम बुलाते हैं ना।
7: अब चारों ओर से दिग्विजय पर पलटवार हो रहे हैं और हिंदुत्व पर अब सियासत तेज हो रही है। आज तक दिन
9: यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से।

मंगल और राहु के योग से क्या होता है? क्या मंगल और राहु का योग अशुभ होता है? क्या मंगल और राहु के योग से विस्फोट होता है? क्या है मंगल और राहु के योग का रहस्य? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: सीसी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का आज प्रोटेस्ट मार्च, सुबह 10:30 बजे संसद के मकर द्वार से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक मार्च। विपक्ष का दावा, 146 से ज्यादा सांसद मार्च में लेंगे हिस्सा, शामिल नहीं होगी आम आदमी पार्टी। चुनाव आयोग के फॉर्म 6 को लेकर सियासी घमासान तेज, सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाने के बाद विपक्ष को मिला मौका। राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा बीजेपी सीसी की साठगांठ का नतीजा, आग बबूला बीजेपी का पलटवार। तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 5 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर आज मतदान। बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर शुभेंदु की पहली परीक्षा, सुबह 7 बजे से मतदान। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जातीय समीकरण साधने में जुटी बीजेपी। लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय के नाम। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा आउट। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग, बागडोगरा से बीएसएफ इन्हें भेजेगी सीमा पार। 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी की खबर के साथ। दरअसल बीजेपी ने यूपी में 8 सीटों के लिए उम्मीदवार उतार दिए। बीजेपी ने उम्मीदवार चुनने में जातिगत समीकरण का खास ख्याल रखा है, साथ ही 27 के चुनाव ध्यान में रखते हुए 2 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया और सभी प्रत्याशी यूपी से ही आते हैं।
1: यूपी में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की जिस लिस्ट का इंतजार था वो खत्म हुआ। बीजेपी ने आज अपने सभी 8 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया। खास बात ये रही कि इस बार सभी 8 उम्मीदवार नए हैं, मतलब किसी भी पुराने चेहरे को रिपीट नहीं किया गया। नए उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय चेहरा है। इनमें 3 ओबीसी उम्मीदवार हैं, 2 एससी उम्मीदवार हैं। ओबीसी में लोधी, पाल, कुर्मी समुदाय के उम्मीदवार हैं। महिला प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है, 2 महिलाओं को टिकट मिला है।
2: ये सिर्फ मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, पूरे महिलाओं को, पूरी नारी शक्ति को एक जिम्मेदारी मिली है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेतागण, हमारे आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात, महिला नेतृत्व की बात, आज उन्होंने इस लिस्ट में 2 महिलाओं के नाम से सिद्ध किया है कि महिलाएं देश की प्रगति में, राष्ट्र को आगे ले जाने में कितनी अहम भूमिका है।
3: मुझ जैसे एक सामान्य पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता को जो अविचल 36 साल से अधिक समय से पार्टी का आहार निष्काम कर रहा था, उसको आज मौका दिया है और प्रदेश में संदेश देने का काम किया है कि कोई भी कार्यकर्ता अगर निष्ठापूर्वक लगे रहेगा तो पार्टी के नेतृत्व का ध्यान उस पर अवश्य है और ये आज मुझे उम्मीदवार बनाने से पार्टी में संदेश जाएगा।
1: मतलब बीजेपी ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है। एक तो जातिगत समीकरण को साधा गया है, दूसरा महिलाओं को मौका मिला है, तीसरा सवर्ण मतदाताओं के लिए भी मैसेज है। 27 में यूपी में चुनाव है और राज्यसभा टिकट बांटने में इसका खासा ख्याल रखा गया है, तभी तो सभी 8 उम्मीदवार यूपी के हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल बीएल वर्मा और हरदीप सिंह पुरी का टिकट काट दिया गया है। बता दें कि यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, इनमें 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होना है। 6 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी की राजनीति में अगली खबर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर है। अब कांग्रेस की ओर से नई डिमांड कर दी गई है। कांग्रेस कह रही है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस कम से कम 200 सीट चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के लिए 50 सीट भी ज्यादा है।
1: यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर गदर मची है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस 150 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस अब इससे आगे की बात कर रही है।
4: इसने किया 150 का, मैंने तो 200 की बात की थी। मैं शुरू से कह रहा हूँ बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत, बराबर का हिस्सा।
1: लेकिन राजेंद्र पाल गौतम को समाजवादी पार्टी के नेता 2 टूक जवाब देते हैं।
5: मैं ये कहता हूँ उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। 2 तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता?
1: अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जीत ही सीट का आधार है।
6: जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
1: और जीत बोले तो आखिरी चुनाव यानी 2024 लोकसभा में मेरी जीत, और वो जीत कुछ ऐसी थी कि 80 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 6 कांग्रेस को मिली थी। इसे विधानसभा के अनुपात में बांटा जाए तो 37 लोकसभा के हिसाब से अखिलेश के हिस्से 347 सीटें बनती हैं और कांग्रेस के हिस्से 56। लेकिन कांग्रेस की हसरतें 56 से 200 तक पहुंच चुकी हैं और हौसला बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने उन्हीं इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और 403 सीटों पर लड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर कांग्रेस ने अपने पत्ते सामने रख दिए हैं। अब बारी समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लेने की है, और वो कांग्रेस की सीटों वाली शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है या बीजेपी को हराने के मिशन के साथ। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: यूपी में 2027 की सियासी जंग से पहले दलित वोट बैंक पर भी सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही का नाम संत रविदास नगर भदोही करने का ऐलान किया। तो योगी सरकार के इस फैसले के पीछे क्या है सम्मान, कल्याण और विकास का सियासी फॉर्मूला, देखिए।
7: यूपी के चुनावी मौसम में दलित वोटों के लिए हर दल के तरकश में अलग लगती है, और इसी में से एक तीर बीजेपी ने अब यूपी में आजमाया है, जो दलित सियासत में प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसा ही एक ऐलान यूपी में किया, जहां भदोही का नाम संत रविदास के नाम पर किया गया है।
8: कालीन उद्योग के लिए जाना जाने वाला भदोही जनपद आने वाले समय में मध्यकालीन संत जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था, ऐसे सद्गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर भदोही जाना जाएगा।
7: भदोही नहीं, नामकरण की बात हो तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहाल किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर काम होगा। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार ने दलित विरोधी सोच के कारण जिन महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों, संस्थानों के नाम बदल डाले थे, उनका पुनर्नामकरण करके बीजेपी सम्मान दे रही है।
9: पूर्व में भी भदोही का नाम संत रविदास नगर था, किंतु अखिलेश यादव की दलित विरोधी सोच के नाते से उन्होंने संत रविदास नगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के नाम बदले थे। आज उसको सही किया गया है।
10: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है। वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है।
7: मतलब ये कि दलितों को रिझाने के लिए दांव चलाए जाने लगे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: आखिर यूपी में अब्दुल कौन है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब किसी की दरी नहीं उठाएगा, यानी अब्दुल के वोट का अब कोई भी पार्टी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करेगी। समस्या ये है कि ओवैसी के इन सवालों से समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा नाराज हो रही है।
11: दरी नहीं बिछाएगा, सत्संग दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा।
12: अब नाम लीजिए अब्दुल, अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कहकर के।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा अब्दुल का नाम पर? गाली है अब्दुल।
14: चुनाव से पहले अब्दुल पर घमासान, किसकी तरफ है यूपी का मुसलमान? अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, इस बार किस तरफ जाएगा? यूपी में मुस्लिम वोटों पर हंगामा मचा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ओवैसी के बीच घमासान मचा है कि कौन लेकर जाएगा मुस्लिम वोट, यूपी का मुसलमान किसकी तरफ जाएगा।
15: ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।
14: यहाँ पर उत्तर अपनी रैलियों में ओवैसी अक्सर कहते हैं कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, और इसी अब्दुल पर हंगामा छिड़ गया है। मुस्लिम पॉलिटिक्स में अब्दुल शब्द मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है। खुद ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता इस शब्द यानी अब्दुल का इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है उस मुसलमान से जिसे राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक समझती हैं। इसीलिए ओवैसी कहते हैं कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, यानी अब्दुल अब उन पार्टियों के लिए वोट बैंक नहीं बनेगा जिनके वोटों पर जीत कर ये पार्टियां उन्हें भूल जाती हैं।
11: अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, सद्दन दरी नहीं बिछाएगा, शौकत दरी नहीं बिछाएगा, अब सद्दन टेबल लगाएगा, कुर्सी पर बैठ कर कहेगा बोल इंसाफ करता है या नहीं करता है। इस मिजाज को आपको पैदा करना है। नौजवानों, आने वाला मुस्तकबिल आपका है, आने वाला मुस्तकबिल आपका है। बुजुर्गों, आपने बरसों इन जालिमों का साथ दिया, इन्होंने झूठ बोलकर आपके ख्वाबों को मिसमार कर दिया, चिकना चूर कर दिया। एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप अपना वोट देकर यहां से मजलिस के विधायक को कामयाब करिए।
14: ऐसा नहीं है कि ओवैसी ने मुसलमानों के लिए अब्दुल शब्द पहली बार कहा हो, वो पहले भी कहते रहे हैं।
12: अब्दुल क्या होता है?
14: लेकिन इस बार विवाद हुआ है रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी से पूछे गए सवाल पर। असल में रामपुर में मोहिबुल्ला नदवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी में एक पत्रकार ने उनसे अब्दुल के नाम पर ये सवाल पूछ लिया तो नदवी पूरी तरह से भड़क गए।
12: मुसलमान इस देश के सबसे मुअज्जज़ शहरी हैं
16: जी, झगड़ा इसके चुनाव की क्या तैयारी है? और हर पार्टी जो है 27 के चुनाव में अब्दुल को याद करती, इस वक्त अब्दुल कहाँ है?
12: क्या मतलब, आप नाम लीजिए, अब्दुल अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कह करके?
16: नहीं, हर पार्टी नहीं,
12: आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। अब्दुल प्रिंस क्या होता है?
16: हर पार्टी
12: किसे कहते हैं? बार नहीं समझ पा रहा आपकी बात को। अब्दुल अब्दुल लगाया क्या होता है? अब्दुल
16: बताइए,
12: मुसलमान इस देश के सबसे मुअज्जज़ शहरी हैं जिन्होंने देश की कुर्बानी हजारों साल सैकड़ों साल से देश में कुर्बानियां दी हैं। कांग्रेस पार्टी के आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, सब लोग हैं। आप अब्दुल अब्दुल कहकर के आप खड़ाने की कोशिश करते हैं।
14: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद को लग रहा है कि ऐसे अब्दुल का नाम लेकर मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें आपत्ति है कि मुसलमानों को अब्दुल कहा जा रहा है। ये करीब 5 साल पहले का रामपुर का ही बयान है और जो ये अब्दुल कह रहे हैं ये कभी आजम खान के करीबी हुआ करते थे और उन्हीं की सभा में इन्होंने ये अब्दुल वाला बयान दिया था। इनका नाम है फसाहत अली शानू। अब ये बीजेपी में है और अब्दुल के नाम पर जब मौजूदा रामपुर के सांसद को आपत्ति हुई तो इन्होंने उन्हें बताया कि अब्दुल कौन है।
13: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा? अब्दुल के नाम पर गाली है? अब्दुल आपकी घर की दीवारों की रंग पॉलिश करता है वो है अब्दुल, आपकी मोटरों के पंजा जोड़ता है वो है अब्दुल, जिसके नाम की आपकी आपने और आपकी पार्टी ने रोटियां सेकी है वो है अब्दुल, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई उसके वोटों से वो है अब्दुल, जमाने से आज भी थाने में पिटता आ रहा है वो है अब्दुल। आपने तो इमामत की कीमत कबूल ली, आप तो मस्जिद में नमाज पढ़ाते पढ़ाते सांसद बन गए। अब्दुल के वोटों से बने आप सांसद, अब्दुल के नाम पे भड़कते हैं आप, अब्दुल के नाम पे गुस्सा आता है आपको। आपकी पार्टी ने राज्यसभा में किसको भेजा है? नथवानी को भेजा है, और जो राज्यसभा में नथवानी को भेजा है वो भी अब्दुल की वजह से भेजा है। अब्दुल ने आपकी पार्टी की यह हैसियत बनाई कि आपकी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी।
14: यूपी के मुसलमानों के मन में यह भी सवाल है जिसका जिक्र फसाहत अली शानू भी कर रहे हैं कि जब राज्यसभा देने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी ने धनराज परिमल नाथवानी को राज्यसभा भेजा, ना कि किसी मुसलमान नेता को। यहीं से यह नैरेटिव बनता है कि अब्दुल इन पार्टियों के लिए कब तक दरी बिछाएगा।
15: पूछेंगे समाजवादी थी तो क्या था? समाजवादी थी तो वाई था, वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है, टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता। ओवैसी बोलता है कि एम जिंदा कौम है, दरी नहीं बिछाएंगे बाबा और भैया, अब तुमको दरी बिछाना पड़ेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।
14: कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: सीसी के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीसी ज्ञानेश कुमार के तुरंत निलंबन करने की मांग से इनकार कर दिया। साथ ही चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी भेजा है।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बवाल और विरोध प्रदर्शन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब 6 अक्टूबर को ज्ञानेश के खिलाफ उतरेगा इंडिया। चुनाव आयोग तक विपक्षी पार्टियों के सांसदों का मान। इंडिया गठबंधन ने बनाई ज्ञानेश को घेरने की रणनीति। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया का अक्टूबर संग्राम। वोट चोरी की लड़ाई ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई।
1: फॉर एन अग्रेसिव नेशनल वाइड कैंपेन अगेंस्ट वोट चोरी, वोट बचाओ देश बचाओ।
0: वोटर चोरी SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का पूरा प्लान आपको बताएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू हुआ संग्राम लगातार जारी है। 2 अक्टूबर को मुंबई में CJP ने विरोध प्रदर्शन किया।
2: मेरा रंग दे बसंती चोला ज्ञान उठा ले छो, मेरा रंग दे बसंती चोला
0: दिल्ली में आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों और उसकी छात्र विंग ISI SFI ने 2 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को भी इंडिया गेट से जंतर मंतर तक सिटीजंस मार्च निकाला। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भड़के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी जान लगा दी। तो 4 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ BJP और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में गर्जना मोर्चा निकाला।
3: हिटलर सर, हिटलर कोणालाही घाबरत नव्हता, पण हिटलर वरती अशी वेळ आली की त्याला स्वतः स्वतःवरती गोळी झाडून आत्महत्या करावी लागली। पण हिटलर गेला आणि हिटलर गेल्यानंतर त्याला एक न्यूरेंबर्ग ट्रायल म्हणून तो एक शब्द आहे। जे अधिकारी त्या हिटलरच्या पापामध्ये सहभागी होते त्यांना शोधून शोधून काढलं, त्यांच्यावरती खटले भरले गेले, काही जणांना फासावर लटकवलं, काही जणांना तुरुंगात चढून टाकलं, तोच क्षण आपल्या देशात उद्या आल्याशिवाय राहणार नाही एवढं भाजप आणि या सगळ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवावं।
4: त्याला एक तर SIR हा रद्द झाला पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत, आणि दुसरं म्हणजे या देशातलं वोटिंग मशीन बंद होऊन बॅलेट पेपरवरती याच्या पुढे मतदान झालं पाहिजे। या दोन गोष्टी झाल्या तर दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल। उद्या कोणाचीही सत्ता येऊ देत काही फरक पडत नाही।
0: और आज यानी 5 अक्टूबर को भी काँग्रेस की छात्र विंग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर रायसीना रोड पर कांग्रेस की छात्र विंग के कार्यकर्ता और नेता लाशें बनकर सड़क पर लेट जाते हैं। और अब इनका संदेश क्या है वो आपको इस पोस्टर से साफ साफ समझ में आ जाएगा। जो प्रदर्शनकारी अर्थी बनकर लेता है उस पर रखे पोस्टर में लिखा है, जिंदा है हम फिर भी वोटर लिस्ट में मुड़ते क्यों।
5: ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन ने SIR में मुझे मृत घोषित कर दिया है और हमारी लड़ाई यही है कि जो लाखों लोगों का वोट इस SIR में लाखों लोगों को मृत घोषित किया गया है उनके न्याय की लड़ाई है। क्योंकि लोग फोन चला रहे, लोग घूम रहे, लोग खाना खा रहे, लोग पानी पी रहे हैं, परंतु उनको मृत घोषित कर दिया गया है। सोचिए मैं भी बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मेरा नाम भी SIR से कट गया है, सच्चाई है।
6: जंतर मंतर से जाने से रोका जा रहा है, हमारे साथियों को डिटेन किया जा रहा है, लाठी चार्ज किए जा रहे हैं, FIR दर्ज की जा रही है। लेकिन हम कहेंगे दिल्ली पुलिस से कि आपकी लाठियां हमारा जिस्म तोड़ सकती हैं, आवाज नहीं, हमारा हौसला नहीं टूटेगा। और ये जो आप लाशें देख रहे हैं ये लोकतंत्र की लाशें हैं, ये उनकी जिंदा लाशें हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। ये चीख चीख के सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी शरीर जिंदा है, हमारी आत्मा जिंदा है, लेकिन वोटर लिस्ट में ज्ञानेश कुमार ने हमें मार दिया है। और इनकी लाशों पे ही, लोकतंत्र की लाशों पे जो है इस देश की सरकार बनी हुई है। जो सरकार लाशों पे बनी हुई हो वो इस देश की तरक्की नहीं कर सकती है। तभी इस देश के अंदर पेपर चोरी हो रहे हैं, इस देश में वोट चोरी हो रहे हैं, इस देश में जो है चंदा चोरी हो रहा है, इस देश में पेट्रोल चोरी हो रहा है, टैक्स चोरी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो इस देश में चोरी नहीं हो रहा हो।
0: जिंदा लाश बनने तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही NSUI के कार्यकर्ता और नेता जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हैं रास्ते में दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस से सीधा सामना हो जाता है। ये देखिए कैसे CISF और दिल्ली पुलिस की महिला ब्रिगेड प्रदर्शनकारियों को उठा उठा कर बस में भर रही है।
7: ये भी देखिए कैसे एक प्रदर्शनकारी को दो CISF और एक दिल्ली पुलिस का जवान उठाकर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की छात्र विंग के प्रदर्शनकारियों को बस में भरकर हिरासत में ले लिया।
8: आप जो है अपनी वर्दी उतार दो और संघ का कच्चा पहन लो। दिल्ली पुलिस संघ का कच्चा पहन लो, शर्म करो।
9: वक्त एक ब्रेक का हो गया है, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: मंगल और राहु के योग से क्या होता है? क्या मंगल और राहु का योग अशुभ होता है? क्या मंगल और राहु के योग से विस्फोट होता है? क्या है मंगल और राहु के योग का रहस्य? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: क्या यूपी में कांग्रेस प्लान बी पर बढ़ेगी? क्या छोटे दलों में विकल्प ढूंढ रही कांग्रेस? क्या यूपी में है राहुल अखिलेश का कुछ सीक्रेट प्लान? उत्तर प्रदेश की कांग्रेसी सियासत के चेहरों ने अब तक जो रुख जाहिर किया है उसी से ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 403 सीटों वाली विधानसभा में 200 सीट मांग कर रही है तो अखिलेश लगातार जीत के आधार पर ही सीट की बात कर रहे हैं। ऊपर से छोटे छोटे दलों के नेता राहुल की परिक्रमा करना शुरू कर चुके हैं, चाहे वो अपनी जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य से राहुल गांधी की मुलाकात हो या यूपी में चौहान लोनिया ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले महान दल के अध्यक्ष संजय चौहान की राहुल से मुलाकात या फिर अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता पंकज निरंजन से राहुल की भेंट। 2022 के पहले बने भागीदारी मोर्चा के ज्यादातर दल कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी छोटे दलों के नेता बारी बारी से राहुल गांधी से मिल चुके हैं। दरअसल यूपी में जिस तरह समाजवादी गठबंधन में शर्तों की बात सामने आई है उसमें राहुल अखिलेश के सियासत के सीक्रेट मायने कुछ और भी हो सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इन छोटे छोटे दलों को जोड़कर 2017 के पहले के बीजेपी के फार्मूले को अपना रही है, जब अमित शाह ने इन्हीं छोटी पार्टियों और नेताओं को अपने साथ जोड़कर समाजवादी पार्टी को मात दी थी। वैसे छोटे दलों से कांग्रेस की मुलाकातों का एक मायने और है, जिसमें राहुल यूपी में समाजवादी वर्चस्व के मुकाबले विकल्प की तलाश कर सकते हैं। खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने की मांग की है और लगभग दर्जन पर सीटों की मांग रखी है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कहा है कि सिंबल तो कांग्रेस का ही होगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी चेतावनी देती है कि यूपी में कांग्रेस के सामने सिर्फ समाजवादी ही विकल्प है, वरना यूपी में का नाम लेवा प्रतिनिधित्व भी नहीं होता। दरअसल समाजवादी पार्टी बार बार संकेत दे रही है कि यूपी में कांग्रेस का बड़ा भाई समाजवादी है और अखिलेश ने जो जिताऊ कैंडिडेट की शर्त कांग्रेस के सामने रखी है उसमें कांग्रेस छोटे दलों के अंदर जातिगत बुनियाद पर जिताऊ चेहरे तलाश रही है। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक।

0: क्या यूपी में कांग्रेस प्लान बी पर बढ़ेगी? क्या छोटे दलों में विकल्प ढूंढ रही कांग्रेस? क्या यूपी में है राहुल अखिलेश का कुछ सीक्रेट प्लान? उत्तर प्रदेश की कांग्रेसी सियासत के चेहरों ने अब तक जो रुख जाहिर किया है उसी से ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 403 सीटों वाली विधानसभा में 200 सीट मांग कर रही है तो अखिलेश लगातार जीत के आधार पर ही सीट की बात कर रहे हैं। ऊपर से छोटे छोटे दलों के नेता राहुल की परिक्रमा करना शुरू कर चुके हैं, चाहे वो अपनी जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य से राहुल गांधी की मुलाकात हो या यूपी में चौहान लोनिया ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले महान दल के अध्यक्ष संजय चौहान की राहुल से मुलाकात या फिर अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता पंकज निरंजन से राहुल की भेंट। 2022 के पहले बने भागीदारी मोर्चा के ज्यादातर दल कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी छोटे दलों के नेता बारी बारी से राहुल गांधी से मिल चुके हैं। दरअसल यूपी में जिस तरह समाजवादी गठबंधन में शर्तों की बात सामने आई है उसमें राहुल अखिलेश के सियासत के सीक्रेट मायने कुछ और भी हो सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इन छोटे छोटे दलों को जोड़कर 2017 के पहले के बीजेपी के फार्मूले को अपना रही है, जब अमित शाह ने इन्हीं छोटी पार्टियों और नेताओं को अपने साथ जोड़कर समाजवादी पार्टी को मात दी थी। वैसे छोटे दलों से कांग्रेस की मुलाकातों का एक मायने और है, जिसमें राहुल यूपी में समाजवादी वर्चस्व के मुकाबले विकल्प की तलाश कर सकते हैं। खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने की मांग की है और लगभग दर्जन पर सीटों की मांग रखी है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कहा है कि सिंबल तो कांग्रेस का ही होगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी चेतावनी देती है कि यूपी में कांग्रेस के सामने सिर्फ समाजवादी ही विकल्प है, वरना यूपी में का नाम लेवा प्रतिनिधित्व भी नहीं होता। दरअसल समाजवादी पार्टी बार बार संकेत दे रही है कि यूपी में कांग्रेस का बड़ा भाई समाजवादी है और अखिलेश ने जो जिताऊ कैंडिडेट की शर्त कांग्रेस के सामने रखी है उसमें कांग्रेस छोटे दलों के अंदर जातिगत बुनियाद पर जिताऊ चेहरे तलाश रही है। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

ओबीसी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का आज प्रोटेस्ट मार्च, सुबह 10:30 बजे संसद के मकर द्वार से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक मार्च। विपक्ष का दावा, 146 से ज्यादा सांसद मार्च में लेंगे हिस्सा, शामिल नहीं होगी आम आदमी पार्टी। चुनाव आयोग के फॉर्म 6 को लेकर सियासी घमासान तेज, सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाने के बाद विपक्ष को मिला मौका। राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा बीजेपी सीईसी की साठगांठ का नतीजा, आग बबूला बीजेपी का पलटवार। 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 5 विधानसभा सीट

मेरठ और एक लोकसभा सीट पर आज मतदान। बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर शुभेंदु की पहली परीक्षा, सुबह 7 बजे से मतदान। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जातीय समीकरण साधने में जुटी बीजेपी। लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय के नाम। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा आउट। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग। बागडोगरा से बीएसएफ इन्हें भेजेगी सीमा पार। 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मंगल के अंगारक योग की और ये जानेंगे कि अंगारक योग का अलग अलग राशियों पर उनके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, रात के 10:17 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 10:17 तक राहु काल का समय शाम के 3 से 4:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं अंगारक योग के बारे में। पहले ये समझते हैं कि अंगारक योग कहते किसको हैं, होता क्या है और सामान्य रूप से अंगारक योग का प्रभाव क्या होता है। देखिए, अगर कुंडली में कहीं भी मंगल और राहु एक साथ बैठ जाएं तो इसको अंगारक योग कहा जाता है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, फायर एलिमेंट का ग्रह है और राहु वायु तत्व को प्रभावित करता है। शनि के समान वायु तत्व का गुण राहु के अंदर पाया जाता है। अग्नि और वायु के संयोग से, इनके मिलने से आग भड़कती है और विस्फोट जैसी स्थितियां जीवन में बनती हैं। मंगल राहु का जो योग है ये शल्य चिकित्सा, सर्जरी और दुर्घटना की संभावना जीवन में दिखाता है। अगर ये खराब भावों में बन गया तो ये क्रोध भी बढ़ाएगा और व्यक्ति को हिंसा की तरफ, वायलेंस की तरफ ले जाएगा। क्रोध करना, चीखना चिल्लाना, झगड़ा लड़ाई करना, किसी को मार देना, ये सब टेम्परामेंट पैदा करेगा। अंगारक योग का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अलग अलग होता है। जैसे मंगल का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अलग अलग पड़ता है, वैसे ही अंगारक योग का प्रभाव भी अलग अलग दिखाई देता है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में अंगारक योग है तो आपको अपनी राशि को समझ करके उसके हिसाब से उपाय करने होंगे। अंगारक योग पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।

ध्यान रखें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, धन के खर्चे इस समय बढ़ेंगे, थोड़ी परेशानी हो सकती है। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, दौड़ भाग आपकी आज बढ़ी रहेगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, परिवार में बेवजह की अशांति से बचिए। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा हरा। अगर आपकी राशि मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि है, यानी अग्नि तत्व की आपकी राशि है, तो अंगारक योग का प्रभाव क्या होगा और इसके उपाय क्या होंगे? मेष, सिंह और धनु वालों की कुंडली में जब अंगारक योग बनता है तो वो इनके स्वास्थ्य में समस्या पैदा करता है और इनके लिए चोट चपेट, दुर्घटना और शल्य चिकित्सा, सर्जरी जैसी नौबत आ जाती है। साथ ही साथ इनका व्यक्तित्व एग्रेसिव हो जाता है, ये क्रोधी हो जाते हैं, इनके व्यक्तित्व में उग्रता पैदा हो जाती है। तो अगर आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है और कुंडली में अंगारक योग है तो दुर्घटना, सर्जरी, हिंसा, इन सब चीजों से कैसे बचें? एक तांबे का कड़ा बनवा लें, दाहिने हाथ की कलाई में मंगलवार को सुबह धारण करिएगा। रोज सुबह 108 बार मंगल के मंत्र का जप करिएगा। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। रोज सवेरे ब्रश करने के बाद गुड़ खाकर जल पीजिएगा और सामान्य जीवन में अपने सफेद रंग का प्रयोग आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे, आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है, तो अंगारक योग के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क
कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, आज अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिएगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं, चोट चपेट से बचाव करें, जल्दबाजी में काम ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि,

शुरुआत होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान हमें लिखकर भेज दें भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रश्मि ने हमें लिखा है और रश्मि हमें बेंगलोर से मेल लिख रही हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 नवंबर 1996। जन्म का समय रात में 10:30। जन्म स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। रश्मि कह रही हैं कि मैंने अभी कंप्यूटर की पढ़ाई की है, क्या आगे मुझे मैनेजमेंट की पढ़ाई भी करनी चाहिए? क्या MBA करना मेरे लिए अच्छा रहेगा? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको आगे चल करके टेक्निकल मैनेजमेंट का ही काम करना है, इसलिए अगर आपको मैनेजमेंट का काम करने का मौका मिल रहा है या MBA की पढ़ाई करने की स्थिति बन रही है तो वो आपको कर लेनी चाहिए, उससे आप करियर में ज़्यादा तरक्की कर पाएंगी। साल 2027 और 28 आपके करियर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें आपको मेहनत करने की आवश्यकता ज्यादा है। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। अगर आपकी राशि वृषभ, कन्या या मकर है, यानी पृथ्वी तत्व की राशि है, और आपकी कुंडली में अंगारक योग है तो क्या प्रभाव होगा? वृष, कन्या और मकर वालों की कुंडली में अगर अंगारक योग है तो ये फैमिली लाइफ को, पारिवारिक जीवन को खराब करेगा। वैवाहिक जीवन में झगड़े, लड़ाई, मुकदमे होना, पुलिस कचहरी होना, ये सब नौबत आ जाएगी। हालांकि वृषभ, कन्या, मकर वालों को अंगारक योग एक फायदा पहुंचाता है कि ये कभी कभी बड़े अच्छे सर्जन बन जाते हैं। अगर आपकी राशि वृषभ, कन्या, मकर है, कुंडली में अंगारक योग है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ जरूर करिए। हर मंगलवार को मीठी चीज का दान करिए, अगर गुड़ का दान करें तो और बेहतर होगा। और मंगलवार को नमक खाना बंद कर दें, नमक का सेवन ना करें। सामान्य कपड़े पहनने में या सामान्य प्रयोग में लाल रंग की चीजों का प्रयोग करना बंद कर दें। अंगारक योग पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अगर आपकी राशि मिथुन, तुला या कुंभ है, यानी अगर आपकी राशि वायु तत्व की राशि है, तो कुंडली में अंगारक योग होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों की कुंडली में अगर अंगारक योग हो तो ये अंगारक योग जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है, कदम कदम पर चीजों को पाने में स्ट्रगल करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन के मामले में और रिश्तों के मामले में समस्या पैदा होती है, भाई भाई और भाई बहन के रिश्तों में अक्सर दिक्कत आ जाती है और जीवन में एक या ज्यादा बार बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है जिसमें काफी नुकसान हो सकता है, काफी डैमेज हो सकता है। तो अगर आपकी राशि मिथुन, तुला, कुंभ है और कुंडली में अंगारक योग है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे एक लोटा जल ले लें, उसमें लाल फूल डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और इसके बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। तांबे का एक छेद वाला सिक्का लाल धागे में डाल करके मंगलवार को गले में पहन लें और जो ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं वो जानते होंगे मुल्तानी मिट्टी के बारे में। मुल्तानी मिट्टी से अपने बाल और अपना चेहरा आपको धोना चाहिए। तो अगर आपकी राशि मिथुन, तुला, कुंभ है और कुंडली में अंगारक योग है तो ये उपाय करने से उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन है और कुंडली में अंगारक योग है तो इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? कर्क, वृश्चिक और मीन वालों की कुंडली में अगर मंगल राहु एक साथ हो, अंगारक योग है, तो ये इनकी सेहत बिगाड़ता है, इनके स्वास्थ्य में समस्या पैदा करता है। संतान और करियर की समस्याएं इनको काफी ज्यादा परेशान करती हैं। करियर में उतार चढ़ाव होता है, संतान होती नहीं और अगर हो जाती है तो कष्ट का कारण बनती है। ये जरूर देखा गया है कि कर्क, वृश्चिक और मीन वाले अगर इनकी कुंडली में अंगारक योग है और ये अपने घर से दूर जा करके करियर बनाएं तो वहां पर इनको सफलता मिल जाती है। क्या उपाय करना चाहिए अंगारक योग के लिए?
मंगलवार का उपवास जरूर रखिए और इस दिन किसी भी प्रकार से नमक का सेवन मत करिए। मंदिर जा करके रोज कर सकें तो रोज, नहीं तो मंगलवार को जब भी मौका मिले मंदिर जा करके हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग, अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में मंगलवार को सवेरे धारण करिएगा और एक लाल रंग का रेशमी रुमाल बनवा लीजिए। लाल रंग का रेशमी टुकड़ा या रुमाल, ये आप हमेशा अपने पास रखिएगा। अंगारक योग का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, धन का लाभ होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

होगी, करियर में सफलता मिलेगी, रिश्तों में दिक्कत आ सकती है, रिश्तों में सावधानी बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, महिलाएं सिंदूर केवल अपने पति को लगा सकती हैं पुरुषों में, या सामान्यतः देवी को अर्पित कर सकती हैं। इसके अलावा महिलाएं किसी भी देवता को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकती, अपने सुहाग की वस्तु को किसी पुरुष को नहीं दे सकती। तो हनुमान जी तो वैसे ही बाल ब्रह्मचारी हैं, और महिला से उनका संबंध गुरु का हो सकता है, संतान का हो सकता है, मित्र का हो सकता है, ठीक है, भाई का हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं सामान्यतः हनुमान जी को सिंदूर अर्पित ना करें। लाल फूल अगर महिलाएं हनुमान जी को अर्पित करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग हैं। नंबर 2, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 3, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 4, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 8, रिश्तों में समस्या आ सकती है। और नंबर 9, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6:00 से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नाम और यश आपको प्राप्त होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान हमें लिखकर भेज दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न आशीष जी ने हमें लिखा है, और आशीष जी हमें जम्मू से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1981, दोपहर में 2:30 अंबाला का जन्म है। आशीष जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो कर्ज से छुटकारा कब तक मिलेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। आशीष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा है। कर्जा भी चुका पाएंगे और जिंदगी को भी रास्ते पे ला पाएंगे मई 2027 के बाद, तो आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना करिए, रोज शाम को 108 बार
ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाएं, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, जौ के एकाध दाने चबाकर खाकर जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज तो अपने साथ एक लाल फूल रख करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइए, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन भूमि भवन आभूषण, तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा।

कर्क राशि वालों के लिए चिंताएं समाप्त तो होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा तुला वालों के लिए, करियर में कोई बड़ी सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, लेकिन तुला वाले जोश में गड़बड़ियां मत करिएगा। आज सावधान रहना होगा मेष राशि वालों को, चोट चपेट लग सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज कर्ज का लेन देन बिल्कुल मत करिएगा, कर्ज मत लीजिएगा वरना मुश्किल में पड़ेंगे। और आज शाम को थोड़ा सा समय निकाल करके हनुमान जी का दर्शन करिएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

दिल्ली में इंडिया ब्लॉक का वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ मार्च। संसद के मकरद्वार से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक 146 से ज्यादा सांसद मार्च में लेंगे हिस्सा। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध मार्च में शामिल नहीं होगी आम आदमी पार्टी। ये मार्च 2 से 8 अक्टूबर तक चलने वाले लोकतंत्र बचाओ अभियान का हिस्सा। एसआईआर के फॉर्म 6 को लेकर राहुल गांधी और बीजेपी आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राहुल ने एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप लगाए। ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी के संगीन आरोप। कहा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए फॉर्म 6 के लिए गैर कानूनी और एकतरफा बदला। फॉर्म 6 के आरोपों पर बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार। संबित पात्रा बोले राहुल गांधी फॉर्म 6 को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। संबित पात्रा ने सुप्रीम कोर्ट के 124 पन्नों के फैसले का हवाला दिया। बोले राफेल की तरह यहां भी मांगनी पड़ेगी माफी। राहुल गांधी के फॉर्म 6 दावे पर इलेक्शन कमीशन का फैक्ट चेक। चुनाव आयोग ने दावे को गुमराह करने वाला बताया। कहा फॉर्म 6 में कॉमा फुल स्टॉप तक नहीं बदला। एसआईआर के तहत फॉर्म 6 में बदलाव पर फंसा चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट की दो टूक। हमने चेंज को नहीं दी थी मंजूरी। कहा गैरकानूनी काम हुआ है तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को थमाया नोटिस। ज्ञानेश कुमार के तुरंत निलंबन से किया इनकार। दिल्ली में एनएसयूआई के प्रदर्शन के दौरान हिंसा पर 4 एफआईआर दर्ज। सीआईएसएफ जवान पर कथित हमले समेत कई मामलों में 18 लोग गिरफ्तार। राहुल गांधी का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप। जंतर मंतर पर महिला प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों से बदसलूकी के दावे। मामले में साकेत थाने की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग। बिहार में 7 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन का आक्रोश मार्च। तेजस्वी ने कहा सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सभी प्रखंड मुख्यालयों पर मार्च निकालेगा गठबंधन। बिहार में 8 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। सभी जिला मुख्यालयों पर धरना। तेजस्वी के नेतृत्व में पटना में राजभवन मार्च। 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आज मतदान। बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव के लिए वोटिंग। तमिलनाडु की 2, पुडुचेरी की 1 सीट पर भी मतदान। असम की नागांव सीट पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव। बीजेपी और एसपी के बीच महामुकाबला। चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जातीय समीकरण साधने में जुटी बीजेपी। लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय के नाम। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा को नहीं मिला टिकट। अभी 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, जबकि एसपी बीएसपी के पास 1-1 सीट। मायावती ने फिर से भतीजे पर दिखाई दया। कहा सियासत से ससुर के संन्यास के बाद सुधर गए हैं आकाश। वापस किया राष्ट्रीय संयोजक का पद। बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर महागठबंधन में मतभेद। आरजेडी और लेफ्ट में सीटों को लेकर असहमति। आज नामांकन की आखिरी तारीख। बिहार एमएलसी चुनाव में 23 अक्टूबर को होंगे मतदान। 27 अक्टूबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। फडणवीस सरकार पर बरसे राहुल गांधी। बोले महाराष्ट्र के छात्र शिक्षा व्यवस्था और अन्याय से त्रस्त। आदिवासी छात्रों की मांगे भी नहीं मानी गई। हम छात्रों के साथ खड़े। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई। अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा केस। सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज। कॉलेजियम की सिफारिश पर मुहर। जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सुपरेश कुमार सिंह लेंगे शपथ। आज भी आईएएफ स्थापना दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल। हिंडन एयरबेस पर दिखेगा वायुसेना का दमखम। 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा 94वां वायुसेना दिवस। पीएम मोदी 11 अक्टूबर को चेन्नई में करेंगे मेट्रो फेज 2 के 14.6 किलोमीटर पुनमली वडा पलानी सेक्शन का उद्घाटन। पुनमली से पोरूर तक करेंगे ट्रेन यात्रा। तमिलनाडु में चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी का संगठनात्मक मंथन। 7 अक्टूबर को सभी राज्य जिला मुख्यालयों पर सेवा ज्योति रैलियां। राम माधव ने संभाली राज्य प्रभारी की जिम्मेदारी। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग। बागडोगरा से बीएसएफ इन घुसपैठियों को भेजेगी सीमा पार। 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी। पंजाब की मान सरकार पर चौतरफा वार। सीएमओ भ्रष्टाचार केस की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी। बीजेपी ने ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वतखोरी और लगातार हो रही हत्याओं पर मांगा जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में एचएएल के 2000वें एरो इंजन की डिलीवरी को करेंगे चिन्हित। लगभग 6 दशक की रक्षा उत्पादन यात्रा का अहम पड़ा। एचएएल कोरापुट में 218 करोड़ की लागत से शक्ति इंजन की दूसरी प्रोडक्शन लाइन की शुरुआत। ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए बढ़ेगी स्वदेशी इंजन उत्पादन क्षमता। आईपीएस अधिकारी प्रीति वर्मा का बिहार के डीजीपी पद पर कार्यकाल बढ़ा। 1991 बैच की आईपीएस अधिकारी है प्रीति वर्मा। गृह विभाग ने जारी किया नया आदेश। एमपीएससी अभ्यर्थियों का पुणे में जोरदार प्रदर्शन। परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और प्रशासनिक देरी को लेकर चेयरमैन विवेक भीमनवार सचिव के इस्तीफे की मांग। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का 5 लाख मुआवजे का आदेश रद्द किया। खाद्य विषयकता की शिकायत पर एफडीए की कार्रवाई को जनहित में उचित माना गया।
अकोला एफडीए की बड़ी कार्रवाई, अहमदाबाद से आया 1900 किलो खोया जब्त हुआ, 5 लाख रुपए के खोए के पर कार्रवाई, त्योहार से पहले खाद्य विभाग की छापेमारी। प्रयागराज में होटल रेस्टोरेंट में अब बताना होगा किस तेल में बना है खाना, शिकायत के लिए क्यूआर कोड भी अनिवार्य। संगरूर में डीसी कार्यालय के तीसरे गेट पर किसानों और पुलिस में झड़प, डीसी कार्यालय के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे किसान, पुलिस से रोका, किसानों का ऐलान 24 घंटे तक बंद रहेंगे डीसी कार्यालय के गेट। महाराजगंज में करोड़ों रुपए खर्च कर भेजे गए वेंटिलेटर, कोरोना कॉल से पड़े पड़े खा रहे थे धूल, कोरोना कॉल से धूल खा रहे थे, सीएमओ का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि पाइपलाइन और संसाधनों की कमी के कारण काम नहीं आ रहे वेंटिलेटर। पटना में दरोगा अभ्यर्थियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां, एग्जाम रद्द के विरोध में प्रदर्शन किया गया। राम मंदिर का आंतरिक व्यवस्थाओं में बड़े प्रशासनिक बदलाव की तैयारी, तेज व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, अनुशासित और आधुनिक बताने की तैयारी, सभी कर्मचारियों और एजेंसियों के कर्मियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर सॉफ्टवेयर से निगरानी होगी। मंदिर परिसर में कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लागू करने की तैयारी है, वीडियो सर्विलेंस और फिक्सिंग व्यवस्था भी होगी मजबूत। वहीं करीब 40 नए स्थानों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, अलग अलग विभागों के कामकाज के लिए तैयार की जाएगी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन पर भी जोर, चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था भी बदलेगी, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी गिनती। अयोध्या में 5 से 7 नवंबर तक भव्य दीपोत्सव, 33 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरी, राम की पैड़ी समेत 2 किलोमीटर क्षेत्र में होगा आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया रामनगरी अयोध्या का दौरा, विधि विधान से किए गए रामलला के दर्शन, सुख समृद्धि की कामना की गई। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर वतन लौटे भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी, टीम के स्वागत करने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे परिवार के लोग, बद्रीनाथ धाम यात्रा में टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड, इस साल अब तक 18,67,000 श्रद्धालु ने किए दर्शन। अमेरिका के मिशिगन से जैक्सन अपने दिवंगत चाचा की अस्थियां लेकर काशी पहुंचे, हिंदू विधि विधान से अस्थि विसर्जन के साथ श्राद्ध और पिंडदान की प्रक्रिया पूरी की। एम्स दिल्ली में ओपीडी मरीजों की एमआरआई और सीटी स्कैन की वेटिंग लिस्ट होगी खत्म, एम्स कर रहा है खास योजना पर काम। महाराष्ट्र में एसआईआर के विरोध पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण का ठाकरे बंधुओं पर निशाना, पूछा क्या घुसपैठिए तय करेंगे देश का पीएम और राज्य का सीएम। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी कनेक्शन के बदले नियम, राजधानी में किराए पर रह रहे किराएदारों को हर फ्लोर पर मिल सकेगा अलग पानी कनेक्शन। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी और सीवर कनेक्शन से जुड़े नियमों में किया बदलाव, नए प्रावधानों का उद्देश्य है पानी के नए कनेक्शन आसान बनाना और पानी की कमी को दूर करना। बंगाल की मिट्टी से अमरावती में साकार हो रही है मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं, प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम योगी ने किया हेलीकॉप्टर से दौरा, बाढ़ से हुए नुकसान का लिया गया जायजा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर सीएम ने बड़ी पीड़ितों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा, बाढ़ प्रभावितों को दी गई राहत सामग्री। बस्ती में 63 करोड़ रुपए का अटल आवासीय विद्यालय बना टापू, गंदे पानी से होकर क्लास जाने को मासूम बच्चे मजबूर। चमोली के घसतोली से आगे बर्फ की सफेद चादर, भारी बर्फबारी से बदला पूरा इलाका, बीआरओ कर रहा सामरिक मार्ग खोलने का काम। घसतोली से देवताल तक बर्फ की आगोश में पहाड़ और सड़क माड़ा, पास के इस क्षेत्र में प्रकृति का दिखा अद्भुत नजारा, भारी बर्फबारी से पहुंचना हुआ मुश्किल। हिंगोली में पटाखा गोदाम में लगी भयंकर आग, इसकी वजह से 2 लोगों की झुलसकर मौत हुई, 7 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में रामायण के सेट पर लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी, इसके बीच में शूटिंग की गई सस्पेंड, हादसे में कोई हताहत नहीं। मुंबई में बस डिपो में खड़ी इलेक्ट्रिक बेस्ट बस में लगी भीषण आग, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। भोपाल के कबला नगर इलाके में बदमाशों का आतंक, आधी रात इन बदमाशों ने कार पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हरिद्वार में पेंट की दुकान में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, दमकल ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। जालना में शॉर्ट सर्किट से 9 एकड़ गन्ने की फसल जलकर राख, बिजली के तारों में घर्षण के बाद खेत में लगी आग, फसल बर्बाद होने की वजह से किसानों ने की मुआवजे की मांग। गाजियाबाद में रावण के पुतले में ब्लास्ट, पटाखे भरते समय हुए धमाके में 5 लोग घायल, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जामनगर में रेलवे स्टेशन के पास आग की चपेट में आए मजदूरों के कमरे, 6 से 7 कमरे जलकर खाक हुए, आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। पानीपत में शराब पिलाने के आरोप को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प, तलवार लाठी डंडों के साथ जमकर पत्थरबाजी हुई, दोनों पक्षों के कई लोग घायल। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में लिफ्ट में फंसे 13 लोग सुरक्षित निकाले गए, 20 मिनट तक बीच फ्लोर पर अटकी रही लिफ्ट, बच्चों के रोने से मची अफरा तफरी।
आजमगढ़ में दीवार गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत हुई। घटना का लाइव वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप। गुजरात के दाहोद में विधायक के घर फायर ब्रिगेड से सफाई का वीडियो वायरल। मामले को लेकर उठे सवाल। जमशेदपुर में मोबाइल शोरूम में लूट की कोशिश। बैग में बम होने की धमकी। दुकानदार और ग्राहकों में दहशत। मुंबई में ऐतिहासिक बाढ़ गंगा टैंक में सैकड़ों मछलियां मृत मिली। बीएमसी ने स्थानीय लोगों और पुजारियों की बैठक बुलाई। बिजनौर में सीसीटीवी से बचने के लिए विग लगाकर चोरी करता था शातिर चोर। सीसीटीवी ने खुलासा कर आरोपी को पकड़ा। अहमदाबाद में बेकाबू हुई कार। 180 डिग्री घूमने के बाद सर्विस रोड पर खड़ी कई कारों से टकराई। 3 गाड़ियों को पहुंचाया गया नुकसान। खौफनाक हादसा सीसीटीवी में कैद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में शौचालय में छिपकर बैठा किंग कोबरा। रेस्क्यू टीम समय रहते जंगल में छोड़ा गया। कोरबा में नामचीन रेस्टोरेंट में टॉयलेट में धोए जा रहे बर्तन का वीडियो वायरल हुआ। खाद्य सुरक्षा विभाग हुआ सख्त नोटिस जारी। अलवर में टोल पर पैसे कटते ही हथियारबंद युवकों ने लाठी डंडों से किया टोल पर हमला। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। हरिद्वार में पेट्रोल पंप पर टैक्सी चालकों में मारपीट। पुरानी रंजिश के चलते लिया गया बदला। आगे की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के राजौरी गार्डन मार्केट में महिला पुलिसकर्मियों के साथ फूड पेट्रोलिंग में शामिल हुई एशियाई खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहन। दिल्ली पुलिस के महिला सुरक्षा अभियान के तहत हुई पेट्रोलिंग। कैची धाम पहुंची सुपरहिट फिल्म हनुमान अंश की टीम। फिल्म की बंपर सफलता से गदगद टीम ने बाबा के चरणों में शीश नवाया। विशेष पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश में मां शारदा की पावन नगरी मैहर में स्कूली बच्चों ने रचा इतिहास। 3,430 छात्र छात्राओं ने एक साथ पेश किया मनमोहक कथक नृत्य। इस सामूहिक कथक नृत्य ने एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। 9 मिनट 24 सेकंड तक लगातार शानदार संस्कृति प्रस्तुति हुई। भारतीय सेना की रोमियो फोर्स की नेक पहल। पुंछ में दूर दराज पहाड़ी इलाकों में स्थित स्कूल के छात्रों को बैठने के लिए उपलब्ध कराया मुफ्त फर्नीचर। साजिद खान की अगली कॉमेडी ड्रामा फिल्म में अक्षय कुमार और आर माधवन पहली बार साथ में आएंगे नजर। फिल्म की स्टार कास्ट में दिशा पाटनी और श्रिया सरन भी होंगी शामिल। अनिल कपूर की फिल्म सूबेदार ने एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब अपने नाम किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय सिनेमा का बढ़ाया गौरव। अब नए अंदाज में दिखेगी अमर अकबर और एंथनी की कहानी। 3 मंकीज नाम से अब्बास मस्तान की जोड़ी बनाएगी फिल्म। रश्मिका मंदाना महान कर्नाटक संगीत गायिका एमएस सुबलक्ष्मी की बायोपिक एमएस अ लेगेसी ऑन स्क्रीन में निभाएंगी मुख्य भूमिका। दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट फिल्म रामायण के प्रमोशन के लिए पहुंचे मुंबई। रणबीर कपूर और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ खिंचवाई तस्वीरें।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
2: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
1: असली शहद, असली स्वाद।
3: एक दो, एक श्राम।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: सर, गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
3: गैसो फास्ट 27%,
2: इनो 9.2%।
4: गड़बड़ है।
5: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सोल्यूशन।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर, एक बार दो ठुमका लगाने पर।
8: मेरे पास एक आइडिया है।
7: क्या?
8: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है।
9: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाती पर स्टेज नहीं हिलता,
10: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
11: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
9: कौन सी बनानी है?
12: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
13: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
14: इट्स अ माय वे।
15: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
16: और वही कहाँ गए थे घूमने?
17: जीके मैक्स।
18: वैसे रोहन, पढ़ाई में कैसा है?
17: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
18: जेके वॉल मैक्स
17: बेस्ट पेंट,
18: जेके मैक्स।
17: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
19: इन एसोसिएशन विद
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
19: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।

0: यूपी के चुनावी मौसम में दलित वोटों के लिए हर दल के तर्कश में अलग अलग तीर है, और इसी में से एक तीर बीजेपी ने अब यूपी में आजमाया है, जो दलित सियासत में प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसा ही एक ऐलान यूपी में किया, जहां भदोही का नामकरण संत रविदास के नाम पर किया गया है।
1: अब हमारा कालीन उद्योग के लिए जाना जाने वाला भदोही जनपद आने वाले समय में मध्यकालीन सन जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था, ऐसे सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर भदोही जाना जाएगा।
0: भदोही ही नहीं, नामकरण की बात हो तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के नाम पर बहाल किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट में डॉक्टर आम्बेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत आम्बेडकर संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फूले और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर काम होगा। दलितों के कल्याण के तमाम दावे करने वाली योगी सरकार का फोकस सिर्फ नामकरण तक सीमित नहीं है। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार ने दलित विरोधी सोच के कारण जिन महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों संस्थानों के नाम बदल डाले थे, उनका पुनर्नामकरण करके बीजेपी सम्मान दे रही है। दरअसल यूपी सरकार की रणनीति में सम्मान के साथ विकास का कनेक्शन भी दिख रहा है, जिसमें बाबा साहेब के नाम पर छात्रावास, संत रविदास के नाम पर लेदर पार्क और संत कबीर के नाम पर टेक्सटाइल पार्क, यानी दलित महापुरुषों की विरासत को शिक्षा, रोजगार और उद्योग से जोड़ने की कोशिश है। दरअसल यूपी में दलित वोट का गणित कुछ ऐसा है, दलित आबादी करीब 21 से 22%, 85 आरक्षित सीटें, 140 प्लस सामान्य सीटों पर असर, जाटव, पासी, कोरी, धोबी और वाल्मीकि प्रमुख दलित समुदाय। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद दलित वोट 2027 की सियासत का बड़ा फैक्टर बन चुका है। समाजवादी पार्टी PDA के जरिए दलित पिछड़ा मुस्लिम समीकरण मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस ने भी दलित चेहरे राजेंद्र पाल गौतम को यूपी की जिम्मेदारी देकर अपना दांव चला है। वहीं बीजेपी और RSS एक कुआं, एक श्मशान जैसे सामाजिक समरसता के संदेश के जरिए दलित समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: एक दो, एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: सर, गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
3: गैसो फास्ट 27%,
2: इनो 9.2%।
4: गड़बड़ है।
5: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सोल्यूशन।
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर, एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
7: मेरे पास एक आइडिया है।
6: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
8: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया है, पर स्टेज नहीं हिलता,
9: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
10: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
11: कौन सी बनानी है?
12: और वही कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
15: जेके वॉल मैक्स
16: बेस्ट पेंट,
17: जेके मैक्स।
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

क्या यूपी में कांग्रेस प्लान बी पर बढ़ेगी? क्या छोटे दलों में विकल्प ढूंढ रही कांग्रेस? क्या यूपी में है राहुल अखिलेश का कुछ सीक्रेट प्लान? उत्तर प्रदेश की कांग्रेसी सियासत के चेहरों ने अब तक जो रुख जाहिर किया है उसी से ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 403 सीटों वाली विधानसभा में 200 सीट मांग कर रही है तो अखिलेश लगातार जीत के आधार पर ही सीट की बात कर रहे हैं। ऊपर से छोटे छोटे दलों के नेता राहुल की परिक्रमा करना शुरू कर चुके हैं, चाहे वो अपनी जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य से राहुल गांधी की मुलाकात हो या यूपी में चौहान लोनिया ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले महान दल के अध्यक्ष संजय चौहान की राहुल से मुलाकात या फिर अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता पंकज निरंजन से राहुल की भेंट। 2022 के पहले बने भागीदारी मोर्चा के ज्यादातर दल कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी छोटे दलों के नेता बारी बारी से राहुल गांधी से मिल चुके हैं। दरअसल यूपी में जिस तरह समाजवादी गठबंधन में शर्तों की बात सामने आई है उसमें राहुल अखिलेश के सियासत के सीक्रेट मायने कुछ और भी हो सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इन छोटे छोटे दलों को जोड़कर 2017 के पहले के बीजेपी के फार्मूले को अपना रही है, जब अमित शाह ने इन्हीं छोटी पार्टियों और नेताओं को अपने साथ जोड़कर समाजवादी पार्टी को मात दी थी। वैसे छोटे दलों से कांग्रेस की मुलाकातों का एक मायने और है, जिसमें राहुल यूपी में समाजवादी वर्चस्व के मुकाबले विकल्प की तलाश कर सकते हैं। खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने की मांग की है और लगभग दर्जन पर सीटों की मांग रखी है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कहा है कि सिंबल तो कांग्रेस का ही होगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी चेतावनी देती है कि यूपी में कांग्रेस के सामने सिर्फ समाजवादी ही विकल्प है, वरना यूपी में का नाम लेवा प्रतिनिधित्व भी नहीं होता। दरअसल समाजवादी पार्टी बार बार संकेत दे रही है कि यूपी में कांग्रेस का बड़ा भाई समाजवादी है और अखिलेश ने जो जिताऊ कैंडिडेट की शर्त कांग्रेस के सामने रखी है उसमें कांग्रेस छोटे दलों के अंदर जातिगत बुनियाद पर जिताऊ चेहरे तलाश रही है। कुमार अभिषेक लखनऊ आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

सीसी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का आज प्रोटेस्ट मार्च, सुबह 10:30 बजे संसद के मकर द्वार से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक जाएंगे। विपक्ष का दावा, 146 से ज्यादा सांसद रहेंगे मौजूद, शामिल नहीं होगी आम आदमी पार्टी। चुनाव आयोग के फॉर्म 6 में बदलाव पर घमासान तेज, सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाने के बाद राहुल गांधी ने कहा बीजेपी और सीसी में साठगांठ, बीजेपी का पलटवार, भ्रम फैला रहे हैं नेता विपक्ष। तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर आज हो रही है वोटिंग। बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर शुभेंदु की पहली परीक्षा, सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान। राज्यसभा सीट के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन, 11 बजे पर्चा दाखिल करें यूपी में बीजेपी के 8 उम्मीदवार, 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय प्रत्याशी, 2 मंत्रियों के टिकट कटे। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग, बागडोगरा से बीएसएफ इन्हें भेजेगी सीमा पार, 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। एक बार फिर से इस खास बुलेटिन सुपर 8 में आप शुरुआत करते हैं। आधे घंटे के इस बुलेटिन में कई अहम खबरें का जिक्र हम करेंगे, आपको बताएंगे कि उपचुनाव की जारी लड़ाई पर एक एक अपडेट क्या है, साथ ही बात विपक्ष के चुनाव आयोग के विरोध में मार्च की भी करेंगे, कैसे फॉर्म 6 पर तेज हुआ है सियासी घमासान ये भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे यूपी में राज्यसभा की चुनावी फाइट का सस्पेंस क्या रहा। खबर हिंगोली से, जहां पर पटाखा गोदाम में आग से 2 लोगों की मौत हुई है। पानीपत में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प की खबर भी आगे आपको दिखाएंगे। और खबर लखनऊ से भी होगी, जहां पर बाढ़ के हालात के बीच सीएम योगी ने एरियल सर्वे किया। और सबसे आखिर में नाइजीरिया में सैन्य विमान हादसे की खबर, जहां पर 32 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। देश में आज हो रहे उपचुनाव पर सबकी नजर है और 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 5 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और ऐसे में पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई है। इसके साथ ही तमिलनाडु की मदुरंगतम और धारापुर सीट और साथ ही पुडुचेरी की 1 सीट विधानसभा सीट पर वोट डाले जा रहे हैं, तो वहीं असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और वहां लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुबह 7 बजे इसकी शुरुआत हो गई है। बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर सीट, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। तमिलनाडु में 2 जगह पर वोटिंग हो रही है और पुडुचेरी में 1 विधानसभा सीट पर मतदान शुरू हो चुका है। तो 5 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के लिए वोटिंग आज शुरू हो गई है। तो आज जिन विधानसभा लोकसभा सीट पर वोट डाले जा रहे हैं, वहां पर 9 अक्टूबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। नंदीग्राम और भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीते थे, बाद में उन्होंने नंदीग्राम सीट को खाली कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर चुनाव हो रहा है। वहीं रेजीनगर से पिछली बार विजयी रहे आम जनता उन्नयन पार्टी के हुमायूं कबीर ने यह सीट छोड़ दी थी, क्योंकि वो नाओदा सीट पर भी विजयी हुए थे। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद शुभेंदु के लिए यह पहली चुनावी परीक्षा है। तो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सुबह 7 बजे इसकी शुरुआत हुई और सबसे ज्यादा नजर नंदीग्राम सीट पर है और उसके लिए भी वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। अब आपको समझाते हैं, 6 सीटों पर आज उपचुनाव है, जिसमें विधानसभा की 5 और लोकसभा की 1 सीट, असम से 1 सीट, नौगांव लोकसभा सीट जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, पुडुचेरी से 1, तमिलनाडु से 2 और पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर से मतदान की शुरुआत हो चुकी है। तो 3 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान की शुरुआत हुई है, जिसमें से विधानसभा की 5 सीटें और लोकसभा की 1 सीट पर मतदान की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। सुबह सवेरे 7 बजे तस्वीरें सामने आई जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई और सबसे ज्यादा नजरें जो टिकी हुई है वो है पश्चिम बंगाल पर, पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर। वहीं तमिलनाडु में भी 2 जगह पर वोट डाले जा रहे हैं, पुडुचेरी में 1 और असम में नगांव लोकसभा सीट पर वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तो 6 सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं और इसके नतीजे 9 तारीख को आ जाएंगे। अनुपम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गया। अनुपम, अब शुरुआत हो चुकी है सुबह सवेरे वोटिंग की और जल्द ही इसके चुनाव आने वाले हैं, और क्या अपडेट है अनुपम, बताइएगा।
1: जी बिल्कुल पूजा, देखिए मैं इस वक्त नंदीग्राम में हूँ। नंदीग्राम के जिस बूथ के बाहर हूँ, ये हाई स्कूल है, देवीपुर मिलन विद्यापीठ हाई स्कूल, उसके बाहर सुबह से ही कतार देखने को मिल रही है। हालांकि जो नॉर्मल चुनाव होता है उसमें जिस तरह की लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं, वैसी लंबी लाइनें तो नहीं देखने को मिल रही हैं, चूंकि ये उपचुनाव है, थोड़ी भीड़ कम होती है, थोड़ी परसेंटेज भी कम होती है, लेकिन सुबह चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है इस वजह से भी हो सकता है कि लोग कम आए हों, लेकिन लोग आ रहे हैं। महिलाओं की अलग लाइन है, पुरुषों की अलग लाइन है। हाई प्रोफाइल सीट है नंदीग्राम, मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो रहा है यहां पर, क्योंकि टीएमसी जो ममता बनर्जी की टीएमसी थी, उसकी जो उम्मीदवार थी उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। मिलन प्रधान की उम्मीदवारी पर भी हमने नाटकीय घटनाएं देखी, जब मिलन प्रधान को 17 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि बीजेपी नहीं चाहती सही ढंग से वोट हो, और ऐसे में हाईकोर्ट का रुख अख्तियार किया गया। हाईकोर्ट में जाने के बाद मिलन प्रधान को हाईकोर्ट की ओर से बेल दी गई। मिलन प्रधान को कुछ दिन पहले ही बेल मिली, उन्होंने लास्ट 3-4 दिन चुनाव जो कैंपेन होता है प्रचार उसमें हिस्सा भी लिया, और फिलहाल दो मुख्य यहां पर उम्मीदवार हैं, हासीरानी रथ जो चंद्रनाथ रथ हैं जिनकी मौत हो गई थी, जिनकी हत्या हो गई थी चुनाव के जस्ट कुछ दिनों बाद, शुभेंदु अधिकारी के पीए, उनकी मां को बीजेपी ने खड़ा किया है। बीजेपी की ओर से हासीरानी रथ हैं तो कांग्रेस की ओर से मिलन प्रधान है। ये दो मुख्य मुकाबला है यहां पर। इसके अलावा अगर हम रेजीनगर की बात करें तो रेजीनगर में कई लोगों के बीच मुकाबला हो रहा है। कांग्रेस है, बीजेपी है, ममता की टीएमसी है, रेतोब्रतो गुट की टीएमसी है, और आम जनता उन्नयन पार्टी यानी हुमायूं कबीर की पार्टी। हुमायूं कबीर ने रेजीनगर में चुनाव जीता था, अब उनके लड़के बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पे भी आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो चुके थे कई दिनों से ही, जब से चुनाव की घोषणा हुई थी। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि 9 तारीख को जो रिजल्ट होता है आता है उसमें क्या नंदीग्राम के अलावा बीजेपी रेजीनगर भी जीत पाती है या नहीं, क्योंकि रेजीनगर का जो रेशियो है वो मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां पर बीजेपी कभी नहीं जीती है, तो ऐसे में वो कठिन सीट है बीजेपी के लिए।
0: हालांकि नंदीग्राम में पिछले 2 बार अनुपम की बीजेपी को वहां से जीत हासिल होती है कि नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब अगली खबर चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी मोर्चे की। दरअसल दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन का बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। विपक्षी दल संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करने वाले हैं। कथित वोट चोरी और चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर इंडिया ब्लॉक के सांसद संसद से चुनाव आयोग का मुख्यालय तक मार्च निकालेंगे। ये मार्च सुबह 10:30 बजे मकर द्वार से शुरू होगा। दावा है कि इस मार्च में 146 से ज्यादा विपक्षी सांसद शामिल होंगे। विपक्ष की मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जाए और SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच हो। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस मार्च से दूरी बना ली है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इसी मुद्दे पर अपने तरीके से लगातार आंदोलन कर रही है और चुनाव आयोग में 3 सदस्यीय पैनल में किसी भी मतभेद से इनकार किया है और कहा है कि SIR से जुड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। ऐसे में आज का मार्च विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच बढ़ती राजनीतिक और संवैधानिक तनातनी का बड़ा केंद्र बनने वाला है। तो वही नई दिल्ली इलाके में प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। साथ ही सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। दिल्ली में विपक्ष की तरफ से भारी प्रदर्शन किया जाएगा और इसको लेकर दिल्ली पुलिस भी सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कई जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जगह जगह पर इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। एक एडवाइजरी भी दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इस विरोध प्रदर्शन ये जो मार्च होने वाला है उसको लेकर अब तमाम जानकारी आपको बता देते हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा संभाला है और आज संसद में इलेक्शन कमीशन मुख्यालय तक मार्च किया जाएगा। इंडिया ब्लॉक के 146 से ज्यादा सांसद उसमें प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं आज। वहीं आपको ये बता दें कि सुबह 10:30 बजे इसकी शुरुआत होगी मकर द्वार से। वहीं वोट चोरी के आरोपों पर विपक्ष का ये प्रदर्शन है, सरकार को वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पक्ष का मोर्चा और पूरी तरीके से उसको घेरने की कोशिश की जाएगी। कौन कौन सी पार्टी इसमें शामिल होंगे प्रदर्शन में? कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस लेफ्ट, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और साथ ही जेएमएम की तरफ से यहां पर कई सांसद शामिल होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन दफ्तर में दफ्तर के बाहर मार्च भी होगा और इसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। तो देखिए विपक्षी मार्च को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा पर और जानकारी भी दी हमारे सहयोगी अंशुल सिंह ने। देखिए
2: ऑपोजिशन नेताओं ने आज एक प्रोटेस्ट मार्च का कॉल दिया है जहां वो ये कोशिश करेंगे कि देश की पार्लियामेंट से निकलकर इलेक्शन कमीशन तक जाए और इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगे। इस वक्त मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर हूं जो कि करीब 500 से 700 मीटर दूर है पार्लियामेंट से और करीब 100 मीटर दूर है इलेक्शन कमीशन से। और यही वो जगह है जहां 3 तारीख को भी हमने देखा था कि किस तरीके से यहां पर वॉयलेंस और झड़प की जो खबरें थी वो सामने आई थी। और इस वक्त ताकि ऐसा कुछ भी ना हो। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो यहाँ पर बना के रखी जाए और पूरे नई दिल्ली इलाके को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप यहाँ देखें, यहाँ हजारों की संख्या में आज सुबह से ही जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। दिल्ली के अलग अलग जिलों में जिनकी पोस्टिंग थी, सबको इस वक्त जो ड्यूटी दी गई है वो यहाँ सेंट्रल दिल्ली में है और ये सुनिश्चित करने की है कि किसी भी तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो खराब ना हो। एक और जो बड़ी समस्या दिल्ली पुलिस को झेलनी पड़ी थी वो थी कि किस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पे बैरिकेड्स गिराने की कोशिश कर रहे दिखाई पड़ते हैं। कई मामलों में पुलिस से भी झड़प होती हुई दिखाई देती है और कई जगह पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डिफेस किया करने की खबरें आई और ये इन्फॉर्मेशन सामने आई। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार दिल्ली पुलिस थोड़ी ज़्यादा जो है वो अपनी ये इंश्योर करने की कोशिश कर रही है कि लोगों को पता हो ऐसा करना गैर कानूनी है।
0: तो सड़कों पर तो सुरक्षा कड़ी है लेकिन विपक्ष के इस विरोध मार्च को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। देखिए,
3: पूरा देश आक्रोशित है, सड़कों पर लोगों का गुस्सा दिख रहा है, नौजवानों का भी, और वैसे भी देश बहुत गुस्से में है। ऐसे में देश के जो प्रतिनिधि है संसद में, 60% के लगभग विपक्ष प्रतिनिधित्व करता है देश का, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि ऐसे वक्त में हम अपनी आवाज बुलंद करें और लोगों की आवाज संसद के बाहर से आप तक पहुंचाएं।
4: ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है, हर एक का अधिकार है प्रोटेस्ट करना, रास्ते पे उतरना, जुलूस निकालना, धरना प्रदर्शन करना, ये अधिकार क्षेत्र में पड़ता है, करने दीजिए। हमारा काम हम लोग करें, चुनाव आयोग का काम चुनाव आयोग करे, न्यायाधीश का काम न्यायाधीश करे, न्यायालय में जो होना है होने दीजिए, उसका जवाब तो चुनाव आयोग देंगे, भारतीय जनता पार्टी इसमें कहां से आ गया।
0: देखिए, एसआईआर और फॉर्म 6 को लेकर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि फॉर्म 6 में गैरकानूनी और एक तरफा बदलाव किया गया है, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा है कि अदालत ने किसी भी संशोधित फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी है। राहुल गांधी ने इसे चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी और लोकतंत्र पर हमला बताया। तो वहीं उनके मुताबिक इस पूरे मामले में सीसी ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठते हैं और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, यह कहा गया है। तो एसआईआर और फॉर्म 6 को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की तरफ से सफाई सामने आई है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एसआईआर के लिए फॉर्म 6 के साथ जो डिक्लेरेशन जोड़ा गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बरकरार रखा था। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया। बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 को अवैध नहीं बताया बल्कि कथित संशोधन के रिकॉर्ड की जांच की बात कही। पात्रा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को गलत तरीके से पेश कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म 6 को लेकर चल रहे विवाद पर एक अहम टिप्पणी सामने आई है। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 के कथित संशोधित स्वरूप पर कोर्ट ने साफ किया है कि उसे ऐसे किसी भी मॉडिफाइड फॉर्म 6 की मंजूरी देने की जानकारी नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि रिकॉर्ड सामने आने पर यह देखा जाएगा कि फॉर्म 6 में बदलाव किसने किया। दरअसल विवाद फॉर्म 6 के साथ जोड़े गए नए डिक्लेरेशन को लेकर है जिसमें आवेदक से पूछा जा रहा है कि वो या उसके माता पिता पिछले एसआईआर में मैप्ड थे भी या नहीं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि ये बदलाव एक तरफा तरीके से किया गया और सीसी ज्ञानेश कुमार समेत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए इसे इसी तरह की दूसरी याचिका के साथ भी जोड़ दिया है। तो मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है फॉर्म 6 को लेकर। और देखिए, विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर है, राहुल गांधी की तरफ से भी इसको लेकर काफी बयान सामने आए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में यह भी कहा गया है कि रिकॉर्ड से पता चलेगा बदलाव आखिर किसने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस भी जारी किया है। साथ ही आपको ये बता दें कि फॉर्म 6 पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के साथ साथ राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है और उस पर संबित पात्रा ने भी पलटवार किया है। तो बिहार में एसआईआर और चुनाव आयोग को लेकर सियासी घमासान अब सड़क पर उतरने वाला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की बैठक के बाद चुनाव आयोग के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान किया और 7 अक्टूबर को बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, जबकि 8 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना और पटना में शहीद स्मारक से राजभवन तक मार्च होगा। तेजस्वी यादव ने एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने, जीवित लोगों के नाम मृतकों की सूची में शामिल होने और चुनावी रिकॉर्ड को 45 दिन तक सुरक्षित रखने के नियम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जाने को लेकर भी एनडीए पर आरोप लगाए। तो आरजेडी की तरफ से भी एसआईआर को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, ये तेजस्वी यादव ने भी कहा है। तेजस्वी की तरफ से इसको लेकर क्या आरोप लगाए गए हैं वो आप समझिए। एसआईआर और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप उन्होंने लगाया। महिलाओं के खाते में 10,000 देने पर भी सवाल तेजस्वी यादव ने खड़े कर दिए हैं। जो महिलाओं के खाते में 10,000 देने की बात कही गई थी उसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनिए।
5: कई लोगों के नाम भी कहते हैं जो जिंदा व्यक्ति थे उनको मृत घोषित कर दिया गया था। हमारे राघोपुर क्षेत्र का यानी पूरा षड्यंत्र का जो खुलासा जो हुआ है, जो बात हम लोग पहले से कहते रहे हैं वो अब सामने आने लगा है। ऐसे कई नमूने मोदी जी और अमित शाह जी के पास है, ज्ञानेश कुमार जैसे, इनको प्रोटेक्शन के लिए और जीवन जो है कार्रवाई नहीं हो सकती ऐसा बिलाया गया। चाहे कार्यकाल खत्म भी हो जाए तो भी कार्रवाई नहीं हो सकती, गिरफ्तारी नहीं हो सकती, केस मुकदमा नहीं हो सकता उन पर।
0: बीजेपी ने पलटवार करते हुए इन आरोपों को खारिज किया और कहा है कि एसआईआर के दौरान 22 लाख मृतक, 36 लाख प्रवासी और 7 लाख डुप्लीकेट नाम हटाए गए। बीजेपी ने आरजेडी के बूथ एजेंट्स पर भी सवाल उठाए और तेजस्वी के आंदोलन को हार की शोक सभा बता दिया है। तो ये विपक्ष की हार की शोभा यात्रा है। तेजस्वी पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए ये कहा है कि विपक्ष की हार है और इसी वजह से इस यात्रा को निकाला जा रहा है। साथ ही एसआईआर में 22 लाख मृतकों के नाम हटे, वोटर्स के नहीं हटाए गए हैं नाम, ये भी बीजेपी की तरफ से तेजस्वी यादव को जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि 36 लाख प्रवासी, 7 लाख डुप्लीकेट नाम है जिनको उसमें से हटाया गया है। तो आपको ये बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि आरजेडी के बूथ एजेंट्स पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए ये सभी बातें कही हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहले बीजेपी पर वार किया उसके बाद पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है। और अब खबर यूपी में 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से जुड़ी। दरअसल आज बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार लखनऊ में अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। नामांकन से पहले सभी प्रत्याशी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि सुबह करीब 11 बजे विधानसभा में बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी के मंत्री, प्रमुख पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम भी नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं बीजेपी ने नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी की है। पार्टी के सभी उम्मीदवार मंत्रियों और प्रमुख नेताओं के साथ विधानसभा पहुंचेंगे। बीजेपी के इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए पार्टी अपनी एकजुटता और चुनावी ताकत का संदेश देने की तैयारी में है। अब कौन कौन इसमें उम्मीदवार हैं वो आप समझिए। धर्मपाल सिंह और राधाकांत ओझा उम्मीदवार है। साथ ही प्रकाश पाल का नाम भी इसमें सामने है और विद्यासागर सोनकर भी इसमें उम्मीदवार है। गोपी कृष्ण पांडे भी बड़ा नाम है और प्रियंका सिंह रावत एक महिला उम्मीदवार है। वहीं राम प्रताप सिंह चौहान का भी नाम इसमें सामने है। चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की लिस्ट, श्रुति गंगवार का भी नाम इसमें सामने है। वहीं जातीय समीकरण अब क्या कह रहा है वो आप समझिए। 2 अनुसूचित जाति बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों का समीकरण, 3 ओबीसी, लोधी, पाल और कुर्मी, और वही 3 सवर्ण, 2 ब्राह्मण और 1 राजपूत इसमें है। तो ये जातीय समीकरण ये कह रहा है। वही बीजेपी ने यूपी में 8 सीटों के लिए एक दिन पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और बीजेपी ने उम्मीदवार चुनने में जातिगत समीकरण का खास ख्याल रखा है, जैसा कि हमने आपको बताया। साथ ही 27 के चुनाव ध्यान में रखते हुए 2 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। तो दो महिलाओं को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं उधर यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी से खबर है कि आज पार्टी का तीसरा उम्मीदवार भी नामांकन करा सकता है। 16 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और समाजवादी पार्टी अपना तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी में है। बीजेपी ने अब तक 8 उम्मीदवार उतारे हैं। खबर के मुताबिक तीसरे उम्मीदवार के नामांकन के लिए जरूरी 10 विधायकों के हस्ताक्षर बतौर प्रस्तावक जुटा लिए गए हैं। तीसरे प्रत्याशी के नाम का आधिकारिक ऐलान किसी भी वक्त होने की उम्मीद है। अखिलेश यादव की पार्टी पहले ही 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव 6ठी बार राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं, तो रिलायंस समूह के वरिष्ठ अधिकारी धनराज परिमल नथवानी समाजवादी पार्टी के दूसरे उम्मीदवार हैं। दोनों ने 30 सितंबर को ही लखनऊ में अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया था और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया गया था। तो वहीं देश के अलग अलग शहरों में आग और धमाकों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली में पटाखा गोदाम में भीषण आग लगी। तस्वीरें आप देखिए, 2 लोगों की मौत और 7 लोग घायल हुए हैं। मुंबई में रामायण के सेट पर आग लगने से हड़कंप मच गया। बस में आग लगने की घटना भी सामने आई। हरिद्वार में दुकान और भोपाल में कार में आग लगने की खबर है। तो वहीं गाजियाबाद में पटाखा फैक्ट्री में धमाके से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इन सभी घटनाओं में आग की लपटों ने भारी नुकसान पहुंचाया और कई जगह दमकल की टीमें मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी रही। अब इस तस्वीरों के जरिए आप देखिए आग और हादसों से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल फैजुल्लागंज सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल है, जहां पर घरों में पानी घुस गया। गोमती रिवर फ्रंट, हनुमान धाम और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित फैजुल्लागंज का हवाई और स्थलीय सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया और राहत बचाव कार्यों की जानकारी भी ली गई है।

0: तो पश्चिम बंगाल से कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उपचुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहा है और वहां पर अब हुमायूं कबीर को हिरासत में लिया गया है। तो सुबह सवेरे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और पश्चिम बंगाल की दो सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में अब वहां से तस्वीरें सामने आई है, हुमायूं कबीर को हिरासत में लिया गया है। इसी के साथ सुपर एट में वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
3: Maddie, I need to open a savings account.
4: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
3: स्मॉल बैंक?
4: स्मॉल। Privilege savings account, गरिमा savings account, Maxima business, edge current account, business, Maxima business, privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
3: Okay.
4: उज्जीवन, nothing small about us.
5: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
6: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
5: असली शहद, असली स्वाद।
7: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
8: गड़बड़ है।
9: गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।

0: प्यार उनका सर एक बार दो तीन थमका लगाने पर
1: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
1: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
2: कौन सी बनानी है?
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
11: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
12: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
11: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
13: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
14: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो।
15: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
16: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
17: इट्स अ माय वे।

0: in association with Signature Finest Cardamom Seeds.
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.
3: हम लोग चाहते हैं कि ये गठबंधन में रहें और अपनी हैसियत के हिसाब से टिकट मांगे कि कितने सीटें उनकी अपनी सांसद और विधायक हैं, उनकी संख्या को देखते हुए या कितने उनके कार्यकर्ता हैं उनको देखते हुए सीट मांगे, तो मैं समझता हूं कि उनके लिए भी अच्छा रहेगा और गठबंधन के लिए भी अच्छा.
4: सर वो तो ये कह रहे हैं कि हम 150 से कम पे तो मानेंगे ही नहीं.
3: मैं ये कहता हूं उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी. उनको देखना चाहिए. दो तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता है? अगर हमारे साथ गठबंधन न होता तो उनके जो 6 सांसद जीते हैं एको न जीत.
5: मेरा मानना है कि जब अलायंस से चुनाव लड़ना है तो एक दूसरे पर इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, तो वो अमेठी में क्या डरेंगे? अगर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सीसी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का आज प्रोटेस्ट मार्च, सुबह 10:30 बजे संसद के मकर द्वार से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक जाएंगे। विपक्ष का दावा, 146 से ज्यादा सांसद रहेंगे मौजूद, शामिल नहीं होगी आम आदमी पार्टी। चुनाव आयोग के फॉर्म 6 में बदलाव पर घमासान तेज, सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाने के बाद राहुल गांधी ने कहा बीजेपी और सीसी में सांठगांठ, बीजेपी का पलटवार, भ्रम फैला रहे हैं नेता विपक्ष। इन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर आज हो रही है वोटिंग। बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर शुभेंदु की पहली परीक्षा, सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान। राज्यसभा सीट के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन, 11 बजे पर्चा दाखिल करेंगे यूपी में बीजेपी के 8 उम्मीदवार, 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय प्रत्याशियों के साथ साथ साधा जातीय समीकरण।

इंडिया ब्लॉक का वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ मार्च। संसद के मकरद्वार से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक 146 से ज्यादा सांसद मार्च में लेंगे हिस्सा। सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध मार्च में शामिल नहीं होगी आम आदमी पार्टी। ये मार्च 2 से 8 अक्टूबर तक चलने वाले लोकतंत्र बचाओ अभियान का हिस्सा। एसआईआर के फॉर्म 6 को लेकर राहुल गांधी और बीजेपी आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राहुल ने एसआईआर में गड़बड़ी के आरोप लगाए। ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी के संगीन आरोप। कहा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए फॉर्म 6 में किए गैर कानूनी और एकतरफा बदलाव। फॉर्म 6 के आरोपों पर बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार। संबित पात्रा बोले राहुल गांधी फॉर्म 6 को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। संबित पात्रा ने सुप्रीम कोर्ट के 124 पन्नों के फैसले का हवाला दिया। बोले राफेल की तरह यहां भी मांगनी पड़ेगी माफी। राहुल गांधी के फॉर्म 6 दावे पर इलेक्शन कमीशन का फैक्ट चेक। चुनाव आयोग ने दावे को गुमराह करने वाला बताया। कहा फॉर्म 6 में कॉमा फुल स्टॉप तक नहीं बदला। एसआईआर के तहत फॉर्म 6 में बदलाव पर फंसा चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट की दो टूक। हमने चेंज को नहीं दी थी मंजूरी। कहा गैरकानूनी काम हुआ तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को थमाया नोटिस। ज्ञानेश कुमार के तुरंत निलंबन से इनकार। दिल्ली में एनएसयूआई के प्रदर्शन के दौरान हिंसा पर 4 एफआईआर दर्ज। सीआईएसएफ जवान पर कथित हमले समेत कई मामलों में 18 लोग गिरफ्तार। राहुल गांधी का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप। जंतर मंतर पर महिला प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों से बदसलूकी के दावे में साकेत थाने की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की गई। बिहार में 7 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन का आक्रोश मार्च। तेजस्वी ने कहा सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सभी प्रखंड मुख्यालयों पर मार्च निकालेगा गठबंधन। बिहार में 8 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। सभी जिला मुख्यालयों पर धरना। तेजस्वी के नेतृत्व में पटना में राजभवन मार्च। 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आज मतदान। बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव के लिए वोटिंग। तमिलनाडु की 2, पुडुचेरी की 1 सीट पर भी मतदान। असम की नौगांव सीट पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव। बीजेपी और एसपी के बीच मुकाबला। चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट से जाते समीकरण साधने में जुटी बीजेपी। लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय के नाम। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बीएल वर्मा को नहीं मिला टिकट। अभी 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, जबकि एसपी बीएसपी के पास 1-1 सीट। मायावती ने फिर से भतीजे पर दिखाई दया। कहा सियासत से ससुर के संन्यास के बाद सुधर गए हैं आकाश। वापस किया राष्ट्रीय संयोजक का पद। बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर महागठबंधन में मतभेद। आरजेडी और लेफ्ट में सीटों को लेकर असहमति। आज नामांकन की आखिरी तारीख। बिहार एमएलसी चुनाव में 23 अक्टूबर को होंगे मतदान। 27 अक्टूबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। फडणवीस सरकार पर बरसे राहुल गांधी। बोले महाराष्ट्र के छात्र शिक्षा व्यवस्था और अन्याय से त्रस्त। आदिवासी छात्रों की मांगे भी नहीं मानी गई। हम छात्रों के साथ खड़े। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई। अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा पूरा केस। सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज। कॉलेजियम की सिफारिश पर मुहर। जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह लेंगे शपथ। आज भी आईएएफ स्थापना दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल। इंडोनेशिया बेस पर दिखेगा वायुसेना का दमखम। 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा 94वां वायुसेना दिवस। पीएम मोदी 11 अक्टूबर को चेन्नई में करेंगे मेट्रो फेज 2 के 14.6 किलोमीटर पूनमल्ली वडा पलानी सेक्शन का उद्घाटन। पूनमल्ली से पोरूर तक करेंगे ट्रेन यात्रा। तमिलनाडु में चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी का संगठनात्मक मंथन। 7 अक्टूबर को सभी राज्य जिला मुख्यालयों पर सेवा ज्योति रैलियां। राम माधव ने संभाली राज्य प्रभारी की जिम्मेदारी। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग। बागडोगरा से बीएसएफ इन घुसपैठियों को भेजेगा सीमा पार। 7 अक्टूबर को एक और कार्रवाई की तैयारी। पंजाब की मान सरकार पर चौतरफा वार। सीएमओ भ्रष्टाचार केस की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी। बीजेपी ने ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वतखोरी और लगातार हो रही हत्याओं पर मांगा जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में एचएएल के 2000वें एरो इंजन की डिलीवरी की करेंगे चिन्हित। और वहीं लगभग 6 दशक की रक्षा उत्पादन यात्रा का अहम पड़ा। एचएएल कोरपुट में 218 करोड़ की लागत से शक्ति इंजन की दूसरी प्रोडक्शन लाइन की शुरुआत। ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए बढ़ेगी स्वदेशी इंजन उत्पादन क्षमता। आईपीएस अधिकारी प्रीति वर्मा का बिहार के डीजीपी पद पर कार्यकाल बढ़ा। 1991 बैच की आईपीएस अधिकारी है प्रीति वर्मा। एमपीएससी अभ्यर्थियों का पुणे में जोरदार प्रदर्शन। परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और प्रदर्शन का प्रशासनिक देरी को लेकर चेयरमैन विवेक भीमनवार्व सचिव से इस्तीफे की मांग की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का 5 लाख मुआवजे का आदेश किया रद्द। खाद्य विषाक्तता की शिकायत पर एफडीए की कार्रवाई को जनहित में उचित माना। अकोला एफडीए की बड़ी कार्रवाई। अहमदाबाद से आया 1900 किलो खोया जब्त हुआ। 5 लाख रूपये के खोए पर कार्रवाई की गई। त्योहार से पहले खाद्य विभाग की छापेमारी। प्रयागराज में होटल रेस्टोरेंट में अब बताना होगा किस सेल में बना है खाना। शिकायत के लिए क्यूआर कोड भी अनिवार्य। संगरूर में डीसी कार्यालय के 3rd गेट पर किसानों और पुलिस में झड़प। डीसी कार्यालय के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे किसान, पुलिस ने रोका। किसानों का ऐलान 24 घंटे तक बंद रहेंगे डीसी कार्यालय के गेट। महाराजगंज में करोड़ों रूपये खर्च कर भेजे गए वेंटिलेटर। कोरोना काल में पड़े पड़े खा रहे धूल। सीएमओ का बयान, पाइपलाइन और संसाधनों की कमी के कारण काम नहीं आ रहे हैं वेंटिलेटर। पटना में दरोगा अभ्यर्थियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। एग्जाम रद्द के विरोध में प्रदर्शन। छात्र बोले हम भी वर्दी पहनते, सरकार ने सब छीन लिया।
राम मंदिर की आंतरिक व्यवस्थाओं में बड़े प्रशासनिक बदलाव की तैयारी थे। इस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, अनुशासित और साथ ही आधुनिक बताने की तैयारी। सभी कर्मचारियों और एजेंसियों के कर्मियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर सॉफ्टवेयर से निगरानी होगी। मंदिर परिसर में कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लागू करने की तैयारी। वीडियो सर्विलेंस और फिस्किंग व्यवस्था भी होगी मजबूत। करीब 40 नए स्थानों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। अलग अलग विभागों के कामकाज के लिए तैयार की जाएगी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन पर भी जोर। चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था भी बदलेगी। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी गिनती। अयोध्या में 5 से 7 नवंबर तक भव्य दीपोत्सव 33 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरी। राम की पैड़ी समेत 2 किलोमीटर क्षेत्र में होगा आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया रामनगरी अयोध्या का दौरा। विधि विधान से रामलला के दर्शन किए, सुख समृद्धि की कामना की। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर वतन लौटे भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी। टीम का स्वागत करने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे परिवार के लोग। बद्रीनाथ धाम यात्रा में टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड। इस साल अब तक 18,67,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अमेरिका के मिशिगन से जैक्सन अपने दिवंगत चाचा की अस्थियां लेकर काशी पहुंचे। हिंदू विधि विधान से अस्थि विसर्जन के साथ श्राद्ध और पिंडदान की प्रक्रिया पूरी की। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम योगी ने किया हेलीकॉप्टर से दौरा। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर सीएम ने पीड़ितों से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। बाढ़ प्रभावितों को दी राहत सामग्री। बस्ती में 63 करोड़ रुपए का अटल आवासीय विद्यालय बना टापू। गंदे पानी से होकर क्लास जाने को मासूम बच्चे मजबूर हुए। चमोली के घसोली से आगे बर्फ की सफेद चादर। भारी बर्फबारी से बदला पूरा इलाका। बीआरओ कर रहा सामरिक मार्ग खोलने का काम। घसोली से देवताल तक बर्फ की आगोश में पहाड़ और सड़क। माणा पास के इस क्षेत्र में प्रकृति का दिखा अद्भुत नजारा। भारी बर्फबारी से पहुंचना मुश्किल। हिंगोली में पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग की वजह से 2 लोगों की झुलसकर मौत। 7 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में रामायण के सेट पर लगी भीषण आग। मची अफरा तफरी के बीच शूटिंग की गई सस्पेंड। हादसे में कोई हताहत नहीं। मुंबई में बस डिपो पर खड़ी इलेक्ट्रिक बेस्ट बस में लगी भीषण आग। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। भोपाल के कमला नगर इलाके में बदमाशों का आतंक। आधी रात 3 बदमाशों ने कार पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हरिद्वार में पेंट की दुकान में लगी भयंकर आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दमकल ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। जालना में शॉर्ट सर्किट से 9 एकड़ गन्ने की फसल जलकर राख हुई। बिजली के तार में घर्षण के बाद खेत में लगी भीषण आग। फसल बर्बाद होने की वजह से किसानों ने मुआवजे की मांग की। गाजियाबाद में रावण के पुतले के ब्लास्ट पटाखे भरते समय हुए धमाके में 5 लोग घायल हुए। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। जामनगर में रेलवे स्टेशन के पास आग की चपेट में आए मजदूरों के कमरे। 6 से 7 कमरे जलकर राख हुए। वहीं आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। पानीपत में शराब पिलाने के आरोप को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प। तलवार लाठी डंडों के साथ जमकर हुई पत्थरबाजी। दोनों पक्षों के साथ कई लोग घायल। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में लिफ्ट में फंसे 13 लोग सुरक्षित निकाले गए। 20 मिनट तक बीच फ्लोर पर अटकी रही लिफ्ट। बच्चों के रोने से मची अफरा तफरी। आजमगढ़ में दीवार गिरने की वजह से 5 साल के बच्चे की मौत हुई। घटना का लाइव वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप। गुजरात के दाहोद में विधायक के घर फायर ब्रिगेड से सफाई का वीडियो वायरल। मामले को लेकर उठे सवाल। जमशेदपुर में मोबाइल शोरूम में लूट की कोशिश। बैग में बम होने की धमकी। दुकानदार और ग्राहकों में दहशत। मुंबई ऐतिहासिक बाणगंगा टैंक में सैकड़ों मछलियां मृत मिली। बीएमसी ने स्थानीय लोगों और पुजारियों की बुलाई बैठक। बिजनौर में सीसीटीवी से बचने के लिए विग लगाकर चोरी करता था शातिर चोर। पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को पकड़ा। अहमदाबाद में बेकाबू हुई कार। 180 डिग्री घूमने के बाद सर्विस रोड पर खड़ी कई कारों से जाकर टकराई। 3 गाड़ियों को पहुंचाया गया नुकसान। खौफनाक हादसा सीसीटीवी में कैद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में शौचालय में छिपकर बैठा किंग कोबरा। रेस्क्यू टीम समय रहते जंगल में छोड़ा। कोरबा में नामचीन रेस्टोरेंट में टॉयलेट में धोए जा रहे हैं बर्तन। उसका वीडियो वायरल। खाद्य सुरक्षा विभाग हुआ सख्त नोटिस जारी। अलवर में टोल पर पैसे कटते ही हथियारबंद युवकों ने लाठी डंडों से किया टोल पर हमला। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। हरिद्वार में पेट्रोल पंप पर टैक्सी चालकों में मारपीट। पुरानी रंजिश के चलते लिया गया बदला। आग की जांच में जुटी पुलिस।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, रात के 10:17 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 10:17 तक राहु काल का समय शाम के 3:04 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।

आप बहुत ध्यान रखें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, धन के खर्चे इस समय बढ़ेंगे, थोड़ी परेशानी हो सकती है। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के

वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, दौड़ भाग आपकी आज बढ़ी रहेगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, परिवार में बेवजह की अशांति से बचिए। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा हरा। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, आज अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिएगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं, चोट चपेट से बचाव करें, जल्दबाजी में काम ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

तो होंगी, नए काम की शुरुआत होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तुला राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, धन का लाभ होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

रिश्तों में दिक्कत आ सकती है, रिश्तों में सावधानी बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?
7: गोल्डी छोले मसाले जो

0: नीलता
1: क्योंकि वो मजबूत रूम टाक टीएमटी से बना है।
2: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
0: कौन सी बनानी है?
3: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: उत्तर प्रदेश की खाली हुई राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ये नाम हैं धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्णा पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार। इन 8 नामों में 2 अनुसूचित जाति है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 उम्मीदवारों में एक लोधी, एक पाल और एक कुर्मी जाति के हैं। सवर्ण जातियों में 2 ब्राह्मण और 1 राजपूत है। इन 8 उम्मीदवारों में 2 महिलाएं भी हैं। बीजेपी ने मौजूदा राज्यसभा सांसद रहे किसी को फिर मौका नहीं दिया है। टिकट नहीं पाने वाले जो सबसे खास नाम हैं, वो हैं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्य मंत्री बीएल वर्मा। यानी मोदी मंत्री परिषद में जल्द फेरबदल की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। इससे पहले रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा टिकट कटने के बाद उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उधर इन 8 नामों के जरिए 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव के समीकरणों को मजबूत करने की बीजेपी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के इन 8 उम्मीदवारों की घोषणा से पहले समाजवादी पार्टी 2 उम्मीदवारों का नामांकन करा चुकी है। फिर एसपी के उम्मीदवार बने रामगोपाल यादव का नाम तो पहले से तय था, लेकिन धनराज नाथवानी के नाम पर बहस जारी है। एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बड़े अधिकारी परिमल नाथवानी के बेटे धनराज की उम्मीदवारी के बाद बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए पर सवाल उठा चुकी है।
6: ये एक नई पीढ़ी नई सोच के व्यक्ति को मैं भेजने का समाजवादी पार्टी को मौका मिला है और समाजवादी पार्टी इस बदलते हुए दौर में जहां पर कई दलों का बहुत दबदबा है कॉरपोरेट वर्ल्ड में और कई उद्योगपति न केवल उद्योग का कारोबार कर रहे हैं या उद्योग चला रहे हैं, अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, बल्कि समाज में भी वो समय समय पर काम करते हैं, उनकी सेवाएं भी हैं।
5: उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों में 7 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी आसानी से अपने अपने उम्मीदवार जिता सकती है। 1 सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। ऐसे में अगर विपक्ष की ओर से कोई तगड़ा दावेदार मैदान में उतरता है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। आज तक ब्यूरो

0: विधानसभा में मिली 2 सीट, लड़ ली थी 399 सीट। लोकसभा में मिली 6 सीट, मांग ली थी 37 सीट। उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं को अंदाजा ही नहीं है कि प्रदेश में कांग्रेस की जमीनी ताकत कितनी है। नतीजा यह है कि पहले मांगी सम्मानजनक सीट, फिर मांगी 100 सीट, फिर मांगी 150 सीट और अब कह रहे हैं 200 सीट।
1: मैंने किया 150 का, मैंने तो 200 की बात की थी।
2: मैं ये कहता हूँ उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी,
1: क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी।
3: 2024 में कांग्रेस मध्य प्रदेश में अकेले लड़ी, कितनी सीटें जीती। कांग्रेस राजस्थान में अकेले लड़ी, कितनी सीटें जीती। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, कितनी सीटें जीती।
4: जीत ही आधार है, जीती सीट का आधार है।
0: अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं कि यूपी में जीत ही सीट का आधार है और जीत बोले तो आखिरी चुनाव यानी 2024 लोकसभा में मिली जीत, और वो जीत कुछ ऐसी थी कि 80 में से 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 6 कांग्रेस को मिली थी। इसे विधानसभा के अनुपात में बांटा जाए तो 37 लोकसभा के हिसाब से अखिलेश के हिस्से 347 सीटें बनती हैं और कांग्रेस के हिस्से 56।
5: क्या आप ये चाहते हो कि सीट पे चुनाव में तो कोई आवाज़?
0: लेकिन कांग्रेस की हसरतें 56 से 200 तक पहुँच चुकी है और हौसला बढ़ता ही जा

0: रहा है। कांग्रेस लगातार दबाव की सियासत कर रही है। पहले सीटों की तादाद को लेकर दावे पर दावे किए तो अखिलेश इंडिया की बैठक तक में नहीं गए। अब कांग्रेस ने उसी इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे थे और 403 सीटों पर लड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। अब बारी समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लेने की है कि वो कांग्रेस की सीटों वाली शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है या बीजेपी को हराने के मिशन के साथ।
1: ये रस्सोकसी अगर लगातार दोनों ही दलों के बीच में जारी रहती है और बयानों के तीर छोड़े जाते हैं तो वोटर असमंजस में पड़ सकता है और दोनों ही दलों को नुकसान हो सकता है, जिसका सीधा फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को। फिर वो वोटर चाहे वोट विपक्ष को करे या ना करे, फायदा बीजेपी का। आप सोचना दोनों दलों को ये है कि सियासी तीरों के जरिए सीट शेयरिंग का दबाव बनाएंगे या अपने वोट को बचाएंगे, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: In association with
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सांसद रहेंगे मौजूद, शामिल नहीं होगी आप। चुनाव आयोग के फॉर्म 6 में बदलाव पर घमासान तेज, सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाने के बाद राहुल गांधी ने कहा बीजेपी और सीसी में सांठगांठ, बीजेपी का पलटवार, भ्रम फैला रहे नेता विपक्ष। राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर आज हो रही है वोटिंग। बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर शुभेंदु की पहली परीक्षा, सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर। इंडिया गठबंधन का आज चुनाव आयोग मार्च, संसद भवन से निर्वाचन सदन तक किले में तब्दील हुई दिल्ली। इस पर देखिए पूरी खबर विस्तार से। पुणे में एमपीएससी के अभ्यर्थियों का जारी है धरना, आंदोलन को मिला विपक्षी दलों का समर्थन। बुलेटिन में इस पर भी होगी चर्चा। महिला पुलिसकर्मियों के पैदल मार्च में शामिल हुए एशियाई खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन। पूरी खबर इस बुलेटिन में आखिर में आपको दिखाएंगे। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करें आज की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन का संसद भवन से निर्वाचन सदन तक मार्च है। कथित वोट चोरी और चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं के चलते इस मार्च में इंडिया गठबंधन के 146 से ज्यादा सांसद शामिल होने जा रहे हैं। मार्च के लिए संसद के मकर द्वार पर सुबह 10:30 बजे सांसदों का जमा होना शुरू हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के मार्च को देखते हुए संसद भवन से निर्वाचन सदन तक सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए।
1: पहले जो ट्रेलर दिखा था, आज पूरी फिल्म सामने आने वाली है। इंडिया गठबंधन के सांसद आज संसद भवन के मकर द्वार से निर्वाचन सदन यानी चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च करने वाले हैं। इसके लिए सांसदों का जुटान मकर द्वार पर सुबह 10:30 बजे से शुरू हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के मुताबिक करीब 146 से ज्यादा सांसद आज के इस मार्च में शामिल होंगे।
2: 11 बजे सभी विपक्ष पार्टियों के सांसद पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक शांतिपूर्वक मार्च करेंगे। सभी को 10:30 बजे का टाइम दिया गया है मकर द्वार पर इकट्ठा होने के लिए। 11 बजे को मार्च हम शुरू करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से ये मार्च निकाला जाएगा निर्वाचन सदन तक।
1: इंडिया गठबंधन का ये मार्च 2 से 8 अक्टूबर तक चलने वाले लोकतंत्र बचाओ अभियान का हिस्सा है, जिसका ऐलान 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में लिया गया था। आज के मार्च में कांग्रेस तो अहम भूमिका में रहेगी ही। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी शरद पवार, आरजेडी, जेएमएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत 19 दल के सांसद भी लोकतंत्र बचाओ मार्च में शामिल होंगे। डीएमके और आम आदमी पार्टी इस मार्च में शामिल नहीं होगी।
3: मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को एक सीमा से आगे कोई नहीं दबा सकता। जैसे जेनजी के साथियों ने मिलकर इस्तीफा करा के दिखा दिया देश के शिक्षा मंत्री का, उसी तरह से पूरे देश के लोग, विपक्ष के लोग, जेनजी लोग और भी सब लोग मिलकर, जो लोग लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, जो विश्वास करते हैं कि लोकतंत्र के अंदर ही असली ताकत है, वो ऐसे लोग ज्ञानेश गुप्ता का इस्तीफा करा के छोड़ेंगे, चाहे जितने तरीके संघर्ष करना होगा किया जाएगा।
4: जो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने जो गलती गुनाह ने जो पाप किया है उसका सजा उसको मिलेगा, और उसको बचाने वाले लोग, जो उनको बैठाने वाले लोग है, जो पाप कराने वाले लोग है, उनको भी छोड़ा दिया जाएगा।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का दबाव बनाने की रणनीति पर विचार करने के लिए कल कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें कांग्रेस के तमाम प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने संदेश में राहुल गांधी ने कहा, हमें सतर्क और सक्रिय रहकर इस लड़ाई को लड़ना है, हमें साहसी और आक्रामक होकर लगे रहना चाहिए।
5: राहुल जी ने कहा जनता के बीच जाएं, उनका विश्वास जीतें और हकीकत उनको बयान करें जनता
6: की। एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं को पुराने अंदाज को छोड़ नए स्टाइल, तीखे और आक्रामक तेवर इख्तियार करने की नसीहत दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक ने अगले 2 महीने का खाका तैयार कर लिया है। लेकिन इसकी अग्नि परीक्षा तो तब होगी जब जनता भी विपक्ष के पीछे चल पड़ती है।
1: इंडिया गठबंधन के नेता तैयार हैं, तो उधर दिल्ली पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जंतर मंतर, संसद मार्ग, रेल भवन, निर्वाचन सदन तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बंदोबस्त नजर आ रहा है, यानी दोनों तरफ से तैयारी पूरी है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो कांग्रेस की तीन मांगे हैं जो कांग्रेस के मुताबिक इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पहली मांग है ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, दूसरी मांग है एसआर को रद्द करना और तीसरी मांग है बैलेट पेपर से चुनाव। कांग्रेस और विपक्ष की इन मांगों पर सरकार और सत्ता पक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं सत्ता पक्ष का क्या कहना है।
7: राहुल गांधी जी, कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, इनका एकमात्र एजेंडा देश की स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और उन्हें कमजोर करना रह गया है। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है। आरोप लगाओ, देश का माहौल बिगाड़ो और भाग जाओ, यही विपक्ष की कार्यशैली बन गई है।
8: महाराष्ट्र में एसआर अभी आया, उसके पहले जब चुनाव हुआ तब एसआर नहीं था। महाराष्ट्र में अभी चल रहा है तो जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो विधानसभा के चुनाव में हमको इतनी सीटें मिली कि अपोजिशन को बहुत कम सीटें मिली। कम से कम 288 सीटों में से कम 237-238 सीटें हमको मिली। मतलब तो एसआर नहीं था, नाम काटे गए नहीं थे, तो मुझे लगता है ये ऐसा बता रहे कि भाई हमारे नाम काट रहे हैं, तुम्हारे नाम कैसे काट रहे हैं। वो हमको भी वोट देने वाले लोग थे, इसीलिए ये अपोजिशन का जो रवैया है बिल्कुल ठीक नहीं है। सरकार को घेरने का जरूर प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सरकार मतलब बड़ी ताकतवर है नरेंद्र मोदी जी की, कि वो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती है।
9: ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है, हर एक का अधिकार है प्रोटेस्ट करना, रास्ते पे उतरना, जुलूस निकालना, धरना प्रदर्शन करना, ये अधिकार क्षेत्र में पड़ता है, करने दीजिए। हमारा काम हम लोग करें, चुनाव आयोग का काम चुनाव आयोग करे, न्यायाधीश का काम न्यायाधीश करे, न्यायालय में जो होना है होने दीजिए, उसका जवाब तो चुनाव आयोग देंगे, भारतीय जनता पार्टी इसमें कहां से आ गया।
0: मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसमी सिंह भी हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले पीयूष आपका रुख करते हुए, जिस तरह की तैयारी विपक्ष की है लगातार मार्च करने की, विरोध करने की, उसको लेकर पुलिस और प्रशासन अपने पिछले अनुभवों से कितना सतर्क हो गया है?
10: जनेहा के बेहद सतर्क है पुलिस प्रशासन, और ना सिर्फ पीटीआई की बिल्डिंग जो एग्जिट गेट है पार्लियामेंट का, बल्कि उसके चारों तरफ जितने भी इलाके हैं वहां पर पुलिस की खासा मुस्तैदी देखने को मिल रही है। मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाऊं, आप देखिए कैसे यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। कुछ देर पहले जो आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो यहां पर मौजूद भी थे और वो अपने जो सहयोगी हैं उनको ब्रीफ भी कर रहे थे कि कैसे कानून व्यवस्था को मेंटेन करना है। जितने भी गेट्स हैं, एंट्री और एग्जिट गेट जितने भी पार्लियामेंट के हैं, वहां पर चारों तरफ सुरक्षा के खासा इंतजाम इस वक्त कर लिए गए हैं, क्योंकि हमने वो तस्वीर भी देखी थी जब राहुल गांधी अपने घर से निकल के सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर बैठ गए थे और मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उस वक्त दिल्ली पुलिस के हाथ पैर फूल गए थे और तैयारी खासा नहीं थी, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। हम जब इस यहां तक पहुंच रहे थे तो रास्ते भर में हमने देखा कि कई जगह पर दिल्ली पुलिस के जो पर्सनल है उनको डिप्लॉय किया गया है, वज्र वाहन हो गए और बड़ी बड़ी जो बसेज हैं उन सब का इंतजाम यहाँ पर किया गया है कि अगर स्थिति हाथ से किसी भी तरह से निकलती है तो उसको काबू में किया जा सके। 11 बजे के आसपास यही आशंका जताई जा रही है कि मार्च शुरू होगा। पार्लियामेंट के मकर द्वार पर सभी इंडिया ब्लॉक के सांसद लगभग 10 बजे के आसपास इकट्ठा होंगे और वहां से सीधा मार्च एक बैनर के साथ शुरू होते हुए पीटीआई वाला जो एंट्री एग्जिट गेट है पार्लियामेंट का वहां से निकलेगा और सीधा इलेक्शन कमीशन की तरफ बढ़ेगा। इस दूरी की बात करें तो ये महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन संभवतः इंडिया ब्लॉक के जितने सांसद हैं उनको पार्लियामेंट के एग्जिट गेट के बाहर ही रोक लिया जाएगा ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो। इस वक्त दिल्ली पुलिस ने खासा इंतजाम कर लिए हैं और इस मार्च से पहले ही हम देख रहे हैं कैसे राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कल जिस तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए उसके बाद बीजेपी ने कहा कि ये पूरी तरह से अनर्गल आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा कि ये फॉर्म 6 अवैध है और राहुल
0: गांधी प्रमुख तौर पर 3 मांगे हैं और इसी को लेकर मार्च किया जा रहा है। मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ी है। मौसमी, ये बेहद दिलचस्प होगा कि अगर इस पर पूरा विपक्ष एकजुट रहता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही दूरी बना ली है, दक्षिण के कौन से वो दल हैं जो इस मार्च से दूर रहने वाले?
11: देखिए, कुल मिलाकर अगर आप देखें डीएमके दूर रहने वाली है। डीएमके इस मार्च का कल था कि डीएमके को भी निमंत्रण गया है और आम आदमी पार्टी को भी निमंत्रण गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी भी दूर रहने वाली है। बीजेडी बीआरएस जो इंडिया ब्लॉक के बाहर है, जाहिर तौर पर अभी वो इस खेमे में नहीं आए हैं, लेकिन ये शुरुआती दौर है जब इंडिया ब्लॉक पहला अपना आंदोलन इस तरीके का या मार्च पूरी चुनाव आयोग के इस बवाल के बाद कर रहा है। तो एक लिटमस टेस्ट भी होगा अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, यूबीटी, इन सब के सांसद कितने साथ और एकजुट यहाँ पे कितने अग्रेसिव नजर आते हैं। और इंटरेस्टिंग ये भी है कि देखिए कि लगभग 10:30 का जो टाइम है उसको लेके ये भी रणनीति बनाई जा रही है। कल केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस हमें रोकने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये शांतिपूर्वक मार्च है, अगर हमें रोकने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं रुकेंगे। तो ये एक मुझे लगता है कि परमिशन उनको मिलेगी नहीं चुनाव आयोग तक जाने की, और ऐसे में ट्रांसपोर्ट भवन के आसपास काफी मुझे लगता है कि आमने सामने विपक्ष धरने पर नजर आएगा।
0: ठीक है, और इस पूरे मार्च को लेकर बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए।
12: ये एक प्रक्रिया है, पीआईएल लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना और नोटिस इश्यू करना ताकि दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक जुडिशियल प्रक्रिया है। तो स्वाभाविक रूप से एक प्रक्रिया हो रही है, दिस इज अ प्रोसेस अंडर द जुडिशियरी। चिट्ठी लिखना और किसी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और बाद में सहमति के साथ डिबेट और डिस्कशन हो और उसके बाद सहमति के साथ आगे बढ़ना, यही तो डेमोक्रेसी है। डिबेट, डिस्कस एंड देन यू कम टू अ डिसीशन, दिस इज व्हाट इज डेमोक्रेसी। और उसके बाद इस पूरे प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू करना, यही तो डेमोक्रेसी है।
13: एसएआर की बात है तो इनके नेता जो होम मिनिस्टर हैं केरल के, उन्होंने रमेश उन्होंने कहा कि हम एसएआर का स्वागत करते हैं क्योंकि उनके चलते ही हम चुनाव जीत पाए, नहीं तो हम चुनाव नहीं जीत पाते। इसी प्रकार से इनके जो नेता रेवंत रेड्डी, जब उन्होंने 70 लाख वोट की बात करी कि 70 लाख वोट जाली हैं और इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कार्रवाई करी, तो उसके बाद तारीफ कर रहे थे। सर में क्या है कि लगातार चुनाव हार रहे हैं, चुनाव हारने के लिए किसी न किसी ढंग से कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं कि हम इस कारण से चुनाव हारें कि एसआई और ईवीएम के कारण से चुनाव हारे हैं। सच ये है कि हिंदी की कहावत इन पर ठीक बैठती है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे।
14: देखिए, एक चीज़ है, अब लोग अपनी अपने विचार अपनी अपनी बातें कर सकते हैं, यही तो हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लेकिन एक चीज़ सबको समझना चाहिए कि वायलेंट एनार्की के जरिए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को किसी भी तरह से अब हाईजेक नहीं होने देना है, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी व्यवस्था हो, समाज का कोई भी हिस्सा हो। और अपने अपने विचार होते हैं, हर आदमी जो है सहमति नहीं व्यक्त कर सकता जो भी व्यवस्था है उससे, लेकिन मैं मानता हूं कि वायलेंट जो एनार्की है उसके प्रति जो है असहमति सबकी होती है।
0: तो मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार एसआर को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। एसआर में विवाद का सबसे अहम मुद्दा है फॉर्म 6। राहुल गांधी के सवाल उठाने पर चुनाव आयोग ने सफाई दी कि फॉर्म 6 में कॉमा फुल स्टॉप तक नहीं बदला गया है।
1: फॉर्म 6 पर छिड़ा घमासान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फॉर्म 6 में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी मंजूरी। विपक्ष का आरोप, ज्ञानेश कुमार ने गैर कानूनी और एक तरफा तरीके से बदला फॉर्म 6। चुनाव आयोग का जवाब, मूल फॉर्म 6 में एक कोमा पूर्ण विराम तक नहीं बदला। फॉर्म 6 पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस पर घमासान तेज हो गया है। ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कल राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब ये बात बिना किसी शक के साबित हो चुकी है कि ज्ञानेश कुमार ने गैर कानूनी और एक तरफा तरीके से फॉर्म 6 में बदलाव किया। ये इस बात का एक और सबूत है कि उन्होंने बीजेपी की मदद करने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। राहुल गांधी के इस पोस्ट पर चुनाव आयोग ने भी एक्स पर फैक्ट चेक जारी किया। चुनाव आयोग ने कहा, बिहार में एसआईआर के लिए 24 जून 2025 को जारी आदेश चुनाव आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के अपने फैसले में इस आदेश को सही ठहराया है। चुनाव आयोग ने 26 सितंबर 2026 के अपने प्रेस नोट नंबर 120 के पॉइंट 13 में कहा है कि एसआईआर के लिए फॉर्म 6 के साथ लगे घोषणा पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है।
15: कोर्ट ने फॉर्म 6 को इलीगल नहीं कहा, उन्होंने कहा अच्छा पेटिशन में आपने बताया है कि फॉर्म 6 को मॉडिफाई कर दिया गया है, तो ठीक है हम पता लगाएंगे, हमने तो किसी मॉडिफिकेशन के लिए हाँ नहीं कहा था। अगर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है तो नोटिस के बाद पता चलेगा कि मॉडिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, मगर जब हम डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ते हैं और जब हम 26 सितंबर 2026 के 120th प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन का देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा था कि फॉर्म 6 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और जो डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर्म 6 के साथ अटैच हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है।
1: चुनाव आयोग के मुताबिक उसने फॉर्म 6 में बदलाव नहीं बस एक पन्ना जोड़ा और उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। सवाल उठता है कि फिर विवाद कहां है? आज तक संवाददाता संजय शर्मा से सुनिए पूरा पेच कहां फंसा है।
16: निर्वाचन आयोग का यह कहना है कि जैसी दलील वैसा जवाब, क्योंकि दलील ही ऐसी थी कि बदलाव किया गया, चीफ जस्टिस ने कहा बदलाव को हमने कोई मंजूरी नहीं दी है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि दरअसल कोई बदलाव हुआ ही नहीं है क्योंकि फॉर्म 6 वैसे का वैसा ही है, बस उसमें एक अतिरिक्त घोषणा पत्र वो भी एसआईआर के दौरान हमने इंट्रोड्यूस किया था और जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है हमने अधिसूचना जारी कर दी है।
1: लेकिन क्या फॉर्म 6 में अलग से पन्ना जोड़ने को बदलाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पन्ना जोड़ने से एसआईआर की प्रक्रिया तो प्रभावित हुई।
16: कानून के जानकारों का ये कहना है कि निर्वाचन आयोग की ये दलील काफी नहीं है क्योंकि निर्वाचन आयोग जो कह रहा है कानून की किताब कुछ और कह रही है जो इससे बिल्कुल उलट है। किताब कहती है कि जिस तरह से फॉर्म 6 का प्रावधान जिस अधिनियम के तहत हुआ उसमें किसी भी तरह का बदलाव, किसी भी तरह की कोई चीज जोड़ना या घटाना या अतिरिक्त पन्ना जोड़ना, उसके लिए भी वही प्रक्रिया है जो नियम बनाने की प्रक्रिया है। और नियम बनाने की प्रक्रिया ये है कि ऐसे नियम सरकार बनाएगी निर्वाचन आयोग से सलाह मशविरा करके। क्या ये अतिरिक्त पन्ना जोड़ने को लेकर सरकार की और निर्वाचन आयोग की कोई बात हुई थी, कोई सलाह मशविरा हुआ था? अब वही सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन देगा।
1: जाहिर है इस मामले पर जब अगली सुनवाई होगी तो तस्वीर और साफ होगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
0: हिमांशु मिश्रा में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ और ये पूरा बवाल फॉर्म 6 को लेकर मचा है, इसी को लेकर मकरद्वार में अब से कुछ ही देर बाद सांसद इकट्ठा शुरू होना शुरू हो जाएंगे। हिमांशु, कौन कौन अब तक पहुंच गया है, कितना वक्त अभी लगेगा कि फुल फोर्स में ये आंदोलन दिखाई देगा फॉर्म 6 और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ?
17: देखिए, अभी सिर्फ जो है कांग्रेस की तरफ से जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड है जयराम रमेश वो पहुंचे हैं और अब से कुछ देर में जो है विपक्षी दलों के सांसद पहुंचेंगे और वो या मकर द्वार यानी जो मेरे पीछे आप द्वार देख रहे हैं संसद का, वो द्वार जहां से सांसद और मंत्री यहां से संसद भवन के नए परिसर में जो है प्रवेश करते हैं यहां से शुरू करेंगे और चुनाव आयोग तक उनको जाना है। अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस उनको कहां तक जो है परमिशन देती है, क्या ट्रांसपोर्ट भवन तक उनको परमिशन मिलेगी या उससे आगे वो चुनाव आयोग तक जा सकते हैं, क्योंकि संसद भवन से जो चुनाव आयोग की दूरी है वो लगभग 500 मीटर की है। तो ऐसी पूरी स्थिति के अंदर देखना यह है कि क्या ये सांसद जो है विपक्षी दल के ये अपना ज्ञापन जो है वो इलेक्शन कमीशन तक जाकर देंगे या फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से पिछली बार की तरह ये कहा जाएगा कि कुछ लोग जो है आकर अपना ज्ञापन दे सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा जब भी एसआईआर को लेकर इस तरीके से हंगामा हुआ था पिछली बार संसद भवन के अंदर, तब विपक्षी दल एक साथ जाना चाहते थे, तब इलेक्शन कमीशन ने अलाउड नहीं किया था और कहा था कि 20 सांसद वहां आए लेकिन उसके बाद जो है सभी सांसदों ने ये कहा था कि हम एक साथ जाएंगे, एक साथ अपनी मात को रखेंगे और चुनाव आयोग हमसे मिलना क्यों नहीं चाहता है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो हमसे क्यों नहीं मिलना चाहते हैं। अब देखना ये है कि आज ये जो लड़ाई है संसद से सड़क तक की, ये कैसी होगी। और इसमें विपक्ष के कई दल जो है शामिल नहीं होंगे, जिसमें डीएमके और आम आदमी पार्टी जो है इस मुहिम में शामिल नहीं है। एसआईआर की ये जो मुहिम है विपक्षी दल की, जो कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के द्वारा जो है की जा रही है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। तीन राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में 5 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के लिए आज वोटिंग हो रही है। सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और एजी नगर विधानसभा सीट पर हो रहे चुनाव पर है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। नंदीग्राम से मेरे सहयोगी अनुपम मिश्र इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, नंदीग्राम की लड़ाई कितनी दिलचस्प और कितनी क्लोज बताई जा रही है?
18: जी देखिए नेहा, नंदीग्राम हाई प्रोफाइल सीट रही है और इस बार अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए, खासतौर पर शुभेंदु अधिकारी के लिए, ये एक प्रेस्टीज फाइट है। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी 2021-2026 दोनों जगह पर चुनाव उन्होंने जीता था। और इस बीच मैं आपको बूथ भी दिखाता चलूं, ये वही बूथ है जहां पर थोड़ी देर में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपना वोट डालने भी पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में ये बीजेपी के लिए तो प्रेस्टीज फाइट है, लेकिन टीएमसी यहां पर नहीं है क्योंकि टीएमसी की जो कैंडिडेट थी उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। ऐसे में ममता टीएमसी की ओर से कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात कही गई थी। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया था कि वो यहां से कांग्रेस को सपोर्ट कर रही हैं। इस बीच कई नाटकीय घटनाएं हुई पिछले एक महीने के भीतर। मिलन प्रधान जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहां से उनको गिरफ्तार किया गया 17 साल पुराने मामले में। हाईकोर्ट से उनको बेल मिली तो अंत के 3-4 दिन जो कैंपेनिंग के होते हैं वो कैंपेनिंग कर पाए। कांग्रेस का लगातार आरोप है कि यहां पर ढंग से उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, कैंपेनिंग करने नहीं दी जा रही है, उनके कार्यकर्ताओं, उनके बूथ एजेंट्स को परेशान किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार वो बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा संख्या में जो मार्जिन है वो बढ़ाकर यहां से जीतेंगे। और रही बात रेजी नगर की, तो रेजी नगर में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लगभग सभी पार्टियां हैं। बीजेपी है, आम जनता उन्नयन पार्टी जो हुमायूं कबीर जिसके संस्थापक हैं, जो जिन्होंने पिछली बार रेजी नगर से चुनाव जीता था, लेकिन नौदा से भी उन्होंने चुनाव जीता था तो रेजी नगर सीट छोड़ दी थी, वहां पर उनके बेटे हैं। इसके अलावा वहां पर कांग्रेस है, टीएमसी, ममता टीएमसी है, डेमोक्रेटिक टीएमसी है ऋतुव्रत वाली, इसके अलावा सीपीएम है, तो वहां पर बहुकोणीय मुकाबला है। तो और इस बीच हुमायूं कबीर को डिटेन कर लिया गया है, वो एक बूथ पर जाना चाह रहे थे। तो ये फिलहाल इस वक्त नंदीग्राम और रेजीनगर का अपडेट जो मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि हिंसा की कोई खबर, बड़ी खबर अभी तक नहीं है। जैसा कि आमतौर पर चरित्र रहा है, रक्त चरित्र पश्चिम बंगाल के चुनावों का, वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। शांतिपूर्ण मतदान की खबरें ज्यादातर जगहों से आ रही हैं। आरोप बशर्ते लग रहे हैं कांग्रेस की ओर से कई जगहों पर कि उनके बूथ एजेंट्स को बैठने नहीं दिया जा रहा है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और दिल्ली में एक आंदोलन की तैयारी है, वहीं पुणे में महाराष्ट्र सेवा लोक आयोग के खिलाफ आवाज बुलंद होती जा रही है। छात्र एमपीएससी के चेयरमैन के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं। उनके समर्थन में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस के साथ कॉकरोच जनता पार्टी भी खुलकर आ गई है।
19: करणार काय तू?
20: तस्वीर पुणे की है जहां एमपीएससी यानी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, भर्ती में देरी और एमपीएससी के कामकाज को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है।
21: अभी सिर्फ एमपीएससी पे है, वो फोकस वाइड होने तक सरकार को विनती कर रहा, मत रोकिएगा, रुकना नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा।
20: छात्रों के इस प्रदर्शन को नई बनी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ साथ बड़े राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहे हैं। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट के नेता लगातार धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं।
22: महाराष्ट्रात 20 लाखाचे जवळपास एमपीएससी जो विद्यार्थी आहे ज्यांचं भविष्यावर खूप मोठा प्रश्नचिन्ह आहे, कारण की वारंवार पेपर लीक होत असतात आणि त्यानंतरही सरकारला कुठे याचं सिरियसनेस कळत नाहीये। आणि ज्या मुलांच्या डिमांड्स आहेत की भीमनवार यांचा राजीनामा झालाच पाहिजे, त्याचा काँग्रेस जनता पार्टी पूर्णपणे समर्थन करते आणि जोपर्यंत त्यांचा राजीनामा होणार नाही ते हे आंदोलन चालू राहील आणि या आंदोलनाला काँग्रेस जनता पार्टीचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे।
1: छात्रों के आंदोलन में मराठी सिंगर और रैपर भी पहुंच रहे हैं।
2: पत्र पोस्ट लागना हाताला कारण 200 जागा सुटल्या आणि 4 लाख फॉर्म भरले पुस्तकांनी खोली भरली दुःख काळ जात पुरले जाळून काढल्या राती।
1: इन छात्रों की मुख्य मांगे हैं एमपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा हो, 70,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को तुरंत लागू किया जाए, छात्रों से सलाह मशविरे के बाद साफ छवि वाले नए चेयरमैन की नियुक्ति हो, सभी एमपीएससी परीक्षाएं ऑफलाइन हो, परीक्षा से जुड़े कई मामलों की एसआईटी निष्पक्ष जांच करे, राजस्थान की तर्ज पर साल भर आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए एक कैलेंडर बने।
3: शुरुआत में विद्यार्थियों ने सत्याग्रह शुरू किया था जिसमें रोहित पवार खुद शामिल थे, लेकिन उसके बाद कल से अनशन पर 5 स्टूडेंट्स बैठ गए हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सबसे अहम यह है कि खाना और पानी दोनों उन्होंने बंद कर दिया है। अब कल सरकार की कैबिनेट होनी है, उससे पहले अगर इस्तीफा नहीं होता है तो अपनी स्ट्रैटेजी बदली जाएगी और अलग तरीके से आंदोलन करेंगे, यही अब रोहित पवार का भी कहना है। इससे पहले भी पुणे में एक मोर्चा निकला था जिस पूरे मोर्चा में पूरे राज्य भर से लगभग 15,000 से 20,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमपीएससी से अफेक्ट हुए हैं, जिनको शक है कि महाराष्ट्र का जो आयोग है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा और उसमें सवाल उठाए जा रहे हैं।
1: छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है, गेंद फडणवीस सरकार के पाले में है, देखना है सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है। ओंकार वाबले, पुणे आज तक।
0: वहीं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन कल देर शाम दिल्ली पुलिस के महिला सुरक्षा अभियान के तहत महिला पुलिसकर्मियों के साथ पैदल गश्त में शामिल हुई। दिल्ली के रजौरी गार्डन मार्ग में उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के साथ ये पैदल मार्च किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की इस अहम पहल का वो हिस्सा बनकर गौरवशाली महसूस कर रही।
19: दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो वुमेन सेफ्टी के ऊपर काम कर रहा है, पेट्रोलियम चल रहा है, तो मैं इसका एक हिस्सा बनके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं देश के लिए मेडल लाना और उससे बहुत ज्यादा जिस तरीके से इस बार हमारे एशियन गेम्स में वुमेन्स ने जो रिजल्ट लाया वो बहुत बड़ी बात थी और इस तरीके से सभी वुमेन इससे इंस्पायर हो रहा है और उससे वो कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं मिलता है कि जो डर है वो हम हटा सकते हैं। हम सभी का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने देश के लिए सोचना है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना है।
0: तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
24: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

के खिलाफ इंडिया गठबंधन का आज प्रोटेस्ट मार्च, सुबह 10:30 बजे संसद के मकर द्वार से ईसी दफ्तर तक जाएंगे। विपक्ष का दावा, 146 से ज्यादा सांसद रहेंगे मौजूद, शामिल नहीं होगी आप। चुनाव आयोग के फॉर्म 6 में बदलाव पर घमासान तेज, सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाने के बाद राहुल गांधी ने कहा बीजेपी और सीसी में साठगांठ, बीजेपी का पलटवार, भ्रम फैला रहे हैं विपक्ष के नेता। 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर आज हो रही है वोटिंग। बंगाल की नंदीग्राम और रेजी नगर सीट पर शुभेंदु की पहली परीक्षा, सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान। राज्यसभा सीट के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन, 11 बजे पर्चा दाखिल करेंगे यूपी में बीजेपी के 8 उम्मीदवार, 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय प्रत्याशियों के साथ साधा जातीय समीकरण। महाराष्ट्र में छात्रों का दौरा, आक्रोश, परीक्षा में धांधली पर एमपीएससी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन तेज, अपनी मांगों को लेकर नासिक से मुंबई पहुंचे सैकड़ों आदिवासी छात्र, राहुल गांधी का समर्थन।

लखनऊ एयरपोर्ट लेबर रूम में अचानक लगी भीषण आग, आसमान में दूर तक नजर आया धुआं, आग की सूचना मिलते ही हड़कंप, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। इंगोरी पटाखा गोदाम में लगी आग में दो की झुलसकर मौत, 7 से ज्यादा लोग घायल। गोरेगांव फिल्म सिटी में रामायण के सेट पर लगी आग, सर्च मच गई अफरा तफरी, शूटिंग हो गई सस्पेंड, हादसे में कोई हताहत नहीं। मुंबई में बस डिपो में खड़ी इलेक्ट्रिक बेस्ट बस में लगी आग, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। भोपाल के कमलानगर इलाके में बदमाशों का आतंक, रात में 3 बदमाशों ने कार में पेट्रोल डालकर लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जालना में शॉर्ट सर्किट से 9 एकड़ गन्ने की फसल बर्बाद, बिजली के तारों में आग लगने के बाद खेत तक फैली आग, फसल बर्बाद होने से किसानों ने मुआवजे की मांग की। गाजियाबाद में रावण के पुतले में ब्लास्ट, पटाखा भरते समय 5 लोग घायल, सीसीटीवी फुटेज आया। जामनगर में रेलवे स्टेशन के पास आग की चपेट में मजदूरों के कैमरे, 6 से 7 कैमरे जलकर खाक, आग लगने की वजह साफ नहीं। पानीपत में शराब पिलाने के आरोप को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प, तलवार लाठी डंडों के साथ जमकर पत्थरबाजी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में लिफ्ट में फंसे 13 लोग सुरक्षित निकाले गए, 20 मिनट तक 20 फ्लोर पर अटकी रही लिफ्ट। बंगाल के रेजी नगर में चल रहे उपचुनाव के बीच पुलिस से भिड़े एजी यूपी नेता हुमायूं कबीर, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। एजी यूपी नेता हुमायूं कबीर ने पुलिस पर वाहन लूटने का लगाया आरोप, तीखी बहस के बाद पुलिस ने कबीर को हिरासत में लिया। निर्वाचन आयोग के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का मार्च, इमरान मसूद बोले चुनाव आयोग को जाना होगा। इंडिया ब्लॉक के मार्च से पहले इमरान मसूद का बड़ा हमला, बोले चुनाव आयोग ने देश का भरोसा तोड़ा है। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक का वोट चोरी और एसआर के खिलाफ मार्च, संसद के मकर द्वार से ईसीआर के दफ्तर तक 146 से ज्यादा सांसद मार्च में लेंगे हिस्सा। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध मार्च में शामिल नहीं होगी आप, ये मार्च 2 से 8 अक्टूबर तक चलने वाले लोकतंत्र बचाओ अभियान का हिस्सा है। एसआर के फॉर्म 6 को लेकर राहुल गांधी और बीजेपी आमने सामने, एससी की टिप्पणी के बाद राहुल ने एसआर में गड़बड़ी के आरोप लगाए। ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी के संगीन आरोप, कहा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए फॉर्म 6 में गैर कानूनी एकतरफा बदलाव किए जा रहे हैं। फॉर्म 6 के आरोपों पर बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार, संबित पात्रा बोले राहुल गांधी फॉर्म 6 को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। संबित पात्रा ने सुप्रीम कोर्ट के 124 पन्नों के फैसले का हवाला दिया, बोले राफाल की तरह यहां भी मांगनी पड़ेगी माफी। राहुल गांधी के फॉर्म 6 के दावे पर ईसी का फैक्ट चेक, चुनाव आयोग ने दावे को गुमराह करने वाला बताया, फॉर्म 6 में कॉमा फुल स्टॉप तक नहीं बदला गया। एसआर के तहत फॉर्म 6 से बदलाव पर फंसा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक, हमने चेंज को नहीं दी मंजूरी, कहा गैर कानूनी काम हुआ है तो नतीजे भुगतने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को थमाया नोटिस, ज्ञानेश कुमार के तुरंत निलंबन से इनकार। दिल्ली में एनएसयूआई के प्रदर्शन के दौरान हिंसा पर 4 एफआईआर दर्ज, सीआईएसएफ जवान पर कथित हमले समेत कई मामलों में 18 लोग गिरफ्तार। राहुल गांधी का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप, जंतर मंतर पर महिला प्रदर्शनकारी और पत्रकारों से बदसलूकी के दावे, मामले में साकेत थाने की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग। बिहार में 7 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन का आक्रोश मार्च, तेजस्वी ने कहा सीसी ज्ञानेश कुमार खिलाफ सभी प्रखंड मुख्यालयों पर मार्च निकालेगा गठबंधन। बिहार में 8 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, सभी जिला मुख्यालयों पर धरना। 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आज मतदान, बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव के लिए वोटिंग। तमिलनाडु की 2, पुडुचेरी की 1 सीट पर मतदान, असम की नागांव सीट पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव, बीजेपी और एसपी के बीच मुकाबला। चुनाव से पहले राज्यसभा सीट के जाते समीकरण सामने में जुटी बीजेपी, लिस्ट में 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय के नाम। अभी 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, जबकि एसपी बीएसपी के पास 1-1 सीट है। मायावती ने फिर भतीजे पर दिखाई दया, कहा सियासत के ससुर के संन्यास के बाद सुधर गए आकाश। बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर महागठबंधन में मतभेद, आरजेडी और लेफ्ट में सीटों को लेकर असहमति, आज नामांकन की आखिरी तारीख। बिहार एमएलसी चुनाव में 23 अक्टूबर को होंगे मतदान, 27 अक्टूबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। फडणवीस सरकार पर बरसे राहुल गांधी, बोले महाराष्ट्र के छात्र शिक्षा व्यवस्था और अन्याय से त्रस्त है। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई, अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है मामला। सुप्रीम कोर्ट मिले 3 नए जज, कोलोजियम की सिफारिश पर मुहर। आज भी आया स्थापना दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल, हिंडन एयरबेस पर दिखेगा वायुसेना का दमखम, 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा 94वां वायुसेना दिवस। पीएम मोदी 11 अक्टूबर को चेन्नई में करेंगे मेट्रो फेज 2 का लगभग 14 किलोमीटर पुनमल्ली वडापलानी सेक्शन का उद्घाटन, पुनमल्ली से पोरूर तक यात्रा ट्रेन से होगी। तमिलनाडु में चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी का संगठनात्मक मंथन, 7 अक्टूबर को सभी राजस्व जिला मुख्यालयों पर सेवा ज्योति रैलियां। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर से वापस भेजे गए 150 लोग।
बागडोगरा से बीएसएफ इन घुसपैठियों को भेजेगी सीमा पार, 7 अक्टूबर को एक कार्रवाई की तैयारी। पंजाब की मान सरकार पर चौतरफा वार, सीएमओ भ्रष्टाचार केस में जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी। बीजेपी ने ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वतखोरी की और लगातार हो रही हत्याओं पर मांगा जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में एचएल के 2000वें एयरो इंजन की डिलीवरी को करेंगे चिन्हित। एचएल कोरापुट में 218 करोड़ की लागत से शक्ति इंजन की दूसरी प्रोडक्शन लाइन की शुरुआत। ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए बढ़ेगी स्वदेशी इंजन उत्पादन क्षमता। आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा का बिहार के डीजीपी पद पर कार्यकाल बढ़ा। एमपीएससी अभ्यर्थियों का पुणे में जोरदार प्रदर्शन, परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और प्रशासनिक देरी को लेकर चेयरमैन विवेक भीमनवार और सचिव के इस्तीफे की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का 5 लाख मुआवजे का किया आदेश रद्द। खाद विषाक्तता की शिकायत पर एफडीए की कार्रवाई को जनहित में उचित माना। अकोला एफडीए की बड़ी कार्रवाई, अहमदाबाद से आया 1900 किलो कोया जब्त, 5 लाख रुपए के कोए पर कार्रवाई। प्रयागराज में होटल रेस्टोरेंट में बताना होगा किस तेल में बनाया खाना, शिकायत के क्यूआर कोड अनिवार्य। संगरूर में डीसी कार्यालय के तीसरे गेट पर किसान और पुलिस में झड़प, डीसी कार्यालय के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे किसान। महाराजगंज में करोड़ों रुपए खर्च कर भेजे गए वेंटिलेटर, कोरोना काल में पड़े पड़े खा रहे हैं धूल, सीएमओ का बयान, पाइपलाइन और संसाधनों की कमी के कारण काम नहीं आ रहे वेंटिलेटर। पटना में दरोगा अभ्यर्थियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां, एग्जाम रद्द के विरोध में हुआ प्रदर्शन। राम मंदिर की आंतरिक व्यवस्थाओं में बड़े प्रशासनिक बदलाव की तैयारी, व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, अनुशासित और आधुनिक बनाने की तैयारी। सभी कर्मचारी एजेंसी कर्मियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर सॉफ्टवेयर से निगरानी होगी। मंदिर परिसर में कर्मचारी की उपस्थिति के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लागू करने की तैयारी। करीब 40 नए स्थानों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, अलग अलग विभागों के कामकाज से तैयार की जाएगी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन पर जोर, चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था बदलेगी, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी गिनती। अयोध्या में 5 से 7 नवंबर तक भव्य दीपोत्सव, 33 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया रामनगरी अयोध्या का दौरा, विधि विधान से रामलला के दर्शन, सुख समृद्धि की कामना की। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर वतन लौटे भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी, टीम का स्वागत करने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे परिवार के लोग। बद्रीनाथ धाम यात्रा में टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड, इस साल अब तक 18,67,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी का नमो सेवा पथनाट्य अभियान मुंबई में प्रदेश अध्यक्ष रवीन चव्हाण ने की शुरुआत। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से किया दौरा, बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर सीएम ने की पीड़ितों से मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। बस्ती में 63 करोड़ रुपए का अटल आवासीय विद्यालय बना टापू, गंदे पानी से होकर क्लास जाने को मासूम बच्चे मजबूर। चमोली के घसतोली में आगे बर्फ की चादर, भारी बर्फबारी से बदला पूरा इलाका। घसतोली से देवताल तक बर्फ के आगोश में पहाड़ और सड़क, माणा पास के क्षेत्र में प्रकृति का दिखा अद्भुत नजारा। आजमगढ़ में दीवार गिरने से 5 साल की बच्ची की मौत, घटना का लाइव वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप। गुजरात के दाहोद में विधायक के घर फायर ब्रिगेड से सफाई का वीडियो वायरल, मामले को लेकर उठे सवाल। जमशेदपुर मोबाइल शोरूम में लूट की कोशिश, बैग में बम होने की धमकी, दुकानदार और ग्राहकों में मची दहशत। मुंबई में ऐतिहासिक बाणगंगा टैंक पर सैकड़ों मछलियां मृत मिली, बीएमसी ने स्थानीय लोगों और पुजारियों से बुलाई बैठक। बिजनौर में सीसीटीवी से बचने के लिए विग लगाकर चोरी करता शातिर चोर, पुलिस से खुलासा कर आरोपी को पकड़ा। अहमदाबाद में बेकाबू हुई कार, 180 डिग्री घूमने के बाद सर्विस रोड पर खड़ी कारों से टकराई, 3 गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में शौचालय में छिपकर बैठा किंग कोबरा, रेस्क्यू टीम ने समय रहते जंगल में छोड़ा। कोरबा में नामचीन रेस्टोरेंट में टॉयलेट में धोए जा रहे बर्तन का वीडियो वायरल, खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त नोटिस जारी। अलवर में टोल पर पैसे काटते हथियारबंद युवकों ने लाठी डंडों से किया टोल पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। हरिद्वार में पेट्रोल पंप पर टैक्सी चालकों में मारपीट, पुरानी रंजिश के चलते लिया बदला, आगे की जांच में जुट गई है पुलिस। दिल्ली के रजौरी गार्डन मार्केट में महिला पुलिसकर्मियों के साथ फुट पेट्रोलिंग में शामिल हुई एशियाई खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन। कैची धाम पहुंची सुपरहिट फिल्म हनुमान अंश की टीम, फिल्म की बंपर सफलता के बाद गदगद टीम ने बाबा के चरणों में शीश नवाए। मध्य प्रदेश मां शारदा की पावन नगरी मैहर में स्कूली बच्चों ने रचा इतिहास, 3,430 छात्राओं ने एक साथ पेश किया मनमोहक कथक नृत्य।
सामूहिक कथक नृत्य में एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। 9 मिनट 24 सेकंड लगातार हुई शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति। भारतीय सेना की रोमियो फोर्स की नेक पहल। पुंछ में दूर दराज पहाड़ी इलाकों में स्थित स्कूल के छात्रों ने बैठने के लिए उपलब्ध कराया मुफ्त वंश। साजिद खान की अगली कॉमेडी ड्रामा फिल्म में अक्षय कुमार और आर माधवन पहली बार साथ नजर आएंगे। फिल्म की स्टार कास्ट में दिशा पटानी और श्रिया सरन है शामिल। अनिल कपूर की फिल्म सूबेदार ने एशियन अकेडमी क्रिएटिव अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया। नए अंदाज में दिखेगी अमर अकबर एंटनी की कहानी। थ्री मंकीज नाम से अब्बास मस्तान की जोड़ी बनाएगी ये फिल्म। रश्मिका मंदाना महान कर्नाटक संगीत गायिका। एमएस सुबलक्ष्मी की बायोपिक एमएस लेगेसी ऑन स्क्रीन में मुख्य किरदार निभाएंगी। दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस फिल्म रामायण के प्रमोशन के लिए पहुंचे मुंबई। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्की में रूस का डबल अटैक। रेस्क्यू के दौरान रूसी सेना ने बरसाए बम। कई इमारतों में लगी आग। 3 की मौत 25 घायल। करेबियन सागर में अमेरिकी सेना का हमला। संदिग्ध ड्रग तस्करों की नाक को बनाया निशाना। 4 लोगों की मौत। जर्मन खुफिया एजेंसी के प्रमुख मार्टिन जेगर का बड़ा बयान। कहा जर्मनी को रूस के साथ हिंसक टकराव का खतरा। रूस लगातार साइबर ड्रोन हमलों के जरिए बना रहा है दबाव। फ्लाई दुबई विमान में हमले के बाद अब इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा फैसला। इजरायल आने वाले विदेशी उड़ानों की होगी सुरक्षा जांच। 7 अक्टूबर हमले में 3 साल पूरे होने पर यरूशलम में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने किया मध्यावधि चुनाव का ऐलान। 9 सितंबर को होगी वोटिंग। संसद में हाउसिंग बिल गिरने और देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद फैसला। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2026 का ऐलान। 3 वैज्ञानिकों को मेडिसिन का नोबेल। ट्रंप के बाद एलन मस्क ने एआई का नाम बदलने का किया ऐलान। मस्क ने कहा स्पेस एक्स एआई का नाम बदलकर स्पेस एक्स एसआई किया जाएगा। फ्रांस में खराब शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन। पेरिस समेत कई शहरों में सड़क पर उतरे हजारों छात्र। ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू ने आवास की तलाशी के वारंट को रद्द कराने के लिए दायर की याचिका। गुरुवार को होगी मामले की सुनवाई।

0: વ્યવહાર પર બનાવો કેસરી વ્યવહાર.
1: વિમલ બોલો જુમા કેસરી.
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा. अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया.
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद. लायन कश्मीर हनी,
2: असली शहद, असली स्वाद.
4: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें.
4: अब मैं आराम से चल पाता हूँ. कपीवा डायफ्री जूस.
6: यार लोन भूल गया. मैरी
7: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना.
8: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
6: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
8: स्मॉल working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
9: There's nothing small about
10: us. Ujjivan, nothing small about us.

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक दो तीन ठुमका लगाने बस।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
3: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है?
7: सर, गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
8: गैसो फास्ट 27%,
7: इनो 9.2%।
9: गड़बड़ है।
10: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
11: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
12: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
13: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
14: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
15: इट्स अ माही वे।
16: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
17: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: जो पंजाब में आज सरकार में है उनको लेकर कोर्ट में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने, उसमें दो जजेस के खंडपीठ ने, जस्टिस चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा एंड जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने एक पीआईएल पे ये निर्णय दिया है कि भगवंत मान जी के जो ओएसडी हैं और उनके जो करीबी लोग हैं, भ्रष्टाचार का आरोप जो ईडी के कारण उन पर लगा है, उस विषय पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच करे कि भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अरविंद केजरीवाल जी के खास हैं, उनके ओएसडी और भगवंत मान जी के खास लोगों द्वारा जिस प्रकार का घोटाला किया जा रहा था, आज पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने उस पर सीबीआई जांच को प्रोसीड करने के लिए कहा है और यह भी कहा है कि 2 महीनों के अंदर, लगभग 60 दिनों में सीबीआई इसे कंप्लीट करे और इसका रिपोर्ट सबमिट करे।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: इस बीच बड़ी खबर नाइजीरिया से, यहां पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। बेनिन सिटी में लागौस जा रही नाइजीरिया सैन्य विमान दक्षिण पश्चिमी ओंडो स्टेट में क्रैश हो गया है। हादसे में विमान सवार 32 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 25 यात्री और 7 क्रू मेंबर्स बताए जा रहे हैं। ये ATR-42 विमान नियमित मिशन पर था, तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का विमान से संपर्क टूट गया। बाद में तटीय शहर इगबोडो के पास विमान का मलबा मिला। नौ बज गए, मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार रोटी ठुमका लगाने बस।
4: मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए।

0: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: सियासी आरोप बेहिसाब है, लेकिन अदालत की चौखट तक जब आरोपों की फेहरिस्त पहुंची, तो उसमें यही कहा गया कि ज्ञानेश कुमार असंवैधानिक काम कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ने 14 एकतरफा फैसले लिए हैं। ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म 6 में अवैध तकनीकी बदलाव कर दिया, 14 करोड़ योग्य मतदाताओं का नाम हटा दिया, बंगाल में आयोग के नाम से 16 करोड़ 10 लाख अवैध अपीलें दाखिल कराई, इसीलिए उन्हें फौरन निलंबित कर दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनी, लेकिन ज्ञानेश कुमार के अंतरिम निलंबन पर कुछ नहीं कहा। याचिकाकर्ता ने कहा कि सीईसी संवैधानिक प्रावधान के विपरीत काम कर रहे हैं, एक तरफा फैसले ले रहे हैं। कोर्ट ने कहा, आप ये अखबार की रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा, चुनाव आयोग ने खबर का खंडन नहीं किया। कोर्ट ने कहा, खबर सही या गलत हो सकती है, लेकिन हम उस आधार पर आदेश पारित नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने कहा, इतने ऊंचे पद पर बैठा शख्स कानून का उल्लंघन कर रहा है। कोर्ट ने कहा, जब रिकॉर्ड पेश होगा तो देखेंगे फॉर्म 6 में तकनीकी बदलाव किसने किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि फॉर्म 6 में जो जुलाई 2026 में बदलाव किए गए हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई मंजूरी नहीं दी है। अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस देकर जवाब मांगा है, लेकिन जवाब की मियाद तय नहीं की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश भर में आंदोलन एक अखबार के खुलासे के बाद से हो रहा है, जिसमें पता चला कि आयोग के कई फैसले सर्वसम्मति से नहीं हुए और आरोपों की धुंध छटी, तो सबसे बड़ा मुद्दा फॉर्म 6 में अवैध बदलाव का सामने आया। विवाद फॉर्म 6 के साथ अनिवार्य किए गए इस घोषणा पत्र को लेकर है, जिसमें 12 जुलाई को सिर्फ डिजिटली बदलाव कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा है कि चुनाव आयोग ने ये असंवैधानिक बदलाव किए, क्योंकि अखबार ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु के हवाले से ऐसा खुलासा किया। सफाई में चुनाव आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 के साथ अटैच किए गए डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है और एसआईआर के बाद फिर वही पुराना सिर्फ फॉर्म 6 इस्तेमाल होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कहा है कि कोर्ट ने ऐसे किसी बदलाव को मंजूरी नहीं दी। दरअसल मामला 2 साल पहले बिहार एसआईआर के समय का है, तब आयोग ने एनेक्सर डी जोड़ा और उसे जरूरी बताया, उसमें गलत जानकारी पर 1 साल की सजा तक का प्रावधान था। इसके बाद 11 दस्तावेजों की अनिवार्यता पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहां सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई 2026 को साफ कहा कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग सिर्फ फॉर्म 6 तक ही सीमित नहीं है, उसके पास एसआईआर के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन के तरीके में बदलाव का अधिकार है, लेकिन आयोग को नियम कानून का ध्यान रखना होगा और बदलाव का तार्किक संबंध भी होना चाहिए। इसी आदेश को चुनाव आयोग फॉर्म 6 के साथ एनेक्सर डी को जोड़ने को वाजिब ठहरा रहा है, जबकि इस बीच एनेक्सर डी में एक ऐसा बदलाव हुआ जिस पर सवाल उठे। 12 जुलाई को चुनाव आयोग की वेबसाइट ईसीआई नेट पर डिक्लेरेशन एनेक्सर में बदलाव हुआ। माता पिता या दादा दादी के पिछले एसआईआर के ब्यौरे मांगे गए, वोटर कार्ड नंबर से लेकर क्षेत्र का नाम, बूथ नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर तक मांगे गए। दावा है कि इसी बदलाव पर चुनाव आयुक्त एसएस संधू ने आपत्ति जताई और इसे असंवैधानिक करार दिया था। दरअसल फॉर्म 6 यानी नए वोटर को दिक्कत ऑनलाइन फॉर्म भरने में हुई, क्योंकि नया एनेक्सर भरे बिना फॉर्म जमा नहीं हो सकता था। ऑफलाइन फॉर्म फिर भी जमा हो रहे थे। फॉर्म 6 के अंदर ये बदलाव जुलाई में हुए, जब देश के 13 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में पुराने डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ एसआईआर भी हो चुका था और फॉर्म 6 जमा भी हो चुके थे, यानी इन राज्यों के लिए चुनाव आयोग ने दूसरा पैमाना रखा और बाकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, इन 19 प्रदेशों में नए डिक्लेरेशन के साथ फॉर्म 6 के तहत नए वोटर का रजिस्ट्रेशन नियम फॉलो किया। एसआईआर की एक प्रक्रिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पैमाना अपनाने को लेकर सवाल उठे और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसले पर उठ रहा है। अब आयोग को बताना होगा कि मौजूदा एसआईआर के फॉर्म 6 में डिक्लेरेशन में दादा दादी के ब्योरे जोड़ने की अनिवार्यता किस तार्किक संबंध की कसौटी को कैसे पूरा करता है। संजय शर्मा।

0: दिल्ली आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

के खिलाफ इंडिया गठबंधन का आज प्रोटेस्ट मार्च, संसद के मकर द्वार से ईसी दफ्तर तक जाएगा विपक्ष। 146 से ज्यादा सांसदों के शामिल होने का दावा, चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। चुनाव आयोग के फॉर्म 6 में बदलाव पर घमासान तेज। सुप्रीम कोर्ट की दो टूक टिप्पणी के बाद राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी और सीईसी में सांठगांठ, बीजेपी का पलटवार, भ्रम फैला रहे हैं नेता विपक्ष। राज्यसभा के लिए नामांकन के आखिरी दिन आज पर्चा दाखिल करेंगे यूपी में बीजेपी के 8 उम्मीदवार। तीसरे प्रत्याशी को उतारने पर अखिलेश का पोस्ट, अब हमारी नजर 3 पर नहीं 403 पर है।

छात्रों का दोहरा आक्रोश, परीक्षा में धांधली पर एमपीएससी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन तेज। अपनी मांगों को लेकर नासिक से मुंबई पहुंचे सैकड़ों आदिवासी छात्र, राहुल गांधी का समर्थन। तीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर जारी है वोटिंग। बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर शुभेंदु की पहली परीक्षा।

0: स्वागत है। चुनावों में गड़बड़ी और मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के संग्राम का आज अगला चरण है। देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन और सियासी हमलों के बीच इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चाबंदी का पूरा खाका तैयार कर लिया और इसी कड़ी में आज संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च की तैयारी है। कुछ ही देर बाद इंडिया गठबंधन के सांसद संसद के मकर द्वार पर इकट्ठा होंगे और यहां से सांसदों का मार्च चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाएगा। एक और तैयारी मार्च के जरिए विपक्षी एकता की ताकत दिखाने की है, वहीं दूसरी ओर फॉर्म 6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सियासी तनातनी और बढ़ गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार पर फॉर्म 6 में गैर कानूनी तरीके से बदलाव का आरोप लगाया, जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को भ्रामक बताया है। अब विपक्ष के विरोध प्रदर्शन और मार्च की तैयारी के बीच सियासी संग्राम और भी बढ़ता जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इस बीच यूपी राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी तीसरा प्रत्याशी अब नहीं उतारेगी। नंबर गेम का आंकलन करने के बाद समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी न उतारने का फैसला कर दिया है। आज आखिरी दिन है प्रत्याशी का नामांकन भरने का और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो राज्यसभा के जो चुनाव है सीटों के लिए उसमें अपना तीसरा प्रत्याशी नहीं उतारने वाली है। आपको पहले से ही दो नाम का के बारे में जानकारी दे दी गई थी, लेकिन तीसरे नाम को लेकर लगातार एसपी अपनी तरफ से सरप्राइज कह रही थी कि कोई नाम आएगा जो कि सबके लिए सरप्राइज होगा, लेकिन ये लगता है कि अब अखिलेश यादव पीछे की तरफ हट गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव का। समर्थ, अखिलेश यादव आखिर क्यों नहीं अब तीसरा नाम उतार रहे हैं?
1: मिलाकर चैटर्जी समाजवादी पार्टी की समझ में जो आती है, कल रात तक पार्टी की ही तरफ से ये कहा जा रहा था कि तीसरा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी उतारेगी। पार्टी के ही कुछ विधायकों ने ये इस तरह के बयान भी दिए कि तीसरा नाम चौंकाने वाला होगा, लेकिन आज सुबह होते होते अखिलेश यादव की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया जाता है कि हमारी नजर तीसरे पर नहीं 403 पर है, जो साफ इशारा इस ओर है कि भाई तीसरा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी नहीं उतार रही है, बल्कि 403 विधानसभा सीटें ऐसे जीती जा सके उस पर जोर देने वाली है। तो बड़ी बात यहाँ पर यह है कि खबर यही है कि कुल मिलाकर तीसरा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी नहीं उतारने जा रही है। चर्चाएं थी तीसरे कैंडिडेट को लेकर, सरप्राइजिंग होगा ये भी लगातार पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था। कल रात तक आधिकारिक तौर पर पार्टी ये कह रही थी कि भाई आप जो है तीसरा कैंडिडेट हम उतार रहे हैं। समय भी जो है बताया गया था कि बीजेपी की उम्मीदवारी के बाद का समय ये होगा, लेकिन सुबह होते होते जो है ये निर्णय लिया गया है कि पार्टी तीसरा कैंडिडेट नहीं उतारेगी।
0: हमारे साथ बने रहे समर्थ, एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने कहा क्या है। उन्होंने जो लिखा है वो आपको बताते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी नजर 3 पर नहीं 403 पर है। तो ये अखिलेश यादव की तरफ से पोस्ट आया है। अब इसके मायने क्या है ये चलिए सीधा रुक करते हैं। इस वक्त बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, संबित पात्रा वहां बोल रहे हैं, सीधा वहीं रुक करते हैं।
2: कुछ विपक्षी दल खास करके कांग्रेस पार्टी यह कर रही है कि किस प्रकार से देश में सत्ता परिवर्तन किया जाए और बैठे बिठाए किस प्रकार राहुल गांधी को सत्तासीन किया जाए, उसके लिए भारत के लोकतंत्र पर प्रहार, भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार प्रायोजित रूप से किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का आरंभ कोई कुछ महीनों में नहीं हुआ है, कुछ वर्षों से यह प्रक्रिया चल रही है। आरंभ से ही कांग्रेस पार्टी की कोशिश बार बार रही है कि येन केन प्रकारेण कैसे भी राहुल गांधी को लॉन्च और रीलॉन्च किया जाए। बहुत कोशिशों के बावजूद जब राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पाए तो अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ सहयोगी दलों ने यह निर्णय लिया है कि भले ही अराजकता के माध्यम से राहुल गांधी को लॉन्च करना पड़े तो हम देश के लोकतंत्र पर प्रहार करेंगे, मगर किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को पॉलिटिकली लॉन्च करेंगे. इवन वी हैव टू अटैक द इंडियन डेमोक्रेसी एंड वी हैव टू एस्टैब्लिश एनार्की इन इंडिया, वी विल नॉट डेसिस्ट फ्रॉम दैट, बट इन एनी विच वे वी विल ट्राई टू लॉन्च राहुल गांधी. इस प्रक्रिया में समय समय पर इंडियन आर्मी पर अटैक हुआ, भारत के सुप्रीम कोर्ट पर अटैक हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल पर अटैक हुआ, इसमें भारत के हिंदुओं पर भी अटैक हुआ, ईवीएम मशीन पर अटैक हुआ, और अभी कुछ हफ्तों से कुछ महीनों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है. और हमें लगता है इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं. उनकी रैली हो उससे पहले एक राजनीतिक दल के रूप में हमारा यह दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है, पूरा विषय जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो क्या हो रहा है. कुछ दिनों से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर भ्रांतियां और फेक न्यूज फैलाया गया है. सुप्रीम कोर्ट में कल आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर एक याचिका एक पिटीशन दाखिल किया गया था, और उस याचिका का मुख्य डिमांड था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए, दैट ही शुड बी रिमूव्ड. कल नोटिस जारी हुई है, वो एक प्रक्रिया है कि दोनों पक्ष रहेंगे और उस पर सुनवाई होगी. मुख्य विषय कल से जो चल रहा है वो यह है कि मुख्य चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन या परिवर्तन किया है जो कि गैर कानूनी है, और इसलिए मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ एक अभियान चलाना है और उन्हें हटाना है. इस पूरे विषय को मैं आज समझाने वाला हूं कल, और क्यों समझाने वाला हूं यह भी बता रहा हूं. कल दोपहर बाद राहुल गांधी जी ने जब कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया और नोटिस इश्यू किया तो राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था. राहुल गांधी जी ने एक्स में कुछ कहा था. राहुल गांधी जी ने एक्स में क्या कहा था? राहुल गांधी जी ने एक्स में कहा था, नाउ इट इज एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट दैट ज्ञानेश कुमार चेंज्ड फॉर्म 6 इलीगली एंड यूनिलैटरली. दिस इज जस्ट वन मोर प्रूफ ऑफ हिम अब्यूजिंग हिज पोजिशन टू हेल्प द बीजेपी. He and everyone else involved in this criminal assault on our democracy will be held accountable. ये राहुल गांधी जी का ट्वीट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं. ये राहुल गांधी जी ने कल ट्वीट किया था, और उसके साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन के 26 सितंबर 2026 के इस प्रेस स्टेटमेंट को लगाया था. मैं इसमें आज आपके सामने एक एक करके राहुल गांधी की जो झूठ के पुलिंदे हैं उनको खोलूंगा. इस पूरे एक्स के पोस्ट में, इस ट्वीट में राहुल गांधी ने 4 भ्रामक शब्दों का, 4 फेक शब्दों का प्रयोग किया है. पहला, फॉर्म 6 हैज बीन चेंज्ड इलीगली. दूसरा, फॉर्म 6 चेंज्ड यूनिलैटरली. तीसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू हेल्प द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी. और चौथा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्रिमिनल असॉल्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी. क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी है और विपक्ष अर्थात राहुल गांधी कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी की सहायता की है इलेक्शन जीतने में, और हम एक स्टेक होल्डर हैं, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाएगी कि किस प्रकार से जनता से हम जीत कर आए हैं और किस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं. पहला है, इस पूरे विषय में आप यह भी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैक्ट चेक किया है, वह भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने भी इसको डिबंक किया है। मगर यह पूरा फॉर्म 6 का विषय कल से क्यों उठा है? कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक टिप्पणी की। वो टिप्पणी क्या थी फॉर्म 6 को लेकर, मैं पढ़ रहा हूं। वो टिप्पणी थी, एनी मॉडिफाइड फॉर्म 6 हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाई अस। लेट्स बी क्लियर, व्हेन द रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस्ड वी वुड लाइक टू सी हु हैज मॉडिफाइड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था। जब रिकॉर्ड में विषय आएगा तो हम देखेंगे कि क्या फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन हुआ। जिस प्रकार याचिका में था कि फॉर्म 6 इलीगल है, फॉर्म 6 को हटा दिया जाए, और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट सीजेआई द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। अब है राहुल गांधी जी का झूठ नंबर 1। झूठ नंबर 1 है फॉर्म 6 को लेकर कि फॉर्म 6 इलीगल है, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार की सुनवाई हुई और 26 सितंबर 2026 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अपना प्रेस स्टेटमेंट नंबर 120 जारी किया, उसमें इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन हुआ था उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट का समर्थन प्राप्त था, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट मॉडिफिकेशन। और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में उस पोर्शन को रेड में मार्क किया है, पॉइंट 3 को, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा, जो कि झूठ है। मगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो मैंने पढ़ा, और इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा वो मैं पढ़ देता हूं, जिसको राहुल गांधी ने अंडरलाइन किया है। द डिक्लेरेशन अटैच टू फॉर्म 6 फॉर SIR हैज बीन अपहेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर नॉन SIR पीरियड द फॉर्म्स एप्लीकेबल एज पर रूल्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 विल बी यूज्ड। द डिक्लेरेशन अटैच टू फॉर्म 6 फॉर SIR हैज बीन अपहेल्ड। फॉर्म 6 में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, एक डिक्लेरेशन अटैच्ड हुआ है उस फॉर्म 6 के साथ जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने इस डिक्लेरेशन को लेकर, इस अटैचमेंट को लेकर क्या कहा है, उस विषय में ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी मैं लेके आया हूं, वो पढ़ के सुनाऊंगा। ये 124 का जजमेंट है जो 27 मई 2026 को SIR के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी तो उसमें फॉर्म 6 के विषय में क्या कहा था और उसके साथ अटैच्ड डिक्लेरेशन के लिए क्या कहा था, मैं 3 जगह मार्किंग करके लाया हूं। उन 3 पन्नों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा वाक्यों को पढ़ता हूं। पहला पेज नंबर 110, पेज नंबर 57 आते हैं, फर्स्ट पेज 57, पेज नंबर 57 में क्या लिखा है आप देख सकते हैं, उसमें एक एफ क्लॉज है, एनी न्यू वोटर वॉज रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर्म 6 अलोंग विथ अ डिक्लेरेशन फॉर्म इन एनेक्सर डी ऑफ द इंप्यूज्ड ऑर्डर। कोई भी नया वोटर फॉर्म 6 के साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म देगा जो कि एनेक्सर डी में है, और ये ऑर्डर के किस अंतर्गत आता है, E1.1.2 स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिकॉर्डिंग रीजंस। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिकॉर्डिंग रीजंस में पॉइंट एफ पे स्पष्ट रूप से पेज नंबर 57 में ये कहा गया है। अब हम आते हैं पेज नंबर 110, पेज नंबर 110, पैराग्राफ नंबर 152, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, ये पैराग्राफ देख लीजिए, ये पैराग्राफ नंबर 152 है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है, इट इज ट्रू दैट फॉर्म 6 एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 sets out a framework of documentation. However, the same is tailored to the process of revision contemplated under Section 21(2) of the RP Act and may not in all situations be capable of literally application to an exercise of the present nature. The Commission therefore retains a degree of residual authority to formulate an appropriate documentation framework suited to the exigencies of a SIR. जो अभी SIR चल रहा है उसके लिए ये फॉर्म सिर्फ पर्याप्त नहीं हो सकता है सारे डाटा के लिए, इसलिए लिमिटेड पावर है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो उसमें कुछ एक्सीजेंसीज ऐड करे. द फॉर्मुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रजीम मस्ट दस रिफ्लेक्ट कैलिब्रेटेड बैलेंस इन ड्रॉइंग फ्रॉम द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क वाइल अडेप्टिंग इट वेयर नेसेसरी टू इफेक्टिवली सर्व the purpose of ensuring the accuracy and integrity of the electoral roll. Electoral roll ki safai ke liye, swachhata ke liye, agar aise addition ki avashyakta pade, to apne limited power ke andar ye election commission kar sakti hai. To yah Supreme Court ne khud apne order 152 mein kaha hai. Ab aate hain aakhri panna 124 ke 110ve panne par. पैराग्राफ नंबर 161 सुप्रीम कोर्ट कहती है अकॉर्डिंगली, सब कुछ सुनवाई करने के बाद, अकॉर्डिंगली वी होल्ड दैट द डॉक्यूमेंटेशन रजीम प्रेस्क्राइब्ड बाय द कमीशन रिप्रेजेंट्स अ कंसिडर्ड एक्सरसाइज ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रीशन इन फर्दरेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट. द क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन कैटेगरीज is based on intelligible criteria having a direct nexus with the objective of ensuring the integrity of the electoral roll. We are therefore unable to hold that the impugned documentation framework is arbitrary or violative of the statutory scheme. Supreme Court कहती है ये जो documentation format commission ने दिया है हम इससे कोई आपत्ति नहीं रखते हैं और हमें ये आर्बिटरी या इस पे किसी प्रकार का वायोलेटिव नेचर नहीं दिखता है. कहीं भी फॉर्म 6 को मॉडिफाई नहीं किया गया है, एक अटैचमेंट उसमें अटैच किया गया है जिसके विषय में मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट के 3 पैराग्राफ को पढ़ के सुनाया. अभी नोटिस गया है, सुनवाई भी नहीं हुई है. सीजीआई ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे. उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और झूठ और फरेब का माहौल, भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं. अब राहुल गांधी का झूठ नंबर दो है. उन्होंने एक तो कहा फॉर्म 6 इलीगल है, दूसरा उन्होंने कहा इसमें यूनानिमिटी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने एक साथ निर्णय नहीं लिया, तीनों कमिश्नर एक पेज पे नहीं थे. झूठ, राहुल गांधी झूठे हैं, क्योंकि 26 सितंबर 2026 को जो अपना 120वां प्रेस स्टेटमेंट था उसमें इलेक्शन कमीशन ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा द ऑर्डर फॉर SIR इन बिहार इश्यूड ऑन 24th जून 2025 वॉज इश्यूड विद द यूनानिमस अप्रूवल ऑफ द कमीशन. This order has been upheld by the Honorable Supreme Court of India in its judgment dated 27th May 2026. आप सब जानते हैं कि बहुत स्पष्टता के साथ एक प्रेस स्टेटमेंट आया था जिस प्रेस स्टेटमेंट में तीनों इलेक्शन कमिश्नर एक साथ बैठे थे. वो फोटो भी आपके सामने मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर वहां एक साथ बैठे थे और उसके बाद उन्होंने जारी किया ये प्रेस स्टेटमेंट. यह है, तीनों कमिश्नर एक साथ बैठे हैं और उसके बाद उन्होंने जारी किया है कि यूनानिमसली डिसीजन हुआ है, सबके हस्ताक्षर है. तो यहां राहुल गांधी दूसरा झूठ, दूसरी बार उन्होंने यहां भ्रम फैलाने की कोशिश की है. उसके बाद आप देखिए राहुल गांधी जी का झूठ नंबर तीन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू हेल्प बीजेपी. भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कमीशन हेल्प कर रही है. ज्ञानेश कुमार जी का अपॉइंटमेंट 19 फरवरी 2025 को हुआ। तीनों लोकसभा के इलेक्शन 14, 19 और 24 का इलेक्शन, अनेक राज्य और अनेक यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन उससे पहले हो चुके थे। यह सूची भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके समक्ष रखा है। तो यह कहना कि इलेक्शन कमीशन के कारण हम लोकसभा के चुनाव जीते हैं ज्ञानेश जी के कारण, यह सरासर गलत है, क्योंकि उनकी नियुक्ति 19 फरवरी 2025 को हुई है। इसी को मानते हुए जो राहुल जी ने कहा है, मैं राहुल जी से एक सवाल पूछता हूं। 2014 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उस समय वीएस संपत जी इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। क्या वीएस संपत, जिनका अपॉइंटमेंट 11 जून 2012 को हुआ था और जो जनवरी 15 2015 तक रहे कार्यरत, क्या उन्होंने, जिनका अपॉइंटमेंट यूपीए ने किया था, सोनिया जी ने किया था, क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद की और क्या उनके मदद से भारतीय जनता पार्टी जीती? इसका उत्तर कांग्रेस पार्टी दे। हमारी मदद ज्ञानेश जी नहीं कर रहे हैं, हमारी मदद गणेश जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मदद ज्ञानेश जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मदद गणेश जी कर रहे हैं। बुद्धि, विद्या, ज्ञान और विवेक के देवता गणेश जी। भारत के जनता के पास बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, और वो जानते हैं परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जो लोग आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, जो लोग कैप्टन स्मिथ के लिए एक ट्वीट तक नहीं कर सकते हैं, उनको वोट नहीं देना है। वोट देना है तो उसको देना है जिसने कहा है मैं देश नहीं झुकने दूंगा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट रहे। और राहुल गांधी का झूठ नंबर 4, क्रिमिनल असॉल्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। हमने क्रिमिनल असॉल्ट कर दिया है इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर। मैं दो चीजें इसमें दिखाना चाहूंगा। यह एक लिस्ट है, केवीके सुंदरम 1958 से 1967 तक ये इलेक्शन कमिश्नर रहे कांग्रेस के समय। बाद में इनको चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन बनाया गया, पद्म विभूषण दिया गया। क्या यह असॉल्ट था, क्रिमिनल असॉल्ट? नागेंद्र सिंह 1972 से 73 तक इलेक्शन कमिश्नर रहे, उनको कांग्रेस ने पद्म विभूषण दिया। क्या यह भारत के लोकतंत्र पर क्रिमिनल असॉल्ट था? आर के त्रिवेदी 1982 से 85 तक इलेक्शन कमिश्नर रहे, उनको पद्म भूषण दिया गया। बाद में कांग्रेस ने उन्हें गवर्नर बनाया। क्या यह क्रिमिनल असॉल्ट था इंडिया के डेमोक्रेसी पर? वी एस रमा देवी जी 1990 में इलेक्शन कमिश्नर थी, उनको गवर्नर बनाया कांग्रेस ने। क्या यह क्रिमिनल असॉल्ट था भारत के डेमोक्रेसी पे? टी एन सेशन 1990 से 1996 तक इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर थे, उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर 96 में 1996 में इलेक्शन लड़ा। क्या यह क्रिमिनल असॉल्ट था? एम एस गिल 1996 से 2001 तक इलेक्शन कमिश्नर रहे, वो राज्यसभा के मेंबर बने, बाद में मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर बने। क्या यह क्रिमिनल असॉल्ट था? जे एम लिंगडो 2001 से 2004 तक यह चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे और बाद में कांग्रेस ज्वाइन किए, क्या यह क्रिमिनल असॉल्ट था? एन गोपाल स्वामी जो 2006 से 2009 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, उन्हें पद्म भूषण दिया गया, क्या वो क्रिमिनल असॉल्ट था? या जिस प्रकार नवीन चावला जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सोनिया गांधी जी ने बनाया, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ उन्हीं के सरकार में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मैडम प्रेसिडेंट को, प्रतिभा पाटिल जी को, उनके खिलाफ लिखा था कि इस व्यक्ति का, नवीन चावला जी का, कांग्रेस के प्रति बायस है, जब ये वॉशरूम जाते हैं तो कांग्रेस को फोन करके सारा विषय बता देते हैं, उसके बावजूद भी उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर सोनिया गांधी जी ने बताया, वो क्रिमिनल असॉल्ट था। अंत में ईवीएम के ऊपर हमला किया है कांग्रेस के अध्यक्ष ने कि बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। 61A ये एक्ट कौन लेके आया था और ईवीएम देश में किसने इंट्रोड्यूस किया था? राजीव गांधी 61A लेके आए थे। राजीव गांधी जी ने 1989 में इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ईवीएम को देश में इंट्रोड्यूस किया था और 2004 में पहली बार ईवीएम द्वारा चुनाव कराया गया, क्या आज मार्च के दौरान राहुल गांधी राजीव गांधी डाउन डाउन का नारा लगाएंगे? और बैलॉट से, जहां तक बैलॉट पेपर का सवाल है, आप बैलॉट से चुनाव चाहते हैं? अभी अभी जब मैं बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, त्रिपुरा में विलेज कमिटी इलेक्शंस के नतीजे घोषित हुए हैं, अभी घोषित हुए हैं, बैलॉट पेपर पे चुनाव हुआ है, 4,597 सीट्स पे चुनाव हुआ है, नतीजे एनडीए 4,320 आउट ऑफ 4,597 विलेज कमिटी, कांग्रेस 14 आउट ऑफ 4,597 विलेज कमिटी बैलॉट पेपर पे। राहुल जी बैलॉट पेपर पे केवल 14 जीते हैं 5,000 में से, ये औकात है कांग्रेस पार्टी की, जनता ने आपको रिजेक्ट किया है। आखिर में मैं 10 सवाल आज राहुल गांधी जी से पूछता हूं और आशा करता हूं कि 10 सवाल का जवाब राहुल गांधी जी दे। एसआईआर का विरोध करते समय कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि जो 2.8 करोड़ मृतकों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, क्या उनको नहीं हटाया जाता? क्या मृतकों का नाम इसी प्रकार से सूची में रहने दिया जाता? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी वोट चोरी से सांसद बने हैं? वो खुद भी तो सांसद है। अगर हम वोट चोरी से सांसद बने हैं तो क्या वोट चोरी से वो भी सांसद बने हैं? क्या कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल की सरकार वोट चोरी से बनी है? क्या 1952 से 1914 तक 12 एसआईआर हुए, क्या यह 12 एसआईआर के बाद जो कांग्रेस की सरकार बनी वो अवैध सरकार थी? पांचवा सवाल, 6.8 लाख विपक्षी बूथ, जो विपक्षी बूथ लेवल के बीएलए थे, ये बीएलए ये कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे थे कि नाम डिलीट हो गया, हमें ये नाम ऐड करना है? इनके बीएलए क्या कर रहे थे? इनके बीएलए काम ना करे तो क्या हमारे बीएलए इनके लिए काम करे? छठा सवाल, 1993 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चयन केवल और केवल एक व्यक्ति करता था, उस समय के सरकार के प्रधानमंत्री, मतलब आप अपना पपेट बैठाते थे इलेक्शन कमीशन पे? इसका जवाब भी राहुल गांधी दे। विपक्ष जीते, खुद जीते तो निर्वाचन आयोग ठीक है, और हार जाए तो निर्वाचन आयोग हाय हाय और लोकतंत्र हाय हाय। क्या चुनावों का विरोध करके कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान में अराजकता फैलाने की प्रयास नहीं कर रही है? आज जो कर रही है कांग्रेस पार्टी, अराजकता और अनार्की फैलाने की कोशिश नहीं कर रही है क्या? नवा सवाल है, सही तरीके से राहुल जी अपने आत्मा पे, अपने हृदय पे हाथ रखकर जवाब दीजिए, क्या अराजकता फैला करके ये आपके रीलॉन्चिंग का प्रयास नहीं है क्या? खाट यात्रा, दो अच्छे लड़के, साइकिल यात्रा, ये सब फेल होने के बाद क्या आप अपनी रीलॉन्चिंग की कोशिश नहीं कर रहे हैं? और मैं अंतिम सवाल से अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करूंगा। अंतिम सवाल है कि राजीव गांधी ईवीएम लेकर आए थे, राजीव गांधी के खिलाफ हाय हाय के नारे आज लगेगा या नहीं लगेगा, इसका जवाब भी कांग्रेस पार्टी दे। मैं आखिरी में एक विषय आपको कहना चाहता हूं, ये जो बार बार लोगों को चिपकाने की कोशिश की गई है कि 13 करोड़ लोगों का नाम डिलीट करने की कोशिश एसआईआर में किया गया है। अभी मेरे को दिखाया गया है कि बीजेपी बैक्ड कैंडिडेट्स विन इन 11 हिमाचल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, अभी अभी हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो चुनाव होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव मैंने आपको त्रिपुरा का बताया, ये बैलेट पेपर पे होते हैं। अभी देखिए, बीजेपी बैक्ड कैंडिडेट्स विन इन 11 हिमाचल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ये किस प्रकार हुआ? बैलॉट पेपर से ही हुए ना, और अभी आपको त्रिपुरा का भी उदाहरण दिया था। मगर अंत में इसको ध्यान से सुन लिया जाए, यह एक कोशिश की जा रही है देश में भ्रम फैलाने की 13 करोड़ लोगों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। इसको चिपकाने की कोशिश की जा रही है। जब मतदाता पत्र का शुद्धिकरण होता है और उसमें 2.8 करोड़ लोगों को मृत पाया जाता है तो क्या मृत लोगों का नाम लिस्ट में होना चाहिए क्या? इसका जवाब दे कांग्रेस पार्टी। 3 करोड़ लोग अनुपस्थित हैं, जब बीएलओ जाते हैं तो वहां पर 3 करोड़ लोग अनुपस्थित है, क्या अनुपस्थित लोगों का नाम सूची में चढ़ना चाहिए क्या? क्या छापा वोट, बचपन में जितने आप बैठे हैं और हम बैठे हैं, लगभग हम उम्र हैं, आप थोड़े यंग हैं, बचपन में हमने देखा है बूथ रिगिंग क्या होता था, लठ लेकर किस प्रकार से मार करके एक व्यक्ति जाके सब बटन दबाता था या बैलॉट डालता था। छापा वोट बंगाल में क्या होता था ये हमने देखा है। आज छापा वोट नहीं है, आज लाठी के बल पर कोई बूथ में जाकर बैलॉट पेपर नहीं डाल सकता है, मृत आदमी के नाम पर आप और मैं जाकर वोट नहीं कर सकते हैं। क्या ये नहीं होना चाहिए शुद्धिकरण? 6.3 करोड़ लोग स्थायी रूप से स्थान बदल चुके हैं, मतदाता है। एक हमारी बहन है, वो शादी करके बिहार से यूपी जाती है, तो क्या उसका नाम बिहार से यूपी शिफ्ट नहीं होना चाहिए क्या? क्यों नहीं होना चाहिए? उसका अधिकार जहां है, अब वो अपने पति के घर गई है, वहां से वोट करेगी, उसका अधिकार वहां गया है। पहले आधार कार्ड में पिता का नाम था, अब पति का नाम है, आप उसमें कंफ्यूजन करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 करोड़ नाम डुप्लीकेट था, यहां भी मैं वोट दे रहा था, बिहार में भी वोट दे रहा था, अब वो 1 करोड़ नाम शुद्धिकरण कर दिया गया है, 2 राज्यों में आप वोट नहीं दे सकते हैं। क्या यह चीज सही है या नहीं है? शुद्धिकरण हो रहा है भारत के लोकतंत्र का। जो लोग शुद्धिकरण नहीं चाहते हैं वो मार्च करेंगे, जो लोग शुद्धिकरण चाहते हैं वो सही तरीके से वोट करेंगे और सही सरकार चुनेंगे। धन्यवाद, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें।
3: जी, आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं थोड़ी देर में संसद के मकर द्वार से जो विपक्ष है कांग्रेस की अगुवाई,
0: तो एक तरफ बीजेपी सिलसिलेवार तरीके से राहुल गांधी के आरोपों का जवाब आरोपों से दे रही है, तो दूसरी तरफ संसद में अब सांसद विपक्षी पार्टियों के जुटने शुरू हो गए। सीधा वहीं का रुख करते हैं जहां की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा वहां पर मौजूद है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हिमांशु, सांसदों की संख्या वहां पे, संख्या बल कैसा लग रहा है? 146 का दावा है, कितने लोग लग रहा है अंदाजन वहां पर जुट गए?
4: लगभग 70 से 80 सांसद जो है वो मकर द्वार पर संसद भवन के पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर में जो है ये सांसद जो है विपक्षी दल के ये यहाँ से जो है चुनाव आयोग तक जो है वो मार्च करेंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे ये नारे लगाए जा रहे हैं, वो चोर जो है वो ज्ञानेश कुमार है उनको इस्तीफा देना चाहिए और ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त वो जो है वो देश विरोधी है और कहीं ना कहीं अपोजिशन ये चाहती है कि इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा जिंदा रखा जाए। सबसे कुछ देर पहले हमने धर्मेंद्र कुमार यादव और इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद हैं उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि वोट चोरी जो है वो एक बड़ा मुद्दा हो गया है और ज्ञानेश कुमार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आप देखना ये है कि ये मामला क्योंकि कोर्ट में भी लंबित है और दूसरी तरफ जो है विपक्षी दल इसे संसद से सड़क तक लेके जाना चाहता है और इसीलिए आज मकर द्वार पर ये प्रदर्शन है और यहाँ से अब ये सांसद जो है आपसे कुछ देर में जो है वो चुनाव आयोग के लिए जाएंगे, जहाँ यहाँ से संसद भवन से इसकी दूरी जो चुनाव आयोग की है वो लगभग जो है वो 700 मीटर के करीब है। पिछली बार भी जब वोट चोरी के मामले पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया था और वो चुनाव आयोग जाना चाहते थे तब 20 सांसदों को परमिशन दी गई थी, लेकिन 20 की जगह पूरा विपक्ष चाहता था कि वो चुनाव आयोग से जाके मिले और तभी संसद मार्ग पर ही इन सांसदों को रोक दिया गया था। क्या इस बार भी उसी तरीके से इन सांसदों को रोका जाएगा? हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है वो राजीव शुक्ला है जो कांग्रेस के सांसद भी है। राजीव जी, क्या पूरा मामला है, क्यों आप लोग चाहते हैं कि ज्ञानेश कुमार जो है वो इस्तीफा दें?
0: हिमांशु, राजीव जी की आवाज नहीं आ पा रही है।
5: चुनाव आयोग की कोई हैसियत नहीं रहेगी। चुनाव आयोग ने दुरुपयोग शुरू कर दिया, संस्था की हैसियत नहीं रह गई।
6: इसके नारे के तले आप देख रहे हैं कि तमाम इंडिया ब्लॉक के सेव माय वोट, रिजाइन ज्ञानेश कुमार, इस तरह के नारों के तले आप इंडिया ब्लॉक तैयारी कर रहा है यहाँ मकर द्वार से आगे बढ़ने की, चुनाव आयोग की तरफ पीछे का वो रास्ता रहेगा जिसके जरिए चुनाव आयोग से वैसे तो दूरी संसद की मात्र 800 मीटर होगी, लेकिन ये फासला कितने घंटों में पाट पाता है इंडिया ब्लॉक, क्या दिल्ली पुलिस ये अनुमति देती है या धरना और डिटेंशन जिस तरह से पिछली बार भी देखने को मिला था अखिलेश यादव से लेके राहुल गांधी, खड़गे से लेके अभिषेक बैनर्जी, ये सब नेता यहाँ पे नजर आएंगे और अभी यहाँ पे जमावड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
0: तो ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं संसद भवन से, जहां पर अब सभी विपक्षी पार्टियों के नेता जुटने लगे हैं, जो जो समर्थन दे रहे हैं इस मोर्चे का। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, वो संसद भवन में ही मौजूद हैं जहां इस वक्त सांसद जुट रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हिमांशु, कौन सी पार्टियां हैं जो वहां पर मौजूद हैं और कौन सी पार्टियां हैं जिन्होंने दूरी बनाई है?
4: देखिए, बिल्कुल अभी तक समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है, डीएमके नहीं आई है, आम आदमी पार्टी नहीं है, टीएमसी है और अन्य दल भी जो है वो उस प्रोटेस्ट में उनके साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और डीएमके ने इस पूरे प्रोटेस्ट से जो है वो दूरी बनाई।
0: जी बिल्कुल, और ये बताएं कि क्या प्लानिंग है, अब कितनी देर में ये मार्च शुरू होगा? दूसरी बात ये कि क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई है, अगर आगे जाके रोका जाता है तो क्या प्लानिंग है इसकी?
4: जी बिल्कुल, आगे जाके अगर रोका जाएगा तो जरूर जाहिर तौर पर आप वो दृश्य देख सकते हैं, जैसा दृश्य पहले भी हम लोगों ने देखा है जब इस तरीके के प्रोटेस्ट हुए थे एसआईआर को लेकर, पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट होकर जाना चाहता था इलेक्शन कमीशन, लेकिन उनको नहीं लेके जाया गया और कुछ लोगों को, सांसदों को डिटेन किया गया था और डिटेन करके दिल्ली पुलिस जो है वो छत्रसाल स्टेडियम या अन्य स्थानों पर लेके गई थी। क्या इस बार भी कुछ इस तरीके का दृश्य होगा? लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष जो है ये लड़ाई सड़क से संसद तक लेके जाना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि इस लड़ाई के अंदर जो है जनता जो है वो विपक्ष के साथ नहीं है। जहां जहां वो चुनाव हार जाते हैं वहां वहां चुनाव आयोग पर जो है वो सवाल खड़े करते हैं, जब चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है, ये उनके इस तरीके से बयान।
0: हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि अब हमारे दूसरे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आज तक चप्पे चप्पे पर तैनात है ताकि आपको पूरे अपडेट्स लाके दिखा सके। ऐश्वर्या पालीवाल हैं जो कि ईसी दफ्तर जहां तक मार्च करने का प्लान है वहां पर मौजूद है। साथ ही हमारे साथ अमित भारद्वाज है जो कि ट्रांसपोर्ट भवन में मौजूद है। माना यह जा रहा है शायद वहां पूरा ईसी दफ्तर तक ना पहुंच पाए तो इसके आसपास उन्हें रोक दिया जाए, वहां पर भी हमारे संवाददाता तैनात हैं। तो रुक करते हैं इस वक्त, सबसे पहले आपका अमित, ये बताएं कि कोशिश क्या है दिल्ली पुलिस की कि किस तरीके से जब ये मार्च शुरू हो तो पहली बात उसे शांति वहां बनी रहे ये तय किया जाए, दूसरा इलेक्शन कमीशन के बाहर किसी तरह की अराजकता ना हो, कोई वहां पर हंगामा ना हो, इसके लिए क्या कोशिश रहेगी दिल्ली पुलिस की?
7: अंजलि, इस वक्त हमारे दर्शक संसद के अंदर से हिमांशु और मौसमी की जो रिपोर्ट थी वो देख रहे थे कि कैसे वहां विपक्षी सांसदों का जमावड़ा शुरू हो रहा है, लेकिन संसद से सड़क पे जब ट्रांजिशन होगा, सांसदों का आने का दौर शुरू होगा, तो वो ठीक इसी जगह पे पहुंचेंगे, ट्रांसपोर्ट भवन के साथ वाली सड़क से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मैं लोकेंद्र को कहूंगा कि एक बार पूरा डिटोर भी आपको दे तो समझ में आएगा आखिरकार हमारे दर्शकों को कि मूवमेंट कैसा होगा। तस्वीरें थोड़ी बदली है, आमतौर पर हम देखते थे कि यहीं पे हेवी बैरिकेडिंग होती थी और विपक्षी सांसदों को पीछे के पहले के मार्च में यहां तक रोक दिया जाता था, लेकिन जो पार्लियामेंट से लेके ट्रांसपोर्ट भवन होते हुए संसद भवन मार्ग तक जो गोलचक्कर तक का इलाका है वहां तक आपको कोई बड़ी बैरिकेडिंग नहीं दिखाई देगी। ये बदली हुई तस्वीर है, इसके पीछे दिल्ली पुलिस की क्या रणनीति है ये अपने आप में सोचने की बात है, लेकिन पहले क्या होता था कि यहां पे बहुत हेवी बैरिकेडिंग होती थी जिसके बाद विपक्षी सांसदों का मूवमेंट रुक जाता था। वो फिलहाल आपको नहीं दिखाई देगा। तो अनरिस्ट्रिक्टेड इस बार रखा गया है, क्या एक रणनीति के साथ है ये, ताकि ये मैसेज ना जाए कि विपक्ष सांसदों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, उनके मूवमेंट को कर्टेल किया जा रहा है। तो एक बदली हुई तस्वीर है, 20 जुलाई में इसी इलाके में हमने देखा था बड़ी संख्या में किस तरह से जो छात्र युवा प्रदर्शनकारी थे वो पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस को बहुत मुश्किल हुई थी उस वक्त सारी स्थिति को हैंडल करने में, लेकिन आज विपक्षी सांसद हैं तकरीबन जो जमावड़ा है इंडिया गठबंधन का, उसमें अगर आप डीएमके को माइनस कर दे तो सभी पार्टियां शामिल होने के लिए जा रही है। लेकिन जब आप संसद मार्ग वाले गोल चक्कर पे पहुंचेंगे तो वहां से मूवमेंट आगे हो पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आगे बहुत जबरदस्त बैरिकेडिंग और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की गई है। दाहिनी ओर अगर आप जाते हैं विट्ठल भाई सदन की तरफ तो वहां सिक्योरिटी है, अगर किसी बायलेन से कोई सांसद ईसीआई पहुंचने की कोशिश करेगा तो वहां भी बैरिकेडिंग करके उस सड़क को रोका गया है।
0: तो जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है। तो सीधा रुख करते हैं अब ऐश्वर्या पालीवाल का, क्योंकि वहां तक पहुंचना है सांसदों को, उनका गोल उनका टारगेट इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है। ऐश्वर्या, वहां पर किस तरह की तैयारी है, क्या काम रोजमर्रा की तरह चल रहा है या वहां पे असर दिख रहा है इस मार्च को लेकर?
8: देखिए अंजलि, मैं बता दूं, आपने सही बोला कि जो एंड गोल है वो है चुनाव आयोग की ये बिल्डिंग जो मेरे ठीक पीछे है। लेकिन उससे पहले बता दूं, ये अशोका रोड है और यहाँ पर आपको ये जो बैरिकेडिंग नजर आ रही है ये तैयारी की गई है। ये तैयारी इसीलिए की गई है ताकि अगर सांसद किसी तरीके से यहां तक पहुंचते हैं, ये जो बैरिकेड आपको यहां नजर आ रहे हैं, और देखिए आपको और भी दिखाती हूं, आरएएफ की टीम भी आपको यहां पर पीछे नजर आएगी। आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन रिस्पांस टीम, तो रैपिड एक्शन रिस्पांस टीम काफी भारी तादाद के अंदर यहां पर मौजूद है। हम जिस जगह पर खड़े हैं यही वो जगह है जहां से सांसद होके, या मैं ये कहूं कि कोशिश करेंगे कि यहां से चुनाव आयोग की बिल्डिंग के पास पहुंचे। देखिए सारी की सारी विपक्षी पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, उनका यह कहना है कि एसआईआर की पूरी जो प्रक्रिया की गई थी वो इसलिए की गई थी ताकि लोगों के नाम को हटाया जा सके, लोगों के नाम को ऐड ना किया जा सके। बैरिकेडिंग आपको नजर आ रही है, पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं, आरएएफ की टीम नजर आ रही है। तो इससे जो एक बात है जो एकदम साफ हो जाती है वो ये है कि अगर कुछ प्रोटेस्टर्स कोशिश करेंगे चुनाव आयोग तक आने की तो उनको रोक दिया जाएगा। चुनाव आयोग को इस समय एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कोशिश ये भी की जा रही है कि यहीं पर उनको रोका जा सके ताकि वो आगे चुनाव आयोग तक ना पहुंच सके। अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है और मेन टारगेट जो है चुनाव आयोग की बिल्डिंग, उसको इस समय अंजलि छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया।
0: और हिमांशु लगातार इस वक्त संसद में नजर आ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। हिमांशु, ये जो विरोध प्रदर्शन है ये कुछ अलग है। पिछला विरोध प्रदर्शन जो हम लोगों ने देखा हाल के दिनों में, उसमें आम लोग सड़कों पर थे, यहां सांसद होंगे, सब वीआईपी हैं, इनके लिए पुलिस का जो बंदोबस्त किया गया है वो उस तरीके से नहीं काम कर पाता है जब एक आम आदमी सड़क पर आ जाता है, जब वो झड़प करता है पुलिस वाले के साथ। तो आज जो हम देखेंगे वो किस तरह से अलग होगा एक आम प्रोटेस्ट से?
4: देखिए बिल्कुल अलग प्रोटेस्ट भी नजर आएगा, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में जो है,
0: हिमांशु आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, इस वक्त समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं।
9: एक मंत्री को बढ़ा लिया है बीजेपी के लोग, किस तरह संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं। संसद के 150-150 सांसदों को निष्कासित करके अलग अलग तरीके के कानून पास किए जा रहे हैं, बीजेपी किस मुंह से बात करती है? और जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग की सफाई चुनाव आयोग दे, बीजेपी कौन होती है सफाई देने वाली? आखिर हमला तो विपक्ष का चुनाव आयोग पर है, बीजेपी क्यों डिफेंस में आ रही है? डिफेंस में शायद इसीलिए आ रही है क्योंकि बीजेपी जो कहती है वही चुनाव आयोग करता है, चुनाव आयोग वही करता है जो बीजेपी चाहती है।
10: आज जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं, आप लोगों को लगता है कि आप लोग इलेक्शन कमीशन तक अपना मार्च ले जा पाएंगे?
9: बिल्कुल ले जाएंगे, पहले भी ले गए फिर ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे।
10: बैरिकेड पे चढ़ने की नौबत आएगी फिर से?
9: अब जो भी जरूरत होगी, और ये सिक्योरिटी के लोग भी देश के नागरिक हैं, उनको भी चिंता है देश के लोकतंत्र की, उनको भी चिंता है वोटर लिस्ट की, उनको भी चिंता है अपने ओपीएस की। तो मैं समझता हूँ जब लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी जाएगी तो शायद सारे लोग साथ देंगे।
10: इमरान भाई, आप लोग आज जो आप लोगों ने कॉल दिया है इंडिया ब्लॉक ने, क्या लगता है जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो तो बहुत ऐसे हैं कि इतना लगता नहीं है कि आप लोगों का मार्च इलेक्शन
11: के चारों तरफ एकदम दिल्ली के अंदर सील कर दिया है, किसी को आने नहीं दे रहे हैं। ये इमरजेंसी नहीं है तो और क्या है? एक संस्था ने जिसका विश्वास 70 साल से लोगों को, देश के लोगों ने करने का काम किया, उस पूरे विश्वास को एक व्यक्ति ने आकर के।
0: तो कैसा होता है यह मार्च, इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: सभी सांसद एक साथ मकर द्वार से जुटते हुए संसद भवन से निकलेंगे। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, तैयारियां हमारे सामने हैं इस वक्त, स्क्रीन पर पुलिस जो जुट रही है वहां पे वो भी नजर आ रही है, साथ में जो सांसद भी एकत्रित हो रहे हैं वो भी नजर आ रहे हैं। कब तक ये मार्च शुरू होगा, कौन कौन से बड़े नेता हैं जो वहां इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको?
2: बिल्कुल, राहुल गांधी जो है वो पहुंच गए हैं, प्रियंका गांधी है, सुप्रिया सुने हैं, उनके साथ साथ जो है संजय राउत से लेके तमाम लोग जो है वो सांसद पहुंच चुके और अब मार्च शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने खुद जो है वो पोस्टर दिया है जिसमें लिखा गैरेज एड की देखिये, बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और वो मार्च अब शुरू हो गया है। और अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से विपक्षी सांसद जो है एकजुट नजर आ रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो
1: जी बिल्कुल, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मार्च शुरू हो चुका है,
2: संभाला हुआ है जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटीज है, लेकिन
1: तो मार्च शुरू हो चुका है इस वक्त, सिक्योरिटी बहुत है। हिमांशु आप तक आवाज आ रही है?
2: राहुल गांधी जिन्होंने लिखा है कि जाने से डग गो, जी बिल्कुल।
1: तो कोशिश करेंगे हम अपने सहयोगियों के साथ जुड़ने की। हमें समझना होगा कि इस वक्त वहां इतनी भीड़ है, पुलिस वाले मौजूद हैं, वहां पर सांसद मौजूद हैं। ये बस कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सांसदों ने जुटना शुरू किया था। इसके बाद मार्च शुरू हो चुका है, जैसा कि हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे। वहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके थे जिसके बाद सभी सांसदों ने मिलकर आगे बढ़ना शुरू किया। विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं, वो सब मिलकर एक साथ अब संसद भवन से निर्वाचन सदन की तरफ रुख कर चुके हैं। वहां पर मौजूद अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी जो कि पास ही में ट्रांसपोर्ट भवन के पास मौजूद है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। संसद भवन से निकल चुके हैं सांसद, आपको क्या पता चल रहा है इस वक्त कहां तक मार्च पहुंचा? अमित,
3: अंजलि देखिए हम ठीक उसी दरवाजे पे खड़े हैं जहां से संसद मार्च कूच करना विपक्षी सांसदों को, दरवाजा खोल दिया गया है, आमतौर पर दरवाजा बंद रहता है और अब विपक्षी सांसदों के बाहर आने का दौर शुरू हो जाएगा। दिल्ली पुलिस की तख्तियां लिए संसद भवन से बाहर निकल रहे हैं और रास्ता अब ये जो कारवां है ट्रांसपोर्ट भवन से होते हुए संसद मार्ग गोल चक्कर तक पहुंचेगा जहां पर दिल्ली पुलिस ने हैवी बैरिकेडिंग की हुई है। तो इस वक्त देखिए हाथ में वोट लिए हुए बीजेपी ही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जयेश कुमार की तस्वीर को क्रॉस किए हुए
4: आगे बढ़ रहे हैं, सांसदों का आगे बढ़ता जा रहा है और अहम तस्वीरें हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद ही स्पष्ट हो गया था इस तरह का एक्शन यहाँ देखने वाला है। 10 तारीख को एक तरफ जहाँ बीजेपी का प्रोटेस्ट होने वाला है इस पूरे मसले पे, वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ
1: इस वक्त तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो सीधा इस मार्च की ही है। मार्च शुरू हो चुका है, भीड़ आगे बढ़ रही है लेकिन रास्ते में काफी विघ्न आएंगे, काफी अड़चने हैं, बाधाएं हैं क्योंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि संसद भवन से साथ चल चुके हैं मार्च के। हिमांशु क्या देख रहे हैं आप आसपास?
2: देखिए बिल्कुल, जो पार्लियामेंट के पार्लियामेंट सीट वाला जो सर्कल है वहां से जो है विपक्षी दल के सांसद जो है संसद भवन से निकलकर चुनाव आयोग की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि जो संसद मार्ग है अब यहां से जो दूरी है वो लगभग 500 मीटर की है चुनाव आयोग की। दिल्ली पुलिस क्योंकि पिछली बार उनको जो है ट्रांसपोर्ट भवन के पास ही रोक दिया गया था, लेकिन एक बड़ी चीज जो है इस पूरे प्रोटेस्ट में वो ये है कि बीजेडी पहली बार इंडिया ब्लॉक के साथ जो है वो प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है, और यही चीज है कि सभी विपक्षी दल जो है वो एकजुट।
5: चीफ जस्टिस क्लियरली सेड दैट वी हैव नॉट अप्रूव्ड एनी चेंजेस टू फॉर्म 6। ही सेड दैट वंस एंड दैट हैज बीन ब्रॉडकास्ट सेवरल टाइम्स।

0: साइड से बाहर निकले जिसको ट्रांसपोर्ट भवन गेट कहते हैं और यहाँ पे मार्च अब चल रहा है चुनाव आयोग की तरफ। ये देखना होगा कि क्या आगे ये लोग बढ़ पाते हैं, क्या दिल्ली पुलिस कोई लक्ष्मण रेखा जो है वो खींचती है यहाँ पे। आइए देखिए, जया बच्चन है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। जया जी, जया जी, कहाँ तक जाएंगे आप लोग? लगातार आप लोग का ये आंदोलन चलेगा?
1: अभी जब तक पैर चलेगा चलेगा, जब तक पैर चल सकता है चलेंगे।
0: आपको लगता है कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है आपका, चुनाव आयोग भेदभाव कर रहा है?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: जो सरकार ने सब कुछ लोगों के हकों छीन रहे हैं और आज जो आजादी के बाद हमको जो एडल्ट फ्रेंचाइज मिला था उसको खत्म करने का काम एक सरकार कर रही है और निर्वाचन से ये जो सीसी है ये तो कठपुतली है सरकार की। और जो मोदी और शाह कहते हैं वही ये करते हैं, इससे डेमोक्रेसी इस देश में खत्म होगी, संविधान खत्म होगा, हिटलर की हुकूमत आएगी और इससे पूरा जनता गुलामी में चले जाएगी। जो आजाद हुए लोग उनको फिर आप गुलामी में डाल रहे हैं, इसीलिए हम सब लोग इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, हम हासिल करेंगे और आप सभी को ये करेंगे।
3: लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें इंडिया ब्लॉक का जबरदस्त प्रदर्शन उनका, ये मार्च इस समय जो कि चुनाव आयोग के दफ्तर तक उनका ये मार्च है। प्रियंका गांधी बॉर्डर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी खासे हमलावर दिखाई दिए और ये मार्च अब चल रहा है। मांग एक ही है, एसआईआर रोकी जानी चाहिए, मांग ये है कि ज्ञानेश कुमार को नया इस्तीफा देना चाहिए।
4: बिल्कुल, और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के अलावा जो फॉर्म 6 को लेकर विवाद है उसे लेकर भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तीन मांगे दरअसल है विपक्ष की जिसको लेकर आज 10:30 बजे का ये मार्च बुलाया गया। देखना दिलचस्प होगा कहां जाकर ये मार्च रुकता है क्योंकि जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है और पिछली गलतियों से सबक लेते हुए हर तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा कि ये मार्च लंबा ना चले।
3: ये तस्वीरें देख रहे हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर लगातार हैं और मौसमी करो करते हैं। मौसमी, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीर क्या है इस समय? मौसमी तक शायद आवाज नहीं हो,
0: बिल्डिंग के बाहर है। यहाँ पे तमाम इंडिया ब्लॉक के सांसद पहुंच गए हैं और ये देखिए आप ये तस्वीर संजीव यहीं से दिखाइए, पूरी रोड किस तरीके से सांसदों से भरी हुई है इंडिया ब्लॉक के और नारेबाजी हो रही है। अखिलेश यादव यहाँ पे नजर आ रहे हैं, हालांकि भीड़ में उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा, कोशिश करते हैं यहाँ पे।
5: अब सुनते हैं
0: अखिलेश यादव को, कोशिश करेंगे बात करने की। अखिलेश यादव यहाँ भीड़ में, आप देखिए लाल टोपी आपको नजर आ रही होगी, पूरी भीड़ है यहाँ पे और आगे यहाँ पे प्रियंका गांधी राहुल गांधी चल पड़े हैं। एक पीडीए का जो नारा है वो भी यहाँ पे नजर आ जाता है और अखिलेश यादव यहाँ पे तमाम अपने सांसदों के साथ, हालांकि थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के एक गुट आगे चल रहा है और जाहिर तौर से मीडिया से घिरे हुए तमाम नेता इंटरव्यू भी दे रहे हैं, पर पुलिस की बैरिकेड नहीं है यहाँ पे। पिछली बार हमने देखा था इसी जगह पे पुलिस की बैरिकेड नजर आई थी जिसको अखिलेश यादव ने लांगा भी था। अब यहाँ पे देखिए आप, हालांकि बसें यू नजर आएंगी जो कि डिटेन करने के लिए रखी जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग नहीं है और लगातार अब काफिला चुनाव आयोग से लगभग 300 मीटर की दूरी पर पहुंच गया है, उसी रास्ते से जो रास्ता उन्होंने पिछले एक साल पहले बांटा था। और यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आइए संजीव आगे कितने आगे जाता है, हम लोग कोशिश करते हैं। राहुल गांधी बिल्कुल आगे पहुंच गए, कुछ लोग यू देखिए जो सांसद हैं जो पैदल नहीं चल सकते, दिक्कत है, तकलीफ है, उनको कार्ड भी मुहैया कराई गई है। तो एक तरह से दिल्ली पुलिस की रणनीति सांसदों को ऐसा नहीं है कि संसद परिसर के बाहर ही रोक देने की है, यहाँ बड़ा पिछली बार से इतर देखा जा रहा है।

0: की बैरिकेडिंग इस जगह पर नहीं है और लगभग 300-500 मीटर सांसद इंडिया ब्लॉक के अब चल चुके हैं चुनाव आयोग की ओर। आइए आगे चलते हैं।
1: मौसमी सिंह वहां का हाल बता रही थी कि पीडे का भी बीच में नारा दिया जा रहा है। आवाज आ रही है आपकी मौसमी, वापस लौटेंगे। इस बीच प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हमें दिखाई दे रहे हैं इस मार्च में आगे की ओर बढ़ते हुए, तमाम अन्य दल भी हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस मार्च से दूरी बना रखी है। मौसमी सिंह लगातार कवरेज कर रही है और कोशिश कर रही है कि वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचा सके। मकर द्वार पर आज सभी को इकट्ठा होना था। कुछ ऐसे दक्षिण के दल हैं जो इस मार्च से दूरी बनाए हुए हैं, हालांकि कितना एकजुट पक्ष इसमें होता है इसी से इस मार्च का प्रभाव और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है।
2: अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से दूर थे जिससे खलबली मची थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव आए, लाल टोपी का एक सागर से दिखाई दे रहे हैं। मौसमी इस समय ग्राउंड जीरो पर। मौसमी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लग रहा था कि बैरिकेडिंग होगी, जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहां तो पुलिस की स्ट्रेटेजी है, कैसी स्ट्रेटेजी है कि जाने दिया जा रहा है मौसमी?
0: बिल्कुल, देखिए आपको बता कि रफी मार्ग रास्ता जाता है आकाशवाणी भवन, उसके सामने ये पूरा काफिला अब रुक गया है। पीछे अखिलेश यादव की भी टोली आ रही है, यहाँ कई कार रुकी है और यहीं पर धरने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बैठ गए हैं क्योंकि इसके आगे बैरिकेडिंग है। और यहाँ पे आप देखिए संजीव हाइट देखे आप, मैं पकड़ती हूँ, आप दिखाइए, ये ट्राइपॉड ऊपर कर रहे हैं, आपको हाइट से हम लोग दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन अभी ग्राउंड पे है। और ये देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है कि तमाम सांसद जमीन पर बैठ गए हैं, कभी विजय चौक पे, कभी पीटीआई पे, कभी प्रधानमंत्री आवास के बाहर, और कभी इस तरीके से आप देखिए आकाशवाणी भवन के बाहर चुनाव आयोग से महज 100 मीटर की दूरी। संजीव जरा पीछे दिखाइए, उसके आगे बैरिकेड है, वज्रवान से लेके टियर गैस, यहाँ ड्रोन भी चल रहा है, यानी कि ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। और राहुल गांधी प्रियंका गांधी बताया जा रहा है यहीं पर बैठ गए हैं और बात करने की कोशिश करेंगे नेताओं से और दिखाएंगे आपको ये तस्वीर। संजीव देखिए पुतला, यह आरएसएस का ज्ञानेश कुमार का पुतला यहाँ पे आरएसएस की वेशभूषा में, और कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के सांसद कुछ इस तरह से घिराव करके यहाँ आकाशवाणी भवन में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। संजीव पीछे आइए, अखिलेश यादव से बात करेंगे। अखिलेश यादव से आइए, अखिलेश जी से बात करते हैं। सर तरफ से बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि जहां जहां अखिलेश चलते हैं लोगों का रेला और मेला बहुत ज्यादा हो जाता है। पीछे रेला
1: मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, जहां पर आपकी मौजूदगी है क्या देख पा रहे हैं आप? हम देख रहे हैं कि अब सभी सड़क पर बैठ गए हैं, एक जगह बैठकर ताली बजाकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या यही प्लान था या फिर इसमें कोई तब्दीली की गई है?
3: जी बिल्कुल नहीं है, इस वक्त इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं उनको नीति आयोग के दफ्तर के बाहर रोक दिया गया है। पुलिस ने काफी भारी मात्रा में बैरिकेडिंग कर दी है। मैं एक तो तस्वीर दिखाऊं आपको, आप भी तस्वीरें देख सकते हैं कैसे यहां पर केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी दो जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के वो फिलहाल यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी सांसद कांग्रेस पार्टी के वो सड़कों पर ही बैठ गए और लगातार ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। हम देख सकते हैं लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो तख्तियां हैं वो लेकर यहाँ पर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साथ साथ राहुल गांधी का जो सांसद है वो यहाँ पर भी बैठ गए हैं। तो इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने अब सड़क पर ही धरना देना शुरू कर दिया है। सीधी तस्वीर है इस वक्त नीति आयोग के दफ्तर के ठीक बाहर। अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंच गए और एक ये सामूहिक प्रदर्शन इस वक्त इंडिया ब्लॉक का यहाँ पर देखा जा सकता है, जो गणेश कुमार के खिलाफ लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अरविंद सावंत जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो सभी जो इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि गणेश कुमार इस्तीफा हो। दिल्ली के नीति आयोग से और इलेक्शन कमीशन का जो मुख्यालय है वो यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर है। राहुल गांधी की तस्वीर आप देखिए, उसको पूरा मैनेज करने की
1: मौसमी सिंह मेरी सहयोगी भी जुड़ी हुई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, देखिए काफी धक्का मुक्की चल रही है वहां पर और प्रशासन और पुलिस ये सुनिश्चित कर रहा है कि मार्च आगे ना बढ़ पाए। ऐसे में एक ही जगह पर बैठकर कब तक धरना दिया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल काम है, आज गर्मी भी ज्यादा है।
0: सॉरी सर, देखिए हम आकाशवाणी भवन पे खड़े हैं इस वक्त और आप देखिए कि पीछे ये तस्वीर नजर आ रही है जहाँ पे यही बैठ गए हैं सारे इंडिया ब्लॉक के सांसद, यानी कि लगभग 500 मीटर की दूरी होगी संसद परिसर से। 200 मीटर आगे चुनाव आयोग के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सारे नेता यहीं पे बैठे हुए हैं। और आइए बात करते हैं हमारे साथ इकरा हसन। इकरा, इकरा प्लीज इधर आ जाइए। तो आइए विवेक तनखा से बात करते हैं। विवेक जी, ये किस मोड़ पे आपको लगता है ये आंदोलन खड़ा है, क्या ज्ञानेश कुमार की सिचुएशन अनटेनेबल?
4: देखिए, देश पूरा देश सड़क पे जस्टिस के लिए आ चुका है। जब तक संविधान की रक्षा नहीं होगी, कानून की दुनिया रिस्टोर नहीं होगी, तब तक ये सड़क खाली नहीं होगी। और सेफ डेमोक्रेसी डे है आज, और मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से फॉर्म 6 का मिसयूज हुआ, झूठे रूप में मिसयूज हुआ, फरेब करके मिसयूज हुआ, जिस तरह से फॉर्म 7 का यूज हो रहा है लोगों को डिलीट करने के लिए, बहुत बड़ी साजिश है।
0: बहुत बड़े वकील हैं, फैक्ट चेक किया है ईसीआई ने राहुल गांधी को और कहा है कि गलत कह रहे हैं राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मना नहीं
4: बुला रहे हैं
0: सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मना
4: नहीं सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया। देश का कानून तो आप लागू करोगे, हम तो कह रहे इसकी कानून से चलो और इन इन एक्सपोज करो जो उस कानून को यूज करके बीजेपी को अटैच दे रहे हैं।
0: तो यहाँ पे आप ये देखते हैं, भीतर जाने की कोशिश करते हैं और जरा दिखाते हैं, विवेक तनखा जी को भी बुला हुआ आया है अंदर से। अब ये तस्वीर संजीव आप हाइट देख के दिखाएं, क्योंकि केओस है पर हमें दर्शकों को साफ तस्वीर 360 डिग्री दिखानी है। दाहिने हाथ पे आप देखिए कि इंडिया ब्लॉक के आपको दिख रहा है जियाउर रहमान बर्ग जो है वो वहाँ पे खड़े हुए हैं गाड़ी के ऊपर। वहाँ राजीव राय लाल टोपी नजर आ रही है, थोड़ा सा डिवाइडर इस तरफ चले आ रही है। तो यहाँ पे कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, अभिषेक बनर्जी
5: हैं। तो बीजेपी क्यों आ रही है सामने,
6: रिलॉन्च करा जा रहा है, ये बीजेपी कही है, कही कह रही
5: हमें ये बताइए। हम आरोप ज्ञानेश गुप्ता पर लगा रहे हैं, जब आप बीजेपी दे रही है, रिश्ता क्या कहलाता है?
2: तो पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो कह रहे हैं कि हम सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, हम सवाल पूछ रहे हैं ज्ञानेश कुमार से, जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन 5 कैमरों से इस समय आप प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। अमित भारद्वाज भी हमारे संवाददाता इस समय ग्राउंड जीरो पर। अमित, आप जिस जगह पर मौजूद है वहां से तस्वीरें दिखाएं।
7: देखिए, एक तरफ राहुल गांधी जो सीनियर नेता हैं विपक्ष के, उनको लेकर आकाशवाणी भवन के बाहर बैठ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो युवा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने जमीन पे बैठने के बजाय बैरिकेड्स पर मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। ये पहला बैरिकेड है जो दिल्ली पुलिस ने लगाया है और देखिए उन बैरिकेड्स के ऊपर आपको धर्मेंद्र यादव दिखाई देंगे। बीजेपी ही सीसी है कि तख्ती के धर्मेंद्र यादव खड़े दिखाई दे रहे हैं बैरिकेड पे। संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान वर्क, वो हैं राजीव राय, ये दिख रहे हैं। इसके साथ साथ जो युवा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो बैरिकेड्स पे चढ़े हुए हैं। कोशिश ये भी हो रही है कि जो सीनियर नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनको भी बैरिकेड पे किसी तरह से पहुंचाया जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है कि एक तरफ राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं को, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, डी राजा हो, इन सभी लोगों को जमीन पर बिठाया है, आकाशवाणी भवन के बाहर धरना शुरू हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एनर्जी दिखाते रहने के लिए, विजुअल्स के लिए समाजवादी पार्टी के युवा सांसदों ने धरने पर ही अपनी नाकेबंदी कर दी है। दूसरी तरफ आपको दिल्ली पुलिस की जो जवान है वो तैनात दिखाई देंगे। ये पहला बैरिकेड है, मैं आपको बता दूं, लगभग 400 मीटर बाद, पार्लियामेंट के 400 मीटर बाद ये पहला बैरिकेडिंग है जिसमें विपक्षी सांसदों को रोका गया है। ये बदला हुआ मिजाज भी है दिल्ली का, जहां पे पहले के प्रदर्शनों में हम देखते थे कि आगे की तरफ ही बैरिकेड्स लगाकर विपक्षी सांसदों को रोक,
8: किसको नहीं दिखाई देता है। और यूपी के बाई इलेक्शंस ने बताया है कि किस तरह चोरी हुई। ये चंडीगढ़ चाल कौन भूल जाएगा, ये चंडीगढ़ चाल तो दिख रही है आपको, और दूसरी रिवॉल्वर भी दिख रही होगी कि किस तरीके से बोट को रोका जा रहा था। क्या फायदा अरे स्वाभाविक है, इस्तीफा नहीं, जनता इन्हें हटा देगी।
9: सड़कों पर एक बार फिर आप लोग मांग ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की, आपको लगता है कि जल्द ये इस्तीफा होगा या इसी तरह आप लोग सड़कों पर आएंगे?
1: तो जल्द इस्तीफा होगा ज्ञानेश कुमार का, ऐसा समाजवादी पार्टी का मानना है। उनका कहना है कि जनता इन्हें हटा देगी, उनकी मांगे अनसुनी नहीं की जाएंगी। जिस तरीके से धांधली की गई है, सांठगांठ है सरकार और चुनाव आयोग के बीच, जाहिर तौर पर फॉर्म 6 को लेकर भी लगातार गुस्सा जारी है, फॉर्म 7 लेकर आए हैं उसको लेकर भी विपक्ष ने अपनी नाराजगी जाहिर की है।
2: लेकिन इस समय दिल्ली की सड़कों पर यह जबरदस्त हंगामा, ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, और हमारे संवाददाता अमित भी इस समय ग्राउंड जीरो पर। अमित, क्या चल रहा है, कितनी देर तक ये प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि प्लानिंग तो आयोग तक जाने की थी लेकिन अब वहां धरने पर बैठे हैं, कितनी देर चलेगा धरना?
1: पीयूष, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ।
10: बॉटल्स भी लाई गई है ताकि धरना ये लगातार रहे, यानी तैयारी पूरी है। और अब यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पानी की बॉटल यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के सांसदों को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर पानी की बॉटल जो है वो अब सांसदों को बांटी जा रही है, यानी कि लंबा धरना प्रदर्शन। यहाँ पर मेरे सामने 3 पैकेट्स जो है वाटर बॉटल्स की वो यहाँ पर पहुंची हैं, और ये सारी बॉटल्स सांसदों को बांटी जा रही है ताकि धरना लंबा रहे। यानी कि फिलहाल पानी के इंतजाम अखिलेश यादव देखिए सामने बैठे हुए हैं और उनके सांसद उनके साथ बैठे हैं, प्रियंका गांधी ठीक पीछे उनके खड़ी हैं, और इस पूरे इंडिया ब्लॉक को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा। और आप देखिए ये तस्वीरें, एक तरफ जैसे गैरी गोब्रांड पहुंचे हैं उनको समझाते हुए, उनसे बात करते हुए, फिलहाल राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि आप अंदर आके बैठ जाइए। तो ये तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर इंडिया ब्लॉक का धरना प्रदर्शन
9: बताता है। राहुल भैया, राहुल भैया
10: क्या हो गया भाई, क्या कर रहे ना भाई?
8: बैंडवी के बाई इलेक्शंस ने बताया है कि किस तरह चोरी हुई। ये
9: चंद्रेश कुमार का इस्तीफा अगर हो जाएगा तो सब कुछ
11: नहीं, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा तो एक बहुत छोटी चीज है। देखिए क्या निकल कर आया है, ये बात निकल कर आ गई कि ये तो पहले से था कि बीजेपी की चोरों की सरकार थी, अब ये पता चल गया कि अब ये चोरी की सरकार है। चोरी की सरकार को कोई नैतिकता नहीं है बनने की, मुझे लगता है, और मैं तो खैर विपक्ष का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है अब तो यही करना चाहिए कि ये सरकार बर्खास्त हो और फिर से लोकसभा के चुनाव हो, और कोई तरीका नहीं है। ये सरकार अनैतिक चोरी के तरीके से सरकार बनी, क्योंकि अगर सही चुनाव हुए होते कोई जीतता, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, हम चाहते हैं हम जीते, जनता किसी और को जिताए, वो जनता किसी और को जिता सकती है। लेकिन अगर ये पता चल जाता है कि इस तरीके की बड़ी धांधली हुई, और आप वोटर से पूछिए ना, मैं एक चीज़ बताऊं, जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं वर्दी में भी, जो लोग हमको डायरेक्शन दे रहे हैं, उनको भी पूछो कि तुम्हारा वोट सही पड़ा था, तो कहेंगे नहीं आज मुझे शक है। तो जब शक की बुनियाद सबसे पहली कमजोरी होती है लोकतंत्र की, और हम अपने लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर सकते।
9: पर राज्यों में तो आप लोगों की भी सरकार हाल में बनी है, वो भी आप
11: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं देखिए साहब, ऐसा है, ये बहुत तरीका होता है। ये पंजाब में थोड़ी जीत सकते हैं, ये तमिलनाडु में थोड़ी जीत सकते हैं, ये केरला में थोड़ी जीत सकते हैं। कहाँ था जहाँ निकल सकते थे? महाराष्ट्र निकल गए ना। तो देखो, आप ये मत समझिए कि ये कोई ऊपर जो बैठे हैं कोई महाबेवकूफ हैं, या कोई छोटे नर्सरी के बच्चे हैं कि 540 में से 540 सीटें निकाल लेंगे। सबको पता है कि उन सीटों पर ज़्यादा गड़बड़ी होती है जो मार्जिन्स की होती हैं। अगर आप कहीं 3 लाख से हार रहे हो तो कौन सा SIR आपको बचा लेगा? लेकिन जहाँ 3,000 से हार रहे हो, 30,000 से हार रहे हो, वहाँ तो मामला गड़बड़ बनता ही है ना।
1: पीयूष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, क्या देख पा रहे हैं आप, और इस वक्त धरना किस मकाम पर रुक गया है? क्योंकि बताया जा रहा है कि एक पॉइंट के बाद ये धरना और ये प्रदर्शन आगे बढ़ ही नहीं सकता है।
2: पीयूष, आवाज आ रही है आपको? लगता है कि आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। मौसमी भी हमारे साथ जुड़ी है। मौसमी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप बताएं कि अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, और क्या कोई प्रस्ताव, कोई देने का कोई प्लान है, कोई ज्ञापन देंगे या नहीं?
1: ठीक है, हम अपने संवाददाता तक चलेंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। CEC के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है, क्योंकि लगातार वहां पर ये जो विपक्षी दल है एकजुट होकर ये बताना चाहते हैं कि कम से कम इस मुद्दे पर उनकी आवाज बुलंद है और एकजुट है, हालांकि आम आदमी पार्टी का साथ उन्हें नहीं मिला है।
2: और पीयूष हमारे साथ फिर से जुड़ गए, लग रहा है पीयूष जैनर एक्टिवेट है, इसलिए बड़ी मुश्किल हो रही है कनेक्ट करने में। लेकिन अभी मौजूदा तस्वीरें दिखाएं, बताएं क्या चल रहा है।
7: बिल्कुल राजीव, इस वक्त हमारी मौजूदगी नीति आयोग के दफ्तर के पास है, और नीति आयोग के ठीक सामने इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद सड़क पर ही धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, और कुछ सांसद तो देखिए जो बैरिकेड है उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद ज्यादातर जो है वो बैरिकेड पर चढ़कर बैठ गए, और कोशिश करेंगे कि जो बैरिकेड पर चढ़ गए हैं सांसद उनसे बात करने की कोशिश करें। राजीव राय जो है वो बैठे हुए हैं, और देखिए राजीव राय के साथ जो बाकी जो सांसद हैं अखिल समाजवादी पार्टी के, वो सभी यहाँ पर बैठ गए और लगातार वोट नदी छोड़ इस तरह के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो नारेबाजी पूरी तरह से यहाँ पर की जा रही है, और वोट चोर गद्दी छोड़ इस तरह की बात सांसदों के द्वारा कही जा रही है। राजीव राय फिलहाल उतर गए हैं बैरिकेड पर, आप ऊपर चढ़ गए थे क्या?
12: हम इनको दिखाना चाहते थे कि हमारे कोई बाधा रोक नहीं सकती, और समाजवादी जब सड़कों पर हो, देश की जनता सड़कों पर हो, तो उनको रोक पाना। अब इस तानाशाह सरकार, वोट चोर सरकार जो आपके अधिकार को छीन रही है, हम लड़ाई आपकी लड़ाई, उसको रोकना भी इनके बस की बात नहीं है।
7: हाथ में एक तख्ती जिस पर लिखा है चुनाव आयोग भेदभाव कर रहा है, पीडीए के वोटों को काट रहा है, क्यों आपको लगता है कि पीडीए के?
12: हमने तो आंकड़े सदन में पेश किए थे, आप भी गवाह है। 15,000 वोट चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके दिखाया था, चुनाव आयोग को लिखा था, न सरकार ने जवाब दिया न चुनाव आयोग ने। अगर सच था तो जवाब क्यों नहीं मिला मुझे?
7: अच्छा, अब आप यहाँ बैठ गए, और चुनाव आयोग महज यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है, यहाँ कब तक रहेंगे?
12: चुनाव आयोग में बैठे दुशासन की इतनी हिम्मत नहीं है कि सच का सामना कर सके। मैं आपसे आपके जिम्मेदार चैनल से एक सवाल पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान में
1: मौसमी से जुड़ी हुई तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, कांग्रेस क्या कह रही है? जितने लोग आए ठीक है, जो नहीं आए वो भी ठीक है, ये धरना 8 तक बुलाया गया है, तब तक चलता रहेगा।
0: देखिए, जो कांग्रेस का मकसद था या इंडिया ब्लॉक का मकसद था कि एक संदेश देना कि चुनाव आयोग जो CEC है, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको जाना ही पड़ेगा, और उसको लेके वो लोग आप 500 मीटर का फासला तो तय कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि रोड कब तक जाम रहेगी, कब तक उनको धरने पर यूं बैठे दिया जाता जाने देता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बसों की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है नेहा, लगातार और बसें आती जा रही हैं, पीछे धरना चल रहा है, पूरी सड़क जो है वो जाम हो रखी है, और यहाँ पे ना आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। गाड़ियां जो बसें हैं उनको लाया जा रहा है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब बैठे हुए हैं, और एक मिनट, अरे सब लोग यहाँ पे बैठे हुए, सॉरी माफ कीजिएगा, पीछे एक बस थी, देखिए इस तरीके से बसों को अभी लाया जा रहा है। और यहाँ पे लगातार पूरे एरिया में नेटवर्क भी डाउन कर दिया गया है, एक तरीके से लगभग आधा घंटा हो गया है सांसद जो है सड़क जाम किए बैठे हुए हैं। ये वो वक्त है जब पिछली बार हम लोग ने देखा था कि पुलिस काफी आक्रामक थी, बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं दे रही थी सांसदों को, और इंडिया ब्लॉक के जो तमाम नेता हैं उनको डिटेन किया गया था। अब ये बसों को पास लाया जा रहा है और लगातार पुलिस, ये डीसीपी सचिन शर्मा भी हमको नजर आए, तमाम आला अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है, और अब इन सांसदों को डिटेन करने की तैयारी की जा रही है। और ये पहली बार नहीं है, पिछले दो महीने के भीतर हमने देखा है राहुल गांधी को पहले भी डिटेन किया गया है, जब वो प्रधानमंत्री आवास पे धरने पर बैठे थे तब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, तमाम नेता, सॉरी माफ कीजिएगा, अखिलेश, तमाम नेताओं को डिटेन किया गया था। और अब देखना यह होगा कि क्या आगे जाने दिया जाता है, बैठे रहने दिया जाता है, या एक बार फिर से सांसदों को डिटेन किया जाता है।
2: बिल्कुल मौसमी, जैसे आप बता रहे हैं कि बसें अब लाई जा रही नजदीक, यानी कि बहुत दूर नहीं है हिरासत में लिया जाना, वो भी बहुत जल्द हो सकता है।
0: बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ये रणनीति रही है दिल्ली पुलिस की कि एक साथ नेताओं को ना भेजो। अखिलेश यादव को पिछली बार अलग बस में भेजा गया था, किसी को तालकटोरा स्टेडियम भेजा गया, किसी को छत्रसाल भेजा गया, किसी को पार्लियामेंट स्ट्रीट भेजा गया। ये देखिए यहाँ पे बस का फासला, अब दिल्ली पुलिस की ये बसें हैं, हमने देखा है पिछले दो तीन दिनों में ये बसें काफी नजर आई हैं, और अब इस बस को जहाँ प्रोटेस्ट साइट है वहां पे संजीव दिखाइए किस तरफ ये बस आगे बढ़ रही है, तो जहां पे सांसद धरना दे रहे हैं बिल्कुल करीब लाया जा रहा है ये लाने की, ये बस नंबर वन है। इसी बस में सबसे पहले सबसे बड़े नेताओं को या एलओपी से लेकर अखिलेश यादव को पहले डिटेन किया जाता है, क्योंकि उनके पीछे ही रेला चल पड़ता है। तो अब आप देखिए कि अंदाजा लगाइए कि कुछ इस तरह की तस्वीर ग्राउंड जीरो पर, जहां पे सेशन नहीं चल रहा है, संसद नहीं चल रही है, कोई सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन ये वो वक्त है जब लगातार एक तरफ सीजेपी का आंदोलन हो, दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टी का आंदोलन हो या यूथ विंग का आंदोलन हो, लेकिन अब पहली बार ये नई ताजा रिपोर्ट के बाद इंडिया ब्लॉक ग्राउंड जीरो पर धरने पर उतरा है, और लगभग एक महीने का खाका इस तरीके का बनाया गया है कि लगातार कार्पेट बॉम्बिंग होगी। आज 6 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर के राज्य इकाइयों में धरना है।
2: मौसमी, ऑपोजिशन की एक स्ट्रेटजी अब बिल्कुल क्लियर कि किसी तरह का कोई ज्ञापन नहीं, कोई प्रतिनिधिमंडल, कोई बातचीत नहीं, हम सड़क से प्रोटेस्ट करेंगे, आपको हमारी अब मांग माननी पड़ेगी, बस प्रेशर बनेगा सड़क से ही।
0: बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूरी प्रेशर टैक्टिक्स हैं, यानी कि आप पोस्टर बैनर ले आइए, जमीन पे बैठ जाइए, धरना कीजिए, स्लोगनियरिंग करिए, तो वो जो संसद से सड़क की पॉलिटिक्स कांग्रेस करते हुए नजर नहीं आ रही थी, या राहुल गांधी की कंसिस्टेंसी को लेके पहले सवाल खड़े हो रहे थे, लगभग एक साल में जिस तरह का टर्न अराउंड हुआ है, राहुल गांधी हैंड्स ऑन नजर आ रहे हैं, कभी महाराष्ट्र में तो कभी देहरादून में, कभी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कर रहे हैं। और कांग्रेस एक तरफ से, कांग्रेस को पिछली इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में यह भी कहा गया कि आप अकेले ही सब कुछ कर ले रहे हैं और आप सहयोगियों को साथ नहीं ले रहे, ऐसी शिकायत उद्धव ठाकरे ने भरी, और उसके एक हफ्ते के भीतर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शिवसेना यूबीटी के भी सांसद है, एनसीपी शरद पवार के भी सांसद है, समाजवादी पार्टी की लाल टोपिया भी है, और उस पर इंडिया ब्लॉक जो छोड़ के चले गए कुछ पुराने।
1: ठीक है, रोकेंगे आपको, अमित भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। अमित, देखिए पिछली बार धरना प्रदर्शन हुआ था तो अमित धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया था, क्या इस बात से भी इस धरना प्रदर्शन को बल मिल रहा है कि अगर लगातार इसी सुर में इसी तरह एकजुट होकर विपक्ष एक तरीके से मोर्चा अपना खोलता है तो इस्तीफा होना तय है प्रेशर टैक्टिक्स के तहत?
2: लगता है उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं बसों का नजदीक जाना, उन बसों का जिसमें हो सकता है कि जो सांसद इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको उनमें ले जाए, दूसरी जगहों पर ले जाया जाए, नहीं हिरासत में लिया जाए, प्रदर्शन उनका खत्म करवाया जाए। अभी खत्म कराने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, इस समय तो उनका प्रदर्शन चल रहा है सभी इंडिया ब्लॉक के। सभी तो नहीं, आम आदमी पार्टी ने दूरी बनाई है, डीएमके ने दूरी बनाई है, यानी कि ये बड़े दल हैं, इन्होंने इंडिया ब्लॉक के इस प्रोटेस्ट से दूरी बनाई है। हाँ, वो इस मुद्दे पर साथ हैं, लेकिन उस मुद्दे को अलग से उठा रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के साथ उठाने से उन्होंने परहेज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दल हैं। आज अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश से पहुंच ही गए, जो पहले दूरी बनाए हुए थे, और उन्होंने बयान भी दिया है, वो तो कह रहे हैं कि हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और उनको जाना ही होगा, अगर आज नहीं जाते तो कल जनता उनको हटाएगी। आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं, राहुल गांधी भी टी शर्ट पहने हुए प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। कुछ सांसद आज काले लिबास में दिखाई दिए हैं, काला कुर्ता पहने हुए प्रोटेस्ट करते हुए दिखे हैं, पवन खेड़ा और दूसरे कांग्रेसी सांसद भी। और अब जो दफ्तर है चुनाव आयोग का, उससे बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, बहुत ही नजदीक कुछ मीटर की दूरी पर है, लेकिन वहां बैरिकेडिंग की हुई है, उसके आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। और बहुत जद्दोजहद, कश्मकश, कोई टकरार कुछ नहीं है, वो जहां पर बैरिकेडिंग से पहले वहां बैठ ही गए हैं और वहीं पर इंतजार कर रहे हैं, वहीं पर खड़े होकर वो अपना काम यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, एक प्रेशर बनवा रहे हैं। और प्रेशर है ज्ञानेश कुमार पर, सीईसी पर, कि इस्तीफा दें। वो सीधा यही मांग कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी की कठपुतली, और भी उनकी मांगे हैं, फॉर्म 6 को लेकर उनकी आपत्तियां, एसआईआर को लेकर उनकी आपत्तियां।
1: एक जगह अब प्रदर्शन रुक गया है, वहां सब सांसद बैठ गए हैं सड़क पर, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इन्हीं में शामिल है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए।
13: अरे हम लड़ रहे हैं जो अन्याय के खिलाफ, जो सरकार ने सब कुछ लोगों के हकूक छीन रहे हैं।
2: मल्लिकार्जुन खड़गे बयान तो दे रहे हैं, लेकिन समस्या है कि कुछ समस्या वहां पर जरूर है कि ऑडियो और कनेक्शन में दिक्कतें लगातार आ रही हैं, लेकिन हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी, ट्विटर पर भी और दूसरी जगहों पर लाइव भी कांग्रेस पार्टी कर रही है।
13: अरे हम लड़ रहे हैं जो अन्याय के खिलाफ, जो सरकार ने सब कुछ लोगों के हकूक छीन रहे हैं, और आज जो आजादी के बाद हमको जो अडल्ट फ्रेंचाइज मिला था उसको खत्म करने का काम एक सरकार कर रही है, और निर्वाचन से ये जो सीईसी है ये तो कठपुतली है सरकार की, और जो मोदी और शाह कहते हैं वही ये करते हैं। इससे डेमोक्रेसी इस देश में खत्म होगी, संविधान खत्म होगा, हिटलर की हुकूमत आएगी, और इससे पूरा जनता गुलामी में चले जाएगी। जो आजाद हुए लोग उनको फिर आप गुलामी में डाल रहे हैं, इसीलिए हम सब लोग इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, हम हासिल करेंगे और आप सभी को ये करेंगे।
1: मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे कि गुलामी की ओर ये तानाशाह सरकार लोगों को ले जा रही है, जो डेमोक्रेटिक राइट है लोगों का, लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका हनन किया जा रहा है और खुले तौर पर ये किया जा रहा है।
2: बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद आप तस्वीरें से मैं देख रहे हैं, कांग्रेस के तमाम सांसद, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, इस समय ग्राउंड जीरो पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मौसमी सिंह हमारे सारे संवाददाता इस समय ग्राउंड जीरो पर है। मौसमी, आप जिस जगह पर मौजूद है वहां से क्या दिखाई दे रहा है, किस तरफ आगे बढ़ेगा प्रोटेस्ट?
0: देखिए, यहाँ से महज 20 कदम की दूरी पर ये धरना है। मैंने पहले आपको बताया था कि बसें आगे बढ़ रही हैं, और आप अगर इस तरफ मुड़ के हम आपको दिखा दें तो पूरी पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसको आगे किया जा रहा है, यानी कि जो घेरा है उसको और क्लोज इन किया जा रहा है यहाँ दिल्ली पुलिस द्वारा, क्योंकि आधा घंटा 45 मिनट हो गया है। और यहाँ पे आप देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्स की एक टुकड़ी को यहाँ पे बिल्कुल आगे किया गया है, जो कि संसद परिसर से इस तरफ आगे आई है। वहीं दिल्ली पुलिस की जो बसें हम आपको बता रहे थे, अब एक की जगह दो दो तीन तीन बसें यहां पे बढ़ा दी गई हैं। पैरामिलिट्री फोर्स को और आगे पास किया जा रहा है, तो एक तरह से हिरासत में लेने की तैयारी पूरी तरीके से यहां पे की गई है। और देखना ये होगा कि क्या रेजिस्ट करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि अखिलेश बैरिकेड फांद के चले गए थे, तो यहाँ पे आप देखिए मूवमेंट आपको नजर आएगी। नेता तो यहाँ पे मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के अलग अलग यूनिट्स को चारों दिशाओं से और आगे किया जा रहा है। और यहाँ पे वो स्पॉट है जहाँ पे बैरिकेड लगाया गया है, उस तरफ भी पूरी खाकी का समुंदर है। तो अब तीनों तरफ से एक तरीके से घेरेबंदी यहाँ पे जो धरना स्पॉट है उसका हो रहा है। यहाँ पे आला अधिकारी जो है
1: ठीक है, लौटेंगे आपके पास हिमांशु मिश्रा, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर किस तरीके से अब विपक्ष आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो दो दिन, आज का दिन मिला ले तो तीन दिन का धरना प्रदर्शन बाकी है, लेकिन लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको एक तरीके से रोकने की या इसका जो मोमेंटम है उसे कम करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है, जिस तरह की तैयारी वहां दिख रही है, बैरिकेड्स वहां पर दिख रहे हैं।
14: देखिए बिल्कुल बैरिकेड लगा दिए गए हैं और समाजवादी पार्टी के कई सांसद जो है बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं, जिनमें धर्मेंद्र यादव है, राजीव राय है, अक्षय यादव है, ये लोग बैरिकेड पे चढ़ गए और बाकी जो सीनियर सांसद है वो वही आकाश वाणी और नीति आयोग के बीच में जो है सड़क पर वो धरने में बैठ गए हैं। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो दृश्य, अगर आप देखिए यहाँ पे बसेस जो है वो लगा दी गई हैं, इस तरीके से पुलिस की चाक चौबंद है कि ये लोग चुनाव आयोग से नहीं जा सकते, लेकिन इतना जरूर है कि अब से कुछ देर में अगर इसी तरीके के हालात रहे तो इन सभी सांसदों को जो है वो डिटेन किया जा सकता है। इससे पूर्व में भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और तमाम विपक्षी दल के सांसदों को जो है वो डिटेन किया गया था, लेकिन
2: बिल्कुल
14: यही है क्या ये सड़क से, संसद से सड़क की लड़ाई जो है वो ज्यादा लंबी खींचने वाली है। विपक्ष इस चीज के लिए तैयार है और विपक्ष के कई दो
2: बिल्कुल, और ऑपोजिशन की वो तैयारी हिमांशु दिख रही है। हिमांशु आपके पास हम लौटते हैं, हमारे साथ संवाददाता अमित भारद्वाज भी हैं और पीयूष मिश्रा भी, और पीयूष ठीक इस समय उसी जगह पर है जहां पर तमाम सांसद एकत्रित हैं। पीयूष तस्वीरें दिखाएं और बताएं क्या उनकी प्लानिंग है, क्या वो गुत्थम गुत्था होंगे, आगे वहीं पर डटे रहने का प्रयास करेंगे या फिर आगे जो भी पुलिस कहेगी या करने का प्रयास करेगी वो सहयोग करेंगे।
15: जी बिल्कुल, अगर तैयारी की बात करें तो तैयारी ये है कि लंबे समय तक यहाँ पर बैठा जाए, क्योंकि यहाँ से इलेक्शन कमीशन महज 200 मीटर की दूरी पर है, यानी कि आधे से ज्यादा का रास्ता इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने पार कर लिया और अब तैयारी है कि आगे बढ़ा जाए। मैं आगे बढ़ के भी आपको तस्वीरें दिखाऊं। देखिए फिलहाल जो सांसद बैठे हुए थे जमीन पे, वो उनमें से कई सांसद यहाँ पर खड़े हो गए और उम्मीद ये है कि धीरे धीरे ये सांसद यहाँ से आगे बढ़ते हुए आगे जाने की कवायद करेंगे, क्योंकि आगे बैरिकेड्स लगे हुए हैं और बैरिकेड को तोड़ने की जरूर कोशिश यहाँ पर सांसदों के द्वारा की जाएगी। कुछ सांसद जो यहाँ पर अब तक नहीं पहुंच पाए थे वो धीरे धीरे यहाँ अब पहुंच भी रहे हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर अखिलेश यादव के अलावा राहुल गांधी और बाकी जो सांसद हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और जैसा हमने पहले आपको तस्वीर दिखाई थी कि कैसे एक सुरक्षा घेरा यहाँ पर बनाया गया और उस सुरक्षा घेरे के अंदर सभी सांसदों को लाया गया, फिलहाल सभी सांसद यहाँ पर सड़क पर ही बैठ गए हैं और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। रेणुका चौधरी,
16: खुल लेते आवाज बुलंद रहेगी आम जनता के लिए, हर भारतीय वासी को जिसका हक निकाला गया है हम उनके लिए लड़ रहे हैं, तो ये कहे ना कहे
15: तो रेणुका चौधरी जो अब तक नहीं पहुंच पाई थी वो अब यहाँ पर पहुंची और धीरे धीरे करके जो सांसद हैं राजीव वो यहाँ पर पहुंच गए। और मेरे सहयोगी आलोक अगर थोड़ा सा जगह ले लें यहाँ पर, यहाँ से आपको बेहतर तस्वीरें दिख पाएंगे जहाँ पर आप देखिए कैसे सेव डेमोक्रेसी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कई सारे नारे और तख्तियां पोस्टर्स लेकर यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के सांसद पहुंचे हुए हैं और लगातार पुलिस जो है वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि वो यहाँ से हटे, लेकिन जो सांसद हैं इंडिया ब्लॉक के वो एक जगह बैठ गए हैं, अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी भी बैठे और हम कोशिश करते हैं एक बार अंदर जाने की, अंदर इस घेरे में जाने की और कोशिश करते हैं कुछ सांसदों से बात भी की जा सके, क्योंकि धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है।
1: नासिर सहयोगी जुड़ी है तमाम जानकारी के साथ, लगातार बनी हुई है। मौसमी, जिस तरीके से सभी बता रहे हैं कि अब देखिए मार्च के इर्द गिर्द भी पुलिस बल की तैनाती है, उनके निजी सुरक्षा कर्मी भी है, ऐसे में फुल फोर्स में ये मार्च निकलना तो था 10:30 बजे से, उसके बाद इसकी जब शुरुआत हुई कुछ पॉइंट 500 मीटर के बाद लगभग इसे रोक दिया गया। जो बसें आ रही हैं इनको लेकर क्या तैयारी है, धीरे धीरे करके इन सभी को इन बसों द्वारा यहां से निकाला जाएगा, अलग स्थान पर ले जाया जाएगा ताकि धरना आगे ना बढ़ सके?
0: देखिए पूरा नेटवर्क क्लैम डाउन है नेहा, तो हम लोग वहां से नेताओं को पकड़ के लेके आ रहे हैं कि बात करें और क्या घट रहा है अंदर पीछे बताइए। इमरान साहब यहां पे बसें लगातार बढ़ रही हैं, पैरामिलिट्री का प्रेजेंस भी बढ़ रहा है, तो आप लोग डिटेंशन की तैयारी में हैं कि नहीं, देंगे हिरासत?
17: नहीं, हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे, हमारा मार्च पूरा शांतिपूर्ण है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि हमारी बात या हमारा प्रदर्शन कामयाब हो। लेकिन ये चाहे कितना दबा लें चाहे कितना रोक लें, ये देश की गली गली के अंदर गूंजने का काम करेगा। देश की गली गली के अंदर हम लोग बताएंगे कि ज्ञानेश कुमार ने वोट की चोरी कराई है।
0: आज कितना एकजुट है इंडिया गठबंधन, लाल टोपी भी नजर आ रही है, अभिषेक बैनर्जी भी नजर आ रहे हैं और लगातार सुप्रिया सुले हों, ये सारे लोग नजर।
17: देखिए लड़ाई बिल्कुल साफ है, लड़ाई जो राहुल जी ने शुरू की है उसके अंदर सब लोग राहुल जी का हाथ में हाथ डाल करके चल रहे हैं, तो लड़ाई बिल्कुल साफ है कि देश के अंदर परिवर्तन की आंधी है।
0: अब राहुल जी की क्या मंशा है, वहाँ पे बैठे हुए हैं तो कब तक बैठे रहेंगे ये?
17: अभी देखिए जो भी तय करें हमारे नेता उसके ऊपर डिसाइड होगा।
0: प्रियंका गांधी भी बैठी हैं साथ में, आप लोग पोस्टर बैनर लिए हुए हैं और आपने जिस तरह के पुतले बनाए हुए हैं ज्ञानेश कुमार के, क्या ये सही है?
17: हाँ क्यों नहीं सही है, ज्ञानेश कुमार ने पूरे देश के अंदर जो एक भरोसा था चुनाव आयोग के लिए उस भरोसे को तोड़ दिया है। ज्ञानेश कुमार ने तो सबसे बड़ा पाप किया है, महापाप किया है।
0: अच्छा अखिलेश यादव बिल्कुल देखिए आप लोग को समर्थन देते हैं, आप इतना खरी खोटी सुनाते हैं समाजवादी पार्टी?
17: नहीं मैं बिल्कुल नहीं सुना रहा हूँ, हम साथ हैं, हमारा गठबंधन मजबूत है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे।
0: 403 की तैयारी अखिलेश यादव कर रहे हैं तो क्या यहीं से मान ले संसद से ही तैयारी हो रही है यूपी की भी?
17: बिल्कुल एकदम 403 सीट के ऊपर गठबंधन चुनाव लड़ेगा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा।
0: यहाँ पे अगर कहें कि ये जो धरना हो रहा है क्या धरना पॉलिटिक्स का असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा यूपी में?
17: सब जगह पड़ेगा, पूरे देश में पड़ेगा, ये तो परिवर्तन की आंधी है, ये रुकेगी नहीं। ये राहुल गांधी का चलाया हुआ जो अलग है वो पूरे गांव-गांव और गली गली पहुंचेगा।
0: अच्छा वो समाजवादी पार्टी के नेता लीड ले लिए हैं, बैरिकेड पे चढ़ गए, आप लोग तो नहीं चढ़े, वो लोग बैरिकेड पे चढ़े हैं आगे बढ़ गए?
17: नहीं नहीं वो तो सब आप देख रहे हैं ना कितना धक्का मुक्की हो रही है, बस उसी में चल रहा है।
0: अच्छा पीछे ये पुलिस की बसों को क्या कहेंगे, पीछे दिखाइए हम लोग के इमरान मसूद के पीछे ही पैरामिलिट्री फोर्स भी खड़ी हुई है, पुलिस की ये जो बसें हैं इसका क्या है आपको लगता है उन्हें?
17: पता नहीं अब क्या करेंगे, ये तो उनका काम है, हमारा काम नहीं है।
0: ठीक है आप लोग बेखौफ चलेंगे आगे
17: 100%।
0: यहाँ पे इमरान मसूद
2: मौसम आपके पास लौटते हैं, हमारे साथ संवाददाता अमित भारद्वाज भी जुड़े हैं। अमित सिग्नल है भी और वो है नहीं के बराबर है, तो क्या ऑपोजिशन की आवाज ना पहुंच सके इसलिए नेटवर्क होते हुए भी उसकी स्ट्रेंथ बड़ी कमजोर है? मेरा ये सवाल भी नहीं पहुंच पाया उन तक ऐसे लगता है, लेकिन तस्वीरें आप लगातार देखिए। हिमांशु इसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए
18: जी
2: रिपोर्टिंग में बड़ी समस्याएं हो रही है क्योंकि आपकी आवाज हम तक, हमारी आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या तस्वीरें बहुत क्लियर नहीं दिख रहे हैं आज जैसे आमतौर पर प्रोटेस्ट में दिखती हैं।
18: देखिए बिल्कुल क्योंकि नेटवर्क का इशू है, जैमर्स लगाए गए हैं और यही कारण है कि आवाज और जो तस्वीरें हैं वो कुछ धुंधली होकर जो है वो पहुंच रही है, और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है समाजवादी पार्टी के सांसद हो या टीएमसी के सांसद हो लगातार धरने पर जरूर बैठे हुए हैं, और ये एक बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष इस लड़ाई को कितना आगे तक लेके जाएगा, और ये जो एसआईआर का मुद्दा है इसको लेकर विपक्ष पहले से जो है हमलावर था और आज
1: इस बीच लगातार संपर्क करने में दिक्कतें आ रही हैं, और जैसा कि हमारे तमाम संवाददाता ये बता रहे हैं कि नेटवर्क वहां पर डाउन चल रहा है। अब ये जो तब्दीली है हर तरीके से की जा रही है वहां पर ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस पूरे विरोध प्रदर्शन को बल ना मिल सके, इसका कम से कम कवरेज हो, और जिस तरीके से अब बसेस लाकर वहां तैयारी की गई है लग रहा है कि डिटेंशन और हिरासत में लिया जाना जल्द संभव हो सकता है। हालांकि ये पूरा मार्च शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, दो तस्वीरें आप देखिए, इसमें आगे राहुल गांधी और दूसरे में प्रियंका गांधी इस मार्च को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दरअसल ये मार्च ही कांग्रेस पार्टी द्वारा बुलाया गया है जिसमें इंडिया ब्लॉक के तमाम जो सहयोगी दल हैं वो जुड़े तो हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से वहां पर कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं।
2: इस समय अभी भी सब धरने पर बैठे हुए हैं, कहीं कोई जाने की जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही, अभी वो शांतिपूर्वक वहीं बैठे हैं और बीच में बैठे हुए हैं सांसद और इर्द गिर्द फिर दूसरे सांसदों का घेरा है। राहुल गांधी और अभिषेक बैनर्जी, केसी वेणुगोपाल और तमाम दूसरे सांसद खड़े हैं। बहुत सारे सांसद मीडिया से बातचीत कर रहे हैं।
1: इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से शांतिवी में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शांतिवी, वहां पर क्या तैयारी है? मुझे लग नहीं रहा कि वहां तक ये प्रोटेस्ट पहुंच पाएगा, पहले रुक गया है। शांभवी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, शांभवी से संपर्क करेंगे। शांभवी, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया? शांभवी, सवाल सुनाई दे रहा है?
19: हाँ जी, आ रही आ रही आ रही है आवाज, आ रही
1: है। ठीक है शांभवी, वहां पर क्या तैयारी है सीसी के दफ्तर के बाहर?
19: देखिए इस समय पूरी तरीके से ये जो रोड है जो इलेक्शन कमीशन को लीड करती है, इधर संसद मार्ग जो उधर से वो संसद मार्ग है और वहां से अगर वो किसी तरह जितने एमपीज हैं वो यहां तक आ जाते हैं तो ये पूरे एरिया को पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। दो लेयर बैरिकेडिंग की लगाई हुई है और अब ये पूरा एरिया जो कि इलेक्शन कमीशन के बाहर का पूरा एरिया उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है, सीएपीएफ प्रेजेंट है, आरएएफ प्रेजेंट है और जैसे जैसे समय बीत रहा है जैसे जैसे वो वहां से आगे बढ़ रहे हैं एमपीज, प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। अभी तक सुबह तक ये पूरी रोड खुली हुई थी, कोई रूट डिवर्जन नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही एमपीज ने वहां से मकर द्वार से वो निकले हैं, थोड़ा आगे पहुंचे हैं, यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग लगा दी है, रस्सियों से बैरिकेडिंग को भी बांध दिया है क्योंकि पहले देखा गया है कि प्रोटेस्टर्स आके इन बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश करते हैं, इन पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए इस पूरे बैरिकेड को रस्सियों से बांध दिया गया है और दोनों ही तरफ बैरिकेड के आगे भी और बैरिकेड के पीछे भी आरएएफ, सीएपीएफ, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैनात है।
2: शांभवी, आपने ये तस्वीर दिखाई कि सिक्योरिटी जबरदस्त है, लेकिन ज्ञानेश कुमार क्या वो चुनाव आयोग के समय दफ्तर में है? अखिलेश
8: पकड़ा, समाजवादियों ने पकड़ा। नियम ये कहता है कि 5 से ज्यादा आप किसी का वोट नहीं कटवा सकते, फॉर्म 7 नहीं भर सकते, लेकिन 100 से ज्यादा फॉर्म भरे गए।
2: अखिलेश यादव का दोबारा हम बयान सुनाएंगे, लेकिन शांतो भी एक बार फिर से आपके पास आते हैं, क्या सीसी ज्ञानेश कुमार दफ्तर में है या नहीं?
19: देखिए अभी तो वहां से
1: आपको ले चलेंगे, उनके साथ प्रमोद तिवारी मौजूद हैं।
20: वो काफिला आगे बढ़ रहा है ना, इधर आने वाला
1: है। मौसमी ने बीच में बोला, बातचीत करिए
20: जी। नेहा सॉरी आपको मैं बार बार बुला रही थी, प्रमोद तिवारी यहाँ पे हैं और पूछते उनसे। प्रमोद जी, बीजेपी कह रही कि उनके साथ गणेश है।
21: शर्म नहीं आती बीजेपी को? पहले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पोलिंग बूथ पे बैठा दिया, पोलिंग स्टेशन बैठा दिया, अब भगवान गणेश को अपने पाप छिपाने के लिए गणेश जी जो शुभ के प्रतीक है उनका नाम ले रहे हैं। मैं जानता हूं गणेश जी इस पर इतना नाराज होंगे कि बीजेपी को सूंड में लपेटेंगे अपनी और इतनी दूर फेंकेंगे कि 25-30 साल बीजेपी दिखाई नहीं पड़ेगी सत्ता के आसपास।
20: बहरहाल अभी तो दिल्ली पुलिस ने आपको चुनाव आयोग से दूर रखा हुआ है।
21: मुझे याद आता है 1942 में कहीं नहीं जाने देते थे बर्तानिया हुकूमत के लोग, तो आज भी नहीं जाने दे रहे हैं। जब बर्तानिया हुकूमत हमको नहीं रोक पाई तो ये मोदी क्या रोकेगा?
20: तो कब तक बैठे रहेंगे? प्रियंका गांधी बैठी है, राहुल गांधी बैठे हैं और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि सपा को अगर सीटें चाहिए तो उसमें क्या है, कांग्रेस को सीटें चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बड़ा सब लोग अपना उदारता दिखा रहे हैं।
21: समझदारी की बात है, अलायंस जब होगा तो सीट सब कोई मांगेगा, किसको कितना मिलती है ये तो हमारा नेतृत्व तय करेगा। अखिलेश जी के इस बयान का मैं स्वागत करता हूँ।
20: तो क्या है माने ये विरोध वो जोड़ है जो आप लोग को और मजबूत बनाएगा यूपी में? ज्ञानेश कुमार का धरना के खिलाफ धरना,
21: ये प्रकृति का नियम है, जितना दबाया जाता है उतनी आवाज बुलंद होती है। भाजपा दबा रही है और हम दबने वाले नहीं है, हम उससे ज्यादा शक्ति से प्रतिरोध करेंगे।
20: अभी यहाँ पे पुलिस की बसें ज्यादा नजर आ रही हैं, डिटेन करने की तैयारी है, आप लोग हिरासत देंगे?
21: करें ना, बिल्कुल हिरासत देंगे, जेल भेजेंगे, तिहाड़ भेजेंगे, जाएंगे, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, अम्बेडकर के लोकतंत्र को बचाएंगे, पंडित नेहरू के लोकतंत्र को बचाएंगे।
20: राहुल गांधी क्या कह रहे हैं?
21: राहुल गांधी ने तो सबसे पहले कहा था कि वोट चोरी हो रही है। आज उन्हीं की बात को दो साथी सदस्यों ने जो इलेक्शन कमीशन में है उन्होंने स्वीकार किया। यही बात अब सुप्रीम कोर्ट का जो कल का ऑब्जर्वेशन देखिए, उसके पीछे हुए भावना देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है। तो कुल मिला
20: बीजेपी कह रही है राहुल गांधी झूठे हैं, झूठ बोलते चले जा रहे हैं।
21: देखिए ना, उनको किस स्पोक्समैन को आगे लाना पड़ा? संबित पात्रा, जो आदतन इरादतन झूठ बोलने में माहिर हैं, तो वो झूठे तथ्य रख रहे हैं। और सबको मालूम है, मैं तो वकील हूँ, जो मैं देख रहा हूँ बड़ा साफ है कि भाजपा लोकतंत्र खत्म करना चाहती, तानाशाही लाना चाहती। हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे।
20: और प्रमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, वहाँ से चले आ रहे हैं, पर ये अभी इरादा है बैरिकेड फांदने का कि वहीं यहीं रात तक आप लोग बैठेंगे?
21: एक देखिए त्रासदी ट्रेजडी कौन बैठे हैं धरने पे? इलेक्टेड MPs, लोकसभा राज्यसभा दोनों इलेक्टेड। रोका किसको जा रहा है? इलेक्टेड लोगों को, कहां संवैधानिक जगह तक। तो कुल मिलाकर मैं इतने कह सकता हूं कि चाहे ये जितना रुके, हम हर हाल में अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अम्बेडकर के
2: बिल्कुल हर हाल में मंजिल तक पहुंचेंगे ये कह रहे हैं। मौसमी, हम आपके पास लौटते हैं, जैसे कोई हलचल होगी फिर से लौटेंगे, लेकिन इस बीच में तस्वीरें दिखाना जरूरी है। ऐसे में प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रियंका आपको 10 मिनटों में दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी भी बैठ गए जो अब तक खड़ी दिखाई देनी थी, और दूसरे सांसद इस समय बैठे हुए। प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, अभी तक कोई उठाने नहीं आया, तो ये अपोजिशन के लीडर्स उठे भी नहीं है, और अब तो एक पूरी आइटनरी तय है इनके कि प्रोटेस्ट, अब ये तो शुरुआत है, ये तो इब्तिदा है, और फिर जो है जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव तक इस प्रोटेस्ट को पहुंचाने का मकसद है। कांग्रेस पार्टी इस बात का ऐलान कर चुके हैं, राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर तक प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चूंकि दफ्तर तो जाने नहीं दिया है, उससे पहले बैरिकेडिंग की गई और वहीं पर ऑपोजिशन के सांसद रुके हुए हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।
1: दरअसल ये आर पार की लड़ाई है, और देखना दिलचस्प होगा राजीव कि जैसे पहले बल प्रयोग किया गया था, क्या आज भी वैसा ही बल प्रयोग इन सांसदों के खिलाफ किया जाता है? नहीं, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट है, जाहिर तौर पर लगातार विपक्ष यही कहेगा कि हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्यों बल प्रयोग किया जा रहा है। श्रिया मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। श्रिया, वहां से क्या तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगी?
3: देखिए, मैं निर्वाचन सदन के बिल्कुल सामने हूं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो इलाका है किले में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ आपको RAF के जवान दिखेंगे, बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये अशोका रोड का पॉइंट है, और क्योंकि अब अभी पूछ रहे थे कि क्या आज सांसदों के साथ डिटेंशन या फिर कोई ऐसी विजुअल्स आएंगी, तो दिल्ली पुलिस के जो जवान आज ड्यूटी पे है उनको बोला गया है कि MPs के साथ पेशेंस से पेश किया जाना चाहिए, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि मल्टीपल लेयर बैरिकेडिंग, 6 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। अगर हम आकाशवाणी के दफ्तर से लेकर इलेक्शन कमीशन तक की बात करें, विजुअली आप देखिए बसेस खड़े कर दिए गए हैं कि अगर बैरिकेड टाप के भी कोई आ जाए निर्वाचन सदन तक तो कोई पहुंच ना पाए, क्योंकि आज जो इंडिया ब्लॉक के MPs है उनका यही एक्सपेक्टेशन है कि वो ये विजुअली दिखा सके कि वो सड़क पे है, क्योंकि आगे की जो रणनीति है वो पूरे अक्टूबर महीने तक चलेगी, जिला लेवल ब्लॉक लेवल तक, ताकि काडर भी आज के विजुअल से दुरुस्त हो। ये एक तरीके से इंडिया ब्लॉक के MPs द्वारा आज की प्रयास है। हालांकि अगर पुलिस की सिक्योरिटी की बात करें, आप मेरे आसपास देख के समझ सकते हैं कि कोई भी अगर चाहे भी तो भी निर्वाचन सदन तक नहीं पहुंच सकते, राइड कंट्रोल व्हीकल से लेके सारे चीजें यहां पे अभी स्टेशन है।
2: बिल्कुल शेयर, ये तस्वीरें
4: आकाशवाणी भवन के,
2: और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब ये संयोग है
4: ताकि नारेबाजी हो। पहले राहुल गांधी इस मोर्चेबंदी में लीड लिए हुए थे, और अब प्रियंका गांधी वाड्रा खुद महिला सांसदों को आगे बुला रही हैं एक एक करके। तो तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद हैं, महिला नेत्री हैं, वो आगे आ गई, बाकी और महिला सांसदों को मोबिलाइज किया जा रहा है कि आप फ्रंट पे आए, लीड लें। तो एक रणनीति में बदलाव दिखाई दे रहा है, जहां सीनियर नेताओं को पीछे किया गया है, उनको पीछे धरने पे बिठाया गया है, वहीं दूसरी तरफ जो युवा नेता हैं वो बैरिकेड्स पे चढ़े हुए हैं, सांसद जो हैं समाजवादी पार्टी के वो बैरिकेड्स पे चढ़े हुए हैं, और प्रियंका गांधी वाड्रा आप खुद महिला सांसदों को आगे आने के लिए कह रही हैं। तो
7: तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। नारेबाजी को लीड करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा, तो तस्वीरें आकाशवाणी भवन के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे तेजी से विपक्ष रणनीति बार बार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और विपक्षी सांसदों का एक अलग मोर्चा प्रियंका गांधी ने यहां पर खोला है। केसी वेणुगोपाल मुझे दिख रहे हैं जो कांग्रेस के संगठन महामंत्री हैं, वो भी फ्रंट पे आए हुए हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आकाशवाणी भवन के बाहर से ये तस्वीरें अनफोल्ड होती हुई लगातार बदलती हुई तस्वीरें, जहां पे पहले विपक्ष के सांसद यहां बैठ के धरना दे रहे थे, अब उनको ऊपर उनको कहा गया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ये एक तरह से लीड ली और उसके बाद अब उन सांसदों को आगे जाने के लिए जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। तो फिर से एक बार कोशिश हो रही है कि क्या बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्या बैरिकेड्स पे चढ़ने की कोशिश करेंगे विपक्षी सांसद, ये घटनाक्रम अभी हमें देखना है। लेकिन लगातार तेज घटनाक्रम है, तस्वीर बदल रही है आकाशवाणी भवन के बाहर।
2: हमारे संवाददाता अमित ये लाइव रिपोर्टिंग वहां से कर रहे थे, उनका भी सिग्नल चला गया, दोबारा उनके पास जाएंगे। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है, इस समय वो अपनी जगह पर ही है, लेकिन आप आगे क्या करेंगे इस पर जो है ये देखने वाली बात है, क्योंकि सपा के सांसद तो बहुत ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और वो अति उत्साह में वहां बैरिकेडिंग के ऊपर बैठे हुए भी दिखाई दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के सांसद अभी वैसा कुछ करते नहीं दिख रहे। लेकिन आप प्रियंका गांधी नारेबाजी करते हुए तालियां बजाते हुए शायद कुछ गीत वहां पर प्रोटेस्ट का कोई गुनगुनाया जा रहा था, अखिलेश यादव भी जबरदस्त प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए।
5: शुरुआत है जी, आगे देखो क्या होता है।
7: आज कितने देर तक बैठने की तैयारी है?
5: हम वापस आ रहे हैं।
7: वापस आ रहे हैं?
5: हाँ, पूरी तैयारी करके वापस आ रहे हैं
7: जी। तो शिवसेना के सांसद संजय राउत आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बता रहे हैं कि देखिए जो सीसी है वो अंडरग्राउंड हो गए, और दूसरी तरफ से एक और हुजूम विपक्षी कार्यकर्ताओं का एक और हुजूम आता हुआ हमको दिख रहा है। एक तरफ जहां पर विपक्ष के सारे सांसद खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ ये विपक्ष के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए, कौन सी पार्टी से है ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त नारेबाजी करते हुए उस तरफ जा रहे हैं जहां पर विपक्ष के सांसद बैठे हुए हैं, राहुल गांधी बैठे हुए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे अभी इस प्रदर्शन से थोड़ी देर के लिए बाहर निकले हैं। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा अब हमें दिख रहा है और वही सीधे वही पहुंच रहे हैं जहां पर सारे विपक्षी सांसद बैठे हुए हैं। प्लकार्ड देखते जाइए तो एक रणनीति में तब्दीली है कि विपक्षी सांसदों को ताकत देने के लिए अब कांग्रेस अपने काडरों का मोबिलाइजेशन भी कर रहा है और आकाशवाणी भवन तक ये सारे काडर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ते हुए, जहां नेता विपक्ष राहुल गांधी इस वक्त हैं, तो अहम स्ट्रैटेजी में तब्दीली, भीड़ की भी कार्यकर्ताओं की भी मोबिलाइजेशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। राहुल गांधी और जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो टीएमसी के सांसद, ये सब लोग इस वक्त ग्राउंड पे बैठे हुए हैं और शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि सीसी अंडरग्राउंड हो गए हैं। वीडियो सहयोगी लोकेंद्र के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
2: तो भीड़ भी वहां पर आती हुई दिखाई दी, हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने वो तस्वीरें दिखाई हैं और ये समय हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जबरदस्त तैयारियां हैं, बैरिकेडिंग तो की है लेकिन बैरिकेडिंग के दोनों ही तरफ जवानों की भी पूरी तरह से तैयारियां। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, हाथ में तिरंगा लिए हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, ये एक पहली तस्वीर कुछ आपने अब जो है थोड़ा सा अलग हटकर दिखाई दी है और शायद बैरिकेडिंग के ऊपर खड़े हैं क्योंकि विजुअल बहुत क्लियर वहां से नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी हाथ में तिरंगा लिए हुए प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए और अब जो है खड़े होकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। शांतिपूर्वक अभी तक प्रदर्शन देखने को मिला है, किसी तरह के साथ किसी को उलझने का प्रयास भी नहीं हुआ है, आगे बढ़ने का प्रयास भी नहीं हुआ है, कोई शक्ति प्रदर्शन उस तरह का नहीं हुआ है, शांतिपूर्वक अपनी बात रखी जा रही है। और इस तरह के प्रोटेस्ट का मकसद भी यही होता है कि आप बस ऑडियंस तक, जनता तक, आम लोगों तक एक मैसेज पहुंचा देना चाहते हैं कि हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, हमारा विषय ये है और ये गंभीर विषय है। और ऑपोजिशन आज उसे करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सिग्नल की बड़ी समस्या जरूर हो रही है क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं बहुत आप भी देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ की थोड़ी सी कमी है, सिग्नल होते हुए भी वो ना के बराबर है, लेकिन प्रोटेस्ट दिख रहा है, भीड़ दिख रही है, सांसद दिख रहे हैं, ऑपोजिशन दिख रहा है। एकजुटता पर प्रश्न हो सकता है।
20: सर, मेरा नहीं हुआ, खरगे साहब मैं बात नहीं कर पाई थी सर, थोड़ा सा
6: सर सर प्लीज सर,
10: अरे प्लीज प्लीज
20: सर को बोलना पड़ेगा,
10: रुक जाओ
20: सर, बात नहीं कर पाई थी सर, नेटवर्क नहीं आ रहा था वहाँ पे, बहुत दिक्कत हुआ सर, आप लोग हाथ हटा लीजिए,
10: हटिए हटिए भैया,
22: दस बार
10: हाथ हटा लो भाई,
20: आप ऐसे हाथ मत
22: कीजिए,
10: अरे ये कौन उतर जाओगे,
22: अगर हम दस बार कहेंगे तो
20: हमसे बात कर सर, बात कर
22: देखो आप सबसे करो,
20: सब लोग
22: देखिए ये जो हम एजिटेशन कर रहे हैं और राहुल गांधी जी ने इस देश के नौजवानों के वोटर्स, महिलाओं के वोटर्स, किसानों के, गरीब लोगों के, जो आजादी के बाद उनको हक मिला था, वो हक छीन लेने का काम आज मोदी सरकार कर रही है और उससे देश में एक ऐसा माहौल पैदा हुआ कि भाई जो आजादी हम हमारे लोग फांसी के ऊपर जाकर लड़कर जेल में जाकर उनको आजादी दिलाई थी, वो आजादी इन्होंने छीन लेने का पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत में रहने के लिए वो हर तरीके से लोगों के अधिकार को छीन

0: नौजवान लोग आ रहे हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं कि हम, क्योंकि ये अगर हमारा वोट बचा तो डेमोक्रेसी बचेगी, हमारी डेमोक्रेसी बचेगी तो ही सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, संविधान भी सुरक्षित रहेगा। और संविधान जब सुरक्षित रहेगा तभी इस देश में जो आजादी हमने पाई है उसका फायदा सबको मिलेगा।
1: बीजेपी आग बबूला हो रही है, खड़गे जी कह रही है कि आप इलीगल बता रहे हैं, आप खुद को भी आप इलीगल बता रहे हैं, सरकार को इलीगल बता रहे हैं, पीएम को इलीगल बता रहे हैं।
0: हाँ, मैं जरूर बताऊंगा, इसलिए कि तुम्हारे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स ही बोल रहे हैं कि हमने इसमें गलती है, इसमें गलती है, मत करो। और जो आईटी के उनके मेंबर है उन्होंने भी यही कहा, जब आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स, आप ही के लोग गलती हो गई जब बोल रहे हैं, तो गलत इलेक्शन इन्होंने कराया और हमारे लोगों को आज उनको दिशा भूल करके हुकूमत में आने का उन्होंने कोशिश की। और जो गलत तरीके से हुकूमत में उन्होंने आए हैं और जो गलत तरीके से उन्होंने आज कुर्सी पे बैठा, इसीलिए हम कर रहे हैं, पहले गद्दी छोड़ो, नहीं तो देश में हंगामा होगा, देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये मेरा वार्निंग है उनको। और मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग सब कुछ सहन करेंगे लेकिन अपनी आजादी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
1: सरकार भंग करनी चाहिए सर, सरकार भंग होनी चाहिए।
0: मैंने तो कहा जो इलीगल है वो भंग होना चाहिए। जब नौ नौ असेंबलीज देश के भंग हो जाते हैं, या इलीगल जो होगा क्यों भंग नहीं होना चाहिए?
1: ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, आज तक के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने
2: बिल्कुल अपनी खास बातचीत मौसमी की। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर भी इस बीच देते हैं। राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट साइड से वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और उन्होंने एक पोस्ट किया है ज्ञानेश कुमार पर, उनका ये पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज्ञानेश इट्स डन ब्रो, टाइम टू रिजाइन, यानी कि अब बहुत हो गया और अब समय आ गया है इस्तीफा देने का, अब इस्तीफे का वक्त आ गया है। राहुल गांधी का यह पोस्ट, आज राहुल गांधी हाथ में एक तख्ती लिए हुए, प्लाकार्ड लिए हुए दिखाई दिए, उसमें भी यही लिखा हुआ था ज्ञानेश इट्स डन ब्रो। ये भाषा प्रचलित कब हुई आपको याद होगे, जेन जी की भाषा मानी जाती है और जेन जी प्रोटेस्ट में इस तरह के स्लोगन्स दिखे थे, तो उसी को अब अपनाते हुए कांग्रेस पार्टी दिख रही है। और राहुल गांधी ने उसके साथ एक वीडियो भी संलग्न किया, वीडियो भी साथ में शेयर किया जिसमें उनके हाथ में वो प्लाकार्ड है जिसमें लिखा हुआ है ज्ञानेश इट्स डन ब्रो और टाइम टू रिजाइन, अब इस्तीफे का समय आ गया है। ऑपोजिशन का प्रेशर, तो क्या ज्ञानेश कुमार दबाव में आएंगे, क्या वो इस्तीफा देंगे, ये बड़ा सवाल है। और इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, हमारे साथ संवाददाता ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है, हम एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर से बेहद नजदीक प्रोटेस्ट चल रहे हैं। राहुल गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, सड़क पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव और सोशल मीडिया पर भी उसी समय बड़ी सक्रियता, ज्ञानेश इट्स डन ब्रो राहुल गांधी लिख रहे हैं।
3: बिल्कुल, देखिए आप, ये जो संग्राम है ये कई मैदानों में लड़ा जा रहा है, संसद में भी लड़ा जा रहा है, सड़क पर भी लड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी लड़ा जा रहा है। और आप देखिए तस्वीरों के जरिए, राहुल गांधी अभी बैरिकेड पर खुद चढ़े हुए हैं और लगातार वो जो है जो तिरंगा है उनके हाथ में है, तिरंगे को लहरा रहे हैं, बार बार प्ले कार्ड दिखाते हैं जिसका आपने भी जिक्र किया, जिस पर ज्ञानेश कुमार को लेकर लिखा हुआ है कि उनको अब जाना होगा, उनका टाइम अब पूरा हो चुका है एज ए सीएसी। तो कुल मिलाकर, और आप देखिए खासा जोश है आप कह सकते हैं जो विपक्ष के जो ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, क्योंकि इसी ग्राउंड पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अभिषेक बैनर्जी, अखिलेश यादव, कल्याण बैनर्जी, तमाम जो लोग हैं वो लोग सड़क पर मौजूद हैं। और जाहिर है उसकी वजह से जो उनके कार्यकर्ता है वो भी आप कह सकते हैं कि उनमें भी एनर्जी आई हुई है। राहुल गांधी पहले यहां पर आकाशवाणी भवन के पास उन्होंने वो लगातार वहां पर बैठे हुए थे, लगातार क्योंकि आगे नहीं जाने दिया जा रहा था सांसदों को, उसके बाद ये फैसला किया गया कि यहीं पर ही जहां पर भी हमको पुलिस रोकेगी बैरिकेड पर वहीं पर हम धरना देंगे। और अब आप राहुल गांधी को देखिए कि राहुल गांधी चढ़ चुके हैं बैरिकेड के ऊपर, नीचे जो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सांसद हैं, वो नारेबाजी लगा कर रहे हैं।

0: लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है वो चोरी के थ्रू बनाई जा रही है। और देखिए ये कोशिश भी है, महज कुछ 100 मीटर दूर है यहाँ से, इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये पहले तय कर लिया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा कि उनको यहाँ इसी गोल चक्कर के पास राउंड अबाउट है संसद मार्ग का, वहां पर उनको रोका जाएगा, वहीं पर उनको डिटेन किया जाएगा। और आप देखिए पीछे मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों के अंदर कि कुछ जो सांसद हैं उनको ऑलरेडी डिटेन कर भी लिया गया है। जो सांसद हैं मनोज झा हैं, एम तिरुवलन हैं जो तमिलनाडु से सांसद हैं, इसके अलावा सुधाकर सिंह हैं जो बिहार से सांसद हैं, तमाम विपक्ष के सांसद हैं, आरजेडी से आते हैं, उन लोगों को सामने जो बस आप देख पा रहे हैं उस बस के अंदर उनको डिटेन कर लिया गया है और उनको यहां से लेकर जाया जाएगा। जाहिर है पुलिस अब एक तरीके से इस धरने को खत्म कराने की कोशिश कर रही है, वो चाहती है कि यहां से क्राउड डिस्पर्स हो, जो नेता है वो वापस अपने अपने घरों पर जाएं, लेकिन विपक्ष का भी आप कह सकते हैं कि पूरा मन बना हुआ है कि अब इस लड़ाई को और तेज किया जाए, तापमान और बढ़ाया जाए।
1: राहुल राहुल राहुल राहुल अगर संभव हो वो तस्वीरें भी दिखाएं जहां बता रहे हैं कि हिरासत में लिया जा रहा है, उस तरफ भी एक बार कैमरा करें, उस तरफ भी तस्वीरें दिखाएं, बात करने का प्रयास भी करें। आज की जी आज के प्रोटेस्ट की बड़ी समस्या रही है, तस्वीर दिखाएं जी जी
0: कि ये वो बस है इसके अंदर तमाम जो लोग हैं आप देख।
1: राहुल आपके पास लौटने आवाज, बड़ा समस्या नेटवर्क की आ रही है, लेकिन इस बीच में बड़ी खबर, विपक्ष के इस मार्च पर शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है और बयान किया, उन्होंने ऑपोजिशन को फिर से घेरा है और ये लोकतंत्र की चिंता नहीं बल्कि हार की खीज है। शिवराज सिंह चौहान इससे पहले भी उन्होंने बयान दिए हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये पोस्ट किया एक और पोस्ट करके उन्होंने कहा कि जनादेश का अपमान विपक्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनादेश का अपमान करना ये तो कांग्रेस की आदत है और विपक्ष का आज इस समय मार्च चल रहा है और विजुअल भले ही वहां से ब्लर आ रहे हों थोड़े से, लेकिन उनका जो मुद्दा है, उनके जो सवाल हैं वो पूरे मजबूती के साथ बाहर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में सत्ता पक्ष तक भी वो आवाजें पहुंच रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि विपक्ष का ये मार्च हार की खीज है। इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है और बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि अब हिरासत में लिया जाना शुरू हो गया है, कुछ सांसदों को हिरासत में लिया जा चुका है। थोड़ी देर पहले बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े राहुल गांधी दिखाई दिए, हाथ में तिरंगा उनके दिखाई दिया, लेकिन अब दौड़ते हुए ये भीड़ आपको तस्वीरों में दिखाई देगी, तो क्या पुलिस उन्हें खदेड़ रही है वहां से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सिग्नल स्ट्रेंथ की समस्या लगातार आज बनी हुई है। राहुल गौतम हमारे साथ है, राहुल क्या, अच्छा मौसमी हमारे साथ, मौसमी भी वहीं पर है, मौसमी मौसमी तस्वीर दिखाई, क्या इस समय हो रहा है?
2: पीछे देखिए ये सांसद वापस संसद परिसर की तरफ, तमाम सांसद आपको बताया था कि 100 मीटर की दूरी पर थे और यहाँ पे राहुल गांधी बिल्कुल बीच में है और यहाँ पे तमाम सांसद इस तरफ संसद परिसर की तरफ बढ़ते हुए। संजीव आप और पीछे चलिए क्योंकि भीड़ बहुत तेज आ रही है और राहुल गांधी काफी देर तक धरने पर बैठे रहे और अब ये वो वक्त है जब संसद परिसर के पास वापस राहुल गांधी संसद की ओर जा रहे हैं। दोनों तरफ पुलिस की बसें हैं, सांसदों को डिटेन करना चाह रही है और वहीं पर राहुल गांधी रुक गए। आप देखिए कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के सामने यहाँ पे राहुल गांधी खड़े हुए हैं। अब पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी राहुल गांधी को हिरासत में लेने के लिए क्योंकि कई रास्ते चुनाव आयोग जाते हैं और यहाँ पे भीड़ जो है वो झुंड के तौर पे राहुल गांधी के साथ यहाँ पे लगातार आगे पीछे पूरा झुंड चल रहा है और यहाँ पे आप देखिए कि कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है लेकिन राहुल गांधी कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं और ये सब घट रहा है ट्रांसपोर्ट भवन की जो सड़क एक तरफ तराजू के अगर कह लीजिए तो संसद और दूसरी तरफ चुनाव आयोग या एक छोर पे संसद और दूसरी तरफ चुनाव आयोग और बीच में राहुल गांधी दाएं बाएं इधर उधर जाते हुए जाहिर तौर पे यहां पे हिरासत में ना लिया जाए उसको लेके आप देखिए कि तमाम उनकी जो गाड़ी है वो भी यहाँ पे नजर आ रही है और यहाँ पे बसें भी नजर आ रही है।
1: बड़ा क्या लग रहा है कि वो डाइवर्ट कर रहे हैं या फिर अब वो खुद भी निकल रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हिरासत में लिया जाए,
2: डिटेन जिसमें डिटेन होना है। देखिए हम ये जोखिम उठाएंगे, अगर आगे नेटवर्क नहीं आता है तो आप इशारा कर दीजिएगा, लेकिन देखिए अब राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तरफ जा रहे हैं, तो वो चाह रहे होंगे कि उनको जितनी देर हो सके हिरासत में ना लिया जाए। राजीव, इसकी मशक्कत पड़ रही होगी, एक दो तीन चार, बीच में राहुल गांधी, चार बसे डिटेन करने के लिए कुछ में नेताओं को भरा गया और बीच में राहुल गांधी यहीं पे खड़े हो गए हैं। और जाहिर तौर पे पिछली बार जब डिटेन किए गए थे राहुल गांधी तो हमने देखा था कि किस तरीके से चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो या पूरा हुजूम उनके साथ पीछे पीछे भाग खड़ा हुआ था। राहुल गांधी को चार चार छह छह पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस के कर्मियों को उठाना पड़ा था, वो नीचे ही लेट गए थे। मार्शल आर्ट्स में काफी माहिर हैं, कई उनको डैन भी मिली हुई है और यहाँ पे वो टेक्निक्स वो इस्तेमाल करते हैं, डिफेंसिव टेक्निक्स कह लीजिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ताकि डिटेन करना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पे राहुल गांधी के इर्द गिर्द भी घूम रहे होंगे। यहाँ पे देखिए तिरंगा जहाँ लहरा रहा है वहाँ पे राहुल गांधी का पूरा मजमा है, तमाम नेताओं को ले जाया जा रहा है। और ये अब वो समय है जब दिल्ली पुलिस इस धरने को खत्म करना चाह रही होगी और ये वो वक्त है जब राहुल गांधी पूरा अपना रेजिस्टेंस यहाँ पे ग्राउंड पर दिखाते
1: हैं। राहुल गांधी तो चलो फ्रेम में दिख रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी और दूसरे सांसद क्या है, वो क्या उसी जगह पर अभी डटे हुए हैं और कुछ को डिटेन किया गया?
3: राहुल जी
2: यही है बस। जी बिल्कुल, देखिए सभी नेताओं को डिटेन किया जा रहा है। ये राहुल गांधी की बस है जिसमें राहुल गांधी को भरा गया है। प्रियंका गांधी भी पिछली बार हमने देखा था कि काफी रेजिस्ट कर रही थी पूरे इस डिटेंशन के दौरान और उनको बस के दरवाजे पे ही वो खड़ी हो गई थी, भीतर उनको डाल ही नहीं पा रहे थे पुलिसकर्मी, तो उस तरह की तस्वीर दिखी थी। और यहाँ पे पोस्टर बैनर के साथ बस बिल्कुल लोगों के जेब में फंस गई है जो बस राहुल गांधी को ले जा रही थी। आप देखिए दर्जनों कैमरे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और बस आगे जाए या पीछे जाए या दाएं जाए या बाएं जाए ये बड़ी दिक्कत है। हम लोग कोशिश करेंगे कि बस में उनसे बात करने की, जैसे वो बस यहाँ से निकलती है इसी रास्ते से मुझे लगता है काबगंज की तरफ उनको ले जाया जाएगा। आप देखिए एक बस उस तरफ अलग अलग दिशाओं में चारों दिशाओं में बसों को ले जाया जा रहा है, ज्यादा कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी के बस में या नेताओं को नहीं डाला जाएगा।
1: पिछली बार राहुल गांधी क्लैरिटी दे कि क्या राहुल गांधी उस बस में खुद ही जाकर बैठ गए हैं या बस खुद ही, मतलब ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी पुलिसकर्मियों को उनको हिरासत में लेने के लिए?
2: संजीव से बोलूंगी, संजीव आप रुकिए जरा, मैं उस बस की तरफ, संजीव आप पीछे रहिए, मैं बस की तरफ संजीव आपको विजुअल दिखाएंगे और मैं आगे जाकर आपको बताती हूँ कि राहुल गांधी उस बस में है कि नहीं है। राहुल गांधी उस बस में है जिस बस को हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें लाल टोपी भी नजर आ रही है और यानी कि सपा के भी कार्यकर्ता है इस बस में है और सिक्योरिटी नजर आ रही है। तो राहुल गांधी की सिक्योरिटी, राहुल गांधी अभी बस में नहीं जा पाए हैं, बस के साथ साथ चल रहे हैं, जो बस जा रही है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव आपको विजुअल दिखा रहे होंगे, हम ये आपको कमेंट्री बता रहे हैं, आंखों देखी जो यहाँ पे घट रहा है। राहुल गांधी बस के साथ साथ चल रहे हैं, बस के आगे दिल्ली पुलिस
4: आगे की तरफ बढ़ रही है। इसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर
1: तो एक फ्रेम देख रहे हमारे संवाददाता पीयूष वहां पर मौके पर हैं जहां सांसदों को डिटेन किया गया है।
5: आवाज आ रही
1: है, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। राहुल गांधी को अभी हिरासत में तो नहीं लिया गया। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता, पीयूष आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पर?
5: जी फिलहाल राहुल गांधी को इस बस में डिटेन कर लिया गया है, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां पर राहुल गांधी के साथ काफी जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ मौजूद हैं और लगातार जो है पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है
6: अफरा तफरी का हो गया है
5: राहुल गांधी को इस गाड़ी में बिठाया जाए, कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो है अभी फिलहाल उनकी गाड़ी दिखा रहा हूँ, राहुल गांधी जो है इससे पहले उनको बस में लेकर जाने की भरपूर कोशिश की दिल्ली पुलिस ने, लेकिन काफी जमावड़ा दिल्ली पुलिस के कार्यकर्ताओं का काफी जमावड़ा होने की वजह से जो पुलिस है वो राहुल गांधी को फिलहाल डिटेन नहीं कर पाई और राहुल गांधी लगातार जो है वो बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी इस वक्त एक फुटपाथ के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पर वो लगातार राहुल जी आगे का क्या तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी कुछ देर तक जो यहाँ खड़े थे वो अब यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं और काफी इंडिया ब्लॉक के सांसदों को डिटेन कर लिया गया है, लेकिन राहुल गांधी जो यहाँ पर जो सामने देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने कुछ कर्मचारी सरकारी कर्मचारी जो हैं वो खड़े थे, उनके पास फिलहाल अब राहुल गांधी चले गए हैं उनसे मिलने के लिए। तो यहाँ पर कुछ देर तक वो धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे, बस में अंदर गए, वहां से वो बाहर आए और अब सामने एक आकाशवाणी भवन है, आकाशवाणी भवन के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं उनसे मिलने के लिए राहुल गांधी चले गए हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ राहुल गांधी अंदर चले गए और वो इस वक्त इन सरकारी कर्मचारियों से बात कर रहे हैं। आकाशवाणी भवन का ये सरकारी मुख्यालय है जहां पर राहुल गांधी अब अंदर घुस चुके हैं और उनके साथ भारी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी है वो भी मौजूद हैं। तो राहुल गांधी इस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं आकाशवाणी भवन के अंदर जा चुके हैं और ये सरकारी मुख्यालय है, आईएनबी मिनिस्ट्री के अंदर आकाशवाणी भवन आता है और कई सरकारी अनाउंसमेंट जो है वो आकाशवाणी भवन से की जाती है। आकाशवाणी भवन के अंदर इस वक्त राहुल गांधी
1: इधर क्यों, वो खुद से तो स्वाभाविक ही नहीं गए, आप बता रहे कि कर्मचारी लेकर गए, तो क्या ये हिरासत का ही दूसरा तरीका है कि अगर बस में नहीं बिठा पा रहे तो एक सरकारी भवन में ले जाओ, कम से कम कट ऑफ तो करें।
5: नहीं नहीं राजीव, राहुल गांधी खुद अपनी स्वेच्छा से आकाशवाणी भवन के अंदर गए हैं और काफी लंबे समय तक वो बाहर थे, पुलिस ने काफी जद्दोजहद की कि उनको सामने जो खड़ी बस है उसमें डिटेन किया जाए, एक बार के लिए वो अंदर गए भी लेकिन वो तुरंत वहां से बाहर आ गए और फिलहाल वो अंदर आकाशवाणी भवन जो सरकारी मुख्यालय है ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफिस है उसके अंदर घुस चुके हैं और दरअसल वो इसलिए यहाँ पर आए क्योंकि काफी देर से जो ये जो कर्मचारी देखिए जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कर्मचारी काफी देर से यहाँ पर खड़े थे और राहुल गांधी की तरफ लगातार उनको हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और राहुल गांधी अब स्वेच्छा से आकाशवाणी भवन के अंदर चले गए अंदर कर्मचारियों से मिलने के लिए। आपको एक चीज और महत्वपूर्ण बता दूं कि ठीक पीछे जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, मेरे सहयोगी की आलोक ऊपर करके कैमरा पैन करके दिखाएं, ठीक पीछे जो लाल और सफेद रंग की बिल्डिंग आपको दिख रही है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है, उसके ठीक साथ में आकाशवाणी भवन है और इसके अंदर फिलहाल राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। जी राजीव,
1: बिल्कुल पीयूष, आज बड़ा कंफ्यूजिंग, बड़ा जो है दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि नेटवर्क की बड़ी समस्या है, तो तस्वीरें बहुत क्लियरली पता नहीं चल पा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी के बारे में कहा गया कि उनको हिरासत में ले लिया गया, लेकिन अब उनकी भी तस्वीर इस समय आ रही है जिन दिखा रहे हैं और वो भी शायद आकाशवाणी भवन की तरफ ही बढ़ रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आपको उनकी मूवमेंट अगल बगल दिख रही है तो पीयूष बताएं क्या प्रियंका गांधी भी आकाशवाणी भवन की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? अच्छा, मौसमी भी वहां पर है, मौसमी आपके पास क्या अपडेट है मौसमी?
7: जब जा ही नहीं रहा हो तो
2: मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो बस है वो बिल्कुल करीब आ गई है अब और ये बस प्रेस इसी में है। राहुल गांधी
1: नहीं, मौसमी राहुल गांधी आकाशवाणी भवन में है, मौसमी राहुल गांधी समय आकाशवाणी भवन के अंदर है, प्रियंका गांधी भी क्या उनकी भी मूवमेंट उस तरफ दिख रही है? बस में नहीं है राहुल गांधी,
2: देखिए ये जो बस है अभी देखिए ये बस यहाँ पे आ गई है और बताया जा रहा है कि इस बस में तमाम नेताओं को भरा गया है, राहुल गांधी इस बस से उतर गए हैं और तमाम नेता भी इस बस से अब उतर रहे हैं, यानी कि महज 50 मीटर पर ये बस चली और उसके बाद सारे सांसद और नेता उस बस में जिसमें राहुल गांधी भरे थे उस बस से उतरते हुए आपको नजर आ रहे हैं और ये बस लगभग
1: एक तस्वीर देखिए आपको इस तस्वीर में प्रियंका गांधी दिखाई दे रही और दूसरे सांसद भी हैं और इससे पहले हमने देखा कि राहुल गांधी तो आकाशवाणी भवन के भीतर इस समय गए हैं। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि वो स्वेच्छा से ही गए हैं, बस में गए थे कुछ सेकंड के लिए लेकिन उसके बाद वो तत्काल निकल आए और उसके बाद वो आकाशवाणी भवन के भीतर गए हैं, सरकारी दफ्तर के भीतर गए हैं वो। और ये कुछ देर पहले की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लाइव में आज बहुत बहुत परेशानी आ रही है लेकिन आज तक का प्रयास है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन सही तस्वीर पहुंचाई जाए, भले ही धुंधली ही सही हो लेकिन तस्वीर हो वो दिखाई जाए। हम लगातार वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हर तरफ की बात आप तक रख रहे हैं कि कौन क्या बात करे। इस समय ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करे तो उनकी बात बहुत जरूरी है तो उनकी बात आप तक पहुंचाई जा रही है। आकाशवाणी भवन के भीतर इस समय राहुल गांधी है, सवाल है कि क्या प्रियंका गांधी भी जा रही है ये, क्योंकि पिक्चर तो ऐसे दिख रहे हैं कि एक भवन की तरफ वो भीतर जाती हुई दिख रहे हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं है तो इसलिए हम पुख्ता तौर पर अभी नहीं कह सकते। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं और आकाशवाणी भवन के बिल्कुल पास में पीयूष हैं। पीयूष आपके पास अपडेट है, क्या प्रियंका गांधी भी भीतर जा रही हैं?
6: नहीं मिल रहा मेरे को,
1: सिग्नल का बताया आपको बहुत इश्यू है लेकिन इस बीच में बड़ी खबर देते हैं। अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है। अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए हैं सांसदों के साथ, आज उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है और हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज भी हमारे साथ। अमित, जिस बस में अखिलेश यादव हैं और कौन कौन है, क्या वो बस वहां से रवाना हो गई या वो भी वहीं पर ही है अभी?
8: देखिए अगर तस्वीरें आप तक आ रही होंगी तो ये वही बस की विजुअल्स है, आगे अखिलेश यादव बैठे हुए हैं डेरेक ओब्रायन के साथ और अभिषेक बैनर्जी भी इसी बस में है। तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं उन सभी नेताओं को एक एक करके डिटेन किया जा रहा है। मैं लोकेंद्र को कहूंगा जो लगातार मेरे साथ से ही भाग रहे ताकि हम ये तस्वीरें आपको दिखा पाए। अब ये बस आकाशवाणी भवन से पार करके पार्लियामेंट की तरफ ले जाया जा रहा है और ऊपर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इन बसों पर चढ़ गए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको लोकेंद्र ये तस्वीर दिखा पाए। अखिलेश यादव लगातार बात कर रहे हैं, फिर एक बार आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के मोर्चे में जब वो ज्वाइन किए थे तब डेरेक ओब्रायन की तबीयत थोड़ी खराब हुई है मुझे लगता है। अखिलेश यादव वहां दिख रहे हैं बात करते हुए, हम कोशिश करेंगे एक उनसे बात करने की और अब उनको डिटेन करके दिल्ली से आगे ले जाए। अभिषेक बैनर्जी जो सेक्रेटरी है बैरिकेड्स पे
1: अमित, चुनौतीपूर्ण दिन है आपके, कुछ विजुअल भी तो खैर ब्लर थे ही लेकिन अब आपकी आवाज भी कट रही है तो हमारे देश में इंटरनेट इतना कमजोर तो नहीं है कि स्ट्रेंथ इतनी कमजोर हो जाए कि विजुअल भी आना मुश्किल हो जाए और आवाज भी आना मुश्किल हो जाए, लेकिन फिलहाल ये स्थिति है, रियलिटी है कि आवाज और तस्वीरें धुंधली दिखाई दे रही है और आवाज कमजोर पड़ती दिख रही है लेकिन क्या ऑपोजिशन की आवाज कमजोर पड़ेगी ये बड़ा सवाल है। अभी तो ऐसा होता नहीं दिख रहा क्योंकि उनकी प्लानिंग नवंबर तक की अब तक तो क्लियर दिख रही है। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता है, मौसमी आपके पास क्या अपडेट है इस समय? मौसमी आवाज मिल रही है आपको? लगता उन तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब उनकी तस्वीर लेकिन जरूर दिख रही है, विजुअल जरूर दिख रहा है। मौसमी आवाज मुझे मिलना मुश्किल है लेकिन आप अपनी आवाज बताएं, आप दिखाएं। हाँ आप
2: जी
9: और चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, चुनाव आयोग को इस्तीफा देना चाहिए। आप सोचिए वोट में बेईमानी जो कर सकते हैं वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए कह रहे हैं कि एक बार घपला कर लें, बंगाल लूट नहीं आना, क्या करोगे अब आप, तो इसीलिए नारा दे रहे वन नेशन वन इलेक्शन, चुनाव के माध्यम से पूरा घपला कर लें।
2: अखिलेश यादव आज तक से बातचीत करते हुए कहते हुए कि चुनाव जो है उसमें चोरी हो रही है, ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार भी चोरी से बन रही है, इस तरीके से उनको इस बस में ले जाया जा रहा है। हम लोग ने कोशिश की उनसे बात करने की और यहाँ पे ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि तमाम कार्यकर्ता अखिलेश यादव के साथ इस बस में ऊपर चढ़े हुए हैं, पीछे एक और बस आ रही है जहाँ पे कार्यकर्ता और ऊपर चढ़े हुए हैं, यहाँ पे दिखाइए संजीव, और ये तस्वीर जहाँ अखिलेश यादव दो टूक कहते हुए
1: बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी के संबंध में बताए कि आकाशवाणी भवन में राहुल गांधी क्यों गए हैं
2: यहाँ पे इन बस में। देखिए राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स होती है वो रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स होती है, वो आर्ट ऑफ डिफेंस को पूरा इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखा है कि विजय चौक में वो जमीन पर बैठ गए थे लगभग दो साल पहले जब धरना प्रदर्शन ईडी के खिलाफ हो रहा था तब, और उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पे ही वो धरने पर बैठ गए थे, प्रधानमंत्री आवास के बाहर जमीन पर बैठ गए थे। तो डिटेंशन को कैसे डिले करे, डिले इन टैक्टिक्स, उस टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी आकाशवाणी भवन गए होंगे कि इतनी जल्दी मैं हिरासत में नहीं अपने आप को दूंगा, और वही यही वजह है कि आप देखिए कि सारे नेताओं को लगभग ले जाया गया है, सबको डिटेन कर लिया गया है, सपा की बस में सपा का झंडा भी लहरा रहा है जिसमें अखिलेश यादव है, लेकिन राहुल गांधी तस से मस यहाँ पे होते हुए नजर नहीं आ रहे। एकदम से हमने देखा कि हमारे सामने चलते हुए चले आ रहे थे फिर वापस जा रहे थे, और इस तरह की तस्वीर ग्राउंड जीरो पर जहाँ पे पुलिस को नाको चने चबाने पड़े, कई नेता बस में बसे।
0: आज तक पे बात करते हुए कह रहे हैं कि हम सीसी ज्ञानेश कुमार से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो विपक्ष की तरफ से मैसेज क्लियर है कि उनका कॉन्फिडेंस हर बार इस तरह के विरोध प्रदर्शन से जब डिटेंशन होता है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, चेहरों पे स्माइल लिए विपक्षी नेता जा रहे हैं। बड़ी डेवलपमेंट आज तक से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव कहते हैं तंज कसते हुए कि अब हमें ज्ञानेश कुमार से सीसी से मिलने के लिए ले जाया जा रहा है। वीडियो सहयोगी लोकेंद्र के साथ मैं भारद्वाज दिल्ली।
1: और बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं आकाशवाणी भवन से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाने की कोशिशें चल रही हैं, ये बड़ी खबर, हिरासत में लिए गए हैं अखिलेश यादव, अभिषेक बैनर्जी, डेरेक ओब्रायन और भी नेता, लेकिन अब राहुल गांधी चूंकि आकाशवाणी भवन में गए वो कुछ सेकंड के लिए आप कह सकते हैं कि हिरासत में लिए गए थे, गाड़ी के भीतर भी गए लेकिन निकल गए, और ये वो तस्वीर, और अब गेट खोलने की कोशिश करते राहुल गांधी, गेट जो है सामने आप देखेंगे मीडिया वाले भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, आकाशवाणी भवन के भीतर राहुल गांधी हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं, वो यहां से चुनाव आयोग के दफ्तर जाने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर पुलिस बल तैनात है जो हिरासत में उनको लेने की तैयारी किए हुए हैं। राहुल गांधी अब बाहर नहीं जो है बाहर तो निकलना चाह रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग के दफ्तर जाना चाह रहे हैं, आकाशवाणी भवन से ही चूंकि बेहद निकट है चुनाव आयोग का दफ्तर फिर आकाशवाणी का भवन भी, तो राहुल गांधी ने अलग स्ट्रेटेजी अपनाई है इस समय की आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। प्रयास करते सुनने का कि राहुल गांधी क्या संवाद इस समय कर रहे हैं, फिर हमारे संवाददाता के पास भी चलेंगे, लेकिन आप देखिए तस्वीरें, राहुल गांधी कुछ फोन पर भी बात करते दिख रहे हैं।
6: भाई साइड लो, मैं
1: शायद जो वहां पर सिक्योरिटी कर्मचारी हैं जो सिक्योरिटी में हैं वो शायद समझाने का प्रयास इस समय कर रहे हैं राहुल गांधी को, और शायद किसी से फोन पर भी बात करवा रहे हो, लेकिन राहुल गांधी वहीं से जाना चाह रहे हैं। आप देखिए राहुल गांधी की स्ट्रेटजी, हमारे साथ मौसमी है, मौसमी आकाशवाणी भवन का क्या कोई गेट चुनाव आयोग के गेट के नजदीक है, क्योंकि अच्छा शेयर चैटर्जी भी हमारे साथ है जो आकाशवाणी भवन के पास में, शेयर वहां पर क्या हलचल है, क्या वहां नजदीक पहुंच गए राहुल गांधी आकाशवाणी भवन के अंदर से?
10: भाई
2: देखिए फिलहाल नहीं पहुंचे, ये वो लेन है जिससे आकाशवाणी भवन से निर्वाचन सदन तक वो आने की कोशिश कर सकते हैं। नासिर, मेरे कैमरे में आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी दिल्ली पुलिस तैनात है, बैरिकेडिंग है। आप देख सकते हैं जो ब्लैक गेट्स है वो आकाशवाणी भवन के पीछे की तरफ है। तो कोशिश राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उन तमाम कुछ सांसदों का ये है कि इस इलाके से अगर ये निर्वाचन सदन के पास पहुंच जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस की आप देख सकते हैं तैनाती यहाँ पे अभी भी है, हम यहाँ पे मौजूद है। ऐसा कुछ भी अगर मूवमेंट हमें देखिए हम आपको तुरंत बताएंगे। फिलहाल कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यही कोशिश है कि इसी लेन से वो निकल के निर्वाचन सदन तक पहुंच जाए।
1: ठीक है, शेल लौटते हैं आपके पास। वो तस्वीर हम लगातार दिखाई रहे हैं, समय राहुल गांधी हैं सामने सिक्योरिटी कर्मी जो उनको गेट से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव आकाशवाणी भवन के अंदर गए शायद डायवर्ट करने के लिए कि कुछ देर हिरासत में वो ना लिए जाए, और फिर प्रयास करते रहे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाने का, अभी भी प्रयास उनका जारी है। लेकिन राहुल गांधी अभी भवन के भीतर ही हैं और गेट से बाहर नहीं आने दिया जा रहा उनको, अभी तो नहीं आने दिया जा रहा है। इस समय की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक जाने का ऑपोजिशन का पहले का ही ऐलान था, उसके मद्देनजर सिक्योरिटी थी। खास बात यह है कि इस बार के प्रदर्शन में जो जवान सड़कों पर आज दिखाई दे रहे हैं उनके बॉडी कैम भी लगा हुआ है, क्योंकि कई तरह के आरोप और तमाम तरह की बातें आई हैं जो इतिहास में, तो ऐसे में दोहराए ना जाए, तो बॉडी कैम में है। लेकिन ये जो निजी सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे हैं और वो राहुल गांधी को भी बाहर नहीं आने दे रहे हैं। राहुल गांधी समर्थकों के साथ और दूसरे सांसदों के साथ हैं, कांग्रेस के और समर्थक भी हैं। कईयों को हिरासत में लिया गया, लेकिन अब आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही दिखाई दे रही है इस समय की। राहुल गांधी आकाशवाणी भवन के भीतर चले गए और आकाशवाणी भवन के भीतर अब आप तस्वीर देखिए कि प्रियंका गांधी भी पहुंच गई। थोड़ी देर पहले हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे थे, उसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब क्लियर है कि आकाशवाणी भवन के भीतर ही उस समय प्रियंका गांधी भी गई और अब इस समय दोनों के दोनों साथ हैं और यहीं से वो चुनाव आयोग के दफ्तर जाने का प्रयास करते दिख रहे हैं, लेकिन आगे उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कुछ फोन पर बातचीत करवाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है नहीं आगे उनको बढ़ने दिया गया है। श्रेया हमारे संवाददाता हमारे साथ है। श्रेया, क्या कोई गेट है आकाशवाणी भवन का जो बेहद नजदीक हो चुनाव आयोग के, क्योंकि एक गेट पर हमें दिखाई दे रहे हैं राहुल और प्रियंका साथ में।
2: जी देखिए नासिर, पहले आप दिखाइए कि ये निर्वाचन सदन है, जूम इन करके आप उनको जो बैक गेट है जो एकदम आकाशवाणी भवन से सटा हुआ है वो इलाका आप देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड कर दिए, मीडिया को भी मना कर दिया है कि इसके आसपास ना जा सके, लेकिन जो ब्लैक आप रेलिंग्स देख सकते हैं वो आकाशवाणी भवन का ही बैक साइड है और वहीं से जो कोशिश है कि वहां से आके ये निर्वाचन सदन इस लेन से निकल जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस की तैनाती यहाँ पे भी है। लगता नहीं कि यहाँ तक प्रियंका गांधी या राहुल गांधी पहुंच पाएंगे।
1: तो क्या वहां भी बैरिकेडिंग कर दी गई है? अगर मान लीजिए आप ही जाए तो वहां भी बैरिकेडिंग है?
2: बिल्कुल बैरिकेडिंग है नासिर, आप दिखाइए कि कैसे यहाँ पे दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से इस लेन पे बैरिकेडिंग भी कर चुके हैं। कहीं से भी अगर आ भी गए राहुल गांधी तो इस पॉइंट पे ही उनको डिटेन कर लिया जाएगा आकाशवाणी भवन के उस ब्लैक रेलिंग से, अगर वो आ भी जाए बैक गेट से। हालांकि वहां पे भी पुलिसकर्मी मौजूद है, लेकिन आने के बाद भी ये और एक लेवल की बैरिकेडिंग है निर्वाचन सदन से पहले, यहाँ पे भी उनको आगे नहीं आने दिया जाएगा।
1: ठीक है, श्री लौटते हैं आपके पास। यानी कि स्ट्रेटजी राहुल गांधी ने अपनाई कि शायद चकमा दिया जा सके, लेकिन चकमा नहीं दे पाएंगे क्योंकि इस गेट से अगर निकल भी जाए तो बाहर बैरिकेडिंग की हुई है, वो भी अलग अलग लेयर के, तो तब भी बड़ा मुश्किल है चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंच पाना राहुल गांधी का। लेकिन इस तस्वीर से कम ये प्रयास है कि हम संघर्ष कर रहे हैं, हम अपनी मांग, हम अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ है। मौसमी, प्रियंका राहुल अब साथ में दिख रहे हैं आकाशवाणी भवन के भीतर इस समय है और जद्दोजहद करते दिख रहे हैं, आपके पास क्या तस्वीर है?
10: उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो मिल रहा होगा और हम लोग वहीं पे खड़े हैं जहां पे राहुल गांधी पीछे आप हमारे देखेंगे, एक तरीके से ये जो ग्रिल्स हैं इसी के पीछे राहुल गांधी हैं और यहां पे राहुल गांधी जो है वो चुनाव आयोग से सटा हुआ है आकाशवाणी भवन, तो चुनाव आयोग की तरफ जाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। और एक तरीके से यहाँ पे ये वो वक्त है जब तमाम नेता जो है उनको डिटेन कर लिया गया है, लेकिन राहुल गांधी बेहद बगल में पड़ोस में चुनाव आयोग के जो आकाशवाणी भवन है उसके फ्रंट गेट से चुनाव आयोग की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस के लिए कि आकाशवाणी भवन के अंदर चले गए हैं और और अब गेट बाहर से बंद चुनाव आयोग से महज 40-50 मीटर की दूरी पर राहुल गांधी यहां पे खड़े हुए हैं और पुलिस दिल्ली पुलिस यहां बाहर खड़ी हुई है, उनको ले जाने की कोशिश हो रही है लेकिन ये संभव नहीं है। सुप्रिया यहां बैठी, अगर नेटवर्क मिल रहा हो बैठे रहिए। सुप्रिया बताइए क्या प्लानिंग है? अभी पहले बस में भरे फिर वापस उतर गए राहुल गांधी। पॉलिटिक्स ऑफ डिफेंस,
11: आप अभी कह रही थी कि राहुल गांधी ऑल इंडिया रेडियो के आकाशवाणी भवन में घुस गए, राहुल गांधी सरकार में घुस गए और इसीलिए आपको ये डर और आतंक का माहौल दिख रहा है, इसलिए दिल्ली को छावनी बना दिया गया है, इसलिए उनको आगे मार्च नहीं करने दिया जा रहा है। राहुल गांधी एक ही मांग लेकर उतरे हैं कि वोट चोरी बंद हो और गद्दार ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो, जो पूरा देश चाहता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसको संरक्षण देकर अपनी वोट चोरी के नए नए सबूत रोज क्यों पेश कर रहे हैं?
10: जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बैंडविड्थ बहुत कम है और यहाँ सुप्रिया ये बताती हुई कि सरकार के लिए एक तरीके से मुसीबत बन गए हैं राहुल गांधी, उनकी नाक में दम कर दिया है। और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे थोड़ा नेटवर्क में भी आने की, पर ये तस्वीर यहाँ पे दिखती हुई लगातार गतिरोध जारी है, राहुल गांधी का रेजिस्टेंस जारी है। यहाँ पे आकाशवाणी भवन के भीतर राहुल गांधी लगातार अगर आप देखें तो 12:30 बज रहे हैं और ये धरने को 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया है। राहुल गांधी अलग अलग पैतरे इख्तियार कर रहे हैं, रास्ता बदल रहे हैं, अपनी टेक्निक्स बदल रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से दिल्ली पुलिस के लिए उनको यहाँ से ले जाना आसान ना हो। छावनी में तब्दील कर दिया गया इलाका, उसके बावजूद भी ये तस्वीर गतिरोध की यहाँ पे लगा।
1: बिल्कुल, प्रदर्शन में मौसमी तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण। मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। ऑपोजिशन सारा एक साथ था लेकिन ऐसा लग रहा है कि ज्यादा संघर्ष करते हुए आप यानी कि लीड लेते हुए कांग्रेस पार्टी दिख रही है। दो तस्वीरें देखिए आप, जहां दूसरे विधायक जो दूसरे सांसद हैं जो दूसरे ऑपोजिशन के लीडर हैं वो हिरासत में अब जा भी चुके हैं, उनकी गाड़ियां भी जा चुकी हैं बाहर, लेकिन कांग्रेस अभी वही है। मतलब जो मशक्कत अभी कांग्रेस या स्ट्रेटजी अपनाई है वो दूसरे दल भी तो अपना सकते थे, उन्होंने नहीं अपनाई। कांग्रेस से राहुल गांधी प्रियंका गांधी इस समय आकाशवाणी भवन में आपको केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वो भी उस ग्रिल को पकड़े हुए हैं, वो भी वहीं पर डटे हुए हैं। यानी कि कांग्रेस मैदान यानी कि सड़क छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे कितना भी प्रयास। वो अलग अलग स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, वो कितना कामयाब हो पाते हैं चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंच पाना ये तो भविष्य का सवाल है, लेकिन उससे ज्यादा मायने वो अपने संघर्ष को दिखाना चाह रहे हैं कि हम प्रयास करते रहेंगे, हम ज्ञानेश कुमार तक अपनी बात रखेंगे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। ये उनकी जो प्रमुख मांगों में से एक मांग है। आप देखिए ये तस्वीर, आकाशवाणी भवन की तस्वीर है। कांग्रेस के वर्कर्स अभी सड़क से हटे नहीं है, समाजवादी पार्टी दूसरे राजनीतिक दल लगातार पहुंचे हुए थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन उनको हिरासत में लिया गया तो फिर उसके बाद वो चले भी गए। राहुल गांधी प्रियंका गांधी हिरासत में लिए जाने के बाद भी निकले बस से और फिर उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाने के लिए आकाशवाणी भवन का प्रयोग किया गया। आकाशवाणी भवन का प्रयोग, आप दो तस्वीरें देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं। अभी इस समय यही गतिरोध चल रहा है, वो जाने का भी प्रयास कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। राहुल गांधी और प्रियंका साथ में हैं, पवन खेड़ा केसी वेणुगोपाल आपको दूसरी तस्वीर में दिखाई देंगे, पुलिस बल मौजूद है, वो जो काली ग्रिल है वो पकड़े हुए हैं। मौसमी वहां पर इस समय ग्राउंड जीरो पर है। मौसमी, कांग्रेस मैदान अभी तक छोड़ती नहीं दिख रही है।
10: रागनी, बिल्कुल देखिए यहाँ पे रागनी है, उनसे पूछते हैं कि लगातार अपना डिटेंशन को राहुल गांधी कहीं ना कहीं प्रोलॉन्ग करते हुए नजर आ रहे हैं। बस में चले गए थे, उसके बाद यहाँ पे चले आए, अब आगे क्या होगा?
12: नहीं, बस में जाने नहीं दिया गया, बस चला दी गई है, लेकिन समस्या ये है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने क्यों नहीं दिया जा रहा है? और अगर ज्ञानेश कुमार का मुख्य चुनाव आयुक्त का दामन पूरी तरीके से साफ है तो छुपाए क्यों घूम रहे हैं? वोट चोरी नहीं की तो मिलते क्यों नहीं, जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? और सबसे बड़ी बात कि जब जब चुनाव आयोग को राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष घेरता है तो भारतीय जनता पार्टी या दोपहर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेस वार्ता करने क्यों आ जाते हैं? ये तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात हो गई। पहले तो चोरी की आपने फॉर्म 6 में, जहां कॉमा भी आप नहीं लगा सकते। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल एक्ट कहता है केंद्र सरकार और संसद की मर्जी के बिना। आपने डिक्लेरेशन फॉर्म चिपका दिया और फिर रातों रात गायब कर दिया, यानी कि एडमिशन ऑफ गिल्ट भी है। उसके बावजूद ये सफाई देते फिर रहे हैं और आज तो कमाल ही हो गया। एक जैसे चंदा चोरी के बाद, चढ़ावा चोरी के बाद धर्म को ढाल बनाते हैं, आज भी गणेश जी को ले आए। तो गणेश जी तो विघ्न हरता है। अगर लोकतंत्र और संविधान पर विघ्न आएगा तो बचाने के लिए तो राहुल गांधी खड़े हैं, गणेश जी कहाँ जाएंगे, हमारे साथ ही जाएंगे। पर धर्म को ढाल बनाना बंद कीजिए, ये धर्मद्रोह है।
2: ये आज बताइए पीछे क्या हो रहा है, ये हरकत दिख रही है बार बार राहुल गांधी को गेट खोलने की बात।
12: राहुल गांधी ने कहा कि हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं, उनको मार्च करने दिया जाए।
2: चुनाव आयोग के चौखट पे पहुंच जाएंगे तो
12: उन्होंने कहा कि मिलना चाहते हैं, मिलने दीजिए। अगर आप रोक रहे हैं तो वो रास्ता बना रहे हैं, और रास्ता तो बनाएंगे और ईंट से ईंट भी बजाएंगे। वोट चोरी इस देश में नहीं चलेगी। राजनाथ सिंह ने प्रेस वार्ता करके कहा था कि ये मोदी सरकार है, यहाँ इस्तीफा नहीं होता, धर्मेंद्र प्रधान घर बैठे हैं। जनता ने ठान लिया है, राहुल गांधी ने ठान लिया है, और अब होना ये है कि वोट चोरी करने वाले ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होगा, पर वो जो कठपुतली को नचा रहे हैं मोदी और अमित शाह, उनका भी झोला उठाने का समय नजदीक आ जाएगा।
1: ठीक है मौसमी आपके पास हम लौटते हैं। हमारे संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल भी समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, आपकी लोकेशन कहां पर, आप इस समय कहां पर मौजूद हैं, वहां क्या हालचाल है?
13: देखिए मैं आपको बता दूं, मैं ठीक चुनाव आयोग के सामने खड़ी हूं, और हर रास्ता जो चुनाव आयोग तक जाता है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और उसका कारण यही है कि राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल वो यहां से महज 200 मीटर दूर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि वो सीईसी यानी कि ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करना चाहते हैं। जिस तरीके की बैरिकेडिंग है उससे आपको अंदाजा लगेगा कि आखिरकार तैयारी कितनी पुख्ता है। एक लेयर बैरिकेड मेरे पीछे है, दूसरा लेयर बैरिकेड भी आपको नजर आ रहा है, और उसके बाद पीछे आपको नजर आएंगे आरएएफ वाले यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स वाले लोग, यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स वाले जितने भी लोग यहां मौजूद हैं उनको इसीलिए बुलाया गया है ताकि अगर कुछ करके कुछ भी प्रोटेस्टर्स जो हैं या जो समर्थक हैं विपक्षी पार्टियों के वो कुछ भी करके इस बैरिकेड को तोड़कर पीछे जो चुनाव आयोग है उसकी बिल्डिंग तक ना पहुंच जाए। तो पूरी की पूरा जो इलाका है, चाहे वो अशोका रोड हो चाहे वो महादेव रोड हो, ये सभी इलाकों के अंदर इसी टाइप की बैरिकेडिंग कर दी गई है। आरएएफ के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से पीछे तैनात हैं, और रस्सियों से जो है ये बैरिकेड्स को बांध दिया गया है ताकि कोई भी बैरिकेड को तोड़कर या बैरिकेड को हिलाकर चुनाव आयोग तक ना पहुंच सके। सिर्फ एक सड़क नहीं, जितनी भी सड़कें हैं यहाँ पर, चुनाव आयोग को आप ऐसे मानिए कि एक फोर्ट्रेस के जैसे इस समय बना दिया गया है। बैरिकेड पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, और पुलिस कर्मी काफी लोगों को डिटेन होने के बाद भी यहाँ पर मौजूद है, तैनात है।
1: ठीक है ऐश्वर्या, आपके पास हम लौटते हैं, और राहुल गांधी है, बहुत ही कम समर्थक कांग्रेस के ही रह गए क्योंकि दूसरे दल के समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन कांग्रेस डटी हुई है। राहुल गांधी मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं, प्रियंका गांधी इस समय दिखाई दे रही हैं, वो कश्मकश वो रशाकशी इस समय कर रहे हैं, वो किसी तरह से चुनाव आयोग के दफ्तर जाना चाह रहे हैं। आकाशवाणी भवन में जाकर यह प्रयास किया गया कि वहां से चूंकि शॉर्टकट चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंच जाया जाए, लेकिन वहां पर भी संभव लग नहीं रहा है क्योंकि बाहर भी। अब एक बिल्कुल ताजा तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ में जो उनके सिक्योरिटी में वो तो वहां पर है, लेकिन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए राहुल प्रियंका दिखाई दे रहे हैं। यह समय की तस्वीर आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीर, क्योंकि आज बहुत मुश्किल हो रहा है वहां से तस्वीरों का सामने आ पाना क्योंकि सिग्नल की बड़ी समस्या है। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी गेट पर गार्ड्स के साथ जूझ रहे थे, लेकिन अब वो बैठ गए। एक तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव हिरासत में लिए गए, उन्होंने भी हमला बोला और उन्होंने कहा कि बंगाल इन्होंने लूट लिया। तो ऐसे में चुनाव आयोग मैं बैठे हुए जो ये बड़े पदाधिकारी हैं ज्ञानेश कुमार, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनको हटना चाहिए। आप इस समय प्रोटेस्ट देख रहे हैं, जबरदस्त चल ही रहा है कांग्रेस पार्टी, हम लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन अभी आकाशवाणी भवन के भीतर है, सड़क से आप आकाशवाणी भवन के भीतर चले गए थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी, हमारे संवाददाता मौसमी ठीक उस भवन के समय बाहर मौजूद है। मौसमी, भवन के भीतर से क्या अपडेट मिल रहा है, व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा अगला कदम?
2: बढ़ा दो ना,
1: मौसमी मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो प्लीज बताएं आपको क्या जानकारी आकाशवाणी भवन के भीतर से मिल रही है।
14: राहुल सर एक बुलेटिन करवा दो आकाशवाणी।
1: आज सिग्नल का बड़ा इशू है कि आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा हम जाएंगे, लेकिन वहां कुछ कार्यकर्ता आवाज जरूर दे रहे थे कि एक बुलेटिन आप आकाशवाणी से करते हैं। पीयूष मिश्रा भी हमारे संवाददाता आकाशवाणी भवन के समय बाहर मौजूद हैं। पीयूष, आपके पास क्या जानकारी है, भीतर क्या चल रहा है?
15: <laughs>
8: देखिए राजीव, इस वक्त मेरी मौजूदगी आकाशवाणी भवन के गेट नंबर 4 पर है, जहां पर राहुल गांधी धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। वो अंदर ही बैठ गए हैं। मैं एक बार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जहां पर आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी पेड़ के ठीक नीचे दोनों नेता बैठे हुए हैं। काफी भारी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता थे, हालांकि उन कार्यकर्ताओं को यहाँ से अब हटा दिया गया है। और दिल्ली पुलिस जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए। मेरे सहयोगी आलोक अगर आए और यहाँ से जूम करके, भैया थोड़ा सा अगर आप पीछे हो जाए, जूम करके आप देखेंगे, देखिए तस्वीर राहुल गांधी की जो आप गेट पर पहुंचे हैं। और वो यहाँ से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाने की कवायद बार बार कर रहे हैं। यानी वो एक तरफ जो आकाशवाणी भवन का ये जो गेट नंबर 4 है, यहाँ से बाहर निकल कर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो चुनाव आयोग के दफ्तर तक जा सके। राहुल के साथ दीपेंद्र हुड्डा भी नजर आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस के अधिकारी पर मौजूद है। और लगातार रिक्वेस्ट की जा रही है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से, कि वो यहाँ से हटे, यहाँ पर ना बैठे, क्योंकि ये सरकारी प्रॉपर्टी है। लेकिन राहुल गांधी फिलहाल, जैसे हमने वो तस्वीरें देखी थी, पीएमओ के ऑफिस के बाहर जाकर बैठ गए थे, वैसे ही आकाशवाणी भवन का जो गेट नंबर 4 है उसके ठीक पीछे एक पेड़ है, और पेड़ के नीचे ये तस्वीरें देखिए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों इस पेड़ के ठीक नीचे बैठे हुए हैं, और दोनों यहाँ बैठकर जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आकाशवाणी भवन है ये। मैं थोड़ा आगे बढ़ के भी आपको सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लगातार धरना पिछले 1-1.5 घंटे से जारी था। कांग्रेस और बाकी इंडिया ब्लॉक के जो
1: ठीक है आपके पास पीयूष, मैं लौटता हूँ। मौसमी, आपके पास क्या तस्वीर है समय?
10: अब एक सेकंड, ये देखिए हमारे साथ जीतू पटवारी और राजा बोरिंग, आइए उनसे बात करते हैं। जीतू भाई, आप कहां से यहां पे? ये तो सांसदों का था, यानी कि पहले से कांग्रेस की प्लानिंग थी कि सारे अध्यक्ष और इंचार्ज
15: देश के एक एक नागरिक को ये लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, देश के एक एक राजनीतिक कार्यकर्ता को ये लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। ये लड़ाई राजनीतिक दल की नहीं है, ये देश बचाने की, लोकतंत्र बचाने की। देश के साथ जो अन्याय, लोकतंत्र के साथ जो अपराध ज्ञानेश कुमार, नरेंद्र मोदी, बीजेपी कर रही है, उस अपराध से देश वाकिफ है, समझने लगा है, और उसकी सजा इनको मिलेगी।
10: दो मिनट रुकिएगा, देखिए ये अप्रत्याशित तस्वीर आज तक के दर्शकों को दिखाते हैं, जब जीतू पटवारी और राजा वारिंग से भी बात करेंगे। संजीव पीछे दिखाइए, आकाशवाणी भवन में ये बस जो है भीतर भेजने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी है आने की, उनके लिए बस को, क्योंकि वो तो बाहर आने से रहे, तो बस को भी अंदर भेजा जा रहा है। ये क्या दौर है?
15: ये अघोषित इमरजेंसी है। जब चुनाव आयोग के पास हम अपनी बात कहने जा रहे हैं, कांग्रेस अपने सारे सांसद 200 सांसद जा रहे हैं, फिर अमित शाह की पुलिस को क्या पड़ी है कि नहीं जाने दे रहे हैं? कोई व्यवस्था बनाते, बात करने की बात बनाते, ज्ञानेश कुमार से मिलते, अपनी बात कहते, अपना प्रोटेस्ट करते, तो ये रोक सवाल है चुनाव आयोग से, उत्तर है बीजेपी का, यही दाल में काला है।
10: आकाशवाणी भवन चले गए, आप तो राहुल गांधी की टैक्टिक्स को अच्छी तरह जानते हैं।
16: देखो
10: बस में चढ़े फिर उतर गए,
16: पूरी दाल काली है, बस पे चढ़े या बस पे चढ़ाकर वो पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। राहुल गांधी ऑपोजिशन लीडर है, देश के सबसे बड़ी जो ऑपोजिशन पार्टी है उसके LOP है, तो मेरे को लगता है उनको अगर इलेक्शन कमीशन के बाहर जाना है तो उनको रोका क्यों जा रहा है? बार बार पुलिस बल लगा के राहुल गांधी को रोकने की कोशिश, और तमाम सांसदों को और तमाम पॉलिटिशियनों को पकड़ के लेकर गए हैं पुलिस स्टेशन। जाने दीजिए ना, हमें जवाब लेने दीजिए उनसे।
10: अब ये क्या करने की कोशिश है? बस अंदर जा रही है, आगे दिखाइए ना संजीव, बस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, गेट पे है।
16: कोशिश क्या है? ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जल्दी निकले और पुलिस स्टेशन लेके जाएं, उनको डिटेन करें और उसके बाद हम रिलीज कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि देश के लोगों को बताएं कि राहुल गांधी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जो आज भगवान बन चुका है।
1: मौसमी, मैं चाहता हूं कि एक एक सवाल आप जरूर उनसे पूछें कि कांग्रेस ही अब अकेले दिखाई दे रही है क्या? मतलब कांग्रेस ऑपोजिशन दूसरे दलों के साथ भी खेल कर गई, क्योंकि उनको हिरासत में लेने दे गया, वो चले गए। क्या उन्हें नहीं बताया गया था कि सड़क पर डटे रहना, हिरासत में नहीं लिया जाना है, और अब कांग्रेस ही कांग्रेस उनके ही समर्थक पहुंच गए हैं, सांसद भी नहीं, दूसरे कार्यकर्ता भी पहुंच गए?
10: देखिए राजीव, दर्शकों को बताना जरूरी है, ये डायनेमिक सिचुएशन होती है, जैसा परिस्थिति देखते हैं वैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। पहले से ही अगर आप बता देंगे तो उसी तरह से पुलिस तैयारी कर लेगी, यानी कि राहुल गांधी की टीम यहाँ की रेकी जरूर की होगी कि चुनाव आयोग के में कौन सी बिल्डिंगे हैं। अगर राहुल गांधी आकाशवाणी के बाहर बैठे
1: बॉस में आपके पास लौटते हैं, फिर से बसों में भरा जा रहा है सांसदों को। इमरान मसूद को आप इस समय देख रहे हैं, इमरान मसूद आप बस में बैठ के, मतलब कांग्रेस से सांसद हैं तो उनको तो हिरासत में ले लिया गया, लेकिन राहुल गांधी अभी इस समय आकाशवाणी भवन के भीतर हैं और वहाँ एक बस शायद भीतर जाए अब से थोड़ी देर बाद, वहाँ हलचल तो थी, मौसमी बता रही थी, और शायद उस बस में उनको जो है ले जाया जाए। लेकिन कांग्रेस एक तैयारी के साथ अब ऐसे लगता है कि पहुंची हुई थी। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी और सपा और दूसरे दलों की स्ट्रैटेजी में एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि हम इजीली हिरासत में नहीं लिए जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, और आकाशवाणी भवन के भीतर राहुल गांधी गए, ऐसा लगता है कि पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आई थी, और उसके बाद कांग्रेसी समर्थक भी आ जाएंगे। जैसे आपने जीतू वटवारी को देखा, राजवर्धन को देखा, वो भी वहां पर पहुंच गए, और हमने बहुत सारे और कार्यकर्ताओं को भी देखा, कांग्रेसी कार्यकर्ता, पहले सांसद दिख रहे थे, ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक दिख रहा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस बड़ी होती चली गई क्योंकि दूसरे दलों के जो सांसद हैं उनको तो हिरासत में ले लिया गया। इस समय चल रहा है प्रोटेस्ट, अभी भी भीतर ही धरने पर बैठ गए हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हम तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि एक शॉट जो आया है पहले का उसमें पीछे से दिखाई दे रहे हैं। मौसमी वहां ग्राउंड जीरो पर, मौसमी क्या इस समय अपडेट है, क्या बस भीतर जा रही है आकाशवाणी भवन के?
10: आप देखिए ये बस है जो हमारे बिल्कुल पीछे है ग्राउंड जीरो से, तस्वीर आज तक आपको दिखा रहा है आकाशवाणी भवन के बाहर, ये बस जो डिटेन करने के लिए राहुल गांधी को अंदर ले जाई जा रही थी, इतने कार्यकर्ता आ गए कि बस का गेट नहीं खोल पाया और उन्हीं कार्यकर्ताओं को भर के, आप देखिए कार्यकर्ताओं के हाथ में लाउड स्पीकर भी है और बकायदे नारेबाजी कर रहे हैं, इमरान मसूद को भी इसी में भर दिया था, और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे सांसद नहीं कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंच गए हैं जिनको अब इस बस में के ले जाया जा रहा है, यानी कि एक बारी और राहुल गांधी को डिटेन करने का जो अटेम्प्ट है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कोई भी बस पहुंच ही नहीं पा रही है वहां जहां राहुल गांधी खड़े हुए हैं धरने पर, और ऐसा लगता है कि अब ये लंबा खींचने वाला है, एक के बाद एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बस में डिटेन किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लग रहे।
1: ठीक है मौसमी, आपके पास लौटते हैं, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, इस समय प्रोटेस्ट चल ही रहा है, गाड़ी भीतर की तरफ बताया जा रहा है कि जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि समर्थक बहुत हैं कांग्रेस पार्टी के तो उनको भी हिरासत में लिया जाएगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस समय भीतर हैं, तो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी ऐसे अलग दिखी कि बस में ना बैठ कर हम सरकारी दफ्तर के भीतर ही चले जाएंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोटेस्ट खींच जाएगा। आप इस समय तस्वीर देख रहे हैं तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी दिखाई दे रहे हैं और शायद चरणजीत सिंह चन्नी भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। आप श्रेया चैटर्जी भी हमारे संवाददाता है चुनाव आयोग के दफ्तर के बारे में, श्रेया वहां पर किसी तरह की कोई मूवमेंट कोई हलचल है या नहीं?
17: देखिए वहां पे तो चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो वहां पे बहुत भीड़ है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आकाशवाणी भवन के सामने हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअली राहुल गांधी बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के जवान है तमाम लोग वो बात करने की मीडिएट की कोशिश कर रहे हैं ताकि राहुल गांधी यहां से अपने धरने से हट जाए, लेकिन विजुअली आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी से लेके राहुल गांधी से लेके सारे जो तमाम कांग्रेस के और कार्यकर्ता भी हैं वो यहां राहुल गांधी के साथ अंदर मौजूद है। हम चरणजीत सिंह चन्नी को भी देख सकते हैं विजुअल पे, और दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये निकल जाए, लेकिन फिलहाल ये आकाशवाणी भवन के अंदर अभी भी बैठे हुए हैं।
1: और कौन कौन कितने समर्थक भीतर दिख रहे हैं हमें, राहुल गांधी प्रियंका की तस्वीर तो दिख रही है। श्रेया आपको आवाज मिल रही है? उन तक शायद आवाज नहीं पहुंची, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, पुलिस के जवान बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के भीतर गए हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर तो कम से कम धरना मत दीजिए, और उनको उठाने का प्रयास चल रहा है। लेकिन हाँ, दीपेंद्र हुड्डा भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए हैं, और दूसरी तरफ और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, पवन खेड़ा, आपको दूसरे केसी वेणुगोपाल और दूसरे नेता आपको बाहर दिखाई दे, वो भी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के जवान उनको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब पुलिस बल यहां पर पहुंच गया है और वो समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सड़क पर प्रोटेस्ट आगे नहीं जाने दिया गया। बैरिकेडिंग थी तो एक स्ट्रेटेजी में बदलाव हुआ और आकाशवाणी भवन के भीतर इस समय प्रदर्शन चल रहा है। मौसमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि एक सरकारी दफ्तर का कैसे प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी और अपने आप में अनोखा।
18: दिखाइए।
19: नहीं हो पा रहा, बोला करो, नहीं हो पा रहा है
18: जी। बिल्कुल देखिए, अब ये मैं देख रही हूँ कि ताजा यूनिट आया, टुकड़ी आई है खाकी की, जो अभी आकाशवाणी भवन की तरफ आई है। दिल्ली पुलिस की अलग अलग यूनिट्स को जो है लाया जा रहा है। राहुल गांधी की गाड़ी देखिए आपकी आकाशवाणी भवन के गेट पर खड़ी है। एक वक्त में राहुल गांधी की ये है गाड़ी, ये वाली गाड़ी है सिल्वर रंग की। तो ये लगातार राहुल गांधी की टीम को भी लगा कि राहुल गांधी उस बस में बैठ गए, यानी कि ये पहले से प्लानिंग नहीं थी राजीव। राहुल गांधी ने डायनामिक कॉल ली और बस से उतर गए। उनकी टीम इनफैक्ट बस के आगे थी और उस बस को टेल करने वाली थी जिसमें राहुल गांधी चढ़े थे, लेकिन राहुल गांधी ने प्लान खुद बदला और फिर वो उतर गए। और अब देखिए कि प्रियंका गांधी के साथ उनकी ट्यूनिंग इस कदर है कि प्रियंका गांधी भी अब वहीं पे नजर आ रही है। तमाम 100 सांसदों का जखीरा है, लेकिन प्रियंका गांधी राहुल गांधी को बेहतर ढंग से समझती हैं। अभी आकाशवाणी भवन में वो उनके साथ नजर आ रही हैं और एकदम से लगभग कांग्रेस ने ये स्ट्रैटेजी बदली है, जिसके चलते अब हम देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष और इंचार्जेस कार्यकर्ता, न सिर्फ सांसद कांग्रेस के, वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और उसके साथ ही दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी यहाँ बढ़ती चली जा रही है। आकाशवाणी को ही उन्होंने अपना बेस कैंप एक तरीके से बना लिया है इस पूरे रणभूमि में, जो राहुल गांधी एक अग्नि परीक्षा के तौर पर देख रहे हैं। काफी उन्होंने ये बोला था कि आक्रामक होना चाहिए, अग्रेसिव होना चाहिए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कल उन्होंने अपने नेताओं को बोला और वही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इख्तियार करते हुए राहुल गांधी यहाँ पे अब पुलिस की अनाउंसमेंट होने लगी है। पीछे आप हमारे सुन सकते हैं, दिल्ली पुलिस अब चेतावनी देने पे आ गई है। 2 घंटे लगभग बीत गए हैं, राहुल गांधी टस से मस नहीं हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लग रहे हैं। कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ रही है, उनको बसों में भरा जा रहा है और फिर और नेता कार्यकर्ता आए जा रहे हैं और ये स्थिति लगातार बनी हुई है ग्राउंड जीरो से। राजीव,
20: तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ECI भवन जाने की कोशिश राहुल गांधी की, लेकिन इस बीच आकाशवाणी भवन पर उनको रोक दिया गया है। इसी पर यह घमासान लगातार छिड़ा हुआ है और जो बात लगातार राहुल गांधी करते आ रहे हैं उसी पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसा करिए कि यह आंदोलन जारी रहे, यह आंदोलन टूटे ना, हिरासत में भले ही कार्यकर्ता लिए जा रहे हो, लेकिन इस बीच जरूरत इस बात की भी है कि आखिरकार कैसे ये मूवमेंट 8 तारीख तक चलेगा, क्योंकि इसमें धीरे धीरे करके लोग डिटेन किए जाएंगे, हिरासत में लिए जाएंगे, उन्हें बसों में भरा जाएगा, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया जाएगा। यही वो प्रक्रिया है अमूमन जो अपनाई जाती है जब इस तरह के धरना प्रदर्शन होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा ना हो। ऐसा क्या किया जाए जो ये पक्ष का आंदोलन ऐसा हो कि हर किसी के जुबान पर इस आंदोलन का नाम रहे, हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अब रोक दिया गया है, लग नहीं रहा है कि वो ECI के दफ्तर पहुंच पाएंगे। श्रिया चैटर्जी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ, क्या अपडेट मिल रहा है, कहां तक अब पहुंच पाए हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्योंकि एक जगह पर बैठे हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या प्लान है, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये मूवमेंट रुके ना, ऐसा कैसे संभव होगा?
21: तो
17: बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ठीक मेरे पीछे बैठे हुए हैं आकाशवाणी भवन के इस पॉइंट पे, जो विजुअल्स आप लोग लगातार हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, और मैं मेरे कैमरामैन नासिर को दिखाऊं बोलूंगी कि वो थोड़ा सा रास्ता दिखा दे कि राहुल गांधी क्यों आकाश भवन के इस तक आए थे, क्योंकि इसी पॉइंट से आप निकल के इस लेन का इस्तेमाल कर ले तो आप निर्वाचन सदन पहुंच जाएंगे, तो इसीलिए राहुल गांधी इस पॉइंट तक आए थे। उनका कोशिश ये था कि वहां से निकल के पीछे के इस रास्ते का यूटिलाइज करके वो निर्वाचन सदन तक पहुंच जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो तमाम पुलिस बल है उन्होंने रोक लिया है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब जो अंदर है उनसे लगातार बातचीत चल रही है अपना धरना एंड करने के लिए, और डिप्लॉयमेंट आप देख सकते हैं ये रूट तो बैरिकेड है, और क्योंकि ये रास्ता बैरिकेड है तो इसीलिए वो आकाशवाणी भवन के इस पॉइंट पे घुसे। उन्हें लगा कि अगर वो बैक गेट, क्योंकि 5 नंबर जो गेट है वो इसी लेन से कनेक्टेड है, वहां से अगर वो निकल पाए तो वो एक ऑप्टिक्स के तहत निर्वाचन सदन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो कोशिश ही रह गई, वो निर्वाचन सदन नहीं पहुंच पाए।
20: निर्वाचन सदन नहीं पहुंच पाए, इसी की तमाम तैयारियां सुबह से ही कर ली गई थी प्रशासन द्वारा, और ऐसे में अब आगे भी संभव नहीं लग रहा है श्रेया कि ऐसा हो पाएगा। अब यहां से वो हटेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा है कि उनका मूवमेंट या आंदोलन जारी रहेगा, तो अब प्रशासन क्या अब डिटेन करेगा उन्हें, यहां से जबरदस्ती उठाया जाएगा दोनों भाई बहन को?
17: देखिए वही

0: बनाया जाए। और इसी के तहत हम लगातार देख रहे हैं कि अंदर जहां राहुल गांधी मौजूद है, जहां प्रियंका गांधी मौजूद है, तमाम दिल्ली पुलिस के कार्यकर्ता वहां उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बातचीत की प्रयास चल रही है। हालांकि अगर अंत तक राहुल गांधी ना माने, आप देखिए डीसीपी न्यू दिल्ली सचिन शर्मा भी अंदर आ चुके हैं और डीसीपी न्यू दिल्ली भी अभी यहां पे मौजूद है। लगातार प्रयास चल रहे हैं कि राहुल गांधी मान जाए, राहुल गांधी अपना प्रोटेस्ट कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल राहुल गांधी मानने के लिए नाराज और इसी पॉइंट से वो अभी भी के लिए नाराज दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिशियल्स, क्योंकि मैं डीसीपी न्यू दिल्ली को देख पा रही हूँ यहाँ मौजूद है, कोशिश भी चल रही है कि बातचीत हो और यहाँ से वो हटे, लेकिन फिलहाल टस से मस नहीं हुए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस के और भी नेता जैसे चरणजीत सिंह चन्नी को भी हमने देखा थोड़ी देर पहले, वो भी यहाँ पे अभी भी मौजूद है।
1: तस्वीरें लगातार पहुंच रही हैं, दिग्गज कांग्रेस के नेता सांसद सब राहुल गांधी के समर्थन और सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। बहन लगातार उनके साथ जुड़ी हुई है, कुछ बातचीत भी की जा रही है और भीषण गर्मी के बीच ये दोनों डटे हुए हैं। इस वक्त आकाशवाणी भवन जहां से एक पतली लेन बताया जा रहा है इसी दफ्तर तक जाती है, इन्होंने कोशिश की उस लेन से वहां तक पहुंचने के लिए, इन्हें बीच में रोक दिया गया। मौसमी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, अब ये कैसे जारी रहने वाला है, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यहां पर रोकना एक मकसद के साथ है कि वहां जो उन्हें ईसी दफ्तर तक पहुंचना था वो कम से कम संभव ना हो पाए, लेकिन अगर दिन भर यही तो नहीं चल सकता, अब डिटेन करने की तैयारी है क्या?
2: देखिए, डिटेन करने की चाहत तो होगी, लेकिन जिस तरीके से श्रेया भी बता रही हैं, काफी भद पिट चुकी है दिल्ली पुलिस की पिछले एक दो महीने से। और पिछली बार जब राहुल गांधी को तुरंत ही डिटेन कर लिया गया था, मिनटों में जैसे ही अखिलेश यादव आए थे नेहा 7 RCR पर, तब वो जो तस्वीर है वो बड़ी वायरल हुई थी कि 7-8 पुलिसकर्मी राहुल गांधी को घसीट रहे हैं, उठा रहे हैं और नाक से खून निकल रहा था राहुल गांधी की, ऐसी तस्वीर वायरल हुई थी। तो वो तस्वीर को रिप्ले नहीं करना चाहती दिल्ली पुलिस। एक बात तो इससे स्पष्ट है, जो पेशेंस और सब्र दिल्ली पुलिस दिखा रही है, एक रीथिंक हुई है स्ट्रैटेजी में। सांसद हैं, इनको मारपीट नहीं सकते, इनको डिटेन करने के लिए ज्यादा रस्साकशी नहीं कर सकते, उस तरह का सौम्यता और आग्रह करके, अनुरोध करके उनको डिटेन कर सकते हैं। तो उसमें जो नेता डिटेन हो गए वो डिटेन हो गए, कई लोग नहीं जाना चाहते थे तो भी उनके लिए एक घेराबंदी करके उनको भेज दिया गया। अब तीसरी स्ट्रैटेजी यह है कि राहुल गांधी ने इसको एक लॉन्ग ड्रॉन पॉलिटिक्स बैटल की तरह ले लिया है और यहां तक पहुंच गए थे राहुल गांधी हमारे सामने ही, और फिर अबाउट टर्न यू टर्न लेके आकाशवाणी भवन अंदर घुस गए। तो अब नींद तो उड़ेगी दिल्ली पुलिस की, क्योंकि ये वही हाल हो गया है जो 7 RCR के बाहर हुआ था। हालांकि वो हाई सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री आवास है, लेकिन ये चुनाव आयोग की बिल्कुल नाक के नीचे राहुल गांधी बैठ गए। अगर आप आकाशवाणी भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर जाना चाहें तो आपको 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में आप पैदल जा सकते हैं, इतने पास है। तो कब तक बैठे रहेंगे राहुल गांधी, क्या उनको उठाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको डिटेन करना ही पड़ेगा।
1: बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एक ट्वीट किया गया है कांग्रेस पार्टी के हैंडल द्वारा, जिसमें कहा है कि ईसी से लगभग 300 मीटर की दूरी पर राहुल गांधी मौजूद है और इस वक्त आकाशवाणी भवन पर धरने में बैठे प्रियंका गांधी के साथ पेड़ के नीचे राहुल गांधी की मौजूदगी है। प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस प्रदर्शन को लेकर अभी अभी ये पोस्ट किया है, जिसमें लिखा गया है कि आकाशवाणी भवन में डेरा जम गया है, यानी कि यही प्लान था, यही स्ट्रैटेजी थी। मौसमी जुड़ी हुई हमारे साथ। मौसमी, अब तो ये लगभग साफ हो गया है कि यही स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि उनको मालूम था कि इसी दफ्तर वो नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उसके बेहद नजदीक आकाशवाणी भवन को चूज किया और सांकेतिक तौर पर यही माने कि वो लगभग पहुंच ही गए इसी दफ्तर, जहां कह रहे थे वहां पहुंच गए, भले ही वहां पर पीछे अभी ना दिख रहा हो आकाशवाणी भवन, लेकिन माफ कीजिएगा इसी दफ्तर, लेकिन आकाशवाणी भवन तक पहुंचना भी एक तरीके से वहीं तक पहुंचना है।
2: बिल्कुल नेहा, इसे ऐसे समझ लीजिए कि नई संसद और पुरानी संसद में कितना ही फासला है, दोनों आसपास है, पड़ोसी हैं और लगभग 50 कदम की दूरी है। यहाँ 50 कदम की दूरी नहीं, लगभग 200 कदम की दूरी मान लीजिए, लेकिन दोनों बिल्डिंगें आपस में सटी हुई हैं। जैसे ही आकाशवाणी भवन खत्म होता है, एक छोटी सी गली है और उसके बाद चुनाव आयोग की बिल्डिंग चालू हो जाती है। इसी रास्ते से ज्ञानेश कुमार

0: और तमाम पदाधिकारी जो हैं इसी यहीं से उनकी गाड़ियां गुजरती हैं। तो अपने आप में मानिकम सर, मानिकम सर, एक मिनट आप वहीं पर रहिए। अरे मानिकम सर, वो नेटवर्क नहीं आ रहा है सर, इधर आ जाइए जरा, लाइट चल रहा है। तो ये राहुल गांधी का ये चर्चा हम कर रहे थे नेहा से कि रीथिंक हुआ है या पहले से प्लान था कि हम इस गुरिल्ला वॉरफेयर में आकाशवाणी भवन में धरना देंगे, इज इट अ पहले से प्लान?
1: कोई पहले से प्लान नहीं था, हम लोग जा रहे थे प्रोटेस्ट करते इलेक्शन, वी आर गोइंग टू द इलेक्शन कमीशन टुडे एंड हम लोग जा रहे थे इलेक्शन कमीशन जाने का पहले ये लोगों ने ये डिटेन किया है और एमपी का डिटेन करके वहाँ अलग अलग पुलिस स्टेशन में थानों में लेके गया है और अभी राहुल गांधी जी और प्रियंका जी का वहाँ आकाशवाणी भवन पे डिटेन किया है।
0: तो क्या प्लानिंग है वहाँ पे, डिटेन कर लिया है कि वहीं बैठेंगे रात भर या क्या प्लानिंग है?
1: हम लोगों का एक ही है, हम लोगों का प्रोटेस्ट जेन्युइन है, ज्ञानेश कुमार का खिलाफ, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा का मांग रहे हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन और 200 एमपीज का ऊपर हम लोगों ने मार्च किया और राहुल गांधी जी उसी प्रोटेस्ट का अंदर बैठे हैं, उनका जाने नहीं दे रहे, हम लोग अंदर उनका पास जाने नहीं दे रहे हैं, उनका बाहर नहीं
0: दे रहे, अंदर गेट के
1: अंदर नहीं जाने नहीं दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस उनका बाहर आने नहीं दे रहे हैं।
0: लेकिन यहाँ मानिकम सर ये भी बता रहे हैं, मानिकम टैगोर जो चीफ व्हिप भी है पार्टी के लोकसभा में, अभी तो अध्यक्ष है तमिलनाडु के, पर वो बता रहे हैं कि वो भी अंदर नहीं जा पा रहे, यानी कि अगर सांसदों को पता होता राहुल गांधी आकाशवाणी भवन में बैठेंगे पहले से ही तो आप लोग पहले ही अंदर होते,
1: अंदर यहाँ वहां हो जाते थे हम लोग, बट हम सारे लोगों का, हमारा सारे साथियों का डिटेन करके अलग अलग पुलिस थानों में लेके चले गए थे। अभी कुछ लोग, हम 12-13 लोग हैं एमपी और वो सारे लोगों का हम लोग यहाँ अभी आके मिलने के लिए, राहुल गांधी जी से मिलने के लिए, राहुल गांधी जी कहाँ किस थाने में करके पता करने के टाइम पे पता लगा, यहाँ लगाया ये आकाशवाणी भवन पे और आकाशवाणी ऑफिस में पूरी पुलिस अरेस्ट करके रखी है राहुल गांधी जी का।
0: अच्छा, ये आप लोग का सबका सांसदों का धरना था, पर हम देख रहे हैं तमाम कांग्रेस के नेता भी आ गए, कार्यकर्ता भी आ गए,
1: सारे कांग्रेस का, दिल्ली का कांग्रेस का और बाकी सारे कांग्रेस का लीडर्स, कोई कोई दिल्ली में थे आज, वो सारे राहुल गांधी जी का इस डिटेंशन का पता होने की वजह से सारे लोग आ रहे हैं यहाँ और हम लोगों का ये लड़ाई ज्ञानेश्वर कुमार का खिलाफ है, ज्ञानेश्वर कुमार का हम विरोध करते हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। अभी देखिएगा वहाँ आकाशवाणी भवन का अंदर बस लेके जा रहे हैं, राहुल गांधी जी का डिटेन करके वहाँ अंदर रखे थे, अभी अंदर से उनका डिटेन करके लेके आएंगे लग रहा है।
0: अब देखिए कि राहुल गांधी की गाड़ी भी पीछे वहां पे खड़ी हो गई है गेट पे और एक बस, मानिकम सर मैं देख रही हूँ कि एक बस अंदर चली गई है, राहुल गांधी पहले भी मशक्कतें हुई थी।
1: ये बार बार ये दिल्ली पुलिस ऐसे काम करती है, दिल्ली पुलिस सिर्फ राहुल गांधी जी का ऊपर टारगेट करके काम करती है, राहुल गांधी जी का उनका डेमोक्रेटिक राइट भी करने नहीं दे रही है, वो सिर्फ प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, उस प्रोटेस्ट का भी रोक रही है दिल्ली पुलिस।
0: मानिकम सर मैंने अभी खड़गे साहब से भी बात करी, वो तो कह रहे हैं इलीगल है, एमपीज भी इलीगल है, पीएम भी इलीगल है, खड़गे साहब ने आज तक से कहा कि सरकार को भंग करना चाहिए, उनको गद्दी छोड़ना चाहिए, सही है ये
1: सही है, बिल्कुल सही है, क्यों मीन्स ये सरकार वोट चोरी करके जीती हुई है, इसका सरकार का इलीगल सरकार, इसलिए वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी करके सरकार बनाया गया और इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। आपका अधिकार का, किसी का वोट का अधिकार छीन के 13 करोड़ वोट लोगों का SIR का थ्रू काट के ये स्टेट्स में सरकार बना रहे हैं, ये बिल्कुल इलीगल है, इस इलीगल सरकार के खिलाफ
2: लौटेंगे आपके पास। बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के DCP इस वक्त आकाशवाणी भवन पहुंच चुके हैं, अब जाहिर तौर पर बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से वहां से हटने की अपील की जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा फोर्सफुली किया गया यानी कि उन्हें जबरदस्ती वहां से हटाया गया तो दिल्ली पुलिस एक बार फिर से मुश्किल में आ सकती है। मेरे सहयोगी पीयूष इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष देखिए, अब एक किला तो कम से कम राहुल गांधी ने फतेह कर लिया है, सांकेतिक तौर पर वो कम से कम EC दफ्तर के बेहद नजदीक मौजूद हैं, लेकिन यहां अब आकाशवाणी भवन से वो हटेंगे या नहीं ये बड़ा सवाल है। ऐसे में पुलिस के पास क्या विकल्प है, क्योंकि जबरदस्ती तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता, बातचीत ही की जा सकती है।
3: जी बिल्कुल, जबरदस्ती तो नहीं हटाया जा सकता। और हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब राहुल गांधी पीएमओ के गेट पर जाकर बैठ गए थे और काफी देर तक धरना प्रदर्शन सांसदों के साथ किया, और जब वहां पर स्थिति काफी बेहद गंभीर हो गई तब उनको वहां से जबरदस्ती हटाया गया। फिलहाल राहुल गांधी आकाशवाणी भवन के अंदर बैठ गए और हम कोशिश करेंगे, मेरे सहयोगी आलोक एक बार आपको दिखाएंगे। देखिए गेट, ये आकाशवाणी का गेट नंबर 4 है और सामने राहुल गांधी बैठे हुए हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी अंदर बैठी हुई हैं और ये पेड़ के ठीक नीचे दोनों भाई बहन सांसद भी हैं, वो दोनों बैठे हुए हैं और उनके ठीक साथ में केसी वेणुगोपाल अंदर बैठे हुए हैं। फिलहाल हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें राहुल गांधी अपने फोन पर कुछ मैसेज पढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं और उनके साथ में पवन खेड़ा, दीपेंद्र हुड्डा और कुछ सांसद मौजूद हैं। प्रियंका गांधी भी साथ में बैठी हुई हैं और कुछ देर में दोनों जो भाई बहन हैं उनके बीच में कुछ बातचीत होती है और फिर उसके बाद फिर जो है बाकी सांसदों के साथ तर्क वितर्क होता है। तो फिलहाल हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं आकाशवाणी भवन के अंदर की, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पेड़ के नीचे बैठे हैं। और एक तस्वीर मैं और आपको एक और दिखा दूं जहां पर हम मौजूद हैं नेहा, यहाँ से इलेक्शन कमीशन का ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है। ये है आकाशवाणी भवन, जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये आकाशवाणी भवन। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मेरे सहयोगी आलोक दास अगर आगे आए, बीच में पड़ती है ये गली। देखिए ये पूरी बिल्डिंग आकाशवाणी भवन है, बीच में पड़ती है गली और सामने जो आपको सफेद रंग की बिल्डिंग दिख रही है वो है एयर इंडिया, जिसको पहले एयर इंडिया की बिल्डिंग हुआ करती थी। और इसके ठीक सामने इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, यानी महज 50 मीटर दूरी पर इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है। इस गली का, माफ कीजिएगा, गली की जो एंट्री है वो भी यहाँ पर ब्लॉक कर दी गई है। कुछ गाड़ियां जो इमरजेंसी की गाड़ियां सिर्फ उनको अलाउ किया गया है। साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर भारी संख्या तैनात कर दिए गए हैं कि कहीं राहुल गांधी यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार सुबह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट्स होते हुए कि कैसे राहुल गांधी जो कुछ देर पहले यहाँ पर मौजूद थे उनको यहाँ से उठाया गया, डिटेन करने की कोशिश की गई, बस में एक बार उनको लेकर भी जाया गया लेकिन राहुल गांधी जबरन बाहर आ गए। कुछ देर तक वो सामने फुटपाथ पर खड़े रहे और उसके बाद सीधा आकाशवाणी भवन के
2: पास। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि राज्यसभा के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है, ऐसे में बीजेपी अपने तमाम कैंडिडेट्स को उतार रही है। आज नामांकन सभी का दरअसल ले लिया जाएगा, 6 कैंडिडेट्स हैं बीजेपी की ओर से जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, नामांकन के वक्त वो उनकी भी मौजूदगी है। और दूसरी तस्वीर आज की बड़ी खबर जिसमें विपक्ष लामबंद हो चुका है सरकार के खिलाफ, ईसी का दफ्तर घेरने की तैयारी थी लेकिन इस बीच राहुल गांधी की मौजूदगी आकाशवाणी भवन में है जहां पर बेहद करीब ईसी का दफ्तर है। तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि आज का ये आंदोलन दरअसल खत्म कैसे किया जाएगा। उससे पहले बड़ी चुनौती है कि दोनों भाई बहन को यहां से हटाया कैसे जाएगा क्योंकि दोनों वहां पर इस वक्त शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। पहले ये कोशिश थी कि कांग्रेस के सांसद भी यहां तक पहुंचेंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ये भवन बंद कर दिया गया, इसके तमाम गेट्स बंद कर दिए गए और ऐसे में वहां पर जितने लोग अंदर मौजूद हैं बस वही वहां पर पहुंच सके। तो दूसरी तस्वीर आप देखिए, नामांकन का पर्चा दाखिल किया जा रहा है, इसमें दोनों डिप्टी सीएम आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और ऐसे में आज आखिरी दिन जो सभी कैंडिडेट्स हैं, 8 उम्मीदवार हैं, सभी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। श्रेया मेरी सहयोगी जुड़ गई है इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। श्रेया, दरअसल ये ऐसा मालूम हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी की जो आउट ऑफ बॉक्स स्ट्रैटेजी थी यही थी कि हमें इसी दफ्तर जाने से रोका जाएगा, ऐसे में सबसे नजदीक आकाशवाणी भवन है वहीं पर हम धरना देंगे। दोनों भाई बहन मौजूदगी उनकी काफी, उनको मालूम था कि बाकी सांसद को अलाउ नहीं किया जाएगा।
4: देखिए बिल्कुल, और जैसे मैं बात कर रही हूँ एक गाड़ी आकाशवाणी भवन के अंदर आ चुकी है और कोशिश दिल्ली पुलिस द्वारा यही रहेगी कि राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के और नेता हैं वो यहां से हट जाए। प्रतीक के तौर पे उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, निर्वाचन सदन के सबसे पास वेंटेज पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश की गई और अभी आप हमारे कैमरे में जो आप देख सकते हैं ये आई है राहुल गांधी को ले जाने के लिए। तमाम आप देख रहे हैं महिला पुलिसकर्मी भी है, एक बस भी अंदर आ चुकी है जहां पे राहुल गांधी बैठे हैं और कुछ ही देर में हमें एक्शन दिखने को मिलेगा। अगर ये ना माने पुलिस की बातचीत से, खुद अगर ये ना हटे तो शायद इनको डिटेन करने की कोशिश की जाएगी।
2: श्रेया, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब अगर डीसीपी पहुंचे हैं दिल्ली के, क्या बातचीत की कोशिश शुरू हो चुकी है? क्या वो राहुल गांधी को वहां से हटने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे या फिर डिटेन की संभावना एकदम जीरो के बराबर नजर आ रही है?
4: प्रमोद जी, देखिए अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि शायद डिटेन ही होगा, क्योंकि बस भी हमें दिख रहा है आकाशवाणी भवन के इसी पॉइंट पे जहां पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद है। पुलिस की भी तैनाती बढ़ गई है, महिला पुलिस बल यहां अंदर थे नहीं लेकिन अभी महिला पुलिस भी अंदर बुला ली गई है। डीसीपी नई दिल्ली यहां पे मौजूद है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस की अलग अलग जो लीडर्स है, दीपेंद्र हुड्डा से लेकर चरणजीत सिंह चन्नी, हमने बीवी श्रीनिवास को भी अंदर देखा, इनसे कोशिश कर रहे हैं बात करें और राहुल गांधी को मनाया जाए कि ये खुद यहां से हट जाए। हालांकि ऐसा कुछ होते हुए नजर आ नहीं रहा है और इसी बीच शायद कुछ ही देर में हमें ये विजुअल मिल जाए कि इनको डिटेन कर ले। आप विजुअल देखिए कि कितनी भारी मात्रा में अब पुलिस बल को अंदर ले आया गया है।
2: कुछ तस्वीरें अगर आप हम तक पहुंचा सकें श्रेया, वहां से जहां पर इस वक्त ये तमाम गतिविधि चल रही है।
4: देखिए मेरे कैमरे में नासिर ठीक आपको विजुअल दिखा रहे हैं, यहाँ पे राहुल गांधी बैठे हैं मुस्कुरा के, दीपेंद्र हुड्डा से वो बात कर रहे हैं, बाजू में प्रियंका गांधी भी उनके साथ बैठी हैं और ये हमारे कैमरे से अगर आप देख पा रहे हैं सारे विजुअल्स, तो कोई भी पुलिसकर्मी फिलहाल अभी राहुल गांधी से बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने नेता के साथ बात कर रहे हैं, हंस रहे, मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे कोई माथे पे उनकी शिकंज तो नहीं दिख रही है। लेकिन तमाम जो दिल्ली पुलिस की यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है उन आपस में बातचीत हो रही है। हम देख सकते हैं कि डीसीपी न्यू दिल्ली और तमाम जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स है वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं लगातार और थोड़ी देर में पिक्चर क्लियर हो जाएगा क्योंकि बस आ चुकी है। नासिर, अगर आप एक बार बस की तस्वीर भी दिखा दे हमारे दर्शकों को कि कैसे एक बस और गाड़ी भी यहाँ पे स्टेशन हो चुकी है, क्योंकि फिलहाल राहुल गांधी अभी भी नहीं हटे, प्रियंका गांधी भी यहीं बैठी हुई है और पुलिस जो है उनसे फिलहाल कोई बातचीत नहीं कर रही है।
2: ठीक है, और इस बीच दूसरी तस्वीर दिखाना भी बेहद अहम हो जाता है जहां पर यूपी में बीजेपी के 8 उम्मीदवारों का आज नामांकन होना है। एक एक करके ये सभी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। मौजूदगी दोनों डिप्टी सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ की खुद है। इससे पहले हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, तीसरे पर संशय बना हुआ था, लेकिन यहां पर बीजेपी की लिस्ट पूरी तरह से स्पष्ट है। 8 अलग अलग वर्गों का ध्यान रखा गया है जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी सभी को ध्यान में रखकर ये लिस्ट बनाई गई है। राज्यसभा के लिए आज बीजेपी उम्मीदवारों का पर्चा भरने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
5: क्या कह रहे
6: हैं?
2: श्रेया मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। श्रेया, देखिए 100 से ज्यादा सांसदों ने सड़क पर प्रदर्शन किया, लेकिन दोपहर होते होते तस्वीर अब 2 अहम शख्सियत पर टिक गई है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। पिछली बार भी राहुल गांधी ने मोर्चे को लीड किया था, 7 RCR की तस्वीरें हम भूले नहीं है। उस बात से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस आज क्या करेगी कि वैसी किरकिरी ना हो जैसी उस दिन हुई थी?
4: बिल्कुल, और वही हम रवैया भी देख रहे हैं क्योंकि अभी आधे घंटे से ऊपर हो चुका है कि राहुल गांधी आकाशवाणी भवन के अंदर है और क्योंकि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, दिल्ली पुलिस की प्रयास यही है कि तमाम कैमरा जब अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर है तो ऐसा विजुअल ना जाए कि उनको जबरदस्ती उठाया जा रहा है। यही कुछ प्रयास अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से चल रही है क्योंकि तमाम जो पुलिस पर्सनल है आप देख सकते हैं नेहा विजुअली कि यहाँ पे पुलिस बल भी अभी भारी मात्रा में बुलाया गया है, बस भी यहाँ पे स्टेशन्ड है। हालांकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुपचाप बैठे हुए हैं, मूवमेंट उनके तरफ से बिल्कुल नहीं है और दिल्ली पुलिस भी अभी वेट एंड वॉच मूड में है। वो अन्य जो अपने ऑफिशियल्स है कांग्रेस के, जैसे हम दीपेंद्र हुड्डा को देख सकते हैं, इन सारे लोगों से बातचीत जरूर कर रही है, लेकिन राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की तरफ फिलहाल कोई दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल ने अभी तक बात नहीं किया। दीपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी को कुछ बता रहे हैं, शायद दिल्ली पुलिस द्वारा जो कम्युनिकेशन हो रही है वो उनको साझा किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल मूवमेंट नहीं है। एक गाड़ी, एक बस स्टेशन है, बहुत सारे पुलिस बल जरूर है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ अभी भी बैठे हुए हैं।
2: और जिस तरीके से श्रेया, दरअसल राहुल गांधी ने साफ कहा था कि आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, और ऐसे में जब उन्हें दफ्तर जाने से रोका गया चुनाव आयोग के, तो वो यहीं पर धरने पे बैठ गए हैं। अब बड़ा सवाल ये कि ये कब तक जारी रहने वाला है, क्योंकि पूरे दिन तो ऐसा चल नहीं सकता। अब हम क्या माने, इस वक्त वन अप स्थिति है राहुल गांधी की। कम से कम तस्वीरों में तो ये दिख रहा है कि दो अहम शख्सियत, दो सबसे प्रमुख चेहरे कांग्रेस पार्टी के और इस पूरी प्रदर्शन को लीड करने वाले राहुल गांधी ने जो सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है उनके प्लान के मुताबिक।
4: बिल्कुल, और यही एक तरीके से ऑप्टिक्स है नेहा। आप देख सकते हैं कि जो कारण है राहुल गांधी का यहाँ पे डटे रहना, क्योंकि आगे चल के कांग्रेस की यही प्रयास है कि जिला और विलेज लेवल तक वो प्रदर्शन करें गणेश कुमार के इस्तीफा की मांग करते हुए। पूरे अक्टूबर उनका यही प्लान है। तो ये जो विजुअल्स है नेहा, ये एक ऑप्टिक्स है अपने काडर को भी दुरुस्त करने के लिए कि देखो तुम्हारे सबसे शीर्ष जो नेता है, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, वो मैदान में है, वो मैदान में डटे हुए हैं। तो ये एक काडर को भी मैसेजिंग है हम कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का बहुत इलैबोरेट प्लान है कि विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल तक वो पूरे अक्टूबर तक ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और उसी का एक ऑप्टिक विजुअल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किसी से बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप वो बस बैठे हुए हैं, अपना प्रोटेस्ट जारी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ विजुअल ऐसा है कि दिल्ली की तमाम पुलिस ऑफिशियल खड़े हैं, दिल्ली की महिला पुलिस पर्सनल से लेकर जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो खड़े हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से इस लॉक जैम से वो बाहर निकले।
2: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने भी प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। आपको बता देते हैं कि दरअसल समाजवादी पार्टी की प्रमुख ने क्या पोस्ट किया है, चुनाव आयोग को लेकर ये पोस्ट आया है प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव का। आपसे कुछ ही देर पहले उन्होंने ये पोस्ट किया और इसमें लिखा है, जो देश के लिए लड़ते हैं वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। बीजेपी ही सीईसी है और सीईसी बीजेपी है, ये तमाम बातें इस पोस्ट में लिखी गई हैं। देश का एक मत, सीईसी दे त्याग पत्र। अब त्याग पत्र से तो कम नहीं मानने वाला है विपक्ष, ये दरअसल साफ है। प्रदर्शन की जब से शुरुआत हो रही है लगातार सीईसी की इस्तीफे की मांग ही की जा रही है। और सीईसी के डिफेंस में बीजेपी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी है, ऐसे में सवाल लगातार बीजेपी की भूमिका पर भी उठ रहे हैं। लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि वोट चोरी का मामला है, इसलिए सरकार गिरा देनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के साथ धोखा है। कई राज्यों में चुनाव इसी तरीके से धांधली से, धोखे से जीते गए हैं। फॉर्म 6 को लेकर भी सवाल उठाए गए। देश का एक मत है कि सीसी दें त्याग पत्र, अखिलेश ने पोस्ट में लिखा है।
6: मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया इस वीडियो को देखें।

प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं जिसमें सुधांशु त्रिवेदी को वीडियो दिखाना चाह रहे हैं और इस वीडियो के जरिए दरअसल जवाब दिया जाएगा जो सुबह से प्रदर्शन चल रहा है या फिर हो सकता है कि सीसी पर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम बातें कही जाएं। इस वीडियो का टाइटल देखिए, इसमें लिखा गया है दोगलेपन की हद और कांग्रेस के तमाम दिग्गज इसमें दिखाई दे रहे हैं जिसमें वो फेक और डुप्लीकेट वोट्स को लेकर अपनी बात कह रहे हैं। 2018 का ये वीडियो है एक जिसमें अभिषेक मनु सिंह भी दिख रहे हैं, 2026 का वीडियो है, 2026 का ही राहुल गांधी का भी वीडियो इसी में दिखाई दे रहा है। तो ये दरअसल वीडियो लेकर अब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है।

0: सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। श्रेया, देखिए कांग्रेस तो अपनी तैयारी में लगी हुई है, लेकिन बीजेपी की तैयारी भी कम नहीं दिख रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी वीडियो के साथ वो हाजिर हो गए, इस वीडियो के बारे में आपको कोई आइडिया है?
1: राहुल गांधी जी और उनके अनेक वरिष्ठ नेताओं के द्वारा यह कहा गया है कि नहीं, कि अनेक जगहों पर वोटर डुप्लीकेशन है। अभिषेक मनु सिंघवी भी बोल रहे हैं, अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं, सचिन पायलट जी बोल रहे हैं और तमाम नामी गिरामी लोग बोल रहे हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, केसी वेणुगोपाल जी बोल रहे हैं, हम उनसे यह पूछना चाहते हैं, आप 2016, 18, 20, 21 में सही थे या आज सही हैं? कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो तब सच बोल रही थी या आज सच बोल रही है। हकीकत यह, तब भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे हैं, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। कि तब तो वो सच था कि वोटर हटाए जाने चाहिए और जब हटाने की प्रक्रिया हो तो वो गड़बड़ हो रही है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, चार पांच सवाल। पहली बात तो यह कि जिन 13 करोड़ वोटर्स की बात आप कर रहे हैं, इसमें 2.8 करोड़ लोग मृतक हैं, 6.3 करोड़ लोग स्थानांतरित और 1 करोड़ लोग डुप्लीकेट हैं जिनका 2 जगह वोट है, और 3 करोड़ लोग अनुपस्थित हैं, नॉन ट्रेसेबल हैं। अब हम यह पूछना चाहते हैं, और इनमें भी यदि किसी के पास कोई भी आधार होता है तो उन्हें मौका है कि वो कागज दिखा के आ सकते हैं। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड, चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में लोग ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहेंगे, मगर मैं पूछना चाहता हूं ये 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे कि जब आप ये फिगर बोलते हैं तो उसमें डेड एंड डुप्लीकेट है या नहीं। और दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहते हैं, आज देश के सामने जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति होता है, वैसे एक प्रश्न पूछा जाना चाहिए, आज तक कांग्रेस ने देश की कितनी संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाया है? 1 दर्जन, आधा दर्जन, 1.5 दर्जन, 2 दर्जन, भारत की थल सेना से लेके, भारत की वायुसेना से लेके, भारत के डिफेंस से लेके, भारत की LIC से लेके, भारत के HAL, SBI, SEBI, वैक्सीन, कौन सी ऐसी चीज है, भारत का न्यायालय, भारत का मीडिया? तो मैं कांग्रेस पार्टी से आज देश के सामने पूछना चाहता हूं, इस पे क्विज कॉन्टेस्ट होना चाहिए कि भारत के कितने संस्थानों को कांग्रेस ने अब तक, खासकर राहुल गांधी ने, आरोपित किया है और विदेश में जाकर भी यह सब बोला है। वैसे तो उनके लिए बड़ी दुख की बात है, उन्होंने मार्च 2023 में जाके विदेश में बोला था, वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका, इंग्लैंड एंड यूरोप आर साइलेंट, दे आर नॉट एक्टिंग ऑन इंडिया। अब क्या कहा जाए, वो डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका ने तो कह दिया भारत के अंदर चुनावी प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से होती है और चुनाव आयोग से सीखना चाहिए। खैर, दूसरा प्रश्न, भारत में पहली बार किसी भी व्यवस्था में जांच नहीं हो रही है, ये पहले भी कई बार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जांच हो चुकी है कि जो वास्तविक लाभार्थी हैं, जिनका वास्तविक हक है, उन्हें मिलेगा कि नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद जब राशन कार्डों की जांच हुई तो 5.8 करोड़ राशन कार्ड ऐसे लोगों के पाए गए जो अस्तित्व में ही नहीं थे। जब मनरेगा के कार्डों की जांच हुई तो 2019 के बाद 4.45 करोड़ लोग ऐसे पाए गए जो अस्तित्व में ही नहीं थे और मनरेगा की मजदूरी पा रहे थे। जिन लोगों ने 5.80 करोड़ राशन खाया, जिन्होंने 4.45 करोड़ की मजदूरी खाई, वही लोकतंत्र खाने का प्रयास कर रहे हैं डेड एंड डुप्लीकेट वोटर्स के द्वारा। और हम बहुत स्पष्ट रूप से यह पूछना चाहते हैं कि इन वोटर्स की अगर जांच हो और उसके बाद यह स्थापित हो सके कि इन्हें मताधिकार वास्तविक वोटर को मिलना चाहिए या नहीं, जो आपके नेता बोल रहे थे और आप कह रहे हैं कि सबको मिलना चाहिए, तो इसमें किसका फायदा है? कांग्रेस से हम साफ पूछना चाहते हैं, कांग्रेस किन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है एब्सेंट शिफ्टेड डेड एंड डुप्लीकेट वोटर्स को वोटिंग राइट देकर बगैर किसी जांच के? पुनः कह रहा हूं, बगैर किसी जांच के एब्सेंट शिफ्टेड डेड एंड डुप्लीकेट वोटर्स के द्वारा क्या कांग्रेस किसको लाभ पहुंचाना चाह रही है? तीसरा प्रश्न, कांग्रेस ने बताया कि पिछला एसआईआर 2003 में हुआ था, उससे पहले आप कितने राज्यों में सत्ता में थे? मैं बात कह चुका हूं, पुनः रिपीट कर रहा हूं, उससे पहले कांग्रेस 228 लोकसभा सीटों वाले राज्यों से, यानी 2003 से पहले राहुल गांधी के राजनीति में पदार्पण का जो कहर बरपा है कांग्रेस पे, उससे पहले वो 228 लोकसभा सीटों वाले राज्यों में हमेशा हमेशा के लिए सत्ता से बाहर हो चुके थे। 1967 से तमिलनाडु 39 सीट्स, 1977 से पश्चिम बंगाल 42 सीट्स, 1990 से यूपी बिहार 120 सीट्स, 1995 से गुजरात 26 सीट्स, 1999 से उड़ीसा 21 सीट्स। इन 228 लोकसभा सीटों में आज आपके लिए 10 सीटें पाना भी मुश्किल होता है। यह किसके कर्मों की वजह से है? क्या इसका वोट से, जब भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में नहीं थी, जब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का कहीं नाम भी नहीं था, 67-77 उस जमाने से जो आप गायब हैं, वो किसकी वजह से है? तीसरा, हम यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, आपने आज तक कितने विधानसभा चुनावों में जाकर अपनी पार्टी के लिए डेरा डाल के चुनाव प्रचार किया है? कभी रहे 15 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता भी रहे? जैसे गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 25 दिन रहेंगे, राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, 2004 से आज तक कांग्रेस को चुनाव बताए जिसमें इन्होंने विधानसभा चुनावों में एट ए स्ट्रेच एक राज्य में 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता रहे हो। यानी वास्तविकता यह है कि ये काम चोर है और वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, जो काम ही नहीं करना चाहता। आज काम चोर शोर मचा रहा है, अन्यथा कांग्रेस से बताए। और अगला प्रश्न है, आज कई राज्यों में बाई इलेक्शन हो रहे हैं, क्यों भाई? कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, वोटर लिस्ट चेक करा ली है कि नहीं? क्योंकि आप लोग तो चुनाव में भाग ले रहे हैं, आपके इलेक्शन एजेंट भी बैठे हुए हैं, आपके प्रत्याशी भी वोटिंग करवा रहे हैं, और अभी 45 दिन का समय भी रहेगा सीसीटीवी भी मांगने के लिए। क्यों भाई, सब कुछ ठीक करवा लिया है कि एक साल के बाद ऐसे ही सड़क पे आके थिएट्रिक्स करने के लिए रखा है? अतः हम यह स्पष्ट कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी जो आंतरिक रूप से एक राजतंत्र है, जिसने लोकतंत्र का लबादा ओढ़ा हुआ है, वह वास्तविक लोकतंत्र को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए वह लोकतंत्र के हर स्तंभ के ऊपर पिछले 12 सालों में निराधार, निरर्थक, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। तो मैं पुनः ये एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, कांग्रेस ने आज तक कितनी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाए और कितने साबित हुए? क्वेश्चन नंबर दो, कि अगर मनरेगा में 4.5 करोड़ और राशन कार्ड में 5.8 करोड़ संदिग्ध लोग निकल सकते हैं, तो कौन सा अपूर्व ज्ञान कांग्रेस के पास है कि उन्हें लगता है कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध लोग नहीं निकल सकते? क्वेश्चन नंबर 3, पिछले एसआईआर 2003 से पहले आप जिन राज्यों से गायब हैं और सदा सर्वदा के लिए गायब हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और क्वेश्चन नंबर 4, आज तक राहुल गांधी ने कितने चुनावों में लगातार एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता या दो हफ्ता कैंप किया है और प्रचार किया है। और क्वेश्चन नंबर 5, आज चुनाव हो रहे हैं, उपचुनावों में वोटर लिस्ट चेक कर ली है नहीं, और सारे प्रश्नों के बाद आपको एक चीज साफ समझ में आएगी। और जो इनके नेता बोल रहे थे कि खुद कह रहे थे कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं, खुद कह रहे थे कि ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है और उनकी जांच होनी चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए, जब हटाया जाता है तब आकर यह अनर्गल प्रलाप करते हैं। इससे बस एक बात बहुत स्पष्ट है, जहां से बात शुरू की थी वहीं पे समाप्त करता हूं, निरंतर पराजय के कारण विक्षिप्त हो चुकी कांग्रेस पार्टी को एक बार पुनः अपना आंकड़ा भी देखना चाहिए। आज आप सब लोगों ने क्या देखा, उन्होंने कहा 140 सांसद जाएंगे, कांग्रेस से कितने सांसद हैं 99 लोकसभा में और 30-31 राज्यसभा में। भाई 130 तो आप ही के हैं, इससे बहुत साफ है कि कोई भी कांग्रेस का सहयोगी दल का सांसद इक्का दुक्का को छोड़ के, जिनके पास अब कोई काम नहीं रह गया है उनको छोड़ के आज कोई भी साथ में नहीं है। तो आप अपने एजेंडा पर अपने सहयोगी दलों को विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं और देश में से अपेक्षा कर रहे हैं कि आपकी इन झूठी बातों पर वह अविश्वास करे और वही बात जो आपके नेता पहले बोल रहे थे उस पर विश्वास करे या आज। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कांग्रेस से कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। धन्यवाद।
2: प्रश्न जी,
3: आपने जांच की बात की, जांच के बाद ठीक हो पाएगा कितने लोग कर लिए, लेकिन फॉर्म 6 को लेकर भी एक आपत्ति है।

0: देखिए इस विषय के ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है चुनाव आयोग के द्वारा कि फॉर्म 6 में कोई चेंज नहीं किया गया। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने विधिवत अधिकृत किया है कि कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है, और कौन कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी वो विषय कभी कोर्ट के पास नहीं जाता है। मैं एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं, अगर आप कहीं विश्वविद्यालय में, चूंकि आजकल शिक्षा का विषय बहुत उठता है, और आप ये कहते हैं कि फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री और पीएचडी बिफोर दिस डेट और नेट एन जो यूजीसी नेट होता है क्वालिफाई होना चाहिए, बेयर मिनिमम है, ठीक।
1: तो वोटर लिस्ट पर आप बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, सुधांशु त्रिवेदी वहां पर बोल रहे थे, लेकिन इस बीच आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से आकाशवाणी भवन, जहां पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो चुका है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्हें अब मोबिलाइज किया जा रहा है, बड़ी संख्या में आकाशवाणी भवन पहुंच रहे हैं क्योंकि इनके दो दिग्गज नेता अंदर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन गेट बंद है, दरवाजा बंद है, अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अब से कुछ देर पहले सिर्फ कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता जो पहले से ही मौजूद थे वहां पर दिखाई दे रहे हैं। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, देखिए जैसी आशंका थी वैसा ही हो रहा है, कांग्रेस इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती है, कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि जितना हो सके आज का दिन, जब बेहद नजदीक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इसी दफ्तर के पहुंच गए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे और शाम तक और हो सके तो रात तक ये मूवमेंट चलता रहे।
2: जी बिल्कुल, फिलहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आकाशवाणी भवन के अंदर मौजूद हैं और बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस की यही है कि राहुल गांधी को यहां से हटाया जाए। एक बार तस्वीरें दिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। ये आकाशवाणी भवन के अंदर की तस्वीरें हैं, आप देखिए कैसे राहुल गांधी अंदर बैठे हैं, उनके चारों तरफ पुलिसकर्मी इस वक्त खड़े हैं और बार बार मिन्नत जो है राहुल गांधी से की जा रही है कि वो यहां से हट जाएं। लेकिन अब दरअसल स्थिति ये हो गई है कि पिछले एक घंटे का समय हो गया और राहुल गांधी लगातार अंदर जमे हुए हैं। वो इसलिए उनका मानना है कि यहाँ से इलेक्शन कमीशन का मुख्यालय ज्यादा दूर नहीं है, तो एक तो पास में तो आकर बैठ गए। मैं एक बार आगे चल के भी आपको तस्वीरें दिखाऊं कि कैसे यहाँ पर धीरे धीरे करके कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया और कार्यकर्ताओं की तरफ से नारेबाजी भी शुरू हो गई है। और राहुल गांधी के समर्थन में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कुछ देर पहले यहाँ से डिटेन कर लिए गए थे, अब वो धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन ये भी देखिए कि कैसे एक तरफ जहाँ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं वहीं पुलिस का बंदोबस्त भी भारी संख्या में लगा हुआ है। आकाशवाणी भवन का ये गेट नंबर 4 है जहाँ पर राहुल गांधी पहुंच गए हैं। और देखिए इधर कार्यकर्ता जो है वो ग्रिल पर चढ़कर कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी भी बीच बीच में लगा रहे हैं। तो चारों तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे करके कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं और मोबिलाइज करने की कवायद कांग्रेस की तरफ से कार्यकर्ताओं को शुरू हो गई है, ताकि इसको एक बड़ा धरना बनाया जाए। सांकेतिक धरना जरूर राहुल गांधी दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मुख्यालय के पास में बने हुए आकाशवाणी भवन के अंदर, लेकिन इसी के माध्यम से मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है कि वो यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाए। हालांकि इस्तीफे को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आई है। बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जरूर कह रही है कि राहुल गांधी ने जो दावे किए वो पूरी तरह से गलत और झूठे दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। जी
1: अब ऐसे पुलिस प्रशासन की संख्या वहां पर पुलिस बल की बढ़ाई जाएगी क्योंकि कार्यकर्ताओं का जमावड़ा वहां पर शुरू हो गया है। हम कुछ पुलिस वाले इस वक्त देख भी पा रहे हैं गेट पर। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई है। मौसमी, आप क्या स्थिति देख पा रही है वहां से?
3: हमारे कैमरामैन संजीव आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे गेट के बाहर खड़े हुए हैं। हम 5 कदम की दूरी पर आप देखिए जो बस है उस पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता ये खड़े हो गए हैं। ये एनएसयूआई का झंडा लेके ये सारे आकाशवाणी भवन के भीतर घुस गए। मेन जो गेट है वो ब्रीच हुआ और ये कार्यकर्ताओं जो है राहुल गांधी की तरफ भाग पड़े। उसके बाद पुलिस ने इनको अभी डिटेन किया है, कुछ कार्यकर्ताओं को बसों में है, कुछ को कोशिश चल रही है। ऊपर आप देखिए कि एक युवक खड़ा हुआ है एनएसयूआई का झंडा लेके। ये तस्वीर आकाशवाणी गेट के भीतर की है जहां पे जिस रास्ते से राहुल गांधी, कुछ देर पहले आपने देखा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मशक्कत करके घुसे थे, और संजीव जूम इन करके आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार गेट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ठीक है, मैं लौटूंगे आपके पास। पीयूष मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, पिछली बार जब धरना प्रदर्शन हुआ था उस बार की स्थिति में और आज की स्थिति में कि आप क्या फर्क देख पा रहे हैं?
2: देखिए, पिछली बार जब धरना प्रदर्शन हुआ था नया, हमने वो तस्वीरें देखी थी जब पीएमओ के बाहर जाकर राहुल गांधी बैठ गए थे और उसके बाद जिस तरह से सीजेपी ने प्रोटेस्ट मार्च का ऐलान कर दिया था, तब उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन इस बार राहुल गांधी चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर पूरी तरह से अड़ गए और फिलहाल आकाशवाणी भवन के अंदर जाकर बैठ गए। मैं एक बार आपको चारों तरफ की तस्वीरें भी दिखा दूं। देखिए,
1: हाँ, तस्वीरों में पीयूष ये भी दिखाई कैसे आपस में इस वक्त संघर्ष की स्थिति है, पुलिस वाले और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। अब ये हिंसक ना हो जाए इसके लिए क्या सुनिश्चित किया जाएगा?
2: वही मैं आपको जी तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए, मेरे दाहिनी ओर जो है उधर यहाँ से महज 10 मीटर की दूरी पर आकाशवाणी भवन का गेट नंबर 4 है जिसके अंदर राहुल गांधी बैठे हैं और मेरे पीछे एक पूरी बैरिकेडिंग की लेयर यहाँ पर लगा दी गई है ताकि कार्यकर्ताओं को रोका जाए। उधर देखिए, अगर आलोक मेरे सहयोगी जूम करके तस्वीरें दिखा सके, सामने देखिए लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा
1: है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस वालों की संख्या बढ़ा दी गई है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, आप क्या तस्वीरें पहुंचाएंगे?
4: एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे आंदोलन में एक नया बूस्टर लगा दिया है। ये दरवाजा जो आकाशवाणी भवन का आप देख रहे हैं, इसको एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने ब्रीच करके अंदर घुस गए और अब दिल्ली पुलिस और एनएसयूआई के जो वोटर्स हैं, छात्र हैं, उनके बीच लगातार कंफ्यूजन चल रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं नेता राहुल गांधी तक पहुंचे। दिल्ली पुलिस कह रही है कि आकाशवाणी का भवन है, एक सरकारी दफ्तर है, उसके अंदर आप नहीं जा सकते हैं और लगातार वो जद्दोजहद चल रहा है। आकाशवाणी के भवन के अंदर एक बस दिल्ली पुलिस ने लगाया जिसके ऊपर कई बार एनएसयूआई के कार्यकर्ता चढ़े, उनको हटाया जा रहा है। सबके ऊपर आप देखेंगे तो इन लोगों ने गले पे एनएसयूआई का फ्लैग पहना हुआ है। तो अचानक से तकरीबन 100-150 छात्रों की एक्टिविस्ट एनएसयूआई एक्टिविस्ट की भीड़ यहाँ इकट्ठा होती है। आकाशवाणी भवन के दरवाजे को ब्रीच कर राहुल गांधी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग राहुल गांधी तक पहुंच भी गए लेकिन बाकी जो कार्यकर्ता गए वो अब डफली बजा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। सीसी ज्ञानेश कुमार
1: पर राहुल गांधी द्वारा तो कहा गया था सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि आज का धरना शांतिपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में ये मैसेजिंग उनके कार्यकर्ताओं तक, इन एनएसयूआई वर्कर्स तक नहीं पहुंची है क्या, या फिर वो समझाएंगे अभी?
4: देखिए नेहा, अभी ये जो कार्यकर्ता एनएसयूआई के यही कोशिश है कि नेता राहुल गांधी आकाशवाणी भवन के अंदर बैठे हुए धरने पे तो अपना समर्थन देने के लिए पहुंच गए। सरकारी दफ्तर तो पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है कि आप सरकारी दफ्तर के अंदर इस तरह से प्रोटेस्टर्स को, वो भी जो बाहर से आए हैं, उनको आप अलाउ नहीं कर सकते हैं। लेकिन छात्र संगठन है तो वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता को डिटेन करके यहाँ से ले जाया गया है। लेकिन ये तरह आप कह सकते हैं कि बूस्टर फिर से एनएसयूआई की तरफ से और कई सारे एनएसयूआई के जो वर्कर्स हैं वो इस तरफ भी आपको दिखाई देंगे। तो आकाशवाणी भवन के गेट नंबर 3 के बाहर ये जो उस जुटान में आप समझिए कि कई सारे पुराने जो दूसरे नेता हैं एनएसयूआई से जुड़े हुए रहे हैं वो लोग पहुंचे हैं और नारेबाजी सीसी गणेश कुमार के खिलाफ लगातार हो रही है। ये सवाल बताइए कि सरकारी दफ्तर के अंदर आप लोग घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी अंदर हैं,
5: हमारे नेताओं को डिटेन करके रखा गया, हमारे नेता ईसीआई जाना चाहते थे। देश का नेता प्रतिपक्ष अगर देश के लोगों की आवाज उठाने को निकलता और उसको ये डिटेन करेंगे तो हम निश्चित तौर पे कोई दफ्तर कोई जेल रही मोदी उसको तोड़ के अंदर घुस जाएगी यूथ कांग्रेस।
4: आपके नेता खुद आकाशवाणी भवन के अंदर गए ना, क्योंकि सब जगह बैरिकेडिंग थी, बाकी नेताओं को डिटेन किया गया।
5: यहाँ से एक रास्ता है ईसीआई जाने का, जब चारों तरफ बंद कर दिया गया तो वो ईसीआई जाना चाह रहे थे तो उसके लिए ये रास्ता चुना गया था। अब यहाँ से चारों तरफ बंद कर दिया।
4: ये अब छोटे छोटे गुटों में ग्रुप्स में आप लोग किसी तरह से यहाँ पे पहुँचते रहेंगे?
5: अनेश्वर के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने प्रदेश हेडक्वार्टर पे, और जब तक राहुल जी और प्रियंका गांधी जी को ईसीआई मार्च के लिए अलाउ नहीं किया जाता है भी हमारे साथी युवा कांग्रेस के यहीं इस दफ्तर के साथ डटे रहेंगे।
4: डीसू के नेता रहे हैं ऊपर, देखिए अब अनेश्वर
2: कार्यकर्ता उन बसों पर चढ़ गए हैं जिसको डिटेन करने के लिए लाया गया था। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे डिटेंशन के लिए जो बसें इकट्ठा की थी उन बसों ऊपर एनएसयूआई के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी या आकाशवाणी भवन के अंदर है तब तक हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, हमारे नेता को ईसीआई जाने दो, नहीं तो प्रदर्शन इसी तरह से। तो अचानक से पुलिस को लगता है कि स्थिति कंट्रोल में आ गई है, अचानक से जिस तरह से बड़ी संख्या में पहुंचे इसके भी कार्यकर्ता हैं, एसयूआई के भी कार्यकर्ता हैं पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी लगातार चल रही है और जो एनएसयूआई के लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार या सीसी ईसीआई के दफ्तर तक तब तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा तब तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। एनएसयूआई के और वर्कर्स आप लोग क्यों बसों पे चढ़ रहे हैं, क्यों सरकारी दफ्तरों के अंदर?
6: बिल्कुल राहुल जी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शांतिपूर्वक मार्च निकाला था पर इस संविधान की हत्या करके उन्हें आज आकाशवाणी भवन में दाखिल कराया गया है। हम राहुल गांधी के बप्पर से यहां से हटने वाले नहीं हैं जब तक राहुल जी बाहर नहीं आ जाता और हम ज्ञानेश कुमार।
1: मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को हम सुन रहे, तुमका कहना था कि उनके दो सबसे प्रमुख नेताओं को डिटेन किया गया है और ऐसा क्यों किया गया है इसके लिए कोई वजह भी नहीं बताई गई है, वो तो शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ ईसीआई दफ्तर जाना चाह रहे थे तो क्यों प्रशासन नहीं अलाउ कर रहा है? प्रशासन तो इसका खैर जवाब नहीं देगा लेकिन ऐसे में ये प्रदर्शन कितनी देर तक यूं ही चलता रहेगा क्योंकि अब बड़ी संख्या से चुनौतीपूर्ण तरीके से वहां की पुलिस और प्रशासन एक तरीके से संघर्ष करती हुई दिख रही है, ये लोग तस्मस नहीं होने वाले हैं।
7: नरेंद्र मोदी ज्ञानेश कुमार ने मिलके इस भारत के संविधान की हत्या की है और राहुल जी ने उसके खिलाफ शांतिपूर्वक।
8: बिल्कुल देखिए अब ये स्थिति आ गई कि राहुल गांधी को हिरासत में लेना ही पड़ेगा वरना फिर यहाँ से मामला हटने नहीं वाला। और अभी आप देखिए तो ये तस्वीर, ये जो बस थी ये भीतर भी गई थी अब बाहर आ गई है। यहाँ पे जो गेट है उसमें आप देखिए पुलिस हमारे बिल्कुल पीछे, कितनी सारे पुलिस कर्मी है, कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, तमाम कार्यकर्ता इसी गेट को ब्रीच करते हुए अंदर चले गए। यहाँ पे पुलिस का तांता पूरा आकाशवाणी भवन में भरा हुआ है, सुरक्षा कर्मी खड़े हुए हैं, पुलिस खड़ी हुई है और पुलिस के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन गया है। यहाँ पे तमाम बैरिकेड लगाने के बावजूद भी दाई तरफ आप देखें तो यही वो धरना स्पॉट था जहाँ पे सब नेता यहाँ धरना दे रहे थे लेकिन अभी भी राहुल गांधी लगातार अंदर बने हुए हैं और ये एक बहुत विकट स्थिति है दिल्ली पुलिस के लिए जहाँ चुनाव आयोग के दफ्तर के महज 10 मीटर की दूरी पर राहुल गांधी खड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर अगर राहुल गांधी आगे जाने दिया जाता है नेहा तो एक बहुत ही विचित्र स्थिति बन सकती है। राहुल गांधी एक चुनाव आयोग के गेट पे पहुंच के भीतर जाएंगे तो एक एक सिक्योरिटी ब्रीच को लेके क्योंकि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई टाइम नहीं लिया गया है और एक तरीके से जैसे गतिरोध की स्थिति है उसमें टेंशन्स और बढ़ सकती हैं। तो दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि इससे आगे राहुल गांधी को नहीं बढ़ने दिया जाए और इसी को लेकर आप देखिए पीछे यहाँ पे अब सांसद नहीं कार्यकर्ता सारे आ गए हैं। ये तमाम कार्यकर्ता एनएसयूआई के बस पे खड़े हुए हैं, उस तरफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तमाम सांसदों को हिरासत में लिया गया, अलग अलग पुलिस थाने में 10 सांसद जो छुड़ा के भाग आए वो आए पर उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यही चीज हमने देखी थी यहाँ से बहुत दूर नहीं पार्लियामेंट स्ट्रीट में, जब तक एफआईआर दर्ज थी राहुल गांधी नहीं हिले थे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से, लगभग एक महीने पहले की बात है। अब वही सीन हम दोहराते देख रहे हैं, यहाँ पे धरना पॉलिटिक्स राहुल गांधी के अपने चरम पर पहुंच गई है और जो आक्रामक तेवर उनके नजर आ रहे हैं ये लगातार पिछले 5-6 महीने में हमने देखा है कि स्पोराडिक प्रोटेस्ट, सरप्राइज प्रोटेस्ट, एकदम से जाके ग्राउंड पर मिलना, लोगों से बात करना और इस तरीके से अब अगले 1-2 महीने का खाका जो तैयार किया इंडिया ब्लॉक ने तो राहुल गांधी उसमें फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि आखिर ये कितना बड़ा परेशानी का सबब बनता है दिल्ली पुलिस के लिए। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार निशाना बना रहे हैं राहुल गांधी, ऐसे में क्या सरकार पर इसका प्रेशर लगातार बढ़ता है या नहीं? लेकिन राहुल गांधी बहरहाल इस वक्त लगातार 2.5 घंटे से गया है अपनी धरना पॉलिटिक्स पे लगातार बरकरार है। 3 घंटे हो गए हैं लगभग कि राहुल गांधी यहाँ पे आकाशवाणी भवन के आसपास बने हुए हैं।
1: ठीक है, इस बीच तस्वीरें आप देखिए, आकाशवाणी भवन में राहुल गांधी की मौजूदगी है। बहन प्रियंका गांधी भी धरने पर बैठी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि ये दरअसल प्रशासन द्वारा ठीक नहीं किया गया है कि वहां आगे बढ़ने से इन दोनों को रोका गया। ईसीआई दफ्तर ये दोनों पहुंचना चाहते थे, इस बात का ऐलान पहले से ही कर दिया गया था। यहां पर रोकना दरअसल अनैतिक है और कानून के खिलाफ है, क्योंकि ये पूरा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था। अब बड़ी संख्या में आप वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता देख सकते हैं जो इस गेट के बाहर मौजूद है। आकाशवाणी भवन गेट पर ही सबको रोक दिया गया है, कुछ को खदेड़ने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन दरअसल इस बात की भी आशंका है कि कुछ देर बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया जाएगा, यानी कि उन्हें डिटेन किया जाएगा। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पीयूष, डिटेंशन ही अब संभव है?
2: किसी भी वक्त में यहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को डिटेन किया जा सकता है। और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें वहीं से दिखा रहे हैं जहां पर कोशिश पूरी की जा रही है। आप देखिए, सामने एक बस लाई गई है आकाशवाणी भवन के अंदर। ये बस अंदर पहुंच चुकी है और दिल्ली पुलिस के कार्यकर्ता महिला जो माफ कीजिएगा दिल्ली पुलिस पर्सनल यहाँ पर है, पुलिस अधिकारी यहाँ पर है, जो महिला कर्मी है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। और वो इसलिए उनको लाया गया है ताकि प्रियंका गांधी को भी यहाँ से डिटेन किया जा सके। राहुल गांधी से बार बार पिछले 2 घंटे से लगातार मिन्नतें जो है वो की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा कि राहुल गांधी धरना प्रदर्शन खत्म करें और यहां से जाएं। लेकिन वो लगातार ठीक मेरे पीछे जो पेड़ है उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। और अब दरअसल दिल्ली पुलिस जो है वो इस बस को अंदर लेके आई आकाशवाणी भवन के अंदर, और ये बस इससे पहले यहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो किसी भी वक्त हम जब आपसे बात करें तो किसी भी वक्त राहुल गांधी को यहाँ से हिरासत में ले लिया जाएगा और उनको पास के किसी थाने में लेकर जाया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, ज्यादातर जो इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं उनको या तो गिरफ्त में उनको हिरासत में ले लिया गया है या फिर वो अपने घर जा चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ये फैसला किया कि वो डटे रहेंगे और इसलिए आकाशवाणी भवन जो इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग से महज 200 मीटर की दूरी पर है वहां पर आकर वो बैठ गए और लगातार अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। हम जहां खड़े हैं यहां से बेहतर तस्वीर दिख पा रही है, जहां पर आप देख भी सकते हैं कि कैसे यहां पर भारी संख्या में अंदर पुलिस बल तैनात है और पुलिस कर्मी जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो धरना प्रदर्शन खत्म करें। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के जो सुरक्षा कर्मी है वो भी यहां पर मौजूद है और वो सुरक्षा कर्मी अभी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि माहौल को जो है वो ज्यादा वो अग्रसर ना हो सके, ज्यादा आक्रामक ना हो सके और राहुल गांधी को आराम से डिटेन यहां पर कर लिया जाए। और सामने जो बस है उसमें महिला पुलिस कर्मी पहले से ही यहां पर अंदर बिठा दी गई है ताकि जब प्रियंका गांधी आए तो उनको आराम से अंदर लेकर जाया जाए। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है और ग्रिल के सहारे खड़े होकर हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन तस्वीरों के माध्यम से ये जानकारी जरूर मिलेगी कि किस तरह की तैयारी इस वक्त दिल्ली पुलिस की है इस पूरे धरना प्रदर्शन को खत्म करने की। जी नहीं,

0: देखिए मैं मौजूद हूँ आकाशवाणी भवन के गेट नंबर 3 पर, और आप देखिए तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उनके हाथ में पोस्टर बैनर्स हैं, और जाहिर है क्योंकि उनके जो नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो अंदर मौजूद हैं, और उसी की वजह से ये तमाम जो लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो बस खड़ी है, ये बसेस यहाँ पर इसलिए हैं ताकि जो ये प्रोटेस्टर्स हैं, ये जो कांग्रेस वर्कर्स हैं, इनको डिटेन किया जा सके। आप दूसरी तरफ की अगर आप तस्वीर देखें तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो एनएसयूआई के हों, यूथ कांग्रेस के, वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कई सांसद हैं विपक्ष के, मसलन सीपीएम के जो जॉन बिटास है वो यहां पर पहुंचे हैं। इसी बिल्डिंग के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फिलहाल मौजूद हैं। उनको यहां पर आप कह सकते हैं होल्ड अप करके रखा गया है। बसेस अंदर जा चुकी हैं और कभी भी आप कह सकते हैं कि जो डिटेन करने की प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है और उनको डिटेन करके यहां से लेकर जाया जा सकता है। बहुत सारे जो सांसद हैं वो ऑलरेडी डिटेन हो चुके हैं। इसके अलावा जो वर्कर्स हैं बहुत सारे वो भी डिटेन किए जा चुके हैं। आप यहां पर देख सकते हैं नारेबाजी किस तरीके से हो रही है। कई जो कार्यकर्ता है वो यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये जो गेट है, इस गेट को भी इन्होंने ब्रीच कर दिया था, यानी जबरदस्ती जबरन खोल दिया था, जिसके बाद कई सारे जो वर्कर्स हैं वो अंदर चले गए थे। आप देखिए ये कई जो जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और उन तमाम लोगों की कोशिश है कि एक तरीके से एक मैसेज दिया जाए कि लोकतंत्र के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं ज्ञानेश कुमार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनका हनन किया जा रहा है कथित तौर के ऊपर। और यह भी कहा जा रहा है कि आखिर सवाल जब हम सीएससी से पूछते हैं तो बीजेपी की तरफ से क्यों उसका जवाब आता है। हालांकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि आप अगर इलीगल प्रधानमंत्री जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, इलीगल कैबिनेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है जवाब भी हमारी तरफ से ही आएगा। अगर आप अपना हमला इलेक्शन कमीशन तक रखेंगे तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन सक्षम है, वो आपको जवाब देगा। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि आज विपक्ष सड़कों पर था, पूरे दमखम के साथ था, और कोशिश थी कि एक विपक्षी एकता की एक बड़ी लकीर खींची जाए। हालांकि इसमें एक दो पार्टियां ऐसी हैं जो शामिल नहीं हुई, मसलन डीएमके और आम आदमी पार्टी, लेकिन बीजेडी को कम से कम लाने में ये तमाम लोग साथ में अब सफल रहे। और अब भी आने वाले दिनों में भी आप देखिएगा इस तरह की तस्वीरें अब और भी आम होंगी और फ्रीक्वेंटली आएंगी, क्योंकि लगातार एक कैलेंडर बनाया गया है अगले एक महीने तक ज्वाइंट ऑपोजिशन की रैली, ज्वाइंट मार्चेस, गांव ब्लॉक तक चौपाले करनी है, पैम्पलेट बांटने हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक निर्णायक मोड़ पर विपक्ष जो है अपनी इस पूरी की पूरी लड़ाई को लेकर जाना चाहता है, और ये लगातार इस बात का हामी है कि वो कतई खुश नहीं है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के थ्रू इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, मैंडेट को चुराया जा रहा है, ऐसा उनका आरोप है। हालांकि इम्पीचमेंट मोशन लाने की भी तैयारी है संसद के अंदर, लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं वो जो है वो सिरे से खारिज कर दी है बीजेपी ने। उसके अलावा एनडीए ने सीएसी की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से सफाइयां दी गई हैं कई बारी। आप ये मान के चलिए आने वाले दिनों के अंदर भी विपक्ष इसी प्रकार से तापमान बढ़ाने की कोशिश करेगा कि सरकार के ऊपर इतना दबाव बना दे कि सरकार इस मामले में रिएक्ट करे, और जाहिर है फिर हम जाकर
1: तो राहुल ये बात बहुत स्पष्ट है कि आज कांग्रेस आज बिल्कुल डटी हुई है, हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दो तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बस में भरा गया, डिटेन किया गया, और दूसरी तस्वीर वो है जहां पेड़ की छांव के नीचे राहुल गांधी और प्रियंका इस वक्त बैठे हुए हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आकाशवाणी में कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल वाणी आज सुनाई दे, वो अपनी बात जरूर रखे। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि पुलिस हर जगह पर मौजूद है, लेकिन आप ये देखिए कांग्रेस की तरफ से अभी एक पोस्ट किया गया है, राहुल गांधी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा होगा और होकर रहेगा। इससे पहले भी ज्ञानेश कुमार

0: और अब एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना ही होगा और हम हटने वाले नहीं हैं। सुबह से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई भी दे रही हैं। मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी है। मौसमी, बहुत से दर्शक अभी हमारे साथ में जुड़े हैं और वो ये समझना चाह रहे हैं कि अब हो क्या रहा है और आगे क्या उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मोर्चा संभाले हुए हैं, टस से मस नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ता भी वहां पर एकजुट है, अब आगे क्या?
1: देखिए, लगातार 3 घंटे से आज तक ग्राउंड जीरो से सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे 6-8 रिपोर्टर्स, यहाँ हर चप्पे चप्पे पर मौजूद है। हिमांशु, मैं गेट नंबर 4 पे हूँ, कोई गेट नंबर 1 पे है, कोई गेट नंबर 3 पे है, और हमारे कैमरा पर्सन सब ग्राउंड से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी आपको बता दें कि लगभग 1.5 घंटे हो गया है, राहुल गांधी लगभग मान के चलिए 12:30 बजे आकाशवाणी के गेट के भीतर गए हैं और उसके बाद से वो यहीं पे इसके ये जो बैरल्स आप देख रहे हैं वो इसके पीछे राहुल गांधी बैठे हैं, लगातार यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरे बाई तरफ अगर देखे तो यहाँ पे बैरिकेडिंग और पुलिस कर्मियों का रेला और मेला आपको नजर आ जाएगा। तमाम बेटन लिए हुए पुलिस कर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस सब यहाँ पे मौजूद है, और पीछे ही 5 कदम की दूरी पर पड़ोस में चुनाव आयोग का दफ्तर, यानी कि सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। अगर हम 10 कदम चले, 1 मिनट चले तो सीधे चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंच जाएंगे, और यहां है राहुल गांधी। अब इसके बीच में बैरिकेड का समुंदर है, गेट का जो फासला है वो पाटना है, और राहुल गांधी के लिए तैयारी ऐसी है कि आप पीछे घुमाइए संजीव और दिखाइए कि लगभग 3 दर्जन बस यहाँ पे खड़ी हुई है। ये वो चौराहा है चुनाव आयोग वाला, आप कह सकते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना यहाँ से बहुत दूर नहीं है। 1 महीने पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे धरने देखे थे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बस पे भर के कुछ इस तरीके से कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है, और यहाँ पे आप देखिए कि बसें खाली पड़ी हुई हैं। राहुल गांधी आकाशवाणी भवन के भीतर हैं और यही गतिरोध की स्थिति, यही टेंशन दिल्ली पुलिस की लगातार बढ़ती चली जा रही है। बहुत ज्यादा लोग नहीं है, बहुत राहुल गांधी के पास 500 लोगों का समर्थन यहाँ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद बैठ गए हैं। अब या तो उनको हाथ पैर पकड़ के उनको बसों में भरा जाए, वही तस्वीर रिप्ले हो।
0: मतलब आप बता रही हैं कि बहुत सी बसें, मौसमी, एक बस नहीं है, बहुत सी बसें वहां पर हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी वहां पर लगा हुआ है, डिटेन किया जा रहा है, और उसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तादाद बढ़ रही है। और एक तस्वीर ये भी देखिए, जब राहुल प्रियंका वहां पर बैठे हैं तो कुछ युवा आते हैं, वो उनके साथ तस्वीरें खिंचाते हैं, और वो तस्वीरें भी हम यहां पर देख रहे हैं। और देखिए, आज तक पर हर एक तस्वीर आपको दिखा रही है, जैसे मौसमी बता रही थी कि हर एक गेट पर आज तक के रिपोर्टर मौजूद है, अंदर से कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी इस वक्त बैठे हुए हैं, वो आप तस्वीरें देख रहे हैं, कैसे भीड़ वहां पर बढ़ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव कवरेज हमारी लगातार जारी है। राहुल गौतम भी हमारे साथ में बने हुए हैं। राहुल, और क्या खबर आपके पास आ रही है, और कुछ तस्वीरों में खास?
2: मैं देखिए तस्वीरों जरिए समझिए, यहाँ डिटेंशन शुरू हो गया है, कार्यकर्ताओं को अब कह सकते हैं कि डिटेन किया जा रहा है जबरदस्ती उनको, क्योंकि वो हट नहीं रहे थे काफी देर से, पुलिस लगातार ये बात कह रही थी कि आप यहाँ से हटिए, लेकिन जब तो अब इनको अलग अलग बसेस के अंदर लेकर जाया जा रहा है। आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए यहाँ पर धक्का मुक्की होती हुई आपको नजर आएगी, एक एक तरीके से आप देखिए पुलिस जो है वो अब खींच।
0: देखिए तस्वीरें यहां पर देखिए, कैसे डिटेन किया जा रहा है लोगों को उठाकर, 4-4, 5-5 पुलिस वाले एक एक प्रदर्शनकारी को उठाते हुए बसों में ले जा रहे हैं। राहुल गौतम की एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं, राहुल गौतम की रिपोर्ट जो उस वक्त मौजूद है, और हम कह रहे हैं आपसे कि आज तक हर रिपोर्टर हर एक तस्वीर सबसे पहले आज तक आप तक पहुंचा रहा है, और हर जगह पर हर एक गेट पर क्या गतिविधि वहां पर हो रही है, किस तरह का एक्शन वहां पर हो रहा है, वो आप आज तक पर इस वक्त देख रहे हैं। अब ये देखिए वो तस्वीरें देखिए, जहां पर पुलिसकर्मी अब एक एक कर प्रदर्शनकारियों को बस में भर रहे हैं, और कोशिश उनकी यही है कि जो भीड़ है उस भीड़ को तितर बितर किया जा सके। ये देखिए कुछ पुलिस वालों ने पैर पकड़ा है, कुछ पुलिस वालों ने हाथ पकड़ा है, कोई कमर से पकड़ा है, और उसके बाद

0: इन सभी को बस में भरा जा रहा है। राहुल कंटिन्यू कीजिए।
1: देखिए यहाँ पर भी जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल कंटिन्यू है डिटेंशन की। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पुलिस वाले और जो अलग पैरामिलिट्री के जवान हैं वो लोगों को डिटेन कर रहे हैं। अब भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, जगह को यहाँ से खाली कराया जा रहा है। आप देखिए गेट नंबर 3 पर अभी पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने सारे कांग्रेस कार्यकर्ता थे, लेकिन अब तमाम लोगों को हटा दिया गया है। सामने जो बस है उसमें लोगों को भरा जा रहा है, उस बस के थ्रू उस बस के अंदर बिठाकर इन लोगों को दिल्ली के अलग अलग कोनों के अंदर जो दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर छोड़कर आया जाएगा। कुल मिलाकर आप देखिए यहां पर भी अभी भी कोशिश है, आप देखिए तस्वीरों के जरिए कैसे जो लोग हैं वो जमीन पर बैठ गए हैं, हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं, जाने को राजी नहीं है। लेकिन क्योंकि पुलिस ने अब मन बना लिया है कि इस धरने को खत्म कराना है, इन लोगों को यहां से हटाना है, डिस्पर्स करना है, आप देखिए तस्वीरों के जरिए लोग जमीन पर लेटे हुए हैं। और इसमें उदय भानु चिब भी है, मैं बता दूं आपको, उदय भानु चिब है जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी यहां पर सड़क पर लेटे हुए हैं और लगातार जो अपनी डिटेंशन की आप देखिए तस्वीरों के अंदर कि उनको जबरदस्ती अब उठाकर डिटेन करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। कई जवान उनको उठाकर लेकर जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के। आप देखिए अभी भी कुछ जो लोग हैं जो कार्यकर्ता है वो जमीन पर लेटे हुए हैं, पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। और जाहिर है ये एक ये एक तस्वीर तब आती है जब दिल्ली पुलिस लगातार ये आपसे अपील करती है लेकिन उसके बावजूद जब लोग नहीं हटते हैं उसके बाद इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता। और अब लगभग इस पूरे इलाके को आप कह सकते हैं आधा कम से कम खाली करा लिया है दिल्ली पुलिस ने। लगातार बसेस के अंदर इनको डाला जा रहा है, बसेस के अंदर डालने के बाद इनको दूर दिल्ली के जो दूर दराज के इलाके हैं, हालांकि अभी तक पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया। पहले भी जो हमने देखा था कई जो सांसद हैं वो स्वेच्छा से अपनी उसमें डिटेन हुए या उनको आप कह सकते हैं कि बिना फोर्स के उनको डिटेन किया गया, लेकिन अब जब कार्यकर्ताओं को लगातार हटने के लिए कहा गया और वो नहीं हटे अब उनको यहां से हटाया जा रहा है। सामने भी आप देख सकते हैं कि जो बसेस हैं उन बसेस के अंदर अब लगभग एक बस जो है अब वो जा रही है। और आप देखिए इस बस के अंदर पूरे के पूरे कार्यकर्ताओं को आप कह सकते हैं अंदर डिटेन कर लिया गया है, भर दिया गया है और अब इस बस को लेकर जाया जा रहा है। आप इनके हाथ में पोस्टर्स बैनर्स भी देख सकते हैं, लगातार ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो उनका चिर परिचित नारा है वो नारा लगा रहे हैं वोट चोरी को रोकने का। और दूसरी जो बस है उसमें भी यही प्रक्रिया कंटिन्यू हो रही है, उसमें भी आप कह सकते हैं कि लगातार कार्यकर्ताओं को डाला जा रहा है। अब उस बस की भी रवानगी अब हो रही है, यानी अभी आपके सामने ही पिछले कुछ 5 से 7 मिनटों के अंदर दो बस भर के जो कार्यकर्ता है आप देखिए महिलाएं हैं उनको भी यहां से डिटेन किया जा रहा है, उनको भी यहां से हटाया जा रहा है और वो लगातार नारेबाजी भी कर रही है। कई कार्यकर्ता बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, कई कार्यकर्ता आप देखिए मीडिया से बात भी कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं वो कम से कम आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो वर्किंग स्टाइल है या जो बीजेपी है, बीजेपी के ऊपर तो आरोप लगा ही रहे हैं लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का वर्किंग स्टाइल है उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आप सामने भी देख सकते हैं आप देखिए चारों तरफ से जो पुलिस है आप वो कह सकते हैं कि जो घेरा है उसको टाइट कर रही है, लोगों को यहां से डिस्पर्स कर रही है। इन अ वे आप कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट को ऑफिशियली खत्म कराया जा रहा है क्योंकि लगातार उनको पहले रिक्वेस्ट की गई, लगातार वार्निंग दी गई लेकिन क्योंकि जब लोग नहीं हटे तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि बलपूर्वक उनको हटाया जा रहा है। अभी भी ये जो कार्रवाई है ये चारों तरफ चल रही है। मेरे आप देखिए सामने भी देख सकते हैं, अब सामने के जो कार्यकर्ता हैं यानी जो सामने जो रोड है जो जाता है रफी मार्ग की तरफ आकाशवाणी से सीधा बीपी हाउस की तरफ अगर आप जाएंगे अब उस रोड को क्लियर कराया जा रहा है। और आप देखिए आप देख सकते हैं कि आरएएफ के जवान हैं, राइट कंट्रोल पुलिस के जवान हैं, पूरी तरीके से आर्म्ड हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने हेलमेट्स लगाए हुए हैं, अपने जो पैर हैं उनको कवर किया हुआ है और कुल मिलाकर अब बहुत हद तक जो लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं उनको यहां से हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर आप जो कह सकते हैं कि जो बहुत देर से जो यहाँ पर नारेबाजी चल रही थी, जो पोस्टर बैनर दिखाए जा रहे थे, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे, इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद के नारे जो लगाए जा रहे थे, वो तमाम चीजें अब यहाँ पर उनकी जो आवाजें हैं वो अब खत्म हो चुकी हैं एक तरीके से। कार्यकर्ताओं को डिस्पर्स कर दिया गया है। हालांकि जिस गेट पर मैं मौजूद हूँ उसी बिल्डिंग उसी गेट के अंदर जाकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं, जिनकी डिटेंशन अभी तक शुरू नहीं हुई है या जिनको अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है। तो ऐसे में हमको देखना होगा कि क्या पुलिस उनको डिटेन करती है या फिर वो लोग यहाँ से अपनी जो गाड़ियां, क्योंकि उनकी खुद की गाड़ियां भी अंदर गई हैं, क्या वो अपनी गाड़ियों से घर जाते हैं।
0: राहुल आप हमारे साथ, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, राहुल आप तस्वीरें दिखाते रहिए जो आप दिखा रहे हैं। और मौसमी हमारे साथ में बनी हुई, मौसमी अभी आप बता रही थी कि बहुत सारी बसेस हैं, अब उन बसेस का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। राहुल बता रहे हैं जहां पर वो मौजूद हैं बहुत से लोगों को डिटेन किया जा रहा है, बसों में भरा जा रहा है और उनको ले जाया जा रहा है, यानी ये भीड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राहुल अभी भी डटे हुए वहां।
2: देखिए राहुल गांधी अभी पेड़ के नीचे वहीं पे बैठे हैं जहां पे पहले बैठे थे। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहीं से थोड़ी दूरी पर वो पेड़ है जहाँ पे जिसके चबूतरे पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे क्योंकि देखिए नेटवर्क की काफी दिक्कत है, पूरे एरिया में जामर्स लगे हुए हैं और उसके मद्देनजर जैसे ही घेरे के आप पास आए तो वहाँ नेटवर्क नहीं आता। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी के साथ दीपेंद्र हुड्डा, केसी वेणुगोपाल, पवन खेरा, प्रियंका गांधी, प्रणीति शिंदे और ये सब तमाम नेता यहाँ पे आराम से बैठे हैं, यानी कि लंबी पारी खेलने की तैयारी है। ऐसा नहीं लगता हिमांशु कि कोई प्लानिंग है कि वो यहाँ से अपने आप जाएंगे, अपने आप जाने की कोई प्लानिंग नहीं है। एक तरीके से जिस तरह की धरना पॉलिटिक्स राहुल गांधी कर रहे हैं, उन्होंने सत्याग्रह का भी ऐलान किया है और एक सत्याग्रह पोर्टल भी खोला गया है, तो एक तरीके से वही रास्ता इख्तियार करते हुए धरने का, आंदोलन का, राहुल गांधी अब यहीं पे बैठे हुए हैं, टस से मस नहीं हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस भी है, अब ये आपस में आला अधिकारियों के बीच में रीथिंकिंग जरूर हो रही होगी कि आखिर आगे कैसे क्या रास्ता इख्तियार किया जाए। हमारे कैमरा पर्सन संजीव बहुत विषम परिस्थिति में क्योंकि नेटवर्क में बहुत दिक्कत है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लेकिन आंखों देखिए आप बता सकते हैं कि ऐसा कोई भी जल्दबाजी इनकी प्लानिंग में नहीं लग रही और उसी तरह पूरे इलाके को आप किलेबंदी कर दी गई है।
0: नहीं, मौसम एक बात बताइए क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जिस तरह से वहाँ पर एक्शन ले रहे हैं, राहुल गौतम जैसे दिखा रहे थे जैसे भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि आप वहाँ की स्थिति को देखते हुए क्या समझ पा रही हैं? क्या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अभी इंतजार करना चाहते हैं कि राहुल गांधी वहां से खुद उठ जाएं? और अगर राहुल गांधी वहां से नहीं उठते हैं तो जैसे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है, चार चार पांच पुलिस वाले के कार्यकर्ता को उठा के बस में बिठा रहे हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि राहुल तो उठने वाले हैं नहीं, अभी
2: लाइव है संजीव। देखिए राहुल गांधी मुझे तो नहीं लगता यहाँ से उठने वाले हैं। जितना राहुल गांधी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जानते हैं वो मुझे लगता है मन बना के आए हैं कि यहीं बैठेंगे। अब आप देखिए कि अलग अलग तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, यानी कि ये संदेश कांग्रेस की तरफ से भी दे दिया गया है अपनी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को कि ये लपारी लंबी होने वाली है। हमने डीसीपी सचिन शर्मा को देखा था, वो बैरिकेड के पास खड़े हुए थे, यानी कि डीसीपी और हायर रैंक ऑफिशियल्स आपस में बात कर रहे होंगे कि कितनी देर तक इस एरिया को बंद रखना है। हम अपनी आंखों से आपको बताएं तो पूरा जो चौराहा है वो बिल्कुल जाम है, सारी बसें भरी हुई है, पूरे दूर दूर तक नजर दौड़ा लीजिए हिमांशु तो सिर्फ बस ही बस नजर आ रही है। संजीव उधर आप दिखाइए तो दूर तक जाने कितने कार्यकर्ताओं को हिरासत लेने में लेने की तैयारी है। तो ऐसे में क्या करेगी दिल्ली पुलिस, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। हालांकि इसमें भी कोई ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हिरासत में ले, लेकिन अभी तक हिरासत में क्यों नहीं लिया ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अमूमन दिल्ली पुलिस इतनी देर में तो हिरासत में ले लेती है नेताओं को। तो दिल्ली पुलिस आखिर क्यों राहुल गांधी को ऐसे बैठने दे रही है, क्या स्ट्रैटेजी है?
0: मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था और यही समझने की कोशिश कर रहा था। और हम ये भी देख रहे हैं कि आप लोग भी कैसी विषम परिस्थितियों में एक एक रिपोर्ट एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये हम दिख रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए मौसमी, राहुल भी हमारे साथ में जुड़े हुए, राहुल गौतम। और राहुल एक बात बताइए, अभी मौसमी से जो जिक्र हो रहा था, जो बात हो रही थी कि कई कार्यकर्ताओं को तो हिरासत में ले लिया है, आप ही ने वो तस्वीरें दिखाई थी कि बहुत से कार्यकर्ताओं को उठा के बसों में डाल दिया है और उनको वहां से अब ले जा रहे हैं, लेकिन क्या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी खुद उठ जाएं? और राहुल गांधी तो उठने वाले हैं नहीं, ऐसा तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आगे क्या रणनीति पुलिस की तरफ से अपनाई जाएगी? क्या सिर्फ वेट एंड वॉच होगा या फिर वाकई बल का प्रयोग किया जाएगा?
1: जिस तरीके से अभी मौसमी ने भी जिक्र किया कि अमूमन तौर पर इतना समय देती नहीं है दिल्ली पुलिस, अगर उनको डिटेन करना होता है तो फौरी तौर पर वो आपको डिटेन कर लेती है। बहुत सारे नेता पहले ही डिटेन हो चुके हैं और उनको लेकर जाया जा चुका है। तो ये क्या रणनीति है? कई लोगों का ये भी मानना है कि शायद जिस प्रकार से पिछली बार जो तस्वीरें आई थी प्रधानमंत्री के निवास के बाहर जब राहुल गांधी को डिटेन किया जा रहा था, उन तमाम चीजों को अवॉइड करने की कोशिश है दिल्ली पुलिस के द्वारा, ऐसा कांग्रेस के अंदर कई लोगों का मानना है कि इसलिए उस तरीके से जो एक्शन जो हमने पिछली बारी देखा था वो इस बार कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि नदारत है। पुलिस अलाउ कर रही है, पुलिस एक तरीके से उनको आप कह सकते हैं कि स्पेस दे रही है और इसीलिए शायद अभी तक डिटेंशन नहीं हुई है। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? देखिए राहुल गांधी अगर अपना मन बनाते हैं तो यहां पर बहुत देर तक बैठ भी सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जब तक उनको कोई आश्वासन नहीं मिलता या जब तक दिल्ली पुलिस से उनकी कोई बातचीत नहीं होती तब तक वो राहुल गांधी यहां पर डटे रहेंगे। हमने देखा था पिछली बार जब वो राहुल गांधी सात लोक कल्याण मार्ग के बाहर यानी प्रधानमंत्री घर के बाहर बैठे थे, तब भी वहां पर भी बहुत सारे समय तक वो रुके थे, तमाम लोग वहां पर रुके थे। तो ऐसे में अभी स्थिति साफ नहीं है कि आखिर वो डिटेन क्यों नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस या फिर डिटेन वो होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन एक बात आप कह सकते हैं क्योंकि लगातार जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि अभी फिलहाल जो बाहर जो कार्यकर्ता थे कम से कम उनको तो कम से कम डिस्पर्स कर दिया गया। और जो आप सीटी सुन रहे हैं अगर आप सुन पा रहे होंगे जो लगातार जो सीटी बजाई जा रही है, दरअसल ये क्लियरेंस के लिए सीटी है। ये लगातार इसलिए बजाई जा रही है कि जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो लोग इस जगह को खाली कर दें और यहाँ से आगे चले जाएं। आई थिंक ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी देर में राहुल गांधी जब डिटेन किया जाएगा और उनको बाहर निकाला जाएगा उस समय पर कोई हो हंगामा ना हो, कोई जो कार्यकर्ता है वो बस के आगे ना आए, वहां पर नारेबाजी ना करें, उसको हॉल्ट करने की कोशिश ना करें, ये भी शायद एक आइडिया हो सकता है यहाँ से
0: राहुल ये बताइए निकालने का। राहुल लेकिन अब राहुल गौतम ये बताइए, आप जिस जगह से रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें बहुत स्पष्ट तो ये दिखाई दे रहा है कि पुलिस बल है, आरएएफ है और धीरे धीरे जैसे सीटियां बजाते हुए उस रोड को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। आप जिस जगह पर मौजूद है और ये जो तस्वीरें दिख रही हैं यहां से कितनी दूरी पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं और अगर वहां से राहुल गांधी को डिटेन किया जाता है तो क्या इसी रास्ते से निकाला जाएगा, इसीलिए इस रोड को खाली कराया जा रहा है?
1: देखिए मैं आपके जो सवाल है उसका जवाब आपको तस्वीरों के जरिए समझाता हूँ। आप मेरे पीछे देखिएगा, ये जो गेट है आप सामने देखिए आकाशवाणी भवन गेट नंबर 3 और इसी गेट के राइट हैंड साइड में है गेट नंबर 4। गेट नंबर 4 के पास आप कह सकते हैं कि आपको राहुल गांधी की आपको झलक मिल जाएगी, आप राहुल गांधी को देख पाएंगे, वहां पर राहुल गांधी मौजूद है। अब उनको गेट नंबर 4 से निकाला जाता है, गेट नंबर 4 के पास अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक बस भी दिखाई देगी, एक बस भी खड़ी है उसके गेट के पास। तो 4 नंबर से निकाला जाएगा या 3 नंबर से निकाला जाएगा ये बात की तो अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं उसमें आप ये देखिए कि अब राइट कंट्रोल पुलिस आरएएफ ये तमाम चीजें जो हैं ये आपको सामने दिख रही होंगी, पूरे आर्म्ड आप देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी उनके इक्विपमेंट्स होते हैं सबसे वो लैस है और अब वो यहां पर खड़े हैं उन बैरिकेड्स पे ताकि किसी को भी बैरिकेड पे चढ़ने की अनुमति ना दी जाए। दूसरी तरफ सीटियां अभी भी बज रही हैं, लोगों को लगातार इस जगह से खाली करने का के लिए बोला जा रहा है। वहां पर भी आप देखिए पूरी तरीके से आर्म्ड है पुलिस, उनके पास लाठी भी है, हेलमेट भी है
0: उन्होंने। अच्छा ठीक है, आप बने रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए। मौसमी के अब रुख कर लेते हैं। मौसमी, राहुल गौतम ने जो तस्वीरें दिखाई हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि भीड़ को तो वहां से हटाया गया, अब आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस के बल वहां पर मौजूद है और धीरे धीरे सीटियां बजाते हुए वो जगह खाली कराई जा रही है। यानी ये माना जाए कि वो वक्त आ रहा है जब राहुल गांधी को डिटेन करके कभी भी यहां से ले जाया जा सकता है, इसलिए रास्ता बनाया जा रहा है।
2: जी बिल्कुल, देखिए अभी मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप मुझे नहीं देख पा रहे होंगे पर आप फ्रेम में राहुल गांधी को जरूर देख पा रहे होंगे। ये राहुल गांधी यहाँ पे पेड़ के नीचे जहाँ पे प्रियंका गांधी के साथ बैठे हुए हैं, तो ये वो तस्वीर है जिससे मैं कह रही थी कि कॉन्फिडेंट थी कि ऐसा नहीं लग रहा कि ये लोग जल्दी यहाँ से हटने वाले हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ ये फ्रेम मिला है, नेटवर्क की भी बहुत दिक्कत है, पर ऐसी लंबी प्लानिंग है यहाँ पे लगे रहने की, बने रहने की, और यही वजह है कि जो राहुल बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। राहुल गौतम बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पूरी मशक्कत की जा रही है। अब ये तय करना है दिल्ली पुलिस को कि राहुल गांधी नहीं हटेंगे तो उनको हटाएगी कि नहीं, और अगर हटाना ही था तो पहले ही हटा देना था, और नहीं हटाएगी तो कब तक नहीं हटाएगी। तो ये लगातार यक्ष प्रश्न बना हुआ है पुलिस के सामने। श्रीनिवास आप देखिए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, पवन खेरा, केसी वेणुगोपाल, यही नेता यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर यहाँ ग्राउंड जीरो से आकाशवाणी भवन में यहाँ पे डेरा डाल के राहुल गांधी बैठ गए हैं। राहुल गांधी का कोई प्लान नहीं है यहाँ से हिलने का, और ये लगातार दिल्ली पुलिस के लिए बहुत परेशानी का बनता जा रहा है, बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है, क्योंकि हिमांशु कई एंगल्स हैं इसमें। संजीव आप थोड़ा पीछे हो जाइए तो हिमांशु देख पाएंगे कि हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। तो ये संजीव आपको ये दिखा रहे थे, इसमें कई एंगल्स ये हैं कि बेसिकली सवाल ये है हिमांशु कि अब अगर यहाँ से हटाते नहीं है तो पूरा एरिया जो है बैरिकेड हो गया है, यहाँ पे फिर पूरी आवाजाही बंद हो गई है, चुनाव आयोग के अधिकारी भी आ जा नहीं पाएंगे, कैसे आएंगे जाएंगे यहाँ से, और पूरा इलाका जो है काफी ज्यादा यहाँ पे ऑफिस है, पूरा एक तरीके से बिल्कुल हैज कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट नाउ। अब आगे क्या क्या रणनीति रहेगी दिल्ली पुलिस की, ये बड़ा सवाल है। हालांकि हम लोग अगर अंदर बात कर पाते, कोशिश कर पाते वहां तक पहुंचने की, तो राहुल गांधी से पूछेंगे कि कब तक की प्लानिंग है, कितनी देर तक यहां पे आप बने रहेंगे। लेकिन अगर पीछे वाला इंसिडेंट देखे, पार्लियामेंट स्ट्रीट में जब तक FIR दर्ज नहीं हुई थी, राहुल गांधी महज मिलने गए थे और फिर वहीं बैठ गए थे, कुर्सी भी मुहैया कराई गई थी, यहाँ तो कुर्सी भी नहीं है, वही चबूतरे पे बैठ गए। तो मुझे लगता है कि प्लानिंग लंबी चलने वाली है, या तो दिल्ली पुलिस इनको हिरासत में लेगी वरना राहुल गांधी यहीं पे बैठेंगे।
0: और बिल्कुल आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है कि कितनी अहमियत रखती है ये जगह, सरकारी दफ्तर है, चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी आना है, काम करना है, और पूरी बैरिकेटिंग सब जगह हो गई है, तो जल्द कोई समाधान निकालने की कोशिश तो पुलिस विभाग की तरफ से की जा रही होगी, और अधिकारी भी यही सोच रहे होंगे कि अब आगे करना क्या है। दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं उनको भी।
3: आज तक कांग्रेस ने देश की कितनी संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाया है, एक दर्जन, आधा दर्जन, डेढ़ दर्जन, दो दर्जन, भारत की थल सेना से लेके, भारत की वायुसेना से लेके, भारत के डिफेंस से लेके, भारत की LIC से लेके, भारत के HAL, SBI, SEBI, वैक्सीन, कौन सी ऐसी चीज है, भारत का न्यायालय, भारत का मीडिया। तो मैं कांग्रेस पार्टी से आज देश के सामने पूछना चाहता हूं, इस पे क्विज कॉन्टेस्ट होना चाहिए कि भारत के कितने संस्थानों को कांग्रेस ने अब तक, खासकर राहुल गांधी ने आरोपित किया है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को, और 6.8 करोड़ शिफ्टेड, चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में लोग ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहेंगे, मगर मैं पूछना चाहता हूं ये 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे।
0: तो सवाल सुधांशु त्रिवेदी ने भी उठाया और कहा कि कांग्रेस इस बात का जवाब दे। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं, और देखिए हम सुबह से बता रहे हैं इस जो एक राजनीतिक दृश्य आज दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी में देखा जा रहा है, उसकी एक एक तस्वीर आज तक के रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित भारद्वाज भी सुबह से हर एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अमित जरा ये बताइए, अभी राहुल और मौसमी से बात चल रही थी तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ज्यादातर जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको वहां से हटा दिया है, बसों में ले गए हैं। अब सीटी बजाते हुए और आरएएफ के जवान जैसे हम देख रहे हैं तैनात हैं, अब भीड़ पूरी खाली कराई जा रही है। आप वहां की तस्वीरें ग्राउंड रिपोर्ट पर देखते हुए क्या समझ पा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस क्या रणनीति आगे बना रही है?
4: हिमांशु देखिए, सेक्टर बाय सेक्टर आप जैसे कहते हैं एक स्ट्रैटेजी होती है स्पेस को टेक ओवर करने की, तो वही हो रहा है। मैं जिस जगह खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे आकाशवाणी भवन है जिसके अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, और इसी के दरवाजे के ठीक बाहर आईवाईसी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता अचानक से आए, दरवाजा ब्रीच करते हुए अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पूरे इलाके को अगर आप देखेंगे तो अब इस सेक्टर को टेक ओवर कर लिया गया है दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों द्वारा, और अब एक और डिटेंशन की बस को लाया जा रहा है। ये सारे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे, जिनकी मूवमेंट हो रही है। तो कई सारे बड़े और छोटे साइज में बसें यहां पे लाई गई थी आमतौर पे, क्योंकि ये इलाका बहुत सकरा है। ये जो सड़क है ना पार्लियामेंट की तरफ जाता है, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ, वो उतनी चौड़ी सड़क नहीं है दिल्ली के बाकी सड़कों की तरह, तो यहाँ पे क्लॉग होने की बहुत का खतरा रहता है बड़ी बसों के लिए। यही वजह है कि छोटी छोटी बसें भी इकट्ठा की गई हैं, ताकि जो भी कार्यकर्ता देखे, इसी तरह से कहीं कोई कार्यकर्ता दिख रहा है तो उसको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। यहाँ महिला पुलिस कर्मियों का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो डिटेनी है, जो प्रदर्शनकारी है, वो महिला है। बस के अंदर भी एक महिला पुलिसकर्मी हमें दिख रही है जो पहले से है, तो इस बस को आइडेंटिफाई किया गया होगा कि महिला कार्यकर्ताओं को, प्रदर्शनकारियों को इसके अंदर रखा जाएगा। तो इसी तरह जहां भी 2, 5, 10 के संख्या में भी अगर कार्यकर्ता मिल रहे हैं तो उनको डिटेन करके यहां से हटाया जा रहा है। बड़ी संख्या में आपको दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान दिखाई देंगे। हिमांशु, जो बात मौसमी कह रही थी अपने दर्शकों के लिए, हम एक 360 डिग्री व्यू भी दे देते हैं जहां हम खड़े हैं। आकाशवाणी भवन आपने देख लिया, कैमरा पैन होगा तो ये सामने नीति आयोग है जहां से देश की पॉलिसी नीतियां तय होती हैं, और जैसे ही नीति आयोग की बिल्डिंग खत्म होगी तो दाहिनी तरफ को आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और फिर उसके बाद आगे पार्लियामेंट की यूटिलिटी गेट है। तो आप समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है, और जब पुराना पार्लियामेंट चलता था तो इससे ज्यादा अहम स्ट्रेच कोई होता भी नहीं था, लेकिन आज की तारीख में भी अगर आप बात करें तो आकाशवाणी भवन, नीति आयोग, आरबीआई, इस तरह के संस्थान है, और ठीक पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाने दीजिए, नहीं तो प्रदर्शन चलता रहेगा। और मुझे अब जितनी देर में इतनी देर से जो समझ में आ रहा है कि एक स्ट्रैटेजी रणनीति तैयार है कांग्रेस पार्टी की, कि इंडिया गठबंधन वाले प्रोटेस्ट के खत्म होते ही अगर राहुल गांधी इस तरह से आगे बढ़ाएंगे प्रदर्शन को, तो छोटे छोटे ग्रुप्स में प्रोटेस्ट शुरू होगा। आम आदमी पार्टी भी इस तरह के स्ट्रैटेजी को अपनाती थी जब उनके नेताओं की गिरफ्तारी होती थी, कि आप एक बार में 1000 लोगों की संख्या के बजाय हर थोड़ी थोड़ी देर में 50-100 लोगों का ग्रुप भेजे, ताकि आपका जो प्रोटेस्ट है वो सस्टेन्ड तरीके से चलता रहे और पुलिस को लगातार एफर्ट लगाना पड़े। देखिए फिर अनाउंसमेंट शुरू हो गया है, अब यहाँ जो लोग खड़े हैं, समर्थक खड़े हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप डिस्पर्स हो जाइए, नहीं तो हम आपको डिटेन करेंगे, डिटेन होना है तो बता दीजिए, नहीं होना है तो आप यहाँ से डिस्पर्स हो जाइए। तो इस तरह की भी अनाउंसमेंट की स्ट्रैटेजी में दिल्ली पुलिस का एक फर्क भी हमें दिख रहा है हिमांशु। 20 जुलाई के बाद हर तरफ एक नई रणनीति के साथ लोग काम करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो पुलिस दिल्ली पुलिस हो या फिर विपक्षी दल हो।
0: मतलब अमित, इन शॉर्ट अगर ये समझा जाए जो मौसमी बता रही थी और आपने भी और उसको डिटेल में गहराई में जाके समझाया कि ये जो जगह है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और ये बखूबी सभी लोग जानते हैं, और इसीलिए पुलिस पर यह अतिरिक्त दबाव भी है कि जल्द से जल्द यहां पर हालात पूरी तरह से सामान्य करें, भीड़ को हटाएं, इस प्रदर्शन को खत्म करें, और इसीलिए अब ये रणनीति आगे की बनाई जा रही है। ये अतिरिक्त दबाव का ये माना जाए कि पुलिस अब निर्णायक कदम बहुत जल्द उठा सकती है। अच्छा चलिए, इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है वो भी बता दे। करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं राहुल गांधी का धरना जारी, और ये देखिए राहुल गांधी उस पेड़ के चबूतरे पर अभी भी बैठे हुए हैं। प्रियंका उनके साथ में, उनकी बहन मौजूद है, पवन खेड़ा भी आपको वहां दिखाई देंगे, कांग्रेस के कई नेता भी वहां पर हैं, श्रीनिवासन भी वहां पर हैं, और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तो हिरासत में ले लिया। अभी राहुल गौतम, मौसमी सिंह, अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी वो तस्वीरें बता रहे थे कि एक एक रणनीति स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और उसके तहत अब पुलिस काम कर रही है। अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर आपको डिटेन होना है तो यहां पर आप रहिए, वरना आप यहां से चले जाइए। लोगों को समझाया जा रहा है कि इस जगह को जल्द से जल्द खाली करें। तो अमित ने जो तस्वीरें दिखाई उस पर राहुल गौतम से एक रिएक्शन ले लेते हैं। राहुल, क्या ये माना जाए निर्णायक कदम दिल्ली पुलिस के अधिकारी जल्द ही उठा सकते हैं? चलिए अमित से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि अमित ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि किस स्ट्रेटेजी के साथ पुलिस दिल्ली पुलिस आगे बढ़ रही है। अमित, क्या ये माना जाए कि जल्द ही कोई फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है दिल्ली पुलिस की तरफ से, निर्णायक कदम राहुल गांधी को हिरासत में लेने का, उस जगह से उठाने का जहां पर वो 2.5 घंटे से बैठे हैं?
4: हिमांशु, देखिए फिलहाल मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस का पूरा फोकस है कि जो बाहर जमघट लगा हुआ है कार्यकर्ताओं का, छोटे बड़े बैचेस में जो भी कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको यहां से हटा जाए। फर्दर डिप्लॉयमेंट में देख पा रहा हूं अब ये मेरे ख्याल सीआरपी के जवान है जिनको अब बुलाया गया है। तो पहले दिल्ली पुलिस थी और उसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स, और अब सीआरपी के भी जवानों को इकट्ठा कर लिया गया है आकाशवाणी भवन के बाहर। तो निश्चित रूप से जो घेराबंदी आकाशवाणी भवन की जहां राहुल गांधी हैं, आप समझो कि पहले जो प्रोटेस्टर्स हैं आईवाईसी यूथ कांग्रेस, कांग्रेस का अपना जो पूरा सिस्टम है, उन कार्यकर्ताओं को यहां से हटाया गया, इस एरिया को अपने कंट्रोल में लिया गया। फिर दिल्ली पुलिस ने यहां पे फर्दर पर्सनल डिप्लॉयमेंट जो होता है उसको बढ़ा दिया है। तो क्या ये सिग्नल है कि अब राहुल गांधी को यहां से जो है वो डिटेन किया जा सकता है? मुझे लगता है फर्दर कम्युनिकेशन करने की कोशिश होगी। आपको ध्यान हो जब 7LKM के बाहर राहुल गांधी बैठे थे, हाँ, तो उस वक्त केंद्र से, क्योंकि सदन सत्र में था, तो केंद्र से मंत्री MOS जितेंद्र सिंह खुद आए थे, राहुल गांधी से उन्होंने बातचीत की, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप जो भी डिमांड है सरकार की तरफ से उसको रखिए, हम लोग सत्र चल रहा है उसको सुनेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने रिफ्यूज कर दिया था सरकार से उस वक्त बातचीत को लेकर, बातचीत का कोई भी पॉइंट। लेकिन आज यहाँ पे क्या कोई मंत्री के आने का की संभावना तो नहीं है? दिल्ली पुलिस लगातार अनाउंस करके कन्विंस कर रही है कि कार्यकर्ता कांग्रेस के यहाँ से हट जाए नहीं तो डिटेन हो जाएंगे। और अब उस पूरे एरिया को देखिए आप, कितनी ज्यादा, थोड़ी देर पहले इस तरह की तस्वीर नहीं थी हिमांशु, लेकिन अब ज्यादा जवान दिखाई देंगे। तो क्या इस जगह को एक तरह से आइसोलेट करके राहुल गांधी प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं तो करते रहे अंदर, वो स्ट्रैटेजी है, या फिर इस डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि अब कुछ देर में, कुछ देर जब मैं कह रहा हूं तो हो सकता है 1.5-2 घंटे का समय भी हो जिसमें राहुल गांधी को डिटेन किया जा सकता है।
0: बिल्कुल, कुछ देर में जब 2.5 घंटा यहां पर ऑलरेडी हो चुका है तो हो सकता है कि अभी और लंबा वक्त यहां पर खींचे, क्योंकि राहुल गांधी अपनी जगह पर डटे हुए हैं। राहुल गांधी टस से मस नहीं हो रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना ही होगा और उससे पहले हम यहां पर हटने वाले नहीं, और वो EC के दफ्तर जाना चाहते हैं जहां पर अभी वो आकाशवाणी में डटे हुए हैं। उनके साथ में उनकी बहन प्रियंका भी मौजूद है और भी बहुत से कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता वहां पर मौजूद है। राहुल गौतम भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल गौतम, आपने तो बहुत से कांग्रेस के ऐसे प्रदर्शन आपने देखे हैं जहां पर राहुल गांधी की तरफ से इस तरह से प्रदर्शन, लेकिन राहुल गांधी अभी शायद उठ के कहीं जा रहे हैं आगे, ये बिल्कुल अगर अभी की तस्वीरें तो राहुल गांधी उठ के कहीं अभी जा रहे हैं। राहुल गौतम, क्या मूवमेंट है वहां? देखिए जल्दी आपको सुनाएंगे राहुल क्या कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे राहुल गांधी ने कहा क्या। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करते हुए चुनाव आयोग पर निशाना उनकी तरफ से साधा गया होगा, लेकिन क्या, किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, शब्द शाह पूरा सुनवाएंगे आपको, सुनिए।
5: मोदी जी, अमित शाह, मोहन भगवत जी यहाँ रोके हैं, देश को हाईटेक कर दिया, धन्यवाद। ये चारों तरफ देखिए, विपक्ष के सारे MPs, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद आए हैं। हम इलेक्शन कमीशन जानना चाहते हैं वोट चोरी पर ज्ञानेश कुमार से हम सवाल पूछना चाहते हैं और यहाँ पे हमें रोका गया है। हम देश के
6: देखिए यहाँ पे कुछ समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज आए थे और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे। यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका। हम देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम देश की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। पता नहीं क्यों 300 एमपीज को यहाँ पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को ठीक से चलाने का है। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं, तो पता नहीं देश में क्या हो रहा है। अगर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन कमीशन नहीं मिलेगा तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है। धन्यवाद।
0: देखिए राहुल गांधी जिस जगह पर बैठे हुए थे, जिस पेड़ के चबूतरे पर वो बैठे हुए थे, वहां से उठ के और जहां से हमारी सहयोगी रिपोर्ट कर रही थी वहां पर आके वो मीडिया से बातचीत करते हैं। देखिए फिर शायद कुछ कह रहे हैं।
7: बीजेपी आपको कह रही, मुझे नहीं कह रही
6: आप, बीजेपी
7: मुझे नहीं कह रही, आपको कह रही कि आप झूठ बोल रहे
6: हैं। आप उन्हीं की बात करते हो, मेरा उनसे क्या लेना देना। मैं आपको बीजेपी का कार्यकर्ता लग रहा हूँ। मैं वी आर नॉट ओनली काउंटरिंग देम, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय देम। यू आर मे बी यू आर नॉट वॉचिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। सी जो मैंने पहले भी बोला है, बीजेपी जो बोले उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के को बचाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कुछ घंटे पहले 300 लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज आए थे, वो भी देश में लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। इस बात को पूरा देश मानता है, इस बात को देश के युवा मानते हैं और समझते हैं। यहाँ पे जो मुझे अभी रोक रहे थे पुलिस वाले, वो भी यही कह रहे हैं कि हम जानते हैं। तो रियलिटी मालूम है, देश को नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी करके हाईजैक किया है, अमित शाह जी ने हाईजैक किया है, मोहन भगवत जी ने हाईजैक किया और ज्ञानेश कुमार ने उनकी मदद की है। अब देख लीजिए, इनमें से सारे के सारे, मैं सोच समझ के कहता हूं, सुन लीजिए, इनमें से सारे के सारे किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देखना, इनमें से एक व्यक्ति बच के नहीं जाएगा, चाहे वो वन सेकेंड, लेट मी स्पीक, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो गणेश कुमार हो, चाहे वो मोहन भगवत हो। व्हाट हैज बीन डन टू माय कंट्री, टू आवर कंट्री, इज कॉल्ड ट्रीजन। नोबडी इज गोइंग टू एस्केप।
0: की तरफ से निशाना साधा गया और उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री का नाम लिया, केंद्रीय गृह मंत्री का नाम लिया, मोहन भागवत और अडानी सबका नाम लिया उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि इस लोकतंत्र को चोरी किया गया है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो आज राजधानी दिल्ली की सड़कों ने एक ऐसा राजनीतिक दृश्य देखा और देख रहा है जिसने देश के लोकतांत्रिक ताने बाने के साथ साथ संवैधानिक संस्थानों की स्वायत्तता पर एक बार फिर बहस छेड़ दी। क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम किसी को नहीं बख्शेंगे। मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी है। मौसमी, जिस जगह पर आप मौजूद थी वहीं पर आकर राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अपनी बात रखी गई, क्या रणनीति दिखाई दी इसमें आगे?
2: देखिए इसमें तरीके से एक निश्चय जरूर है कि राहुल गांधी बिल्कुल क्लियर हैं कि किस मकसद से वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ज्ञानेश कुमार को वो दोषी ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार ने सीसी ने जो किया वो प्रधानमंत्री गृह मंत्री मोहन भागवत इनके इशारे पे किया। ये आरोप बड़ा आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, कह रहे हैं 300 सांसद यहाँ पे अभी कुछ देर पहले धरना कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं और जो दोषी है उनको सजा मिलेगी। तो कुल मिला के राहुल गांधी वही बात को दोबारा दोहराते हुए जो लगातार वो बात कह रहे हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये देशद्रोह है जो इन्होंने किया है। अभी राहुल गांधी दोबारा आपको बता दें हिमांशु दोबारा वहीं पे बैठ गए हैं, यानी कि कोई चेंज ऑफ स्ट्रेटजी नहीं है। मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया को अपना पक्ष रखा और उसके बाद दोबारा वहीं पे जाके बैठ गए।
0: यानी राहुल गांधी अभी अटने वाले नहीं है और ये बहुत स्पष्ट नजर आया। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि 300 सांसदों को यहाँ पर रोका गया, उन्होंने फिर से एक बार बीजेपी पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा और उन्होंने ये कहा कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम सजा सबको दिला के रहेंगे। और पुलिस की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाए, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने मन बना लिया है कि वो यहां से उठने वाले नहीं है। धरनागिरी राहुल गांधी की जारी है, वो भी इसी से कुछ ही कदमों की दूरी पर। फिर से आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा।
8: पता नहीं क्यों 300 एमपी को यहां पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहां बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को ठीक से चलाने का है। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं, तो पता नहीं देश में क्या हो रहा है। अगर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन कमीशन नहीं मिलेगा तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है। धन्यवाद।
0: और कहा कि ना जाने क्यों सांसदों को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी बात नहीं सुनी गई है, जबकि वो जनता के चुने हुए हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए, करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है। राहुल गांधी आकाशवाणी भवन पर प्रदर्शन पर अभी भी डटे हुए हैं, उठने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि वो यहां पर उनका धरना जारी रहेगा, कांग्रेस के नेता भी उनके साथ में मौजूद हैं, मीडिया से भी मुखातिब हुए, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इस आकाशवाणी दफ्तर के बाहर जो परिसर है उस रोड को खाली कराया गया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है और जितने भी कार्यकर्ता थे उन सभी को बस में भरकर ले जाया गया है। अब बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राज्यसभा सांसद क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं।
3: आज तक कांग्रेस ने देश की कितनी संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाया है, एक दर्जन, आधा दर्जन, डेढ़ दर्जन, दो दर्जन, भारत की थल सेना से लेके, भारत की वायुसेना से लेके, भारत के डिफेंस से लेके, भारत की एलआईसी से लेके, भारत के एचएएल, एसबीआई, सेबी, वैक्सीन, कौन सी ऐसी चीज है, भारत का न्यायालय, भारत का मीडिया। तो मैं कांग्रेस पार्टी से आज देश के सामने पूछना चाहता हूं, इस पे क्विज कॉन्टेस्ट होना चाहिए कि भारत के कितने संस्थानों को कांग्रेस ने अब तक खासकर राहुल गांधी ने आरोपित किया है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड, चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में लोग ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहेंगे, मगर मैं पूछना चाहता हूं ये 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं। कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे।
0: तो जवाब की जगह एक और सवाल यहां पर उठाया गया बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए, आपको हर वो नई तस्वीर दिखा रहे हैं जो इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ईसी दफ्तर के पास आकाशवाणी भवन परिसर में हो रही है। अब ये देखिए प्रियंका उठकर कहीं जा रही हैं और राहुल गांधी देखिए वहीं पर ही मौजूद थे। अब एक बार फिर से प्रियंका राहुल के पास आ रही हैं, वहीं उस पेड़ पर जहां पर अभी इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं गए तो उसके बाद वापस एक बार आकर अपनी जगह पर बैठ गए, उसी जगह पर जहां पिछले आप मान के चलिए कि 2 घंटे 40 मिनट से राहुल गांधी बैठे हुए हैं। 2 घंटे 40 मिनट करीब हो चुके हैं। मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ में बनी हुई है। मौसमी, हम देख रहे हैं कि बीच बीच में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता में भी शायद रणनीति बना रहे हो आगे की कि कितनी देर और बैठना है, और अगर यहां पर अब लंबे वक्त तक बैठना है तो उसकी तैयारी भी यहां पर करनी होगी, क्योंकि राहुल तो मन बना चुके हैं कि यहां से उठने वाले नहीं है। तो अब आगे दोनों तरफ से बताइए कि क्या रणनीति बनाई जा सकती है, दिल्ली पुलिस से और कांग्रेस की तरफ से।
2: देखिए बहुत ये हिमांशु, ये एक ऐसा सवाल आपने पूछा है जिसका काफी कठिन जवाब, इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी अभी मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया से उन्होंने जब बात की तो उन्होंने अपना अटैक की तो बात की, पर अपनी प्लानिंग की बात नहीं की कि आगे वो किस तरीके से इसको ले जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि कांग्रेस कार्यकर्ता कोई बैरिकेड चढ़ रहा है, कोई चढ़ रहा है, तो अलग अलग खेप कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आती चली जा रही है। काफी कार्यकर्ताओं को डिटेन कर दिया है। अब उसके बाद भी यहाँ पे देखिए कि ये जो चुनाव आयोग की तरफ से बैरिकेड है उसके ऊपर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। राहुल गांधी को ये नारे भी सुनाई दे रहे होंगे। अब आप देख लीजिए कि दोपहर से अब शाम होने को आई है और मीडिया से यहीं पे मुखातिब हुए और उसके बाद वहीं बैठ गए पेड़ के नीचे, तो यानी कि अभी चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी नहीं है। दूसरा, दिल्ली पुलिस के लिए ये सवाल है कि आखिर कितने देर तक एलओपी को ऐसे बैठने देना चाहिए। संजीव से हम कहेंगे कि संजीव आप थोड़ा सा, क्योंकि फोकस लेना और यहाँ से ग्रिल्स के थ्रू दिखाना तस्वीर, ये बिल्कुल संकरा रास्ता है, जगह भी नहीं है खड़े होने की, तो वो आपको दिखाएंगे कि क्यों मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने बाइट इसलिए नहीं दी कि वो यहाँ से जाने वाले हैं। यहाँ देखिए कि कोई नेता जब डेरा डाल के बैठ जाता है, आप देखिए कि इत्मीनान से बैठे हुए हैं। और दिलचस्प है कि आकाशवाणी की बिल्डिंग में जितनी बालकनियां हैं वहां से तमाम कर्मचारी जो हैं उन बालकनियों में भर के ये तस्वीर देख रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ बैठे हैं। राहुल गांधी ये भी मेंशन करते हैं कि तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की चोरी हो रही है, हमें मालूम है कि चोरी से ये सरकार बनी है। इस तरह का जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं, सरकारी कर्मचारी उनको खबर दे रहे हैं, ऐसी बात भी वो कर चुके हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि ये एक पूरा, जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन से हमने देखा है कि जंतर मंतर एक तरीके से विरोध का केंद्र बना था, आज आकाशवाणी भवन एक तरीके से धरने का केंद्र बन गया है। पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट पे राहुल गांधी धरने पर बैठे थे, अब यहाँ पे बैठ गए, उससे पहले प्रधानमंत्री आवास पे बैठे थे। हाँ। तो लगातार 2-3 महीने से राहुल गांधी धरना पॉलिटिक्स उनकी चरम पर है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है।
0: और देखिए आप ये समझिए कि कितनी विषम परिस्थितियों में यहाँ पर आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं और हर एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मौसमी, आपको तो हम देख ही रहे हैं, शांभवी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और सुबह से उनकी तरफ से भी कई रिपोर्ट, कई तस्वीरें पहुंचाई गई, वहां का हर एक मूवमेंट, कुछ कहना चाह रही हैं प्लीज। हाँ बोलिए मौसमी।
2: शांभवी को भी हम देख सकते हैं, मैं बता रही थी कि देखिए शांभवी को दिखाइए, संजीव यहीं खड़ी है, चप्पे चप्पे पर हमारे आज तक के संवाददाता जो है वो मौजूद है और शांभवी वहां पे खड़ी हुई हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं और किस तरह से पुलिस वाले पुलिसकर्मी तमाम घिरे हुए हैं। तो ये हम लोग का दायित्व है, ड्यूटी है चौथे स्तंभ की, कि जो हकीकत अनफोल्ड कर रही है ग्राउंड पे, जो सच्चाई है वो हम लोग दिखाएं। और यही कोशिश
0: शांभवी का समझ लेते हैं कि वो जहां पर मौजूद है वहां पर इस वक्त क्या गतिविधि हो रही है, वो अपनी नजर से क्या देख पा रही हैं जिस जगह शांभवी मौजूद है, बताइए शांभवी।
9: देखिए हिमांशु, हम जहां मौजूद हैं वहां पे अभी भी हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है, सीएपीएफ मौजूद है, आरएएफ मौजूद है, और हम आपको एक बार लेके देखते हैं उस तरफ जहां पे प्रोटेस्टर्स थे, वहां से उन्हें डिटेन किया गया और लगातार वहां पे सीटियां बजाई जा रही है, विस्लिंग हो रही है क्लियरेंस के लिए कि अब आप ये जगह क्लियर कर दीजिए, क्योंकि सुबह से ही कई रूट्स जो हैं उनको डाइवर्ट किया गया है। भयंकर ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ की सड़कों पर, क्योंकि जितने भी रूट्स हैं, जितने भी रोड्स हैं जो कि यहाँ लीड करती हैं ECI तक को, उनको ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और अभी भी क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई कर्मचारी क्योंकि अंदर बैठे हुए आकाशवाणी भवन में, इसलिए यहाँ पे अभी भी काफी हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है। इनके कुछ कार्यकर्ता हैं जो अभी भी बैरिकेड के उस तरफ आपको दिखेंगे, जो कुछ कुछ समय पे स्लोगन कर रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद के, आप उनके मुंह से सुनेंगे। और हम लगातार ECI के इर्द गिर्द भी जितने भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे उनको भी ट्रैक कर रहे हैं, और उन्होंने काफी तगड़ी तैयारी की थी, 3 लेयर की बैरिकेडिंग की थी, लेकिन उसके बावजूद जो एक रोड उन्होंने छोड़ दी थी वहां से लगभग 10 जो है आंदोलनकारी उधर से चलते हुए आए, उसमें से मनोज झा और ये सागरिका घोष भी मौजूद थी उनमें से, वो स्लोगनियरिंग करते हुए आए। और इतने हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट, इतनी अच्छी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बावजूद कुछ प्रोटेस्टर्स जो हैं वो ECI तक पहुंच गए, लेकिन फिलहाल के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अभी भी अंदर मौजूद हैं।
0: मतलब शाम्भवी ये कहा जा सकता है जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से हटा दिया गया है, सिर्फ पुलिस फोर्स RAF यही जवान मौजूद है और राहुल गांधी सिर्फ अंदर मौजूद है, मतलब बहुत ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त नहीं है वहां।
9: नहीं नहीं, जितने भी थे उनको सबको डिटेन कर लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ कार्यकर्ता हैं जो अभी भी मौजूद हैं। वही मैं आपको बता रही थी कि बैरिकेड के उस तरफ अगर आप देखेंगे हमारे विजुअल्स में तो अभी भी कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, हालांकि वो शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से किसी भी तरीके की बदतमीजी नहीं हुई है, वो अभी भी शांतिपूर्वक है यहाँ पे, वो वेट कर रहे हैं। बल्कि उनमें से मैं आपको बता दूं कि सारे लोग हमारे पास भी आए,
0: लेकिन अभी ये अपडेट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका वहां पर मौजूद हैं और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं। यानी अभी मौसमी, अमित भारद्वाज और राहुल गौतम भी बता रहे थे कि पुलिस की तरफ से बाहर से तो सभी प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, डिटेन कर लिया गया है, रोड भी खाली करवा दी गई है, लेकिन राहुल गांधी अंदर मौजूद थे। और हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि अब दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आगे की रणनीति पर बात करेंगे, काम करेंगे, वो राहुल गांधी से बात करेंगे, और अभी वो राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और वो राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। मौसमी और बेहतर तरीके से बता सकती है क्योंकि मौसमी वहां पर मौजूद हैं। मौसमी बताइए, दिल्ली पुलिस के अधिकारी राहुल गांधी से बात कर रहे हैं।
10: आइए सर, एक्चुअली देखिए ना कैसे हो रहा है।
2: जी बिल्कुल, देखिए इमरान प्रतापगढ़ी यही है, हम ग्रिल के बाहर हैं, वो प्रेमिसेस के अंदर हैं, तो उनसे माइक चला जाएगा तो
11: कोई बात नहीं, माइक आए हमारी आवाज जरूर जाएगी।
2: जी जी, तो वहाँ पे देखिए आप ये पूछना चाह रहे हैं क्या बातचीत हो रही है, आला अधिकारी आए हैं राहुल गांधी से, और क्या प्लान है इमरान?
11: देखिए जैसे आज ग्रिल के अंदर हम हैं, आप बाहर हैं, बिल्कुल ऐसे ही लोकतंत्र को भी ग्रिल के अंदर ग्रिल कर दिया है ज्ञानेश कुमार जी ने, और उसी के खिलाफ आज 300 से ज्यादा सांसदों ने ज्ञानेश कुमार जी से और बाकी जो दोनों कमिश्नर हैं उनसे मुलाकात के लिए मार्च किया। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि चुनाव आयोग के अधिकारियों से, मुख्य चुनाव आयुक्त से, देश के नेता प्रतिपक्ष और बाकी सांसद मिलें। आखिर लोकतंत्र को क्यों बंधक बना के रखना चाहती है सरकार? आरोप चुनाव आयोग पर है, जवाब सरकार दे रही है, उनके प्रवक्ता आगे आकर के बात कर रहे हैं। अगर वोट चोरी हो गई तो फिर किसी भी व्यक्ति का नैतिक तौर पर उसके मूल अधिकार बचेंगे कहां? तो नेता प्रतिपक्ष तो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो इस देश की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। एक लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने लड़ी थी और एक लड़ाई इन अंग्रेजों के खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो हम सब राहुल गांधी जी के साथ हैं, सलाखों में हैं, देखना है हमें कब तक सलाखों में रखते हैं। ये आकाशवाणी भवन का की सलाखें हैं और हम इन सलाखों से डरेंगे नहीं, हम आवाज
0: उठाएंगे।
2: अंशु भी यही पूछ रहे हैं कि कब तक ये बैठेंगे आगे और लंबी प्लानिंग है।
11: देखिए बिल्कुल,
2: हाँ यही मैं पूछना चाह रही हूँ।
11: कांग्रेस पार्टी ने नवंबर तक के बाकायदा प्रोटेस्ट के प्रोग्राम रिलीज किए हैं, बाकायदा सर्कुलर जारी किया है। अब ये देखना है सरकार को, आप हमें कितना आजमाना चाहते हैं, हम तैयार हैं, आप आजमाएंगे तो यहाँ अभी तो राहुल गांधी जी बैठे हैं, जाहिर सी बात है सरकार हमें अलाउ कर दे, हम जाकर के मुख्य चुनाव आयुक्त से मिल लें, आप हमें अलाउ कर दीजिए। आप क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा यही है, देश को समझ, मतलब पूरे देश को ये बात जाननी चाहिए। और नहीं, बात करेंगे उनसे, पूछेंगे कि आप वोट चोरी क्यों करवा रहे हैं, ये हम उनसे सवाल पूछेंगे। और हम तो उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि ना मोदी रहेंगे ना तो ज्ञानेश रहेगा, ये देश था, ये देश है, ये देश रहेगा। देश सबसे महत्वपूर्ण है और मुख्य चुनाव आयुक्त को खुद आगे आकर के सफाई देनी चाहिए। आप बंगाल में लाखों वोट काट देंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा, वोट जोड़ देंगे। 13 करोड़ के आसपास मतदाताओं के आपने मताधिकार छीने हैं। मताधिकार छीनने का मतलब है किसी की जिंदगी छीन लेना। आप लोगों को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्यों नहीं मिलने देना चाहते?
2: अच्छा एक मिनट इमरान साहब, ये बताइए, संजीव दिखाएंगे भी कि ये तस्वीर क्या कहती है? राहुल गांधी बैठे हैं चबूतरे पे, प्रियंका गांधी उनके साथ बैठी हैं, इत्मीनान से बैठी, ये तस्वीर क्या बयां कर रही है?
11: ये तस्वीर बयां कर रही है कि पूरी सरकार बेचैन है और राहुल गांधी बिल्कुल इत्मीनान के साथ है। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, जितना लंबा लड़ना होगा हम लड़ेंगे, हम पूरा इत्मीनान के साथ है। और आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर आया, पूरा इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर के आया, तो मुझे खुशी है कि इस मुद्दे पर देश का हर विपक्ष का हर नेता मजबूती के साथ डटा हुआ है और हम लड़ते रहेंगे, हम हटेंगे नहीं। ये सलाखें और ऊंची करवा लीजिए, ये सलाखें और मजबूत करवा लीजिए।
2: शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सलाखों बता रहे हैं कि सलाखों के पीछे हम लोग हैं।
0: बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि क्या रणनीति यहाँ पर बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से, और मन बना चुकी है कांग्रेस, ये तो हम यहाँ पर स्पष्ट समझ चुके हैं। लेकिन पीयूष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष जरा ये बताइए, अभी कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे दिल्ली पुलिस के, राहुल गांधी से बातचीत हुई है, किस तरह की कोई बातचीत हुई है, कुछ आपको पता चल पाया अंदर से कोई खबर?
12: ये देखिए हिमांशु, जब से राहुल गांधी यहाँ आके बैठ गए हैं तब से ही पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो राहुल गांधी से मिन्नतें कर रहे हैं कि वो इस जगह पर ना बैठें। ये सरकारी बिल्डिंग है, आकाशवाणी भवन है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना अलाउड नहीं है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मानने को तैयार नहीं है। उनके साथ जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी काफी भारी संख्या में वहां मौजूद हैं। हम अभी इमरान प्रतापगढ़ी को सुन रहे थे, इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा, पवन खेड़ा और कई सांसद लगातार राहुल गांधी के साथ अंदर डटे हुए हैं। और एक तरफ जहां राहुल गांधी अंदर डटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर मैं एक बार आपको तस्वीर भी दिखा दूं। देखिए जहां राहुल गांधी अंदर बैठे हुए हैं वहीं बाहर यहां पर एनएसयूआई के जो कुछ कार्यकर्ता, हालांकि काफी भारी संख्या में जो कार्यकर्ता आए थे उनको डिटेन कर लिया गया था, लेकिन कुछ कार्यकर्ता यहां पर डटे हुए हैं और राहुल गांधी की एक तस्वीर ले लेना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने एक तरफ जहां राहुल गांधी को बार बार मनाने की कोशिश की, वहीं यहां पर एक का इंतजाम भी किया है। देखिए एक बस अंदर खड़ी है, मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, एक बस अंदर खड़ी है और इस बस के बस को यहां पर इसलिए लाया गया था ताकि राहुल गांधी को इसमें बिठाकर यहां से लेकर जाया जाए। तो अंदर और बाहर दोनों तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा है और चारों तरफ अगर नजर दौड़ाएं, मैं आपको एक बार 360 डिग्री व्यू दे दूं, मेरे सहयोगी आलोक दास अगर अपना कैमरा घुमाएं तो आप देख सकते हैं कैसे यहां पर चारों तरफ जो है पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। एक तरफ जहां अंदर बस खड़ी आकाशवाणी भवन के अंदर, वहीं दूसरी ओर भी बाहर भी बस यहां पर लगाई गई है कि अगर भारी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहां पर आ जाते हैं तो उनको यहां पर डिटेन कर लिया जाए। हालांकि इस वजह से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उस वजह से इलेक्शन कमीशन के आसपास के जो इलाके हैं उसमें भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला है, क्योंकि ये वो रोड है जो अशोका रोड से होते हुए दिल्ली के कई बड़े इलाकों को जोड़ती है, लेकिन ये पूरा इंटरसेक्शन ही इस वक्त ब्लॉक हो चुका है। देखिए उधर मैं तस्वीर दिखाऊं, देखिए उधर आलोक दास अगर जूम करके दिखाएं तो राहुल गांधी अंदर बैठे हैं और बाहर एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो धरना प्रदर्शन अंदर साइलेंट हो रहा है, बाहर थोड़ा स्लोगन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीछे की तरफ इधर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात की गई हैं। सामने एक पूरा लेयर बैरिकेड का लगाया गया है और इस बैरिकेड का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि पार्लियामेंट की तरफ कुछ जो कार्यकर्ता एनएसयूआई के वो वहां ना चले जाएं, और इस बैरिकेड के उस तरफ आरएएफ के जवानों को भारी संख्या में लगा दिया गया है। तो ये इस वक्त की स्थिति है।
0: मतलब एक बात तो तय है पीयूष, आपने जो 360 एंगल से जो आपने दिखाया तो एक बात तो बहुत क्लियर यहाँ पर ये समझ में आ गई कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ इस आसपास इस क्षेत्र में नहीं है, दूरी पर है, उनको थोड़ा दूर यहाँ पर कर दिया गया है, ये पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। बस अंदर राहुल गांधी इस वक्त पेड़ के नीचे चबूतरे पर डटे हुए हैं। मौसमी हमारे साथ में बनी हुई है। मौसमी, अंदर से आपको कुछ खबर आ पाई कि पुलिस के जब अधिकारी अभी पहुंचे थे तो क्या बात उन्होंने राहुल गांधी से की, राहुल गांधी की तरफ से क्या जवाब दिया गया, कुछ खबर आई आपके पास अंदर से?
13: पाँचा,
0: चलिए दोबारा मौसमी से बात करेंगे और जाएंगे उनके पास, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी तो वहां पर बैठे हुए हैं, वो बहुत मजबूती के साथ श्रीनिवासन सुनिए।
13: हम सबको जानते हैं ओवरक्राउडेड नहीं है, आप ये मत करिए, ये मत कराइए, आप लोकतंत्र का हरण कर रहे हैं, आप बीजेपी चेयरमैन, बीजेपी चेयरमैन, हाँ तो आप गलत कर रहे हैं, आप धक्का दे रहे हैं लोगों, आप धक्का दे रहे हैं, आप मीडिया के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप क्यों कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, बस प्लीज मत करिए, ये काम मत करिए, आप लोकतंत्र की हत्या मत करिए, आप लोकतंत्र की हत्या।
0: देखिए राहुल गांधी भी आ चुके हैं यहाँ पर, राहुल गांधी भी यहाँ पर आ चुके हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो मीडिया को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता वहां पर आ चुके हैं और राहुल गांधी भी, सुनिए जरा।
14: आपके भाइयों की चोट लगी

0: को लेकर है, जब बीच में अड़चन बनती हुई पुलिस दिखाई दी तो ये जो तू मैं इस समय चल रही है वो कांग्रेस और पुलिसकर्मी जो वहां पर उनके बीच में चल रही है, क्योंकि वो बीच में रुकावट एक तरीके से पैदा कर रहे हैं। ये आरोप कांग्रेस वाले लगा रहे हैं कि वो बात नहीं करने दे रहे हैं, और पहले भी आपने ऐसा किया है, जो हाल के समय में कॉन्ट्रोवर्सी चली रही है उसका भी उदाहरण वो दे रहे हैं। राहुल गांधी बिल्कुल बगल में खड़े हैं, कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल और दूसरे नेता आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये आकाशवाणी भवन के भीतर सब कुछ आज चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में जिस ऑपोजिशन पर यह आरोप लगता रहा कि वो बहुत सक्रियता दिखाता नहीं, वो सड़क पर नहीं उतरता, वो प्रोटेस्ट नहीं करता है, और अब ऐसा प्रोटेस्ट चल रही है कि वो चल रहा है कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इस समय आकाशवाणी भवन के भीतर आप देखेंगे एक जबरदस्त तनातनी है। वहीं पर राहुल गांधी है, वहीं पर कांग्रेस के दूसरे लीडर है, वहीं पर प्रियंका गांधी है। मांग क्या है कि हमें इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाने दीजिए, हमें इलेक्शन कमीशन में जाने दीजिए, हमें वहां पर अपनी बात रखनी है। मांग यही है कि ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको हटाया जाना चाहिए, उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में काम नहीं कर रहे, वो बीजेपी के पपेट के रूप में काम कर रहे हैं। ये ऑपोजिशन का आरोप है। हमारी दो संवाददाता इस समय जुड़े हुए हमारे साथ, मौसमी सिंह हमारे साथ हैं, पीयूष मिश्रा हमारे साथ हैं। मौसमी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जबरदस्त तनातनी चल रही है, इस बार तो मीडिया और कांग्रेस के बीच में पुलिस आ गई है।
1: जी देखिए, अभी राहुल गांधी फिर से मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, और आपको बता दें कि ये आपको आवाज आ रही है?
0: आ रही है।
1: देखिए लगातार यहाँ पे धरना चल रहा। जी, तो देखिए यहाँ पे लगातार राहुल गांधी आकाशवाणी भवन में बने हुए हैं, और बताया जा रहा है कि जब तक उनको मुख्य चुनाव आयोग से मिलने नहीं दिया जाएगा वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मीडिया को बताया कि उनकी जो मांगे हैं वो सुननी चाहिए। लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है, 300 सांसद यहाँ आ गए, लेकिन सरकार और ज्ञानेश कुमार के कान में जू नहीं रेंग रही है, इसलिए अब वो इसी धरना पॉलिटिक्स को इख्तियार करते हुए अपनी रणनीति के तौर पे यहीं बैठ गए हैं आकाशवाणी भवन पे। आप देखिए कि पूरा मीडिया का तांता है, तमाम पुलिसकर्मी कार्यकर्ता पूरा जमावड़ा, और एक तरीके से चक्का जाम। आकाशवाणी भवन, पीटीआई, ECI, ये पूरा जो पार्लियामेंट स्ट्रीट तक थाने तक जाता है, पुलिस थाने तक रास्ता, वो जाम हो गया है, और एक तरीके से ये स्थिति लगातार बरकरार है। अब देखना है कि दिल्ली पुलिस उनकी इस बात को कैसे लेती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी आए थे बातचीत करने के लिए राहुल गांधी से, लेकिन बात मुझे नहीं लगता बनी, क्योंकि वो ये मांग कर रहे हैं। उन्होंने साफ दो टूक पुलिस अधिकारियों को ये कह दिया कि ज्ञानेश कुमार से मिलने दीजिए, सी से मिलने दीजिए, हम चले जाएंगे।
0: ठीक है मौसमी, आप बने रहे हमारे साथ, आपके लौटते हैं, पीयूष भी हमारे साथ, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा एक बार उनका बयान सुना देते हैं।
2: यहाँ पे कुछ समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के MPs आए थे, और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे। यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका। हम देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम देश की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। पता नहीं क्यों 300 MPs को यहाँ पे रोका गया, और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को ठीक से चलाने का है। 300 MPs ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं,

0: और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं, तो पता नहीं देश में क्या हो रहा है। अगर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन कमीशन नहीं मिलेगा तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है। धन्यवाद। वी आर नॉट ओनली काउंटरिंग देम, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय देम। यू आर मे बी यूर नॉट वॉचिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। सी जो मैंने पहले भी बोला है, बीजेपी जो बोले उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के को बचाने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। मेरे साथ
1: राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी जो बोले मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बीजेपी लगातार बोल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। संबित पात्रा ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं।
2: जिस प्रकार याचिका में था कि फॉर्म 6 इलीगल है, फॉर्म 6 को हटा दिया जाए, और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट
1: दरअसल मीडिया के साथ बात नहीं करने दिया जा रहा है। सामने मीडिया है, महिला पत्रकार है, ये कांग्रेस कर रही
3: है। आप धक्का देकर निकाल रहे हैं, धक्का मार रहे हैं आप।
4: हम
3: आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, आपसे निवेदन है, ये जो पत्रकार महिला खड़ी हैं, आप अपनी पुलिस के अपनी पुलिस से ये बदतमीजी मत कराइए। ये गलत संदेश जा रहा है देश के अंदर। आपकी पुलिस इन पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रही है, खास तौर से महिला जो खड़ी है पत्रकार, उनके साथ बदतमीजी कर रही है आपकी पुलिस।
1: तमाम लीडर्स इस समय एक जाली के उस पार हैं, लोहे की ग्रिल के उस पार है, इस पार मीडिया है, लेकिन बीच में एक और पुलिसकर्मी है जो बीच में आ रहे हैं। ये कांग्रेस का आरोप है कि वो संवाद नहीं करने दे रहे हैं और ये इस समय तकरार चल रही है, लेकिन आप देखेंगे कि सभी कांग्रेस के लीडर वो एक साथ वहां पर एकजुट है और वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे। वो ये सवाल पूछ रहे हैं, सवाल उनका है कि चुनाव आयुक्त हमसे मिल क्यों नहीं रहे हैं, हम उनसे बस मिलना चाहते हैं, हमें मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं, हम क्यों बीच में रोक रहे हैं। विरोध मार्च के बीच में राहुल गांधी ने इस बीच में पहले एक वीडियो भी जारी किया, संवाद भी किया, सवाल भी पूछे।
5: आप लोग लिख लो,
6: हमें आप तो दो मिनट में घबरा रहे हैं, बताइए काम करिए अपना।
7: सर हम चैलेंज से काम नहीं करते सर, हम
1: राहुल गांधी कह रहे हैं कि दिखाइए आप सही से अपना काम करिए और शायद जब प्रेस की बात समाप्त होगा तो उसके बाद आज तक देखेंगे तो आज तक पर लगातार दिखाया गया कि ओपोजिशन ने क्या कहा है, ओपोजिशन ने और साथ साथ में सत्ता पक्ष की तरफ से क्या बातें हैं, हम सारी बातें लगातार दिखा रहे हैं। और आकाशवाणी भवन आज इस बात का गवाह बना है, एक अलग तरह का प्रोटेस्ट हुआ है, होना बाहर था लेकिन आकाशवाणी भवन अचानक उसके केंद्र में आ गया। हमारे संवाददाता मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मौसमी, क्या संवाद चल रहा है इसमें, क्या क्या क्या क्या तकरार हो रही है? मौसमी,
4: हाँ जी, हाँ राजीव, देखिए अभी हम लोग वहीं पे हैं और यहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो मीडिया की टीम है और उस तरफ उनसे मुखातिब हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने मीडिया को भी राहुल गांधी ने मीडिया से मुखातिब हुए थे और एक तरीके से यहाँ पे कुल मिला के एक लंबी लंबी लंबे धरने की तैयारी है। राहुल गांधी वहाँ पे जाके कुछ मीडिया से कह रहे हैं, यहाँ पे प्रियंका गांधी भी उनके साथ गई हैं। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि आखिर क्या आगे की स्ट्रैटेजी तय होती है, क्या प्लान तय होता है, क्योंकि अब आप देखिए लगभग 3 बज गए हैं और इस धरने को लगभग 4 घंटे होने को आए हैं और यहाँ पे राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के नेता दिख रहे हैं। एक इंडिया ब्लॉक का जो धरना था वो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के इस धरने में तब्दील हो गया है, क्योंकि ना तो सपा के कोई कार्यकर्ता या सांसद है, अखिलेश यादव, बाकी लोगों को डिटेन कर लिया गया है, इसका जिक्र भी राहुल गांधी ने किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या आगे बढ़े। अभी अभी नजर आ रही है संजीव, ये तस्वीर आप दिखाएं, अभी पुलिस कर्मियों से बहसा बहसे कुछ बातचीत चल रही है, शायद आला अधिकारी कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी को आगे चलने के लिए। और यहाँ पे आप देखें कि राहुल गांधी दोबारा बैठ गए हैं जाके वही स्पॉट पे जहाँ पे वो बैठे हुए थे, तो एक तरीके से कोई चेंज नहीं हुई है स्ट्रैटेजी में और यहाँ पे राहुल गांधी वापस बैठ जाते हैं। आइए बात करते हैं, कोशिश करेंगे श्रीनिवास यहाँ पे अगर कोई और नेता आता है तो उनसे बात करते हैं, लेकिन कुल मिला के ये स्ट्रैटेजी शायद तय हुई है कि जब तक श्रीनिवास जी ये स्ट्रैटेजी तय हुई है। अभी देखिए बीबी श्रीनिवास आ रहे हैं, पहले यूथ कांग्रेस के, भाई सब पीछे उठ जाओ, पहले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे और अब जो है सेवा दल के। श्रीनिवास इधर आइए, अभी जो राहुल गांधी आइए, यहाँ नहीं वहां नहीं आ रहा, जो राहुल गांधी अभी निकल के आए हैं तो राहुल गांधी ने क्या कहा है, क्या स्ट्रैटेजी है, कब तक बैठेंगे आप?
5: राहुल गांधी जी जाना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन, इधर के इधर से तीसरी ऑफिस है तो आप ही जाने नहीं दिया, फिर यहाँ भी ना जाने नहीं दे रहा है, वो तो जाके बात करेगा।
4: जो आला अधिकारी आए थे वो यही कह रहे हैं,
5: हाँ वही है, राहुल जी जो है वहाँ जाके मिलना है इलेक्शन कमीशन को, सारे इंडिया गठबंधन का MP को ना वहाँ आने नहीं दिया, बैरिकेड लगा दिया, सबको उठाने का काम किया, ये डेमोक्रेसी में पहली बार हो रहा है। ये सारे अपोजिशन का सारे MP सारे लीडर, दूसरे पार्टी का दल का भी लोग है वो लाए, उनसे भी बात करने तक तैयार नहीं है। तो आप देखे ना, पुलिस पत्रकार तक नहीं छोड़ा, पत्रकार को धक्का दे दिया, महिला पत्रकार को भगाना चाह रहे, ये इनका रवैया है। ये गवर्नमेंट जब जब मोदी जी डरते हैं पुलिस को आगे करते
4: हैं। आप तो पुलिस को जानते हैं, आला अधिकारियों को, तो कौन बात कर रहा है? पुलिस, दिल्ली पुलिस की तरफ से सचिन शर्मा है क्या, डीसी?
5: हाँ, मंजीत जी है और तमाम लोग ने वहाँ इधर बात कर रहा है, तो वो तरीके से बात करना चाहिए। पत्रकार लोग ने क्या किया, उनको धक्का देने का क्या जरूरत है?
4: अच्छा, पत्रकारों को धक्का दे रहे तो उसी पर राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो ये बताइए, श्रीनिवास ये कह रहे थे कि पत्रकारों को धक्का दे रहे थे उसी पे राहुल गांधी बोल रहे थे, और ये भी उन्होंने बोला कि राहुल गांधी से जब आला अधिकारी बात करने आए हैं तो राहुल गांधी ने कहा अपने सांसदों को मिलने नहीं दिया, इंडिया ब्लॉक के 300 सांसद मिलना चाह रहे वो भी आपने करने नहीं दिया, और अब जो है जब आला अधिकारी तमाम आए हैं तो उन्होंने कह दिया है कि हम लोग ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं, सीईसी से, ये कहाँ का लोकतंत्र है। तो ये लकीर राहुल गांधी ने खींची। और जो आप बहसा बहसी की बात कर रहे थे, तो किसी महिला पत्रकार के साथ शायद धक्का मुक्की हुई, वो श्रीनिवास के मुताबिक राहुल गांधी पुलिस कर्मियों को कह रहे थे कि आप ये बदसलूकी मत कीजिए महिला पत्रकारों के साथ। इस बाबत राहुल गांधी ने पिछले 2-3 दिन में पोस्ट भी डाला है एक्स पे कि दिल्ली पुलिस जो है बर्बरता कर रही है, ये आरोप लगाया है उन्होंने।
1: बिल्कुल, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मौसम अब हमारे बरसात बने रही, इस बीच में बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। संबित पात्र ने क्या कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको एक बार सुनाते हैं।
2: वह जिस प्रकार याचिका में था कि फॉर्म 6 इलीगल है, फॉर्म 6 को हटा दिया जाए, और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट सीजेआई द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। अब है राहुल गांधी जी का झूठ नंबर एक। झूठ नंबर एक है फॉर्म 6 को लेकर कि फॉर्म 6 इलीगल है, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार की सुनवाई हुई और 26 सितंबर 2026 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अपना प्रेस स्टेटमेंट नंबर 120 जारी किया, उसमें इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन हुआ था उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट का समर्थन प्राप्त था, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट मॉडिफिकेशन। और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में उस पोर्शन को रेड में मार्क किया है, पॉइंट 3 को, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा, जो कि झूठ है।
1: तो ये तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। मौसमी समय ग्राउंड जीरो पर लगातार है, मौसमी आपके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण समय, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे होगा क्या, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं चुनाव आयोग से मिले और शायद प्रशासन मिलने देना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतना लंबा एक पूरा मामला चलता ही नहीं, तो फिर अब आगे समझाया कैसे जाएगा या फिर फोर्सफुली राहुल को निकाला जाएगा। मौसमी आवाज मिल रही है आपको? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम सिर्फ उनका मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम उनको ध्वस्त करने जा रहे हैं, यहां भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े हैं। उन्होंने पीएम मोदी, गृहमंत्री शाह, मोहन भागवत, ज्ञानेश कुमार सब पर आरोप लगा कि भाई वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं, और पूरा देश मानता है, देश का युवा इस बात को मानता और समझता है, कहा उन्होंने। और जो पुलिसकर्मी आज रोक रहे हैं वो लगातार रोके जा रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने एक्चुअली वोट चोरी के जरिए पूरे देश को हाईजैक कर दिया, इस तरह की बातें राहुल गांधी ने कही। लेकिन सोच समझ कर मैं ये बात कर रहा हूं कि इन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी जब वो सत्ता में आएंगे। बहरहाल इस समय जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है, जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां ये इंडिया ब्लॉक का प्रोटेस्ट था, अब इंडिया ब्लॉक के प्रोटेस्ट के बाद शुरुआत इंडिया ब्लॉक के प्रोटेस्ट से हुई, लेकिन वो अब कांग्रेस के प्रोटेस्ट में तब्दील हो गया है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही नेता दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप दिखाई दे रही है जो प्रदर्शन कर रही है, और ऐसा प्रदर्शन कर रही है कि आप प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती आ गई है कि करें तो करें क्या। बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे, इस बात की खुद जानकारी दी है। आला अधिकारी आए, उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका के साथ संवाद किया, उनको समझाया। दूसरी तरफ से राहुल प्रियंका की तरफ से भी अपनी बात कही गई कि हम तो चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, वो हमसे मिल क्यों नहीं रहे, देश में वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने इससे पहले पोस्ट भी किया कि ज्ञानेश इट्स डन ब्रो, वो जेंजी वाले स्टाइल में, और इस समय थोड़ी देर पहले पुलिस के साथ बहस भी हुई। ये बहुत बड़ी खबर है और बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई। फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो तुम ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?

0: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
1: गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
2: गड़बड़ है।
3: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
14: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
15: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
16: इन एसोसिएशन विद
17: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
16: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं।

0: लखनऊ के गोमती नगर में कई सालों बाद इस तरह की बाढ़ दिखी। पूरे इलाके में कई फीट तक पानी भरा है। घर, मकान, दुकान सब पानी में समा गए हैं। गोमती नदी का जल स्तर बढ़ने से रिवर फ्रंट पूरी तरह से डूब गया है। पानी का फैलाव इस कदर बढ़ गया है कि हनुमत धाम मंदिर परिसर, प्राचीन शनि देव मंदिर और लक्ष्मण मेला मैदान के आसपास भारी जलभराव हो गया है। प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान मंदिर परिसर में भी नदी का पानी प्रवेश कर चुका है। जानकार बताते हैं कि 2006 के बाद ये स्थिति आई है जब गोमती नदी का जल स्तर इतना बढ़ा है। उधर ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ का संकट गहराया हुआ है। बख्शी का तालाब, तहसील के लासा, बहादुरपुर, सुल्तानपुर और अकड़िया मऊ जैसे गांवों में पानी का स्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों की आवाजाही और मदद के लिए 30 नावें तैनात की हैं। 7 राहत शिविरों में हर इंतजाम की बात कही जा रही है। लखनऊ में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, कई लोग पलायन भी कर चुके हैं। गोमती का जल स्तर सामान्य से करीब 8 फीट ऊपर चढ़कर 108.14 मीटर के खतरनाक निशान तक पहुंच गया है। अब देखना है पानी कब तक कम होता है और लोगों को राहत कब तक मिल पाती है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ अंकित मिश्रा, लखनऊ आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दे नेताओं को हटाया गया। योगी से राज्यसभा के लिए बीजेपी के 8 उम्मीदवारों से नामांकन, योगी समेत बीजेपी के बड़े नेता रहे मौजूद। अखिलेश ने नहीं उतारा अपना तीसरा उम्मीदवार, लिखा अब नजर 3 पर नहीं 403 पर है। छोटे मझोले कारोबारियों के लिए मोदी सरकार की बड़ी सौगात, 10,000 करोड़ के निवेश का ऐलान, एसएमई ग्रोथ फंड बढ़ाने पर जोर।

0: गठबंधन का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला और इस समय कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, के सी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा सब प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। विपक्ष के 100 से ज्यादा सांसदों ने आज संसद भवन से मार्च किया। रास्ते में पुलिस ने फिर विपक्ष के सांसदों को रोका और हिरासत में लिया, लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी पुलिस की हिरासत से बच निकले और आकाशवाणी भवन के अंदर जा गए और इस समय वहां भीतर हैं, धरना पर चल रहा है, उनका धरने पर बैठ गए। अब इन सब घटनाक्रम के बीच में बीजेपी ने विपक्ष पर हमला किया और बीजेपी ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। कहा कि जो कांग्रेस पहले फर्जी वोटर्स का रोना रो रही थी, वो कांग्रेस अब वोटर लिस्ट में संशोधन का विरोध कर रहे हैं और इस समय हम प्रोटेस्ट की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। धरने स्थल पर अब धरना स्थल बदल गया है और आकाशवाणी, जो कि एक सरकारी बिल्डिंग है कह सकते हैं, वहां इस समय भीतर प्रोटेस्ट चल रहा है और भीतर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के समय, सांसदों का और बड़े बड़े नेताओं का इस समय जमावड़ा है और वो एक जगह पर हैं। बड़े वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे पुलिस के उनको समझाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन उनकी मांग एक ही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त से वो मिलना चाहते हैं। आखिर वो कांग्रेसी सांसद, ऑपोजिशन के लीडर से मिलने से उनको आपत्ति क्या, मिल क्यों नहीं रहे। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, टीएमसी कार्यकर्ता और दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं को तो हिरासत में लिया गया, नेताओं को हिरासत में लिया गया, लेकिन कांग्रेस का प्रोटेस्ट जारी है। और इसी समय बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सुनाते हैं क्या कह रहे हैं।
1: और बाकी ने कहा है कि बैलेट पेपर शुरू किया जाए, मतलब ईमानदार टेक्नोलॉजी चुनाव में जीत नहीं सकते, इसलिए बूथ कैप्चरिंग करके जीतना चाहते हैं। बैलेट बॉक्स में स्याही फेंक कर दलितों, गरीबों को वोट देने से रोकना चाहते हैं गांव में, और तब ये जीतना चाहते हैं जो इनकी पूरी नीति रही है पिछले कई वर्षों से। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप गए, कई पार्टियां गईं, सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई के निर्णय में पूरा विस्तार से कहा कि एसआईआर कानून में विधि सम्मत है, उस पर कार्रवाई हुई। केरला के आपके गृहमंत्री ने कहा कि एसआईआर के कारण ही हम सीपीएम को हरा पाए। बंगाल में आप हारे, 2 सीट आई। आप बिहार में हारे, 2 सीट आई। आप हारे हरियाणा में, आप हारे महाराष्ट्र में, आप हारे दिल्ली में, तो चाहते क्या हैं आप? ये जनता के मतों का अनादर कर रहे हैं। जो जनता वोट दे करके जिताती है, वो कह रहे हैं सारे चुनाव को रद्द करो। राहुल गांधी जी किसी संस्थानों का सम्मान नहीं करते हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट हो, क्या वो चुनाव आयोग हो, क्या वो सेना हो या कोई भी हो। एक बात मैं फिर आज पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से चुनाव में जनता बार बार उनको परास्त करती है तो रोज नया नया जो बतंगा खड़ा करते हैं, क्या सच्चाई नहीं है कि सर में कई करोड़ लोग मृत पाए गए थे? क्या मृत लोग को वोट देना चाहिए? कई लोग दो जगह वोटर पाए गए, तो ऐसा तो कानून में संभव नहीं है, फिर भी उनको चाहते हैं वोट देना। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, और इस बात को कभी नहीं भूला जाए कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जुडिशियल ऑफिसर्स को बैठाया गया था पूरी कार्रवाई करने के लिए, वहां भी उनको प्रताड़ित किया गया। तो मैं पूरे राहुल गांधी के इस आचरण की भर्त्सना करता हूं। वो एनआरकी चाहते हैं, कभी सेना प्रमुख को क्या क्या बोलते हैं, और आज जो उन्होंने बहुत ही बेशर्मी भरा आरोप लगाया है प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर और मोहन भागवत जी पर, इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी अराजक हैं, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं, राहुल गांधी इज एन आर्किस्ट एंड राहुल गांधी इज रिस्पॉन्सिबल। और देश की जनता आपके इस आचरण पर कभी आपको नहीं जिताएगी, आप निश्चिंत रहिए, हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं।
0: बीजेपी हमलावर रहे और रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से आपको जनता पर जो है परास्त करती है, जो वोट कटे भी हैं वो जो मृत वोटर्स थे वो कटे हैं, लेकिन आप बात का बतंगा बना रहे हैं, आप गैर जिम्मेदार हैं। ये तमाम बातें कि हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं, ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, इस समय भीतर क्या चल रहा है, क्या फिर कोई समझाने मनाने पहुंचा है या फिर नहीं?
2: अब यहाँ पे रेलिंग में हम लोग खड़े हुए।
0: मौसमी, आवाज मिल रही है आपको? लगता उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। ऐश्वर्या के पास चलते हैं। ऐश्वर्या, आपके पास क्या अपडेट? अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा? राहुल अगर नहीं मान रहे हैं तो उनको मनाने के लिए डेलीगेशन जाएगा या कुछ और फोर्सफुली देखेंगे हम, हिरासत में लिया जाएगा?
3: देखिए, बिल्कुल जहां तक मुझे सब समझ में आता है, काफी घंटे हो चुके हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, दीपेंद्र हुड्डा, इन सब लोगों ने मानिए जैसे डेरा सा ही जमा लिया है आकाशवाणी भवन में। तो मेरी एक तरफ यहां पर आकाशवाणी भवन है, मुश्किल से 50 मीटर दूर वो जो पेड़ आपको नजर आ रहा है उसी की छाव में बैठे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी लोग। लेकिन ये देखिए, जो पुलिस की वैन अब आपको यहां पर नजर आ रही है, भर के पुलिस कर्मियों को लेके आ चुके हैं और इस समय जो बातचीत है वो करने की कोशिश राहुल गांधी से की जा रही है। अब हमें वेट करना कि क्या कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है वो अंदर जाएंगे, राहुल गांधी से बातचीत करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि फोर्स की अगर बात करें तो देखिए पूरी छावनी में इस समय इस पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। आरएएफ के पर्सनल भी आपको यहां नजर आ रहे हैं, बैरिकेटिंग तो सुबह से यहां पे लगी हुई है। आकाशवाणी भवन जो है उसको हर तरफ से अब घेर लिया गया है ताकि ऐसा ना हो कि कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो काफी भारी तादाद में यहां पर पहुंच जाएं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ऐसा लगता है कि अपना मन बनाकर आए हैं कि यहां पर धरना देकर ही मानेंगे। उनके हावभाव से तो नहीं लगता कि खुद से वो थोड़ी देर के अंदर उठने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे शाम पास आ रही है हमें जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि पुलिस कर्मियों का जो आंकड़ा है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और थोड़ी देर में हो सकता है कि कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है वो एक बार फिर से अपील करे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी जितने कांग्रेस के नेता अंदर बैठे हैं उनसे।
0: इससे पहले भी तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे, मांग तो बदली नहीं है। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपके पास लौटते हैं, मौसमी भी हमारे साथ है। अब मौसमी, चूंकि कांग्रेस की जब मांग बदली नहीं है, राहुल गांधी, प्रियंका अड़े हुए हैं अपनी मांगों पर, तो फिर बीच का रास्ता क्या है? मौसमी, हाँ सुन रहे हैं हम आपको, बोले
2: जी राजीव, मुझे आवाज आ रही है
0: तो मौसमी?
2: हाँ, जी राजीव, हाँ, देखिए हाँ। अभी मुझे थोड़ी हरकत ज्यादा दिख रही है यहाँ पे। आप देखिए कि पहले ये नीली बस जो है और ये जो देखिए आप रैपिड एक्शन फोर्स की जो वाहने हैं वो पहले नहीं थी और अभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, अभी देखिए आप बीच में यहाँ पे जहाँ पे मीडिया का ताता था वहाँ जितने कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। ये बस दिखाइए जिसमें ताजा कार्यकर्ताओं को डिटेन करके ले जा रहे हैं। संजीव, यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता राहुल गांधी के इर्द गिर्द बैठ के नारेबाजी कर रहे थे उनको बसों में भरा जा रहा है। ये तो तस्वीर हमने आपको दिखाई बाहर की, पैरामिलिट्री फोर्स आपको नजर ही आ रही होगी। संजीव, दिखाएंगे कि बस के सामने देखिए कितनी पैरामिलिट्री फोर्स है, ये फोर्स आपको दिख रही है। और कैमरा इधर घुमाइए बाईं तरफ तो बैरिकेड आपको नजर आएगा। संजीव, इधर दिखाइए तो देखिए अभी लोगों को बसों में भरा जा रहा है और यहाँ पे राहुल गांधी कहाँ है ये आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी अभी वहीं पे अंदर खड़े हुए हैं, कुछ आकाशवाणी की बिल्डिंग को देख रहे हैं और कुछ आपस में चर्चा चल रही है। डीसीपी सचिन शर्मा इससे पहले प्रियंका गांधी से बात कर रहे थे। अब ये तो क्लियर हो गया है, हम लोग ने श्रीनिवास और इमरान प्रतापगढ़ी से जो बात की है, मुझे मेरे सूत्र भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये दो टूक कह दिया है कि ज्ञानेश कुमार से मिला दीजिए, हम घर चले जाएंगे। अब ये क्या रात तक यहाँ पे डेरा डालेंगे रात भर, ये देखना होगा। लेकिन पेड़ की छांव के तले राहुल गांधी ने यहाँ पे अपनी खूटी बांध ली है और यहाँ से टस से मस नहीं हो रहे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि ताजा हिरासत में लिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को और ये तस्वीर यहाँ पे आकाशवाणी भवन के सामने आप क्लियर कट देख सकते हैं जो चीज हो रही है। हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि राहुल गांधी यहाँ से हिलने वाले हैं। राहुल गांधी की का ये अंदाज रहा है लेटली, आप देखिए कि जब कोई एक मुद्दा पकड़ते हैं तो वो छोड़ते नहीं हैं। जब साहिल लोचब उनके पास पहुंचे थे और बोला था मेरी FIR नहीं दर्ज हो रही है, तो एक महीने बाद वो राहुल गांधी के साथ बैठ लिए और पहले दूसरे पुलिस मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन जाके उसके बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने साहिल लोचब को ले गए। वहीं पे उन्होंने अपना लंच किया, रोल्स मंगाए, वहीं पे पानी पिया, कुर्सी पे बैठे रहे और तब तक नहीं हिले जब तक FIR नहीं हुई। यानी कि कोई जल्दबाजी में राहुल गांधी नहीं नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लग रहा है कि आकाशवाणी भवन से ही वो अपना मैसेज टेलीकास्ट करना चाहते हैं सरकार को भी और चुनाव आयोग को भी। देखिए राजीव, जो इस ज्योग्राफी को नहीं जानता, हम अभी हैं आकाशवाणी भवन में। जैसे ही आकाशवाणी भवन खत्म होता है, दाहिने हाथ पे ही चुनाव आयोग है। यहाँ पे हम लोग अक्सर चाय पीने आते थे, यहाँ चुनाव आयोग कवर करते हैं, एक चाय की दुकान बड़ी फेमस है यहाँ पे। वो मतलब कि उसकी चौखट चुनाव आयोग का पीछे का गेट और वो चाय की दुकान बिल्कुल सामने यहाँ से नजर भी आ रही है। तो इतनी ही दूरी का फासला राहुल गांधी और मुख्य चुनाव आयुक्त के ऑफिस का है जो राहुल गांधी पाटना चाहते हैं। बहरहाल अभी तो 4 घंटे लग गए हैं, वही 0 पॉइंट पे राहुल गांधी बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए नेताओं को बाहर से अंदर भी नहीं आने दिया जा रहा है, जो नेता अंदर आ गए वो आ गए।
0: बिल्कुल, मौसम में लौटता हूँ आपके पास, ऐश्वर्या भी हमारे साथ है। ऐश्वर्या, आप देखिए जब आप मतलब सी से मिलना चाहते हो तो उनसे मिलने के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। अब आप प्रोटेस्ट के रूप में जा रहे हैं और उनसे मिलना आप चाह रहे हैं, अब चूंकि वो कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है वैसे कि पॉलिटिशियन होते किसी बड़े पद पर होते, तो फिर होगा कैसे? या तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई रिप्लाई आए, कोई जवाब आए कि हाँ चले मिलते हैं, इस समय मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं, वहां से भी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, तो फिर कैसे समाप्त होगा धरना?
3: देखिए ये कश्मकश जो मुझे समझता है राजीव चलती रहेगी, क्योंकि कहा कि प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया क्या होती है मैं जल्दी आपको बता देती हूं। पार्टी है तो आपकी पार्टी है वो उन लोगों को चुनती है जो चुनाव आयोग को खत लिख सकते हैं। तो आपकी पार्टी से जो चुनिंदा लोग हैं उन लोगों को एक खत लिखना होगा, एक ईमेल लिखना होगा, जिसके अंदर वो समय मांगेंगे। जब आप समय मांगते हैं और चुनाव आयोग को मेल देते हैं तो उससे उसके 1 से 2 घंटे के अंदर अमूमन चुनाव आयोग जो है समय दे देता है। तो क्या कोई ऑफिशियल रूट अभी तक राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनाया गया है? क्या उन्होंने ऑफिशियल रिस्पॉन्स जो है वो दिया है? क्या उन्होंने ऑफिशियल अपील चुनाव आयोग को दी है? लेकिन इस तरीके से धरने पर बैठने से प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है और लगता नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंस है, जैसा कि मौसमी बता रही थी, एकदम सही बोल रही थी, जहां राहुल गांधी हैं इस समय। एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ, ये देखिए बड़ी संख्या के अंदर पुलिसकर्मी अब यहाँ पर आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि अंदर से के अंदर की
0: ऐश्वर्या तो जानवर ऑन हो गया या कुछ और इशू है कि आपकी आवाज सब ब्रेक हो रही, कट रही, और सुबह से आज हम जब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ये मुश्किलात तो सुबह से ही पेश आ रही है, तो दिक्कतें सुबह से ही आ ही रही हैं। और लेकिन साथ साथ में तस्वीर भी आप देख ही लीजिए कि इस समय प्रोटेस्ट भीतर चल ही रही है। मौसमी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। मौसमी, ये इंडिया ब्लॉक का प्रोटेस्ट कांग्रेस के प्रोटेस्ट में तब्दील हो गया।
2: राजीव, राजीव,
0: हाँ हाँ बताए मौसमी।
2: राजीव, राजीव मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक बार ये सीन देखिए आप, ये हम अपना साइड एंगल से सीन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ चटाई बिछ गई है। मैं लगातार ये कह रही थी राहुल गांधी की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, यहाँ पे एक लंबा आयोजन है और यहाँ पे चटाई बिछा दी गई है। ये चटाई बाहर से आई है और यहाँ पे चटाई पे बैठ गई है प्रियंका गांधी और प्रणीति शिंदे बैठी है और बाकी नेता भी बैठ गए हैं। और यानी कि अब यहाँ से नहीं हिलने वाले राहुल गांधी, अब या जो भी कार्यक्रम आगे का होगा वो यहीं से होगा। बहरहाल अभी तो ये स्थिति है, इसका मतलब यही है कि लंबी योजना बनाकर बैठे हैं राहुल गांधी यहाँ पर। अब राहुल गांधी अकेले, क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, तो जितने अंदर हैं उन्हीं को रखा जाएगा, वही रह जाएंगे। बाकी आसपास आप देखिए कि जितनी बसें हैं उनमें भरा जा रहा है। यहाँ देखिए आप आपस में बातचीत कर रहे हैं और इत्मीनान से श्रीनिवास हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं। एक ये तस्वीर उससे मेल मिलाइए जो पार्लियामेंट स्ट्रीट में थी, वहाँ साहिल लोचब के साथ बैठे थे, प्रियंका गांधी भी बैठी थी, उनकी माँ भी बैठी थी, पुलिस थाने से कुर्सियां मिल गई थी। यहाँ शायद लंबे समय बैठे, पुलिस की अनुमति से ही ये चटाइयां आई होंगी शायद, क्योंकि लगातार वहां पे चबूतरे पे बैठे हुए थे इर्द गिर्द, अब ये चटाई बिछा दी गई है, यहाँ पे बैठ गए हैं। और इसका मतलब ये है कि प्लानिंग जो है राहुल गांधी तो नहीं हिलने वाले। अब दिल्ली पुलिस को ये बात करनी होगी कि राहुल गांधी को यहाँ से हिलाना है या नहीं, या यहीं बैठे रहेंगे, क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बाबत या जिस तरीके से व्यवस्था जो है वो डिस्टर्ब हो रही है उसके चलते यहाँ से उनको हटाया जाता है। लेकिन पेड़ की छांव है और इस छांव के नीचे जो रणभूमि राहुल गांधी ने खींची है, सियासी रणभूमि, उसमें चुनौती वो सीधे ना ज्ञानेश कुमार को बल्कि मोदी सरकार को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को लगातार मीडिया से भी बात करते समय चुनौतियां दिए जा रहे हैं।
0: मौसमी, क्या अब पूरा ब्लॉक के भीतर कोई नहीं जा सकता और भीतर से कोई बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि क्या ये संभावनाएं हैं अभी कि इंडिया ब्लॉक के दूसरे नेता फिर से आकर जुड़ जाएं, इस प्रोटेस्ट को और बड़ा कर दें? ठीक है मौसमी आपके पास हम लौटेंगे। ये बहुत बड़ी खबर इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई, क्योंकि प्रदर्शन तो बड़ा होता ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी इन सबके बैठने के लिए अब चटाई भी आ गई है, अब कितनी देर बैठे रहेंगे निगाह लगातार है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।

क्या यूपी में कांग्रेस प्लान बी पर बढ़ेगी? क्या छोटे दलों में विकल्प ढूंढ रही कांग्रेस? क्या यूपी में है राहुल अखिलेश का कुछ सीक्रेट प्लान? उत्तर प्रदेश की कांग्रेसी सियासत के चेहरों ने अब तक जो रुख जाहिर किया है उसी से ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 403 सीटों वाली विधानसभा में 200 सीट मांग कर रही है तो अखिलेश लगातार जीत के आधार पर ही सीट की बात कर रहे हैं। ऊपर से छोटे छोटे दलों के नेता राहुल की परिक्रमा करना शुरू कर चुके हैं, चाहे वो अपनी जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य से राहुल गांधी की मुलाकात हो या यूपी में चौहान लोनिया ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले महान दल के अध्यक्ष संजय चौहान की राहुल से मुलाकात या फिर अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता पंकज निरंजन से राहुल की भेंट। 2022 के पहले बने भागीदारी मोर्चा के ज्यादातर दल कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी छोटे दलों के नेता बारी बारी से राहुल गांधी से मिल चुके हैं। दरअसल यूपी में जिस तरह समाजवादी गठबंधन में शर्तों की बात सामने आई है उसमें राहुल अखिलेश के सियासत के सीक्रेट मायने कुछ और भी हो सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इन छोटे छोटे दलों को जोड़कर 2017 के पहले के बीजेपी के फार्मूले को अपना रही है, जब अमित शाह ने इन्हीं छोटी पार्टियों और नेताओं को अपने साथ जोड़कर समाजवादी पार्टी को मात दी थी। वैसे छोटे दलों से कांग्रेस की मुलाकातों का एक मायने और है, जिसमें राहुल यूपी में समाजवादी वर्चस्व के मुकाबले विकल्प की तलाश कर सकते हैं। खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने की मांग की है और लगभग दर्जन पर सीटों की मांग रखी है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कहा है कि सिंबल तो कांग्रेस का ही होगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी चेतावनी देती है कि यूपी में कांग्रेस के सामने सिर्फ समाजवादी ही विकल्प है, वरना यूपी में का नाम लेवा प्रतिनिधित्व भी नहीं होता। दरअसल समाजवादी पार्टी बार बार संकेत दे रही है कि यूपी में कांग्रेस का बड़ा भाई समाजवादी है और अखिलेश ने जो जिताऊ कैंडिडेट की शर्त कांग्रेस के सामने रखी है उसमें कांग्रेस छोटे दलों के अंदर जातिगत बुनियाद पर जिताऊ चेहरे तलाश रही है। कुमार अभिषेक लखनऊ आज तक

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: कार खरीदने वाला हर ग्राहक एक ही सवाल पूछता है, माइलेज कितना मिलेगा और जेब पर कितना बोझ पड़ेगा। आने वाले समय में ये सवाल ऑटो कंपनियों के लिए भी सबसे जरूरी होने वाला है। वजह है सरकार के नए फ्यूल एफिशिएंसी नियम जो कार बाजार की तस्वीर बदल सकते हैं। सरकार ने कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नॉर्म्स यानी CAFE 3 को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे और 2032 तक प्रभावी रहेंगे। इन नए नियमों को 2032 तक फेज वाइज सख्त तरीके से लागू किया जाएगा। इनके जरिए 5 साल में फ्यूल एफिशिएंसी में करीब 16.7% सुधार का लक्ष्य है और इसके लिए कंपनियों को पूरे बेड़े की औसत खपत कम करनी होगी। इन नियमों का असर किसी एक मॉडल पर नहीं, कंपनी की कुल गाड़ियों के औसत फ्यूल कंजम्पशन पर पड़ेगा। इसलिए कंपनियां अपनी पूरी रणनीति पर दोबारा काम कर सकती हैं। नए नियमों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खास जगह दी गई है। यही वजह है कि आने वाले वर्षों में ग्राहकों को ज्यादा किफायती ईवी देखने को मिल सकती है। नियमों के मुताबिक एक बैटरी ईवी को कैलकुलेशन में 3 गाड़ियों के बराबर वेटेज दी गई है। ऐसे में ज्यादा ईवी बिक्री से कंपनियों को नियम पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं एंट्री लेवल और किफायती ईवी लॉन्च पर भी फोकस बढ़ सकता है और हाइब्रिड गाड़ियों को भी अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा। इंडस्ट्री का मानना है कि ज्यादा बिक्री वाली किफायती ईवी कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इससे इलेक्ट्रिक कारों की रेंज बढ़ाने और नए मॉडल लाने पर जोर बढ़ सकता है। दूसरी तरफ बड़ी एसयूवी और ज्यादा ईंधन खपत वाली पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में कंपनियां प्राइसिंग और मॉडल मिक्स बदल सकती हैं। कहीं बेहतर माइलेज वाली तकनीक पर निवेश बढ़ सकता है और ग्राहकों को ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट विकल्प मिल सकते हैं। जानकारों का मानना है कि कंपनियां नियमों को पूरा करने के लिए कुछ ज्यादा उत्सर्जन वाली गाड़ियों की कीमतों और पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकती हैं। हालांकि कौन सी गाड़ी कितनी महंगी या सस्ती होगी, इसका फैसला कंपनियां अपने स्तर पर करेंगी। कुल मिलाकर नए नियमों का मकसद पेट्रोल और डीजल की खपत कम करना है, प्रदूषण घटाना और साफ तकनीक वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना है। इसका असर अगले कुछ साल में कार बाजार में दिख सकता है, जहां ग्राहकों के सामने इलेक्ट्रिक और ज्यादा माइलेज वाली गाड़ियों के विकल्प बढ़ते नजर आ सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: वर्ल्ड आप देख रहे हैं रणभूमि, और इस वक्त राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के कई दलों ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यानी SIR प्रक्रिया में कथित धांधली और चुनाव आयोग में कथित रूप से एक तरफा फैसला लिए जाने के खिलाफ एक रण छेड़ दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आकाशवाणी भवन में समय धरने पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी की मांग यह है कि उन्हें चुनाव आयोग नहीं जाने दिया जा रहा है, वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं, उन्हें मिलने दिया जाए। इससे पहले विपक्षी दलों ने करीब 150 सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च किया। वोट चोरी से लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है, बड़ा आरोप विपक्ष इस समय लगा रहा है। 4 घंटों से आकाशवाणी भवन में धरने पर बैठे हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के बड़े नेता। वोट चोरी से लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को शुरू में हिरासत में लिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आकाशवाणी भवन में इस समय बैठे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए।
1: इलेक्शन कमीशन से बट वो जवाब नहीं देना चाहिए।
2: लोकतंत्र में संवाद की गुंजाइश होती है, कि आपको लगता है ब्रेकडाउन हो गया है?
1: नहीं, लोकतंत्र ही खत्म हो गया है
2: सर, जिस तरह से
1: लोकतंत्र ही खत्म हो गया है, क्योंकि
3: भैया बोलिए नहीं,
1: पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार ने मिलकर वोट खत्म कर दिया। ये देश को बात समझ आ गई है। एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देश को हाईजैक कर दिया, और हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने।
4: सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ने डाला और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आने जो पहले प्रेस रिलीज दिख जा रही है,
1: उसके मैं इन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। सिंपल सी बात है, देश के ऑपोजिशन के सारे सांसद 300
4: दिल्ली पुलिस का
1: 300 सांसद सपोजिटली फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं, हमें मिलने नहीं दे रहे हैं। हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, SIR के बारे में पूछना चाहते हैं, बंगाल के बारे में पूछना चाहते हैं, हरियाणा के बारे में पूछना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में पूछना चाहते हैं, महाराष्ट्र के बारे में पूछना चाहते हैं, वो जवाब नहीं देना चाहते। अगर उन्होंने वोट चोरी नहीं की होती तो एक मिनट में वो हमसे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।
2: पुलिस ने क्या करना है राहुल,
4: अभी यहाँ बैठेंगे या पुलिस ऑफिसर्स ने आप लोगों को?
1: मैंने आपको बोला है नहीं, मैंने पुलिस वालों से कहा है, एक सेकंड, मैंने पुलिस वालों से कहा कि देखिए मैं पहले वहाँ बैठा था, वहाँ से आपने मुझे हटा दिया, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ से आप हटाना चाहते हो, मैं सिर्फ पुलिस वालों को कह रहा हूँ ठीक है यहाँ से हटाना है यहाँ से हटा दो, मगर मुझे बता दो मैं इस देश में कहाँ पर बैठ सकता हूँ, मैं बस बैठना चाहता हूँ। और पुलिस वालों से मैंने कहा है, प्यार से कहा कि देखिए आप मुझे बता दीजिए,
4: पुलिस ऑफिसर्स आपको
1: बता दीजिए कहाँ बैठ सकता हूँ, इंडिया गेट पे बैठ

0: सकता हूँ, जंतर मंतर पे बैठ सकता हूँ, सड़क पे बैठ सकता हूँ, कहाँ बैठ सकता हूँ, मुझे बस एक जगह बता दीजिए।
1: राहुल गांधी का बड़ा दावा, बड़ा आरोप, लोकतंत्र नहीं है, वोट नहीं है, खत्म हो गया है, हाईजैक कर लिया गया है। वो ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं, चुनाव आयोग जाना चाहते हैं, इसकी इजाजत उन्हें नहीं दी जा रही है। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंचालक मोहन भागवत और ज्ञानेश कुमार सभी का नाम लिया कि ये सब इनकी मिली भगत है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के बयानों को गैर जिम्मेदाराना बता रही है। वैसे आकाशवाणी भवन कर के गेट पर इस समय राहुल गांधी खड़े हैं, बोल रहे हैं मुझे जहां ले जाना चाहते हो बता दो, मैं कहां बैठकर अभी प्रोटेस्ट कर सकता हूं, मैं वहीं बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठूंगा। दिल्ली पुलिस के साथ यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का संघर्ष हुआ से थोड़ी देर पहले। एक तरफ विपक्ष का धरना था तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमला कर रही है। जो मुख्य मुद्दा है फॉर्म 6, यानी नए वोटरों को रजिस्टर करने वाला फॉर्म, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त को सस्पेंड करने और उनके फैसले पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी, उस पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर्म 6 में बदलाव का कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। अगर उसके साथ एनेक्सचर डी, एक अन्य कागज जोड़ा गया है, एक पत्र जोड़ा गया है एनेक्सचर डी, इसके तहत कोई घोषणा पत्र बिहार में एसआईआर के दौरान जोड़ी गई, तो फिर ये किसके आदेश पर हुआ, किस अधिकार के तहत हुआ, इसकी जांच की आवश्यकता है। और इस आरोप के जांच के लिए रिकॉर्ड मंगवाए जाएंगे ताकि चुनाव आयोग, अगर एक तरफा फैसला लिया गया है अन्य चुनाव आयुक्तों की, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी दो सहयोगी आयुक्तों की सहमति नहीं ली गई, तो इसकी पड़ताल की आवश्यकता है, तथ्य जानने की आवश्यकता है। तो इसके जवाब में चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को एक प्रेस नोट जारी किया। उन्होंने प्रेस नोट जारी कर में यह कहा गया था कि उन कोर्ट की मंजूरी ली गई थी, बिहार में एसआईआर का फैसला चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्तों की सहमति से हुआ था। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि वोटर लिस्ट को साफ और शुद्ध करने के लिए उनके पास प्रशासनिक कदम के तहत घोषणा पत्र जोड़ने का अधिकार है। इस समय मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुनिए।
2: एक महिला पत्रकार के साथ में, या दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर ने महिला पत्रकार के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट करने का प्रयास किया। दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जो आप सबने देखा, जिसमें यह साबित हुआ और जिसमें तथ्य सामने आए कि कैसे जो पूरा वीडियो सर्कुलेट हुआ वो वीडियो झूठा वीडियो था। वो एक नदीम अहमद नाम के इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर, जिसकी तस्वीर आप सबने देखी होगी, उस नदीम अहमद नाम के इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर ने एक फेक एआई वीडियो को जनरेट किया और उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम, कांग्रेस सेवा दल, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, तमाम ये पूरे के पूरा इकोसिस्टम स्ट्रीट एनार्की का समर्थन करते हुए एक झूठा नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया। दे अटेम्प्टेड टू स्प्रेड अ फेक नैरेटिव, जो झूठ आज पकड़ा गया। उस झूठ पर राहुल गांधी कंप्लीटली खामोश है और ये एक पैटर्न बन चुका है। और ये पैटर्न अगर आप सभी ध्यान से देखेंगे, जो कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम चलाता है, उस पैटर्न में उसका एंड ऑब्जेक्टिव झूठे नैरेटिव्स के जरिए देश के लोकतंत्र में अराजकता फैलाना होता है। तो अगर आपने इस केस में देखा होगा, 3 अक्टूबर को एक फर्जी एआई वीडियो जनरेट होता है कोई एक इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर द्वारा। ये इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर, जिसका नाम नदीम अहमद है, और उस वीडियो को पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम 24 घंटे तक एम्पलीफाई करता है। राहुल गांधी तो ये तक लिख देते हैं कि किसी पत्रकार के साथ बदसुलूकी हुई, मतलब एक कंसर्टेड एफर्ट के जरिए, इन अ कॉन्शियस एफर्ट, ये दिल्ली पुलिस और स्टेट को विलनाइज करने का प्रयास करते हैं। अगर इसमें तथ्य होते तो समझ में आता, परंतु ये झूठ सामने आया। सो स्टेप वन इस पूरे इकोसिस्टम का रहता है कि किसी भी इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर के जरिए एक फेक वीडियो या एक फेक नैरेटिव को आगे रखो। उस फेक नैरेटिव को राहुल गांधी का पूरा इकोसिस्टम, कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम 24 घंटे तक अलग अलग हैंडल्स के जरिए फैलाने का प्रयास करता है। अब ये नेचुरल है कि अगर पुलिस के ऊपर या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर कोई आरोप लगाएगा तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो।
1: तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगा रही है, फेक कंटेंट क्रिएट करके अराजकता फैलाने की साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी धरने पर बैठी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता धरने पर बैठे हैं। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी हमारे साथ ताजा जानकारी के साथ जुड़ रही है। ऐश्वर्या, चुनाव आयुक्त से मिलना चाहती है कांग्रेस पार्टी, उनके बड़े नेता राहुल गांधी, नेता विपक्ष प्रियंका गांधी वाड्रा, अन्य नेता, क्या समय मांगा गया है, समय मिल रहा है?
3: देखिए गौरव, समय बिल्कुल नहीं मांगा गया है और यही प्रोटोकॉल होता है और हर बड़ी पार्टी को ये मालूम होता है कि अगर आप चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त या इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर एक ईमेल लिखना होगा, उसमें आपको समय मांगना होगा और आपको बताना होगा कि कितने लोग आपके पार्टी से, कितने लोग डेलीगेशन में कांग्रेस पार्टी के जाना चाहते हैं और चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके का फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं किया गया है। लेकिन महज 100 मीटर दूर, 100 भी शायद मैं ज्यादा बोल रही हूँ गौरव, महज 70 मीटर दूर ये जो गली है, इस गली के एंड पर ही चुनाव आयोग का ऑफिस है और इस गली के छोर पर यहाँ पे आकाशवाणी भवन है जहाँ पे अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा अब चटाई लेकर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसको कुरुक्षेत्र बना लिया है और उनको लगता है कि वो जहाँ खड़े हैं धर्म वहीं खड़ा है और उनको लगता है कि इस समय देश की जनता के साथ अधर्म हो रहा है और अधर्म करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उसका सहयोग दे रहा है पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन, खास तौर पे सीईसी यानी कि ज्ञानेश कुमार। इसीलिए हम देख रहे हैं कि घंटों से बैठे राहुल गांधी यहाँ पे टस से मस होने को तैयार नहीं है और अब ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ एक मुलाकात करना चाहते हैं लेकिन वो मुलाकात संभव नहीं है क्योंकि ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी के द्वारा ना कोई लेटर, ना कोई मैसेज, ना कोई ईमेल चुनाव आयोग को गया है। अगर वो देंगे तो अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर हो सकता है कि चुनाव आयोग उन्हें मिलने के लिए बुला भी ले। गौरव,
1: यह आप बड़ी बात बता रही हैं कि समय नहीं मांगा गया है मिलने के लिए, इकट्ठा हो गए हैं यहां पर और अब चुनाव आयोग का यह कहना है कि अगर समय मांगा जाएगा तो 1 से 1.5 घंटे के भीतर वो समय दिया जा सकता है। लेकिन इसके इतर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि अब इस देश में प्रजातंत्र रहा ही नहीं है, वोट की कोई शक्ति रही ही नहीं है। सुनिए,
4: समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज आए थे और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे। यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका। हम देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम देश की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। पता नहीं क्यों 300 एमपी को यहाँ पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को ठीक से चलाने का है। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं तो पता नहीं देश में क्या हो रहा है। अगर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन कमीशन नहीं मिलेगा तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है।
1: और एक बार फिर आपको लिए चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, क्या कहना है बीजेपी का, सुनिए।
2: चलने दिया था। तीसरा, क्या ये इस देश के पत्रकारों के साथ में भी बड़ा अन्याय नहीं है जो लेजिटिमेट रिपोर्टिंग ग्राउंड पे करते हैं, जो इतनी मेहनत के साथ जमीन पर जाके खबर को लाने का प्रयास करते हैं। आज कांग्रेस इकोसिस्टम क्या अपने पेड वॉलंटियर्स और पेड वर्कर्स को अलग अलग प्रोटेस्टों में घुसाकर क्या इस देश के फोर्थ स्तंभ को बदनाम करने का प्रयास नहीं कर रहा है? पांचवा, ये एक पैटर्न है और इससे क्या कांग्रेस इकोसिस्टम इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास नहीं कर रहा है? इज द कांग्रेस पार्टी एंड राहुल गांधीज एंटायर इकोसिस्टम नॉट अटेम्प्टिंग टू डीलेजिटिमाइज द इंडियन स्टेट्स मॉरल फैब्रिक? राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी आर वर्किंग इन अ वेरी कॉन्शियस एंड अ कंसर्टेड एफर्ट वेयर देयर एंटायर इकोसिस्टम इज फंडिंग इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स विच आर नॉट जर्नलिस्ट। These independent content creators have been tasked by the Congress party in the Congress ecosystem, Rahul Gandhi in particular, to make fake videos, और इन fake videos के जरिए ये इस देश के Indian constitutional fabric को delegitimize करने का प्रयास कर रहे हैं। बात आज ये वर्दी को delegitimize करने का प्रयास कर रहे हैं, कल ये सुप्रीम कोर्ट को डीलेजिटिमाइज करने का प्रयास करेंगे और परसों ये किसी तीसरी संवैधानिक ढांचे को डीलेजिटिमाइज करने का प्रयास करेंगे। तो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति जो संविधान की किताब हाथ में लेता भी है और उसको पढ़ता भी है, आज उन सबको राहुल गांधी से एक बेसिक सवाल पूछना चाहिए कि आपके जब झूठ निरंतर पकड़े जाते हैं, जो इस केस में भी हमने देखा नदीम अहमद के केस में, तो ऐसा क्यों होता है कि आप अपने झूठों को रिट्रैक्ट नहीं करते और इनफैक्ट उसको वापस से आप हाईजैक करने का प्रयास करते हैं? राहुल गांधी इज अटेम्प्टिंग टू कम टू पावर ऑन द बेडरॉक ऑफ फॉल्स नैरेटिव्स बाय वर्किंग ओवर टाइम विद द कांग्रेस इकोसिस्टम टू स्प्रेड एनार्की एट द सेम टाइम स्प्रेड फॉल्स नैरेटिव्स। और ये अब नदीम अहमद के केस में पकड़ा गया है। तो ये बात सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर की नहीं है, मैंने आपको दिखाया कि कांग्रेस सेवा दल के और इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये वीडियो डाला और इसको शेयर किया और ये 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या बक राहुल गांधी पर स्टॉप नहीं होती? द बक ऑफ दिस एंटायर कांग्रेस इकोसिस्टम विच अटेम्प्टेड टू डीलेजिटिमाइज विलिफाई दिल्ली पुलिस बट इन पर्टिकुलर इज वर्किंग ओवर टाइम टू डीलेजिटिमाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी।
1: और इस समय हमारे सहयोगी राहुल गौतम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, बात चल रही थी कि राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को, केसी वेणुगोपाल को, पवन खेड़ा जितने कांग्रेस के बाहर नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, उन्हें आकाशवाणी भवन से किसी अन्य स्थान पर ले जाया जाएगा। इस समय क्या वो हिरासत में हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, केवल डिटेन किए गए हैं और आगे की क्या कार्रवाई है?
5: देखिए, अभी तक राहुल गांधी को ना गिरफ्तार किया गया है ना ही उनको डिटेन किया गया है। वो स्वेच्छा से आकाशवाणी भवन के अंदर मौजूद हैं। वो आकाशवाणी भवन के अंदर इसलिए गए थे ताकि वो जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है वहां तक पहुंच पाए, लेकिन वो करंटली वहां पर उनको होल्डअप किया गया है। और जैसे कि जानकारी मिल रही है, फिलहाल अभी तक उनको डिटेन नहीं किया गया है। हालांकि जो बसेस हैं दिल्ली पुलिस की, वो ऑलरेडी अंदर जा चुकी है, बहुत देर पहले ही असल में चली गई थी, लेकिन अभी तक जो प्रक्रिया है डिटेंशन की वो शुरू नहीं हुई है। देखिए, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के मन में ये विचार है कि वो लंबे समय तक यहाँ पर बैठे और जाहिर है इससे सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। लगातार वो पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे वार्तालाप भी कर रहे हैं और लगातार जो उन्होंने दो बार कम से कम आकर मीडिया से बातचीत भी करी, उन्होंने फिर से वो जो अपने आरोप है उनको दोहराया कि कैसे इलेक्शन कमीशन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो फिलहाल तो राहुल गांधी डिटेन नहीं है, लगता है कि उनका कार्यक्रम लंबे समय तक यहाँ पर।
1: आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर आपके पास लौट कर आऊंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब यह तय कर चुकी है कि इस मुद्दे पर, SIR के मुद्दे पर, वो न केवल चुनाव आयोग को बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार को भी घेरती रहेगी। खबर पर रहेगी नजर, फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए,
9: गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
10: गड़बड़ है।
11: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
1: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायबिटीज जूस।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
4: मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
5: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
7: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
5: कौन सी बनानी है?

0: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
1: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।

0: in association with
1: Signature Finest Cardamom Seeds.
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.
4: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: अक्टूबर के महीने में बिहार में बाढ़ की ये तस्वीर छपरा की, जहां गंडक का पानी तबाही मचा रहा है। ड्रोन कैमरे में कैद ये तस्वीरें बाढ़ के कहर को दिखा रही है, जहां दूर दूर तक चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर टापू बन गए हैं, खेत खलिहान डूब चुके हैं और सड़कें पानी में गुम हो गई हैं। गंडक के पानी से कई बांध टूटने के बाद 200 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। अब गोपालगंज में बाढ़ के कहर की इस तस्वीर को देखिए। गोपालगंज के शीतलपुर बांध के टूटने के बाद बाढ़ का पानी घरों के साथ साथ स्कूलों में भी घुस गया। किताबें पानी में डूब गई, स्कूलों में पढ़ाई ठप हो गई है और इसी बीच एक छोटे से बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पानी में डूबी किताबें हाथ में लेकर ये बच्चा शिक्षा मंत्री से सवाल कर रहा है, बाढ़ में किताबें और स्कूल डूब गए, अब पढ़ाई कैसे होगी?
1: स्कूल डूब गया है, घर डूब गया है, इधर की साइड पूरा पानी भर गया है, तो लोग कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ पढ़ेंगे, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो इसीलिए मेरा आपसे ये विनती है कि स्कूल जो है डूबे है, जितना भी घर डूबा है, पानी घुसा है, तो इसका कुछ न कुछ उपाय करे, और ना ऐसे ही रहेगा तो कब तक चलेगा? अभी गंडक नदी का बहाव बहुत तेजी से है, जल स्तर बढ़ रहा है, नेपाल का डैम का पानी होल हो गया है, तो होल से और इतना पानी आ रहा है, तो 5 लाख लीटर पानी अभी यहाँ पे आया है, छोड़ा गया है डैम से। तो आप जो शिक्षा मंत्री हैं, तो यहाँ पे क्यों कोई सुविधा नहीं है? आप तो शायद यहाँ के MLA भी थे, शिक्षा मंत्री हैं आप, तो देख सकते हैं स्कूल डूब गया है, किताबें भीग गई है, घरों में पानी चला गया है।
0: बिहार में बाढ़ के बीच अब सियासत भी तेज हो गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष जहां सरकार से राहत कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने की मांग कर रहा है, वहीं सरकार की ओर से राहत और बचाव के लिए लगातार कदम उठाने का दावा किया जा रहा है। बिहार में बाढ़ सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। एक तरफ बाढ़ पीड़ित राहत के इंतजार में है, तो दूसरी तरफ अभिज्ञान जैसे बच्चे अपनी डूबी हुई किताबों के साथ अपने भविष्य को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: हम लोग चाहते हैं कि ये गठबंधन में रहें और अपनी हैसियत के हिसाब से टिकट मांगे कि कितने सीटें उनकी अपनी सांसद और विधायक हैं, उनकी संख्या को देखते हुए या कितने उनके कार्यकर्ता हैं उनको देखते हुए सीट मांगे, तो मैं समझता हूं कि उनके लिए भी अच्छा रहेगा और गठबंधन के लिए भी अच्छा।
3: सर वो तो ये कह रहे हैं कि हम 150 से कम पे तो मानेंगे ही नहीं।
2: मैं ये कहता हूँ उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। दो तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता है? अगर हमारे साथ गठबंधन न होता तो उनके जो 6 सांसद जीते हैं एको न जीते।
4: मेरा मानना है कि जब अलायंस से चुनाव लड़ना है तो एक दूसरे पर इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, तो वो अमेठी में क्या डरेंगे? अगर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं।

बावजूद अखिलेश यादव ने नहीं उतारा तीसरा उम्मीदवार। लिखा अब नजर 3 पर नहीं 403 पर। छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए मोदी सरकार की बड़ी सौगात, 10,000 करोड़ के निवेश का ऐलान, एसएमई ग्रोथ फंड बढ़ाने पर जोर।

0: एसआईआर और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के धरने को अब 4.5 घंटे हो चुके हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा, कांग्रेस के अन्य नेता इस समय आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं गद्दा डालकर आकाशवाणी भवन में ही जमीन पर बैठ गए हैं। लगभग 4.5 घंटों से राहुल गांधी का यह धरना जारी है। उनकी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त से भेंट है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए जब ये प्रश्न पूछा गया कि क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई अर्जी अभी दी है, अभी तक चुनाव आयोग के मुताबिक उनके पास कोई इस तरह की अर्जी नहीं आई है भेंट के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि देश के चुने हुए 300 सांसद अगर मिलना चाहते हैं तो उन्हें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। हालांकि हम आपको ये लाइव तस्वीरें समय दिखा रहे हैं, आकाशवाणी भवन संसद मार्ग के बिल्कुल सामने की ये तस्वीरें हैं और यहां आप देख भी सकते हैं पुलिस की मौजूदगी बढ़ गई है। क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इसमें यूथ कांग्रेस के नेता भी हैं, और क्या इनको अब बसों में भर के यहां से किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने प्रश्न भी पूछा था कि मुझे आप चुनाव आयुक्त के पास नहीं जाने दे रहे हैं, कहां बैठूं मैं धरने के लिए, इंडिया गेट पर जाके बैठूं, जंतर मंतर पे बैठूं?
1: पत्रकारों को, छात्रों को, युवाओं को जो पीस पर टेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हो, उनके ऊपर
0: पुलिस पर आरोप इस समय यह लग रहा है कि वो यूथ कांग्रेस हो या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, उन पर उनको शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं। और ये पुलिस की आप सीटियां सुन सकते हैं कि पुलिस सीटी, तेज सीटी बजाते हुए लोगों को अलग करने की कोशिश भी करती है। और ये देखिए इन तस्वीरों में अब आप देख सकते हैं कि पुलिस अब कार्यकर्ताओं को उठाकर बसों में भरने का प्रयास कर रही है, क्योंकि 5:30 बजे यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आमतौर पर बढ़ जाता है इन सड़कों पर। सरकारी दफ्तर संसद के आसपास जब छूटते हैं तो ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, अभी देखिए दो तस्वीरें, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 300 चुने हुए नेता मिलना चाहते हैं, ये जो 300 चुने नेता हैं वो भी तो इसी चुनाव प्रक्रिया से चुनकर यहां पर आए हैं, और फिर भी ये कह रहे हैं कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया इस देश में समाप्त हो चुकी है। ऐश्वर्या,
2: देखिए गौरव, जो बात आप कर रहे हैं वही अलग अलग नेता भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए के जो एलाइज हैं वो भी यही बोल चुके हैं कि जब जब आप चुनाव हारते हैं तब आप उंगली उठाते हैं और सीधे उंगली का जो निशाना होता है, जो उंगली जिस तरफ होती है, दूसरी तरफ खड़े हुए पाए जाते हैं चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। लेकिन जब जब आप जीतते हैं तब ना आप ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं, तब ना आप ये बात करते हैं कि एसआईआर उस स्टेट में हुआ तो आखिरकार हुआ क्यों। तो कहीं ना कहीं इस दोगलेपन की बात जो है हमें भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई है। और भारतीय जनता पार्टी का यह भी कहना है कि अगर आपको पूरी की पूरी प्रक्रिया से इतनी ही दिक्कत है तो फिर क्या आप उन स्टेट्स में भी दोबारा चुनाव कराने जाएंगे जहां पर या तो विपक्षी पार्टियां जीती हो या फिर कांग्रेस पार्टी जीती हो। लेकिन जो इस समय नजर आ रहा है, जो रण हमें इस समय नजर आता है और जो रणभूमि जो इस समय नजर आ रही है गौरव, वो है आकाशवाणी भवन, जिसके अंदर चटाई के ऊपर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस समय बैठे हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि मन बना के आए हैं कि जब तक सीईसी ज्ञानेश कुमार उन्हें चुनाव आयोग के अंदर बुला नहीं लेंगे, उनसे मुलाकात नहीं करेंगे, तब तक वो लोग यहां से नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा एक जो गेम भी हुआ है वो ये है कि बाकी जो बड़े बड़े नेता थे जो सुबह नजर आ रहे थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव हो, चाहे वो टीएमसी से अभिषेक बैनर्जी हो, वो सब यहां से जा चुके हैं और अब जो लड़ाई है वो मुख्य लड़ाई हो चुकी है कांग्रेस पार्टी बनाम सीईसी ज्ञानेश कुमार।
0: रहिए मेरे साथ और इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे कि बाकी नेताओं के लिए, विपक्षी बाकी पार्टियों के लिए ये कितना बड़ा मुद्दा है आने वाले चुनावों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो वार और पलटवार दोनों तरफ से हो रहे हैं, राहुल गांधी का वार कि प्रजातंत्र समाप्त हो चुका है, रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद, सुनिए।
3: ये दिल्ली का जो सबसे संवेदनशील इलाका बैठा हुआ है वहां राहुल गांधी बैठकर एनआरकी कर रहे हैं। आपने अपनी बात कही, मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी और उनके अध्यक्ष और बाकी ने कहा है कि बैलेट पेपर शुरू किया जाए, मतलब ईमानदार टेक्नोलॉजी चुनाव में जीत नहीं सकते, इसलिए बूथ कैप्चरिंग करके जीतना चाहते हैं।
0: जबरदस्त वार पलटवार दोनों ही तरफ से इस समय हो रहे हैं। राहुल गौतम मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, गद्दे बिछ चुके हैं, तो जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है वो तो वहां एक लंबे धरने के हिसाब से बैठना चाहते हैं। ऐश्वर्या ने एक बड़ा मुख्य मुद्दा उठाया कि बाकी विपक्ष के जो नेता थे वो जा रहे हैं। राहुल,
4: बिल्कुल, देखिए
0: आप मेरी बात सुन पा रहे हैं।
4: एक धरना तो अंदर चल रहा है आकाशवाणी भवन के, और एक ठीक गेट के सामने चल रहा है। आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए, ये तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं। जी मैं सुन पा रहा हूँ, आप मेरे को मेरी आवाज मिल रही है?
0: जी
4: देखिए, तमाम जो आप देखिए सांसदों को उठाकर लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पर कम से कम चार सांसद बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, जिसमें शफी परमबिल है, उमेदाराम बेनीवाल है, शशिकांत सेंथिल, आप देख सकते हैं। इनको यहां से हटाया जा रहा है। ये धरने पर इसलिए बैठे थे क्योंकि इनका कहना था कि इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है आकाशवाणी भवन के अंदर, जहां पर उनके नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद हैं। और आप देखिए, ये आप देख सकते हैं शशिकांत सेंथिल को, जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ, उनके साथ में शफी परमबिल है, और उनको पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए यहां पर धक्का मुक्की भी हो रही है, पूरी तरीके से केओस है आप कह सकते हैं। यहां पर जो गेट नंबर 3 पर इनको अब सांसदों को यहां से उठाया जा रहा है जबरदस्ती यहां से। उनको पहले रिक्वेस्ट किया गया कि आप यहां से हट जाइए, बाद में वॉर्न भी किया गया, लेकिन जब वो नहीं हटे तब पुलिस ने एज ए लास्ट रिसोर्ट इनको अब जबरदस्ती यहां से उठाकर इनको यहां से डिटेन किया जा रहा है, और उसके बाद दिल्ली के जो दूर दराज के जो थाने हैं वहां पर उनको ड्रॉप किया जाएगा। जब आप और मैं बात कर रहे हैं तब अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार मौजूद हैं। चटाइयां, मेट्रेसेस, गद्दे, ये तमाम चीजें आ गई हैं, और कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत है कि शायद आज की रात लंबी होगी कांग्रेस पार्टी के लिए। और तमाम जो नेता हैं वो फिलहाल उनका हटने का मूड नहीं है। राहुल गांधी ने दो बार बातचीत भी की मीडिया से, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार मुख्य चुनाव को बचा रही है, और ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन कमीशन से मिलने नहीं दे रहे हैं, उनको उनके पास तक जाने नहीं दे रहे हैं। और उनका जैसे कि चिर परिचित अंदाज में जैसे वो आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मिला हुआ है, तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस अब इस लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ पर ले जाने की कोशिश कर रही है, जहां पर उसका कुछ कंक्लूजन निकले। और जहां तक बात रही अन्य सांसदों की, बिल्कुल सच बात है, कई सांसद यहां पर पहुंचे थे सुबह सुबह। राहुल गांधी ने खुद बताया कि तकरीबन 300 सांसद यहां पर पहुंचे थे, और लेकिन अब अगर आप गिनने के लिए अगर आप गिनती करेंगे तो मात्र यहां पर शायद 25 से 30 सांसद ही आपको मिले, और उसमें भी ज्यादातर जो सांसद होंगे वो कांग्रेस पार्टी के अपने सांसद होंगे। यानी जो तमाम जो लोग सुबह यहां पर पहुंचे थे, मसलन एनसीपी यहां पर पहुंची थी, इसके अलावा शिवसेना, टीएमसी, समाजवादी पार्टी के लिए खुद अखिलेश यहां पर अपने पूरे दलबल के साथ पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल वो तमाम लोग नदारद हैं। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अंदर मौजूद हैं आकाशवाणी भवन के बाहर अंदर, और उनके जो सांसद हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, लेकिन वो लगातार उनको डिटेन किया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं जो बड़ी तस्वीर विपक्ष की जो हमने सुबह देखी थी
0: जी,
4: वो शाम होते होते या दिन ढलते ढलते अब वो धुंधली होती जा रही है।
0: और इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, रहिए मेरे साथ। ऐश्वर्या, क्या चुनाव आयोग अपने आप को लगातार उस पर जो वार हो रहे हैं बैकफुट पर पा रहा है, कई मुद्दे एक के बाद एक, चाहे वो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स SIR का मुद्दा हो, फॉर्म 6 और फॉर्म 6 का एनेक्शर डी का मुद्दा हो, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठा हो, क्या चुनाव आयोग अपने आप को स्पेसिफाई कर पा रहा है कि क्या एकमत से निर्णय लिए गए थे या एटलीस्ट मेजोरिटी निर्णय थे? चुनाव आयोग इस पर क्या जानकारी दे पा रहा है?
2: देखिए गौरव, एक चीज तो बहुत क्लियर है, जो सबसे पहली रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि जो ECs हैं उन दोनों ने कुछ खत लिखे थे, कुछ नोट्स लिखे थे, वहां तक तो चुनाव आयोग अपने आप को बहुत आसानी से बचा पाया था, क्योंकि वास्तविकता यही है कि किसी भी तरीके का कोई डिसेंट नहीं है, किसी भी फाइल के ऊपर कोई भी डिसेंट सामने नजर नहीं आता है। नोट जरूर लिखे गए थे लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव थे। लेकिन हाई सुप्रीम कोर्ट ने जो बात अब बोली है कि किसी भी तरीके का बदलाव उन्होंने नहीं कहा था कि फॉर्म 6 में हो, लेकिन जो बदलाव की बात की जा रही है में वो है वो एडिशनल पेपर। चुनाव आयोग के पास ये पावर होती है कि कुछ चीजों को वो अपने हिसाब से और स्थिति देखते हुए थोड़ा बहुत बदल सकता है, तो क्या वो थोड़ा बहुत बदलाव ही है, क्योंकि वो एक नया रण है जो इस समय छिड़ गया है और ये लड़ाई चुनाव आयोग बनाम सुप्रीम कोर्ट हो चुकी है और इसका जवाब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही देगा। कहीं ना कहीं अगर आप बैकफुट पे आने की बात करें तो ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग बैकफुट पे आ गया है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन सब चुनाव आयोग की तरफ से आ रहे हैं। एक चीज जो एकदम साफ है, तीनों का तीनों जो लोग हैं, चाहे वो सीसी हो, बोधी ईसीज हो, पूरा का पूरा चुनाव आयोग यूनानिमस है। कोई भी डिसीजन यूनानिमिटी के बिना नहीं लिया गया है, लेकिन कुछ चीजें थी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें जिनके बारे में अगर बात करें, जिनको लेके हो सकता है कि एक ओवरसाइट हो जिसकी वजह से वो नोट्स लिखे गए हों। लेकिन यही बात क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2024 से बोलती आ रही है, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो टीएमसी ने भी इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाया था, तो विपक्षी पार्टियों को लगता है कि जो उनको आशंका थी, जो उनको शक था, शायद उनका शक अब यकीन में बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए यूनाइटेडली आपको पूरी की पूरी ऑपोजिशन पार्टी अब नजर आ रही है।
0: सुबह तो सब एक साथ थे, शाम होते होते ये पता चल रहा है कि ज्यादातर विपक्ष के नेता यहां से जा चुके हैं, तो क्या सांकेतिक तौर पर सब एक साथ है या असल में सब एकमत है? बिहार में हम लोगों ने देखा क्या हुआ और क्या नतीजे निकले। इस समय भारतीय जनता पार्टी जो आरोप कांग्रेस लगा रही है उसके पलटवार में क्या कह रही है, संबित पात्रा को सुनिए।
5: राहुल गांधी जी की ये आदत है, राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट को कोट करके राफेल के केस में राहुल गांधी जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल में धांधली हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही राहुल गांधी को बोला कान पकड़ के उठक बैठक करो और एफिडेविट सब दो कि तुमने झूठ बोला था। राहुल गांधी
0: न्यायालय में तो दूध का दूध और पानी का पानी इस मुद्दे पर होगा। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: अब्दुल अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कहकर के।
1: अब्दुल के वोटों से बने आप सांसद, अब्दुल के नाम पे भड़कते हैं आप, अब्दुल के नाम पे गुस्सा आता है आपको।
2: सच्चाई को इनकार करते हैं और जो राइट है, जो जस्टिस होना चाहिए, उससे इनकार करते हैं तो ज्यादा तकलीफ होती होगी।
0: आप अब्दुल अब्दुल कहकर के आप खड़ाने की कोशिश करते हैं।
3: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद पूछ रहे हैं कौन है अब्दुल। ये पूछते हुए वो गुस्से से लाल हो जाते हैं, बुरी तरह आग बबूला हो जाते हैं। एक बार फिर सुनिए जब नदवी से अब्दुल को लेकर सवाल हुआ तो कैसे वो आपे से बाहर हो गए।
4: हर पार्टी जो है 27 के चुनाव में अब्दुल को याद करती, इस वक्त अब्दुल कहाँ है?
0: क्या मतलब? आप नाम मत लीजिए अब्दुल। अब्दुल क्या होता है? आप किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल कहकर के।
4: नहीं, हर पार्टी
0: आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। अब्दुल मीन्स क्या होता है?
4: हर पार्टी
0: किसे कहते हैं आप? अब्दुल का कई बार नहीं समझ पा रहा आपकी बात को। अब्दुल अब्दुल लगाया क्या होता है? अब्दुल
4: बताइए,
0: मुसलमान इस देश के सबसे मोहतर शहरी है, जिन्होंने देश की कुर्बानी हजारों साल सैकड़ों साल से देश में कुर्बानियां दी हैं। कांग्रेस पार्टी के आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, सब लोग हैं। आप अब्दुल अब्दुल कहकर के आप खड़ाने की कोशिश करते हैं।
3: तो बड़ा सवाल है कि कौन है अब्दुल, जिसकी यूपी की राजनीति में दिनों जबरदस्त चर्चा है, जिसका जिक्र होते ही रामपुर के सांसद नदवी नाराज हो जाते हैं और जिसको लेकर ओवैसी भी अक्सर कहते रहते हैं कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा। दरअसल यूपी की राजनीतिक चर्चा में अब्दुल और उसके दरी बिछाने का जिक्र रामपुर से ही आया। फसाहत अली शानू जो अब बीजेपी में है, उन्होंने पहली बार 2022 में अब्दुल का जिक्र किया था। अब अब्दुल कौन है ये आप फसाहत शानू से समझिए।
5: क्यों मौलाना साहब, क्यों लग रहा है आपको इतना बुरा? अब्दुल के नाम पर गाली है? अब्दुल आपकी घर की दीवारों की रंग पॉलिश करता है, वो है अब्दुल। आपकी मोटरों के पंजा जोड़ता है, वो है अब्दुल। जिसके नाम के आपकी आपने और आपकी पार्टी ने रोटियां सेकी है, वो है अब्दुल। बिरयानी में जैसे तेजपात के पत्ते को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इस्तेमाल किया आपकी पार्टी ने, वो है अब्दुल।
3: अब तक आप समझ गए होंगे अब्दुल यानी यूपी के मुसलमान, जिसके वोट को लेकर अब जबरदस्त खींचतान हो रही है। यूपी में मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार ओवैसी उसमें सेंध लगाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
6: और सपा वालों और तुम्हारे साथ जो इंडिया अलायंस के सियासी पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो या भारत का 1900 मुसलमान हो, ये मुसलमान तुम्हारी बपूती नहीं है, याद रखो। ये तुम्हारे बाप की बपूती नहीं है, हम इंसान हैं, वोटर नहीं है। तुम अगर हमको बपूती समझते हो तो तुमको पता चल जाएगा आने वाले विधानसभा में तुमने वोट हासिल किया, तुमने हमारे ख्वाबों को चुकना चूर करके अपने इख्तदार के महलों को तामीर किया।
7: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है, वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है। जो लोग सत्ता की आलोचना नहीं करते, जो लोग सत्ता पे सवाल नहीं पूछते, वो समाजवादी की आलोचना करते। इससे साफ जाहिर होता है कि वो लोग किसके सहयोगी हैं, वो किसकी मदद कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर गदर मची है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस 150 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस अब इससे आगे की बात कर रही है।
1: इसने किया 150 का, मैंने तो 200 की बात की थी। मैं शुरू से कह रहा हूँ, बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत, बराबर का हिस्सा।
0: लेकिन राजेंद्र पाल गौतम को समाजवादी पार्टी के नेता दो टूक जवाब देते हैं।
2: मैं ये कहता हूँ, उनको 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी, उनको देखना चाहिए। दो तुम्हारे विधायक हैं, पिछली बार तुमने लड़के देख लिए, क्या इससे तुम्हें सबक नहीं मिलता?
0: अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जीत ही सीट का आधार है।
3: जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
0: और जीत बोले तो आखिरी चुनाव यानी 2024 लोकसभा में मेरी जीत, और वो जीत कुछ ऐसी थी कि 80 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 6 कांग्रेस को मिली थी। इसे विधानसभा के अनुपात में बांटा जाए तो 37 लोकसभा के हिसाब से अखिलेश के हिस्से 347 सीटें बनती हैं और कांग्रेस के हिस्से 56। लेकिन कांग्रेस की हसरतें 56 से 200 तक पहुंच चुकी हैं और हौसला बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने उन्हीं इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और 403 सीटों पर लड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर कांग्रेस ने अपने पत्ते सामने रख दिए हैं। अब बारी समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लेने की है, और वो कांग्रेस की सीटों वाली शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है या बीजेपी को हराने के मिशन के साथ। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: यूपी के चुनावी मौसम में दलित वोटों के लिए हर दल के तरकश में अलग लगती है, और इसी में से एक तीर बीजेपी ने अब यूपी में आजमाया है, जो दलित सियासत में प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसा ही एक ऐलान यूपी में किया, जहां भदोही का नाम संत रविदास के नाम पर किया गया है।
1: कालीन उद्योग के लिए जाना जाने वाला भदोही जनपद आने वाले समय में मध्यकालीन संत जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था, ऐसे सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर भदोही जाना जाएगा।
0: भदोही नहीं, नामकरण की बात हो तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहाल किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर काम होगा। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार ने दलित विरोधी सोच के कारण जिन महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों, संस्थानों के नाम बदल डाले थे, उनका पुनर्नामकरण करके बीजेपी सम्मान दे रही है।
2: पूर्व में भी भदोही का नाम संत रविदास नगर था, किंतु अखिलेश यादव की दलित विरोधी सोच के नाते से उन्होंने संत रविदास नगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के नाम बदले थे। आज उसको सही किया गया है।
3: समाजवादी पार्टी समाज में न किसी वर्ग को अपनी जागीर न वोट बैंक समझती है। वो सभी वर्गों को अपना साथी, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा समझती है।
0: मतलब ये कि दलितों को रिझाने के लिए दाव चलाए जाने लगे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

सीसी से मिलने पर अड़े राहुल गांधी ने आकाशवाणी भवन में डाला डेरा, गद्दा डालकर लंबी लड़ाई की तैयारी, एसआईआर फॉर्म 6 और निलंबन की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल। कांग्रेस पर बीजेपी का चौतरफा वार, 5 घंटे में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साधा निशाना, राहुल गांधी को बताया अराजक, संबित पात्रा बोले बीजेपी के साथ ज्ञानेश नहीं गणेश है।

बंगाल की दो सीटों पर उपचुनाव में वोटिंग जारी। दोपहर 3 बजे तक नंदीग्राम में 71% और रेजीनगर में 69% से ज्यादा वोटिंग। तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी जोरदार मतदान।

0: छोटे मझोले कारोबारियों के लिए मोदी सरकार की बड़ी सौगात, 10,000 करोड़ के निवेश का ऐलान, एसएमई ग्रोथ फंड बढ़ाने पर जोर। वैज्ञानिक फ्रांसिस हाल्जन को दिया गया फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार, अंतरिक्ष से जाने वाले रहस्यमयी कणों को पकड़ने का खोजा तरीका, ब्रह्मांड को समझने में मिला फायदा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष की फाइनल जंग पर है। यह जंग दिल्ली में चल रही है। आम आदमी पार्टी को अगर माइनस कर दे तो विपक्षी गठबंधन के तकरीबन तमाम दल राहुल गांधी की अगुवाई में संसद से चलकर चुनाव आयोग दफ्तर जा रहे हैं। बीच में पुलिस की बैरिकेडिंग थी, हिरासत वाली बसें थी, थोड़ी जोर आजमाइश हुई, कुछ हिरासत में लिए गए, लेकिन इसमें टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से लेकर एनसीपी लेफ्ट उद्धव की पार्टी के तमाम नेता शामिल रहे। इसी बीच राहुल गांधी आकाशवाणी भवन में घुसकर बैठ गए। चुनाव आयोग का दफ्तर यहां से महज 200 मीटर दूरी पर। राहुल गांधी कहते हैं कि 300 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं।
2: यहां पे कुछ समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज आए थे और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे। यहां पे पुलिस ने हमें रोका। हम देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम देश की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। पता नहीं क्यों 300 एमपीज को यहां पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहां बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को ठीक से चलाने का है। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं, तो पता नहीं देश में क्या हो रहा है। अगर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन कमीशन नहीं मिलेगा
0: तो 300 विपक्षी सांसद मुख्य चुनाव आयोग से क्यों मिलना चाहते हैं, और अगर मिलना चाहते हैं तो विरोध मार्च की शक्ल में ही क्यों? इसका जवाब इस मार्च में शामिल इंडिया गठबंधन के बाकी नेता भी बताने लगे। उनका यह कहना है कि चुनाव आयोग पर उनसे भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। यह पूरा विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांगने निकला है। और इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि पहले तो इन्हें लगा कि ईवीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसीलिए लगातार 12 साल से चुनाव हार रहे। फिर पिछले साल 15 अक्टूबर को राहुल ने एटम बॉम्ब फोड़कर बताया कि चुनाव आयोग ने हरियाणा में 17 लाख वोटर्स के नाम ही काट दिए।

0: हुआ तो बिहार में 11 दस्तावेज मांगने का विरोध होने लगा। वो निपटा तो बंगाल का मामला सामने आया, वहां पता चला कि 60 लाख वोटर के नाम ही काट दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल बैठाया, वहां नाम जोड़े जा रहे थे। चुनाव आयोग ने 16,10,000 जोड़े गए नामों को फिर से काटने के लिए क्रॉस अपील कर दी। बवाल जब बढ़ गया तब तक अखबार ने खुलासा कर दिया कि ज्ञानेश कुमार एक तरफा फैसला ले रहे, हम करें सो कायदा। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब चुनाव आयोग पर नए सिरे से सियासी हमले शुरू हो गए। बैकलॉग के जितने पुराने मुद्दे थे जो सुप्रीम कोर्ट में निपट गए ये कहा जा रहा था, वो फिर से जिंदा हो गए। आरोप लगाने लगा है कि चुनाव आयोग पक्षपाती है, लंबी फहरिस्त है, चुनाव आयोग पक्षपाती है, वो बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए मदद कर रहा है, चुनाव आयोग विपक्ष की नहीं सुन रहा है, चुनाव आयोग की मदद से पार्टियां तोड़ी जा रही है, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहा है, चुनाव आयोग मतदान में धांधली कर रहा है, चुनाव आयोग नतीजों में धांधली कर रहा है, चुनाव आयोग वाजिब वोटर के नाम काट रहा है, चुनाव आयोग असंवैधानिक और अवैध फैसले ले रहा है। यह आरोप तो खुद चुनाव आयोग के भीतर से भी लगाया गया है। इसीलिए चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें पद से हटा देना चाहिए या उन पर महाभियोग चलाना चाहिए, मुकदमा चलाना चाहिए, उन्हें जेल भी भेज देना चाहिए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं।
1: We are not only countering them, we are going to destroy them. Maybe you are not watching what is going on. See, जो मैंने पहले भी बोला है, बीजेपी जो बोले उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कुछ घंटे पहले 300 लोकसभा और राज्यसभा के MPs आए थे, वो भी देश में लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। इस बात को पूरा देश मानता है, इस बात को देश के युवा मानते हैं और समझते हैं। इनमें से सारे के सारे सानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आप देखना। इनमें से एक व्यक्ति बच के नहीं जाएगा, चाहे वो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो ज्ञानेश कुमार हो, चाहे वो मोहन भगवत हो। व्हाट हैज बीन डन टू माय कंट्री, टू आवर कंट्री, इज कॉल्ड ट्रीजन।
0: तो विपक्ष के हौसले बुलंद है, लेकिन बीजेपी इस भ्रम का दुष्प्रचार बता रही है। सुबह से दो दो घंटों के अंतराल में बीजेपी को दो दो प्रवक्ता सफाई देने के लिए आ चुके हैं। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा झूठ और भ्रम की बुनियाद पर खोला जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता तो कांग्रेस नेताओं को पुराने बयान भी याद दिलवा रहे हैं। बीजेपी सवाल उठा रही है कि वोटर डुप्लीकेशन पर सवाल उठाने वाले नेता अब 13 करोड़ नाम काटने पर उसे दोबारा जोड़ने की मांग क्यों कर रहे हैं। बीजेपी हिसाब गिना रही है कि 13 करोड़ नाम जो काटे गए हैं उनमें 3 करोड़ का कुछ भी पता नहीं चला। 2,80,00,000 उनकी मृत्यु हो चुकी है, 6,30,00,000 दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, 1 करोड़ नाम वो नाम है कि जो 2 जगह पर पाए गए थे और जिनको हटाया गया है।
2: जिस प्रकार याचिका में था कि फॉर्म 6 इलीगल है, फॉर्म 6 को हटा दिया जाए, और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट CJI द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। अब है राहुल गांधी जी का झूठ नंबर 1। झूठ नंबर 1 है फॉर्म 6 को लेकर कि फॉर्म 6 इलीगल है, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार की सुनवाई हुई और 26 सितंबर 2026 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अपना प्रेस स्टेटमेंट नंबर 120 जारी किया, उसमें इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन हुआ था उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट का समर्थन प्राप्त था, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट मॉडिफिकेशन। और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में उस पोर्शन को रेड में मार्क किया है, पॉइंट

0: 3 को कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा, जो कि झूठ है।
1: हालांकि इस बात का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मांगा है कि जो डिक्लेरेशन फॉर्म में जो चेंजेस किए गए वो आखिरकार किसके कहने पर किए गए, उस बात का भी जवाब मांगा गया है। बहरहाल मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई, किसान, रोजगार, विकास, सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दे उठाकर नाकाम हो चुके विपक्ष ने अब सीधे लोकतंत्र के सियासी मुकाबले में रेफरी पर अटैक शुरू कर दिया। चुनाव आयोग का काम एक रेफरी का होता है और उस अटैक के लिए इस बार विपक्ष के पास कुछ सबूत भी है। उदाहरण के तौर पर विपक्ष आरोप लगाता है कि वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर है। चुनाव आयोग ने खुद SIR में 13 करोड़ फर्जी वोटर हटाने का दावा किया है। पूरी लिस्ट हमने आपके सामने रखी थी, यानी ये आरोप सही थे। फिर विपक्ष का आरोप है कि SIR में वाजिब वोटर के नाम ही काट दिए गए हैं और बंगाल में यह साबित हो चुका है क्योंकि ट्रिब्यूनल में जो सुनवाई चल रही है उसके बाद, जो ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट ने बनवाए थे, उसके बाद औसतन 93% वोटर सही पाए गए, यानी 100 में से 93 वोटर्स सही पाए गए। अगला ताजा आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने नए वोटर जोड़ने के लिए बनाए जो संवैधानिक मूल्य वाला फॉर्म नंबर 6 के हलफनामे में अवैध तकनीकी बदलाव कर दिया। अखबार के खुलासे में दो चुनाव आयुक्तों ने कथित तौर पर इसका लिखित विरोध भी किया था। फिर एक आरोप यह भी है कि जिस वोटर डेटा को नियंत्रित करने के लिए इलाके के ERO का अधिकार होता है उसे केंद्रीकृत किया गया है और इसके सबूत गोवा में पाए गए क्योंकि 97 वोटर्स को दोबारा वोटर लिस्ट में अब शामिल किया जा रहा है। वो शामिल करने के लिए ERO नाकाम हो रहे थे क्योंकि ECI नेट में उसका विकल्प नहीं था। एक संगीन आरोप यह भी है कि बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से ट्रिब्यूनल के सामने 16,10,133 अवैध क्रॉस अपील की गई है और इसके सबूत खुद ट्रिब्यूनल अपीलेट नंबर 11 के अध्यक्ष पूर्व जज जस्टिस इंद्रजीत चटर्जी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि 40%, यानी 2.54 लाख अपीलें चुनाव आयोग की ओर से सेंट्रलाइज बैच अपील के तौर पर हुई थी, यानी एक क्लिक पर 2.5 लाख से ऊपर अपील खुद इलेक्शन कमीशन ने किया है। इसका मतलब आप समझिए, यानी चुनाव आयोग ने जिनके नाम पहले काटे थे, जो ट्रिब्यूनल की सुनवाई के बाद योग्य पाए गए, उनके नाम काटने के लिए चुनाव आयोग ने फिर से सेंट्रलाइज बैच सॉफ्टवेयर सिस्टम के जरिए एक साथ लाखों क्रॉस अपील फाइल कर दी। तो अब विपक्ष के पास जो आधार है उसे लेकर अदालत में मामला चल चुका है, पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। अब यह तय करेगा कि चुनाव आयोग सही काम कर रहा है या उसके काम में कुछ खामियां हैं। लेकिन तब तक सियासत क्या, क्यों और कैसे हो रही है, इसी पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में सबसे पहले तो SY कुरेशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। SY कुरेशी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनसे कुछ सवाल हम पूछेंगे। लेकिन चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ प्रदीप भंडारी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, चरण सिंह सप्रा कांग्रेस के तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं और मोहम्मद अमीन पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा और उसके बाद कुरेशी जी से कुछ सवाल पूछने, क्योंकि इस पूरे मामले पर SY कुरेशी मुखर है और अपनी भूमिका इस पर रख रहे हैं। पहला सवाल, क्या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की विपक्ष की मांग के पीछे कुछ ठोस सबूत है, खास करके अखबार में इस मामले में खुलासे होने के बाद विपक्ष इस मांग पर अब पूरी तरीके से अड़ा हुआ है। दूसरा सवाल, क्या ECI के खिलाफ सड़क पर आंदोलन कर राहुल अराजकता फैला रहे, जो बीजेपी आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। और तीसरा सवाल, क्या विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी दस्तक देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन पर सुनवाई शुरू कर दी और उस मामले में चुनाव आयोग के सभी चुनाव आयुक्तों को नोटिस भी थमा दिया गया है। लेकिन कुरेशी जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा, जिस तरीके से विपक्ष अब सड़क पर उतर आ गया है चुनाव आयोग का इस्तीफा मांगने के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांगने के लिए, आज तक देश में इस तरीके के मार्चेस, मोर्चे या विरोध प्रदर्शन नहीं देखा था। TN सेशन के खिलाफ भी कई राजनीतिक दल सवाल उठा रहे थे, आप खुद चुनाव आयोग में थे, आपने भी कहा था कि चुनाव आयोग के भीतर कई बार यह सिचुएशन पैदा हुई कि आपको कास्टिंग वोट करना पड़ा था जब दो चुनाव आयुक्त एक दूसरे से सहमति नहीं रखते थे। इस बार क्या आपको अलग लग रहा है कि पूरे विपक्षी दल एक साथ इकट्ठा होकर मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा इस तरीके से मांग रहे हैं, किस तरीके से आप इसे देखते हैं?
2: देखिए, पिछले 1.5 साल से जो कुछ हम देख रहे हैं SIR के कॉन्टेक्स्ट में, उसको सुप्रीम कोर्ट में भी गया, मुस्तकिल मीडिया में भी ये फोकस में रहा, ये तो क्लियर है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। समथिंग इज जस्ट नॉट राइट कि अब 13 करोड़ नाम डिलीट कर दिए जाएं और हम सब उस पर मुस्कुराते रहे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये सब दिस इज ऑल रबिश। 13 करोड़ नाम का निकालने के लिए एक्सप्लेनेशन तो चाहिए, कैसे निकाल दिया गया। अब देखिए 103 करोड़ लोग हैं जो 18 वर्ष के हैं, वो सारे के सारे एलिजिबल होने चाहिए, एक्सेप्ट 100 200 500 1000 10 हजार जो घुस बैठे आ गए उनको आप निकालिए। वो निकालने का काम पहले भी होता था, आप भी निकालिए। मैं तो 1.5 साल से कह रहा हूं कि ये प्योरिफिकेशन ऑफ रोल तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और वो 70 साल से वो यही तो करते रही है। ये कोई नए साहब पहली बार थोड़ी आए हैं जिनको ये ब्रेन वेव आई कि हम इसको सीधा करेंगे। और अगर अब इन्होंने इतने 100 करोड़ लोगों को दौड़ाने के बाद प्योरीफाई इलेक्ट्रल रोल कर दिया, तो मैं इनसे 1.5 साल से ये मांग रहा हूँ कि मुझे एक एफिडेविट दिखा दो कि जी मैं एफिडेविट देता हूँ कि अब मैंने रोल प्योरीफाई कर दिए, अब एक भी गलती निकलेगी कोई, यानी एलिजिबल नाम बाहर निकल गया, इनएलिजिबल अंदर आ गया, तो मैं जिम्मेदार, क्रिमिनली जिम्मेदार, ये एफिडेविट दे दो, बात खत्म।
1: बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि वो एक स्पेशल ड्राइव चलाएंगे पूरे देश भर में, यानी एसआईआर के भीतर अगर किसी के नाम गलत तरीके से काट दिए गए हैं तो उनको जोड़ने के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। यह स्पेशल ड्राइव किस तरीके से होगा? कटे हुए नाम क्या दोबारा इस तरीके से जोड़े जा सकते हैं क्या? क्योंकि क्योंकि गोवा में जो 97 नाम काटे गए थे उन नामों को जोड़ने का जब हाईकोर्ट में मामला शुरू हो गया उसके बाद चुनाव आयोग ने कह दिया कि हम तो उनको वापस लेना शुरू कर दिया है, 83 नाम तो हम वापस ले चुके हैं, बीएलओ घर घर जाकर उनको वापस ऐड कर रहे हैं, ये स्पेशल ड्राइव कैसे चलेगा कुरेशी जी?
2: नहीं, वो वापस ले रहे हैं, बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं, और ये 97 नाम गोवा के से उसको हम ट्रिवियलाइज करते हैं। हम यहाँ 13 करोड़ की एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं, लेकिन 97 लाख से एक बड़ा मेजर पॉइंट प्रूव होता है कि भाई वहां का देखो ओनली पावर एक ही आदमी के पास अथॉरिटी है लॉ में इलेक्टोरल रोल को टिंकर करने की, नाम घटाना बढ़ाना चेंज करना, वो है ईआरओ। वहां का ईआरओ बार बार कह रहा है कि साहब ये 97 नाम वापस डालो, और यहाँ का दिल्ली में बैठा हुआ एक कंप्यूटर उसको देख मन से इनकार कर रहा है। ये है फिनोमिनल इशू कि दिल्ली में ये कंप्यूटर कहाँ से आया, सॉफ्टवेयर कहाँ से आया, कौन इसको ऑपरेट कर रहा था, जो जो लीगल अथॉरिटी है उसको उसने बाईपास करके बाहर फेंक दिया, इसका जवाब देना चाहिए। अब लेकिन जो दूसरी बात आपने कही कि अब जो ये अभियान चलाया जा रहा है कि एसआईआर से पहले जो नाम थे उनको देखा जाए, और उनमें उनके एसआईआर के दौरान जो डिलीट किए गए उनको रिस्टोर किया जाए, यानी ये तो सारा एसआईआर की एक्सरसाइज को इन्होंने मान लिया कि गलत हुई थी, ये सारी डिलीशन गलत थी, हम इनको वापस ला रहे हैं, और वापस लाने के लिए देखने में बड़ा सिंप्लीफाई जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इनोसेंट, बड़ा इनोसेंट, लेकिन उसके लिए जो तरीका ला रहे हैं वो फॉर्म 6 के जरिए वापस कर रहे हैं, वो इलीगल है, जो मैंने अपने ट्वीट के जरिए पॉइंट आउट किया था। वो क्यों इलीगल है
1: आप कह रहे हैं कि 6X होना चाहिए, कुछ नया फॉर्म होना चाहिए,
2: वो
1: ये
2: वही मैं
1: कैसे
2: बता
1: होगा?
2: रहा
1: नया
2: हूँ
1: फॉर्म कौन लाएगा, किस तरीके से होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा?
2: जी, वो मैं यही बता रहा हूँ कि देखिए ये सारा डिजास्टर बच जाता अगर सीवीसी साहब ने अपने दोनों कोलीग्स की बातें सुनी होती, लेकिन उनका दिमाग इतना गर्म हो गया था, इतने एरोगेंट हो गए थे कि उन्होंने अपने कोलीग्स की बात सुननी बंद कर दी, और 4 महीने तक मीटिंग तक नहीं की। क्या कह रहे थे जोशी जी और संधू साहब के, साहब आप फॉर्म 6 में जो एडिशन किया है जिसमें आपके बाप दादा परदादा ये नाम वो नाम ये सब बकवास इन्फॉर्मेशन जो मांगिए आप नहीं कर सकते, कि फॉर्म 6 तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और उस लीगल डॉक्यूमेंट को आप लीगल तरीके से ही परिवर्तन उसमें कर सकते हैं, और वो परिवर्तन 2 घंटे में हो जाता, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री तो इनकी बड़ी दोस्त है, 2 घंटे में हो जाता, लेकिन उनको इसकी भी परवाह नहीं थी क्योंकि एरोगेंस में अंधे हो गए थे, तो उन्होंने जो नहीं करा उसी चक्कर में ये फंस गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कल चीफ जस्टिस ने कह दिया कि भाई हमने तो वो परिवर्तन उसमें कोई अप्रूव ही नहीं किया था, और मैं भी 5-7-10 दिन से ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किसी ने नहीं किया होगा कि साहब इन्होंने फॉर्म 6 में कुछ फालतू एडिशन कर लिए जो लीगल नहीं है, तो रूटीन में डाल दिया और वो रूटीन में इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट निकल गया, तो सुप्रीम कोर्ट का वो मोहर बताते गए उसको, सुप्रीम कोर्ट ने कल क्लियर कर दिया था, हमने तो उसको क्लियर किया ही नहीं है। तो अब जो फॉर्म 6 इलीगल इसलिए है कि फॉर्म 6 सिर्फ नए वोटर के लिए है। अगर आप फॉर्म 6 डाउनलोड करें, LG में रिकमेंड करूंगा आप देखें और ऑडियंस को भी दिखाएं, शुरू उसमें टॉप पे लिखा हुआ है फॉर न्यू वोटर्स ओनली, और उसकी पहली लाइन यह है कि मैं कहीं भी वोटर नहीं रहा हूं, चाहे विधानसभा में इससे पहले कभी मैं वोटर नहीं रहा हूं, और ये उन लोगों से लिखवाया जा रहा है जो
1: यानी
2: दस
1: आप
2: दस
1: कह रहे
2: दिन
1: हैं कि ये
2: का
1: गलत हो जाएगा, गलत डिक्लेरेशन हो
2: बिल्कुल
1: जाएगा अगर कोई कटा, जिसका नाम कटा है वो फॉर्म नंबर 6 भरेगा तो वो गलत डिक्लेरेशन हो जाएगा,
2: गलत
1: गैर कानूनी हो जाएगा
2: नहीं,
1: वो।
2: गैर कानूनी नहीं, क्रिमिनल ऑफेंस, क्योंकि इसकी बॉटम लाइन पड़ी है। बॉटम लाइन ये लिखी है कि अगर मैं ऊपर कुछ झूठ लिखूंगा, यानी मैं न्यू वोटर हूं, मैं पहले कभी वोट नहीं दिया, तो उसके लिए 1 साल की सजा है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और ये भी चीज मैंने उसमें वजाहत कर दी कि लॉ इलेक्शन कमीशन भी चौकन्ना हो जाए कि क्रिमिनल लॉ में बड़ा क्लियर है कि जो जुर्म करने वाला है उसको जो सजा होती है, उसको जो एबेट करने वाला है, जो उसको प्रोवोक करने वाला होता है, उसकी भी उतनी ही सजा होती है। तो वो सारे ये जिन जिन्होंने
1: तो अब क्या हो सकता
2: जबरदस्ती,
1: है, अब क्या हो सकता
2: नहीं
1: है,
2: नहीं उसका सोल्यूशन मैंने
1: अब
2: बताया
1: क्या
2: कि
1: हो
2: देखिए
1: सकता है, क्या होना चाहिए?
2: बताता हूँ कि एक तो इन्होंने ये जो फैसला किया मजबूरी में किया, लेकिन बहुत अच्छा फैसला किया कर लिया कि 2025 वाले रोल पे ये वापस जाने की बात जो कर रहे हैं, बहुत ठीक किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन उसको जो कैमोफ्लाज करेंगे फॉर्म 6 के जरिए, वो नहीं, वो बड़ा आसान है, फॉर्म 6 को अमेंड करा दीजिए लीगली, और मैं गारंटी करता हूँ कि 2 घंटे में वो लीगल अमेंडमेंट हो जाती है। एक फॉर्म 6A हो सकता है, बी हो सकता है, लेकिन मैंने देखा है ए और बी नाम के ऑलरेडी हैं। एक था जो NRI वोटर के लिए 6A ऐड हो गया था, आधार की वजह से 6B हो गया था, तो आप 6C शुरू कर दीजिए। और मैंने उस सबको छोड़ के मैंने कहा 6X फॉर्म नाम क्रिएट करा लीजिए, 2 घंटे में हो जाता है लॉ मिनिस्ट्री से। और उसका सबूत क्या कि 2 घंटे में लॉ मिनिस्ट्री हो जाता है, आपको याद होगा 1.5 साल पहले वो जो था ना टीवी फुटेज, जब पंजाब हाईकोर्ट ने कहा कि टीवी फुटेज दे दो, तो इन्होंने लॉ चेंज करा दिया, रूल चेंज करा दिए 2 घंटे के अंदर अंदर। तो वो यहाँ पे भी जाके 6X फॉर्म चेंज करा दें, उस 6X से धीरे लें, लेनी के कार्रवाई जो कर रहे हैं बहुत अच्छी है, लेकिन रूट तो ठीक लो, लीगल रहो, इलीगल रूट क्यों ले रहे हो, सबको क्रिमिनल बना रहे
1: ठीक
2: हो,
1: है
2: जेल में डलवाओगे।
1: कुरेशी जी, आपने फॉर्म नंबर 6 का अब मामला छेड़ा ही है, तो मैं जरा इस बात को क्लैरिफिकेशन चाहता हूं, क्योंकि चुनाव आयोग के तरफ से जो प्रेस रिलीज निकाला गया उसमें एक बात साफ तौर पर कही गई थी कि बिहार में SIR का आदेश निकालते समय उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि उसके साथ एक डिक्लेरेशन देना होगा। और उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो मई महीने में 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 के साथ में जो घोषणा पत्र यानी एनेक्स्टर डी लग रहा था उसको मंजूर कर दिया था। लेकिन मामला यहां पर आता है कि जो फॉर्म नंबर 6 के साथ,
3: और आप लोग लिख के रख लीजिए सर, आप सभी सांसद इलेक्शन कमिश्नर्स से मिलेंगे, इनको मिलना ही पड़ेगा।
4: सर आपकी क्या बात हुई, सर आपकी डीसीपी से क्या बात हुई है?
5: हम यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हैं। हम बहुत कंफर्टेबल हैं यहाँ पे। देश की जो आवाज है, जो सांसद हैं, देश की आवाज का अपमान किया गया है, सांसदों का डिसरिस्पेक्ट किया गया है। हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाना चाहते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं और उन्हें कहना चाहते हैं कि आपने वोट चोरी की है।
6: सर आपका फॉरवर्ड प्लान क्या है, क्या करने वाले हैं?
4: सर अभी आप कब तक बैठेंगे यहाँ पे, कब तक बैठेंगे आप?
7: कब तक बैठने वाले हैं
4: यहाँ पे, यहाँ पे कब तक रहने वाले हैं?
5: देखिए हमें यहाँ बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी बातचीत चल रही है, हम बड़े कंफर्टेबल हैं, हमने यहाँ पे गद्दे भी लगा दिए हैं, ठीक है, टॉयलेट भी है, चाय भी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना हमें बैठना है हम बैठ लेंगे।
6: बाहर आपके कार्यकर्ताओं को ये बोलकर डिटेन किया गया, इसलिए हटाया गया कहकर कि आप लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं, धारा 163 लागू है, आप आम जनता को परेशान कर रहे हैं, ये DCP सचिन शर्मा के अधिकारियों ने
5: कहा है कि अगर आप अगर आप चाहते हो तो हमें हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उठा के हमें हटा दो, निकाल दो। और मैंने ये भी बोला है कि देखिए अगर आप अनकंफर्टेबल हो, अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ ना बैठे, आपने हमें वहाँ से यहाँ कर दिया
7: जी।
5: अब अगर आप यहाँ भी अनकंफर्टेबल हो तो हमें बता दो, कोई भी जगह दे दो हमें
7: जी।
5: दिल्ली में जहाँ हम बैठ जाए,
6: सर, वन
5: हम बैठ जाएंगे मैम, एक सेकंड, हम बैठ जाएंगे, कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेस्ट करना अलाउड है। थैंक यू,
7: बिल्कुल,
5: थैंक यू सर, थैंक यू।
1: वो किसी भी हालत में धरना प्रदर्शन नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राहुल गांधी के धरने को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारी कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे हैं ताकि ये धरना प्रदर्शन खत्म किया जाए। हमारे साथ मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ गई है। मौसमी, राहुल गांधी का अभी प्रतिक्रिया हमने सुनी यहां पर, वो कह रहे हैं कि हम तो धरना प्रदर्शन करेंगे, यहां नहीं बैठाना है, कहीं और जगह दे दीजिएगा, लेकिन हम नहीं हिलने वाले। गृह विभाग के अधिकारी उनसे कुछ बात कर रहे हैं, ये खबर है
8: जी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के मुताबिक यहाँ पे प्रियंका गांधी मध्यस्थता कर रही हैं और हम लोग को जानकारी मिली है कि यहाँ पे पहले दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी आए थे और उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से बातचीत जो है प्रियंका गांधी से चल रही है इस बात को लेकर कि क्या आपकी क्या मांगे हैं और कब आप लोग यहाँ से धरने से उठेंगे, जिस पर बोला गया है कि वो चाहते हैं कि सीईसी और दोनों इलेक्शन कमिश्नर से राहुल गांधी और जो इंडिया ब्लॉक का प्रतिनिधि मंडल है वो मुलाकात करें, तभी यहाँ से हटा जाएगा। और इसको लेकर बातचीत जो है एक तरह से कह लीजिए मीडिएशन या मध्यस्थता जारी है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि प्रियंका गांधी एक तरीके से ये मीडिएशन कर रही है, पहले दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की है और बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि गृह मंत्रालय से संपर्क में है और अपनी मांगे सामने रखी गई है।
1: मौसमी, दो चीजें, एक तो ये कि ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी सांसदों को कल भी दिल्ली में रहने को कहा, यानी कल भी कुछ प्लान है। और दूसरी बात, चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि 300 सांसदों की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से कोई भी एप्लीकेशन या कोई खत उनके पास नहीं आया कि वो मिलना चाहते हैं। इन दोनों चीजों पर क्या रुख है कांग्रेस पार्टी का?
8: देखिए ये तो सही बात है कि एक प्रोटोकॉल होता है चुनाव आयोग से मिलने का, मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का, और ये जो कहा गया है कि कोई प्रोटोकॉल नहीं निभाया गया है, तो शायद राहुल गांधी और कांग्रेस को लगा होगा कि अगर प्रोटोकॉल निभाते भी तो कभी मंजूरी मिलती नहीं, तो जिस तरह की धरना पॉलिटिक्स है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, उनको लगता है इसी से रास्ता निकलेगा। तो ये बात तो सही है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे तमाम कांग्रेस सांसदों को, और जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं कि देखिए क्या हाव भाव और मूड मिजाज साहिल यहाँ पे नजर आ रहा है राहुल गांधी का, और जो उनके साथ नेता बैठे हुए हैं, जो अंदर घुस गया वही अंदर है, जो बाहर नहीं आ पाया वो नहीं आ पाया, और जो बाहर रहा वो अंदर नहीं आ पाया। तो तमाम बाकी सांसदों को भी बोला गया है कि वो दिल्ली में रहें। हो सकता है कि राहुल गांधी ने वैसे ही टेम्पलेट सेट कर दी है कि आगे हम रात तक बैठेंगे, हमें कहीं और आप बैठा दीजिए तो वहां बैठेंगे। तो तमाम सांसदों को दिल्ली,
1: यानी राहुल गांधी की तरफ से पूरी तैयारी है कि किसी भी हालत में वो धरना प्रदर्शन नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी, आप वहां पर नजर बनाए रखें, क्योंकि अभी फिलहाल सरकार के तरफ से बातचीत चल रही है जो आप मौसमी हमें इस वक्त खबर दे रही है, और उसके साथ साथ कांग्रेस के सांसदों को कल भी दिल्ली में ही बने रहने के लिए कहा गया है। एसवाई कुरेशी हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। जल्दी से दो सवाल कुरेशी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपको, बिफोर टू लेट यू गो। पहला सवाल तो यही रहेगा कि कई वोटर्स के जो नाम काटे गए उसमें कई वोटर्स ये दिख रहे हैं, करीब 6.5 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं कि जिनके पते अलग हैं या वो वहां से शिफ्ट हो गए, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। करीब 2.8 करोड़ वोटर ऐसे हैं कि जो मृत पाए गए हैं, और 3 करोड़ वोटर जो है उनका कोई अता पता नहीं है, जो पूरी लिस्ट उनके यहां से आई हुई है। और विपक्षी आरोप यह लगा रहा था कि देखिए हरियाणा में खास करके आरोप लगे कि भाई देखिए आपकी वोटर लिस्ट जो है वो ठीक करिएगा, उसमें कई वोटर्स डबल वोटर्स हैं, कई वोटर ऐसे हैं कि जो एक कोई मेक्सिको की लड़की है उनका भी उसमें नाम है। तो ऐसे सूरत में SIR की प्रक्रिया ही तो चुनाव आयोग के पास एक ऑप्शन था ना, कि जो कह रहे थे कि 20 साल तक नहीं हुआ है तो हम एक बार करना चाहते हैं, उसमें क्या ये सही रहेगा ये कहना?
2: नहीं, ये इसी को मैंने चैलेंज किया था कि SIR की प्रक्रिया जो की कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी होगी, जरूर होगी। सर्टिफिकेट दे दें कि अब उन्होंने रोल ठीक कर लिया, अब कोई गलती नहीं रह गई। अरे जिन गलतियों को सुधारने निकले थे उससे 10 गुना गलतियां ज्यादा हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी कौन? और 75 साल से इलेक्शन कमीशन हम लोग क्या करते थे? वही तो करते थे, समरी रिविजन जाके आपके पास BLO आके रोज पूछता था कि साहिल जी आपके घर में ये 4 वोटर हैं, ये नाम है, ठीक है ना? आप कहते थे हाँ, वो अगले दरवाजे पे चले जाता था। एक उसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर देते कि साहिल जी आपके ये 4 वोटर तो हैं, लेकिन आपके पड़ोस में कोई घुस बैठ गया तो नहीं? कोई नया फेस तो नजर नहीं आ रहा? आपके पड़ोसी सबसे पहले शिकायत करता है, हाँ जी मैंने देखा है 6 महीने से एक नया आदमी, तो वो फ्लैग हो जाएगा, वहां जाके इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। ये करना था। और सारे घुसपैठियों के नाम से इन्होंने बिहार में शुरू की थी, 8 करोड़ लोगों को दौड़ाया, कितने पकड़े आज तक क्यों नहीं बताए? फॉरेनर अखबार में हमने आपके मीडिया के जरिए पता लगा कि 500 फॉरेनर पाए गए, जिसमें से 150 बांग्लादेशी, 350 हिंदू नेपाल की औरतें जो शादी करके आई थी। तो ये सारा बहाना। लेकिन इससे पहले के जो इंटरप्शन हुई थी, आपने एक बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, वो कहा था, वो कहा था, सर अरे सब वो हिस्ट्री हो गई। परसों चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा कि हमने ये परिवर्तन 6 फॉर्म 6 में नहीं अप्रूव किया है, बाकी सारे वो तो उन्होंने कर दिया था। अब तो आप इसका मतलब चीफ जस्टिस को झुटला रहे हैं कि अब आप झूठ बोल रहे हैं, तो इसलिए वी शुड गो बाय द लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस।
7: ठीक है, उम्मीद यही है कि चुनाव आयोग जब जवाब देगा सुप्रीम कोर्ट पे, तब ये सारी चीजों का जिक्र उसमें होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुरेशी जी, आपने हमसे बात की इसके लिए। SY कुरेशी यहां पर, प्रदीप भंडारी और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का वहां पर प्रदर्शन भी चल रहा है, वो हटने को तैयार नहीं है। मामला चुनाव आयोग के खिलाफ है, चुनाव आयोग पर सवाल करते हुए आपकी भी 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आज ही के दिन में।
9: साहिल जी, मैं 26 मिनट से SY कुरेशी जी को सुन रहा था, तो थोड़ा सा एक फैक्चुअली उनको आपके, क्योंकि आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, तो पहली फैक्चुअल इनएक्यूरेसी उन्होंने बोला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डिसीजन लिया। उनका खुद का वीडियो मेरे पास में है और ये जगह दिखाना चाहता हूँ, और थोड़ा मुझे शांति से सुनिएगा, जिसके अंदर वो खुद SY कुरेशी कहते हैं कि जब N गोपाल स्वामी और नवीन चावला के बीच में लड़ाई थी तो वीटो वोट SY कुरेशी का होता था। तो ये SY कुरेशी जी को पहले
7: मैंने खुद सवाल पूछा उनको, प्रदीप जी आपने सुना कि नहीं सुना?
9: कमिश्नर होने के बाद
7: मैंने खुद उनको बोला, ये
9: फैला रहे हैं,
7: मैंने खुद कोट किया इस बात को।
9: सीसी के सुनिए तो सही मेरी बात साहिल जी, मैंने सुना, मैं तो जवाब साहिल जी मेरी बात तो सुनिए, साहिल जी मेरी बात तो सुनिए आप। तो उन्होंने कहा कि 2 इलेक्शन कमिश्नर सीसी के खिलाफ थे और अकेला डिसीजन ले लिया, तो ये बहुत ही पहली बात तो फैक्चुअली इनएक्यूरेट है। और एक व्यक्ति जो इलेक्शन कमिश्नर रह चुका है उसको ऐसे पॉलिटिकल बयान जैसे राहुल गांधी देते नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर 2 इलेक्शन कमिश्नर खिलाफ होते तो सीईसी के ओपिनियन को वीटो कर सकते थे, जैसे SY कुरेशी वीटो करते थे N गोपाल स्वामी और नवीन चावला के मुद्दे में, पहली बात। दूसरा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी गलत कोट किया, और मैं अचंभित हूं कि एक इलेक्शन कमिश्नर होते वो सुप्रीम कोर्ट के भी वर्डिक्ट को ट्विस्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्राइमरी प्ली क्या थी, आप अपने दर्शकों को दिखाइए, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना चाहिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम इस तरीके का ऑर्डर पास नहीं कर सकते। दूसरी उनकी प्ली थी कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट के आधार पे, जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, उसके आधार पर डिसीजन लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना, हम न्यूज़पेपर की रिपोर्ट सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, हमें नहीं पता, हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट के आधार पर जजमेंट नहीं देते। तो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट प्राइमा फेसी सही जो ये कह रहे थे, ये खारिज हो गया। तीसरी बात इन्होंने कही कि भाई सुप्रीम इलेक्शन कमिश्नर ने गलत किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, वी प्रिज्यूम प्राइमा फेसी द इलेक्शन कमीशन हैज डन जॉब्स व्हिच इज लीगल एंड एथिकल। अब आ जाते हैं फॉर्म 6 में, क्योंकि मैं कितना मतलब हद होती है झूठ फैलाने की। आप आइए मेरे साथ में, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को सुनेंगे। ये रहा मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये रहा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, कहता है 26 सितंबर का, द डिक्लेरेशन अटैच्ड टू फॉर्म 6 फॉर SIR हैज बीन अपहेल्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, फॉर्म 6 में डिक्लेरेशन अटैच करना कैसे हो गया इक्वल टू फॉर्म 6 को जोड़ना? अब तीसरी बात, अगर उनने लॉ पढ़ा होता और उनने आर्टिकल 324 पढ़ा होता और वो पॉलिटिकल बयान नहीं देते, मैं पढ़ता हूं आपके लिए आर्टिकल 324 क्या कहता है। नॉट अ सिंगल एलिजिबल वोटर शुड बी नॉट अलाउड टू वोट एंड नॉट अ सिंगल इनएलिजिबल वोटर शुड बी अलाउड टू वोट। तो 2,80,00,000 डेड वोटर को वोट दिलवाना, जिसके बारे में मिस्टर कुरैशी या कांग्रेस एक शब्द नहीं बोल रही, क्या यह सबसे बड़ा संविधान पे कुठाराघात नहीं है? यह पॉइंट नंबर वन। दूसरी बात, क्या 6,30,00,000 लोग जो वहां पे मौजूद ही नहीं थे, वो स्थायी रूप से वहां पे रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनको उस रोल से हटाना क्या गलत है? अरे सही है। और मैं कह रहा हूं साहिल जी, आई एम नॉट द आर्बिट्रेटर टू डिसाइड अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नाइदर यू आर नॉर राहुल गांधी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो डिसाइड कौन करेगा? क्या जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होता है,
7: नहीं, बिल्कुल सही है,
9: स्ट्रीट डिसाइड नहीं करती।
7: इस रैशनल के पीछे दो सवाल,
9: कोर्ट को बाधित करने के लिए, कोर्ट पे दबाव डालने के लिए जिस तरीके से सड़क पे आ रहे हैं,
7: नहीं, इस आर्ग्यूमेंट के पीछे दो सवाल यहां पर खड़े होते हैं। जो आर्ग्यूमेंट आप यहां पर रख रहे हैं, ठीक है, मई 2026 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, डिक्लेरेशन फॉर्म को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कौन से आदेश के तहत सुप्रीम चुनाव आयोग ने जुलाई 2026 में जो डिक्लेरेशन फॉर्म था उसमें क्या ऐड कर दिया? देखिएगा, रिश्तेदारों के नाम और विवरण की जानकारी भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश देते समय, आपके पास आदेश की कॉपी है, आप जरा एक बार अगर चाहे तो दोबारा पढ़ सकते हैं, उस कॉपी में क्या लिखा हुआ है कि आपकी प्रक्रिया का सुलभीकरण होने के लिए, एसआईआर की आपकी प्रक्रिया चल रही है उसका सुलभ, सुन लीजिए ना, सुलभीकरण होने के लिए आप उस डिक्लेरेशन फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप चुनाव आयोग को इस बात का रैशनल समझाना पड़ेगा, जो रैशनल नेक्सस है, जो टेस्ट है, तर्कसंगत क्या है कि आप विवरण दीजिए उसको, ये सुलभीकरण कैसे हो गया? और अगर किसी के दादा दादी का नाम नहीं है 2002 के लिस्ट में तो वो वोटर नहीं बन सकता, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके पास सब कुछ होगा, फिर भी वो वोटर नहीं बन सकता क्योंकि वो डिक्लेरेशन नहीं भर पाया, ये कौन सा लॉजिक है? सवाल यहां पर आकर उठता है प्रदीप भंडारी, और उसके बाद चरण सिंह सप्रा इसका जवाब देंगे।
9: चलिए, बिल्कुल, देखिए राहुल साहिल जी, एक बात मैं इस पर जवाब दे रहा हूं, इसका जवाब तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर देगा, पर मैं पॉइंट कह रहा हूं, तो आज मैं और आप इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि जो राहुल गांधी स्ट्रीट पे कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो प्रदीप भंडारी सड़क पे जाए या राहुल गांधी सड़क पे जाए या तीसरा आदमी सड़क पे जाए, उससे एक लीगल मैटर पे कोई इम्प्लेंट नहीं होता, इट इज ऑन फैक्ट्स। तो ये करना क्या जा रहे हैं? जब इनको क्या सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है तो कहे कि ये भीड़ से सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालेंगे। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित नहीं होता तब ये राइट टू प्रोटेस्ट की बात करते तो सही था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप बताइए कहां लिखा है कि भीड़ के आधार पर जब सुप्रीम कोर्ट का लंबित मामला तय होगा? पहली बात, तो राहुल गांधी अराजक फैला रहे हैं, ये सच्ची बात है। अब मैं आ जाता हूं इस वाले मामले पे, मेरे पास पैरा नंबर 52 पेज 106 ऑफ 124 है और उसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इट इज नाइदर प्रैक्टिकल और डिजायरेबल फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस टू बी लेफ्ट एंटायरली और सब्जेक्टिव। इट इज ट्रू दैट फॉर्म 6 एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल इलेक्टोरल 1960 सेट्स अ फ्रेमवर्क ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इट कम्स अंडर सेक्शन 21(2) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वेयर द कमीशन हैज द रेजिड्यूरी अथॉरिटी टू फॉर्मुलेट एन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं कह रहा हूं अगर ये गलत भी है तो मैं कौन होता हूं निर्धारित करने वाला? राहुल गांधी कौन होते हैं निर्धारित करने वाले? तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना। इलेक्शन कमीशन इज नॉट अकाउंटेबल टू द एग्जीक्यूटिव, इट इज नॉट अकाउंटेबल टू द ऑपोजिशन, इट इज अकाउंटेबल टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। तो मैं आपसे पूछूंगा और एक 10 सेकंड की बात, जब यह सामने आ चुका है कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर ने साथ में डिसीजन लिए तो फिर राहुल गांधी और अस्वय कुरैशी झूठ क्यों फैला रहे हैं कि सीसी ने डिसीजन लिया? यह गलत है, यह लोकतंत्र में कुठाराघात और झूठ फैला रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली पुलिस के एक जवान के ऊपर झूठ फैलाने का प्रयास किया था कि एक महिला पत्रकार को हरास कर दिया, अब सामने आया नदीम अहमद के जरिए फेक वीडियो बनाया, तो ये कब तक झूठ बोलेंगे साहिल जी?
10: अब मेरी देखिए साहिल जी, साहिल जी पूरा देश जानता है और पूरे देश ने देखा है कि जब अगर गोलकीपर जो है, अगर रेफरी जो है वही गोलकीपर बन जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो निश्चित रूप से आवाज उठेगी। अब इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी रस्ते पे क्यों है, भाई ये हमारा अधिकार है, विपक्ष में होने के नाते, विपक्ष के नेता होने के नाते हमें सत्याग्रह करने का अधिकार है। राहुल गांधी जी सत्याग्रह ही तो कर रहे ना, जो महात्मा गांधी ने आजादी के समय किया था। महात्मा गांधी जी ने गोरों से आजादी दिलाई थी, अब राहुल गांधी जी इन चोरों से आजादी दिला रहे हैं, फर्क इतना ही है। और क्या कह रहे हैं राहुल गांधी जी, वो रस्ते पर बैठे हैं, कहते हैं कि मैं सत्याग्रह कर रहा हूं, मैं यहां पर बैठ करके धरना देना चाहता हूं। क्या इस देश के अंदर धरना देना बंद हो गया है?
9: जवाब दूंगा।
10: क्या ये शाह और तानाशाह के राज में ये हिटलर शाही चलेगी, ये लोकशाही नहीं ठोकशाही चल रही है, ये राहुल गांधी जी सिद्ध करना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी तो ये भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ नहीं तो वहां बता, अभी क्यों व्याकुल हो रहे, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, देना ना जवाब, अपनी बारी आने पे देना, अरे अपनी बारी आने पे देना, मेरी बारी साहिल जी, ये नहीं ये डिस्टर्ब करेंगे, इस तरह से देखिए राहुल जी, राहुल जी यही कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर बैठ करके धरना देना और हमारी डेलीगेशन को जाकर के निर्वाचन आयुक्त को मिलना है, तो क्या निर्वाचन आयुक्त को मिल नहीं सकते हैं? क्या निर्वाचन आयुक्त के हाथों में पैरों में मेहंदी लगी है? क्या वो इतने नरम है कि वो पिघल जाएंगे राहुल गांधी जी को देखते ही? ये सारी सरकार और सारा सिस्टम जो है, ये राहुल गांधी जी से डर क्यों रहा है? एक चार घंटे के अंदर चार ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर इधर उधर की बातें करके प्रेस कॉन्फ्रेंस को उड़ा दिया जाता है। दरअसल इनको पता है चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए चोर मचाए शोर।
7: ठीक है,
10: ये शोर मचा रहे हैं
7: बीजेपी। मैं आपको बीजेपी जो सवाल उठा रही है ना, उसके पीछे का मैं कारण बताता हूं आपको। देखिए ये बात तो ठीक है कि चुनाव नहीं, आप जवाब दीजिए, लेकिन उससे पहले एक सवाल मुझे सप्रा जी से पूछना है। देखिए सप्रा जी, जिसका हमने जिक्र भी किया यहां पर, इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से होती है? देखिए महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव होते हैं, उसके बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, एटम बम फोड़ते हैं, हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, उसमें कहते हैं कि भाई गलत नाम जोड़े गए, आपकी वोटर लिस्ट ही पूरी तरीके से खराब है, आपको साफ करना चाहिए, ब्राजीलियन महिला का नाम 24 बार कैसे आ जा रहा है वो सबको साफ करिएगा। अगर उसके बाद ये प्रोसेस होता है तो आप जो काटे गए 13 करोड़ नाम है, हो सकता है कि वो राहुल गांधी जिसका जिक्र कर रहे थे, डबल वोटर्स, जिसका एड्रेस चेंज हो गया है, किसी के हाउस नंबर, एक हाउस नंबर पे 50-50, 60-60 वोटर्स, ये सारे नाम अगर कट रहे हैं तो उसमें आप आकर ये कह रहे हैं कि भाई ये तो सियासत हो रही है, चुनाव आयोग के फायदे से आप यहां पर उठा रहे हैं और आप सड़क पर उतर रहे हैं, इसीलिए तो सवाल उठा रही है बीजेपी यहां पर।
10: देखिए साहिल जी,
7: पीछे का सवाल मैं आपको बता रहा हूं,
10: साहिल जी हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ है, जिस तरह की प्रक्रिया ज्ञानेश कुमार ने पकड़ी है। ये एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हो रहा है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये एलिमिनेशन कमीशन है। भारतीय जनता पार्टी की एक कस्टमाइज्ड वोटर लिस्ट बनाने का काम हो रहा है, ये शुद्धिकरण के नाम पर वोटर लिस्ट का मोदीकरण हो रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं है।
7: भी हमने देखा आरोप निकला है कि फॉर्म नंबर
10: 740 करोड़ जनता,
7: हजारों फॉर्म नंबर 7 फाइल हो जाते हैं अचानक,
10: 40 करोड़
7: जनता, और जब उसकी जांच होती है तब पाया जाता है कि हार्डली 25 नाम कर सकते हैं, बाकी नाम नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बंगाल के भीतर सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल बनाता है ये कहकर कि जिनके नाम काटे गए उनकी सुनवाई का मौका मिले, लेकिन चुनाव आयोग 16 लाख एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि जिनके नाम जोड़े गए वो काट दे। इस पर तो सवाल उठना चाहिए ना प्रदीप भंडारी।
10: बिल्कुल,
9: चलिए आशीष भाई, मेरे बड़े भाई सापरा साहब ने बोला कि राहुल गांधी से डर क्यों रहे। चलिए साहिल जी, अभी इस वक्त आप शो एंकर कर रहे हैं, मान लो सापरा साहब आपको बिना बताए आपके सामने धरना करना चालू कर दे लाइव शो पे, और बोलना चालू कर दे कि मेरा हक है लाइव शो के बीच में धरना करना, और साहिल जोशी जब तक मुझे नहीं सुनेगा तब तक मैं नहीं उठूंगा, ना आपसे अपॉइंटमेंट लेना, आपको व्हाट्सएप करे, ना
7: कई बार होता है धरना, ये
9: तो क्या ये जायज है? मान लीजिए इंडिया टुडे के ऑफिस के अंदर कल को कांग्रेस के लोग बिना अपॉइंटमेंट लिए आपके सामने आकर ऑफिशियल भेजा मिलने के लिए,
7: आप इतने दिन से ये डिबेट सुन रहे हैं, अब विपक्ष सड़क पर उतर आ गया है, आखिर में जरा जल्दी से मोहम्मद अमीन जी, क्या आपको लगता है कि अभी भी वक्त है चुनाव आयोग को इस बारे में मिलना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए और अपनी बात साफ करनी चाहिए? इससे प्रेस रिलीज से काम नहीं चलेगा।
11: देखिए साहिल साहब, मैं पहले से कहता रहा हूँ, भंडारिया हो जाएगी, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, मुझे बोलने दीजिए,
7: सुन रहे सुन।
11: हाँ साहिल साहब, आप देखिए सारी बातें हो चुकी, चाहे वो बीजेपी की बातें रही हो, चाहे वो कांग्रेस की बात रही हो, या कमीशन की तरफ से प्रश्न उठाया हो, मेरे हिसाब से कल जब इलेक्शन कमीशन ने सारी बातें सुनी है और अपने आदेश को दिया है और आदेश में कहा है कि उन्होंने सारी रिपोर्ट्स मांगी है और ये साफ कह दिया कि वो उसको सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है उनका, क्योंकि वो इंपीचमेंट का मामला बनता है। और जहां तक सवाल है, अगर कोई भी उनका कोई भी ऑर्डर जो आया इलेक्शन कमीशन का, वो जो समझ से नहीं है, मेजोरिटी से नहीं है, तो उसको वो रद्द भी कर सकते हैं। तो अब ये इंक्वायरी का मैटर है, मैं तो समझता हूँ इसमें ध्यान करके लोगों को वेट करना चाहिए, जब जो अगला आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट का, तो वो सर्वोच्च न्यायालय उस आदेश
7: को उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के तरफ से जो हलफनामे रखे जाएंगे, जो भी बातें रखी जाएगी, उससे कम से कम चीजें साफ हो जाएगी। लेकिन अब तक चुनाव आयोग का जो रवैया रहा है वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी वहां पर सड़क पर उतरे हुए, बीजेपी उसका जवाब भी दे रही है। तो इस पर नजर बनाए रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए आज तक।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
3: मैडी, I need to open a savings account.
4: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
3: स्मॉल बैंक?
4: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज RDF, there is nothing small about them.
3: Okay.
4: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: गैसोफास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसोफास्ट 27%, इनो 9.2%।
1: गड़बड़ है।
2: आहा, गैसोफास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार रूमता बार सर, एक बार रोटी थमका लगाने। बस
4: मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रूमता टीएमटी बार से जो बना है,
5: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
6: क्योंकि वो मजबूत रूमटा टीएमटी से बना है।
7: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
8: कौन सी बनानी है?
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: जेके मैक्स वाइप इजी,
3: दीवारों के दाग का जवाब सर, जेके मैक्स वाइप इजी।
4: My dad was actually very rich and he became so poor that factory नीलाम हो गई, घर नीलाम हो गए, किराए देने के पैसे नहीं, घर के बाहर नहीं निकल सकते थे। इतना अनाड़ी था। पहले दो साल की मेरी मिस्टेकें सुन जाओगे ना रजत सर, मुझे यहाँ पॉडकास्ट पर बिठाओगे नहीं। उड़ने के लिए आपको ग्लास सीलिंग तोड़नी पड़ती है। बहुत पॉपुलर मिस्टेक है। जो अच्छा चलेगा, आपका दिमाग ये कहता है कि वो अच्छा चलता जाएगा। जो बुरा चल रहा है वो बुरा चलता जाएगा। This is called recency bias.
5: एक ऐसी चीज जो पैसा खरीद नहीं सकती।
4: वक्त आपके पेरेंट्स के साथ। So this is what money will not be able to buy. You might become a billionaire, but you will regret this eternally till your last breath.
6: मुंबई में आदिवासी छात्रों के आंदोलन पर सियासी पारा चढ़ गया है। ये आदिवासी छात्र नासिक से मुंबई तक पैदल मार्च करके आए। लेकिन ये लोग जैसे ही मुंबई पहुंचने वाले थे, पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने आदिवासी छात्र छात्राओं को मुंबई में कांग्रेस मुख्यालय से हिरासत में लिया।
7: छात्रों की गूंज प्रोग्राम में
6: अब कांग्रेस आदिवासी छात्रों के आंदोलन के मुद्दे को सियासी रूप से भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार। राहुल गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर फडणवीस सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए।
7: छात्रों की गूंज प्रोग्राम में मैं अलग अलग स्टूडेंट ग्रुप से मिला था। जो आदिवासी स्टूडेंट्स हैं उनसे मिला, उनसे बातचीत की, और जो MPSC के प्रोटेस्टर्स हैं उनसे भी मिले था, उनसे भी बातचीत की। देखिए, इनकी जो मांगे हैं ये लेजिटिमेट हैं। ऐप के माध्यम से भी MPSC स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया था, और मैं दोनों स्टूडेंट्स को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं, घबराइए मत, आपकी मांग पूरी होंगी। सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, आप जो करना चाहते हैं करिए। ये जो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रही हैं MPSC की, आदिवासियों की, ये रुकने वाली नहीं है। इनकी मांगे जल्दी से जल्दी आप पूरी कीजिए, क्योंकि ये रुकने वाले युवा नहीं।
6: आदिवासी छात्रों ने बताया कि सरकार की अनदेखी की वजह से आंदोलन के दौरान कई छात्रों की मौत हो चुकी है। इधर मुंबई पुलिस ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि तिलक भवन से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया।
8: अब कांग्रेस लीडर्स जो है आरोप लगा रहे हैं कि सरकारें बदलती रहेगी, लेकिन पॉलिटिकल ऑफिस के अंदर घुसकर लोगों को डिटेन करने का जो मुंबई पुलिस ने शुरुआत की है, वो आने वाले समय में पॉलिटिक्स के लिए ठीक बात नहीं है। जयराम रमेश और बाकी सारे नेता जो है इस पर एक तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी जो है आदिवासी स्टूडेंट्स को कांग्रेस के महाराष्ट्र हेडक्वार्टर से डिटेन करने पे पैदा हो चुकी है। कैमरा पर्सन मंदा चौहान के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।

0: चुनावी गड़बड़ी के आरोप और सीईसी ज्ञानेश कुमार के विरोध के बीच ये विपक्ष के साझा आक्रोश की तस्वीरें हैं। इंडिया गठबंधन के मार्च में विपक्षी एकजुटता दिखी, जबरदस्त तनातनी हुई। मार्च बढ़ने के साथ साथ पुलिस से तकरार की तस्वीरें भी सामने आईं। इंडिया गठबंधन का साझा मार्च संसद के मकर द्वार से निकला। तैयारी थी चुनाव आयोग के दफ्तर की घेराबंदी की। मार्च बढ़ा, नेताओं के जुटने का सिलसिला शुरू हुआ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सियासी हमले तेज हो गए। इंडिया गठबंधन के मार्च को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती थी। आकाशवाणी केंद्र के पास मार्च को रोका गया तो राहुल गांधी बैरिकेड पर चढ़ गए। कुछ और विपक्षी सांसद भी इस विरोध में राहुल का साथ देते दिखे। बढ़ती तनातनी के बीच पुलिस ने नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। राहुल प्रियंका हिरासत में लिए गए, अखिलेश को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन उस समय हंगामा और बढ़ गया जब राहुल पुलिस की हिरासत से निकलकर आकाशवाणी केंद्र में चले गए। हंगामा जारी रहा, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष हमलावर दिखा। लेकिन इस मार्च के बीच बड़ा सवाल ये, सड़क पर छिड़े इस संग्राम से विपक्ष को हासिल क्या हुआ? क्या विपक्षी एकता के इस मार्च के जरिए चुनावी गड़बड़ी का संदेश सीधे जनता तक जाएगा? क्या विपक्षी एकता से चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ेगा? क्या आने वाले दिनों में देश भर में जिस तरह के विरोध प्रदर्शन का प्लान तैयार किया गया, इस मार्च से उसे और धार मिलेगी? क्या 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली को इस विरोध प्रदर्शन से और ताकत मिलेगी? इंडिया गठबंधन के दल चुनाव आयोग पर हमलावर है, वहीं बीजेपी हर हमलों का जवाब दे रही है। इस मार्च को राहुल गांधी को लॉन्च करने की फिर नाकाम कोशिश बता रही है। चुनाव आयोग पर आरोपों के बीच रण बढ़ता जा रहा है, संग्राम सड़कों पर छिड़ा है, सरकार और विपक्ष के बीच हमले तेज हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
1: फॉर्म 6 पर छिड़ा घमासान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फॉर्म 6 में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी मंजूरी। विपक्ष का आरोप, ज्ञानेश कुमार ने गैर कानूनी और एक तरफा तरीके से बदला फॉर्म 6। चुनाव आयोग का जवाब, मूल फॉर्म 6 में एक कोमा पूर्ण विराम तक नहीं बदला। फॉर्म 6 पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस पर घमासान तेज हो गया है। ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कल राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब ये बात बिना किसी शक के साबित हो चुकी है कि ज्ञानेश कुमार ने गैर कानूनी और एक तरफा तरीके से फॉर्म 6 में बदलाव किया। ये इस बात का एक और सबूत है कि उन्होंने बीजेपी की मदद करने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। राहुल गांधी के इस पोस्ट पर चुनाव आयोग ने भी एक्स पर फैक्ट चेक जारी किया। चुनाव आयोग ने कहा, बिहार में SIR के लिए 24 जून 2025 को जारी आदेश चुनाव आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के अपने फैसले में इस आदेश को सही ठहराया है। चुनाव आयोग ने 26 सितंबर 2026 के अपने प्रेस नोट नंबर 120 के पॉइंट 13 में कहा है कि SIR के लिए फॉर्म 6 के साथ लगे घोषणा पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। चुनाव आयोग के मुताबिक उसने फॉर्म 6 में बदलाव नहीं बस एक पन्ना जोड़ा और उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। सवाल उठता है कि फिर विवाद कहाँ है? लेकिन क्या फॉर्म 6 में अलग से पन्ना जोड़ने को बदलाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पन्ना जुड़ने से SIR की प्रक्रिया तो प्रभावित हुई? जाहिर है इस मामले पर जब अगली सुनवाई होगी तो तस्वीर और साफ होगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
2: हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड, चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में लोग ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहेंगे, मगर मैं पूछना चाहता हूं ये 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे। कांग्रेस पार्टी जो आंतरिक रूप से एक राजतंत्र है जिसने लोकतंत्र का लबादा ओढ़ा हुआ है, वो वास्तविक लोकतंत्र को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए वह लोकतंत्र के हर स्तंभ के ऊपर पिछले 12 सालों में निराधार, निरर्थक, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने की जिद पर अड़ गए हैं राहुल गांधी। बोरिया बिस्तर के साथ आकाशवाणी भवन में डाला डेरा। मीडिया से बोले, मुलाकात से पहले हिलेंगे नहीं हमारे सांसद। विपक्षी मार्च और कांग्रेस के धरने पर बीजेपी का तगड़ा हमला। ताबड़तोड़ चार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, अराजक है नेता, विपक्ष बिगाड़ रहे हैं देश का माहौल। बंगाल में ममता बनर्जी और शुभेंदु के नाक की लड़ाई बना नंदीग्राम। शाम 5 बजे तक 79% हुआ मतदान। रेजी नगर में 78% लोगों ने डाले वोट। तमिलनाडु पुडुचेरी में भी तेज वोटिंग। छोटे मझौले कारोबारियों के लिए मोदी सरकार की बड़ी सौगात। 10,000 करोड़ के निवेश का ऐलान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। इस बात को पूरा देश मानता है।
1: चुनाव बायकॉट नहीं होगा और चुनाव एमपी बैठेंगे, बीजेपी बैठेगी।
2: एक असेंबली में 1,00,000 फेक वोटर्स,
3: 60,00,000 वोटर फर्जी है और ये गलती नहीं हो सकती कि जो वोटर लिस्ट है उसमें ऐसे अनेकों नाम हैं जो एक ही नाम है, एक ही पिता का नाम है, एक ही उम्र है, एक ही पता है।
4: हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, आप 2016, 18, 20, 21 में सही थे या आज सही है? हकीकत ये, तब भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे।
5: दिल्ली का जो सबसे संवेदनशील इलाका बैठा हुआ है, वहां राहुल गांधी बैठकर एनआरकी कर रहे हैं।
6: नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी का संग्राम आज और तेज हो गया। इस वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मतलब इस वक्त जब 6 बजे आप हल्ला बोल का कार्यक्रम देख रहे हैं, तब लगभग 5-6 घंटे बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता आकाशवाणी भवन परिसर में धरने पर बैठे हैं। ये धरना मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने की मांग पर है। राहुल गांधी का कहना है कि वो ज्ञानेश कुमार से मिलकर ये कहना चाहते हैं कि आपने वोट चोरी की है और इसी वजह से ये सभी वहां पर अड़े हुए हैं और अब तो दरिया, चादर सब कुछ वहां पर बिछ गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कुछ अन्य नेता जो वहां पर दिखाई दे रहे हैं उसमें पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी का बाय लार्ज आज प्रदर्शन जो है उसमें कांग्रेस के ये सभी नेता वहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। संसद से आकाशवाणी भवन तक राहुल गांधी विपक्षी सांसदों के विरोध मार्च के तहत पहुंचे हैं और वहां से निर्वाचन सदन जाने का कार्यक्रम था। आज के इस विरोध मार्च में अखिलेश यादव में भी शामिल हुए थे और अभिषेक बैनर्जी भी शामिल हुए थे। लोकसभा, राज्यसभा के तकरीबन 300 विपक्षी सांसद शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन राहुल गांधी आकाशवाणी भवन तक पहुंचकर धरने पर बैठ गए। सवाल है कि राहुल गांधी का धरना क्या नए सियासी तूफान की आहट है? आज बीजेपी ने भी एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के आरोपों पर यह कहकर पलटवार किया कि उनका जनाधार ज्ञानेश कुमार के सीसी बनने से बहुत से पहले से छिटक चुका है। बीजेपी ने आज राहुल गांधी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बीजेपी ने। सवाल है कि क्या वोटों की लड़ाई अब लोकतंत्र का संग्राम बन चुकी है? ज्ञानेश पर आर पार धरना, हथियार, यही है हल्ला बोल का विषय। पहले यह रिपोर्ट देखिए। ऐलान तो था, बस चुनाव आयोग के दफ्तर तक विपक्षी सांसदों के मार्च का, लेकिन बैरिकेड्स और पुलिस बंदोबस्त के बावजूद आकाशवाणी भवन तक पहुंचे राहुल।

0: गांधी के तेवर और सख्त हो गए। सीईसी ज्ञानेश कुमार से मिलने की मांग पर राहुल गांधी ने आकाशवाणी भवन में धरना देना शुरू कर दिया।
1: सांसद इलेक्शन कमिश्नर्स से मिलेंगे, इनको मिलना ही पड़ेगा। हम सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाना चाहते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं और उन्हें

0: पड़ेगा। हम सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाना चाहते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं और उन्हें कहना चाहते हैं कि आपने वोट चोरी की है।
1: हमें यहाँ बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं।
0: अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ ना बैठे, आपने हमें वहाँ से यहाँ कर दिया
1: जी।
0: अब अगर आप यहाँ भी अनकंफर्टेबल हो तो हमें बता दो, कोई भी जगह दे दो हमें
1: जी।
0: दिल्ली में जहाँ हम बैठ जाएं।
2: राहुल गांधी के आरोपों में आज कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन उनके शब्दों की चोट बता रही है कि ये सियासी वजूद का संग्राम बन रहा है।
0: अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। इस बात को पूरा देश मानता है। देश को नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी करके हाईजैक किया है, अमित शाह जी ने हाईजैक किया है, मोहन भगवत जी ने हाईजैक किया और ज्ञानेश कुमार ने उनकी मदद की है। आप देखना, इनमें से एक व्यक्ति बच के नहीं जाएगा।
2: 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं आए अखिलेश यादव ने भी विपक्षी सांसदों के मार्च में अपना पूरा जोर लगा दिया। आज अखिलेश का नारा था, बीजेपी ही सीईसी है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज के हंगामे में अखिलेश 2027 का यूपी चुनाव नहीं भूले।
3: तब देश का संकट हटेगा,
4: उसमें
3: बीजेपी हटेगी, तब वोट चोरी रुकेगी। 2027 में समाजवादी सरकार बनेगी।
2: विपक्षी सांसदों के इस विरोध मार्च में टीएमसी की अगुवाई करने अभिषेक बनर्जी आए थे। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का ये अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। विपक्ष के इस हंगामे का जवाब बीजेपी की ओर से भी आया। बीजेपी ने राहुल गांधी से 5 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, राहुल ने जिन भी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए उनमें कितने साबित हुए? दूसरा सवाल, अगर राशन और मनरेगा के फर्जी लाभार्थी निकल सकते हैं तो अयोग्य वोटर क्यों नहीं? तीसरा सवाल, 2003 के SIR से पहले जिन राज्यों से कांग्रेस गायब हो चुकी है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? चौथा सवाल, कहां कहां राहुल ने कैंप करके चुनाव प्रचार किए हैं? और पांचवा सवाल, आज हो रहे उपचुनावों की वोटर लिस्ट चेक कर ली है या नहीं? बीजेपी ने SIR प्रक्रिया में अब तक हटाए 13 करोड़ नामों में मृतक, शिफ्टेड और डुप्लीकेट का आंकड़ा रखकर भी विपक्ष को घेरने की कोशिश की।
5: जिन लोगों ने 5,80,00,000 राशन खाया, जिन्होंने 4,45,00,000 की मजदूरी खाई, वही लोकतंत्र खाने का प्रयास कर रहे हैं डेड एंड डुप्लीकेट वोटर्स के द्वारा। कांग्रेस से हम साफ पूछना चाहते हैं, कांग्रेस किन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है? एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट वोटर्स को वोटिंग राइट देकर बगैर किसी जांच के।
2: बीजेपी ने फॉर्म 6 में बदलाव को मंजूरी नहीं दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद राहुल गांधी के आरोपों पर ईसी के फैक्ट चेक के बहाने भी राहुल को घेरा।
6: इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन हुआ था उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट का समर्थन प्राप्त था, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट मॉडिफिकेशन। और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में उस पोर्शन को रेड में मार्क किया है, .3 को, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा, जो कि झूठ है।
2: विपक्षी सांसदों के मार्च के दौरान ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के अफसर और जवान आज बॉडी कैमरा के साथ लैस थे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि 3 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में दिल्ली पुलिस के DCP विवेक भगत को AI से बनाई गई तस्वीर के जरिए बदनाम करने की कोशिश की। पुलिस ने नदीम नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 3 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार की शिकायत पर छेड़छाड़ की FIR दर्ज हुई है।
7: जब हमने उस चैनल को जांच किया तो उसमें पता चला कि एक जो पलवल हरियाणा का रहने वाला नदीम अहमद है, ये वो न्यूज चैनल चला रहा है। हमने उसको अरेस्ट कर लिया। उसने बताया कि इससे क्या पुलिस की छवि धूमिल करना है, जिससे जो प्रदर्शनकारी वहां आ रहे हैं उनमें पुलिस के प्रति हेट भावना पैदा हो जाए, जिससे क्या वो पुलिस वालों पे अटैक करना स्टार्ट कर दे।
2: कुल मिलाकर चुनाव धांधली के विपक्ष के आरोपों पर शुरू हुई राजनीतिक लड़ाई देश की संस्थाओं पर टक

0: टकराव की नौबत तक पहुंच गई है, जबकि विपक्ष के संग्राम का अभी तो बस शुरुआत है। इंडिया गठबंधन अक्टूबर से लेकर नवंबर तक विरोध का अपना पूरा खाका खींच चुका है। आज तक ब्यूरो
1: ऑपोजिशन के सारे।
0: तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अमित जमई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सत्यप्रकाश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और खास चूंकि विक्रम सिंह साहब फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि पुलिस और पुलिस के रवैये को लेकर भी बहुत चर्चा लगातार इन आंदोलनों में हो रही है, तो इसीलिए सर बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। क्योंकि आज पुलिस को लेकर और पुलिस किस तरह का व्यवहार कर रही है, पुलिस के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, बहुत सारी चीजें और तरह तरह के सोशल मीडिया पर रील्स और ये सब चल रहा है। लेकिन हमने आपको दिखाया है कि कैसे दिल्ली पुलिस ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कैसे एआई वीडियोस के जरिए ये दिखाया जा रहा है, नकली वीडियोस बनाए जा रहे हैं कि पुलिस वहां पर औरतों को हरास कर रही है, और उससे मतलब वो वीडियो कोई भी देखेगा तो उसका खून खौल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पूरी सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल करने के लिए भ्रामक बातें भी एआई की वीडियोस बनाकर भी फैलाए जा रहे हैं, ऐसा दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। इस बीच जल्दी से सुधांशु जी आपसे पहला सवाल, लेकिन उससे भी पहले एक बार मौसमी, मुझे बताया जा रहा है कि हमारे साथ सीधा विरोध प्रदर्शन की जगह से जुड़ गई है। मौसमी, अब तक कितने घंटे? उससे पहले कांग्रेस एमपी को कल भी दिल्ली रुकने को कहा है, यानी स्पष्ट है कि ऐसा प्रतीत होता है सीईसी से मुलाकात का समय नहीं मांगा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, लेकिन मिलने का समय मांगा तो विचार संभव। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने की जो बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, उसमें दो खबरें हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी ने अपने सांसदों को कहा है कि आप कल भी दिल्ली में रहिए, और सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात का समय अभी तक नहीं मांगा गया है, मिलने का समय मांगा अगर तो विचार संभव है, यानी वो मिलने का समय दे सकते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। और इसी के साथ मौसमी, अब ताजा ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वहां पर बैठे हुए दिख रहे हैं और अब रोशनी बाहर कम हो रही है। अब तक कितने घंटे?
2: बिल्कुल जी अंजना, जब आप 4-5 घंटे कह रही थी तो मेरा मैं चाह रही थी कि कहूं कि 4-5 घंटे नहीं हुए, दरअसल 8 घंटे हो गए हैं। और सभी हम रिपोर्टर्स यहाँ पे, हमें लगा कि 2-3 घंटे में धरना खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लगातार चला जा रहा है। हम आप देखिए कि इन बांस के ग्रिल्स के इस तरफ खड़े हैं और उस तरफ आप देखिए कि पहले चटाइयाँ आई, फिर गद्दे भी आए और अब चद्दर भी आ गई है। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से अब शाम भी हो गई है और लगातार योजना है लंबी पारी यहाँ पे बिताने की। हो सकता है कि रात भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आप देख रहे हैं यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, कई लोग नीचे बैठे हुए हैं आलती पालती मार के, और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की धरना पॉलिटिक्स राहुल करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि बातचीत लगातार जो है, आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के भी आए थे, बातचीत का दौर चल रहा है और ये पूछा गया है कि आप कैसे यहाँ से हटेंगे, तो ये मांग रख दी गई है कि जब तक चुनाव आयोग से मुलाकात नहीं होगी आला अधिकारियों से, हम नहीं हटेंगे। अब जाहिर तौर पे जो औपचारिकताओं की आप बात कर रही हैं वो औपचारिकता तो करनी पड़ेगी, अगर हो सकता है कि अगले 1-2 घंटे में उस पर कुछ सक्रियता आए। तो कुल मिला के कांग्रेस तैयार है कि कल भी इसी तरह से धरना करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने भी अपने बयान में बोल दिया है कि आप हमें कोई जगह अलॉट कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आकाशवाणी भवन में हम ना बैठे, आप जगह अलॉट कर दीजिए, हम धरना कंटिन्यू रखेंगे यहाँ या वहाँ या जहाँ, लेकिन जब तक सीईसी और दोनों ईसी से हम मुलाकात, पूरे पैनल से मुलाकात नहीं करेंगे, ये खत्म नहीं होने वाला।
0: बिल्कुल मौसमी, और अब देखते हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ता है। बहुत दिलचस्प है, मुझे लग रहा है आपकी भी शाम आज लंबी होने वाली है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। और मौसमी वहां से हर अपडेट हम लोगों तक पहुंचा रही हैं, वो मौजूद हैं इस वक्त आकाशवाणी भवन में दिल्ली से, जहां से लाइव ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं एक बार सुधांशु जी के पास जाऊं, एक छोटा सा जवाब है, बाकी जो अन्य दल थे, क्योंकि आज अखिलेश यादव से लेकर धर्मेंद्र यादव, सारे मतलब बहुत सारे नेता अन्य पार्टियों के भी दिखे थे, वो सब अब अलग हो गए हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी का एक लग रहा है जैसे एक कोर ग्रुप वहां पर बैठा हुआ है, अगर मैं सही हूं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा भी दिख रहे हैं, और कौन कौन दिख रहा है जल्दी से इस पर दो लाइन मौसमी।
2: नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला अंजना। देखिए मैं कहती हूँ नासिर को दिखाएंगे, देखिए दीपेंद्र हुड्डा, पवन खेरा, हालांकि कोर ग्रुप नहीं है, जो अंदर आ सका वो आ गया और जो बाहर रह गया वो बाहर रह गया। कई कांग्रेस नेताओं और सांसदों ने अंजना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि राहुल गांधी भीतर चले गए तो हम कैसे चले जाएं, लेकिन वो हो ना सका और यही नेता अंदर रह गए। उससे पहले सब बाकी नेताओं का जो सांसद हैं उनका डिटेंशन हो गया, तो उसमें कुल मिला के बात ये हुई कि जो डिटेन हुआ है अभी भी डिटेन्ड है। कांग्रेस के मुताबिक कांग्रेस सांसदों को छोड़ा नहीं जा रहा है क्योंकि वो घूम फिर के फिर यहीं आ जाएंगे, इसलिए जो डिटेन्ड है इंडिया ब्लॉक में भी डिटेन्ड है। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कल एक नई योजना बनाई जाए और इंडिया ब्लॉक का एक नया एक अलग एक दूसरा धरना इसी मुद्दे पर देखे। हो सकता है कि राहुल गांधी रात भर यहाँ बैठे अगर मुलाकात की बात ना बने।
0: धन्यवाद आपका मौसमी इस तमाम जानकारी के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, उनके 8 घंटे हो गए हैं और आपके 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए हैं।
3: देखिए, कांग्रेस पार्टी निरंतर झूठ के आधार पर देश में अराजकता उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। जो अभी घटनाक्रम दिखाया गया, मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं। ये बताएं, ये मिलने जाना था इलेक्शन कमिश्नर से तो आकाशवाणी में क्यों घुस गए? जरा इनको बताइए कि आकाशवाणी भवन में से कौन सा रास्ता है जो इलेक्शन कमिश्नर को जाता है? दूसरी, ये कह रहे हैं 300 सांसद, और मैं आपके दर्शकों से कहता हूं, सुबेरे ये लोग कह रहे थे 140 सांसद है। मैं आपके दर्शकों से कहता हूं 99 सांसद कांग्रेस के हैं लोकसभा में और 30 सांसद हैं राज्यसभा में, 129। कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसके 37 सांसद हैं। उनके लोग आए और दिखा के चले गए, ज्यादातर उत्तर प्रदेश में इस समय प्रचार कर रहे हैं, जिनके वीडियो अवेलेबल हैं। उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी थी तृणमूल कांग्रेस, जिसके 20 सांसद अलग हो चुके हैं, डीएमके आई नहीं है। तो मैं चुनौती से कहता हूं मेरे भाई, जरा बता के बताओ 300 संख्या पहुंची कैसे? झूठ बोलता आदमी, सरासर झूठ। मैं पुनः, और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आम आदमी पार्टी शामिल नहीं है, समाजवादी पार्टी आई नहीं, इसके 37 एमपी है, तृणमूल कांग्रेस के ऑलरेडी 20 एमपी अलग हो चुके हैं, डीएमके है नहीं, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के अलावा जितनी पार्टियां वो सिंगल डिजिट की हैं, यानी 2.5 अंक के सांसद नहीं है, और झूठ बोले जा रहा 300 300 300, कहां गए 300 भाई? और मैं तो ये कह रहा हूं जिना जी, अगर ये 300 सांसदों के अपने इंडी गठबंधन की दिल्ली में उपस्थिति भी दिखा दे कल,
0: राहुल गांधी ने दावा किया है, सुना देते हैं एक बार सुना देते हैं, अब दावा सुन लीजिए उनका, फिर जवाब दीजिएगा। 300 का दावा राहुल गांधी का है, सुना दीजिए।
1: ऑपोजिशन के सारे सांसद 300, एक सेकंड, 300 सांसद सपोजिटली फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं, हमें मिलने नहीं दे रहे हैं, हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, एसआईआर के बारे में पूछना चाहते हैं, बंगाल के बारे में पूछना चाहते हैं, हरियाणा के बारे में पूछना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में पूछना चाहते हैं, महाराष्ट्र के बारे में पूछना चाहते हैं, वो जवाब नहीं देना चाहते। अगर उन्होंने वोट चोरी नहीं की होती तो एक मिनट में वो हमसे मिलने के लिए तैयार हो जाते।
0: दिखाइए सुधांशु जी, 300 सांसदों का दावा राहुल गांधी का है।
3: हाँ, यही तो मैंने कहा, 300 सांसदों का दावा है, और आपके लाखों दर्शक चेक कर सकते हैं कि जिन पार्टियों के 25 30 35 सांसद है वो तो आई नहीं है, और जिन पार्टियों का दावा कर रहे हैं उनके सिंगल डिजिट के सांसद है, तो 300 की संख्या कैसे हो सकती है? और जो दिखाई पड़ रहे हैं इसमें कांग्रेस के भी सारे सांसद दिखाई नहीं पड़ रहे, 130 होने चाहिए थे, आज के 130 बैठे हुए नहीं। केवल देश के लोकतंत्र को 4 पीढ़ियों से एक राजशाही ने पकड़ के रखा था, और उस राजशाही के मन में बौखलाहट है, खिसियाहट है, और उसकी वजह से उनके चंद दरबारी सांसदों के अलावा तो कोई दिख ही नहीं रहा है। जरा अपने कैमरामैन से कहिएगा और बड़ा फोकस करें और वाइड फोकस में दिखाएं कि कांग्रेस के 130 सांसद कहां बैठे हुए हैं, और मेरे इस सवाल का जवाब दे कि मिलने जाना था चुनाव आयोग में आकाशवाणी में क्यों घुस गए? मतलब पुराना गाना था ना कि मैं था वो था और समा रंगीन समझ गए ना, और जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि चुनाव आयोग से वहां कैसे आए। दूसरी बात, एसआईआर वाले पे भी मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट रूप से, आज चुनाव हो रहे हैं, आज बाई इलेक्शन हो रहे हैं देश में। मैं अभय दुबे जी से और अपने विपक्षी लोगों से कहता हूं, भाई साहब सारी जांच करवा ली है ना, इलेक्ट्रोल रोल का जांच करवा लिया था ना, और इवन अगर आपको कोई आपत्ति है तो नॉमिनेशन के पहले दिन तक भी कर सकते थे, यानी दो तीन हफ्ते पहले से, हल्ला तो आप दो तीन महीने पहले से लगा दिया था ना। और अभी मैं कह रहा हूं चुनाव परिणाम आएगा, 45 दिन का वक्त रहेगा सीसीटीवी मांगने का, मांगेंगे ना या फिर एक साल के बाद। और एक और बात सुन लीजिए अंजना जी, अभी ये लोग हल्ला मचाएंगे, ये आपके इलेक्शन एजेंट ठीक काम कर रहे हैं ना, और आपके आज के चुनावों में जो उपचुनावों की बात कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं ना, ये सब सही काम करेंगे और कोई बवाल नहीं होगा। एकदम से 6 महीने के बाद हल्ला काटना शुरू करेंगे, ये हो गया। और एक टेक्निकल बात बता देना चाहता हूं, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं वो पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स को बुलाते हैं और उन्हें पूरी की पूरी सूची दिखाते हैं और बूथ लेवल एजेंट से साइन करने को भी कहते हैं। तो इनसे पूछिए कि इनके बीएलए गए थे या नहीं, और गए थे तो साइन किए थे या नहीं, यदि साइन किए तो अब क्यों हल्ला कर रहे हैं, और साइन नहीं किए तो क्यों नहीं गए थे। और आज भी मैं यह बात कहना चाहता हूं, उसके बाद जो लिस्ट जारी होती है वो डीएम हर पार्टी के जिलाध्यक्ष को भी देता है, उसके बाद भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। थर्ड थिंग, उसके बाद आपत्ति आप नामांकन के अंतिम दिन तक कर सकते हैं। जरा ये तीनों चरणों का उत्तर कांग्रेस दे दे, दिल्ली शहर में जहां हम लोग बैठे हुए हैं वहां पर चुनाव के दौरान 12,000 बीएलए भाजपा ने अपॉइंट किए थे, 10,000 कांग्रेस ने। जरा आपने 10,000 बीएलए का वर्णन बता दे।
0: ठीक है अभय दुबे जी, घूम फिर कर रोज बहस वहीं पर पहुंचती है, घूम फिर कर वही सवाल मैं भी पूछती हूं, वही जवाब आप भी देते हैं, वही बातें अभय दुबे जी भी करते हैं, लेकिन कुछ बातों पर हल सुधांशु जी नहीं मिल रहा है। विपक्ष आज इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन ये बात चिंता की होनी चाहिए सब किस के लिए कि एक ही परिवार के कई लोग हैं जिनका वोट बन जा रहा है और दूसरे ऐसे लोग हैं जिनका वोट कट जा रहा है। एक ही परिवार के दो लोग बांग्लादेशी या अवैध नागरिक कैसे हो सकते हैं और दो नागरिक कैसे हो सकते हैं, इसकी चिंता चुनाव आयोग को भी बराबरी से करनी चाहिए। अगर टेक्निकल ग्लिच के हवाले उन्होंने छोड़ दिया है तो ये उनको भी चिंता होनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। आपको भी होनी चाहिए, दुबे जी को भी होनी चाहिए, हमको भी होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए। लेकिन अभय दुबे जी, आज क्या आपको लग रहा है कि सरकार को आप विरोध प्रदर्शन से बैकफुट पर तो डाल देंगे, लेकिन दो प्रश्न है, क्या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से यह पूरी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, है ना, क्योंकि आप ही हमको रोज समझाते हैं कि इससे पहले राजीव कुमार थे वो ईवीएम से जिताते थे, उससे पहले कोई और था वो किसी और तरीके से इनको जिताता था, 2014 में पता नहीं कौन था जिसने इनको जिता दिया और वहीं से ले जाते एक्स्ट्रापोलेट करते हुए अब एसआईआर से इनको ज्ञानेश कुमार जिता रहे हैं ना, तो ज्ञानेश कुमार के चले जाने से ठीक हो जाएगा ए, और दूसरा हिस्सा, इस्तीफा तो ज्ञानेश कुमार को देना होगा, है ना, क्योंकि सरकार तो उनसे इस्तीफा ले नहीं सकती है नैतिक आधार पर, या तो वो इस्तीफा दें और नहीं तो आप लोग जो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे थे पार्लियामेंट में घेरिए।
4: अधीश बैठे हैं वो, और एक वो जिन्होंने पूरे आजादी का आंदोलन एक ही बुनियाद पर लड़ा, एक ही बुनियाद पर कि प्रत्येक नागरिक को एक वोट का अधिकार हो, अर्थात हम अपना स्वराज स्थापित कर सकें। तो मैं कहता हूं कि आज इन दोनों विचारधाराओं की लड़ाई को दरकिनार कर दीजिए। चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं 300 गिनाइए 130 गिनाइए, ये सही था नहीं था गलत था, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं एफआईआर आया जब से कि वोट चोरी हो रहा है, चलिए छोड़िए, तो फिर बात किसकी करें। तो बात आज सर्वोच्च अदालत के सिटिंग जज भुइया साहब की करते हैं, जिन्होंने जो विद्यार्थी कानून की पढ़ाई कर रहे हैं वहां हैदराबाद में एक लेक्चर लिया और उस लेक्चर में ये कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था जिसमें बरतानिया हुकूमत ने सिर्फ कुछ चंद लोगों को 14% लोगों को वोट का अधिकार दिया, ये देख कर कि वो धनपति है कि नहीं है, ये देख कर कि उनके पास संपत्ति है कि नहीं है, ये देख कर कि वो कर देते हैं कि नहीं है, सिर्फ 14% वोट का अधिकार दिया, उस स्तर पर क्या देश को लाना चाहते हैं। उन्होंने रूसो का उदाहरण दिया, फ्रांसीसी क्रांति के जनक रूसो इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर कि वो कहते हैं कि राजा कहता है कि उसे शासन का अधिकार ईश्वर ने दिया, और रूसो की लड़ाई थी कि इस देश की सामूहिक चेतना ने।
0: माननीय दुबे जी 26 पे आ जाए,
4: एक मिनट सुन ली उसी पे आ रहा हूँ, डिबेट पे आ रहा हूँ
0: 26 पे।
4: उन्होंने इस सरकार को आईना दिखाया कि देखिए जो हो रहा है एसआईआर के नाम पर वो अवैधानिक काम हो रहा है। फिर जस्टिस रोहिंगटन नरीमन उन्होंने आईना दिखाया, उन्होंने कहा कि ये मैं दुर्भाग्य है कि 90 लाख वोट वेस्ट बंगाल में काट दिए, फिर भी सुप्रीम कोर्ट को ये बात अट्रैक्ट नहीं कर सकी कि आप इसको स्ट्रक डाउन कर दीजिए एफआईआर की प्रक्रिया को। तीसरा उदाहरण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद 5 अक्टूबर को कहते हैं कि फॉर्म 6 के बदलाव में चीफ जस्टिस या सर्वोच्च अदालत की कोई भूमिका नहीं थी, अगर ये बदलाव किया है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, मैं दस्तावेज जांच करूंगा और जांचने के बाद मैं उम्मीद करता हूं जो दोषी होंगे उनको दंडित करेंगे। फिर आ जाइए दो चुनाव आयुक्तों के पास, जिन चुनाव आयुक्तों ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक भी मीटिंग में 4 माह तक हमको नहीं बुलाया और मनमानी तरीके से फैसले लिए, जो फैसले हमें सोशल मीडिया और मीडिया से पता लगे। फॉर्म 6 का बदलाव जो उन्होंने किया वो अनफॉर्चुनेट था, ये कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा, ईसीआई नेट का एक्सेस नहीं था प्रॉपरली ईआरओ के पास, ये कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा और कैबिनेट सेक्रेटरी ड्यूटी बाउंड है प्रधानमंत्री को बताने का, तो प्रधानमंत्री को आना चाहिए था सामने और कहना चाहिए था कि ये झूठ खबर छापी गई है, मेरे कैबिनेट सेक्रेटरी के पास ऐसी कोई चिट्ठी नहीं आई है। तो ये 4 पुख्ता प्रमाण है जो इसे और इशारा करते हैं कि ये निर्णय अवैधानिक था, और उन्होंने कोर्ट करके कहा कि 27 मई के सर्वोच्च अदालत के फैसले ने उनको फॉर्म 6 के बदलाव को अपहोल्ड करने की बात कही थी, लेकिन ये भूल गए कि उसी फैसले में उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में लिखा है इट इज नॉट अनबाउंडेड एंड मस्ट स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद द एग्जिस्टिंग स्टैट्यूटरी स्कीम्स अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो बदलाव करोगे वो आरपी एक्ट के रूल 1960 के तहत करोगे, तो बदलाव कैसे करते, उनको पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि ये बदलाव चाहते हैं और पार्लियामेंट उसको बदलाव करती तब वो स्वीकार किया जाता, उन्होंने पार्लियामेंट का अधिकार।
0: इस बीच एक खबर आ रही है, आपको बता दें, और इसके बीच एक खबर आ रही है, राहुल गांधी की खबर है दुबे जी, आज के विरोध प्रदर्शन पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है और इसमें उन्होंने राहुल और प्रियंका के दिल्ली पुलिस के साथ जो बातचीत है उसका एक हिस्सा उन्होंने डाला है, देखिए।
5: इसको मत छुओ झंडे को,
6: हम कह रहे हैं डंडा तुम्हारे सर में लग जाएगा,
5: कुछ नहीं लगेगा,
6: डंडा लग गया तो मैंने
5: क्या प्रॉब्लम है?
7: नहीं सर, नहीं सर,
5: बैठा हूँ भाई,
7: नहीं नहीं
5: वहाँ से हटा दिया आपने, यहाँ आ गया हूँ, अब यहाँ से कहाँ ले जाओगे? बस सिर्फ घर जा सकता हूँ और देश में कहीं और नहीं जा सकता,
7: नहीं जा सकते सर,
5: तो कोई और जगह बताओ जहाँ जहाँ बैठ सकता हूँ, घर तो मैं राजनीतिक आदमी हूँ, घर से बाहर बैठना चाहता हूँ, एक जगह बता दो कहीं भी, यू आर आस्किंग एन एमपी टू डू समथिंग दैट इज रॉन्ग, इट इज माई राइट टू सिट, इट इज माई राइट, आई एम इवन टेलिंग यू गिव मी अ प्लेस टू सिट एनी वेयर एक्सेप्ट माई हाउस एंड यू आर सेइंग नो। आप क्या सोचते हो कि राजनेताओं को घर बैठना चाहिए?
7: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर,
8: अगर इस देश का कोई भी व्यक्ति किसी चीज के लिए कुछ प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उसे इजाजत है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है इस देश के लोकतंत्र का, इस देश के संविधान का, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, आप उस संविधान के सिपाही हैं, आप उस संविधान के लिए लड़ रहे हैं,
7: बिल्कुल मैम बिल्कुल,
8: दो लोग जो गद्दी पे बैठे हैं उनके लिए नहीं। इनकन्वीनियंस इज बीइंग कॉज्ड टू द पब्लिक बाय यू बिकॉज यू आर बैरिकेडिंग द होल प्लेस,
5: हमें
8: वी आर ओनली
5: 300 MPs इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए, आपने हमें जाने नहीं दिया, हमारा हक बनता है, हम इलेक्शन कमिश्नर से बात करना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं इस देश में हो क्या, आपने रोका, ठीक है हमने मान ली बात, वहाँ से हटा दिया, हम यहाँ आ गए, हमें वहाँ जाना है
7: सर, उसके लिए आप वहाँ से उनसे अपॉइंटमेंट लेके, जो भी
5: हमने अपॉइंटमेंट दिया है वो दे नहीं रहे।
8: इनकन्वीनियंस कैसे हो रही है पब्लिक, आप बैरिकेड लगा रहे हैं सारी सड़कों पे, कुछ दिनों से जब से प्रोटेस्ट अनाउंस हुए हमारे नहीं सिर्फ स्टूडेंट्स के, आपने पूरी दिल्ली में बैरिकेडिंग लगा रखी है, पूरी दिल्ली की ट्रैफिक बंद कर रखी है, तो इनकन्वीनियंस हम कर रहे हैं, प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं कि आप चुपचाप
5: मेट्रो बंद कर दिया, चले जाएंगे जहां भी बैठाने बैठा, बट बैठेंगे हम, आप डिसाइड कर लो कहां, और अगर यहां बहुत इनकन्वीनियंस हो रहा है तो उठा लीजिए यहां से,
7: या ज्ञानेश जी से अपॉइंटमेंट दिला दीजिए।
0: इस बीच दिल्ली पुलिस की भी तरफ से हमने आपको दिखाया था कैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि एक एआई वीडियो के जरिए दिल्ली पुलिस के बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही थी, भ्रम फैलाया जा रहा था, सेक्सुअल हरासमेंट का कि वो किसी महिला के, और वो पूरा एक फेक एआई वीडियो था। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि सम्मान सबका होना चाहिए। दिल्ली पुलिस की एडिशनल CPPRO IPS नेहा यादव ने यह वीडियो जारी किया है, छोटा सा हिस्सा उसका देख लेते हैं।
9: जो प्रोटेस्ट न्यू दिल्ली एरिया में चल रहे हैं उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन स्टाफ हमने ग्राउंड पे उतार रखे हैं ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए. ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो लेडी प्रोटेस्टर्स होंगी उनको लेडी पुलिसकर्मी ही उनको हैंडल करेंगी. और आप जितने भी आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम रील्स या जो भी यूट्यूब शॉर्ट्स आ रहे हैं कि मेल ऑफिसर्स बिल्कुल भी लेडी प्रोटेस्टर्स को टच भी नहीं कर रहे हैं. उसके बावजूद जो हमारी फीमेल स्टाफ को सहना पड़ रहा है वो वाला दर्शाया ही नहीं जा रहा है प्रॉपरली. आप देखेंगे कि कई जगह पे कुछ जर्नलिस्ट ने ये कवर किया है कि जहाँ पे हमारी फीमेल स्टाफ के साथ बहुत ही बदसलूकी की गई है.
10: महिला कांस्टेबल्स को पब्लिक में खींच के लेके जा रहे हैं, उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं.
11: भैया लड़के अंदर खींच के ले जा रहे हैं एक लेडी ऑफिसर को, कोई तमीज है ये?
10: कपड़े फाड़ दिए,
11: कपड़े छीन रहे सारे उसके कपड़े,
10: सारे कपड़े जो है वो छीनने का प्रयास किया महिला कांस्टेबल्स को.
9: मेल प्रोटेस्टर्स उनको बख्श भी नहीं रहे हैं कि वो ये तक उनको रिस्पेक्ट दे कि वो एक फीमेल है. आफ्टर ऑल वर्दी में हो या बिना वर्दी में हो एक फीमेल की रिस्पेक्ट हमेशा एक फीमेल की तरह ही रहती है. हमारी फीमेल स्टाफ की बहुत सारी इंजरीज हुई हैं, उनके बैजेस उनके यूनिफॉर्म से खींच के लेके गए हैं, उनको क्राउड के अंदर धकेला गया है. ये सब होने के बावजूद हमारे मेल ऑफिसर्स को बचाने के लिए हमारी फीमेल स्टाफ बीच में आ आके प्रोटेस्टर्स के साथ जिद्दोजहद कर रही है. तो प्रोटेस्ट न्यू
0: आइए चर्चा की शुरुआत वापस से करते हैं कि आप इसीलिए मैं आपको इस चर्चा में आज शामिल करना चाह रही थी विक्रम सिंह साहब, क्योंकि अब इसको लेकर भी पूरा बवाल है और पुलिस के खिलाफ भी हर कोई देख रहा है किस तरह से वहां पर बात हो रही है कि भाई वो प्रदर्शनकारियों पर हमलावर हैं, फिर प्रदर्शनकारी उन पर किस तरह की बातें कर रहे हैं वो भी दिख रहा है. दुबे जी का ठीक कीजिएगा, उनका लगता है कुछ गड़बड़ हो गया. हाँ विक्रम सिंह साहब.
12: अंजना जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस को नमस्कार. मेरी बड़ा लंबा सेवा काल पुलिस में रहा है, लेकिन जो अहिंसा और जो जब्त और जो बर्दाश्त का वादा दिल्ली पुलिस ने दिखाया है मैंने अपने जीवन में न देखा है न सुना है. जंतर मंतर में 250 पुलिस अधिकारी कर्मचारी पिटे थे लेकिन कोई FIR नहीं. महिला पुलिसकर्मी इस बार भी जो आंदोलन हुआ उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ और जितने भी टूल्स शरारत के हो सकते हैं AI मॉडल बना बना करके नदीम ने जो एक है नई दुनिया उसका जो एक यूट्यूबर है उसने इस तरीके की खुराफात की. मैं उम्मीद करता हूं अंजना जी कि उसके ऊपर NSA और UAPA लगेगा. मैं ये कहता हूं कि पूरा आंदोलन अगर पुलिस अपने पे आ जाती, अगर अपने पे आ जाती कानून की परिध में रहते हुए तो बहुत लंबा वक्त नहीं लगता इसको नियंत्रित करने में. लेकिन आप बसिद हैं, आप चाहते हैं, इसीलिए दिल्ली पुलिस की दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी. आज उनके हाथ में लाठी भी नहीं है और उन्होंने बॉडी कैमराज लगाए क्योंकि इनकी पेशबंदी, पुलिस भाषा में इसको कहते हैं पेशबंदी, और जिस अनरिटन कोड को ये कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए. द स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोलेटेरियट बाय द बूर्जुआ. In any education, the police are its agents. ये इनकी philosophy है कि police उनके agent है. और in any agitation, the agitator is always right and the police always right. जो आंदोलनकारी है सदैव सही और पुलिस सदैव गलत. इस अवधारणा जब आप चल रहे हैं तो दिल्ली पुलिस ने बहुत जब्त का मादा दिखाया है, लेकिन कह रहे पेलेट गन के ऊपर FIR कर दी जाए. जरूर होनी चाहिए FIR, लेकिन FIR 250 जो पुलिसकर्मी दिल्ली के घायल हुए हैं उन पे होनी चाहिए. SC ST अधिकारी जो विवेक भगत है उसके ऊपर जिसने आक्रमण किया है उनके ऊपर SC ST का होना चाहिए, चाहे नेता कोई भी हो. और अगर सजा हो गई तो राजनीति भूल जाएंगे आप लोग, इसलिए ऐसा कुछ ध्यान रखिए.
0: ACP विवेक भगत का ही जो ये AI वीडियो फेक था विक्रम सिंह साहब, नदीम जिसको अरेस्ट किया गया है उसका भी फोटो दिखा दीजिए, उसकी फोटो इसी ने फेक वीडियो बनाया, AI वीडियो बनाया. मतलब वो वीडियो कोई भी देखे तो एक तो पकड़ना मुश्किल है कि फेक है, AI है, AI जनरेटेड है, पूरा AI जनरेटेड. और उसके बाद से मतलब कोई भी देखकर उसको परेशान हो जाएगा और बहुत आक्रोशित हो जाएगा. तो जानबूझकर हिंसा और उकसाने की मंशा से DGP साहब बनाया गया. विक्रम जी बात पूरी कीजिए सर.
12: पूरी तरीके से, और मैंने औरों से कहा था कि और कोई ना, क्योंकि सरकारी नौकरी में रहते हुए मर्यादा में रहना पड़ता है, लेकिन और कोई हो ना हो मैं और तमाम सैकड़ों रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर इस केस के कंप्लेनेंट बनने के लिए तैयार हैं, SC ST Act के मुद्दे बनने के लिए. यह तमाशा काफी देर तक हो चुका है. आपने SC ST का तावीज बना के बहुत बांटा, लेकिन क्या पुलिस के जो SC ST के ऑफिसर्स हैं उनके कोई अधिकार नहीं है? नदीम ऐसे अपराधी के सारे अधिकार हैं. आपने एक तरीके से इसको मनबढ़ को बना करके AI ये जो दस्तावेज, इसको आखिर इतना टैलेंट अगर आया है, मैं इस बारे में टिप्पणी करूंगा लेकिन मैं संस्तुति करूंगा UAPA और NSA का ये हकदार. अब मैं चाहता हूं दिल्ली पुलिस की एक स्ट्रैटेजी है, दिल्ली पुलिस अच्छी प्रोफेशनल पुलिस है, देश की राजधानी में है, उसने बड़े जब्त से काम लिया, लेकिन यही मालूम पड़ा कि 4 FIR और 18 गिरफ्तारियां आज की इंस्टेंस में हो चुकी हैं। मैं चाहूंगा कि वीडियोग्राफिक रिकॉर्ड्स रखें, केस खूब रजिस्टर करें, SC ST एक्ट में विवेक भगत के केस में भी करें, और इसमें जिन लोगों ने कहा है धारा 3 SC ST एक्ट आप लोग जरा गूगल करके देख लें, non-ST ST अगर इस तरीके की हरकत करेगा लंबी सजा है और कन्विक्शन होने के ऊपर फिर लाले पड़ जाएंगे राजनीति करने के। आप पुलिस को बड़े हल्के में ले रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये आपका लुकआउट है, क्योंकि आपकी एजुकेशन में पुलिस मुलजिम है, बनाइए मुलजिम, और पुलिस मुलजिम बनने ही के लिए है, लेकिन आप ये समझ लें पैलेट गन चल गई तो आप समझ रहे वो है, तो पुलिस क्या करती, 250 तो आपने कूट लिए, अब और क्या चाहते हैं, कितनी सैक्रिफाइस आप पुलिस की और चाहते हैं, तब आपकी अंतरात्मा तृप्त होगी। आप आंदोलन करें शांतिपूर्ण, और आपकी शांतिपूर्ण आंदोलन की जो परिभाषा है, आपने एक एक तार तार करके एजिटेशन जो आपको मिला था परमिशन आपने उसको तोड़ा, कौन सा शांतिपूर्ण है, 250 पुलिस अधिकारियों को कूटा, कौन सी शांतिपूर्ण है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, और गालियों की तो ऐसी, अगर ये गालियां मिला दी जाए तो एक नई कविता कॉमेडी बन जाएगी कि गालियों के नए आयाम। हम लोगों ने भी बहुत गाली देखी अपने कैरियर में, लेकिन जो गालियां आ जाए हमें तो लगता है अंजना जी एक एक गाली पे एक पुरस्कार रखा था, कि अगर सामान्य गाली है तो उस पे 200 रुपए, माँ बहन की गाली तो 1000 रुपए, और इसके अलावा भूहड़ गाली दी तो 5000 रुपए। वरना ये लोग रील बनाने के चक्कर में और वहां पिकनिक तमाशे को देख करके माल मुफ्त, दिलीप बेरहम स्टारबक्स की कॉफी और डोमिनोज के पिज्जा मुफ्त के आ रहे हैं। ये चूंकि सोरोस का $2.5 बिलियन आया है, 3 मिलियन का हिसाब मिला है, $3,000 मिलियन का हिसाब नहीं मिला, वो यहीं जा रहा है, देश के ऊपर खतरे की साजिश है, और इसको जरा समझ ले सब लोग, आंदोलन सबका अधिकार है, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि जो चीज राष्ट्र हित में नहीं है वो किसी के हित में नहीं है, ना पुलिस के, ना आपके।
0: आज ऐसी औबत आ गई है, अभय जी जवाब दीजिए उनकी बात का, कि पुलिस वालों को, और हालांकि विदेश में ये हमेशा होता है, सबको अब यहाँ पर बॉडी कैम लगाकर उनको वो खो रहे, क्योंकि जिस तरह से पास में जाकर अपशब्द बोले जा रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता आप इसको किस तरह से देखते हैं दुबे जी, लेकिन उसको सही भी नहीं ठहराया जा सकता है। जितना गलत है पुलिस वालों का बर्ताव, अगर विरोध प्रदर्शनकारी पर वो कुछ भी हमला करते हैं, पर दूसरा पक्ष भी तो है, और आज ये नौबत आ गई है।
13: अंजना जी, लग रहा था कि 1947 के पहले के भारत में डिबेट कर रहे हैं। विक्रम सिंह जी, मार दीजिए हमारे सीने में गोलियां, कितनी गोलियां हैं आप लोगों के पास, अमित शाह की पुलिस के पास, मोदी के तानाशाही रवैये के पास, कितनी सलाखें हैं जेल में, हम लोगों को, लोग प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको बैठकर आप धमका रहे हैं कि आप बचेंगे नहीं। अरे राहुल गांधी तैयार है सीने पर गोली खाने के लिए, हम प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या पत्रकार जो धरने पर बैठे थे, महिला एक पत्रकार ने कहा, सैकड़ों पत्रकार धरने पर बैठे थे, वो AI और फेक वीडियो था, आज तक ने बताया पत्रकार धरने पर बैठे हैं। 2 बेटी पत्रकार सिर्फ इसलिए थाने में बुलाकर मारेंगे कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री से सवाल पूछ लेंगी, बर्बरता से मारेंगे, उनका हक और अधिकार नहीं है। पुलिस हमारे प्रोटेक्शन के लिए अच्छे संबंध स्थापित करें, हमने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन ये निर्देश अमित शाह जी ने दिया कि पैलेट गन चलाइए, चलाए कि नहीं चलाई, AK-47 तक चलाई, बर्तानिया हुकूमत में भी AK-47 नहीं चलाई गई थी।
0: सुधांशु
13: जी, क्या मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं,
0: एक वोट का, 13 करोड़ और अमित जमाई जी के पास है,
13: मुंह पर ताला लगा कर बैठ जाएं।
0: विक्रम जी, विक्रम, अच्छा विक्रम जी एक रिस्पांस देना चाह रहे हैं, विक्रम जी
13: की लड़ाई लड़ेंगे, जितनी सीने जितनी गोलियां हैं आपके पास मार दीजिएगा हमारे सीने।
12: अंजना जी, मैं राजनीतिक मित्रों का बड़ा सम्मान करता हूं, और ओजपूर्ण वक्तव्य जिसमें ऊर्जा स्फूर्ति का पूरा संचार था उसको नमन करते हुए, पुलिस जनता की नौकर है और पुलिस जनता की सेवा के लिए है, लेकिन सेवा की परिभाषा सेवा की तरह करें, आप चाहे मनमानी करें, पुलिस की कुटाई करें, हमारी महिला पुलिस अधिकारियों की बेइज्जती करें, उनके कपड़े फाड़े, कहें बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, तो हमारी आपकी परिभाषा में बड़ा अंतर है और जनता देख रही है, आपके ओजस्वी वक्तव्य से आवाज ऊंचा करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी।
0: सुधांशु जी,
3: हाँ पहली बात तो मैं अभय दुबे जी से कहना चाहूंगा,
0: सर एक खबर और आ रही है राहुल गांधी पर, एक सेकंड, राहुल गांधी पर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा हमला, राहुल की खींच कुंठा में बदल रही है, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं लोकतंत्र में विरोध की मर्यादा होती है, सुनिए। धमकी से वो लोगों के दिलों से पीएम को नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन आज का जो धरना प्रदर्शन है सुधांशु जी, अब बैठे हुए सब शांति से बैठे हुए हैं, सुधांशु जी।
3: हाँ, पहली बात तो मैं अभय दुबे जी की बात का जवाब दे दूं। ये कह रहे थे हम 1947 से पहले के भारत में चले गए, तो मैं पूछना चाहता हूं 1947 से पहले का कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष या इसके समकक्ष स्तर का कोई राष्ट्रीय नेता बताइए जिसको गोली खाई हो चैलेंज करके। मगर 47 के बाद क्या हुआ? यही जहां दिल्ली में बैठे हैं वहां गोरक्षक संतों पे 7 नवंबर 1966 को तान तान के गोलियां मारी गई हैं। भारत की संसद में कहा है रामगोपाल जी ने कि कार सेवक चढ़ तो गए थे मगर निशाना लगा लगाकर गोली मारी गई, गिरे। और मुलतई की फायरिंग याद है ना, और यहां पर सत्यप्रकाश मिश्रा जी बैठे हैं, नेहरू जी के जमाने में बिहार में 300 से अधिक लोगों को फायरिंग के द्वारा मारा गया था। और जो कुछ इमरजेंसी हुआ छोड़िए, उसके मुकाबले आज पुलिस जिस प्रकार से संयम बरत रही है, और ये पार्टी, अरे इसे तो शर्म आनी चाहिए, जो आतंकवादियों के लिए आंसू बहाते हैं, बटाला उस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू बहाते हैं, और भारत के सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहते हैं। यानी आज राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि उनके मुंह से जो निकला था कि उनकी लड़ाई अब इंडियन स्टेट से है, तो वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं और भारत में अराजकता उत्पन्न करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं।
0: 26 पर मैं आना चाहिए सत्यप्रकाश मिश्रा जी।
13: अंजना जी,
0: क्या अरे लोकतंत्र के लिए देखिए,
13: आप जब इंडिया गठबंधन
0: बना रहे थे नीतीश कुमार, रुकिए सर, बाकी दो लोग थोड़ा ना चेहरा देखने आए, हम दोनों, हम तीनों का। सत्यप्रकाश जी, जब नीतीश बाबू भी बड़ा इंडिया गठबंधन बना रहे थे तो भाई सरकार हटाओ ही बना रहे थे, मोदी हटाओ ही बना रहे थे ना, लोकतंत्र लूट रहा था ना उस वक्त। तो अब सड़क पर अगर विपक्ष उतरा है तो क्या गलत है? ये अलग बात है, आप इधर आ गए हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिए अगर वो उतर रहे हैं, क्या दिक्कत है?
14: क्या नीतीश कुमार जी ने 45 साल की अपनी राजनीति में या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनमत का कभी अपमान किया? किसी को वोट दिया जनता ने, जिसको चुना उसको सम्मान दिया। और कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी आकाशवाणी में बैठे हैं कि चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते हैं, मेरा चुनाव आयुक्त जी से निजी एक आग्रह है, राहुल गांधी जी को एक अच्छा चॉकलेट, डार्क चॉकलेट का एक अच्छा चॉकलेट भिजवाइए, थोड़ा मूड ऑफ चल रहा है उनका, क्योंकि वो झूठ पे सवार है। जब जनता ने दिया नकार है तो झूठ पे वो सवार है, संविधान को वो करता रहा था।
0: एक सजेशन और दे दीजिए सत्यप्रकाश जी, सुनिए ना, आपके तो नाम में ही सत्यप्रकाश है, तो सच बोलने से क्या डरना है?
14: नहीं, नहीं डरना, बताइए।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त उनके घरों में क्या भेजे जिनका वोट कटा है, वो भी सजेशन दे दीजिए।
14: मैं मानता हूं कि अगर किसी का वोट कटा है तो मुख्य चुनाव आयुक्त का दफ्तर 24 घंटे खुला रहे कि मेरा वोट वहां रजिस्टर हो, 24 घंटे काउंटर खुला रहे।
0: वो मुख्य चुनाव आयुक्त के दफ्तर में आए?
14: नहीं, कहीं भी आए वो उसको एक्सेस कर सके,
0: बाढ़ बरेली के गांव से वो
14: एक्सेस कर सके, मुख्य चुनाव आयुक्त का नंबर हो, ये टोल फ्री नंबर है जनाब, मेरा वोट कट गया है, और ये मुख्य चुनाव आयुक्त का दायित्व होगा कि उसको वोट उसका बनाए, बिल्कुल बनाए, ये संविधान सम्मत है। लेकिन जिन लोगों ने संविधान को तार तार कर पिछले 1957 में से बूथ चोरी और कब्जा किया, वो बूथ लुटेरे आज हमें उपदेश दे रहे हैं, हमारे जनमत का अपमान कर रहे हैं कि 3 बार एक चाय वाले का बेटा इस देश में प्रधानमंत्री बन गया तो कह रहे कि गोली कर चला देंगे। अरे गोलियां तो आपने छात्रों पर चलाई हैं, अभय दुबे उसमें आप राजनीति में नहीं होंगे। अब एक सवाल है कि राहुल गांधी की मंशा क्या है? वो प्रतिस्पर्धा में कभी दीपके जी के, कभी अखिलेश जी के, कभी ये आम आदमी पार्टी पंजाब वाले के, उनकी राजनीति बची खुची रहे तो कोई तो डमरू बजाएंगे। मेरा एक पॉइंट है, वो झूठ पे सवार है और झूठ की राजनीति में अराजकता का घोल है, वो अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो गांधी परिवार सर नेम लेके घूम रहा है गांधी का, देश में सत्ता हिंसा नहीं अराजकता। अरे राहुल गांधी जी इतने नीचे मत गिरिए, राजनीति सब कोई करेंगे, इस देश रहेगा, लोकतंत्र अमर रहेगा, लेकिन चुनाव आयुक्त को इस तरह कहेंगे कि
13: जस्टिस भुइया झूठ बोल रहे हैं,
14: बढ़िया है, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहां बहस जारी है,
13: जस्टिस नरीमन झूठ बोल रहे हैं,
14: मान लेंगे अगर राहुल जी, तो मैं राहुल जी को थैंक यू कहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश को माना नहीं उन्होंने कभी, उसको भी दुत्कारा है, चाहे रफाल हो, पेगासस हो, चाहे वोट चोरी का पहले SIR हो, क्या देश में SIR नहीं होगा अंजना जी?
0: SIR होगा,
14: होगा ना,
0: ये तो ये ग्लिच आ गया
14: राहुल गांधी के घर। अच्छा एक सवाल, राहुल
0: गांधी डिजिटल ग्लिच के हवाले थोड़ी ना ले, इलेक्टोरल रोल ऑफ इंडिया आप छोड़ दीजिएगा,
14: बिल्कुल
0: थोड़ी होता है,
14: बिल्कुल नहीं छूटेगा। अगर 2.5 करोड़ से ज्यादा मत जोड़े गए हैं, मरे जो लोग थे उनको हटाए गए हैं,
0: वोट नहीं डाल पाए,
14: नहीं डाल पाए तो उस पर एक राय सुप्रीम कोर्ट की आई, चुनाव रोक देना था सुप्रीम कोर्ट को, हमने मना किया था सुप्रीम कोर्ट जी कि चुनाव मत रोकिए, बढ़ा देते
0: अमित जमे जी, अमित जमे जी,
14: लेकिन उन्होंने चुनाव समय पर कराया, SIR हुआ।
0: अमित जमे
14: एक मिनट, केरल वालों में SIR बहुत सही है, कि वहां फर्जी कम्युनिस्ट लोगों ने वोट बना लिया था, कांग्रेस के वाह वाही में
0: जमाई जी को बोलने दीजिए, टाइम खत्म हो रहा है जल्दी से,
14: टाइम तो खत्म हो गया जी। राहुल गांधी जी ने बैठे हुए ऐसी यात्रा की है,
0: बुलेटिन खत्म हो गया, होते 9 घंटा हो जाएगा,
14: समझ गया उनका नहीं, चॉकलेट भिजवाना चाहिए चुनाव सरकार ने, बहुत जरूरी है।
0: अमित जमाई जी
13: टीचर लगी थी तो
15: जी पूछिए।
0: अखिलेश जी भी आए थे आज आंदोलन में इस वक्त, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी आंदोलन आगे कर रही है, मकसद क्या है? मतलब आज जो अखिलेश जी बोले उसमें वो बोले कि बीजेपी भी हटेगी और ये भी हटेगी, भाई चुनाव से ही जीतना पड़ेगा, भारत में तो अभी तक यही सिस्टम चल रहा है कि चुनाव से ही सरकार बनती है।
15: देखिए देखिए अंजना जी,
0: हाँ,
15: गुलाम हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज के जमाने में कुछ संभ्रांत लोगों को वोट देने का अधिकार था। गांधी नेहरू लोहिया की इस विरासत ने, भगत सिंह की शहादत ने हमारे देश के लोकतंत्र को, हमने स्वाधीनता हासिल करने के बाद देश के हर नागरिक को गिना गया और उसको वोट देने का अधिकार मिला। बंगाल में आपने जब 80 से 90 लाख लोगों को संदिग्ध कर दिया, चुनाव आप जीत गए, कहा कि लेटर कागज पत्र लेकर
0: लोगों को?
15: आप जब आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव में,
0: हाँ,
15: जब आपने वहां पे संदिग्ध वोटर्स के नाम अलग किए,
0: हाँ,
15: आपने कहा कि आपके नाम में जेर जबर सही, मात्राएं सही नहीं है, पिता का नाम चेक करवा लीजिए, तो लाखों लोगों ने जिनको वोट देने का अधिकार था वो वोट देने तक नहीं पहुंच सके और भाजपा ने सरकार बना ली। तो आप पूरे देश में इलेक्शन कमीशन के जरिए इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं। हम ये पूछ रहे हैं ज्ञानेश कुमार को जिन बातों का जवाब अखिलेश जी पूछ रहे हैं देना चाहिए, सुधांशु त्रिवेदी जी को कौन सी नौकरी मिल गई है? इलेक्शन कमीशन के भी प्रवक्ता बनेंगे? अगर हिम्मत है ज्ञानेश कुमार में, देश का एलओपी पूछ रहा है, मेरे नेता माननीय अखिलेश जी पूछ रहे हैं, सामने आओ ज्ञानेश कुमार और ये बताओ दशरथ के फॉर्म पे 100 फॉर्म उसके नाम पे कैसे भरे गए, ये बताओ।
0: सुधांशु जी, आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बोगस राशन कार्ड के इतने करोड़ हैं, मनरेगा लाभार्थी में जिन मामलों में फर्जी नाम काटे गए हैं, ये सब बीजेपी की तरफ से क्यों आ रहा है? चुनाव आयोग पीसी करे सुधांशु जी।
3: हम भी साफ कहना चाहते हैं,
0: हाँ,
3: अंजना जी,
0: हाँ,
3: कांग्रेस जब बोलती है तो हम जवाब देते हैं। और सुनो अमित जमाई, ये बताओ राहुल गांधी को किसने ठेका दे रखा है जो आके बैठा हुआ है यहां पे? ये तो देश को सवाल पूछना चाहिए। हम लोगों ने हमेशा जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कांग्रेस ने बयान दिया, हमने उसके जवाब में दिया है। मगर राहुल गांधी, तुम नौकरी की बात कर रहे हो ना मेरे भाई, राहुल गांधी को ठेका किसने दिया हुआ है? और मेरा एक और सवाल है,
0: आपके बीच में किसी ने नहीं बोला जमाई साहब, बोलने दीजिए उनको।
3: देश की एक संस्था बताइए जिसपे राहुल गांधी ने आज तक आरोप न लगाया हो 12 वर्षों में, और एक आरोप बताइए जिसको लॉजिकली प्रूव कर दिया हो।
14: संस्था बताइए जिसपे आपने कब्जा नहीं किया हो,
0: बताइए
14: एक संस्था बताइए जिसपे आपने कब्जा नहीं किया हो।
0: सुधांशु जी, हर संस्था पर आपका कब्जा है, आपने कब्जा नहीं, जल्दी जल्दी 2 लाइन सिर्फ सुधांशु जी, टाइम खत्म हो रहा है।
3: अरे भाई, कब्जा ही आपका दावा है, आपने साबित किया हो तो बताइए कौन सी संस्था पे आप बिना वजह की बात करते हैं। मैंने कहा चलिए सेना पे हमारा कब्जा है, क्या आपने सेना पे झूठ बोला, आपने एयरफोर्स पे झूठ बोला, आपने वैक्सीन पे झूठ बोला, कोई वैक्सीन भी भारत सरकार की थी क्या? वैक्सीन में ये हो गया वो हो गया, इस तरह की बात आपने रफेल पे बोला, चौकीदार चोर है और उसके ऊपर माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट से,
14: रफेल में भी झूठ नहीं बोला और रफेल में गलत एफिडेविट आपने दिया।
0: चलिए ठीक है, वक्त इतने की इजाजत देता, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज रात 9 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ, ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बताएंगे कि जब दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का धरना जारी है तब क्या सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से ही भरोसा लौटेगा। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या मछली के जाल से ड्रोन हमले रोकेगा पाकिस्तान, ऐसा कर रहा है वो। और आखिर में आपको बताएंगे कि प्रेमानंद महाराज के केलीकुंज आश्रम को लेकर आखिर विवाद है क्या, देखते रहिए आज।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
18: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
19: जीके मैक्स।
20: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
19: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
20: जेके वॉल मैक्स।
19: बेस्ट पेंट
20: जेके मैक्स।
19: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
3: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
4: इट्स अ माय वे।

0: क्या प्यार उनका बात सर एक बार दो तो ठुमका लगाने बस
1: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या
1: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
2: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
5: कौन सी बनानी है
6: यार लोन भूल गया मैरी
7: इट्स
6: जस्ट अ गुड बैंक ना
8: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
6: स्मॉल
8: वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
9: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
6: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
10: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना वहाँ खाया शहद पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना कश्मीर ही यहाँ आ गया।
11: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद लायन कश्मीर हनी
10: असली शहद असली स्वाद।
12: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
13: गैसो फास्ट 27%
12: इनो 9.2%
14: गड़बड़ है।
15: आहा गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफा इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
16: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
3: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
4: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: In association with Signature Finest Cardamom Seeds,
9: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार दो थमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: चुनावी गड़बड़ी के आरोप और CEC ज्ञानेश कुमार के विरोध के बीच ये विपक्ष के साझा आक्रोश की तस्वीरें हैं। इंडिया गठबंधन के मार्च में विपक्षी एकजुटता दिखी, जबरदस्त तनातनी हुई, मार्च बढ़ने के साथ साथ पुलिस से तकरार की तस्वीरें भी सामने आई। इंडिया गठबंधन का साझा मार्च संसद के मकर द्वार से निकला, तैयारी थी चुनाव आयोग के दफ्तर की घेराबंदी की। मार्च बढ़ा, नेताओं के जुटने का सिलसिला शुरू हुआ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सियासी हमले तेज हो गए। इंडिया गठबंधन के मार्च को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती थी। आकाशवाणी केंद्र के पास मार्च को रोका गया तो राहुल गांधी बैरिकेड पर चढ़ गए। कुछ और विपक्षी सांसद भी इस विरोध में राहुल का साथ देते दिखे। बढ़ती तनातनी के बीच पुलिस ने नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। राहुल प्रियंका हिरासत में लिए गए, अखिलेश को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन उस समय हंगामा और बढ़ गया जब राहुल पुलिस की हिरासत से निकलकर आकाशवाणी केंद्र में चले गए। हंगामा जारी रहा, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष हमलावर दिखा। लेकिन इस मार्च के बीच बड़ा सवाल ये, सड़क पर छिड़े इस संग्राम से विपक्ष को हासिल क्या हुआ? क्या विपक्षी एकता के इस मार्च के जरिए चुनावी गड़बड़ी का संदेश सीधे जनता तक जाएगा? क्या विपक्षी एकता से चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ेगा? क्या आने वाले दिनों में देश भर में जिस तरह के विरोध प्रदर्शन का प्लान तैयार किया गया, इस मार्च से उसे और धार मिलेगी? क्या 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली को इस विरोध प्रदर्शन से और ताकत मिलेगी? इंडिया गठबंधन के दल चुनाव आयोग पर हमलावर है, वहीं बीजेपी हर हमलों का जवाब दे रही है। इस मार्च को राहुल गांधी को लॉन्च करने की फिर नाकाम कोशिश बता रही है। चुनाव आयोग पर आरोपों के बीच रण बढ़ता जा रहा है, संग्राम सड़कों पर छिड़ा है, सरकार और विपक्ष के बीच हमले तेज हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीईसी से मिलने पर अड़े राहुल गांधी, आकाशवाणी में धरने पर बैठे हैं, कहा ज्ञानेश से मुलाकात से पहले हिलेंगे नहीं हमारे सांसद। विपक्ष पर बीजेपी का बड़ा हमला, 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल पर साधा निशाना, देश में माहौल बिगाड़ने का लगाया आरोप। नंदीग्राम उपचुनाव में शाम 5 बजे तक 80% मतदान, रेजीनगर में लोगों ने डाले वोट, तमिलनाडु पुडुचेरी में भी तेज वोटिंग। छोटे कारोबारियों के लिए मोदी सरकार का गिफ्ट, 10,000 करोड़ के निवेश का ऐलान, एसएमई ग्रोथ फंड बढ़ाने पर भी जोर। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख। शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी का धरना प्रदर्शन जारी है। करीब 7 घंटे से राहुल समेत कांग्रेस के आला नेता धरने पर बैठे हैं। दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में प्रियंका, पवन खेड़ा समेत कई नेता मौजूद हैं। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो ज्ञानेश कुमार से मिले बिना नहीं जाएंगे। राहुल गांधी का कहना है कि ज्ञानेश कुमार उनसे मुलाकात करें और उनके सवालों का जवाब दें, और जब तक ये मुलाकात नहीं होगी तो वहीं धरने पर वो बैठे रहेंगे।
1: ऑपोजिशन के सारे सांसद 300, एक सेकेंड, 300 सांसद सपोजिटली फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं, हमें मिलने नहीं दे रहे हैं। हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, एसआईआर के बारे में पूछना चाहते हैं, बंगाल के बारे में पूछना चाहते हैं, हरियाणा के बारे में पूछना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में पूछना चाहते हैं, महाराष्ट्र के बारे में पूछना चाहते हैं, वो जवाब नहीं देना चाहते। अगर उन्होंने वोट चोरी नहीं की होती तो एक मिनट में वो हमसे मिलने के लिए तैयार हो जाते।
0: मेरी सहयोगी मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, राहुल गांधी ने अपना इरादा दिखा दिया है कि वो वहीं पर रहेंगे, तो क्या ये माना जाए कि उनके साथ साथ कांग्रेस के जितने सांसद हैं वो लोग भी वहीं पर रहेंगे, और ये कब तक ये प्रोटेस्ट और धरना चलेगा?
2: देखिए, यहां से कांग्रेस ने ये संदेश दिया है, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं धरना तो तब तक चलेगा जब तक मुलाकात नहीं होती सीईसी और ईसी से। अब यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के तमाम कुछ सांसदों की हम देख रहे हैं वापसी हो रही है, सुबह यहाँ थे। तमाम ऐसे सांसद हैं जो अभी भी डिटेंशन में हैं कहा जा रहा है कांग्रेस के मुताबिक, और यहाँ पे अभी देखा कि महुआ मोइत्रा, डेरिक ओब्रायन, ये लोग आकाशवाणी भवन पहुँचे हैं। एक तरफ ये भी चर्चा जोरों पर है कि बातचीत हो, मुलाकात हो, इसको लेकर भी कवायद भीतर खाने हो रही है, क्योंकि आप देखिए जिस सड़क पर हम खड़े हैं ये सुबह से सड़क बंद है, ये सड़क संसद जाती है, ये सड़क चुनाव आयोग जाती है। तो मारिया, लगातार यहाँ पे कोशिश दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से हो रही है कि ये गतिरोध खत्म हो, लेकिन राहुल गांधी ने जो अपना स्टैंड लिया है उससे वो टस से मस नहीं हो रहे कि हमारी मुलाकात होगी तभी हम यहाँ से जाएंगे।
0: लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है मौसमी कि राहुल गांधी ने अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं किया है एक मुलाकात का, तो क्या कांग्रेस की तरफ से कोई चिट्ठी गई है इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की?
2: देखिए, बड़ा दिलचस्प है मारिया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरह की खबर आती है कि कोई बात नहीं की गई है, यानी कि कोई चाह रहा है कि बात हो जाए या कोई दरख्वास्त आ जाए। ये मैसेजिंग का पूरा खेल होता है, और जब आप बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे बैठे हुए हैं पूरे दिन, 8 से अब 9 घंटे हो गए, तो अपने आप में दबाव की राजनीति जो है वो एक तरीके से यहाँ पे विपक्ष द्वारा खेली जा रही है, और अब इधर इधर उधर से मैसेजिंग जो है वो शुरू हो गई। मेरा ये मानना है कि हो सकता है जो बातचीत का दौर चल रहा है पर्दे के पीछे बातचीत, प्रियंका गांधी इसमें काफ़ी फ्रंट फुट पे खेलती हुई नजर आ रही हैं। सारी मीडिएशन, मध्यस्थता, अलायंसेस पार्टनर्स से बात करना, अखिलेश यादव को भी फोन गया है, हालांकि बताया जा रहा है कि वो लखनऊ वापस चले गए हैं, तो वो सब काम प्रियंका गांधी सूत्रधार है इस पूरे धरने का, राहुल गांधी के साथ बैठी हुई है।

0: उस पर भी हम देख रहे हैं कि कुछ पहल हो सकती है।
1: मौसमी अखिलेश यादव इस विषय पर क्या बोल रहे हैं, सुना देते हैं दर्शकों को।
2: आखिरकार चुनाव आयोग कर क्या रहा है, किसके सहारे पे काम कर रहा है? चुनाव आयोग को निष्पक्ष काम करना चाहिए। उनका काम है वोट बढ़वाना और अपना व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम इतना तो दुरुस्त रखें जिससे कि आम लोगों को परेशानी और तकलीफ ना हो। और आपको बीजेपी के इशारे पे काम नहीं करना चाहिए। भाई हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी हमारे खिलाफ बोल रही है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका है कि नहीं है? और फिर बीजेपी को इतने बड़े बड़े कार्यालय बनाने की जरूरत क्या थी? कई बार कहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जहां बैठते हैं वहीं पर एक फ्लोर ले लेते, वहीं से काम चलाते रहते। इलेक्शन कमिश्नर और वहां के अधिकारी मिलकर ये कर रहे हैं कि जो बीजेपी का सदस्य है वो वोटर है, जो बीजेपी का सदस्य है वही भारत का नागरिक होगा। ये कहां से शुरू हो गया ये चीज? इसीलिए सब विपक्ष के लोग सरकार के खिलाफ थे, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।
3: सर बीजेपी कह रही है कि 3 की बात कर रहे थे, अब 403 का दावा कर रहे हैं, आगामी चुनाव में इसका जवाब मिले।
2: देखिए अभी भी धरना चल रहा है और बरगद पेड़ के नीचे चल रहा है, सुना है तस्वीरें आई है कुछ बरगद पेड़ की। अब समझ लीजिए बीजेपी को बचाव नहीं करना चाहिए। हम सब विपक्ष के लोग अगर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोले हैं तो बीजेपी सामने क्यों आ रही है? बीजेपी इसलिए सामने आ रही है क्योंकि बीजेपी उन्हीं के माध्यम से मैनिपुलेशन करते हैं।
4: तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को कहना है कि जो एफआईआर का विरोध हो रहा है वो विदेशी ताकतों की साजिश है।
2: अरे भाई नंदलाल और दशरथ उन्होंने हमारी मदद की, द्वापर और त्रेता युग के लोगों ने हमारी मदद की। नंदलाल और दशरथ लखनऊ में, नंदलाल हमारे सुल्तानपुर में। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी चुनाव जो हमारा देखते हैं इलेक्शन कमीशन, उनसे कहिए कि जहां ये पकड़े गए इलेक्शन कमीशन लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने। ना नंदलाल निषाद विदेशी हैं, ना दशरथ विदेशी हैं, जिनके वोट काटे गए वो सब पीडीए हैं। ये पीडीए के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं क्योंकि वो गरीब है, गांव में रहते हैं, बहुत सी जानकारी नहीं है, फॉर्म कहां से भरे, कागज नहीं है। तो उनके प्रति उनको लिबरल होकर के काम करना चाहिए।
1: आज के विरुद्ध प्रदर्शन पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है, देखिए।
5: इसको मत छुओ झंडे को।
6: हम कह रहे हैं झंडा तुम्हारे सर में लग जाएगा,
5: कुछ नहीं लगेगा। क्या प्रॉब्लम है?
7: नहीं सर, प्लीज सर
5: बैठा हूँ भाई। वहाँ से हटा दिया आपने, यहाँ आ गया हूँ। अब यहाँ से कहाँ ले जाओगे? बस सिर्फ घर जा सकता हूँ और देश में कहीं और नहीं जा सकता। तो कोई और जगह बताओ जहाँ बैठ सकता हूँ। घर तो मैं राजनीतिक आदमी हूँ, घर से बाहर बैठना चाहता हूँ। एक जगह बता दो कहीं भी। यू आर आस्किंग एन MP टू डू समथिंग दैट इज रॉन्ग। इट इज माई राइट टू सिट। इट इज माई राइट। आई एम इवन टेलिंग यू गिव मी अ प्लेस टू सिट एनी वेयर एक्सेप्ट माई हाउस एंड यू आर सेइंग नो। आप क्या सोचते हो कि राजनेताओं को घर बैठना चाहिए?
7: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर।
8: अगर इस देश का कोई भी व्यक्ति किसी चीज के लिए कुछ प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उसे इजाजत है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है इस देश के लोकतंत्र का, इस देश के संविधान का। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। आप उस संविधान के सिपाही हैं, आप उस संविधान के लिए लड़ रहे हैं।
7: बिल्कुल मैम, बिल्कुल।
8: दो लोग जो गद्दी पे बैठे हैं उनके लिए नहीं।
9: एनीवेयर वेयर देयर इज नो इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक वुड बी द राइट।
8: इनकन्वीनियंस इज बीइंग कॉज्ड टू द पब्लिक बाय यू बिकॉज यू आर बैरिकेडिंग द होल प्लेस।
5: हमें
8: वी आर ओनली
5: 300 MPs इलेक्शन कमीशन जाना चाह रहे हैं। आपने हमें जाने नहीं दिया, हमारा हक बनता है। हम इलेक्शन कमिश्नर से बात करना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं इस देश में हो क्या है। आपने रोका, ठीक है, हमने मान ली बात, वहाँ से हटा दिया, हम यहाँ आ गए, हमें वहाँ जाना है।
10: सर उसके लिए आप वहाँ से उनसे अपॉइंटमेंट लेके जो भी
5: हमने अपॉइंटमेंट लिया है वो दे नहीं रहे।
8: इनकन्वीनियंस कैसे हो रही है पब्लिक? आप बैरिकेड लगा रहे हैं सारी सड़कों पे। कुछ दिनों से जब से प्रोटेस्ट अनाउंस हुए, हमारे नहीं सिर्फ स्टूडेंट्स के, आपने पूरी दिल्ली में बैरिकेडिंग लगा रखी है, पूरी दिल्ली की ट्रैफिक बंद कर रखी है। तो इनकन्वीनियंस हम कर रहे हैं, प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं कि आप चुपचाप
5: मेट्रो बंद कर दिया, चले जाएंगे जहाँ भी बैठाने बैठा, बट बैठेंगे हम, आप डिसाइड कर लो कहाँ। और अगर यहाँ बहुत इनकन्वीनियंस हो रहा है तो उठा लीजिए यहाँ से
11: अपॉइंटमेंट दिला दीजिए।
1: आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो आज चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा विपक्ष सड़क पर था, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे थे।

0: राहुल गांधी और बाकी के विपक्षी नेता ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी राहुल गांधी और पूरे विपक्ष पर पलटवार कर रही है।
1: चुनाव आयोग के खिलाफ ये विपक्ष का हल्ला बोल है। ये जंग दिल्ली में चल रही है। विपक्षी गठबंधन के कई दल राहुल गांधी की अगुवाई में संसद से चलकर चुनाव आयोग के दफ्तर जा रहे थे। बीच में पुलिस की बैरिकेडिंग थी, हिरासत वाली बसें थी, थोड़ी जोर आजमाइश हुई, कुछ हिरासत में लिए गए। इनमें टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से लेकर एनसीपी लेफ्ट उद्धव की पार्टी और तमाम नेता शामिल रहे। इसी बीच राहुल गांधी आकाशवाणी भवन में घुसकर बैठ गए। राहुल के साथ बहन प्रियंका भी थी। राहुल जहां बैठे वहां से चुनाव आयोग का दफ्तर महज 200 मीटर दूर था। राहुल कहते हैं कि 300 सांसद ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं।
2: देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम देश की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। पता नहीं क्यों 300 एमपी को यहां पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहां बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है।
1: तो 300 विपक्षी सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त से क्यों मिलना चाहते हैं, और अगर मिलना चाहते हैं तो विरोध मार्च की शक्ल में क्यों? इसका जवाब इस मार्च में शामिल इंडिया गठबंधन के बाकी नेता बताते हैं।
3: अगर हमारा वोट बचा तो डेमोक्रेसी बचेगी, हमारी डेमोक्रेसी बचेगी तो ही सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, संविधान भी सुरक्षित रहेगा।
4: चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग संविधान के तहत काम नहीं कर रहा है। बीजेपी जब से आई है तब से चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए काम करना शुरू कर दिया।
5: वो वोट चोर गणेश को रिजाइन करना चाहिए, उसका पहले जाना चाहिए देश से।
1: ये पूरा विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांगने निकला है, क्योंकि उनके आरोप ये हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। तो विपक्ष का हौसला हाई है, लेकिन बीजेपी इसे भ्रम का दुष्प्रचार बता रही है। बार बार बीजेपी के प्रवक्ता सफाई दे रहे हैं।
6: लोकतंत्र के हर स्तंभ के ऊपर पिछले 12 सालों में निराधार, निरर्थक, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।
7: वो लोकतंत्र बचाने के लिए यहाँ पे नहीं है, वो अपने परिवार को सत्ता में लाने के लिए है।
8: हमारी मदद ज्ञानेश जी नहीं कर रहे हैं, हमारी मदद गणेश जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मदद ज्ञानेश जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मदद गणेश जी कर रहे हैं।
1: मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई, किसान, रोजगार, विकास, सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर सवाल उठाकर नाकाम हो चुके विपक्ष ने अब सीधे लोकतंत्र के सियासी मुकाबले में रेफरी पर अटैक शुरू किया है। आज तक ब्यूरो।
0: इस वक्त की बड़ी खबर, देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 सीटों पर आज वोटिंग खत्म हो गई है, जहां पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर की सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर सबसे ज्यादा नजरें हैं। रेजीनगर में 5 बजे तक करीब 78% वोटिंग हुई, वहीं नंदीग्राम में करीब 79% वोटिंग हुई है। इन दोनों की उपचुनाव में सीएम शुभेंदु अधिकारी की परीक्षा है। विधायक हुमायूं कबीर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में उनके पार्टी कार्यालय से पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके बेटे गुलाम नबी आजाद भी रेजीनगर से उम्मीदवार हैं। सभी सीटों के नतीजे 9 अक्टूबर को आएंगे। अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, अभी डिटेल्स बताइए, क्या हुआ है बंगाल में, खास करके जो 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ है?
9: जी देखिए, नंदीग्राम और रेजीनगर जो उपचुनाव हुआ है, अगर हम कमोबेश पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र देखें तो उससे थोड़ा भिन्न है। इस बार छिटपुट 2-3 घटनाओं के अलावा कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। रेजीनगर में हुमायूं कबीर को डिटेन किया गया, तब जाके उस दौरान थोड़ी सी उत्तेजना जरूर हुई थी वहां पर। और अगर नंदीग्राम की हम बात करें तो नंदीग्राम में एक कांग्रेस कार्यकर्ता के घर में तोड़फोड़ हुई, उसकी दुकान में तोड़फोड़ हुई, लूटपाट हुई, ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया है। कांग्रेस की ओर से साथ ही जो रेजीनगर और नंदीग्राम में जो उपचुनाव हुए हैं वहां पर भारी रिगिंग की शिकायत की गई है। यहाँ तक कि जो नंदीग्राम का चुनाव है वहां पर तो कह रहे हैं कि ज्यादातर जगहों पर ही फिर से चुनाव कराए जाने की मांग भी कांग्रेस कर रही है, तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से बहुत ज्यादा आरोप लगाए गए हैं इस बार। और जाहिर तौर पर नंदीग्राम जो है वो बीजेपी के लिए इस बार प्रेस्टीज फाइट है, चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल सीट रही है, शुभेंदु अधिकारी दो बार जीत चुके हैं यहां से, और ऐसे में दो तरफा लड़ाई इस बार हो गई है क्योंकि ममता तृणमूल की ओर से जो उम्मीदवार थी वो उन्होंने नामांकन वापस ले लिया था, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच फाइट है और बीजेपी लगातार बोल रही है कि यहां पर वो अपना मार्जिन लगातार बहुत ज्यादा बढ़ाएगी, लगभग 5 गुना बढ़ाएगी। तो ये जो नंदीग्राम का चुनाव है ये बीजेपी के लिए प्रेस्टीज फाइट है, लेकिन रेजीनगर का चुनाव काफी दिलचस्प है, वहां पर बहुत सारी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। एजीयूपी है जो हुमायूं कबीर की पार्टी है जिन्होंने पिछली बार चुनाव जीता था, कांग्रेस है, टीएमसी है, टीएमसी के दोनों धड़े हैं, सीपीएम है और बीजेपी है, तो यहां का मुकाबला दिलचस्प है और देखने वाली बात होगी कि इस इतनी सारी बहुकोणीय मुकाबले में किसको बढ़त मिल सकती है ये अभी बताना बड़ा मुश्किल।
0: अब नजरें होंगी 9 अक्टूबर को जिस दिन नतीजे आएंगे। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं जहां राज्यसभा की 10 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में समाजवादी पार्टी लगातार तीसरा प्रत्याशी उतारने का दावा कर रही थी, लेकिन अचानक से आज अखिलेश यादव ने तीसरा प्रत्याशी ना उतारने का ऐलान कर दिया। अखिलेश के इस फैसले को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं और बीजेपी की ओर से हमले भी हो रहे हैं।
10: जो अखिलेश यादव राज्यसभा में तीसरे प्रत्याशी पर चौंकाने की बात कर रहे थे, आज अखिलेश के ट्वीट ने साफ किया कि उनकी नजर 3 पर नहीं बल्कि 403 पर है, यानी समाजवादी पार्टी राज्यसभा में तीसरा प्रत्याशी नहीं उतार रही है, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये है कि जब लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से 3 उम्मीदवार उतारने का दावा हो रहा था तो अचानक पार्टी पीछे क्यों हट गई? क्या पार्टी यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव में तीसरे प्रत्याशी की हार का संदेश नहीं देना चाहती थी, या फिर पार्टी दूसरे उम्मीदवार धनराज नथवानी को लेकर ज्यादा ही सतर्कता वाला दांव अपना रही है?
11: कल तक तो रात भर चिल्लाए, अब आगे सामने आज ट्वीट किए हैं कि हम तीसरा प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे, हम 403 पर लड़ेंगे, 403 पर निगाह है, मतलब भाजपा ने मना कर दिया कि कैंडिडेट मत खड़ा करो।
12: देखिए, जैसे मेरे बारे में सरप्राइज हुआ है ऐसे अखिलेश जी का भी सरप्राइज होगा। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी तो उन्हें लगेगा कि सरप्राइज हो गया।
10: उधर समाजवादी पार्टी के इस फैसले पर अटकलों का बाजार गर्म है।
13: उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में खेल नहीं इस बार खेला होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ताकती रह जाएगी, देश और प्रदेश की राजनीति में बदलाव होगा।
14: 403 पर लड़ेंगे, गठबंधन मजबूत करेंगे, गठबंधन के साथ लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे।
15: समाजवादी पार्टी की जो तमन्ना थी तीसरा प्रत्याशी भेजने की, वो तोड़ने का काम राष्ट्रीय लोकदल की ताकत से हुआ।
10: यूपी में समाजवादी पार्टी की ओर से तीसरा प्रत्याशी ना उतारने के बाद बीजेपी और एसपी के प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतना तय माना जा रहा है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: आशुतोष दीक्षित वायुसेना के नए प्रमुख होंगे। वो 31 अक्टूबर को एयर चीफ मार्शल का कार्यभार ग्रहण करेंगे। वो अभी वाइस एयर चीफ मार्शल हैं। उन्होंने जुलाई 2026 को ये पदभार संभाला था। आशुतोष दीक्षित कारगिल जंग में भी शामिल थे। उन्होंने फाइटर जेट से घुसपैठियों पर बम गिराए थे। वो 20 तरह की लड़ाकू विमान उड़ाने में माहिर हैं। मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, इनका करियर का जो बिग हाइलाइट्स है उसके बारे में बताइए।
16: हमारी अब अगर एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित की हम बात करें तो 3500 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव उनके पास है और इससे पहले वो तमाम महत्वपूर्ण पदों पर वायुसेना में रहे हैं। मिग से लेकर जगुआर जैसे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है, उनको उड़ाने का अनुभव उनके पास है 3500 घंटे का। अभी वो वर्तमान में वाइस चीफ है एयरफोर्स के और इसके साथ ही अगर देखें इससे पहले वो इंटीग्रेटेड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं, यानी कि सिर्फ के पद पर रहे हैं और जगुआर से लेकर मिग मिराज जैसे जो बड़े पुराने लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना उनको उड़ाने का अनुभव है। और ठीक 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस से मौके से पहले उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। आज सीसीएस की तरफ से उनका आदेश जारी कर दिया गया है और एक बहुत काबिल अधिकारी वायुसेना में माने जाते हैं, खासतौर से मेक इन इंडिया चाहे एलसी तेजस की को आगे बढ़ाने की बात करें उसको लेकर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और 31 अक्टूबर को जब वर्तमान जो वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के रिटायर होने के बाद वो 31 अक्टूबर को नए वायुसेना प्रमुख के तौर पर अपनी कमान संभालेंगे।
0: मंजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ग्रेटर नोएडा में नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 150 के पास एक स्लीपर बस में भयानक आग लग गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि स्लीपर बस किस तरह धधक रही है। बताया जा रहा है कि बस नोएडा से आगरा जा रही थी। खबर है कि आग लगते ही सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से नीचे उतार दिया गया। अब खबरें शेयर बाजार से।
1: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 और निफ्टी 220 अंक की बढ़त के साथ 22,776 पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के नीचे आने से महंगाई और आर्थिक ग्रोथ को लेकर चिंता कुछ कम होने से बाजार में तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा बैंकिंग और रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत कई बड़े शेयर्स में खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला है। हालांकि विदेशी निवेशकों की बिकवाली अभी भी जारी है। शेयर बाजार में तेजी के बीच रुपया कमजोर हुआ और ये 8 पैसे कमजोर होकर 96.43 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। महंगे कच्चे तेल और विदेशी फंड आउटफ्लो से रुपए पर दबाव बना रहा। हालांकि शेयर बाजार में तेजी और रिस्क ऑन सेंटीमेंट से रुपए की गिरावट कुछ सीमित रही। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी में गिरावट रही और सोना 920 रुपए गिरकर 147,278 रुपए प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी 3,176 रुपए गिरकर 220,981 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। मजबूत डॉलर और ऊंची अमेरिकी बॉन्ड यील्ड से सोने चांदी पर दबाव बना। साथ ही ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता से भी बुलियन की कीमतों में कमजोरी रही। आज तक ब्यूरो
0: 7 तक में वक्त है अब एक ब्रेक का। देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
20: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
19: असली शहद, असली स्वाद।
21: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
22: गैसो फास्ट 27%,
21: इनो 9.2%।
23: गड़बड़ है।
24: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सोल्यूशन।

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक?
1: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account, business maxima business privilege, rd, everything. There's nothing small about them.
0: Okay.
1: Ujjivan, nothing small about us.
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो. E3 products, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
4: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद. रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं. पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर. भीम ऐप से करो पे.
5: इट्स अ माई वे.
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार. सर एक बार रोटी ठुमका लगाने बस.
7: मेरे पास एक आइडिया.
6: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए. रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है.
8: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
9: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है.
10: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है. लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है.
11: कौन सी बनानी है?
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर. सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप.
13: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
14: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें.
13: मैं चैन की नींद सो पाता कपिवा डायट्री जूस.
15: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
16: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
17: सोच बदलो और बैंक भी.
18: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं. गोल्डी हिंग कण कण में जान.
19: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
20: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर. मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर.
21: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो.
22: एक दो एक श्राम.

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
3: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज।

लखनऊ में गोमती नदी का बढ़ता जलस्तर अब शहर के कई हिस्सों के लिए मुसीबत बन गया है। गोमती रिवर फ्रंट को बाढ़ के चलते बंद कर दिया गया है। जहां लोग बैठा करते थे वहां तक पानी पहुंच चुका है। बाढ़ का असर हनुमंत धाम पर भी दिखाई दे रहा है। हनुमंत धाम का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है। बैठने की जगह, झूले और मंदिर परिसर के कई हिस्से जलमग्न नजर आ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। सुरक्षा के लिहाज से इसे पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। यहां बने म्यूजियम तक पानी पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा असर फैजुल्लागंज इलाके में देखने को मिल रहा है। यहां कई घर पानी में डूबे हैं और जलस्तर घरों के गेट को पार कर चुका है। प्रशासन और नगर निगम की टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित फैजुल्लागंज का हवाई सर्वेक्षण कर जमीनी हालात का जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण के दौरान सीएम ने जलभराव और प्रभावित इलाकों की स्थिति देखी। इसके बाद सीएम ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और राहत कार्यों की जानकारी ली। प्रशासन के मुताबिक करीब 150 नावों की मदद से लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया जा रहा है। जो लोग घर छोड़कर नहीं जाना चाहते उन तक नावों के जरिए राशन और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। संक्रमण से बचाव के लिए दवाइयों का भी वितरण किया जा रहा है। गोमती के बढ़े जलस्तर ने लखनऊ में दो दशकों बाद ऐसे बाढ़ जैसे हालात पैदा किए हैं। प्रशासन की नजर जलस्तर पर बनी हुई है और हालात सामान्य होने का इंतजार है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मारिया शकील। आज विशेष में बात करेंगे मथुरा के प्रसिद्ध धर्मगुरु प्रेमानंद महाराज से जुड़े एक आश्रम में हुई आत्महत्या की। ये सुइसाइड आज से करीब 10 दिन पहले मथुरा में हुआ था। अब तक इस केस से जुड़े 4 सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं, जिन्हें लेकर ये साफ लग रहा है कि ये खुदकुशी ही है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, जिससे ये पता चल रहा है कि प्रेमानंद महाराज के इस शिष्य ने सुइसाइड से पहले अपने शरीर को ऐसे घायल किया कि हर कोई हैरान है।
1: ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता।
2: मथुरा में प्रेमानंद महाराज से जुड़े आश्रम में क्या चल रहा है? प्रेमानंद महाराज के एक शिष्य की आत्महत्या का सच क्या है? प्रेमानंद महाराज के शिष्य ने छत से कूदकर आत्महत्या क्यों की? आत्महत्या करने वाले प्रेमानंद महाराज के शिष्य का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ क्यों था?
1: हम सब श्री जी के, हम एक छत्र के नीचे हैं, जिसका ये नीला छत्र है ना, नीला छत्र है ना आकाश, हम सब उसी के बच्चे हैं, हम उसी के हैं।
2: मथुरा के प्रेमानंद महाराज, वही जिनके भारतीय क्रिकेट टीम के सुपरस्टार विराट कोहली शिष्य हैं, वही प्रेमानंद महाराज जिनके दर्शनों के लिए विराट कोहली अक्सर मथुरा आते रहते हैं। अब इन्हीं प्रेमानंद महाराज का मथुरा का एक आश्रम सवालों के घेरे में है, और इसकी वजह बना है उन्हीं के आश्रम में एक शिष्य की आत्महत्या। इस शिष्य का नाम है दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले थे। 25 सितंबर को मथुरा के गुरु कृपा कुंज आश्रम की छत से कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब से ये आत्महत्या हुई है, तब से अब तक कुल मिलाकर 4 सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। रसिक दुलारी उर्फ दीपक लोधी की आत्महत्या का सबसे पहला वीडियो ये है। ये 25 सितंबर की सुबह लगभग 10:30 बजे का वीडियो है। ये सीसीटीवी आश्रम के नीचे के सड़क पर लगा है। ऊपर से ये शिष्य सड़क पर बहुत जोर से गिरता है और फिर अचेत हो जाता है। पास में एक दूसरा शिष्य भी दिख रहा है, जो साइकिल से चल रहा है। इसके बाद आनन फानन में दीपक लोधी को एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस वीडियो पर सवाल उठे तो कुछ दिनों के बाद ये दूसरा वीडियो आया, जो नीचे कूदने से पहले का था। इसमें दिख रहा है कि रसिक दुलारी छत के किनारे अकेले बैठे हुए हैं, कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, शायद कुछ दर्द में भी है। इसीलिए कुछ देर के बाद वो छत पर लेट गए और फिर खड़े हुए और अचानक से नीचे कूद गए। और इसके तुरंत बाद वीडियो में दिखता है कि पीछे से छत पर एक और शख्स आता दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या रसिक दुलारी इस दूसरे शिष्य को अपनी तरफ आते देख छत से कूदे? और यह है तीसरा सीसीटीवी फुटेज। ये 25 सितंबर की सुबह 10:15 बजे का वीडियो है। रसिक दुलारी उर्फ दीपक लोधी सीढ़ियों से छत की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने जो कपड़े पहने हैं, उन पर कुछ खून लगा हुआ भी दिख रहा है। वो धीरे धीरे से सीढ़ियों की तरफ चढ़ रहे हैं और फिर सीढ़ियों से वो छत की तरफ चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि इन सीढ़ियों से गुजरने के बाद रसिक दुलारी करीब 15 से 20 मिनट तक छत पर रहे, छत के किनारे बैठे रहे, नीचे लेटे रहे। लेकिन सवाल है कि उनके कपड़ों पर खून क्यों लगा हुआ था? इसका जवाब मिला है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और उसी के बाद इस आत्महत्या पर और ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। रसिक दुलारी उर्फ दीपक लोधी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि उनका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था, और ये भी लिखा है कि मरने से पहले आई गंभीर चोटों के कारण बहुत ज्यादा खून बह जाने से मौत हुई है। लेकिन सवाल है कि दीपक लोधी ने अपना प्राइवेट पार्ट क्यों काटा? ऐसा क्या हो गया था कि दीपक लोधी का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था? पुलिस ने आश्रम से ये ग्राइंडर भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इसी से दीपक लोधी का प्राइवेट पार्ट काटा गया था। सवाल है कि क्या आश्रम में ऐसा कुछ हुआ था जिससे दीपक लोधी को ये कदम उठाना पड़ा, या इसके पीछे कोई और था?
3: इस वक्त मैं वृंदावन के बराघाट इलाके में मौजूद हूं, और ये जो आप हॉस्टल देख पा रहे हैं, जिसे आश्रम भी कहा जाता है, इस हॉस्टल की चौथी मंजिल से 25 सितंबर को रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी नाम के एक साधु ने कूद करके आत्महत्या कर ली। सीसीटीवी सामने आया है जिसमें जो रसिक दुलारी है वो अपने शरीर के निचले हिस्से को पकड़कर कॉरिडोर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद इस छत पे, जो छत का हिस्सा आपको हम दिखा रहे हैं, इस छत का भी सीसीटीवी आया है जिसमें वो अपने शरीर के निचले हिस्से को पकड़ा हुआ है, कुछ देर तड़पता है, उसके बाद वो चौथी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेता है। जांच में पता चला कि जो दीपक लोधी है उसने अपने प्राइवेट पार्ट को एक ग्राइंडर से काटा था। कमरे से ग्राइंडर भी मिला जिस पर फॉरेंसिक की टीम को खून के निशान भी मिले हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये पूरा मामला आत्महत्या का है, लेकिन जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है वो मिस्ट्री ये है कि रसिक दुलारी उर्फ दीपक ने आखिर अपना प्राइवेट पार्ट क्यों काटा? क्या उसे किसी चीज की आत्मग्लानी हो गई थी? क्या वो ब्रह्मचर्य के किसी गलत ज्ञान को पा गया था, इस वजह से उसने प्राइवेट पार्ट काटा?
2: यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों में अक्सर ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात करते हैं। प्रेमानंद महाराज सन्यासियों के अलावा गृहस्थों से भी ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहते हैं।
1: तो ब्रह्मचर्य कैसे ठीक हो? हमारा संग ठीक नहीं, हमारा भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा श्रवण ठीक नहीं, गंदी बातें देखें, गंदी बातें सुने, गंदा विचार आए, गंदी क्रियाएं करें, फिर ब्रह्मचर्य कैसे रह जा सकता है? अगर सुधार करो तो अभी बहुत बढ़िया समय है, कोई ज्यादा अवस्था तो हो नहीं गई। ब्रह्मचर्य का सुधार करो। हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो, बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता।
2: अब सवाल है कि इस आश्रम में दीपक लोधी के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने पहले प्राइवेट पार्ट काटा और फिर आत्महत्या कर ली। दीपक लोधी के सुसाइड का यह चौथा वीडियो है। इस वीडियो में रसिक दुलारी शरण गैलरी से अपने कमरे में जाते दिखाई दे रहे हैं। घटना के 10 दिनों के बाद भी उनके सीसीटीवी वीडियो आते ही जा रहे हैं और पुलिस की जांच में क्या तथ्य निकल कर सामने आया है यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। अरविंद ओझा, मथुरा, आज तक।
0: इस केस के बाद लगातार प्रेमानंद महाराज पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं जिससे उनके भक्त बहुत आहत हैं। ये भी आरोप लगे हैं कि क्या और भी शिष्य गायब हैं। इन तमाम आरोपों में कोई सच्चाई है या फिर ये प्रेमानंद महाराज को बदनाम करने की साजिश? पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: देखिए, हम प्रेमानंद महाजी से लगातार जुड़े हुए हैं। हमको उस आश्रम के बारे में अंदर तक जानकारी है क्या हो रहा है। महाराज जी के आश्रम में अब दो गुट बन चुके हैं, एक असली संतों का ग्रुप और एक नकली संतों का ग्रुप। प्रेमानंद महाराज जी बहुत दुखी हैं दूसरे गुट से, क्योंकि ये जो केली कुंज में जो गुट रह रहा है, जिसने 15 आश्रमों पर कब्जा कर रखा है, ये प्रॉपर्टी का धंधा कर रहे हैं, यहां से बच्चे गायब हो रहे हैं। तो महाराज जी इनके कर्मों से बहुत दुखी हैं, इसलिए महाराज जी इन सबको छोड़ करके इनसे 20 किलोमीटर दूर बेलवन आश्रम में चले गए।
1: क्या मथुरा में प्रेमानंद महाराज को बदनाम करने की साजिश चल रही है? जिस आश्रम की बिल्डिंग से कूदकर दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी ने आत्महत्या की, वो एक हॉस्टल था जहां कुछ साधक रहते हैं। प्रेमानंद महाराज यहां रहते भी नहीं है, वो यहां से कई किलोमीटर दूर रहते हैं और अब तो बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना आश्रम भी छोड़ दिया। जिस हॉस्टल में आत्महत्या हुई वहां कुछ साधक रहते हैं और इन्हीं में से एक रसिक दुलारी उर्फ दीपक लोधी भी थे। रसिक दुलारी की मौत के बाद वृंदावन में तरह तरह की अफवाहें और खबरें फैली हुई हैं, जिससे प्रेमानंद महाराज के भक्त आहत हैं।
2: ये आप इस हॉस्टल के नीचे खड़े हैं, ये जो व्यक्ति मरा है उसको लेकर प्रेमानंद जी पर तरह तरह के आरोप लगा, उसके बारे में आपका क्या कहना?
3: वो आरोप बिल्कुल गलत है। आप सब जानते हो बाबा को, बाबा ने कभी किसी व्यक्ति से कोई अनुरोध नहीं किया है। बड़े बड़े साधक हैं महाराज जी, बड़े बड़े शिष्य लोग हैं। हम भी ब्रजवासी हैं, हम भी बाबा को जानते हैं, हम बहुत पहले से जानते हैं बाबा को। बाबा जब प्रसादी मांगते थे, वो तो उनके गुरुदेव ने बोला कि भाई आपने समाज का अन्न खाया है, कुछ समाज की सेवा करो। बाबा तो पहले किसी बात भी नहीं करते थे, परिक्रमा मार्ग में जाते थे, घूमते दर्शन करते थे।
2: सबके ये साजिश के तहत प्रेमानंद जी को बदनाम करने की साजिश,
3: पूरा साजिश प्रोपेगंडा चलाया जा रहा है, पूरा सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है पूरा। जिस तरह बाबा ने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में बदलाव किया गया है, उस बदलाव को नीचे तक लाने के लिए ये पूरे तरह प्रोपेगंडा चलाया जा रहा है।
1: आज तक की टीम केली आश्रम के मुख्यालय भी पहुंची, जहां देश भर से तमाम नौजवान लड़के और महिलाएं आई हुई हैं। ये सब लोग साधना में लीन थे और ये इंतजार कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज से दीक्षा लेने का। यहीं पर हमें प्रेमानंद महाराज के शिष्य मिले, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को प्रेमानंद महाराज को बदनाम करने की साजिश बताया।
2: महाराज जी, ये जो रसिक दुलारी है उसने आत्महत्या की, उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज को लेकर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है?
4: बाबा, जितना भी आरोप है सब निराधार है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का इसमें कोई मत नहीं बाबा। ये सब सबकी दुकानें बंद हो गई हैं। गुरुदेव भगवान हमारे सब में बिलीव नहीं करते हैं, जो भी मतलब पैसा रुपया देना लेना चल रहा है, इसके वजह से बाबा कुछ लोग पीछे पड़े हैं। बाकी गुरुदेव भगवान का हमारे ये सब में ना तो कोई हाथ था न रहेगा। वो आत्महत्या किए बाबा, वो जांच का विषय है, आप लोग उसके लिए देख ही रहे हैं। साला फुटेज आ गया, CCTV आ गया है, उसमें हमारे गुरुदेव को न घसीटा जाए बाबा, न तो हमारे केले को घसीटा जाए।
2: ये जो प्राइवेट पार्ट काटा रसी बहन, क्या ब्रह्मचर्य का जो गलत ज्ञान या फिर वैराग्य का गलत ज्ञान, क्या कोई आत्मबोध, क्या इस वजह, ये वजह तो नहीं?
4: नहीं, वो तो देखिए वो वहाँ पर अकेले थे। अब उसका विषय में, अब वही जांच का विषय, अपन उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते बाबा कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे उनका प्राइवेट पार्ट कटा, उसके विषय में नहीं बोल सकते।
2: अच्छा, आप केली कुंज से जुड़े हुए साधक हैं, आप भी?
4: जी बाबा,
2: आप भी साधक हैं?
4: जी बाबा।
2: तो ये ब्रह्मचर्य का जो पालन होता है वो कैसे आप लोग करते हैं, क्या उसको लेकर कोई ज्ञान होता है, कैसे करते हैं, विरक्त कैसे होते हैं?
4: देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन ऐसा है बाबा कि जैसे हम लोग पहली बात तो मोबाइल जो मिला है सेवा के लिए है, मोबाइल से हम लोग दूर रहना है, माताओं बहनों को स्पर्श भी नहीं करना है बाबा, और गुरुदेव की हर टाइम सत्संग हम लोगों को बाबा अड़िग रख के रखता है हर टाइम। हम लोगों को ब्रह्मचर्य में पहला गुरुदेव भगवान हमारे यही बोलते हैं, अगर परमार्थ में चलना है तो सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य को बचा के चलना है बाबा।
1: आपको बता दें कि कुछ खबरें ऐसी भी चली कि विराट कोहली को 5 करोड़ देकर प्रेमानंद महाराज के आश्रम में बुलाया गया था, इसे भी पूरी तरह से बेबुनियाद बताया जा रहा है।
2: कि ये अभी लोग कहीं अखबार में पढ़ रहा है, कहीं चल रहा है कि विराट कोहली को 5 करोड़ में बुला लिए।
4: नहीं नहीं बाबा, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ये सब में देखिए, हमारे पास 5 करोड़ कहाँ से आएगा पहले बताइए। आप यहाँ पर राधा केली कुंज में कहीं पर आपको मतलब दान पेटी डोनेशन लिया जाता है, कहीं पर आपको दान पेटी नहीं मिलेगी बाबा। हमारे पास जो भी आता है आकाश वृत्ति से, सब संत जनों को उसी में रोटी प्रसाद चल रहा है बाबा, वस्त्र चल रहा है, बाकी देने के लिए हमारे पास न कोई अर्थ है और न तो हमारे गुरुदेव भगवान ये सब बात में बिलीव करते हैं, न तो किसी को बुलाए हैं बाबा। वो जो बोला जा रहा निराधार बोला जा रहा है।
1: आत्महत्या के इस केस में बहुत से सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। ये सवाल अपनी जगह है कि दीपक लोधी ने आत्महत्या करने से पहले अपना प्राइवेट पार्ट क्यों काटा।
5: वहीं 25 सितंबर को जो ये सुसाइड हुआ था उसको लेकर जो प्रेमानंद महाराज हैं, जो पूरे देश में जिनकी ख्याति है, उन पर भी तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जो वृंदावन के लोग हैं उनका कहना है कि प्रेमानंद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि जो रसिक दुलारी उर्फ दीपक लोधी है उसके कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, उसके अलावा उसके मोबाइल फोन से भी ऐसी कुछ चीज़ नहीं मिली है जिससे पुलिस इस नतीजे तक पहुंचे कि उसने अपना प्राइवेट पार्ट क्यों काटा। लेकिन प्राइवेट पार्ट को काटना एक मिस्ट्री है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि दीपक लोधी का जो शरीर है वो दो हिस्सों में मिला था, जो प्राइवेट पार्ट है वो पूरी तरह से कटा हुआ था, जबकि जब वो इस छत से, ये जो हम आपको दिखाना चाहेंगे वृंदावन इलाके में हॉस्टल, जब इस छत से कूदा वो, तो कूदने के बाद मृत्यु के बाद उसके शरीर पर कई तरह के चोट के निशान हैं। लेकिन ये मामला पूरी तरह से वृंदावन में गरमाया हुआ है। एक तरफ जो प्रेमानंद महाराज हैं उनके समर्थक हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज के जो विरोधी हैं वो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, वृंदावन आज तक।
6: विशेष में वक्त है अब एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक.
1: स्मॉल. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RDF. There's nothing small about them.
0: Okay.
1: Ujjivan, nothing small about us.
2: Sir, Gaso Fast ki growth to check kijiye. Gaso Fast 27%, Eno 9.2%.
3: Gadbad hai.
4: Aha, Gaso Fast wale jeere ka jadoo chala rahe. इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. गैसोफा, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन.
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार. सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस.
6: मेरे पास एक आइडिया है.
5: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए. रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है.
7: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाती पर स्टेज नहीं हिलता,
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है.
9: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है. लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है.
7: कौन सी बनानी है?
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर. सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप.
11: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है.
12: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें.
11: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपीवा डायबिटीज जूस.
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
14: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
15: सोच बदलो और बैंक भी.
16: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जेके मैक्स वाइप इजी,
3: दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्यार प्यार उल्टा बात सर एक दो तुम ठुमका लगाने बस।
1: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
1: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
2: कौन सी बनानी है?
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो।
10: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
11: विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा है, आज दिन भर इस तरह की तस्वीरें देखी गई हैं। एक बार फिर किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को उठाकर उनकी जगहों से हटाया जा रहा है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस समय सभी प्रदर्शनकारियों को हटा रही है। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर कांग्रेस पार्टी, खास करके राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सब धरने पर नजर आए, लेकिन अब सभी प्रदर्शनकारियों को उनकी जगहों से हटाया जा रहा है। राहुल गांधी दरअसल ज्ञानेश कुमार से मिलने पर अड़े हुए हैं और लगातार उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि जब तक मुलाकात नहीं हो पाएगी वो जाएंगे नहीं। प्रदर्शनकारियों को बसों में भर के ले जाया जा रहा है आकाशवाणी भवन के बाहर। ये प्रदर्शन, जहां से प्रदर्शनकारियों को हटाने का क्रम इस समय पुलिस द्वारा चल रहा है। बुरिया बिस्तर के साथ राहुल गांधी ने आकाशवाणी भवन में डेरा डाला और इस बात पर अडिग रहे कि जब तक मुलाकात नहीं होगी हिलेंगे नहीं अपनी जगह से सांसद। संसद के मकर द्वार से लेकर आकाशवाणी भवन तक का, जो चुनाव आयोग तक का ये मार्च। इस समय हमारे साथ हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, प्रदर्शन की ये तमाम तस्वीरों के बीच अब बड़ी संख्या में पुलिस बल और हटाते हुए प्रदर्शनकारियों को।
12: बिल्कुल पूरी तरह से देखिए श्वेता, हमने देखा कि बीते कई घंटों से किस तरीके से ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। एक चादर भी मंगवाई गई थी, इनफैक्ट एक मैट्रेस भी मंगवाया गया था जिसके ऊपर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैठे थे। पुलिस कर्मियों की जो संख्या है उससे ही आपको एक अनुमान लग जाएगा कि अगले कुछ घंटों के अंदर यहाँ पे किस तरीके का माहौल होने वाला है। राहुल गांधी ये स्पष्ट कर चुके थे कि जहाँ पे वो बैठे हैं, यानी कि आकाशवाणी भवन, महज 50 मीटर दूर है चुनाव आयोग का ऑफिस, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर है। कई घंटों से राहुल गांधी बैठे हुए थे, उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, दीपेंद्र हुड्डा, उनके साथ कई सारे और बड़े नेता भी थोड़ी देर पहले यहां पे आकर बैठे थे। टीएमसी की बात करें तो डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, और अब पुलिसकर्मी अंदर जा चुके हैं और जो उनके सपोर्टर्स थे वो जो यहां रेलिंग है उसको तोड़ने की उन्होंने कोशिश की थी। काफी सारे पुलिसकर्मी यहां पर आपको इस समय मौजूद नजर आएंगे और ये इसीलिए यहां पर मौजूद है ताकि अगर भीड़ ज्यादा आए, अगर सपोर्टर्स ज्यादा हैं तो उनको बैठा के बसेस के अंदर यहां से लेके जाया जा सके। कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी से एक बार फिर से बातचीत हो सके और कहीं ना कहीं उनको मनाया जा सके कि अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है तो आप किसी और जगह पे जाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए। क्योंकि शुरुआत के अंदर जो ऑपोजिशन का धरना प्रदर्शन सुबह यहीं पे शुरू हुआ था, वो दिन बढ़ते बढ़ते कांग्रेस का धरना प्रदर्शन के अंदर तब्दील हो गया और पुलिस कर्मी यहाँ पर, जो पीछे आपको विजुअल्स नजर आ रहे हैं, वहीं पर राहुल गांधी मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस कर्मी काफी भारी तादाद के अंदर आपको खड़े हुए नजर आएंगे। जो सीटियों की आवाज आपको नजर आ रही है श्वेता, ये सीटियां अंदर से आ रही हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो पूरा इलाका है इसको खाली किया जा सके।
8: तो लगभग 7 घंटे तो हो गए करीब ऐश्वर्या, उन दोनों के मतलब राहुल गांधी और प्रियंका के वहां पर धरना दिए हुए बैठे हुए, क्या आगे के लिए वो कह रहे हैं और क्या चुनाव आयुक्त से एक तरीके से कहा गया है कि वो मिलना चाहते हैं, प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये मुलाकात होगी?
12: देखिए श्वेता, यही मजेदार बात है, मैं आपको बताती हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मिलना चाहती है चुनाव आयुक्त से, अगर इलेक्शन कमीशन से आपको मिलना है, तो बकायदा एक फॉर्मल ईमेल दिया जाता है। उस ईमेल में आप समय भी बताते हैं कि आपको इतने बजे मिलना है और उन लोगों के नाम भी देते हैं कि आपके डेलीगेशन में कौन कौन आएगा। बीते कई घंटों के अंदर कई बार हमें सुनने को मिला कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक रिक्वेस्ट गई है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी या किसी भी विपक्षी पार्टी की तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट चुनाव आयोग तक नहीं पहुंची है। अगर रिक्वेस्ट आएगी तो चुनाव आयोग 99% केसेस के अंदर जिस दिन रिक्वेस्ट दी जाती है उसी दिन का समय भी चुनाव आयोग जो है वो देता है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये पूरा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, किसी भी पार्टी को। अगर भारतीय जनता पार्टी को भी समय लेना है तो बकायदा एक ईमेल जाता है जिसमें समय होता है और नाम दिए जाते हैं। ना कांग्रेस पार्टी ने नाम दिए हैं अभी तक और ना ही कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट पुट इन करी है कि वो चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं। तो यहां पर तो बात रही चुनाव आयोग से मिलने की, और 7 घंटे से जो ये धरना प्रदर्शन है, जो हमें समझ में आया कि बार बार राहुल गांधी का कहना है कि वो बैठना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। बिना प्रोसेस को फॉलो किए इलेक्शन कमीशन का कोई भी ऑफिसर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलग से जाके मिल नहीं सकता।
8: मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई है। मौसमी, पेचीदा स्थिति तो है सरकार के लिए इस समय, क्योंकि अगर वो बैठ गए हैं, उनको उठाने के लिए, हटाने के लिए वहां से मान मनोवल करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन राहुल गांधी के तेवरों को कर लग नहीं रहा कि वहां से वो हटेंगे।
13: हम लोग उसी रेलिंग पर की साइड इस तरफ है जहाँ से मेरे सामने राहुल गांधी को उठाने की कोशिश की गई तो राहुल गांधी लेट गए। अब यहाँ पे आप देखिए कि मैं इसी के भीतर साहब को दिखा रहा हूँ और यहाँ पर कल कम से कम 30-40 पुलिस कर्मी है जो उसे पेड़ पे लेकर राहुल गांधी है जिनको खींचा जा रहा है। राहुल गांधी और तमाम राहुल गांधी के यहाँ पे मौजूद है। राहुल गांधी भी वहीं पर बैठे मेरे सामने नहीं रखे की राहुल गांधी को उठाने की कोशिश करी थी तो राहुल गांधी सभी था और अभी पीछे जो आप देख रहे हैं ये वो डिटेल करने की कोशिश हो रही है। ये देखिए जो खींचा करिए आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस एडी छोटी पर गौर लगी हुई यह पूरी मशक्कत कर रही है कि किसी तरीके से राहुल गांधी को यहाँ से उठाया जाए। यही वो जिसमें राहुल गांधी पूरे दिन यहाँ पे धरना दे रहे थे आकाशवाणी का बोर्ड और यहाँ पे ये तस्वीर देखने को मिल रही है कुछ नेता नजर आतियों को बसों में यहाँ से हमारे सामने श्रीवास को भी उठाया गया है। ये देखिए और यहाँ पे नेता आप देख रही है राहुल गांधी की तस्वीर है जो राहुल गांधी डिटेन करके कहीं तो देख रही और चलो शायद अमीर गया और यहाँ तो हम लोग देखो तस्वीर हुई है बसों को लगाया गया राहुल गांधी को पुलिस को उठा लिया बता
11: आपकी आवाज बहुत टूट टूट कर हम तक आ रही है मौसमी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा वहां से हट के हमें ये सारी जानकारियां दे सकें, क्योंकि जिस तरह से मौसमी भी तस्वीर दिखा रही हैं और वहां पर ये देखिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से घेरे हुए हैं, बहुत इतनी बड़ी संख्या में है कि वहां पर नेता उसके बीच दिख नहीं रहे। पीछे आपको प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी सब उस धरने पर जरूर बैठे रहे, लेकिन अब वहां से हटाया जा रहा है, पूरी तरीके से उस जगह को साफ किया जा रहा है। नेता हालांकि अपनी जगह पर अड़े रहे, वहां पर मुमकिन है वो बरगद का एक वृक्ष है जिसकी जड़ों को पकड़ लिया जोर से ताकि वहां से पुलिस हटा ना पाए, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल है और वहां पर सभी नेताओं को अब वहां से हटाया जा रहा है। प्रियंका वाड्रा को हिरासत में ले लिया गया है, राहुल गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया है और वहां से बस रिमूव किया जा रहा है, वहां से हटाया जा रहा है। 7 घंटे से ऊपर का समय हो गया था जब राहुल और प्रियंका बाकी नेताओं के साथ वहां पर धरने पर मौजूद थे और ये कह रहे थे कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का समय नहीं मिलेगा, जब तक उनसे मुलाकात नहीं हो जाएगी, तब तक अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जबरन उनको वहां से हटाया है और ये जो गाड़ियां वहां पर लगी हुई हैं पुलिस की अलग अलग, उन सब में उन नेताओं को सवार किया जा रहा है और फिर आगे लेकर जाएंगे। अभी जानकारी नहीं है, आमतौर पर अनडिस्क्लोज्ड रखा जाता है इन लोकेशंस को कि कहां पर ले जाया जा रहा है। मौसमी, अगर आप अब सुन पा रही हैं हमें तो आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं लगातार कि मुलाकात जब तक नहीं होगी तब तक नहीं जाऊंगा, जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं होगा, तो अगर आज का ये धरना जहां से उनको हटाया भी गया है ये भी हम समझें, तो क्या ये अभी आगे भी अनवरत जारी रहेगा ये प्रोटेस्ट?
13: देखिए यहाँ पे ये साफ है कि मांग राहुल गांधी की थी कि उनको मिलने दिया जाए चुनाव आयोग से और यहाँ पे वो मांग पूरी नहीं हुई है, बातचीत कुछ नहीं हुई है, यहाँ सीधे राहुल गांधी को उठाया गया है, आप देख रहे हो उस लोकेशन पे, और यहाँ पे डिटेन कर लिया गया है। अभी यही इसी रास्ते से राहुल गांधी बाहर निकलेंगे श्वेता, और यहाँ बस जो है आप देखिए ये तस्वीर है, पीछे कितनी बसें यहाँ पे खड़ी हुई है बाकी कार्यकर्ताओं को डिटेन करने के लिए, चारों तरफ आप देखिए कि खाकी ही खाकी यहाँ नजर आएगी, हमारे कैमरा मैन उस तरफ वहां नहीं जा पाएंगे क्योंकि राहुल गांधी को उसी रास्ते से निकाला जाएगा। और आपको ये बता दें कि काफी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को, काफी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को राहुल गांधी को हटाने के लिए, एक तरीके से

0: आगे भी जारी रहेगा। जबकि कांग्रेस के सांसदों को बोला गया है कल मौजूद रहने के लिए, तो ये तो खत्म होने वाला नहीं है। कांग्रेस की तरफ से अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पवन खेड़ा, मालिकम तेवर, तमाम टीएमसी के भी डेरेक ओब्रायन, महुआ मोटी, सारे लोग सांसद वहां थे। पूरा गद्दा बोरिया बिस्तरा हटा लिया गया है, राहुल गांधी को यहाँ से हटा दिया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि मीडिया कर्मी को भी, कर्मियों को भी उस तरह जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर आप मुझे 2 मिनट का वक्त दें तो शायद मैं अपने कैमरामैन को खोज पाऊंगी और आपको फिर डायरेक्ट लाइव तस्वीरें दूं।
1: नहीं, तस्वीरें हमें मिल भी रही हैं साथ में मौसमी, लेकिन यहाँ पर जो हम तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर नेताओं को गाड़ियों में भरकर आगे ले जाया जा रहा है, उस सब के बीच मौसमी एक चीज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमसे तो कोई संवाद ही नहीं हुआ, हमसे कहा ही नहीं गया कि मिलिए, तो क्या उस प्रोसेस के जरिए राहुल गांधी नहीं जाना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि वो अचानक वहां पर जाकर उनसे मुलाकात करें?
0: देखिए, राहुल गांधी का अंदाज धरना पॉलिटिक्स का है, यह हकीकत इसमें तटता है कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से कोई निवेदन दिया हो, रिक्वेस्ट दिया हो, लेकिन वो रिक्वेस्ट और निवेदन का अंदाज ही नहीं चल रहा है। अब देखिए, अंदाज ही अलग चल रहा है यहाँ पे। धरना पॉलिटिक्स को लेकर राहुल गांधी को लगा कि प्रधानमंत्री आवास में दोहराया, अब पुलिस स्टेशन के दोहराते हैं और उसके बाद जो है दोबारा आपने देखा कि 2 महीने के भीतर ही इस धरना पॉलिटिक्स को राहुल गांधी ने यहाँ दोहराया है। अब हम देख रहे हैं तब यहाँ से बाहर देखिए, श्वेता ये पीछे दरवाजा है, यहाँ गेट जाता है, इस गेट से बाहर निकलना है। इस गेट से कब राहुल गांधी बाहर निकलेंगे ये यक्ष प्रश्न है। बस से निकलेंगे, कार्यकर्ता सारे इस तरफ है अब, और यहाँ पुलिस के और पार्लियामेंट मिलिट्री फोर्सेस ने पूरा खाली करा लिया उस तरफ, तो यानी कि बाहर जाने का रास्ता पुलिस के लिए आसान होगा। यही तस्वीर यहाँ ग्राउंड से,
2: नरेंद्र मोदी देश के अवैध प्रधानमंत्री।
1: ये जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर जो बस जा रही है, दरअसल भीतर से लेकर बाहर तक जितने भी नेता मौजूद रहे ऐश्वर्या, उन सबको वहां से हटाया जा रहा है। और जाहिर है कि जो प्रोटेस्ट आज दिन भर जिसकी बात थी, उसमें राहुल गांधी अपनी बात को कम से कम जिन तक वो ये संवाद पहुंचाना चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनकी नाराजगी, मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा वो चाहते हैं, मुलाकात नहीं करने दे रहे, और उनको आखिरकार जबरन उठाकर वहां से ले जाना जो दिल्ली पुलिस ने अभी अभी किया है, उसमें हम क्या समझें कि प्रोटेस्ट ये आज भर की बात है या फिर ये जब तक इस्तीफा नहीं तब तक ये दबाव उस रूप में जारी रहेगा?
3: देखिए, दबाव पूरी तरीके से जारी रहेगा और मैं आपको आंकड़ों में दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ से पुलिसकर्मी जो चलते हुए आ रहे हैं, ये आंकड़े आपको एक कहानी बयां कर रहे हैं। जितने भी पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं, ये सब एक एक करके आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और धीरे धीरे करके ये सब उस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। और देखिए, महिला कर्मी जो है उनको भी बुलाया गया है और उनको बुलाने का जो कारण है, जितने भी पुलिसकर्मी आपको मेरे पीछे नजर आ रहे हैं, ये सब इसीलिए यहाँ पे हैं क्योंकि यही वो स्पॉट है श्वेता, जहाँ से थोड़ी देर अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनको आप देखेंगे कि यहीं से इनको बुलाया जाएगा और यहीं से डिटेन किया जाएगा। तो काफी भारी संख्या में देखिए महिला कर्मी जो आपको यहां पे नजर आ रही हैं, पुलिस कर्मी, वो सब इसीलिए यहां पर मौजूद हैं क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा अंदर है और बैरिकेड्स भी हैं, आरएफए के पर्सनल भी यहां पे आपको नजर आ रहे हैं। ये सब तैनाती जो है ये इसीलिए की गई है क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर जो है वो ये इस चीज का भी है कि बाकी जो एमपीज हैं कहीं ऐसा ना हो कि कई सारे और एमपीज आ जाएं या कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक तक है वो लोग भी यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर आपको नजर आए। जिस पॉइंट पर देखिए पुलिसकर्मी खड़े हैं, वो सब वो पॉइंट वही है जहां से थोड़ी देर के अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लेके जाया जाएगा, उतारा जाएगा और जो बसें यहां पे खड़ी हैं उन बसों के अंदर बहुत जल्द राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आपको नजर आएंगे। रेजिस्टेंस
1: बस के भीतर डालने की कोशिश प्रियंका वाड्रा को, और प्रियंका अपनी जगह पर खड़ी है, मुस्कुरा जरूर रही है, लेकिन जो प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है उनको उठाते हुए, वो रेजिस्टेंस जिसकी बात ऐश्वर्या कर रही है कि हम नहीं हटेंगे यहां से, वो ये भी दिखा रहा है कि हम इस मुद्दे से नहीं हटेंगे। अब प्रियंका, राहुल दोनों को वहां से लेकर और साथ में जो

0: कांग्रेस के बाकी नेता, विपक्ष के बाकी सांसद जो मौजूद हैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है, उन सबको यहां से ले जाया जाएगा। लेकिन इस समय पुलिस को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है प्रियंका वाड्रा को भी उस गाड़ी में सवार करने में, जिसके बाद उन्हें आगे ले जाया जाएगा। और आप ये धक्का मुक्की के दृश्य भी वहां से देख सकते हैं, जिसमें कि कांग्रेस के जो बाकी नेता, जो विपक्ष के नेता उस गाड़ी में अभी तक भर दिए गए हैं, वो मोबाइल से वीडियो भी बना रहे हैं। जाहिर है कि ये एक टकराव की और गतिरोध की एक ऐसी स्थिति है जिसमें चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध इस्तीफा लेने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत, जिसको देश के अलग अलग हिस्सों में राजनीतिक रूप में देखा जा रहा है। मौसमी से हम आगे संपर्क करेंगे। ऐश्वर्या जुड़ी हुई है हमारे साथ। ऐश्वर्या, कुल मिलाकर जब ये प्रोटेस्ट, जब दिल्ली पुलिस इतनी बड़ी संख्या में आई, उस समय नेताओं की संख्या, प्रोटेस्टर्स की संख्या कितनी रही होगी, और क्या अब एक एक करके आप इस पूरे हिस्से को खाली होता हुआ देख रहे हैं?
1: देखिए बिल्कुल श्वेता, एक एक करके हिस्से को खाली किया जा रहा है। पुलिस कर्मी देखिए बहुत भारी तादाद के अंदर यहाँ पर आपको मौजूद नजर आएंगे। ये सब इसीलिए मौजूद है क्योंकि दूसरी तरफ जो है, जो बस है उसको दूसरे वाले गेट से, यानी कि गेट नंबर 3 से निकाला जाएगा। हम बैरिकेड की इस तरफ खड़े हैं, बैरिकेड के उस तरफ आपको नजर आएगा और ज्यादा पुलिस कर्मी। अजय, आपको जो विजुअल्स दिखा रहे हैं वो बैरिकेड के उस तरफ के हैं, और उस तरफ से बस जो है वो निकाली जाएगी, और वहां से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो बस है उसमें से निकलेंगे। बैरिकेड के इस तरफ हम लोग खड़े हैं, लेकिन इस तरफ भी आपको नजर आएगा कि कितनी भारी तादाद के अंदर पुलिसकर्मी जो है और आरएएफ के पर्सनल है वो मौजूद है। देखिए दिन भर हमने देखा कि एक बार जब राहुल गांधी अंदर घुस गए थे, प्रियंका गांधी, हालांकि
0: मौसमी अगर आप सुन सकती हैं तो दिखाएं वो तस्वीरें
2: आपकी। जी देखिए, यहाँ पे हम लोग आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरी किलेबंदी हुई है। अभी हमें बैरिकेड फांध के आना पड़ा है इस तरफ, जो आकाशवाणी का गेट है। अब देखिए यहाँ पे गाड़ियों की मूवमेंट हो रही है और यहाँ पे गाड़ियों को निकाला जा रहा है यहाँ से। आप ये देखिए पीछे जो प्रियंका गांधी की गाड़ी है वो आपको नजर आ रही होगी, और राहुल गांधी की जो गाड़ी है वो यहाँ पे नजर आ रही है, और ये आकाशवाणी का वो गेट है जिस रास्ते से राहुल गांधी भीतर गए थे। लेकिन यहाँ पे डिटेंशन को लेके पूरी तरह से, वो बस दिखाइए संजीव, वो बस दिखाइए, वो डिटेंशन को लेके पूरी तरीके से राहुल गांधी को इसी बस में, आइए दिखाते हैं, राहुल गांधी को इसी बस में डिटेन किया गया है, जो बस आप देख रहे हैं, और वो बस हिल नहीं पा रही है रास्ते से। आइए आपको दिखाते हैं आगे, ये है वो बस, दिखाइए संजीव, आइए देखिए, उसके ऊपर ड्रोन भी चल रहा है। राहुल गांधी इस बस में है और हम लोग और अपनी तरफ से आगे जाते हैं जहां पे वो बस थोड़ा सा नजर आएगी क्लियरली। और यहां पे देखिए वो बस है जहां पे राहुल गांधी को डिटेन किया गया है। इससे आगे आइए आप, थोड़ा सा नीली बस दिखाइए संजीव जी, इधर राइट साइड पे लीजिए। और अभी देखना होगा कि बस बाहर निकल पाती है कि नहीं, क्योंकि दो दो बस अंदर गई हैं, एक सफेद आपको नजर आएगी और एक नीली नजर आएगी। और यहाँ पे देखना होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन्हीं लोग को, सारे लोग को यहाँ डिटेन कर लिया गया है आकाशवाणी भवन में। और आप यहाँ आगे की तरफ से दिखाएं तो आपको ज्यादा दिखाई देगा। अच्छा, बस को आगे ले जा रहे हैं
0: तो ये हम सीधी तस्वीरें देख भी पा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी को उस बस के भीतर बिठाया गया है। बाकी मैं आप सारे नेताओं को एक साथ, लेकिन यहां पर राहुल गांधी फिलहाल जिन तस्वीरों में हम देख रहे हैं वहां पर उनको बस के अगले हिस्से में अकेला दिख रहे हैं अभी। लेकिन जो जो हम शुरुआत से बात कर रहे थे कि पूरी तरीके से रिजिस्ट करके कि हम हटेंगे नहीं यहां से, उन्होंने दिखाया है कि मुद्दे से भी नहीं हटना है और मुद्दे पर डटे रहना है अभी।
2: बिल्कुल देखिए, यहाँ पे आपको प्रियंका प्रियंका गांधी और जो जितने नेता हैं उन्हें को इन्हीं बसों में भरा है राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। और ये वो वक्त है जब लगभग 9 घंटे बाद राहुल गांधी को डिटेन किया, सीधे आप देख रहे हैं कि ये नीली बस में दोनों लोग को बैठा दिया गया है और नीली बस अब बाहर ले जाई जा रही है पीछे के रास्ते से। आयरनी है कि उसी चुनाव आयोग की साइड से ये बस ले जाई जा रही है जहां से राहुल गांधी खुद निकलना चाहते थे। अब लगभग 12 बजे ये पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ और अब आप देखिए कि 11 बजे के बाद जैसे धरने पे राहुल गांधी 1:30-2 बजे बैठे हैं उसके बाद से ये पूरा मजमा जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगातार बढ़ता चला गया और उसके बाद राहुल गांधी के डिटेंशन की पूरी रणनीति बनाई गई। आइए चलते हैं संजीव वहां पे और हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखिए मीडिया का मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, यानी कि अगर मीडिया भी बाहर जाना चाहे हमें 2-3 बैरिकेड फाड़ने पड़े हैं, खड़े रहने भी नहीं दिया जा रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी से बातचीत करने की कोशिश करें, पर ये देखिए आप किस तरीके से 1, 2, 3, 4 जो जिस तरीके से पूरी लेयर्स हैं, 3-3, 4-4 लेयर्स और एक तरीके से पूरी घेरेबंदी एक वॉर फुटिंग पर तैयारी दिल्ली पुलिस ने की थी कि डिटेन करने के लिए और एकाएक सारी बैरिकेडिंग करके सारी प्लानिंग की गई। श्वेता तो ये तस्वीर आप देख रही है जो कि अनफोल्ड कर रही है ग्राउंड जीरो से जहां प्रियंका गांधी राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं को डिटेन कर लिया गया है।
0: मौसमी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कोशिश रही कि चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त को इस मुद्दे पर पूरी तरीके से घेरा जाए और एक जुट पर एक जुट वो नजर आए, आज अव्वल तो वो जो मार्च था और दूसरा जो धरना राहुल गांधी ने जब दिया, मौजूदगी उस हिसाब से सभी पार्टियों की रही?
2: देखिए पार्टियों की मौजूदगी मुझे लगता है ये कोऑर्डिनेशन में कांग्रेस के कमी रही क्योंकि राहुल गांधी ने जब यू टर्न मारा था श्वेता उस वक्त ही कांग्रेस को ये इतला करना चाहिए था बाकी इंडिया गठबंधन के नेताओं को, अभिषेक बैनर्जी हो या अखिलेश यादव फॉर दैट मैटर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे बताया गया कि शाम को फोन कॉल्स गई हैं, तभी डेरिक ओब्रायन और महुआ मोहित्रा आए हैं, अखिलेश यादव पहले ही लखनऊ पहुंच गए थे और ये वो वक्त था जब पहले ही कांग्रेस पर बोला गया है कि आप अकेले ही धरना कर लेते हैं, अकेले ही आप प्रोटेस्ट कर लेते हैं, ये उद्धव ठाकरे ने बोला था इंडिया ब्लॉक की बैठक में। तो मुझे लगता है कि वो एक कमी रही, जिस तरीके से अगर वो पहले बोलते तो शायद अखिलेश यादव साथ में राहुल गांधी के पेड़ के नीचे बैठे होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से पुलिस की घेरेबंदी है मुझे लगता है कि बस को कहीं दूर ले जाया जाएगा, पिछली बार छत्रसाल स्टेडियम ले गए थे और मुझे लग नहीं रहा कि आसपास पार्लियामेंट स्ट्रीट में, हमें लग नहीं रहा कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने या कहीं आसपास जैसे मंदिर मार्ग थाना होता या तुगलक रोड उस बस को ले जाया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी की गाड़ियां भी उनके साथ पीछे गई हैं, तो कुल मिला के जो डिटेंशन का प्लान था वो 8-9 घंटे बाद राहुल गांधी का पूरा हुआ जहाँ बाकी नेताओं को पहले ही डिटेन कर लिया गया था।
0: अब जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका दोनों स्पेशल प्रोटेक्टीज हैं, ये कारण भी रहता है कि जो मौसमी बता रही हैं कि उनको आगे आगे दिल्ली पुलिस अपनी गाड़ी में ले जा रही है और पीछे पीछे उनकी बाकी गाड़ियां भी वहां पर जा रही हैं, लेकिन आज दिन भर ये सीसी के विरुद्ध जो धरना प्रदर्शन चलता रहा है ये उसका कल्मिनेशन अभी इस समय जो आप देख रहे हैं, दो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रियंका अपनी जिनको गाड़ी में प्रोटेस्टर्स के साथ डाला जा रहा है वो रिजिस्ट कर रही हैं, भीतर नहीं जाना चाह रही हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कि उस बस में सवार आपको इस समय नजर आ रहे हैं जहां पर उनके चारों तरफ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की और दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है। केवल दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि रैपिड एक्शन फोर्स और सीएपीएफ के और भी जवान आपको उन तस्वीरों में दिख जाएंगे। अब ये हम आपको रास्ते की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐश्वर्या पालीवाल ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं और साथ में मौसमी जो कि ठीक उस जगह के बाहर आकाशवाणी भवन के बाहर जो हैवी बैरिकेडिंग लगी हुई है इस समय वहां की तस्वीरें दिखा रही हैं। ऐश्वर्या इस समय जो गाड़ी के साथ आप आगे बढ़ रही हैं ये किस तरफ, एक तो जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे कि अभी पिछला जब कांग्रेस जनता पार्टी के समय में धर्मेंद्र प्रधान वाला के विरुद्ध जब धरना प्रदर्शन हुआ था तब तो छत्रसाल स्टेडियम की तरफ ले जाया गया था, इस समय भी लग रहा है कि इस जगह से काफी ज्यादा दूरी पर नेताओं को छोड़ा जाएगा, रखा जाएगा हिरासत में।
1: जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना जी श्वेता, देखिए यहाँ से काफी दूर लेके जाया जाएगा और अभी इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि आखिरकार ये जो बस है ये रुकेगी कहाँ पर जाके, लेकिन जितनी भी सिक्योरिटी जो राहुल गांधी के साथ है वो सब साथ साथ के अंदर चल रहे हैं और उम्मीद की जाएगी कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर बस जो है वो एक जगह पे जाके रोकी जाए। लेकिन पुलिस अभी इस चीज को लेकर चुप है क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक डर है कि ऐसा ना हो कि जो समर्थक है कांग्रेस पार्टी के या विपक्षी पार्टियों के जो एमपीज है, ऐसा ना हो कि वो धरना देने के लिए उस वाले पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाए। लेकिन ये अंत नहीं है, कांग्रेस ये बात एकदम साफ कर चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये बात एकदम साफ बोली है कि सारे के सारे एमपीज को कल भी दिल्ली में मौजूद रहना है। बहुत से ऐसे एमपीज थे जो मेरी जानकारी है जो आज धरना प्रदर्शन के बाद निकलने वाले थे या निकल चुके थे, वो सब वापस आ चुके हैं। तो ये लड़ाई श्वेता कांग्रेस बनाम इलेक्शन कमीशन यहां पर रुकेगी नहीं, इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाकर बढ़ाती हुई नजर आएगी श्वेता।
0: और एक तरह से मौसमी उन सभी जो अपोजिशन पार्टीज है उसमें कांग्रेस लीड ले रही है इलेक्शन जो कमीशन के चीफ हैं उनके विरुद्ध इस लड़ाई को उसमें लीड ले रही है और राहुल गांधी उस प्रेशर के एक्सेलरेटर से पैर अपने हटाना नहीं चाहते।
2: बिल्कुल, यहाँ पे तो बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धरना मोड में नजर आ रही है और उस तरीके से आप देखिए कि लगातार राहुल गांधी जहाँ जाते हैं धरने के लिए तो वहीं पे जम जाते हैं, वहीं अड़ जाते हैं, वहीं लड़ जाते हैं। उस तरीके का मैसेज वो अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी दे रहे हैं। यही वजह जो पिछली बार आपको कार्यकर्ताओं की खेप नजर नहीं आई कांग्रेस की यहाँ पे जब वो धरना दे रहे थे, चाहे वो पार्लियामेंट स्ट्रीट हो या प्रधानमंत्री के आवास में, उस तरह की खेप इस बारी नजर आई। एक खेप जाती थी, डिटेन होती थी तो दूसरी आती थी, तो उस तरीके की रणनीति आई थिंक कांग्रेस ने इस बारी इख्तियार की है। काफी चाबी भी भरी है अपने काडर को और वो सड़कों पर कम से कम इस वक्त इस दौरान लड़ते हुए नजर आ रही है श्वेता।
0: ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी को सुरक्षा बल हटा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी को जब पहले हटने के लिए कहा गया उस समय वो जमीन पर लेट गए और सुरक्षा कर्मियों के ऊपर भी ये जिम्मेदारी होती है कि सामने जो व्यक्ति है वो सांसद है, LOP है और आप ऐसा नहीं है कि बहुत रफली उस व्यक्ति को उठा सकते हैं। इसीलिए आप ध्यान देंगे तो जो पीछे से पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ है उसने अपने हथेलियों को भी खुला हुआ रखा है। आपको ये ध्यान भी रखना होता है कि आप किसी तरह की चोट ना पहुंचा दें। विशिष्ट व्यक्ति हैं जो कि उस समय धरना कर रहे हैं। अब इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को की मौजूदगी हो जाती है कि केवल उस फोर्स से, उस ताकत से उनको वहां से हटा लिया जाए। तो आप कांग्रेस के और भी नेताओं को उनके पीछे देख सकते हैं जो कि जिनको हटाया गया, बस के भीतर डाला गया और राहुल गांधी को आखिर में बस में बिठाया गया है और वहां से आगे ले जाया जाएगा। मौसमी, अब तक निकाला जा चुका है उन्हें वहां से या अभी भी उनको रखकर गाड़ी वहीं पर मौजूद है?
3: नहीं नहीं
0: मौसमी, आवाज आ रही है? अच्छा ऐश्वर्या, आपको आवाज आ रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि गाड़ी आपको भीतर अभी दिख रही है या फिर सभी गाड़ियों को ले जाया गया है वहां से?
1: नहीं श्वेता, देखिए सारी गाड़ियों को यहाँ से लेके जा चुके हैं और मैं आपको बता दूं बैरिकेड्स हटाने की प्रक्रिया जो है वो भी अब चालू हो चुकी है। पुलिस धीरे धीरे करके जो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, धीरे धीरे करके इस पूरे इलाके को खोला जा रहा है क्योंकि ये सेंट्रल दिल्ली है, इसी को फेमसली लटियंस दिल्ली कहा जाता है। गेट नंबर 3 पीछे पीछे से निकाल दिया गया है और ड्रोन से इस समय सारे विजुअल्स लिए जा रहे हैं। ये देखिए पुलिस को काफी भारी तादाद के अंदर यहाँ पे रास्ता खोलते हुए नजर आएंगे, बैरिकेड हटाते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं हमें जो समझ आता है दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर रहेगी क्योंकि हो सकता है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट होके या कांग्रेस पार्टी एकजुट होके कल फिर से कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करे क्योंकि सबसे पहली बात उनकी मुलाकात मुख्य चुनाव आयुक्त यानेश कुमार के साथ नहीं हुई है, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर कदम नहीं रख पाए हैं और उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो वो मुलाकात करना चाहते हैं वो मुलाकात जब तक नहीं होगी, इसी तरीके का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो कल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आज था। हो सकता है कि कल भी विपक्षी पार्टियां या राहुल गांधी इसी तरीके से धरना देते हुए नजर आए। बैरिकेड्स हटाने की जो प्रक्रिया है वो हम आपको दिखाते हैं। यहां से बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं अब, और ये जो पूरा इलाका है जिसको एक छावनी में तब्दील कर दिया गया था, धीरे धीरे करके ये सब चीजों को खोला जा रहा है। और कब से कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे ट्रैफिक भी अलाउ कर दिया जाएगा, पुलिसकर्मी यहाँ से ट्रैफिक को भी अलाउ करेंगे यहाँ से, ताकि श्वेता
0: ऐश्वर्या दो चीजें हैं। पहले तो धर्मेंद्र प्रधान वाला जो मामला हुआ उससे पहले की बीजेपी को देखें और बाद की। पहले लोग बोलते थे कि हो ही नहीं सकता कि इस्तीफा हो जाए शिक्षा मंत्री का, लेकिन इस्तीफा हुआ। और यही कारण है कि आज जब ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध इतने बड़े पैमाने पर ये प्रदर्शन चल रहा है, उसमें लोग ये नहीं पूछते कि कहते कि हो ही नहीं सकता, बल्कि पूछते हैं कि क्या ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। आपको रुख से क्या लग रहा है इस समय?
1: देखिए श्वेता, एक बूस्टर डोज जिसे कहते हैं ना, वो पूरे के पूरे प्रदर्शन को मिला था जब बच्चे सड़क पे आ गए थे और जब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था। लेकिन इस बार बात थोड़ी सी अलग है। वो एक कैबिनेट मिनिस्टर थे भारतीय जनता पार्टी, उनसे इस्तीफा मांग सकती थी। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनको हटाने के लिए आपको इम्पीचमेंट करना पड़ेगा। तो क्या सारी विपक्षी पार्टियां इम्पीचमेंट करने के लिए तैयार हैं, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम पार्लियामेंट जब चालू होगा, तब हमें समझ आएगा कि आखिरकार इम्पीचमेंट पे सारी की सारी विपक्षी पार्टियां क्या एकजुट हैं, क्या वो उतने नंबर ऑफ सिग्नेचर्स लेके आ पा रहे हैं जिससे कि इम्पीचमेंट हो सके। तो इतना आसान नहीं है। अगर हम कंपेयर करें एक कैबिनेट मिनिस्टर का इस्तीफा मांगना और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हेड यानी कि इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा मांगना, तो एक पूरी प्रक्रिया है जो विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं उसको फॉलो करना पड़ेगा, और समय मांगने के लिए भी उनको उसी तरीके का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये लड़ाई अब काफी गर्मा चुकी है और कांग्रेस को लगता है 2024 में जिन्होंने दो शब्द कहे थे वोट चोरी, उनको लगता है कि इन दो शब्दों को लेकर वो आगे बढ़ सकते हैं और सरकार पर दबाव बना सकते हैं। किसी इसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा सरकार किसी तरीके से ले ले, लेकिन उसका भी एक प्रोटोकॉल प्रोसीजर होता है।
0: पर ऐसा भी नहीं है कि पहली बार ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध इस तरह की कोई कार्रवाई होगी। मतलब विपक्ष के निशाने पर लगातार वो रहे हैं। पर मौसमी, अगर हम इसको प्रक्रियाबद्ध रूप में देखें कि किस तरीके से इस्तीफा हो सकता है, इस्तीफा अगर नहीं होता है तो कैसे हटाया जा सकता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी अब उस संवैधानिक रास्ते को भी तय करने का मन बना रही है कि प्रोटेस्ट रहें लेकिन जब संसद शुरू हो तो वहां पर इम्पीचमेंट का वो मोशन भी लेकर आए?
3: अपना नंबर भेजिए मुझे व्हाट्सएप 981895।
0: मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ी है, साथ में ऐश्वर्या पालीवाल भी। जी मौसमी, सुन पा रही हैं आप?
3: हाँ श्वेत जी, जी जी मुझे सुनाई दे रही है आपकी आवाज। मैं ये कह रही हूँ कि एक मिनट, इसमें नंबर एंटर कीजिए, मैं जरा कोशिश कर रही हूँ। राहुल गांधी जहाँ पे हैं वहाँ पे जाने की। तो श्वेता देखिए, इम्पीचमेंट वाला रास्ता इन लोग के लिए लंबा है, वो कारगर इन लोग के लिए नहीं होगा ज्यादा। तब तक हो सकता है कि उनकी सुनवाई हो, इम्पीचमेंट एक्सेप्ट हो, नहीं हो तब तक बहुत लेट हो जाए। तो ये लोग जान चुके हैं, तो इम्पीचमेंट का रास्ता इनके लिए बहुत प्रबल रास्ता नहीं है। ऐसे में यही देखिए, आपकी सेशन हो, चाहे वो शीतकालीन सेशन हो या स्पेशल सेशन हो, उससे पहले ही राहुल गांधी ने जो है टॉप गियर दबा दिया है। एक तरफ सीजेपी प्रोटेस्ट कर रहा है, दूसरी तरफ आईसा लेफ्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कांग्रेस इस इंतजार में नहीं बैठ सकती कि संसद में जब इम्पीचमेंट आएगा तब हम आगे इस कहानी को बढ़ाएंगे। और यही वजह है कि आप देखिए, राहुल गांधी ने 10 तारीख का जो प्रोटेस्ट है उससे पहले ही इसमें इस पूरे मसले पर टॉप गियर दबा दिया। अभी अक्टूबर 6 है, अक्टूबर 8 को भी धरना है और कल तमाम सांसदों को बुलाया गया, इसको और तूल देंगे। मुझे लगता है कल राहुल गांधी फिर चुनाव आयोग पहुंच जाएंगे। तो ये पूरी कहानी जो है अनफोल्ड हो रही है, बेहद अग्रेसिव मोड में यहां राहुल गांधी नजर आ रहे हैं।
0: तो ये बस के भीतर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज सबके हाथ में एक हथियार है, मोबाइल फोन का, और आप इमरान प्रतापगढ़ी समेत बाकी सभी कांग्रेस नेताओं को यहां पर देख रहे हैं जहां पर यह नारा लगाया जा रहा है ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध, उनके इस्तीफे के लिए कि उनको जाना होगा। और मौसमी, जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं कि जो ये राजनीतिक रास्ता है अपनी बात को भी सामने रखने का, उसको हम इस रूप में समझें कि एक दिन के प्रदर्शन से ये संभव नहीं होगा। अगर आप संवैधानिक रास्ता नहीं अपनाना चाहते हैं और सड़क पर जो सियासत होती है जिसका संदेश ज्यादा स्पष्ट लोगों तक पहुंचता है, वो रास्ता अगर आप अपनाना चाहते हैं तो एक दिन का प्रदर्शन नहीं बल्कि ये प्रदर्शन लगातार चलेगा। कांग्रेस पार्टी इसी मूड में है।
3: बिल्कुल, देखिए मैं यही कह रही थी कि टॉप गियर लगा लिया और इसी मोड और मूड में नजर आ रही है, जहां राहुल गांधी जो है, आप देखिए कि मेरे सामने ही वो पहले उनको डिटेन किया गया, वो बस में घुसे, उसके बाद वो उतर गए, उसके बाद वो संसद की तरफ मार्च करने लगे, फिर उनको एकाएक आइडिया आया कि मैं चुनाव आयोग की तरफ मार्च करता हूं और वो चले गए आकाशवाणी भवन। वहां पे भी बिल्कुल संकरा रास्ता था, गेट नहीं खुला था, बीच में रस्साकशी हुई और उसके बाद वो वहां चले जाते हैं। तो अपने आप में वो लगातार अपनी टैक्टिक्स चेंज कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से जो डिफेंस कहते हैं कि डिफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस, तो एक तरीके से यहां पे धरना पॉलिटिक्स में एक डिफेंस है और उसी में वो काफी ऑफेंसिव और अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। एक बार जिक्र उन्होंने जरूर किया था कि किस तरीके से वो अपने अपोनेंट्स के मूव्स को वॉच करते हैं, कई बार मार्शल आर्ट्स का जिक्र कर चुके हैं और उससे जो है वो सीखते हैं और फिर डिफेंसिव टेक्निक से न्यूट्रलाइज करते हैं। तो हालांकि ये कहना कि वो यही कर रहे हैं बहुत मतलब कि ज्यादा रीडिंग होगी, पर मुझे लगता है कि आप देखिए कि राहुल गांधी काफी अपने डिफेंस में रेजिस्टेंस में ही एक मैसेजिंग दे रहे हैं और यहां पे महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रियंका गांधी ने पिछली बार जब वो पार्लियामेंट स्ट्रीट में धरने पे बैठे थे तो प्रियंका गांधी ने कहा कि अब चलते हैं। वो दोपहर का वक्त था या कुछ था क्योंकि पुलिस सुन नहीं रही थी, FIR हो नहीं रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा जिसको जाना है जाए, मैं यहीं पे बैठा रहूंगा। तो ये ऐसा नहीं है कि एक कलेक्टिव स्ट्रैटेजी है, ये राहुल गांधी का स्टाइल है, जिस चीज पे वो अड़ते हैं तो वो किसी के नहीं सुनते हैं। ये प्रियंका गांधी भी पहले ये कह चुकी हैं और इस बात को लेकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर एक बार हमने फिर से देखा है कि राहुल गांधी अड़ गए हैं। हालांकि पिछली बार जिस तरह का CJP मूवमेंट हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसको लेकर राहुल गांधी ने एक तरीके से ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस फ्रंट पे थी, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर लगातार राहुल गांधी संसद के पहले दिन से बनाते रहे और लगातार अटैक करते रहे, तो कांग्रेस को लगता है कि ये नीति जो स्ट्रैटेजी है वो कारगर साबित हो रही है, इट इज वर्किंग आउट, और उनको लगता है कि मास मूवमेंट इससे पैदा होगी। अब देखना है कि क्या जनता भी वाकई में कांग्रेस के पीछे चलती है या इंडिया ब्लॉक इतना कन्विंस होता है कि उनको लगता है कि राहुल गांधी की इफेक्टिव टेक्निक है, ये बड़ा सवाल है।
0: क्योंकि मौसमी इसमें दो चीजों को भी हम ध्यान में अगर रखें, नंबर वन ये कि क्या अगर युवा नहीं जुड़ते CJP वाले उस प्रोटेस्ट में और धर्मेंद्र प्रधान के विरुद्ध जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, तो क्या उसका नतीजा वही होता जो अभी नजर आया, और क्या केवल एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का नतीजा वो होगा। दूसरा ये कि जब कोई क्रांति अगर कहते हैं हम तो वो अधूरी रह जाए तो उसका इम्पैक्ट पॉलिटिकली तो कम से कम वैसा नहीं पड़ता है।
3: बिल्कुल, देखिए ये इसको मतलब कि ये कोशिश है कि इसको 2029 तक खींचने की, कि जनता ही जो है कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाए, और एक नेता ये कह रहे थे कि जनता पहले ये डिसाइड करती है किसको हटाना है। तो ये वॉर देखिए, छात्रों की गूंज में भी राहुल गांधी ने पहले कहा था कि पॉलिटिकल नहीं है, आपको याद होगा श्वेता, लेकिन धीरे धीरे हर अपने छात्रों की गूंज की सीरीज में एडिशन में वो पॉलिटिकल अटैक बढ़ाते चले गए और अंत में ये हुआ कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ RSS और ज्ञानेश कुमार और पूरा जो उनका पॉलिटिकल अटैक है वो सारे चेहरे उन्होंने बताए। पुणे में उन्हें स्पेशल पेट्रियार्की कहा, उसके बाद उनको कॉन्स्पिरेटर्स बताया, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कॉन्स्पिरेटर्स वो इंदिरा भवन में दिखाते हैं, वही कॉन्स्पिरेटर्स को उन्होंने छात्रों की गूंज में भी दिखाया। तो जाहिर तौर पर ये बहुत ही ज्यादा जनता का इशू उठाना और उसको फिर उसके बाद पॉलिटिकली स्पिन कर देना, ये राहुल गांधी की लेटेस्ट टैक्टिक रही है, और चाहे वो पेट्स का इशू हो, चाहे वो विमेन सेफ्टी का इशू हो, या फिर पेपर लीक का इशू, जिस तरीके से राहुल गांधी ने पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाने की रणनीति इख्तियार की है, मुझे लगता है आने वाले समय में इसको वो और ज्यादा अग्रेसिव करेंगे और एक तरीके से क्रेडिबिलिटी को।
4: they can take us as many times. We will come back.
5: We are continuing this protest. Kyanesh Kumar resigns. No matter what they do to us, we're not lending. We are going to continue with this.
4: And through your channel, we'd like to tell the people of India, we're not fighting for ourselves. We're fighting for everyone. It's high time everyone got on the streets. It's high time everyone got on the streets. This is out of control.
5: We are fighting for those 13 crore votes that were deleted. We are fighting for the people. Fighting against the people who is dealing with this. Fighting
4: People want to vote the BJP, they'll vote the BJP. There's no problem. I don't have a problem with that. What are you so scared about?
1: They allege that they were mishandled, manhandled by the Delhi police, and the protest continues. Over to the studio. Back to the studio.
0: महुआ मोइत्रा को आप उस बस से सुन रहे थे जहां पर उनको लेके जाया जा रहा है, लेकिन इसमें मौसमी एक बात हो जाती है ना कि महुआ मोइत्रा के राज्य का चुनाव हो चुका है, वहां पश्चिम बंगाल का चुनाव हो चुका है, पर क्या अखिलेश यादव जैसे साथी इतना समय दे पाएंगे अगर ये आंदोलन यहां दिल्ली में चलता रहा और उनके इंटरेस्ट यूपी में रहे जहां पर उनको विधानसभा चुनाव में एक तरीके से डू और डाई मुकाबला है। ऐश्वर्या, यही सवाल आपसे कि जो सहयोगी हैं उनके पास भी इस समय जो काम है वो दिल्ली के भीतर रहकर, जहां पर चुनाव आयोग है, जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त बैठते हैं, उनके विरुद्ध ऐसा प्रदर्शन क्या सभी साथी कर पाएंगे?
1: देखिए श्वेता, ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपने पूछा और एकदम सही सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए जैसा आपने भी कहा डू और डाई वाली सिचुएशन है। 2027 में जो आगामी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, तो क्या वो हर 10 दिन हर 15 दिन के अंदर देश की राजधानी यानी कि दिल्ली आ सकते हैं और इस तरीके का धरना प्रदर्शन कर सकते हैं या नहीं? देखिए टीएमसी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कई महीनों पहले से उंगली उठाना शुरू कर दिया था चुनाव आयोग पर। मैं आपको बता दूं, जब वो अंदर भी आए थे कमीशन से मिलने तो बहुत हीटेड डिस्कशन हो गया था। बाहर आके डेरिक ओब्रॉय ने बोला कि हमारी बातचीत हुई लेकिन हम जो अपनी बात करना चाह रहे थे चुनाव आयोग हमारी बात सुन नहीं रहा था। और पहली बार टीएमसी के जो सांसद थे उन्होंने बाहर आके बोला था कि जब हम तीनों से मिलने जाते हैं पूरे जब हम जाते हैं अंदर तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेश कुमार यानी किसी इसी बात करते हैं, बाकी लोग बात क्यों नहीं करते हैं। और इसी को उन्होंने एक बार फिर से उठाया जब रिपोर्ट सामने आई कि कहीं ना कहीं नोटिसेस कमीशन के अंदर ही लिखे गए थे। तो क्या अखिलेश यादव हर समय भाग कर आएंगे दिल्ली और इस तरीके के धरना प्रदर्शन के अंदर एकजुट रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। समय कांग्रेस पार्टी को लेकिन यह लगता है कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बीते कई सालों में कर चुके हैं, 2024 में उन्होंने एक नारा दिया वोट चोरी, उसको कहीं ना कहीं हवा मिल रही है। और यही कारण है कि आपने देखा आज अभिषेक बैनर्जी भी थे, अखिलेश यादव भी थे, लेकिन वो डिटेन हुए और वो यहां से चले गए। लेकिन प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, इन लोगों ने मिलकर जिस तरीके का 7.5 घंटे का धरना प्रदर्शन किया, कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को मानिए जैसे ओन कर लिया है कि यह हमारा मुद्दा है और हम तब तक नहीं शांत रहेंगे जब तक सीईसी यानी कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाएगा।
0: मौसमी, रियलिस्टिकली कांग्रेस पार्टी के नेता किस तरह के निष्कर्ष को देख रहे हैं इसमें? क्या वो एक नतीजा सोच रहे हैं कि होगा, चाहे ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के रूप में हो या फिर किसी स्वीकृति के रूप में हो, किसी संशोधन के रूप में हो, या फिर केवल इस प्रोटेस्ट के जरिए एक बड़ी मैसेजिंग से वो संतुष्ट होंगे?
3: देखिए, मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी ये कई बारी कह भी चुके हैं, वो बिल्कुल श्योर हैं कि ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा, उनको इस बारे में डाउट नहीं है। और कई बारी आप देखिए इंडिया ब्लॉक की बैठक में बहुत बड़ी बात राहुल गांधी ने कही थी और वो रिपीट की है उन्होंने कि प्रधानमंत्री जो है वो अब उनका ही इज ऑन द वे आउट। तो उनको ये लगता है कि मोदी सरकार पर, ये राहुल गांधी को लगता है कि मोदी सरकार पर अब जनता को भरोसा नहीं है और जनता ही राहुल मोदी सरकार को बाहर करेगी। वो कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री जो थे अब उसका शैडो है वो वीक है और मुझे लगता है कि अब मोदी सरकार चल नहीं पाएगी। और इसको लेकर उन्होंने यहां तक चली गई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लिया था। हालांकि इंडिया ब्लॉक की बैठक में इस बात का जिक्र जरूर हुआ पर वो रेजोल्यूशन में नहीं था। लेकिन कुल मिला के ये राहुल गांधी के मन में मुझे नहीं लगता श्वेता कोई भी संशय है कि ज्ञानेश कुमार का वो इस्तीफा चाहते हैं और लेकर रहेंगे। ये उनको लगता है कि इसके लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। अब कितना उनके साथ इंडिया ब्लॉक इसको लेके आता है, ज्ञानेश कुमार को लेके तो इस में सारे इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स भी एकजुट है। क्या वो एम्बिट बढ़ता है, ये बड़ा सवाल है। क्या राहुल गांधी वाकई में सबको एक साथ लेके आगे बढ़ पाते हैं? क्या वो चुनावी मुद्दा वोटरों के दिमाग में वो मुद्दा बनता है? जिस तरह से छात्रों की गूंज राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या वो जो छात्र वहां पे आ रहे हैं वो इतना कन्विंस्ड है राहुल गांधी से कि अगर वो मोदी सरकार की नीति से खुश या नाखुश है तो राहुल गांधी को वोट डालेंगे? ये भी अभी सवाल बहुत बड़ा है। आप आंदोलन कर सकते हैं लेकिन क्या आपको एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर देखा जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और कांग्रेस भी जानती है कि इस खाई को पाटना अभी बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत बड़ा फासला है। जरूरी नहीं एनएसयूआई के चुनाव
6: गहरी और मुझे लगता है कि पार्टी के भीतर भी बहुत मंथन होगा और वही बात है कि कम से कम शुरुआत हो और शुरुआत के साथ प्रोटेस्ट में वो संजीदगी दिखे। श्रेया चटर्जी भी हमारे साथ हैं। श्रेया, आप क्या जानकारी अभी तक कुछ है कि पुलिस कहां पर ले जा रही है जितनों को डिटेन किया गया है?
7: श्वेता देखिए, जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बस में पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कम्युनिकेट किया है कि न्यू पुलिस लाइन जो किंग्सवे कैंप नॉर्थ दिल्ली में स्थित है वहां पे इन लोगों को ले जाया जा रहा है। और सुबह जब एमपीस को डिटेन किया गया था उनको आसपास के थाने में ले जाया गया था, लेकिन क्योंकि आज बहुत लंबे देर तक राहुल गांधी ने अपना धरना प्रदर्शन किया तो किसी भी आसपास के पुलिस स्टेशन को तो उनको नहीं ले जाएंगे ताकि तुरंत वो छूट के वापस ना आ जाए, इसीलिए शायद किंग्सवे कैंप का लोकेशन चूज किया गया है। फिलहाल जो कांग्रेस की तरफ से भी कम्युनिकेशन आ रही है एवं महुआ मोइत्रो ने भी ये बताया कि उनको किंग्सवे कैंप ले जाया जा रहा है।
6: ये सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं राहुल गांधी बाकी नेताओं के साथ उनको इस बस में, जो नीली बस हम आपको दिखा भी रहे थे काफी देर से, उसमें डालकर आगे की तरफ ले जाया जा रहा है। जो श्रेया जानकारी दे रही है कि मुमकिन है कि किंग्सवे कैंप की तरफ पुलिस लाइन्स में इन सभी डिटेन्ड नेताओं को ले जाया जा रहा है। राहुल गांधी दरअसल सुबह से ही, जब से धरने पर रहे उस समय से कहते रहे कि वो हटेंगे नहीं आकाशवाणी भवन से और पुलिस को अगर दिक्कत है तो दूसरी जगह बता दे। सुबह मार्च के समय से ही राहुल गांधी को देखकर लगा कि वो चुनाव आयोग को खबरदार करने के लिए पूरे प्लान से आए, इसीलिए वो सीधे आकाशवाणी भवन पहुंचे जहां से उन्होंने चुनाव आयोग के मुख्यालय जाने की कोशिश की।
8: इनमें से सारे के सारे, मैं सोच समझ के कहता हूं, इनमें से सारे के सारे किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देखना, इनमें से एक व्यक्ति बच के नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा।
9: कथित वोट चोरी के मामले पर राहुल गांधी लगातार ज्ञानेश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को लेकर एक ही चेतावनी दे रहे हैं।
8: चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो ज्ञानेश कुमार हो, चाहे वो मोहन भगवत हो, व्हाट हैज बीन डन टू माय कंट्री, टू आवर कंट्री इज कॉल्ड ट्रीजन, नोबडी इज गोइंग टू एस्केप।
9: राहुल गांधी ने ये बातें अपने दिल्ली में आकाशवाणी कैंपस में धरने के दौरान कही, जहां वो निर्वाचन सदन की तरफ जाने के लिए चले। जब आगे नहीं जाने दिया गया तो वो धरने पर बैठ गए, साथ में प्रियंका गांधी भी रहीं।
8: कुछ समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज आए थे और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे। यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका। हम देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम देश की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। पता नहीं क्यों 300 एमपीज को यहाँ पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है।
10: इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को ठीक से चलाने का है। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं, तो पता नहीं देश में क्या हो रहा है। अगर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन कमीशन नहीं मिलेगा तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है।
9: आकाशवाणी कैंपस में चटाई बिछाकर प्रियंका समेत कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। दिल्ली पुलिस के अफसर भी राहुल प्रियंका से बात करने पहुंचे तो राहुल ने डीसीपी से बात करने प्रियंका गांधी को भेजा। मुलाकात के बाद राहुल बताने आए कि क्या बात हुई।
11: अभी यहाँ बैठे हैं ये पुलिस ऑफिसर्स ने आप लोगों को?
10: मैंने आपको बोला है? नहीं, मैंने पुलिस वालों से कहा है जी। एक सेकंड, मैंने पुलिस वालों से कहा कि देखिए मैं पहले वहाँ बैठा था, वहाँ से आपने मुझे हटा दिया, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। यहाँ से आप हटाना चाहते हो, मैं सिर्फ पुलिस वालों को कह रहा हूँ ठीक है यहाँ से हटाना है यहाँ से हटा दो, मगर मुझे बता दो मैं इस देश में कहाँ पर बैठ सकता हूँ। मैं बस बैठना चाहता हूँ सर। और पुलिस वालों से मैंने कहा है, प्यार से कहा कि देखिए आप मुझे बता दीजिए,
11: पुलिस ऑफिसर्स आपको लेकर
10: बता दीजिए कहाँ कहाँ बैठ सकता हूँ। इंडिया गेट पे बैठ सकता हूँ, जंतर मंतर पे बैठ सकता हूँ, सड़क पे बैठ सकता हूँ, कहाँ बैठ सकता हूँ, मुझे बस एक जगह बता दीजिए।
9: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 19 विपक्षी पार्टियों ने सुबह से डेमोक्रेसी मार्च निकाला। निर्वाचन सदन की ओर विपक्ष के नेता बढ़े तो दिल्ली पुलिस ने रास्ते में भारी बैरिकेड लगाकर मार्च को रोक दिया। रास्ता रोके जाने के बाद राहुल गांधी बैरिकेड पर चढ़ गए और काफी देर तक तिरंगा लहराया। इस बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ज्ञानेश हो गया भाई, अब इस्तीफा देने का समय आ गया। इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया। उन्हें बस में ले जाने की कोशिश की लेकिन सांसदों ने बस रोक दी। इसके बाद राहुल और प्रियंका बस से उतरे, रिसेप्शन गेट से आकाशवाणी भवन में दाखिल हुए और वहीं बैठ गए।
2: जो पेशेंस और सब्र दिल्ली पुलिस दिखा रही है, एक रीथिंक हुई है स्ट्रैटेजी में। सांसद हैं, इनको मारपीट नहीं सकते, इनको डिटेन करने के लिए ज्यादा रस्साकशी नहीं कर सकते। उस तरह का सौम्यता और आग्रह करके, अनुरोध करके उनको डिटेन कर सकते हैं। तो उसमें जो नेता डिटेन हो गए वो डिटेन हो गए। कई लोग नहीं जाना चाहते थे तो भी उनके लिए एक घेराबंदी करके उनको भेज दिया गया। अब तीसरी स्ट्रैटेजी ये है कि राहुल गांधी ने इसको एक लॉन्ग ड्रॉन पॉलिटिक्स बैटल की तरह ले लिया है और यहाँ तक पहुंच गए थे राहुल गांधी हमारे सामने ही, और फिर अबाउट टर्न यू टर्न लेके आकाशवाणी भवन अंदर घुस गए।
9: जैसे ही राहुल आकाशवाणी भवन के अंदर दाखिल हुए प्रियंका गांधी भी वहाँ पहुंच गई। इस बीच बताया गया कि राहुल गांधी आकाशवाणी भवन से ईसीआई में जाने की कोशिश कर रहे हैं।
6: सचिन पायलट हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। सचिन जी, जिस तरीके से आज पूरे दिन का प्रदर्शन रहा है और अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी को वहां से ले जाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी क्या अपने इस प्रदर्शन पर और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेने के लिए अभी लगातार इस तरह के प्रोटेस्ट करती रहेगी?
12: ज्ञानेश कुमार जी ने जो किया है वो लोकतंत्र की भावना का उल्लंघन किया है, संविधान कानून का उल्लंघन किया है। और लोकतंत्र में अगर निर्वाचित सांसद उनसे मिलना चाहते हैं उनको क्या आपत्ति हो सकती है? और मुझे बड़ा खेद है जो व्यवहार आज किया गया सांसदों के साथ, वरिष्ठ सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन सबके साथ व्यवहार किया गया। पुलिस बैरिकेड लगाकर बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया और अब उनको उठा के ले जा रहे हैं। हम इतना चाहते हैं कि जो सच्चाई है वोट चोरी की, जो प्रमाणित है इलेक्शन कमिश्नर के खुद सदस्यों ने किया है, हम सिर्फ उस पर अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग मुझे लगता है कि किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक संवैधानिक संस्था का जो एक मान मर्यादा होती है वो तार तार करती होंगे आज।
6: सचिन जी, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि ज्ञानेश कुमार से मिल न लें। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अगर अपॉइंटमेंट लिया जाए तो मुलाकात हो सकती है।
12: अपॉइंटमेंट कहाँ दे रहे हैं वो? अगर 300 सांसद एक इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं, मिलने में क्या आपत्ति है? वो जानते हैं उन्होंने गलत किया है और वो अब सब सर्जरी रिपोर्ट कह रहा है जो उन्होंने किया, प्रमाणित हो गया बच्चों के, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, विपक्ष कह रहा है, पूरा देश कह रहा है, मिलना तो उनको चाहिए था। अगर मिलना नहीं चाहे तो सांसदों को जिस प्रकार से आज बसों में भर के थानों में ले जाया गया है, ये पूरा देश देख रहा है कि सरकार की मंशा है बल प्रयोग कर कर आवाज को दबाना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया कि देश के हर कोने में ये बात उठेगी, न्याय की उठेगी, और निर्वाचन आयोग ने जो अब तक जो कार्रवाई करी है वो गैर कानूनी इलीगल है, उस पर हम लोगों को सख्त चाहिए। सरकार को जवाब देना पड़ेगा।
6: क्या आपको लग रहा है प्रोटेस्ट से, धरना प्रदर्शन से ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देंगे?
12: अब प्रदर्शन करना, धरना करना, भूख हड़ताल करना, मार्च करना, ये हमारे लोकतंत्र में संविधान में अधिकार हम लोगों को दिया हुआ है। लेकिन ये सरकार जिस प्रकार पुलिस को सामने लाकर अपने आप को बचाती है, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर हम सवाल पूछते हैं इलेक्शन कमीशन से तो भाजपा के प्रवक्ता सफाई देते हैं, इसका क्या मतलब है? अगर कुछ प्रमाणित किया गया है, फॉर्म 6 पर जो कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, ज्ञानेश कुमार जी के सदस्य जो साथी हैं वो दोनों कहते हैं हमको मालूम ही नहीं था ये सब गैरकानूनी एफआईआर हो रहा है, तो निर्वाचन आयोग के जो मुखिया हैं सीसी, उनको आके बताना तो चाहिए, जवाब तो दें, कम से कम मुलाकात तो करें। वो मिलने से डर रहे हैं, मिलने से कतरा रहे हैं, ये बड़ा अजीबोगरीब हालत उन्होंने पैदा किया देश के।
6: क्या इम्पीचमेंट का रास्ता भी उनके खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मूव करके कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी?
12: अगर उनमें नैतिकता है उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सारे विकल्प खुले हैं। जनजागरण अभियान चलाया जाएगा, धरने दिए जाएंगे, मांग मांगी जाएगी, पार्लियामेंट के अंदर हो, इम्पीचमेंट हो, कानूनी सलाह, सब सारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन अब ये जग जाहिर हो चुका जो राहुल गांधी जी 3 साल से बोल रहे थे, अब प्रमाण के तथ्य के साथ पूरा देश देख चुका है कैसे सीसी बेनकाब हुआ है देश के अंदर।
6: सचिन जी, ये प्रोटेस्ट कितना कांग्रेस का, कितना इंडिया गठबंधन का?
12: ये पूरे देश का प्रोटेस्ट है। इसको लीड राहुल गांधी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश इसमें लगा हुआ है। हर नौजवान, हर लोकतंत्र का रक्षक नागरिक आज सड़कों पर है। सब लोग चाहते हैं कि न्याय हो। एक ट्रांसपेरेंट निष्पक्ष जो संस्था है वो अगर कटघरे में खड़ी हो जाएगी तो चुनाव लड़ना, वोट डालना, वो सब कहां मान्य रहेगा?
6: एक बात के लिए कांग्रेस पार्टी को हमेशा सवाल पूछे जाते हैं कि एक प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है पर उसको आगे उस रूप में नहीं बढ़ाया जाता, क्या इस बार तस्वीर अलग होगी?
12: ये प्रोटेस्ट किसी मुद्दे का नहीं है, ये पूरी प्रणाली को जो उन्होंने धूमिल किया है, जो मुझे लगता है कि जो विश्वास लोगों का है इस संवैधानिक संस्था में, उस विश्वास को ठेस पहुंची है। ये सिर्फ बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये लोकतंत्र की जो आत्मा है, जो अब तक पूरी दुनिया में हमारा उदाहरण साल से रिपब्लिक है, आज उसको उन्होंने धराशायी किया। तो इसकी तो सजा मुझे लगता है कौन तय करेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और सरकार को चाहिए अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर जन आंदोलन को कुचलने की कोशिश ना करें।
6: सचिन जी, आपको लगता है कि अगर वो यूथ का साथ नहीं होता या सीजेपी साथ नहीं होती तो जो पेपर लीक का मुद्दा था उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के आधार पर लेना संभव हो पाता?
12: कोई पहला इस्तीफा नहीं हुआ है इस देश में, अनेक इस्तीफे हुए हैं। पॉलिटिक्स में जब मुद्दे उठते हैं, नैतिकता का प्रश्न आता है, तो मन मार कर या खुशी मन से इस्तीफे देने पड़ते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, वो पॉलिटिकल इस्तीफा था। लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर सवाल उठ रहा है और खुद उनके साथ ही उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर रहा है, और फिर भी आप अपने आप, उन्होंने कानून बनाया सरकार ने कि सीसी को एक इम्यूनिटी दी है पोस्ट रिटायरमेंट ऑल्सो, आजीवन उनको इम्यूनिटी है, किसी भी उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। तो साफ साफ दिख रहा है कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पहले से ही योजना बन गई थी, इसीलिए उनके माध्यम से सारे गैर कानूनी काम करवाए जा रहे हैं।
6: सचिन जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा समेत जितने भी जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सांसद नेता हैं, उन सबको दिल्ली पुलिस इस समय धरना स्थल से प्रदर्शन स्थल यानी आकाशवाणी भवन, जिसे उसमें तब्दील कर दिया गया था, वहां से लेकर बसों में आगे की तरफ जा रही है। हमारे संवाददाता उन जगहों पर उन गाड़ियों के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपको वो तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बहरहाल, लगभग 8 घंटे का ये पूरा धरना प्रदर्शन आज का इसके साथ ही समाप्त हुआ है। अभी के लिए खबरदार में एक ब्रेक का वक्त हो चला है, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: आगे आगे,
16: अरे उधर
15: उधर गया। करेक्ट करेक्ट,
17: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
19: चला
20: मैं,
19: अरे आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं।
21: चलो सखी उड़ ले,
22: अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट।
19: अरे जल्दी सीख गई,
20: कल से प्लेन चलाना सीखूंगी।
22: स्वाद सपनों का।
5: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डेज सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
16: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने पर
20: मेरे पास एक आइडिया है।
16: क्या?
20: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
23: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
20: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
24: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
23: कौन सी बनानी है?
25: यार लोन भूल गया। मैरी
26: इट्स
25: जस्ट अ गुड बैंक ना।
20: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
25: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
20: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन। देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
25: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
27: सर कैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। कैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
28: गड़बड़ है।
29: गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
3: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
4: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद। लायन कश्मीर हनी,
3: असली शहद असली स्वाद।

0: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
2: इट्स द माय वे।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
4: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम पूछेंगे, एक कचौड़ी दो समोसा, क्या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से लौटेगा भरोसा? देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आज जो हुआ उसे पूरी सियासत में भूचाल ला दिया है। चुनाव आयोग और SIR के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विपक्ष के तमाम सांसदों को दिल्ली पुलिस ने अब डिटेन कर लिया है। आकाशवाणी भवन के बाहर करीब 9 घंटे तक सड़क पर डटे रहने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी और दीपेंद्र हुड्डा समेत विपक्ष के तमाम बड़े चेहरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज सवाल यही है कि क्या CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से ही भरोसा लौट पाएगा? देखिए,

और अगली खबर, फ्लाई दुबई की फ्लाइट में हमला करने वाले ओमानी पायलट को लेकर नया खुलासा हुआ है। इजरायली मीडिया के दावे के अनुसार उसने कबूल कर लिया है कि उसका मकसद गाजा में हुई बमबारी का बदला लेने का था। इस बीच अमेरिका के सन न्यूज ने सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट किया जिसमें हमलावर पायलट को कट्टरपंथी बताया, लेकिन उस पर फोटो भारत के कैप्टन स्मिथ का लगा दिया। इधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की पत्नी उषा वैंस का हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त बैलेंस बिगड़ा। उनकी गोद में उनका 2 महीने का बच्चा भी था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके किसी भी सिक्योरिटी ऑफिसर ने, जो सामने खड़े हैं वीडियो में, मदद नहीं की। सवाल उठ रहे हैं कि प्रोटोकॉल ज्यादा जरूरी या इंसानियत।

अमेरिका में मुस्लिमों के बड़े संगठन काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस यानी CAIR पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसे आतंकी संगठनों की सूची में डाल दिया गया है। सवाल यह है कि अमेरिका को यह सब तभी क्यों याद आता है जब समस्या उनके खुद के घर तक पहुंच जाती है। और अगली खबर, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का नया चीफ नियुक्त किया गया है। आशुतोष दीक्षित अभी तक भारतीय वायुसेना में डेप्यूटी चीफ की भूमिका निभा रहे थे। उनके पास आसमान में करीब 3500 घंटे उड़ान भरने का अनुभव है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित 31 अक्टूबर को एयर चीफ मार्शल के पद पर कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह 31 अक्टूबर को रिटायर होंगे। इधर रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस के फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए एक बड़ी डील की है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ 661 करोड़ रुपए में ये डील हुई। ये नौसेना की समुद्री मारक क्षमता को और मजबूत करने के लिए किया गया है। इसके बाद नौसेना के युद्धपोतों पर ब्रह्मोस के बड़े स्तर पर तैनाती की जाएगी। इधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगा दिया है कि 2021 में चुनाव जीतने और सहानुभूति बटोरने के लिए ममता बनर्जी ने पैर में फ्रैक्चर का झूठा नाटक किया था। इसके जवाब में ममता बनर्जी के वकील ने सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग को कानूनी नोटिस भेजा है कि आखिर उनके मेडिकल रिपोर्ट्स शुभेंदु अधिकारी को दिए गए क्या। अगली खबर, आज दुनिया में लोगों के लिए चैन की नींद कितनी मुश्किल हो गई है इसके लिए प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जापान के टोक्यो में हाल ही में एक अनोखी स्लीप प्रतियोगिता आयोजित की गई। लोगों को 90 मिनट के भीतर सबसे जल्दी और गहरी नींद लेने की चुनौती दी गई। जीतने वाले के लिए भारी भरकम इनाम रखा गया था, लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह रही कि काम के तनाव और दबाव के चलते कई लोग चाहकर भी सो ही नहीं पाए।

अब साइबर ठगों से और सावधान होने की जरूरत है। वो वीडियो कॉल के जरिए ठगी कर रहे हैं, जैसे ही पीड़ित कॉल उठाता है दूसरी तरफ एक अश्लील वीडियो या न्यूड क्लिप चल रही होती है। ठग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए पीड़ित का चेहरा उस अश्लील वीडियो के साथ रिकॉर्ड कर लेता है और इसके बाद उस स्क्रीनशॉट या एडिटेड वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने या रिश्तेदारों को भेजने की धमकी देकर पैसे वसूले जाते हैं। गुजरात में अगली खबर, बीजेपी विधायक बच्चू भाई खाबड़, ये देखिए ये आया वीडियो, ये उनका घर है। विधायक जी हैं बच्चू भाई खाबड़, बंगला धुलवाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाने का आरोप लगा है। आरोप है कि बंगले की सफाई के लिए फायर सर्विस तैनात की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सामने आने के बाद विधायक से 2700 रुपए की फीस वसूली गई, लेकिन स्पेशल सर्विस देखिए

इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के लगातार शासन और सरकार के प्रमुख के रूप में काम करने के लिए कैबिनेट ने बधाई प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें उनके शासन की 10 उपलब्धियों को गिनाया गया है। इनमें गुजरात मॉडल, राष्ट्रीय योजनाओं, जन धन खाते, घर, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, गरीबी कम होने का जिक्र है। जबकि इसी बधाई प्रस्ताव में लखपति दीदी, महिला आरक्षण, स्टार्टअप, पीएम किसान और पीएम जनमन जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि संसद भवन के पास आकाशवाणी भवन के परिसर में 9 घंटे से इंडिया गठबंधन के सांसदों का जो धरना चल रहा था, उसे दिल्ली पुलिस ने सभी सांसदों को हिरासत में लेकर खत्म कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली पुलिस ने कैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया और हिरासत में ले जाने के बाद उन्हें कहां ले जाया जा रहा है, कितने घंटे ये पूरा आंदोलन उनका चला, दिल्ली की सड़कों पर वो किस किस हिस्से से गुजरे, कहां पर जाकर आकाशवाणी भवन में फिर वो बैठ गए। लगभग 9 घंटे तक वो इस विरोध प्रदर्शन में वहां पर डटे रहे। जब दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई शुरू की, तब राहुल गांधी ने वहां से स्वेच्छा से हटने से साफ इनकार कर दिया था और इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो

बताया जा रहा है। और ये सभी विपक्षी सांसद अब भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं और केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, तो ये तस्वीरें इस वक्त की आप देख रहे थे। कुछ ही देर पहले बस में इन सांसदों को ले जाया जा रहा था और वहां पर जानकारी ये दी जा रही है कि किंग्सवे कैंप उन्हें हो सकता है ले जाया जा रहा हो। इधर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर चुनाव आयोग ने भी अपनी सफाई दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि शाम 4 बजे तक उसके पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि विपक्ष के सांसद चुनाव आयोग से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं। पहली बार शाम 4 बजे दिल्ली पुलिस के माध्यम से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को यह संदेश दिया कि वो आयोग से मिलकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। इस वक्त भारत की राजनीति में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जो महासंग्राम छिड़ा है, पूरी दुनिया उसे देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट में यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग पर विपक्ष का भरोसा खत्म हो चुका है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो क्या भारत के चुनाव आयोग में विपक्ष का यह भरोसा लौट पाएगा। आज हम इस खबर के ऐसे पहलुओं का विश्लेषण करेंगे जिससे आपको ये पूरी खबर और इससे जुड़े सभी विवाद ब्लैक और व्हाइट में समझ आ जाएंगे। और इस विश्लेषण में हम सबसे बड़ा सवाल यही पूछ रहे हैं जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सवाल है, क्या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से विपक्ष का चुनाव आयोग में भरोसा लौटेगा? देखिए,

सबसे पहले ये देखिए कि आज हम ये विश्लेषण आपको क्यों दिखा रहे हैं। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एक विशाल पैदल मार्च सुबह निकाला। नाम दिया था सेव डेमोक्रेसी मार्च, यानी लोकतंत्र बचाओ मार्च। संसद भवन से शुरू हुआ यह पैदल मार्च 1 किलोमीटर दूर जाकर चुनाव आयोग के दफ्तर पर समाप्त होना था, जहां सभी विपक्षी सांसद एक धरना देकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करना चाहते थे। हालांकि विपक्ष ने अपनी तैयारियां की थी तो दिल्ली पुलिस ने भी इस पैदल मार्च को रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए थे। जंतर मंतर और लटिन दिल्ली में धारा 163 लागू करने से लेकर दिल्ली पुलिस ने 5000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया था और चुनाव आयोग जाने वाले कई रास्तों को बैरिकेड लगाकर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब विपक्षी सांसदों का मार्च संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़ रहा था, तब दिल्ली पुलिस ने उन्हें नीति आयोग और आकाशवाणी भवन के बीच वाले मुख्य मार्ग पर भारी बैरिकेडिंग करके रोक दिया था। यहीं पर राहुल गांधी और टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी पुलिस के बैरिकेड पर ऊपर चढ़ गए और राहुल

0: गांधी ने हाथ में तिरंगा लहराकर अपना विरोध भी जताया। इसी बीच पुलिस ने जब प्रियंका गांधी वाड्रा और बाकी नेताओं को हिरासत में लेने के लिए बस में बिठाया तो प्रियंका गांधी वाड्रा अचानक बस से नीचे उतर गई। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और दीपेंद्र हुड्डा ने पुलिस को चकमा दिया। वो आकाशवाणी भवन के मुख्य रिसेप्शन गेट से अंदर प्रवेश कर गए। आकाशवाणी भवन के परिसर में अंदर जाने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर बैठ गए बरगद के पेड़ के नीचे और धरने पर वो अड़ गए। इसी दौरान विपक्षी सांसदों ने पुलिस पर इस बात के लिए काफी दबाव बनाया कि वो प्रदर्शनकारी नेताओं को चुनाव आयोग तक जाने की इजाजत दे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन को आकाशवाणी भवन तक ही सीमित रखा। इस पूरे टकराव के बीच दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों की गाड़ियां भी आकाशवाणी भवन के अंदर पहुंच गई और पुलिस ने इस परिसर को चारों तरफ से घेर लिया। वहां प्रदर्शनकारी नेताओं और पुलिस के बीच काफी कहासुनी भी हुई और इस दौरान ये पूरा धरना चुनाव आयोग के दफ्तर की जगह इस पेड़ के नीचे ही केंद्रित हो गया था। देखिए,
1: गणेश कुमार सीमा दो,
2: सीमा दो, सीमा दो,
1: लोकतंत्र संसाई जिंदाबाद,
2: जिंदाबाद।

0: विपक्ष के इस पैदल मार्च में कांग्रेस अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार गुट की एनसीपी, वामपंथी दल बीजू जनता दल के नेता शामिल हुए। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ा जो धड़ा है वो आज इस पूरे विरोध प्रदर्शन में शामिल रहा। हालांकि ममता बनर्जी की आप जानते हैं कि उनके 20 सांसद निकल गए हैं तो उनकी ताकत काफी कम हो गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सबसे चौंकाने वाला नाम उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी का रहा, जो औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी नवीन पटनायक के निर्देश पर बीजेडी संसदीय दल के नेता मानस मंगराज के नेतृत्व में उनके सांसदों ने इस मार्च में हिस्सा लिया और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। जो विपक्षी दल इस पैदल मार्च का हिस्सा नहीं बने उनमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और डीएमके का नाम प्रमुख रूप से शामिल रहा, और यही एक बार फिर से इस बहस को जिंदा कर देता है कि क्या विरोध प्रदर्शन जो चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हो रहा है उसमें अलग अलग धड़े बन गए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक दिन अलग प्रदर्शन करती है, फिर ये पूरा जो गुट है ये अलग प्रदर्शन करता है, उधर मुंबई में सीजेपी का अलग प्रदर्शन होता है। अब ये समझिए कि विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए आज का दिन क्यों चुना और आज ये पैदल मार्च क्यों निकाला गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। जब विपक्षी दलों ने फॉर्म 6 के साथ जोड़ी गई अतिरिक्त शर्तों का विरोध करना शुरू किया था, तब चुनाव आयोग ने 26 सितंबर 2026 को एक प्रेस नोट जारी किया। चुनाव आयोग का तर्क था कि मई 2026 में बिहार के एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके तहत इस प्रक्रिया को सही माना गया। यानी दावा है कि चुनाव आयोग इस प्रेस नोट के जरिए यह कह रहा था कि अगर एक अलग एनेक्शर जोड़कर फॉर्म 6 में वोटर्स से उनके माता पिता या दादा दादी के बारे में जानकारी मांगी जा रही है, तो जब पूरे प्रोसेस को ही एसआईआर ने मंजूरी दी तो उसके साथ ये भी मंजूर हो गया। लेकिन जब यही बात सुप्रीम कोर्ट के सामने उठी और यह कहा गया कि चुनाव आयोग फॉर्म 6 में किए गए बदलाव को सुप्रीम कोर्ट की सहमति से मिलने की बात कह रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच नाराज हो गई। अदालत ने साफ कहा कि उसने संशोधित फॉर्म 6 को कोई मंजूरी नहीं दी है और यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी आई तो विपक्षी दलों को यह कहने का मौका मिला कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार झूठ बोल रहे थे और अब तो उन्होंने इस्तीफा दे ही देना चाहिए। हालांकि यहां चुनाव आयोग की दलील यह है कि इस मामले में झूठ राहुल गांधी बोल रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक फॉर्म 6 में उसने कोई बदलाव या संशोधन नहीं किया है, अलग से एक एनेक्शर को इसमें जोड़ा है। इस पर फैसला चुनाव आयोग के भीतर सर्वसम्मति से लिया गया है। लेकिन जो भी हो, फॉर्म 6 में इस एनेक्शर को भरना कंपलसरी है तो यह उसके साथ जुड़ गया। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने विपक्षी दलों को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने का एक नया मौका दे दिया, इसीलिए आज का यह विशाल पैदल मार्च निकाला गया और इसमें अखिलेश यादव को हिरासत में लेने पर भी काफी हंगामा हुआ। देखिए,
1: ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो,
2: चुनाव और से हराएंगे इन लोगों, चुनाव बायकॉट नहीं होगा।
0: इधर राहुल गांधी ने भी पुलिस की कार्रवाई और चुनाव आयोग के रवैये को लेकर तीन बड़े सवाल उठाए। पहली बात उन्होंने ये कही कि जब 300 सांसद यहां ज्ञानेश कुमार से मिलने आए हैं तब ज्ञानेश कुमार डरे हुए हैं और वो उनसे मिलने से छिप रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव आयोग से नहीं मिल सकते तो फिर इस देश में लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि वोट डालने के अधिकार को गैर कानूनी तरीके से छीनना एक राष्ट्र विरोधी काम है और अब ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना ही होगा। सुनिए,
3: हम देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम देश की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। पता नहीं क्यों 300 एमपी को यहां पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहां बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को ठीक से चलाने का है। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं, तो पता नहीं देश में क्या हो रहा है। अगर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन कमीशन नहीं मिलेगा तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है।
0: आज राहुल गांधी जिस प्लकार्ड को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उस पर लिखा था ज्ञानेश इट्स डन ब्रो। और इस शैली के पीछे दो बातें हो सकती हैं। पहला, इस मुद्दे पर जेंजी युवाओं को अपने साथ जोड़ना या इस मुद्दे को इस तरह पेश करना जिसमें आज की युवा पीढ़ी खुद को इस मुद्दे से जोड़कर देख सके और विपक्ष के खेमे में युवाओं का समर्थन बढ़े। क्योंकि आपको याद होगा जब युवाओं का पेपर लीक पर प्रदर्शन हो रहा था तो उन्होंने इस तरह के कई नारे लगाए थे। और दूसरा, ज्ञानेश कुमार को सिर्फ उनका पहला नाम लेकर संबोधित करना और उन्हें ब्रो कहना यह भी संकेत देता है कि विपक्ष अब ज्ञानेश कुमार को संवैधानिक पद पर होने की गंभीरता नहीं देना चाहता और यह दिखाना चाहता है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था निष्पक्ष नहीं रह गई। देखिए, ये मुद्दा उन 13 करोड़ वोटर्स से जुड़ा है जिनके नाम रिवीजन की प्रक्रिया में वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। और 13 करोड़ की का जो आंकड़ा है वो कोई छोटा आंकड़ा तो है नहीं। अगर रशिया जैसे देश की बात करें तो यह आंकड़ा उसकी कुल आबादी के लगभग बराबर है, 13 करोड़। जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, फिलीपींस, इजिप्ट, वियतनाम, ईरान, इनको मिलाकर दुनिया के 185 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 13 करोड़ या फिर उससे कम है। और इसीलिए अगर 13 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं तो यह मुद्दा शायद आपसे जुड़ा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं आपको अब स्क्रीन पर भी दिखाना चाहती हूं कि जिन 13 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो 13 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए हैं उनमें आप एक एक करके जब देखेंगे तो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर वोटर्स का नाम सबसे ज्यादा कटा है। तो सीक्वेंस में आपको दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं तीन जगह है। सबसे पहले है महाराष्ट्र, ठीक है, यह है एक कर्नाटक जो करोड़ में है, वो नंबर्स में आपके लिए सिंगल आउट कर रही हूं, ठीक है, जिससे आपको अंदाजा लगेगा। एक और देखिए उत्तर प्रदेश जहां पर करोड़ में है, ठीक है, तो ये हो गया कुल मिलाकर ये तीन राज्य हैं जहां पर करोड़ में कटा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है जहां पर 2 करोड़ 4 लाख, उसके बाद है महाराष्ट्र जहां 2 करोड़ 7 लाख, उसके बाद है कर्नाटक जहां 1 करोड़ 7 लाख। उसके बाद से अगर आप देखिए तो कई ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा यहां पर आपको दिखेगा पश्चिम बंगाल में 88 लाख, मतलब 89 लाख आप कह सकते हैं, 89 लाख के आसपास। उसके बाद से आप पहुंच जाइए सीधा तेलंगाना में देखिए 73 लाख के ऊपर है, ठीक है, 74 लाख तमिलनाडु में कटे हैं। हालांकि यहां पर देखिए विपक्ष की सरकार बनी हुई है, ये है तेलंगाना है इन तमाम जगहों पर। केरलम में लगभग 9 लाख वोट कटे हैं, इसी के साथ 34 लाख मध्य प्रदेश में कटा है, ठीक है, गुजरात में 68 लाख है, तो ये पूरा राजस्थान में 31 लाख, दिल्ली में 47 लाख, लगभग 48 लाख, 47.5 लाख, हरियाणा में 33 लाख 83 हजार, फिर यहां पर पंजाब में देखिए 20 लाख 67 हजार है, उत्तराखंड में लगभग 8.5 लाख, छोटे राज्य ये हैं तो उन छोटे राज्यों में कम संख्या में कटा है। ये बिहार भी देख लीजिए 47 लाख, यहां पर अरुणाचल प्रदेश 1 लाख 69 हजार, मेघालय 1 लाख 80 हजार, मणिपुर 1 लाख 59 हजार, त्रिपुरा में 2 वोट कटे हैं, इसी के साथ झारखंड में 43 लाख 62 हजार, उड़ीसा में 20 लाख 13 हजार, छत्तीसगढ़ में 25 लाख, तो ये और आंध्र प्रदेश में 44 लाख 90 हजार। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया कि किस राज्य में कितना वोट कटा है। इनमें जो सबसे ज्यादा कटे हैं उसमें कर्नाटक में भी देखिए विपक्ष की सरकार है और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने हैं। अब जो अगली चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये पूरा मामला कितना सीरियस है और इसको कितनी सीरियसनेस के साथ लेने की जरूरत है आज, तो उसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि एसआईआर में जो 13 करोड़ लोग हैं भाई ये कौन से लोग हैं और इनका मतलब ये इसी पर चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है ना। ये जी 13 करोड़ लोग, ठीक है, SIR में 13 करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें पहला जो नंबर है वो ये है जिसमें 2,77,00,000 लोग मृत हैं। तो ये तो वाजिब भी है कि भाई जिन जो मृतक हैं उनका वोटर आई कार्ड क्यों बना हुआ है, उनको हटाया गया है। जो अपनी जगह से शिफ्ट कर गए हैं यानी कहीं और चले गए हैं वो 7,91,00,000 है। पता नहीं लग रहा, सारा मामला इसी का है। ये जो 1,48,00,000 है जिनका पता नहीं लग रहा, अब ये कौन लोग हैं भाई? ये बात कही गई थी कि अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश से आए हुए हैं, तो फिर कौन है, उनकी पहचान कैसे होगी, इसमें कितनी संख्या उनकी है और कितने ऐसे वाजिब वोटर्स हैं जिनका वोट कट गया है किसी वजह से, है ना? ऐसा भी मुमकिन है कि आपने देखा ही होगा एक ही परिवार में कुछ का बन रहा है कुछ का कट रहा है, क्या उनमें से भी लोग इसमें हैं? तो फिर तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इधर डुप्लीकेट वोट जिनके हैं 1 करोड़ वो आप देख रहे हैं और अन्य जो है वो 8,40,000 डुप्लीकेट उनका ही है जो भाई दो जगह पे उनका वोट बना हुआ है, मतलब यूपी में रहते हैं तो यूपी में भी उनका बना हुआ है, पहले उससे दिल्ली में थे दिल्ली में भी है, तो दिल्ली यूपी दोनों जगह का उनका है। तो डुप्लीकेट जिनका वोटर कार्ड है वो इतने लोग हैं। तो ये लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला जो पूरा मामला है वो सबसे बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है कि ये जो लोग हैं 1,48,00,000 वो कौन है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बताना चाहते हैं, राहुल को लेकर किंग्सवे कैंप थाने पहुंची है दिल्ली पुलिस। जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी को लेकर किंग्सवे कैंप थाने पुलिस पहुंची है और राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है और थाने में इस वक्त लेकर दिल्ली पुलिस बैठी हुई है। राहुल गांधी को लेकर किंग्सवे कैंप थाने पहुंची है पुलिस। आकाशवाणी भवन जहां से उनको पुलिस ने हिरासत में लिया था ये कुछ देर पहले की आप तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद से अब जानकारी आ रही है। मौसमी क्या जानकारी है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या दोनों को वहां किंग्सवे कैंप ले जाया गया है?
4: किंग्सवे कैंप पहुंच गए अंजना, ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को
5: किंग्सवे कैंप में ही रखा गया है और रास्ते में हम लोग उनकी बस के पीछे पीछे चल रहे थे और जाहिर तौर पे जहां पे धरना हो रहा था उससे काफी दूर यहां पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लाया गया है। मुझे लगता है रात को उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन पुलिस के लिए ये सवाल था कि आखिर कितने देर तक ये धरना चलने देना है। लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि वो नहीं हटेंगे, तमाम आला अधिकारियों ने आके उनसे बातचीत की, उनको बोला कि जनता को ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, वो वीडियोस भी आउट आए हैं जिसमें प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपने बैरिकेडिंग कर दी है। फिर बीच में इंडिया ब्लॉक के भी कुछ सदस्य आए और उसके बाद एकाएक पलक झपकते ही बैरिकेड लग गई, अलग अलग डिविजन हुए आकाशवाणी भवन के बाहर और उसके बाद पीछे के रास्ते से राहुल गांधी को ले जाया गया। ये देखिए हम पहुंच गए किंग्सवे कैंप, भाई सब जरा हम उतरना चाहेंगे, तो ये देखिए बाहर आप देखिए, संजीव आप भी उतरने की कोशिश कीजिए। ये किंग्सवे कैंप में यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, तमाम कार्यकर्ता है जो यहाँ पे बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, अंदर राहुल गांधी है। आइए आपको तस्वीर दिखा, यहाँ पे बहुत भयंकर जाम था और कैमरामैन संजीव जो है ये तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे किंग्सवे कैंप में क्या तस्वीर है। ये आप देखिए तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं और ये पूरा गेट जो है जो फाटक है वो बंद कर दिया गया। ये देखिए राहुल गांधी की बस अभी आई है, ये हमारे पीछे एक और बस आ गई है जिसमें आप राजा वॉरिंग को देख रहे हैं, मानिकम टैगोर को देख रहे हैं और क्या राहुल गांधी भी इसमें बैठे, सवाल यही है। यहाँ पे देखिए मानिकम टैगोर, संजीव इधर आइए, कौन कौन है इस बस में मानिकम, कौन कौन है बस में, बस में
6: प्रियंका गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, ऑल ऑफ एमपीज हैज बीन डिटेन्ड फ्रॉम देयर एंड प्रियंका गांधी इज देयर एंड वी हैड बीन डिटेन्ड एंड शी इज देयर।
5: गांधी की बस आई है, प्रियंका गांधी मौजूद है बस में, प्रियंका गांधी मौजूद है बस में,
6: या प्रियंका गांधी जी इज देयर,
5: तो प्रियंका गांधी इस बस में मौजूद है, प्रियंका बैठी
7: हाँ जी भैया भैया
8: नहीं चलेगी नहीं चलेगी
9: राहुल गांधी जीते
7: इस तरह से डिटेन किया गया यू वर डिटेन
10: ओनली दे टेक अस हियर one hour long journey they take here far away from city their agenda is to save Ganesh Kumar nothing is going to be happen we will fix him india will fix him
7: Ganesh Kumar ko keh rahe KC Venugopal ki we will fix him Priyanka Gandhi aage baithi hai संजीव दिखाइए प्रियंका गांधी आगे बैठी हैं बताया जा रहा है यहाँ पे राजा वॉरिंग भी है केसी सर राहुल गांधी वॉज टेकन इन अनदर बस एंड ही इज बीन आल्सो पुट लाइक केसी
10: नहीं है हमारे पास जानकारी नहीं है
7: यहाँ पे देखिए इस बस में ऊपर की तरफ इस बस में आप देखिए कि ऊपर की तरफ आप देखिए कि तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और यहाँ पे राजा वॉरिंग जो है और बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी इस बस में है उस तरफ मैं कोशिश करती हूँ प्रियंका गांधी से बात करने की यहाँ पे कि जिस तरीके से उनको ले जाया गया है आइए संजीव भैया थोड़ा आगे करिए
9: नरेंद्र मोदी की बात
7: प्रियंका जी
9: नहीं चले
7: इस तरह से ले जाया गया है क्या लगता है आपको कि डरी हुई है
11: मुझे लगता है कि एकदम कायर सरकार है इससे कायर सरकार इस देश में कभी नहीं रही है नरेंद्र मोदी जी कायर हैं ये कोई तरीका है हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम उसी से मिले उनका कर्तव्य है कि हमसे मिले 250 जनप्रतिनिधि लोकसभा के राज्यसभा के पूरी ऑपोजिशन की पार्टियां और मिलने की हिम्मत नहीं है
7: हमारे साथ जुड़ी हुई है वहाँ और बता रही हैं विपक्ष का लगातार हमला मोदी सरकार पर हमला कायर सरकार कह रही है प्रियंका गांधी वो कह रही है बात कीजिए मौसमी सरकार में इस्तीफे नहीं
11: देना चाहिए
7: कि प्रियंका गांधी बाहर निकल रही हैं और ये कह रही है कि मजबूर कर सके यहाँ पे बस जो है वो बुरी तरह से फंस गई है प्रियंका गांधी यहाँ पे खड़ी हुई है यह तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये तस्वीर प्रियंका गांधी की आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी यहाँ पे नारेबाजी कर रही है बिल्कुल खिड़की पे आधा लटकी हुई है और ये वो वक्त है जब यहाँ पे लगातार आधे घंटे 45 मिनट के फासले में नारेबाजी करते हुए प्रियंका गांधी पर उनको उतारा नहीं जा रहा है यहाँ पे नारेबाजी चल रही है और सर आप थोड़ा आगे हो जाना तो मैं थोड़ा सा मुझे बीच में कर लो मैं देखिए यहाँ पे अंजना तस्वीर सॉरी ज्यादा भीड़ भड़का है और मीडिया देखिए मीडिया के ताते के बीच में बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जब मोदी डरता है कि नारे जब लग रहे हैं तो प्रियंका गांधी यहाँ पे नजर आ रही हैं कोशिश करते हैं कि प्रियंका गांधी से पूछे।
9: पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है।
7: प्रियंका जी,
9: प्रियंका गांधी जिंदाबाद,
12: जिंदाबाद, जिंदाबाद,
9: प्रियंका गांधी जिंदाबाद,
12: जिंदाबाद, जिंदाबाद,
9: सोनिया गांधी जिंदाबाद,
12: जिंदाबाद,
9: जिंदाबाद।
0: मौसमी पूछे, क्या बताया गया है कि कहां ले जाया जा रहा है इन लोगों को?
7: पुलिस कर्मियों से बात करते हुए, यहां पे आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पे किंग्सवे कैंप के बाहर प्रियंका गांधी को लाया गया है अंजना, और यहां पे हम लोग से बात भी की प्रियंका गांधी ने, और एक तरीके से कहा कि आप देखिए कि हम फिर कल जाएंगे, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करेंगे। और यहाँ पे एक तरफ राहुल गांधी को भीतर लाया गया है तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी यहाँ बस में अंदर हैं, और यहाँ पे लगातार नारेबाजी करते हुए वो यहाँ पे आई है। उनके साथ मानिकम टैगोर, सुप्रिया शिले, केसी वेणुगोपाल, सब लोग इसी बस में हैं। और अब ये बस बिल्कुल रुक गई है। संजीव जरा लॉन्ग एंगल पे दिखाइए आप किस तरीके से बस यहाँ पे बिल्कुल रुक गई है और आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, और प्रियंका गांधी लगातार नारेबाजी में साथ साथ ताली पीटते हुए यहाँ पे नजर आ
0: रहे। मौसमी, क्या किंग्सवे कैंप में इस वक्त आप लोग मौजूद हैं? क्या किंग्सवे कैंप के पुलिस थाने के बाहर आप लोग पहुंच गए हैं? कहां ले जाया जा रहा है इस बारे में बताएं।
7: आइए, अरे ये बस को बार बार अंदर बाहर किया जा रहा था अंजना, माफ कीजिएगा अगर थोड़ा शोर हो रहा था, लेकिन ये एब्सोल्युटली क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है क्योंकि पुलिसकर्मी चारों दिशा से होते हैं। और अब इस कैंप में अंदर ले जाया जा रहा है, यू टर्न मार रही थी बस और उसके बाद यहाँ पे भीतर उनको ले जाया जा रहा है। आपको मैं बता रही थी कि ये वो बस है जिसमें बाकी नेता भी मौजूद है, और ये देखिए पुलिस कर्मी भी मौजूद है। आप देखिए दो चार नेता और बहुत सारे पुलिस कर्मी, ये तस्वीर यहाँ ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हुए जहाँ प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है, और आप देखिए बस को बैक करा के यहाँ उनको अंदर ले जाया जा रहा है।
0: ये किंग्सवे कैंप,
7: जी बिल्कुल, ये किंग्सवे कैंप है। यहाँ राहुल गांधी को भी अंदर ले जाया गया। आप देखिए यहाँ जो वीआईपी गाड़ियां खड़ी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राहुल गांधी को पहले यहाँ पे पहुंच गए हैं, और उसके बाद प्रियंका गांधी यहाँ पे ला रहे हैं। यहाँ राजा वॉरिंग देखिए आप कि राजा वॉरिंग ऊपर चढ़े हैं और वो बोल रहे हैं कि आप लोग नीचे उतरिए। यूथ कांग्रेस का वो बैनर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि यूथ कांग्रेस इस पे बैठ गई है तो बस भी बिल्कुल यहाँ पे बैठ गई है, यानी अंदर नहीं जा पा रही है क्योंकि तार वार हैं। अब कैसे ले जाया जाए, देखिए दिखाइए अंजना को, वो बोर्ड आपको दिख रहा है, वो किंग्सवे कैंप का बोर्ड है, इसलिए पुष्टि होती है कि हम लोग कौन सी लोकेशन पे खड़े हैं, क्योंकि लगातार दो घंटे से कभी इस गाड़ी में उस गाड़ी में हम लोग चलते चले आ रहे थे।
0: और जैसे ही और जानकारी आती है मौसमी, हम आपका रुख करेंगे कि आखिर क्या अगला कदम होता है पुलिस की तरफ से। लेकिन हम आपको दिखा रहे थे किस राज्य में कितने वोटर्स कटे हैं, और हमने आपको बताया कि जो वोटर्स कटे हैं उनमें मृत लोगों का वोट करना स्वाभाविक है कटना, जो लोग कहीं और शिफ्ट कर गए हैं उनका कटना स्वाभाविक, जो लोग डुप्लीकेट मतलब एक जगह पर पहले थे वहां का भी वोटर आई कार्ड है, नई जगह गए वहां भी बना लिए, उनको भी काटना स्वाभाविक है। लेकिन जो अन्य में 8.5 लाख का नंबर है जिनका पता नहीं चला, अब सवाल तब उठता है जब हटाए गए वोटर्स खुद ये कहने लगे कि उनके पास कोई आया ही नहीं, या ये कहने लगे कि उन्हें मृत घोषित करके उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया है जबकि वो जिंदा है। अब यहीं पर ये पूरा सवाल, जैसे पश्चिम बंगाल पूर्वी बर्धमान के कालना नगर पालिका के निवासी पूर्णा शाह, उनको चुनाव आयोग की ड्राफ्ट मतदाता सूची में मृत दिखाया गया जबकि वो जीवित है, और इस बात से वो इतना आहत हुए कि जीवित रहते हुए अपना डेथ सर्टिफिकेट लेने नगरपालिका पहुंच गए। इसी तरह दिल्ली में 7 साल के कुन्नेलाल, उनके मुताबिक वो अभी जिंदा है लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें मृत मानकर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है। और बात सिर्फ इन कुछ वोटर्स की नहीं है, द टेलीग्राफ, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, हिंदुस्तान टाइम्स और हमारी अपनी इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि एसआईआर में कई वोटर्स के नाम सिर्फ इस वजह से हट गए क्योंकि चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर ने उनका सही से आकलन नहीं किया। जैसे इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि जब चुनाव आयोग का नया सॉफ्टवेयर या डेटाबेस वोटर्स की पुरानी सूचियों को आपस में मिलाता है तब इस दौरान अगर पता या सरनेम में जरा सा भी अंतर आया तो यह सॉफ्टवेयर पूरे परिवार को एक यूनिट मानता ही नहीं और यही वजह है कि परिवार के दो लोगों का हो गया अप्रूवल और दो का नाम कट गया और इसका नतीजा ये होता है कि माता पिता का नाम उसी पोलिंग बूथ की लिस्ट में रह जाता है जबकि उनके साथ रहने वाला बेटा या बहू का नाम बिना किसी सूचना के लिस्ट से हटा दिया जाता है या किसी दूसरे सुदूर बूथ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा अब तक वोटर लिस्ट में लोगों के नाम क्षेत्रीय भाषाओं जैसे हिंदी, बांग्ला, तमिल, अंग्रेजी दोनों में लिखे होते थे लेकिन अब चुनाव आयोग का नाम जो नया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है इन नामों का अनुवाद करता है तो दावा है कि सॉफ्टवेयर की गलती से कई नाम वोटर लिस्ट से मान्य होते हुए भी हट जा रहे हैं और वो व्यक्ति मतदाता ही नहीं रहता है। जैसे कई बार मोहम्मद को अंग्रेजी में कैपिटल एम और डी और मोहम्मद दोनों तरीके से लिखा जाता है लेकिन आरोप है कि चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर उन्हें दो अलग व्यक्ति मान लेता है और इसी तरह चैटर्जी और चट्टोपाध्याय जैसी अलग स्पेलिंग्स को सॉफ्टवेयर लॉजिकल विसंगति यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की श्रेणी में डाल देता है और उस वोटर को या तो नोटिस भेजा जाता है या वोटर लिस्ट में उसके नाम पर तलवार लटकने लगती है। सरल शब्दों में कहें तो विपक्ष और कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा आरोप लग रहा है कि इस तकनीकी खामी के कारण सॉफ्टवेयर बिना इंसानी दिमाग लगाए लाखों लोगों को ड्यूप्लीकेट या गलत मानकर उन्हें नोटिस जारी कर देता है या सीधे नाम काट देता है जिससे 13 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से अब तक हट चुके हैं और इन्हीं वजहों से विपक्ष एक बड़ा मुद्दा इसको सामने रख रहा है। हालांकि ये सवाल भी कई लोगों के मन में है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है या लोग भी एसआईआर ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग में असहमतियों के मुद्दे पर दिलचस्पी ले रहे हैं तो जैसा हम अक्सर करते हैं हम डीप डाइव करते हैं कि सोशल मीडिया पर गूगल पर क्या हो रहा है। इसे समझने के लिए आज हमने कुछ आंकड़े निकाले और इन आंकड़ों में से आप अच्छी तरह समझ सक जाएंगे कि एसआईआर सिर्फ विपक्ष का मुद्दा है या सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में खूब चर्चा हो रही है। पहले गूगल सर्च की बात करते हैं जहां 20 सितंबर से पहले ज्ञानेश कुमार का सर्च इंटरेस्ट जीरो था। इसका मतलब यह हुआ कि गूगल पर कोई भी यूजर कोई भी व्यक्ति ज्ञानेश कुमार या उनसे जुड़ी खबरों के बारे में कुछ नहीं सर्च कर रहा था। इसके बाद 23 सितंबर को एक अंग्रेजी अखबार ने यह खुलासा किया इंडियन एक्सप्रेस ने कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ज्यादातर फैसले बिना सर्वसम्मति से ले रहे। इसी के बाद गूगल सर्च पर ज्ञानेश कुमार का नाम सर्च करने का इंटरेस्ट रेट अधिकतम 100 पर पहुंच गया, 100 पर पहुंच गया। उनके बारे में सर्च करने वाले लोगों की संख्या 5000% तक बढ़ गई और इसके बाद से गूगल पर लोग लगातार उनके बारे में सभी खबरें सर्च कर रहे हैं और आज भी उनका सर्च इंटरेस्ट 40 पर है जो अच्छा खासा माना जाता है। इसके अलावा गूगल पर ज्ञानेश नाम का सर्च इंटरेस्ट भी लगातार अपने उच्चतम स्तर पर है, लोगों ने उनके बारे में गूगल सर्च करना बंद नहीं किया है। इसके बाद चुनाव आयोग के बारे में गूगल पर भारत के लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। 20 सितंबर से अब तक गूगल पर भारत के चुनाव आयोग का सर्च इंटरेस्ट 60 से 100 के बीच रहा है जो ज्यादा माना जाता है और चुनाव आयोग से भी ज्यादा लोग एसआईआर को गूगल सर्च कर रहे हैं। आज जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं तब भी गूगल पर एसआईआर का सर्च इंटरेस्ट 90 से ज्यादा है और 23 सितंबर से ही लगातार ये 90, 100 इसी के बीच में बना हुआ है और इन नतीजों से आप ये समझ सकते हैं कि भारत में गूगल पर एसआईआर चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के बारे में लगातार सर्च किया जाता रहा है और यहां बात सिर्फ गूगल की नहीं है। सिर्फ आज ही आज में इंस्टाग्राम पर हैशटैग ज्ञानेश कुमार ज्ञानेश ब्रो बाय बाय पर 500 से ज्यादा पोस्ट किए गए जबकि चुनाव आयोग के अलग अलग हैशटैग पर 40 लाख से ज्यादा पोस्ट हुए हैं। सिर्फ एसआईआर के अलग अलग हैशटैग पर 1 करोड़ से ज्यादा पोस्ट अकेले इंस्टाग्राम पर किए गए और यही हाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एसआईआर का मुद्दा अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा बल्कि इसके बारे में सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। अब इस सवाल पर आते हैं कि जब सोशल मीडिया पर कई लोग भी इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, विपक्ष भी इस मुद्दे की प्रमुखता से उठा रहा है, तब क्या ऐसी परिस्थितियों में ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देने के बारे में सोच सकते हैं और क्या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा देने से भारत के चुनाव आयोग में विपक्षी दलों का भरोसा लौट जाएगा? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग पर विपक्ष का यह अविश्वास सिर्फ ज्ञानेश कुमार के कारण पैदा नहीं हुआ है यानेश कुमार फरवरी 2025 में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त बने, जबकि चुनाव आयोग में विपक्षी दलों का अविश्वास 2017 से ही पैदा हो गया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, इनमें भी यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी की इस जीत पर बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने ईवीएम की भूमिका पर सवाल उठाए थे, जबकि अखिलेश यादव ने भी कहा था कि अगर मायावती ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं तो उसकी जांच कराई जानी चाहिए। उसी वक्त पंजाब विधानसभा के नतीजे पर भी आम आदमी पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। अप्रैल 2017 में मध्य प्रदेश के भिंड जिले में यह आरोप लगा कि ईवीएम में किसी भी बटन को दबाने पर वोट बीजेपी को जाता है, जबकि चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। सभी राजनीतिक पार्टियों को यह चुनौती दी थी कि वो ईवीएम को हैक करके दिखाएं, लेकिन उस वक्त कोई भी पार्टी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आई। यानी वहां से चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी दलों में गहरा विश्वास दिखा, जो आगे भी शायद ही कहीं भी बाकी राज्यों के चुनाव में भर पाया। प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं वहां पर, एक बार आपको दिखा देते हैं।
13: तेरा नाम पता लगाऊंगी मैं, कौन है तू? तेरा नाम पता लगाऊंगी मैं। यहाँ पे मेहनत कर रहे
14: हैं, पुलिस उन्हें रोक नहीं सकती है, वो जहाँ जाना चाहेगी वो जाएगी।
0: जैसे ही साफ स्पष्ट उनकी आवाज आती है हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन 2017 से अब तक कुल 61 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव हुए। इनमें जिन भी चुनावों में विपक्षी दलों की हार हुई, वहां चुनाव आयोग पर भेदभाव करके बीजेपी को जिताने के आरोप लगाए गए, जबकि वहां विपक्षी दल जीते वहां ये आरोप नहीं लगे। कुल 43 चुनाव ऐसे रहे जहां बीजेपी की जीत को विपक्ष ने शक की नजरों से देखा, चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े हुए। 2024 में जब ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त और फरवरी 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने, तब इस दौरान कुल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हुए और 1 लोकसभा चुनाव हुआ। इनमें 15 में से जिन 10 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की जीत हुई, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष ने वोट चोरी और धांधली का आरोप लगाया। लेकिन बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती है कि जहां जहां पर विपक्षी पार्टियों को जीत मिलती है वहां पर वो एक भी सवाल खड़े नहीं करते। कुल 5 राज्यों में विपक्षी पार्टियों को जीत मिली, लेकिन वहां विपक्ष पर ने कोई सवाल नहीं उठाए। खैर, इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा देखते रहिए।

0: विश्राम।
1: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
2: एक हिंट तो देते।
3: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
4: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
5: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
4: मतलब
5: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच
6: हुआ। और ना वहाँ इतनी व्यवस्था है कि 300 लोग बैठ सके, अर्थात ये पुनः दर्शाता है कि वो मिलने को तैयार नहीं थे। तीसरा पॉइंट, यह बताया गया कि चुनाव आयोग ने यह कहा कि वो अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को धरना स्थल पर भेज देगा और वहां पर वो अपना ज्ञापन दे सकते हैं, जिसके लिए भी वो तैयार नहीं हुए। अर्थात यह स्पष्ट है कि उनको चुनाव आयोग पे अपनी बात कहने के का कोई उद्देश्य नहीं था। और उससे बड़ी बात जो बहुत ही गंभीर है वो ये है कि वो ये अपेक्षा कर रहे थे कि चुनाव आयुक्त आकर उनसे मिले। जहां तक वस्तुस्थिति यह है कि भारत की संसद भी किसी विषय पे सुनवाई के लिए या किसी प्रश्न के उत्तर के लिए चुनाव आयोग को तलब नहीं कर सकती है, संवैधानिक व्यवस्था यह है। मगर जो अपने संविधान को अपनी जेब में रखते हैं, उन्होंने यह दिखाया कि वो तलब कर रहे थे कि संवैधानिक दृष्टि से जो चीज संभव नहीं है वह चीज उनके द्वारा किया जाए। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करने में विश्वास रखती है, उसका झूठ एक बार पुनः बेनकाब हो गया है। पुनः रिपीट कर देता हूं, ना उन्होंने कोई समय मांगा, जब समय दिया गया तो वो गए नहीं। उसके बाद जब यह कहा गया कि उनका कोई अधिकारी आकर ज्ञापन लेगा तो ज्ञापन देने को तैयार नहीं हुए। और उससे बड़ा झूठ मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने कहा कि 300 सांसद थे, कहां थे 300 सांसद? मैं तमाम पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, उन्होंने कितने सांसद वहां देखे? कांग्रेस पार्टी के 99 सांसद हैं लोकसभा में, 30 सांसद हैं राज्यसभा में, 129। इसके बाद सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी जिसके 37 सांसद हैं, शाम के समय कोई सभा का सांसद नहीं था। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस जिसके 20 सांसद अलग हो चुके हैं। अगली सबसे बड़ी पार्टी है DMK जो इस आंदोलन से, इस घटनाक्रम से अपने को अलग रखे थी। उसके बाद अगली पार्टी है बड़ी आम आदमी पार्टी, उसने भी इस धरना प्रदर्शन से अपने को अलग किया था। इसके बाद जितनी पार्टियां बचती हैं वो सिंगल डिजिट सांसदों की पार्टियां हैं, यानी किसी के पास दहाई अंक के सांसद नहीं है। तो ये 300 की संख्या कहां से आई, इतना बड़ा झूठ? मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बताए उसके 130 सांसद थे क्या वहां? और आप चुनाव आयोग से ऐसे तकनीकी मुद्दे के ऊपर पूछ रहे हैं। मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं, तकनीकी बात का जवाब चुनाव आयोग देगा, पर हम राजनीतिक दृष्टि से पूछ रहे हैं। आपके जितने, मैं किसी बड़े नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता, शाम के समय माननीय खड़गे जी नहीं दिख रहे थे, ये बताइए जितने बड़े बड़े वकील हैं आपकी तरफ वो भी नहीं थे धरने में? चिदंबरम साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, भले ही अब उनकी पार्टी में टेक्निकली नहीं है, कपिल सिब्बल साहब, विवेक तनखा साहब, कहां थे भाई? सारा फोकस केवल शहजादा और शहजादी पे। बहुत साफ है कि लोकतंत्र को राजतंत्र के में तब्दील करके जो लोकतंत्र का नकाब ओढ़ा हुआ था, आज उसी राजतंत्र को स्थापित करने के लिए यह सारा का सारा प्रपंच रचा गया था। अन्यथा देश ने देखा है, वहां के पत्रकारों ने देखा है, कांग्रेस के ही सारे सांसद नहीं थे और 300 सांसद की संख्या का इतना बड़ा झूठ बोला गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो इतने प्रकार के प्रपंच और स्वांग कर चुके हैं कि मैं कहना चाहूंगा कि उनको लॉन्च करने के निरंतर विफल प्रयास हो रहे हैं। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कई प्रकार के होते हैं, एक ASLV होता है जिसको ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, एक PSLV होता है जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, वैसे एक अब मुझे लगता है कांग्रेस को FSLV कह देना चाहिए, फेल्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मगर इसके बाद भी वो अपनी बात से बाज नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है, मैं पुनः कह देना चाहता हूं, आज साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी सरासर झूठ बोलती है। राहुल गांधी ने समय मांगा, समय देने पे मिलने नहीं गए, अधिकारी को मिलने पे तैयार नहीं हुए, और 300 सांसदों का सरासर झूठ बोला गया। शाम के समय कहीं दूर दूर तक 300 तो क्या, कांग्रेस के भी 130 सांसद नजर नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि मैं यह पंक्ति कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को समर्पित करना चाहता हूं कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया, और हद से बड़ी उड़ान की ख्वाहिश तो यूं लगा कि सच उसके परों को कतरता चला गया। तो जो उन्होंने हद से ज्यादा बड़ी उड़ान करने की कोशिश की थी, सच ने उनकी उड़ान के परों को कतर दिया है। धन्यवाद। यह प्रश्न बहुत गंभीर है और यह प्रश्न उठाना ही संविधान के खतरे में होने का संकेत देता है। जहां तक हमारी जानकारी है, विद विशेषज्ञ इसमें बता सकते हैं कि किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए चुनाव आयुक्त अथवा मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के पटल पर भी नहीं बुलाया जा सकता है, और ये लोग कह रहे हैं कि संसद भवन में सड़क पे आके बात करनी चाहिए। मुझे लगता है इसके बाद पूरे देश को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि संविधान को जेब में रखकर संविधान
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: विश्राम।
1: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
2: एक हिंट तो देते।
3: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
4: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
5: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
3: मतलब
5: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
4: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
5: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
7: आगे आगे,
8: अरे उधर
7: उधर गया।
8: करेक्ट करेक्ट,
9: मिल गया।
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर, मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डे सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आकाशवाणी में धरने पर बैठे राहुल को पुलिस ने जबरन हटाया, ले जाए गए किंग्सवे कैंप। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद। विपक्षी मार्च के बाद दिनभर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। सीईसी से मुलाकात की मांग पर धरने पर बैठे राहुल प्रियंका। चुनाव आयोग की सफाई, नहीं मांगा गया मीटिंग का टाइम। राहुल के धरने पर बीजेपी का हमला, कहा उनकी राजनीतिक लॉन्चिंग लगातार हो रही है फेल। विपक्ष का झूठ हो चुका है बेनकाब। 300 सांसदों के साथ की बात झूठ। छोटे मझोले व्यापारियों के लिए मोदी सरकार की बड़ी सौहार्द। 10,000 करोड़ के निवेश का ऐलान। एसएमई ग्रोथ फंड बढ़ाने पर भी जोर। और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख। 2028 तक है कार्यकाल। करगिल युद्ध में रहे शामिल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक, और आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक में खबर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल के रण की। आज सुबह इंडिया गठबंधन के 19 दलों के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों को चुनाव आयोग तक तो पहुंचने नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आकाशवाणी भवन में धरना दे दिया। और 7.5 घंटे बाद, कड़ी मेहनत के बाद, दिल्ली पुलिस ने राहुल और प्रियंका को आकाशवाणी भवन के बाहर से हटाया, हिरासत में ले लिया गया। हम आपको ये बता दें कि राहुल प्रियंका के साथ करीब 250 लोगों को हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस किंग्सवे कैंप पुलिस स्टेशन ले गई है। रास्ते में प्रियंका ने हमारी संवाददाता आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह से बात की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी की। अब से कुछ देर पहले जब उन्हें संसद मार्ग पर स्थित आकाशवाणी भवन के बाहर से धरने पर से उठाया गया, राहुल गांधी वहां धरने पर बैठ गए थे। वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने जा रहे थे और आकाशवाणी भवन के बिल्कुल पास में मुख्य चुनाव आयुक्त का ऑफिस है, यानी कि चुनाव आयोग का ऑफिस है। प्रियंका को भी हिरासत में लिया गया। किंग्सवे कैंप पुलिस स्टेशन दोनों को, प्रियंका और राहुल को, ले जाया गया। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों को उठा लिया गया, दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, किंग्सवे कैंप पुलिस स्टेशन ले गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरने पर बैठे थे, उनसे मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। और बिल्कुल पास, चुनाव आयोग के पास ही संसद मार्ग पर, यानी कि संसद के भी पास, चुनाव आयोग और संसद के बीच में आकाशवाणी भवन है, जहां पहले कांग्रेस के साथ जो दूसरे विपक्षी दलों के सांसद थे उन्होंने आकाशवाणी भवन में प्रवेश करने का प्रयास किया, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने रोका। और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आकाशवाणी भवन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। अब से कुछ देर पहले दोनों को वहां से उठाया गया, इस धरने को खत्म कर दिया गया और दिल्ली पुलिस दोनों, प्रियंका राहुल के साथ लगभग 250 लोगों को हिरासत में लेकर दिल्ली के ही किंग्सवे कैंप पुलिस स्टेशन पहुंची। राहुल गांधी ने यह कहा था कि 300 सांसद विपक्ष के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने के लिए जा रहे थे, उनसे मिलने नहीं दिया गया, उन्हें रोक लिया गया, दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक लिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है, राहुल गांधी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत का नाम लिया है, राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को देशद्रोही कहा है, राहुल गांधी ने कहा है कि ये लोकतंत्र का,
1: आप देखिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पे पहुंच गए हैं। पहले राहुल गांधी यहाँ पे उनको लाया गया और इस वक्त पीछे हमारे आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी बात कर रहे हैं, उनके चारों तरफ तमाम कार्यकर्ता खड़े हैं। ये वो वक्त है जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है, लेकिन जैसे प्रियंका गांधी की बस यहाँ पे पहुंची उसके बाद तमाम ये कार्यकर्ता भी प्रियंका गांधी समेत भीतर चले आए। और अब यहाँ पे आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से आकाशवाणी भवन से राहुल गांधी को अलग बस में लाया गया, प्रियंका गांधी को अलग बस में लाया गया, लेकिन वो कोशिश कि दोनों को अलग अलग रखा जाए वो कामयाब दिल्ली पुलिस की नहीं हो पाई। यहाँ पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जूम इन करके हम आपको दिखाते हुए कि आपस में बातचीत कर रहे हैं, पवन खेरा, केसी वेणुगोपाल और तमाम कांग्रेस के नेता, प्रणीति शिंदे और सारे नेता यहाँ पे मौजूद हैं और इंतजार हो रहा है कि दिल्ली पुलिस अब उनको आगे क्या बताती है। यहाँ पे राहुल गांधी आराम से बैठे हुए हैं, हालांकि आप देख रहे हैं कि तमाम कार्यकर्ता भी भीतर आ गए हैं, पर यहाँ पे वो तब तक बैठेंगे बताया जा रहा है जब तक उनको आगे दिल्ली पुलिस ये बताती नहीं कि उनको रिहा यहाँ से छोड़ दिया गया है। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
0: और आइए हम आपको सीधे हमारी संवाददाता मौसमी सिंह के पास ले।

0: 300 सांसदों वाली बात, और क्या बीजेपी ने इसे अलग टर्न देकर राहुल गांधी की लॉन्चिंग करके मुख्य मुद्दे से कांग्रेस को भटकाया है या इस मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश की है? मौसमी हमारी आवाज आप सुन पा रही हैं? हमारी संवाददाता मौसमी सिंह से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये हम आपको आज की दिन की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस के नेताओं के साथ धरने पर बैठे थे आकाशवाणी भवन के बाहर। पूरे दिन राहुल गांधी ने हालांकि ये भी कहा कि लोकतंत्र के गद्दारों को बचाने के लिए बचे कुचे लोकतंत्र को घसीटा गया है, हिसाब हम करेंगे, एक भी देशद्रोही को बख्शा नहीं जाएगा। ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी ने देशद्रोही कहा है और राहुल गांधी लगातार धरने पर बैठे रहे। अब से कुछ देर पहले उन्हें दिल्ली पुलिस ने वहां से उठा लिया है और हिरासत में ले लिया, दोनों बहनों के साथ, भाई बहन के साथ 250 लोगों को। राहुल गांधी के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर विपक्ष के 300 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ये मार्च निकाला था, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके अखिलेश यादव समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। इस बीच पुलिस को चकमा देकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच गए आकाशवाणी भवन के सामने और वहीं से शुरू कर दिया अपना धरना। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह धरना था। हम आपको दिखाएंगे राहुल प्रियंका के धरने की पूरी टाइमलाइन, लेकिन साथ ही साथ ये बता दें कि बस अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के हर बयान पर जवाब दिया है, कहा कि 300 सांसदों की बात झूठ थी और राहुल गांधी को लॉन्च करने की कांग्रेस की ये कोशिश है।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष एक साथ उबला तो राजधानी दिल्ली में संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर के रास्ते तक न सिर्फ विपक्ष ने एकता और एकजुटता दिखाई बल्कि सरकार को कटघरे में खड़ा करके ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि चुनाव आयोग और सरकार के बीच मिलीभगत है और चुनावों में सरकार वोट चोरी करवा रही है।
2: अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है।
3: जो गलत तरीके से हुकूमत में उन्होंने आए हैं और जो गलत तरीके से उन्होंने आज कुर्सी पे बैठा, इसीलिए हम कर रहे हैं, पहले गद्दी छोड़ो, नहीं तो देश में हंगामा होगा, देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये मेरा वार्निंग है उनको।
4: चुनाव ने 17 में बेईमानी की, 19 में बेईमानी की, 22 में बेईमानी की, 24 में बेईमानी की और बंगाल का तो पूरा का पूरा खुला खेल किया उन्होंने, किसको नहीं दिखाई देता है।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर भले ही ये इंडिया गठबंधन के 19 दलों का मार्च था, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी भवन के परिसर में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं से धरना शुरू कर देते हैं, ऐसे में सारी निगाहें राहुल गांधी पर जम जाती है। हम आपको विपक्षी सांसदों का पूरा मार्च दिखाएंगे, लेकिन पहले बात राहुल गांधी की करते हैं। उधर दिल्ली पुलिस विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेकर बस में बैठाकर ले जाती है और आकाशवाणी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक पेड़ के नीचे बैठकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों से मिलने की जिद करने लगते हैं।
2: कुछ समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के MPs आए थे और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे। यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका, 300 MPs को यहाँ पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। 300 MPs ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं।
1: दोपहर करीब 12:30 बजे से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का

0: आकाशवाणी भवन के परिसर में धरना शुरू होता है और उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की दौड़ आकाशवाणी की तरफ लगने लगती है।
1: यहाँ पे आप लोग का होना बिल्कुल ही गैर कानूनी है।
0: ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच जैसे एक जंग सी छिड़ जाती है और फिर पुलिस प्रदर्शनकारियों को जबरन हिरासत में लेती है।
2: हमारे नेता नरेंद्र राहुल जी ये लोगों की गलत जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। हम लोग बार बार डिटेन कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को बचाने का काम कर रहे हैं मोदी और शाह।
3: मेरे भाई और गणेश को बचाने के लिए पूरे क्राइम कर रहे हैं, ये गलत है, गैर कानूनी है।
0: धरने के करीब दो घंटे बाद राहुल गांधी और आक्रामक होते हैं और सीधे सरकार, संघ और चुनाव आयोग पर वार करते हैं।
4: बीजेपी जो बोले
5: उसमें आइए सीधे हमारी संवाददाता मौसमी सिंह के पास ले चलते हैं। मौसमी, क्या स्थिति है अभी, क्या हालचाल है अभी, बताइए जरा पूरी बात।
6: देखिए सही राहुल गांधी का इस्तीफा दिया गया है और राहुल
5: मौसमी जी की आवाज़ तो हमें नहीं आ रही है, लेकिन ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को किंग्सवे कैंप पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया है, हिरासत में ले लिया था उन लोगों को और ये दोनों अपनी गाड़ी में एक साथ भाई बहन बैठ के जा रहे हैं। आकाशवाणी भवन से किंग्सवे कैंप पुलिस स्टेशन दिल्ली पुलिस ले गई थी, दोनों को हिरासत में लिया गया था, दोनों के साथ 250 लोगों को हिरासत में लिया था और अब किंग्सवे कैंप से सभी को रिहा कर दिया गया है। तो आज पूरे दिन राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरने पर बैठे रहे, उनसे मिलने जाना चाहते थे। राहुल गांधी ने दावा किया कि 300 सांसद उनसे मिलने जाना चाहते थे। सुबह की तस्वीरें हम आपको दिन की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने पर बैठी थी और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब हिरासत में लिया गया था और ये अभी की तस्वीर है जब अब से कुछ देर पहले किंग्सवे कैंप पुलिस स्टेशन से राहुल गांधी को रिहा किया गया है, वो वहां से निकल गए। मौसमी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? मौसमी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मौसमी वहीं पर जहां पर राहुल गांधी की कार जा रही है वहीं पर मौजूद हैं और ये वहां आकाशवाणी भवन के बाहर की तस्वीर है जब राहुल गांधी को धरने से उठाया गया था, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया था, दोनों को हिरासत में लिया गया था और इनके साथ बैठे वहां पर 250 लोगों को हिरासत में लिया गया था। ये अभी की तस्वीर है, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बस कुछ क्षण पहले की तस्वीरें हैं जब दोनों भाई बहन को और इन दोनों सांसदों को रिहा कर दिया गया था। मौसमी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं?
6: जी, आपकी आवाज सुन पा रही है।
5: बताइए मौसमी,
6: हमारे साथ हैं आप, उन्हीं से पूछ रहे, क्या रिहा कर दिया, राहुल गांधी को रिलीज कर दिया गया? कौन
7: जी,
6: सही सवाल पूछिए।
5: हाँ हाँ, रिहा हो गए हैं लेकिन क्या हासिल हुआ, पूछिए क्या हासिल हुआ राहुल गांधी को और आप लोगों को पूरा दिन वहाँ बैठने के बाद आकाशवाणी भवन के बाद?
7: कि ज्ञानेश कुमार छत्तीसगढ़ का दौरा स्थगित कर चुके हैं। हासिल बहुत कुछ हुआ, हासिल इस देश को होगा। आप महात्मा गांधी ने जब दांडी यात्रा निकाली थी आपने पूछा था कि इस एक यात्रा से क्या हासिल हुआ, बताइए ना, पूछा था क्या?
5: नहीं पवन जी, आप नाराज मत होइए, आप बताइए ना कि पूरे दिन आपने धरना प्रदर्शन किया।
7: हासिल तो हम हासिल इस देश के लिए करके दिखाएंगे, इस देश के एक एक वोटर का वोट बचा कर दिखाएंगे, ये हासिल होगा।
5: हाँ तो यही हम आपसे जानना चाहते हैं ना, आप बताइए कि आप सफल रहे नहीं रहे, असफल रहे, आप मिल तो नहीं पाए ज्ञानेश कुमार से, कितनी कोशिश की आपने मिलने की, बताइए।
7: देखिए साहब, एक बात सुनिए, वो है जनता का नौकर, आपके और मेरे टैक्स से उसकी तनख्वाह आती है, मिलना तो उसको पड़ेगा जनता के प्रतिनिधियों से
5: जी।
7: 300 एमपी मतलब 60% इस देश की आबादी के प्रतिनिधि, 60% देश का अपमान तो ज्ञानेश कुमार कर नहीं सकता, ना हम उसको करने देंगे।
5: बिल्कुल ठीक है। अच्छा पवन जी, ये बताइए क्या आप अकेले पड़ गए, सारे साथी आपके कोई नजर नहीं आया?
7: क्यों, बीजेडी टीएमसी समाजवादी आपको नहीं दिखे? कोई नहीं दिखा आपको?
5: नहीं, नहीं, अभी धरने पर जब बैठे थे आकाशवाणी भवन के बाहर,
7: धरने पर भी आए, डेरेक ओब्रायन था,
5: बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अब से कुछ देर पहले पवन जी, और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 300 सांसदों की बात झूठी है, 300 सांसद नहीं थे।
7: कल साइन जब पहुंच जाएंगे तो सुधांशु त्रिवेदी को कहना फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, ठीक है? हो सकता है बीजेपी के भी 3-4 साइन ले आए हम, फिर क्या करोगे?
5: आगे आगे क्या प्लान है पवन जी?
7: आगे यही प्लान है कि बीजेपी के भी कुछ सांसदों के हस्ताक्षर लेने हैं।
5: नहीं नहीं पवन जी देखिए ये तो अब सत्ता से दूर आप बात कर रहे हैं,
7: आपको क्या लगता है बीजेपी में नहीं होने वाला, ये देखे जाइए क्या क्या होने वाला है।
5: आधार क्या है आपका, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं?
7: आपको वक्त से मालूम पड़ेगा एनडीए में क्या होने वाला है, आपको दिखेगा।
5: धन्यवाद पवन जी। पवन खेड़ा सांसद कांग्रेस के धरने में शामिल थे राहुल गांधी के साथ, और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के किंग्सवे कैंप पुलिस स्टेशन से राहुल गांधी प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया, दोनों अपनी कार में बैठकर रवाना हो गए। पूरे दिन का ये धरना खत्म हो गया है। दावा यह किया गया कि कांग्रेस के साथ 19 राजनीतिक दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन किया था, और इस तरह से राहुल और प्रियंका को आकाशवाणी भवन के धरने से उठाने में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। राहुल और प्रियंका ज्ञानेश कुमार से मिलने के लिए अड़े रहे लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। लेकिन इंडिया गठबंधन ने सुबह 10:30 बजे यह धरना प्रदर्शन शुरू किया था। अखिलेश यादव से लेकर टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी इस धरने में शामिल हुए थे, लेकिन विपक्ष के इस मार्च को पुलिस ने बीच में रोक दिया और सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी प्रियंका गांधी को भी रिहा कर दिया गया है।

0: दो अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक चार दिन तक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी, आयसा, आप और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के विरोध प्रदर्शन के बाद अब बारी इंडिया गठबंधन की आती है, क्योंकि सब कुछ 30 सितंबर की इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली की बैठक में तय हो चुका था। ऐसे में विपक्ष के 19 दलों के सांसद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलने सड़क पर उतरते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 300 सांसद एक साथ इकट्ठा होते हैं और पोस्टरों, बैनरों के साथ निकल पड़ते हैं। राहुल जेन जी के कनेक्ट के लिए प्रदर्शन में ज्ञानेश इट्स डन ब्रो का पोस्टर लेकर पहुंचे थे। उनका मकसद इस वर्ग को सीधा मैसेज देना था। देश में आज हर चौथा वोटर जेन जी से है, तो अखिलेश यादव के हाथों में मुचुआ का पोस्टर रहता है। मुचुआ का मतलब अखिलेश यादव मुख्य चुनाव आयुक्त बताते हैं।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुना था आपने यूपी में जो एक रूमर फैला रहा था, ये देखिए मुचुआ डाओ पीडीए बचाओ।
2: अभी जब तक पैर चलेगा चलेगा।
3: चुनाव आयोग भेदभाव कर रहा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: देखिए ये तो आपको सरकार से पूछना चाहिए कि बार बार पूरे विपक्ष को सड़क पे आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमारी सीधी सीधी तीन मांगे हैं। एक, ज्ञानेश कुमार का इमीडिएट इस्तीफा हो। दूसरा, एसआईआर रद्द हो। तीसरा, बैलेट पेपर से चुनाव हो।
0: इंडिया गठबंधन के सांसद संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नीति आयोग के दफ्तर के पास इस मार्च को बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता है। ऐसे में राहुल गांधी हाथ में तिरंगा लेकर बैरिकेडिंग पर चढ़ जाते हैं और बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश करते हैं।
4: ज्ञानेश गुप्ता की गद्दारी साबित हो चुकी है।
5: सीसी अंडरग्राउंड कहाँ छुपाया है, बीजेपी के दफ्तर में है और कहाँ है पता नहीं। सीसी जो है बीजेपी का एजेंट है, उनको बचाने की कोशिश चल रही है।
6: चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं कि गलत वोट काटे गए। तो लोगों के वोट काट के विपक्ष को हराना ये साबित करता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है।
7: कि ये इलेक्शन मशीन की तरह काम करते हैं, केवल चुनाव आयोग से नहीं जीतते हैं, पैसा इनके पास बहुत है। बंगाल में देखा कि फोर्स के माध्यम से कैसे बूथ लूट लिया, और बंगाल में नहीं लूटा था, उससे पहले यूपी में लूटा। आपका जो सेमीफाइनल होता है, या कहें कि कोई चीज करने से पहले टेस्ट करने के लिए, कुंदरकी का चुनाव इन्होंने लूटा, मीरापुर का चुनाव इन्होंने लूटा, आपका अयोध्या का चुनाव, अंबेडकर नगर का बाई इलेक्शन। तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है।
8: ये तो पहले से था कि बीजेपी की चोरों की सरकार थी, अब ये पता चल गया कि अब ये चोरी की सरकार है। मुझे ये लगता है अब तो यही करना चाहिए कि ये सरकार बर्खास्त हो और फिर से लोकसभा के चुनाव हो, और कोई तरीका नहीं।
0: अब विपक्ष के सभी सांसद नीति आयोग के दफ्तर के पास ही धरने पर बैठ जाते हैं।
9: समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष पसीना से कभी घबराते नहीं है। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए बैरिकेडिंग लगाई हुई है।
0: पहले तो पुलिस ने विपक्षी सांसदों को बैरिकेडिंग से रोका, और जब इससे भी नहीं रुके तो उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर देती है और बस में भरकर ले जाती है। बस के अंदर अखिलेश यादव दिल्ली पुलिस पर तंज मारते हुए कहते हैं कि पुलिस उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलवाने के लिए चुनाव आयोग ले जा रही है।
10: चुनाव आयोग ले जा रही पुलिस, नहीं उन्हीं से मिलाने ले जा रही हम लोगों को, सीसी से मिलाने ले जा रही है। बीजेपी ने अब कह दिया कि बस जा सकती है चुनाव आयोग।
0: अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और अभिषेक बनर्जी समेत विपक्ष के कई सांसदों को दिल्ली पुलिस हिरासत में ले लेती है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी के दफ्तर के परिसर में घुस जाते हैं और वहीं से धरना देना शुरू कर देते हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
11: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे फ्लाई दुबई की फ्लाइट के आतंकी पायलट का कुबूलनामा। आप देखते रहिए दस्तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
14: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
4: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस
7: मेरे पास एक आइडिया है
6: क्या
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए रुंगटा TMT बार से जो बना है
8: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
9: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है
10: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है
8: कौन सी बनानी है
11: सर कैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए कैसो फास्ट 27% इनो 9.2%
12: गड़बड़ है
13: आहा कैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे कैसो फास्ट इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन
14: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा
15: तो स्विच टू भीम एकदम सेफ और भरोसेमंद रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर भीम ऐप से करो पे
16: इट्स अ माय वे
17: और वही कहाँ गए थे घूमने
18: जीके मैक्स
19: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
18: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
19: जेके वॉल मैक्स
18: बेस्ट पेंट
19: जेके मैक्स
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints. खुशियों के रंग
20: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर बेबाक है मेरा सिग्नेचर सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप
21: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है
22: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे
21: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती कपीवा डायबिटीज जूस
23: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम AU
24: सोच बदलो और बैंक भी
25: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
26: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा और देश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो
27: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर
28: In association with Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा. Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.
29: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम. जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं. देखिए क्राइम तक YouTube पर और बचिए हर. Crimes.

0: फ्लाई दुबई हमले को लेकर ट्रंप के निशाने पर ईरान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर शक। ओमानी पायलट को लेकर जेडी वेंस के भी सवाल। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ते दिख रहा है। जहां एक तरफ फ्लाई दुबई हमले को लेकर दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान से खलबली मचा दी है। व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को इस हमले के पीछे जिम्मेदार बताया और कहा, मैं निजी तौर पर ऐसा मानता हूँ। ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने फ्लाई दुबई हमले को लेकर ईरान को घेरा है। इससे पहले भी डोनाल्ड ने हमले पर ईरान कनेक्शन का आरोप लगाया था।
1: I would say the answer based on what I'm hearing is yes, but we're working on it right now.
0: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा लगाए गए आरोपों पर ईरान ने पलटवार करते हुए इसे इजराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। ईरान पर पूरी तरह से मनगढ़ंत सबूतों के आधार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इजरायली सरकार गाजा के हालात के साथ साथ ईरान के खिलाफ अपनी आक्रामकता से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, ताकि ये धारणा बनाई जा सके कि ईरान दुनिया के लिए खतरा है। ये एक घिसा पिटा हथकंडा है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के हाथ होने की बात पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और अमेरिकी इंटेलिजेंस के पाले में गेंद को डाल दिया।
2: I think the interesting thing about that story is we knew that guy was a problem, meaning not United States intelligence, but if you look historically, that person should not have been flying an airline. And so we're certainly looking at our procedures within the United States to make sure that people who are obviously flight risks are not getting behind the wheel of an airplane.
0: ईरान की भूमिका पर जवाब न देते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने को पायलट हमाम अल हमामी को लेकर एयरलाइंस पर सवाल उठाए और कहा, जब पहले से वो मुसीबत था तो उसे एयरलाइन के लिए उड़ान भरने की इजाजत कैसे मिली।
2: Good about what's going on in the United States of America in terms of involvement with Iran. That's something I defer to John Ratcliffe and some of the intelligence folks on. I don't want to get ahead of any announcements there, but it's certainly something we're looking at, but I wouldn't say I've seen anything conclusive just yet.
0: इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूछताछ हमाम अल हमामी ने कहा कि उसने गाजा का बदला लेने के लिए ऐसा किया और वो शहीद होकर मरना चाहता था, और विमान को तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर टकराने का प्लान था, जिसके लिए जून में ही इसराइल जाकर रेकी की। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में, आपके साथ मैं हूँ सईद दंसारी। और अब खबर, आतंकी पायलट की सनसनीखेज कबूलनामे। ओमान के आरोपी पायलट हम्मामी ने यह मान लिया है कि गाजा का बदला लेने के लिए उसने इसराइली यात्रियों से भरे विमान को हाईजेक करने की आतंकवादी साजिश रची थी। पूछताछ के दौरान हम्मामी ने जांचकर्ताओं को यह बताया कि आत्मघाती हमले में सभी इसराइली नागरिकों को बेमौत मारने का उसका प्लान था, सब कुछ प्लान के हिसाब से था, लेकिन आतंकवादी हमले को अंजाम देने में वो नाकाम रहा।

0: पूछताछ में आतंकी पायलट का बड़ा खुलासा। इंतकाम की आग में पायलट से बना आतंकी। गाजा का बदला लेने के लिए रची थी साजिश। इसराइलियों को बेमौत मारने की तैयारी थी। तेल अवीव में विमान को क्रैश करवाना था। आतंकी पायलट का सनसनीखेज कबूलनामा। ओमानी नागरिक हमाम अल हमामी ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के सामने कई बड़े राज उगले हैं। पूछताछ के दौरान हमामी ने आतंकी साजिश की प्लानिंग से लेकर आत्मघाती हमले के पीछे मकसद का खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान हमामी ने क्या क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। सवाल, आतंकी साजिश के पीछे मकसद क्या था? जवाब, मैंने गाजा का बदला लेने के लिए ऐसा किया, मैं शहीद की तरह मरना चाहता था। सवाल, आतंकी साजिश में कौन कौन शामिल था? जवाब, मेरे साथ कोई नहीं, मैंने अकेले पूरी प्लानिंग की। सवाल, आखिर तुम्हारा प्लान क्या था? जवाब, प्लेन को हाईजैक कर 9/11 जैसी घटना को अंजाम देना। सवाल, क्या 9/11 हमले की तर्ज पर प्लान बनाया था? जवाब, मैं चाहता था कि वैसे ही हमले को अंजाम दूं। सवाल, क्या तुम किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हो? जवाब, नहीं, मेरा किसी आतंंकी संगठन से लिंक नहीं। सवाल, क्या फ्लाई दुबई में काम करते वक्त प्लान बनाया? जवाब, नहीं, प्लान बनाने के बाद एयरलाइन से जुड़ा। पूछताछ के दौरान हमामी ने कबूल किया है कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने से पहले ही आत्मघाती हमले की स्क्रिप्ट लिख चुका था। प्लान को अंजाम देने के लिए ही फ्लाई दुबई से जुड़ा, क्योंकि उसे पता था कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने के बाद वो आसानी से 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। मतलब यही है कि हमामी आत्मघाती हमले की पूरी तैयारी कर चुका था।
1: He's lying there now. He's this attacker, and he calls out to the aircrew, "Kill me, kill me!" All right. So it's clear he was suicidal. That's not a question. It was clear he was going to down that plane. Oh, it's not clear, but it looks very likely that he was going to down the plane, and with all the passengers in there. And if you couple that with the what I just told you about the Islamist. Tendencies that radicalization that are found in his background, I think that'll give us a pretty good clue. But again, I don't make final conclusions yet, but that's the indications we have now.
0: शुरुआती जांच में पता चला है कि हमामी ने कई मुल्कों का दौरा किया था, जिसमें अहम है सीरिया का दौरा। जांच एजेंसियों को शक है कि सीरिया में ही हमामी किसी आतंकी संगठन के संपर्क में आया या फिर किसी आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़ गया। मोसाद के हवाले से इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। हमें पता चला है कि हाल के सालों में उस आतंकवादी ने इजरायल के विरोधी देशों, जिनमें से कुछ दुश्मन देश भी थे, उनका दौरा किया था। ये दौरे कम समय के लिए थे। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उन दौरों के दौरान किसी व्यक्ति या संगठन ने उसे सक्रिय किया या भर्ती किया था। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के एजेंट अल हमामी से पूछताछ में शामिल हैं। इजरायली अफसरों ने सवाल जवाब के लिए यूएई की यात्रा की थी। इसके पहले जानकारी मिली थी कि हमामी की कट्टरपंथी सोच के चलते एक बार उड़ान भरने से रोक दिया गया था। ये भी जांच का विषय है कि जब उसे ओमान की नेशनल एयरलाइंस से उड़ान भरने से रोका गया था, तो दुबई की एयरलाइंस में उसे मंजूरी कैसे मिली। बड़ी बात यह है कि अल हमामी ने 7 सालों तक ओमान एयर में काम किया और बीते साल फरवरी में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद जून 2025 में मोरक्को की नेशनल एयरलाइंस से जुड़ा, लेकिन सिर्फ 3 महीने तक नौकरी की। इसके बाद फ्लाई दुबई एयरलाइंस में बतौर को पायलट नौकरी करने लगा। हमामी की माने तो इसराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष का बदला लेने के लिए उसने आतंकी हमले की साजिश रची थी। ऐसे में इजरायली जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पायलट ने अकेले ही साजिश रची थी या फिर उसे किसी आतंकी संगठन ने इजरायली नागरिकों को मारने के लिए भेजा था। अभी तक इसराइल की तरफ से किसी मुल्क या आतंकी संगठन का नाम नहीं लिया गया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप यही है कि इस साजिश में ईरान का हाथ है। ट्रंप का ईरान पर यह आरोप नया नहीं है। हाईजैक की कोशिश के ठीक बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूरे मामले से ईरान का नाम जोड़ा था। तब ट्रंप ने शक जताया था कि इजरायली नागरिकों से भरे विमानों को हाईजैक करने के पीछे ईरानी सेना का हाथ हो सकता है। तब ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि साजिश 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम देने की थी।
2: I would say the answer based on what I'm hearing is yes, but we're working on it right now.
3: I'm surprised to go, this guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tries to take down the plane.
2: It could have been, yeah.
0: वहीं ईरान की तरफ से ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया। ईरान का यही कहना है कि पूरा मामला यूएई और इजराइल की प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि ईरान ने पूरे मामले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। ईरान का आरोप है कि इजराइल और यूएई ने मिलकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की स्क्रिप्ट लिखी है। दावे के पीछे तर्क यही है कि विमान वाली घटना से ठीक पहले नेतन्याहू यूएई की सीक्रेट विजिट पर गए थे, जहां पर उनकी मुलाकात यूएई के राष्ट्रपति से हुई थी। ईरान इसे इजरायली साजिश से जोड़कर देखता है। ईरानी मीडिया का दावा नंबर एक, इजराइल और यूएई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ईरानी मीडिया का दावा नंबर दो, 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में फायदा लेना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर तीन, ईरान के साथ नए टकराव की स्क्रिप्ट लिखना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर चार, नेतन्याहू पर लगे घोटाले के आरोपों से ध्यान भटकाना। ईरान ने इस घटना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब देखना यही है कि जांच पूरी होने के बाद क्या सामने आता है, क्या आरोपी पायलट के तार ईरान से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी सच सामने आया है कि प्लेन से इमरजेंसी सिग्नल मिलने के बाद विमान को मार गिराने के लिए इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली थी, लड़ाकू विमानों को तुरंत भेजा था, लेकिन जब विमान ने सऊदी अरब की ओर मुड़कर आपातकालीन लैंडिंग की तो उन्हें वापस बुला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक 9/11 जैसी संभावित घटना के लिए लंबे वक्त से चले आ रहे प्रोटोकॉल के तहत विमान के करीब 14,000 फीट नीचे गिरने के बाद इजरायली वायुसेना ने कॉकपिट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो ऐसे मामलों को देखने वाली टीम को तुरंत बुलाया गया और एक कमांड सेंटर स्थापित किया गया। इसी कड़ी में लड़ाकू विमानों को भेजा गया और इजरायल ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। आज तक ब्यूरो।
4: और इस बीच एक बड़ी खबर ये आई है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, 4.4 तीव्रता मापी गई है। और वैसे उत्तराखंड में भूकंप का केंद्र था, भूकंप के झटके उत्तराखंड में भी महसूस किए गए, दिल्ली एनसीआर में भी ये झटके महसूस किए गए। यहां भी लोगों ने इन झटकों को महसूस किया है और भूकंप का केंद्र जो था वो खदून ग्वाली यानी कि उत्तराखंड में ये जगह है, जहां से 22 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, जिसका असर दिल्ली और एनसीआर में भी हुआ है, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोगों ने इन झटकों को महसूस किया, हालांकि इसकी तीव्रता 4.4 रही। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि मिडिल ईस्ट के युद्ध में कैसे पाकिस्तान और तुर्की की एंट्री होने जा रही है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों की बढ़ती शक्ति ने सऊदी अरब को सीधे सैन्य कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया और इसीलिए अब पाकिस्तान और तुर्की भी सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अपने सैन्य बल तैनात करने की तैयारी में है। आपको हम ये बता दें कि सऊदी के रियाद में मक्का पैक्ट की इमरजेंसी मीटिंग में पाकिस्तान और तुर्की ने यह सहमति व्यक्त कर दी है। इससे पहले सितंबर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सैन्य मदद मांगी थी, तब पाकिस्तान ने मदद देने से इनकार कर दिया था और अब हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब का साथ देने के लिए पाकिस्तान और तुर्की दोनों ने सहमति व्यक्त कर दी है। आइए अब आपको दिखाएं मिडिल ईस्ट में आगे क्या होगा।
0: मिडिल ईस्ट की जंग में उतरेंगे तुर्की और पाकिस्तान। हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी का साथ देंगे तुर्की पाकिस्तान। अब हूती का होगा काम तमाम, खाड़ी में तेज हुआ घमासान। हूती विद्रोहियों के कब्जे से मुक्त होगा बाब अल मंदेब। सऊदी के साथ आई यमन सरकार, हूती के ठिकानों पर बमबारी शुरू। ईरान अमेरिका और इसराइल की जंग आगे बढ़ी तो पूरे मिडल ईस्ट में फैल गई। ईरान पर जब जब अमेरिका हमले करता है, पलटवार में ईरान सीधे मिडल ईस्ट के देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले करता है, फिर चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो या फिर कतर और इराक। और जब से ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जंग छिड़ी है, ऐसे में सऊदी अरब को शक है कि ईरान ने तेल के दूसरे समुद्री रास्ते बाब अल मंदेब पर भी अपने प्रॉक्सी यमन के हूती विद्रोहियों को लाल सागर में उतार रखा है, क्योंकि हॉर्मुज में तनाव के बाद सऊदी अरब अपने तेल को लाल सागर के तट पर स्थित यानबू बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का उपयोग करता है। इसके बाद उस तेल को एशिया और यूरोप भेजने के लिए बाब अल मंदेब से गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, जिससे दुनिया का लगभग 10-12% समुद्री व्यापार और तेल की आपूर्ति होती है। लेकिन पिछले दिनों में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी के कई तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। और तो और, सऊदी अरब ने यह भी आरोप लगाया कि हूती विद्रोहियों ने मक्का को भी निशाना बनाने की कोशिश की, हालांकि हूती विद्रोहियों ने मक्का पर हमले से साफ इनकार किया। अब एक तरफ से हूती विद्रोहियों और यमन में सऊदी के समर्थन वाली सरकार में आर पार की लड़ाई शुरू हुई है, और पिछले 24 घंटों में यमन सरकार ने हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। साथ ही पहले हूती विद्रोहियों के साथ डील करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भी सऊदी अरब का साथ देने का ऐलान कर दिया है।
5: What's your view about the Saudis and Yemenis counterattack and offensive against the Houthis?
6: It'll all work out very well. It's going to work out very well.
0: तो दूसरी तरफ सऊदी का साथ देने के लिए मक्का पैक की भी मीटिंग हुई है, जिसमें तुर्की और पाकिस्तान हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब को सैन्य मदद देने के लिए राजी हो गए हैं। आपको बता दें कि 7 अगस्त 2026 को हुए मक्का पैक के तहत ये तय हुआ था कि तीनों में से किसी एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा, और जब हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी के तेल टैंकरों पर हमले किए तो उसने तुर्की और पाकिस्तान के सामने मक्का पैक की दुहाई दी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने मना कर दिया। लेकिन अब दोनों देश सैन्य समर्थन के लिए राजी हो गए हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मक्का रक्षा गठबंधन की रणनीतिक, राजनीतिक और रक्षा समिति की आपात बैठक में हमलों का सामना करने के लिए एकजुटता और साझे रुख पर मुहर लगाई गई। मक्का रक्षा गठबंधन के ढांचे के तहत इन हमलों और इनके पीछे खड़े सभी लोगों के खिलाफ सामूहिक जवाबी क्षमता को सक्रिय करने की पुष्टि की गई। इस समिति की बैठक में खासतौर पर पवित्र शहरों मक्का और मदीना को निशाना बनाने वाले हमलों की निंदा की गई। हालांकि उन्होंने हूतियों का नाम नहीं लिया, और ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की सरकारी सेनाओं ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया है। यमनी सरकार के मुताबिक इस अभियान का मकसद उन सभी इलाकों को फिर से हासिल करना है जिन पर हूतियों ने 12 साल से जारी युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया है।
7: تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية والتي أضرت بالنسيج الاجتماعي الواحد وانتهكت الأعراف القبلية الثابتة وتخطت أضرارها اليمن إلى محيطه الإقليمي والدولي।
0: आपको बता दें कि पाकिस्तान के पहले से ही सऊदी अरब में सैकड़ों सैनिक तैनात हैं। रॉयटर्स ने पिछले सप्ताह खबर दी थी कि पाकिस्तान ने सऊदी समर्थित सरकार की मदद के लिए पोर्ट सिटी अदन में हथियारों से भरे 4 विमान भेजे थे। इस बीच संभावना ये भी है कि तुर्की की सरकार अगले 30 दिनों के भीतर मक्का समझौते या सैनिक तैनाती की मंजूरी को तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली के एजेंडे में लाएगी। जानकारों की माने तो तुर्की का शुरुआती योगदान यमन में लड़ाकू सैनिकों की तैनाती के बजाय सऊदी अरब की धरती पर वायु रक्षा, ड्रोन, खुफिया निगरानी और टोही से जुड़ी क्षमताओं के रूप में होने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है। अब इस मक्का पैक की चुनौती क्या है वो भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश है। उसने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ के रूप में भी भूमिका निभाई है और खुद को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, जबकि तुर्की नाटो का सदस्य है और उसने खुद को इसराइल के प्रतिद्वंदी के तौर पर स्थापित किया है। और सवाल ये भी है कि जब यमन की सरकार हूतियों के खिलाफ निर्णायक अभियान छेड़ चुकी है तब जाकर पाकिस्तान क्यों जागा है? क्या वो सिर्फ मक्का समझौते की औपचारिकता बनाए रखना चाहता है? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि युद्ध छिड़ने पर ईरान अगर फिर सऊदी अरब पर हमले करता है तो फिर पाकिस्तान का रुख क्या होगा? आज तक ब्यूरो
4: दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभरात्रि।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मेरे पास एक आइडिया।
1: क्या?
0: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
5: कौन सी बनानी है?
6: सर, गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
7: गड़बड़ है।
8: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
9: और वही कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
12: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
14: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
15: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
14: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
16: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
17: सोच बदलो और बैंक भी।
18: In association with
19: Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
20: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
21: हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड। चलिए, उसमें शिफ्टेड वालों में लोग यह तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहेंगे, मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे। कांग्रेस पार्टी जो आंतरिक रूप से एक राजतंत्र है, जिसने लोकतंत्र का लबादा ओढ़ा हुआ है, वह वास्तविक लोकतंत्र को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए वह लोकतंत्र के हर स्तंभ के ऊपर पिछले 12 सालों में निराधार, निरर्थक, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: आ गया सोमवार और आ गए
2: चकमक चाचा।
1: एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा।
3: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
1: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगा जा रही, गूंज रहा नारा।
3: लेकिन भैया नारा अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। अरे होते थे हमारे टाइम।
1: अच्छा
3: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
1: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
3: अरे जमीन की चकबंदी में, जमीन की चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में।
1: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
3: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
1: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे।
3: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
1: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नन्हे ब्यूटीफुल।
3: अरे बारी बारी, सबकी बारी, अबकी बारी अटल बिहारी।
1: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा भी शर्म
3: है।
1: हाँ,
3: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
1: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
4: हम जैसे, इधर आओ।
5: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
6: चुनावी गड़बड़ी के आरोप और सीईसी ज्ञानेश कुमार के विरोध के बीच ये विपक्ष के साझा आक्रोश की तस्वीरें हैं। इंडिया गठबंधन के मार्च में विपक्षी एकजुटता दिखी, जबरदस्त तनातनी हुई, मार्च बढ़ने के साथ साथ पुलिस से तकरार की तस्वीरें भी सामने आई। इंडिया गठबंधन का साझा मार्च संसद के मकर द्वार से निकला, तैयारी थी चुनाव आयोग के दफ्तर की घेराबंदी की। मार्च बढ़ा, नेताओं के जुटने का सिलसिला शुरू हुआ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सियासी हमले तेज हो गए। इंडिया गठबंधन के मार्च को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती थी। आकाशवाणी केंद्र के पास मार्च को रोका गया तो राहुल गांधी बैरिकेड पर चढ़ गए। कुछ और विपक्षी सांसद भी इस विरोध में राहुल का साथ देते दिखे। बढ़ती तनातनी के बीच पुलिस ने नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। राहुल प्रियंका हिरासत में लिए गए, अखिलेश को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन उस समय हंगामा और बढ़ गया जब राहुल पुलिस की हिरासत से निकलकर आकाशवाणी केंद्र में चले गए। हंगामा जारी रहा, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष हमलावर दिखा। लेकिन इस मार्च के बीच बड़ा सवाल ये, सड़क पर छिड़े इस संग्राम से विपक्ष को हासिल क्या हुआ? क्या विपक्षी एकता के इस मार्च के जरिए चुनावी गड़बड़ी का संदेश सीधे जनता तक जाएगा? क्या विपक्षी एकता से चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ेगा? क्या आने वाले दिनों में देश भर में जिस तरह के विरोध प्रदर्शन का प्लान तैयार किया गया, इस मार्च से उसे और धार मिलेगी? क्या 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली को इस विरोध प्रदर्शन से और ताकत मिलेगी? इंडिया गठबंधन के दल चुनाव आयोग पर हमलावर है, वहीं बीजेपी हर हमलों का जवाब दे रही है। इस मार्च को राहुल गांधी को लॉन्च करने की फिर नाकाम कोशिश बता रही है। चुनाव आयोग पर आरोपों के बीच रण बढ़ता जा रहा है, संग्राम सड़कों पर छिड़ा है, सरकार और विपक्ष के बीच हमले तेज हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आकाशवाणी में धरने पर बैठे राहुल गांधी को पुलिस ने जबरदस्ती हटाया, ले जाए गए किंग्सवे कैंप। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद। विपक्षी मार्च के बाद दिन भर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। सीईसी से मुलाकात की मांग के साथ धरने पर बैठे थे राहुल गांधी। प्रियंका, चुनाव आयोग की सफाई, नहीं मांगा गया मीटिंग का टाइम। राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी का हमला, कहा उनकी सियासी लॉन्चिंग लगातार हो रही है। फेल, विपक्ष का झूठ हो चुका है बेनकाब। 300 सांसदों के साथ की बात झूठ। छोटे मझोले कारोबारियों के लिए मोदी सरकार की बड़ी सौगात, 10,000 करोड़ के निवेश का ऐलान। एसएमई ग्रोथ फंड बढ़ाने पर भी जोर। और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख। 2028 तक कार्यकाल, करगिल जंग में रहे शामिल।

नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। फ्लाई दुबई का कोपायलट हमाम अल हमामी फिलिस्तीनी शहर गाजा में मारे गए लोगों का बदला इसराइल से लेना चाहता था, इसीलिए वो फ्लाई दुबई को इजरायली नागरिकों समेत इसराइल में क्रैश करना चाहता था। हमाम अल हमामी ने यह खुलासा यूएई के जांच अधिकारियों के सामने किया। उसने ये भी कहा कि यह पूरी साजिश उसने अकेले रची थी। फ्लाई दुबई की फ्लाइट 1073 में 174 मुसाफिर और 8 क्रू मेंबर में से एक वो खुद भी था, यानी को पायलट हमाम अल हमामी। हमामी अकेला था जिसे पता था कि कुछ देर बाद इस प्लेन में सवार सभी मुसाफिर और क्रू मेंबर मारे जाएंगे, यहाँ तक कि खुद वो भी। हालांकि प्लेन के पायलट यानी कैप्टन स्मिथ मच्छार को सबसे पहले मरना था, क्योंकि हमाम प्लेन क्रैश करने से पहले ही कॉकपिट में कैप्टन को मारने वाला था। इसके बाद इस प्लेन को क्रैश करने के लिए किसी तीन में से उसे ऐन वक्त पर एक टारगेट चुनना था। टारगेट मौके के हिसाब से था। तीन में से पहला टारगेट था तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट, दूसरा तेल अवीव की कोई ऊंची बिल्डिंग और तीसरा जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस। और ये सब कुछ हमाम अल हमामी इसलिए कर रहा था ताकि वो फिलिस्तीन के गाजा में इजरायली जुल्म का बदला ले सके। जी हाँ, फ्लाई दुबई को हाईजैक करने और उसे क्रैश करने की कोशिश के 6 दिन बाद ये खुलासा हुआ है कि ओमानी नागरिक और फ्लाई दुबई का को पायलट 30 सितंबर को जिस प्लेन को वो खुद उड़ा रहा था उसे इसलिए क्रैश करना चाहता था ताकि वो इसराइल से गाजा का बदला ले सके। यानी 30 सितंबर को हमाम एक सुसाइडल मिशन पर था। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर आई है कि ये खुलासा हमाम ने यूएई अथॉरिटी के सामने पूछताछ के दौरान किया। उसने पूछताछ में ये भी बताया कि इस सुसाइडल मिशन में वो अकेला था और ये सब कुछ उसने अकेले ही प्लान किया था। हमाम ने ये भी बताया कि प्लेन को इसराइल में क्रैश कर वो एक शहीद की मौत मरना चाहता था। इजरायली न्यूज पोर्टल माको के मुताबिक यूएई जांच अधिकारियों ने हमाम से पूछताछ के बाद 30 सितंबर को फ्लाई दुबई की उड़ान में मौजूद क्रू मेंबरों से भी लंबी पूछताछ की। पूछताछ के बाद जांच अधिकारियों ने सभी क्रू मेंबर को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उनमें से कोई भी हमाम के साथ इस साजिश में शामिल नहीं था। हालांकि इसराइल अब भी इस बात की जांच कर रहा है कि हमाम के पीछे कौन लोग हैं, उसे किसने ट्रेनिंग दी, किसने उसे हायर किया। कोई देश या फिर कोई आतंकवादी संगठन तो हमाम का मददगार नहीं। हमाम अल हवामी ने यूएई जांच अधिकारियों के सामने फ्लाई दुबई को इसराइल में क्रैश करने की अपनी पूरी प्लानिंग के बारे में तफसील से बताया। जांच अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी और इजरायली मीडिया ने हमाम और उसकी साजिश की जो पूरी कहानी पेश की है वो कुछ यूं है। हमाम अल हमामी का जन्म यूएई में हुआ था। पिता ओमान के नागरिक थे और माँ सीरिया की नागरिक। शुरुआती पढ़ाई उसने यूएई में ही की, फिर एविएशन की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड गया। कुछ वक्त उसने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी पढ़ाई की लेकिन कोर्स पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद न्यूजीलैंड में पायलट की ट्रेनिंग ली। पायलट बनने के बाद उसने पहली नौकरी अपने देश यानी ओमान में की। ओमान एयर में उसने बतौर पायलट काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ साल बाद ही उसके मोबाइल लैपटॉप से कई ऐसी तस्वीरें मिली जिनसे पता चला कि वो अलकायदा के अल जवाहरी और फिलिस्तीन के लोगों को पूरी शिद्दत से फॉलो करता है। हमाम का ये सच और उसकी ये सोच जब ओमान एयर के अधिकारियों को पता चली तो उन्होंने उसके प्लेन उड़ाने पर रोक लगा दी। अब वो ओमान एयर में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करने लगा। करीब 7 साल बाद उसने ओमान एयर की नौकरी छोड़ दी। इसके बाद 2025 में वो मोरक्को चला गया। उसने मोरक्को की एयरलाइन मार्को एयर ज्वाइन कर ली, पर यहाँ वो ज्यादा दिनों तक नहीं रुका। फिर मार्को एयर छोड़ वो यूएई आ गया। मार्च 2025 में उसे फ्लाई दुबई में नौकरी मिल गई। असल में हमाम के यूएई आने और फ्लाई दुबई ज्वाइन करने का एक खास मकसद था। उसने कई महीने तक ये स्टडी किया कि तेल अवीव की फ्लाइट रेगुलर और सबसे ज्यादा कहां कहां से जाती है।
तब उसे पता चला कि लो कॉस्ट एयरलाइंस फ्लाई दुबई की दुबई से तेल अवीव के लिए रोजाना उड़ान जाती है। बस इसीलिए उसने फ्लाई दुबई ज्वाइन करने की ठान। हालांकि ओमान एयर ने उसकी कट्टरपंथी सोच के चलते उसके उड़ान भरने पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद फ्लाई दुबई में उसे आसानी से नौकरी मिल गई। इसकी वजह यह थी कि न तो ओमान ने दुनिया को हमाम के बारे में बताया, न ही फ्लाई दुबई ने हमाम के बैकग्राउंड को जांचने की जहमत उठाई।

0: एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC की छोटी से छोटी जानकारी भी हासिल कर ली। हमाम ने पहली बार इसी साल जुलाई में फ्लाई दुबई की फ्लाइट को तेल अवीव में क्रैश करने की योजना बनाई थी। तब भी वो इस फ्लाइट का को पायलट था, लेकिन पायलट तब कैप्टन इस्मित मच्छार नहीं थे। पर साजिश वही थी, कॉकपिट में पायलट को मारकर प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना और फिर तेल अवीव में क्रैश करना। लेकिन जब हमाम प्लेन में सवार हुआ तब अचानक उसे पता चला कि केबिन क्रू मेंबर में से एक उसका दोस्त था। वो दोस्त की जान लेना नहीं चाहता था, इसीलिए आयन वक्त पर इरादा बदल दिया। फिर उसने अपनी साजिश पर अमल करने के लिए जो अगली तारीख चुनी वो 30 सितंबर थी। असल में सितंबर के दूसरे हफ्ते में फ्लाइट का रोस्टर तैयार हो चुका था। उसे पता था कि 30 सितंबर को उसकी ड्यूटी दुबई से तेल अवीव की फ्लाइट में है। तभी से उसने साजिश बुननी शुरू कर दी। दुबई से तेल अवीव तक की उड़ान की सारी जानकारी उसके पास थी। हमाम का प्लान ये था कि दुबई से उड़ान भरने के 2.5 घंटे बाद वो अपना ऑपरेशन शुरू करेगा। असल में दुबई से तेल अवीव तक की उड़ान लगभग 3.5 घंटे की थी। 2.5 घंटे बाद प्लेन जॉर्डन की वायु सीमा यानी एयर स्पेस में दाखिल हो जाती है। जॉर्डन के बाद इसराइल का एयर स्पेस शुरू होता है। प्लान ये था कि जॉर्डन के एयर स्पेस में दाखिल होते ही वो कॉकपिट में रखे क्रैश एक्स से कैप्टन इस्मित मच्छार के सिर पर पीछे से हमला करेगा। फिर मच्छार को मारने के बाद प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेगा। प्लेन के अंदर मुसाफिरों को या फिर तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किसी को शक न हो, इसलिए वो बिल्कुल नॉर्मल उड़ान भरेगा। फिर प्लेन को ले जाकर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर क्रैश कर देगा। लेकिन उसे इस बात का भी एहसास था कि अगर ऐन वक्त पर कुछ गड़बड़ हो गई तो सूरत में वो प्लेन को तेल अवीव की किसी इमारत से टकरा देगा। उसने यह भी तय कर रखा था कि अगर ये दोनों मिशन नाकाम रहा तो फिर वो जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर प्लेन को गिरा देगा। इसी प्लान के तहत उड़ान के ठीक 2.5 घंटे बाद उसने कैप्टन इस्मित मच्छार पर क्रैश एक्ट से हमला किया। लेकिन कैप्टन इस्मित मच्छार ने गजब की बहादुरी दिखाते हुए कॉकपिट का दरवाजा एन वक्त पर खोल दिया, जिससे प्लेन में सवार मुसाफिरों को हमाम की साजिश का पता चला और फिर हमाम को उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया। इत्तफाक से इसी प्लेन में ऑफ ड्यूटी 2 पायलट भी चल रहे थे। उन्होंने ही फिर प्लेन का कंट्रोल संभाला और उसे सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड कर दिया। इसराइल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां एयरपोर्ट के साथ साथ तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट पर सख्त नजर रखी जाती है। दुनिया भर के उन तमाम देशों की एयरलाइंस के साथ इसराइल का एक समझौता है। समझौता ये कि इसराइल आने वाले हर फ्लाइट के पायलट और को पायलट की पूरी जानकारी यानी उनके नाम और उनकी नागरिकता 24 से 48 घंटे पहले ही इसराइल की ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ साझा की जाएगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस लिस्ट को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी शिनबेट को भेजती है, जो ऐसे तमाम पायलट और को पायलट की जानकारी निकालते हैं। दुनिया भर की एयरलाइंस के साथ इसराइल का एक और समझौता है। समझौता ये कि इसराइल आने वाली किसी भी उड़ान में कोई ऐसा पायलट या को पायलट नहीं होगा जिसके साथ इसराइल के राजनयिक रिश्ते नहीं। ओमान वो देश है जिसने 1948 में इसराइल के जन्म के बाद से अब तक यानी पिछले 78 सालों में उसे एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है। इसीलिए इसराइल और ओमान के बीच कोई राजनयिक संबंध भी नहीं। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि फिर एक ओमानी नागरिक यानी को पायलट हमाम अल हमामी को फ्लाई दुबई की इसराइल जाने वाली फ्लाइट को उड़ाने की इजाजत कैसे मिली। हालांकि फ्लाई दुबई का कहना है कि उसने 28 सितंबर को ही फ्लाई दुबई के पायलट और को पायलट के बारे में सारी जानकारी इसराइल को दे दी थी। यानी जानकारी मिलने के बाद भी मोसाद और शिनबेट से बड़ी चूक हो गई। फिलहाल यूएई अथॉरिटी हमाम अल हमामी से अबू धाबी में लगातार पूछताछ कर रही है। अगर हमाम इस मामले में दोषी करार दिया जाता है और उस पर आतंकवाद का मुकदमा चलता है तो यूएई के कानून के तहत उसे सजाए मौत मिलनी तय है। यूएई में सजाए मौत फायरिंग स्क्वाड के जरिए गोली मार कर दी जाती है। तो ये तो रही हमाम और उसकी साजिश की कहानी। अब सवाल ये कि हमाम ने ये सब कुछ गाजा का बदला लेने के लिए क्यों किया, या वो क्यों ऐसा करना चाहता था? आखिर गाजा में ऐसा क्या हुआ था? तो पेश है गाजा की कहानी। गाजा फिलिस्तीन का एक छोटा सा शहर है। अक्टूबर 2023 में हमास के इसराइल पर हमले के बाद
1: اسرائیل

तारीख गवाह है, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जब जब जंग छिड़ी है, इसराइल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर मौजूद इसी इलाके ने अपने सीने पर सबसे ज्यादा जख्म खाए।

करीब 45 किलोमीटर लंबे और 6 से 10 किलोमीटर चौड़े इस इलाके ने जितने बम, जितने रॉकेट और जितनी मौत देखी है, दुनिया के शायद ही किसी दूसरे इलाके ने वैसा कुछ देखा हो। गाजा पट्टी,

जी हाँ, यही नाम है इस इलाके का। पूरी दुनिया की कई पुश्तें ये नाम सुन सुनकर बड़ी हो गई, लेकिन कभी किसी अच्छी वजह से नहीं, बल्कि यहाँ होती लड़ाई, बमों की बारिश और हमले में मारे जाते लोगों की खबरों के चलते। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों है गाजा पट्टी के साथ ऐसा? आखिर क्या खास है इस इलाके में? आखिर कौन निशाना बनाता है इस इलाके को? क्यों यहाँ रहने वाले लोग हर जंग में दो पार्टों के बीच बुरी तरह से पिस जाते हैं? तो आज आपको इसी गाजा पट्टी की बुनियाद के रखे जाने से लेकर इसके तिल तिल कर तबाह होने की पूरी कहानी सुनाएंगे। अतीत के झरोखे में झांके तो गाजा पट्टी का इतिहास कोई 75 साल पुराना है, जब इसराइल की बुनियाद रखे जाने के साथ साथ गाजा पट्टी की भी नींव रखी गई। असल में दुनिया भर में यहूदियों के पहले और इकलौते देश इसराइल के गठन के साथ ही एक आर्मिस्टाइस रेखा खींची गई थी, जिसके तहत गाजा पट्टी में सुन्नी मुस्लिमों को बसाया गया। इसी समझौते के तहत यह भी तय हुआ कि गाजा पट्टी के इस इलाके में इसराइल के अरब मुस्लिमों की बसावट होगी, जबकि यहूदी इसराइल में ही रहेंगे। तब इस इलाके पर मिस्र का अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1967 में इसराइल और अरब देशों के बीच हुई कब्जे की जंग में जमीन का यह हिस्सा मिस्र के हाथों से निकलकर इसराइल के पास चला गया, और इसी के साथ गाजा पट्टी की किस्मत नए सिरे से लिखी जाने लगी। अगर और पीछे लौटकर देखें तो 1918 से 1948 तक इस पर ब्रिटेन का कब्जा था, जबकि उससे पहले इस इलाके पर ऑटोमन साम्राज्य की हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन इसराइल के कब्जे में आने के बाद गाजा पट्टी को 1993 में हुए ओस्लो समझौते के तहत फिलिस्तीनी प्राधिकरण के स्वायत्त शासी इलाके के तौर पर चिन्हित कर दिया गया। इसके बाद 2005 के आते आते इसराइल ने अपने लोगों को गाजा से हटा लिया, इजरायली बस्तियां खत्म कर दी गई और इजरायली कैबिनेट ने आधिकारिक तौर पर गाजा पट्टी से अपना सैन्य कब्जा खत्म करने का ऐलान कर दिया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और यहां तक कि ज्यादातर देश गाजा पट्टी को इजरायल का ही इलाका मानते हैं। देखा जाए तो गाजा पट्टी को इजरायल खुले तौर पर बाहर से कंट्रोल करता है, जबकि अंदर खाते अंदरूनी तौर पर। लेकिन फिर विडंबना यह है कि इस गाजा पट्टी पर अगर अब तक सबसे ज्यादा किसी ने बम बरसाए हैं तो वो इसराइल ही है। तो फिर सवाल है क्यों? तो जवाब है फिलिस्तीन और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के साथ चली आ रही उसकी जंग के चलते।

वो चाहे 1967 की 6 दिन की जंग हो या फिर 1973 की अरब इसराइल की जंग, हर लड़ाई में इसराइल जमीनी तौर पर अपना दायरा बढ़ाता रहा और फिलिस्तीनियों की जमीन खिसकती रही। 1967 में इजरायली फौज ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया और साथ ही कई तरह की पाबंदियां लगा दी। इसके बाद गाजा में रहने वाले इजरायली अरब मुस्लिमों में गुस्सा बढ़ने लगा और इजरायल विरोधी इंतिफादा आंदोलन की शुरुआत हो गई। यहां के लोगों ने इजरायली कायदे कानूनों को मानने से इनकार कर दिया। ये सिलसिला करीब 20 सालों तक यानी 1993 के ओस्लो समझौते तक चलता रहा। उन्नीस सौ नब्बे के दशक के आते आते यहां फिलिस्तीन और इसराइल के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ और इसराइल ने फिलिस्तीन की जमीन उसे किश्तों में वापस लौटाने की शुरुआत कर दी। लेकिन इसी दशक में 1987 में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हमास नाम के एक संगठन की शुरुआत की, हमास यानी इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। इस हमास ने न सिर्फ गाजा पट्टी पर अपना कब्जा जमा लिया बल्कि यहीं से उसने इसराइल पर हमलों की शुरुआत कर दी। असल में साल 2007 में गाजा पट्टी में हुए चुनावों में हमास ने जीत हासिल की और फिर धीरे धीरे इसने यहां अपनी पकड़ मजबूत बना ली। यहां के सरकारी ऑफिस से लेकर सैन्य विंग तक हमास के कंट्रोल में आ गया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र, इजराइल, अमेरिका और दुनिया के कई देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि हमास आजादी के साथ साथ फिलिस्तीन को एक इस्लामिक स्टेट बनाने की मांग करता रहा है। और 1907 से लेकर अब तक हमास ने इसराइल के खिलाफ 4 बड़े हमले किए हैं। दरअसल हमास का मानना है कि इसराइल ने फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। ऐसे में हमास इसराइल को अपना दुश्मन मानता है और वक्त वक्त पर उस पर हमले करता रहा है। लेकिन ये भी सही है कि जब जब हमास ने इसराइल को छेड़ने की गलती की है, तब तब इसराइल ने हमास को उसके किए का मुंहतोड़ जवाब दिया है। और चूंकि हमास के हेडक्वार्टर से लेकर आतंकियों के तमाम ठिकाने तक इसी गाजा पट्टी इलाके में मौजूद हैं, अगर इस गाजा पट्टी पर किसी ने सबसे ज्यादा बम बरसाए हैं तो वो इसराइल ही है। खास बात यह है कि आतंकी संगठन गाजा पट्टी के रिहायशी इलाकों से ऑपरेट करता है। ऐसे में जब भी हमास इसराइल पर हमला करता है तो इसराइल के पलटवार में हमास के आतंकियों के साथ साथ गाजा पट्टी में रहने वाले आम लोग भी बेमौत मारे।

0: लेकिन शायद यही हमास की रणनीति है कि वो बेगुनाहों की ओट में छिपकर घात करता है और बेगुनाहों की मौत पर दुनिया के सामने इसराइल को कसूरवार ठहराने की कोशिश भी करता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है तो फिर वहां की बुनियादी सुविधाएं इसराइल के जिम्मे क्यों और कैसे हैं? तो जवाब है कि इसराइल ने गाजा पट्टी में भी बिजली, पानी, टेलीफोन जैसी सुविधाओं का कंट्रोल अपने पास रखा है। यहां तक कि गाजा में खाने पीने की कई चीजें भी इसराइल से ही आती हैं और कई चीजों के लिए गाजा इसराइल पर निर्भर है। इसलिए कहते हैं कि गाजा के एक स्वायत्त शासी इलाका होने के बावजूद उस पर अप्रत्यक्ष रूप से इसराइल का ही कंट्रोल है। ऐसे नाजुक मौकों पर अक्सर इसराइल गाजा पट्टी की जरूरी सुविधाएं रोक देता है।
1: Israel is at war.
0: यहां तक कि गाजा पट्टी के हवाई और समुद्री इलाके पर भी इसराइल का कब्जा है और इन हालात में वो अपने लिए सीधे तौर पर बाहर से कुछ मंगा भी नहीं सकता। यहां तक कि इसराइल ने अपनी सेना को गाजा पट्टी पर कभी भी आने जाने का अधिकार दे रखा है। मनीषा झा के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक।
2: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें, भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में लोगों में दहशत फैली है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी गई है 4.9। उत्तराखंड के चमोली में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और भूकंप का केंद्र जमीन से 13 किलोमीटर नीचे था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से भूकंप की खलबली के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए थे। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप की खबर है, तीव्रता मापी गई है 4.9। उत्तराखंड के चमोली में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और जानकारी है कि 13 किलोमीटर जमीन से नीचे था भूकंप। तो अचानक झटकों से लोग घरों से बाहर निकल आए थे डर के मारे। कई जगहों पर लोग बुरी तरह से डर गए थे क्योंकि काफी देर तक भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं और पूरे दिल्ली एनसीआर में इन झटकों को महसूस किया गया है। 4.9 तीव्रता मापी गई है इस भूकंप की। उत्तराखंड के चमोली में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और जानकारी यह है कि भूकंप का जो केंद्र था जमीन से 13 किलोमीटर अंदर था। और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: किंग्सवे कैंप से निकलने के बाद राहुल गांधी का पोस्ट, लोकतंत्र के गद्दारों को बचा रही है सरकार, एक भी देशद्रोही को छोड़ा नहीं जाएगा आज तक, से बोली प्रियंका, ये है कायर सरकार। विपक्षी मार्च के बाद दिन भर चला हाई वोल्टेज ड्रामा, सीईसी से मुलाकात की मांग के साथ धरने पर बैठे थे राहुल गांधी, प्रियंका चुनाव आयोग की सफाई नहीं, मांगा गया मीटिंग का टाइम। राहुल के धरने पर बीजेपी का हमला, कहा उनकी सियासी लॉन्चिंग लगातार हो रही है फेल, विपक्ष का झूठ हो चुका है बेनकाब, 300 सांसदों के साथ की बात भी झूठ। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, 2028 का कार्यकाल, करगिल जंग में रहे शामिल। और दिल्ली एनसीआर में लगे भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 4.9, उत्तराखंड के चमोली में था एपिसेंटर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
0: मुंबई में आदिवासी छात्रों का प्रदर्शन, 200 किलोमीटर पैदल चलकर मुंबई पहुंचे आदिवासी छात्र, पुलिस हिरासत में लिए जाने पर लगाया मारपीट का आरोप। आदिवासी छात्रों का मुंबई में हंगामा, बसों में भरकर नासिक भेजे गए प्रदर्शनकारी, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, हिरासत के बाद 25 अक्टूबर को फिर से आंदोलन की तैयारी। पुणे में एमपीएससी आंदोलन पर पुलिस का शिकंजा, 29 कोचिंग संचालकों को, 51 छात्रों को नोटिस, ड्रोन से वीडियोग्राफी की भी जांच। महाराष्ट्र के नांदेड़ समेत कई गांवों में नदियां और नाले सूख गए, मराठवाड़ा विदर्भ सीमा पर पैनगंगा नदी सूखी, पैनगंगा नदी से सटे 100 से ज्यादा गांवों में पानी का संकट है, जल संकट से बचाव ग्रामीणों की मांग। जाला में सूखे की भयावह तस्वीरें सामने आई, ड्रोन कैमरे में कैद हुआ नजारा, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे लोग। दिशा सालियान केस में पिता सतीश सालियान फिर से पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट, किसी को आरोपी न मानने वाली शर्त हटाने की मांग। ईडी ने चैलेंजर किंग महमूद बगाड़ के खिलाफ 157 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीसरी सप्लीमेंट्री शिकायत दाखिल की है। पुणे में लोनावला में प्रॉपर्टी विवाद बना हत्या की वजह, 83 साल के दादा पर 31 साल के पोते की हत्या के आरोप। राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में 25 साल पूरे होने पर राजकोट में विशेष कार्यक्रम, 1500 विद्यार्थियों ने मनाई भारत के नक्शे की मानव श्रृंखला, मंत्री रिवाबा जडेजा भी मौजूद थे। अनाज बांधनी और साड़ियों से सजाएगी 80 फीट की अनोखी रंगोली, सौराष्ट्र की समृद्ध विरासत की झलक की प्रस्तुति। यामी गौतम द स्टार नई नवेली का दूसरा गाना रिलीज किया गया, फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की फिल्म तू है मेरी किरण का ट्रेलर लॉन्च किया गया, फिल्म 23 अक्टूबर को रिलीज होगी। मराठी फिल्म 16 का ट्रेलर रिलीज हुआ, प्रवीण देवदत्त वर्षा का अहम रोल है, 16 अक्टूबर को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हॉरर थ्रिलर 1418 का हिंदी में ट्रेलर लॉन्च किया गया है, 23 अक्टूबर को फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। मुंबई में सोनू निगम ने 17 करोड़ रुपए में 3 प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, कर्जत में बेची थी 2.25 हेक्टेयर जमीन, रियल एस्टेट में भी निवेश किया। एचएसबीसी के मुताबिक मजबूत डॉलर और ऊंचे यूएस यील्ड की वजह से सोने पर दबाव बढ़ गया है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि गिरावट की आशंकाओं के बीच अलग अलग फेज में सोना खरीदना फायदेमंद। इंडिगो की फ्यूल सरचार्ज बढ़ोतरी से घरेलू उड़ानों पर 375 से 1300 रुपए तक का बढ़ गया है किराया, एयरलाइन कंपनियों ने सरकार से की है लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस घटाने की मांग। एनएसओ के पहले नेशनल हाउसहोल्ड ट्रैवल सर्वे के मुताबिक करीब 42.5% वर्कर टू व्हीलर से जाते हैं ऑफिस, लोगों का रोज के जाने आने पर खर्च होता है औसत 785 रुपए। 2 लाख रुपए के कम लोन के नए एनबीएफसी की हिस्सेदारी बढ़कर करीब आधी हो गई है, कर्ज लेने वाले करीब आधे ग्राहकों के पास एनबीएफसी का लोन है, 10 साल में 7 गुना बढ़ा एनबीएफसी का कस्टमर बेस। पटा के मुताबिक सितंबर में ऑटो रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 32% बढ़कर लगभग 25.5 लाख यूनिट्स पर पहुंच गई, पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर दोनों ही सेगमेंट्स में रिकॉर्ड ग्रोथ। बीसीसीआई ने पुरुष चयन समिति के एक पद के लिए आवेदन मांगे हैं, 14 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। टीम इंडिया की लगातार 10वीं टी20 जीत, वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। कप्तान श्रेयस अय्यर के पहले शतक से जीत गया है भारत। उन्होंने 42 बॉल में शतक लगाते हुए 10 चौके और 6 छक्के लगाए। ईशान किशन ने नवाज 37 रन बनाए। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 67 बॉल पर 137 रन की हुई साझेदारी। भारत से डेब्यू कर रहे नमन धीर ने 3 विकेट लिए। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। दिल्ली में आज दिन भर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने राहुल गांधी की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया है, तो नासिक से मुंबई पहुंचे आदिवासी छात्रों को पुलिस ने जबरदस्ती बस में भरकर वापस भेज दिया। इस दौरान आदिवासी छात्र छात्राओं ने मुंबई पुलिस पर उन्हें पीटने, बदसलूकी करने के आरोप लगाए। कांग्रेस जहां इसे तानाशाही बता रही है, वहीं सीएम फडणवीस ने साफ किया है कि विपक्ष छात्रों की आड़ में अपनी सियासत न चमकाए।
2: दो सौ किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल तय करके आदिवासी छात्र नासिक से मुंबई आए थे। छात्रों को लगा था कि नासिक में उनकी सुध किसी ने नहीं ली, लेकिन राजधानी मुंबई में सरकार उनकी मांग सुनेगी, उनसे संवाद करेगी, उनकी मांगें मंजूर करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुंबई पुलिस ने आदिवासी छात्रों को जबरन बसों में ठूस कर वापस नासिक भेज दिया। इस दौरान जिन छात्रों ने पुलिस का विरोध किया, तो पुलिस ने अपनी शैली में उन्हें समझाकर बस में जबरन भर दिया। ऐसे में छात्रों ने पुलिस पर पीटने का आरोप लगाया है।
3: मुंबई में कल से छात्र आए थे जो ट्राइबल स्टूडेंट है, अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए आजाद मैदान में वो बैठने वाले थे, लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद अभी आप देख सकते हैं पुलिस इन छात्रों को डिटेन कर रही है। किस तरीके से डिटेन कर रही है, बल प्रयोग का उपयोग यहां पर किया जा रहा है और इन्हें वापस अब नासिक छोड़ने की बात कही जा रही है।
4: ये पुलिस गुंडा कर दिया, गुंडा कर दी, हम स्टूडेंट है, हमें गुंडा कर देने करते, हमें केला है।
2: नासिक से मुंबई पहुंचने के बाद से आदिवासी छात्र कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में शरण लिए हुए थे। आदिवासी छात्रावासों से जुड़ी मांगों को लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से 300 से ज्यादा आदिवासी छात्र मुंबई पहुंचे थे। आज आदिवासी छात्र राज्यपाल से मिलने और अपनी मांगे रखने की मांग को लेकर तिलक भवन के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती ने इनके इरादों पर पानी फेर दिया।
5: जो पूर्ण भारत में पूरे भारत में बोलते हैं मुंबई पुलिस क्यूट पुलिस है, आपने देखा होगा हम विद्यार्थियों को कैसे लातों से मार रहे हैं। हमको हम सीधे सीधे आ रहे थे, लातों बुक्के से देखा दिया। जब महाराष्ट्र की पुलिस क्यूट पुलिस बोलते हैं ना,
6: हम 300-400 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, वहाँ से आए, हमको आंदोलन का कुछ भी नहीं, मतलब परमिशन नहीं दे रहे, इसलिए हम घर जा रहे, फिर भी हमको मार रहे वो लोग।
2: इन आदिवासी छात्रों ने मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने के बाद वो तिलक भवन में रुके हुए थे। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, वो अपना आंदोलन अलग अलग जिलों में जारी रखेंगे।
3: सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो। इस गेट से विद्यार्थियों को बाहर जाने की अनुमति पुलिस द्वारा नहीं दी जा रही है, उनको बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही जो विद्यार्थी बाहर से आ रहे हैं उनको भी अंदर नहीं जाने दिया रहा, उनको डिटेन किया जा रहा है। यहां से पूरा जो एरिया है वो पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस की कई गाड़ियां यहां पर तैनात हैं कि अगर कल को डिटेन करने की नौबत पड़ी या ज्यादा पुलिस बल की जरूरत पड़ी तो वो शायद यहां पर स्टैंड बाय के लिए रखा गया है।
2: अब कांग्रेस कह रही है कि छात्रों को पीटने वाली सरकार की जमीन हिल गई है।
7: मतलब कह सकते हैं डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक राइट होता है उसका उल्लंघन है। बस ये स्टूडेंट्स आज 1.5 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब उनसे आप बात करोगे, उनकी समस्याओं को समझोगे, 600 विद्यार्थियों की मौत हो चुकी है कुछ महीनों में, और अगर उसके रीजंस देखे तो खाने पीने की कमी और क्वालिटी, जो फूड क्वालिटी है वो बहुत ही खराब।
2: आदिवासी छात्रों की मांगे हैं कि सेंट्रल किचन बंद होना चाहिए। उनका आरोप है कि सेंट्रल किचन से सप्लाई होने वाले खाने की वजह से पिछले 2 साल में 600 से ज्यादा छात्रों की जान जा चुकी है। उनकी दूसरी अहम मांग है कि जिन छात्रों की मौत हुई है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, हॉस्टल को मिलने वाले पैसे को बढ़ाया जाए, हॉस्टल में पानी, टॉयलेट, बाथरूम की उचित व्यवस्था की जाए, कई शहरों में छात्रावासों में बद इंतजामी का आलम है। इसे लेकर छात्रों की मांग है कि आदिवासी मंत्री इस्तीफा दें और आदिवासी विकास भवन सचिव आयुक्त हटाए जाएं।
3: सर, आपकी मांगे क्या हैं और क्या कारण है इस मोर्चा का?
8: दो साल में हमारे आश्रम स्कूल में जो 600 से अधिक बच्चे जो मूर्ति हुए उनके ये जवाबदार लेके हमारा आदिवासी विकास मंत्री जो है उसका रिजर्वेशन होना जरूरी है।
9: हमारी बैठक राज्यपाल से होना चाहिए, फिर हम निर्णय लेंगे आगे क्या करना है।
3: इसके अलावा कुछ और मांगे?
8: जो हमारे आयुक्त है उनकी बदली होनी चाहिए, जो सचिव है उनकी बदली होनी चाहिए।
2: आदिवासी प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस ने हिरासत से पहले टॉर्चर किया है।
8: रात को 6-7 लड़की और 13 लड़कों को डिटेन किया गया, उनको मारा, टॉर्चर किया और रोड के साइड पे फेंक के निकल गए पुलिस वाले।
3: क्यों आपने बात नहीं की उनसे कि हाँ आप सिर्फ बात करना चाहते?
8: सुनने की कंडीशन में नहीं थे, वो सिर्फ टॉर्चर कर रहे थे और इतना रात भर 3 बजे से उठाया बच्चों को और सुबह 6 बजे छोड़ा।
2: मुंबई पुलिस कानून व्यवस्था संभालने की दलील दे रही है लेकिन छात्र पुलिस की कार्रवाई से बेहद नाराज है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है।
10: सरकार के इशारे पर मुंबई पुलिस ने जिस तरह से तिलक भवन कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, स्टेट के हेडक्वार्टर में घुसकर 6 लोगों को डिटेन किया, सारे दिन तक अलग अलग पुलिस स्टेशनों में घुमाते रहे, मुंबई से लेके ठाणे तक उनको लेके गए, शाम को उनको छोड़ा, छोटी बच्चियां थी उनको भी डिटेन किया, गैर कानूनी तरीके से उनको डिटेन किया जो पुलिस को अधिकार नहीं था।
11: महाराष्ट्र की सरकार आदिवासी छात्र हो या एमपीएससी के छात्र हो, सभी के प्रति संवेदनशील है। छात्र महाराष्ट्र और देश का भविष्य है, उनके साथ हम मजबूती के साथ खड़े हैं।
2: 5 अक्टूबर को राहुल गांधी ने आदिवासी छात्रों की मांग को लेकर फडणवीस सरकार को घेरा था, तो आज सीएम फडणवीस ने कहा कि सरकार हमेशा छात्रों के हितों के साथ है और विपक्ष छात्रों के कंधों का इस्तेमाल करना बंद करे।
12: और मैं दोनों स्टूडेंट्स को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं, घबराइए मत, आपकी मांग पूरी होंगी। सरकार से मैं कहना चाहता हूं आप जो करना चाहते हैं करिए, ये जो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रही हैं एमपीएससी की आदिवासियों की, ये रुकने वाली नहीं है। इनकी मांगे जल्दी से जल्दी आप पूरी कीजिए क्योंकि ये रुकने वाले युवा नहीं।
13: विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपलं राजकारण चालवण्याचा प्रयत्न आहे। विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून या ठिकाणी अराजकता तयार करण्याचा प्रयत्न आहे। राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांचे जे जे प्रश्न आले, प्रश्न आहेत का तर हो आहेत, ते जेन्युइन आहेत का तर हो 100% जेन्युइन आहेत, असे सगळे विद्यार्थ्यांचे जेन्युइन प्रश्न सोडवण्याकरता पुढाकार घेतला, निर्णय घेतले। राज्य सरकार पूर्ण त्याबाबतीत सकारात्मक आहे, पण केवळ या ठिकाणी आपल्या लीडरशिप करता, आपल्या पक्षा करता विद्यार्थ्यांना कोणी वेठीस धरून राजकारण करत असेल, राजकारणाला उत्तर राजकारण, विद्यार्थ्यांचं उत्तर हे कृतित्व।
2: अब आदिवासी छात्र अपनी मांगों को लेकर सरकार के रुख का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों ने 25 अक्टूबर को दोबारा मुंबई आकर अपनी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा करने का अल्टीमेटम दिया है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आजकल।
0: मुंबई की ही तरह पुणे में भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने के जो खिलाफ सैकड़ों छात्र 6 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष ने कांग्रेस, एनसीपी, शरद गुट, शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के नेता भी छात्रों के साथ मंच पर नजर आ रहे हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी छात्रों के साथ मांग कर रहे हैं। जब तक महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का इस्तीफा नहीं होगा, इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
2: पुणे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक एमपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा नहीं हो जाता, वो पीछे हटने वाले नहीं है।
14: क्या मांगे हैं आपकी? सरकार का कहना है कि जितनी थी वो तो पूरी हो गई, सिर्फ इस्तीफा बचा है।
15: नहीं, हमारी मांगे है कि पहले इस्तीफा होना चाहिए, मतलब कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अध्यक्ष की, उसके बाद मतलब ये पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो चुका है।
14: तो क्या आपको इंक्वायरी पर भरोसा नहीं क्योंकि एसआईटी गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की है?
15: हमारा ये मांगे है कि एसआईटी जो अभी गवर्नमेंट की है उसका कुछ ना कुछ रिपोर्ट तो आना चाहिए, कहाँ तक चली है।
16: सरकार पहले बोल रही थी कि सिर्फ एक एक लड़की को पेपर मिला है, बाद में एसआईटी ने जांच की कि ये और दो लोगों को मिला पेपर
14: जी।
16: लेकिन हमारी ऐसी जानकारी है, यहाँ पर हमारे कुछ फ्रेंड्स है, उनके फ्रेंड्स को भी ये पेपर मिला है।
2: पुणे के नवी पेठ इलाके में 6 दिन से महाराष्ट्र भर के छात्र जिद पर अड़े हुए हैं। ये छात्र सिस्टम के खिलाफ गुस्से में छात्र महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की आयोजित परीक्षाओं की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। इन छात्रों को विपक्षी दलों का पूरा समर्थन मिल रहा है। विपक्ष भी छात्रों के साथ मिलकर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के इस्तीफे से कम में मानने को राजी नहीं है। इसीलिए छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम फडणवीस का बयान सामने आया।
13: अतिशय स्पष्टपणे सांगतो की एमपीएससीच्या अध्यक्षांचा राजीनामा घेणं किंवा त्यांना हटवणं हे राज्य सरकारच्या हातामध्ये नाही। राष्ट्रपतींना सुप्रीम कोर्टाच्या शिफारसीवरनंच फक्त त्यांना हटवता येतं हे संविधानात लिहिलेलं आहे, ते त्यांनाही माहिती आहे, सर्व लोकांना माहिती आहे। दुसरं, त्यांची मागणी आहे की जे अध्यक्ष त्या काळात नव्हतेच, पेपर फुटला त्याच्यानंतर जॉईन झालेल्या अध्यक्षांना त्या पेपर फुटीकरता तुम्ही काढा आणि त्याकरता राष्ट्रपतींना तुम्ही सांगा, हे देखील कितपत बरोबर आहे याचा विचार झाला पाहिजे। तरीही राज्य सरकारने पुढे येऊन सांगितलं की आमची हरकत नाही, विद्यार्थ्यांच्या मनात विश्वास तयार करण्याकरता आम्ही या अध्यक्षासहित पूर्वीच्या अध्यक्षांसहित संपूर्ण आयोगाची चौकशी करायला तयार आहोत आणि त्या चौकशीमध्ये आर्टिकल 317 प्रमाणे जर त्या ठिकाणी मिसकंडक्ट निघाला तर राष्ट्रपतींना शिफारस करायला देखील आम्ही मागे पुढे पाहणार नाही। या संदर्भात माननीय राज्यपालांनाही विनंती ही राज्य सरकारने काल केलेली आहे।
17: कृषी पत्र पोस्ट लागना हाताला, कारण 200 जागा सुटल्या आणि 4 लाख फॉर्म भरले, पुस्तकांनी खोली भरली, दुःख काळ जात पुरले, जाळून काढल्या राती।
2: इन प्रदर्शनकारी छात्रों के धरने में रोज नए नए रैपर और मराठी कलाकार पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भी छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचे और छात्रों को भरोसा दिलाया कि पूरा विपक्ष उनकी लड़ाई में साथ खड़ा है।
18: तुमचा दबाव वाढला पाहिजे, तो दबाव काय असतो हे सरकारला कळलं पाहिजे आणि त्यांनी तातडीने त्याच्याबद्दल पावलं उचलली पाहिजे, असा तो दबाव असला पाहिजे।
2: पुणे में छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व एनसीपी शरद गुट के फायर ब्रांड विधायक रोहित पवार कर रहे हैं। रोहित पवार पिछले 6 दिन से लगातार छात्रों के मंच पर मौजूद हैं। रोहित पवार ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, विवेक भीमनवार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे।
19: अभी सिर्फ एमपीएससी पे है, वो फोकस वाइड होने तक सरकार को विनती कर रहा, मत रोकिएगा, रुकना नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा।
2: पुणे में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मुख्य मांगे हैं, एमपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा हो, 70,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया जाए, छात्रों से सलाह मशविरा के बाद साफ सुथरी छवि वाले नए चेयरमैन की नियुक्ति हो, सभी एमपीएससी परीक्षाएं ऑफलाइन हो, परीक्षा में धांधली से जुड़े मामलों की एसआईटी निष्पक्ष जांच करे और एक मांग ये भी कि राजस्थान की तर्ज पर साल भर आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए एक कैलेंडर बने।
20: टाइम टेबल फिक्स नहीं है, जैसा यूपीएससी का टाइम टेबल फिक्स है वैसा ही एमपीएससी का टाइम टेबल फिक्स नहीं है। 4 साल हो गए, 4 साल में एक भी एग्जाम टाइम पे नहीं हुई, तो एग्जाम टाइम पे होना चाहिए और पूरा पारदर्शक। और हमारी पहली मांग यही है कि हमें बस इस्तीफा चाहिए। और क्यों चाहिए तो ये सरकार को भी पता है, क्योंकि बच्चों ने ही सरकार को विथ प्रूफ दिए है कि पेपर लीक हुआ था। सरकार ने नहीं, पेपर लीक हुआ ये सरकार ने नहीं खोजा, ये खोज हमने की।
21: फेल्यूअर तो हुआ है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं पेपर लीक तो हुआ है, तो अल्टीमेटली जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए और उसका इनिशिएशन शुरू होना चाहिए। और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं एमपीएससी के, उनका जो राजीनामा है उसका इनिशिएशन आप कीजिए आपके साइड से।
2: पुणे में जारी छात्रों के प्रदर्शन में 5 अक्टूबर को कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी पहुंचे थे।
22: महाराष्ट्रात 20 लाखाचे जवळपास एमपीएससीचे विद्यार्थी आहे, ज्यांचं भविष्यावर खूप मोठा प्रश्नचिन्ह आहे, कारण की वारंवार पेपर लीक होत असतात आणि त्यानंतरही सरकारला कुठेही याचं सिरियसनेस कळत नाहीये. आणि ज्या मुलांच्या डिमांड आहेत की भीमनवार यांचा राजीनामा झालाच पाहिजे, त्याचा काँग्रेस जनता पार्टी पूर्णपणे समर्थन करते. आणि जोपर्यंत त्यांचा राजीनामा होणार नाही ते हे आंदोलन चालू राहील आणि या आंदोलनाला काँग्रेस जनता पार्टीचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे.
2: शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत भी जब छात्रों के बीच पहुंचे तो उनकी जुबान फिसल गई थी.
1: आपने देखा कि युवा पीढ़ी का कितना गुस्सा है. ये जो युवा पीढ़ी है, अगर उनके हाथ में उनका दिमाग अगर ठीक से आपने ठंडा नहीं किया तो ये देश को आग लगा देंगे.
2: विपक्ष की ओर से की जा रही बयानबाजी को लेकर मायावती का पलटवार भी जारी है. मायावती का आरोप है कि विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए छात्रों का सहारा ले रही है.
4: साफ तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई राज्यपाल जी इसकी जांच कराए, इसकी कमेटी रखे, एक जो न्यायमूर्ति है रिटायर्ड उनके अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए. अभी इतना साफ कहने के बाद में भी आप लोग जो आंदोलन देख रहे हैं उनका, एमपीएससी के लड़कों का, वो बेचारे तो बाजू में रह गए. जिनको एमपीएससी करना है वो तो बहुत कम संख्या में 15-20% में वहां पर है. 80% ये भी बिल्कुल जो आंदोलन चल रहा है पॉलिटिकल मोटिव है, राजनीति से प्रेरित है.
2: छात्रों के प्रदर्शन में रोहित पवार की सक्रियता पर बीजेपी ने तीखा हमला किया.
5: छात्रों के नाम पर शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार गंदी राजनीति कर रहे हैं. छात्रों का समर्थन उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं को लेके बारामती शुगर फैक्ट्री के एम्प्लॉयी को लेके पुणे में आंदोलन करने का प्रयास रोहित पवार के माध्यम से किया जा रहा है. इस आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से नजदीकी साधने का प्रयास भी रोहित पवार कर रहे हैं. रोहित पवार को लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस में उनको स्पेस मिलेगा, राहुल गांधी उनको कांग्रेस के प्रदेश का अध्यक्ष चुनाएंगे, इसीलिए शायद रोहित पवार कांग्रेस के साथ मिलकर ये छात्रों की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं.
2: बीजेपी लाख दलील दे रही है कि छात्रों की ज्यादातर मांगे मान ली गई है इसलिए धरना खत्म करना चाहिए, लेकिन छात्रों ने कहा है कि सरकार उन्हें गुमराह करना बंद करे.
14: ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना हो या फिर अकाउंटेबिलिटी हो, यही छात्रों की मांग है. और इसलिए पुणे में ये एमपीएससी स्टूडेंट जो है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो पढ़ाई करते हैं उन सभी छात्रों का तक मोर्चा जारी है. और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 5 से 6 ऐसे यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 3 दिन से अनशन पर बैठे हैं और पूरे आंदोलन का वैसे आज 6ठा दिन है.
0: पुणे में छात्रों का आंदोलन एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार की अगुवाई में चल रहा है. रोहित पवार ने कहा है कि एमपीएससी के चेयरमैन सीएम फडणवीस के दोस्त हैं और इसीलिए उन्हें बचाया जा रहा है.
14: पुणे में एमपीएससी छात्रों का आज आंदोलन का 6ठा दिन है, सत्याग्रह कर रहे हैं और इनका कहना है कि जो भीमनराव इस पूरे आयोग के यानी कि एमपीएससी जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन है उनका इस्तीफा होना चाहिए. रोहित पवार भी उनके साथ इतने दिनों से, अब रोहित पवार का भी यही कहना है. कैबिनेट शुरू हो चुकी है, आज कैबिनेट है, क्या आपको लगता है कि आपकी मांगे जो है वो फाइनल हो जाएंगी?
23: ये मांगे विद्यार्थियों की है. दोस्त जो है मतलब एमपीएससी का अध्यक्ष सीएम साहब का दोस्त है हम समझ सकते हैं, लेकिन दोस्त से और ईगो से बढ़कर क्या है? तो ये विद्यार्थियों का भविष्य है, इसलिए ये जो लाखों विद्यार्थी अपने हक के लिए जो लड़ रहे हैं उनका अड़चन या उनकी डिमांड अगर मान्य करनी है सरकार को तो कैबिनेट के माध्यम से अंडर 163 एक प्रस्ताव गवर्नर साहब को वहाँ पे भेजना पड़ेगा जो आज भेजा जा सकता है. तो अभी कृपा करके मैं सब मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को वहाँ पे विनती करता हूँ कि आज के आज कैबिनेट से वो प्रस्ताव वहाँ पे आगे जाना चाहिए.
14: सरकार ने बाकी की तो मांगे आपकी पूरी कर ली, अब सिर्फ एक डिमांड बची है. क्या लग रहा है आपको कि कहाँ ये सब मतलब ये कहाँ कांटा फंसा है कि ये नहीं हो रहा?
23: देखो जो डिमांड बाकी थी जैसे कि रिक्रूटमेंट के लिए जो जगह है उसका आप जाहिर करो या उसके लिए प्रक्रिया चालू को वो तो उन्होंने अग्री कर दी. विषय क्या है कि कितनी भी आगे जागे रिक्रूटमेंट होगी लेकिन अगर सिस्टम क्लीन नहीं हुआ, सिस्टम में करप्शन है, सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो चोर हैं, उनको वैसे ही रखा जाएगा और नई एग्जाम ली जाएगी तो वो पेपर टूटने ही वाला, लीक होने ही वाला. इसलिए हम सबका कहना है, विद्यार्थियों का कहना है अध्यक्ष उस टाइम वहां पे अध्यक्ष करके थे, उनके बारे में उनका रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब है करप्शन के बारे में। वो देवेंद्र फडणवीस सीएम साहब के दोस्त थे, उनको वहां पे अध्यक्ष करके बिठाया। लेकिन अगर अध्यक्ष के टाइम में वहां पे पेपर टूटा था तो और उनका वहां पे इन्वेस्टिगेशन होने वाला है तो उस पद पे उनको रखना योग्य नहीं।
0: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे नवरात्रि की बाजारों में रौनक। अब देखते हैं आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: मुंबई के बाजारों में नवरात्रि की रौनक दिखने लगी है। एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग स्टाइलिश ड्रेस की खरीदारी जोरों पर है। कई जगह गरबा और डांडिया नाइट्स के लिए नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग कलर की ड्रेस पहनने का रिवाज है। 11 अक्टूबर से 9 दिनों तक गरबा खेला जाएगा।
3: नवरात्रि में गरबा राज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और जब बात मुंबई की हो तो बात ही अलग है। मुंबई के बोरीवली इलाके में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर 80% गुजराती समाज रहता है। और देखिए यहाँ का बाजार किस तरीके से चन्या चोली और केडी से सज चुका है। एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग डिमांडिंग चीजें देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं फैशन हब के नाम के एक शॉप में एंट्री कर रहा हूँ, और खरीदारी बहुत ही ज्यादा जोरों पर है। महिलाएं और स्पेशली जो जेंजेस हैं और युवती हैं, वो देखिए अपने अपने पसंद के चन्या चोली और केडिया यहाँ पर खरीद रहे हैं। वाकई में देखने में बहुत ज्यादा शानदार लग रही है सारी चीजें। 9 दिन की नवरात्रि होती है और लोग ज्यादातर अपने पकीन पर ही जो चन्या चोली है वो खरीदते हैं। यहाँ पर देखे एक महिला है हमारे साथ में, जो लगातार यहाँ पर कुछ ना कुछ खरीदने की कोशिश में है अपने पसंद की। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आप हंस की रहे हो?
4: आप कोशिश करें इसलिए। आप
3: अच्छा, क्या नाम है आपका? नम्रता। मैं देख रहा हूँ आप काफी देर से यहाँ पर मौजूद, और अभी तक आपको कुछ पसंद नहीं आया?
4: मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या लूँ और क्या नहीं।
3: क्या सोच करके आए थे, क्या लेना है?
4: मतलब मुझे पर्टिकुलर, मेरे पास ऑलरेडी बहुत मतलब घाघरास है, चूड़ोवर पहनते हुए, और ब्लाउजेस की यहाँ पे वैरायटीज है, तो वो उसी से रिलेटेड कुछ सोच।
3: अच्छा, ये 9 दिन अलग अलग थीम पर ही काम करने वाले ना?
4: सॉरी, मतलब कलर्स रहते हैं और उसके हिसाब से हम लाइक एक्सचेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ, किस किस। और वैसे हम जनरली तो हम क्या करते हैं, एवरी ईयर एक एक लेते हैं और फिर वो कलेक्ट हो जाता था ओवर द टाइम।
3: अच्छा, ये बताइए कि इस बार क्या सोच कर आया है, क्या ट्रेंड में है, क्या डिमांड में, आपको क्या लगता है, या फिर ऑर्डर भी देते हैं?
4: हाँ, मतलब कस्टम मेड भी होता है, और अभी मार्केट में बहुत सारी हर एक नए नए डिजाइन भी आते हैं, तो वो भी हम देखते हैं कि कैसा है क्या है।
3: अच्छा, इसका बहुत बेसब्री से इंतजार होता हूँ, 9 दिन का रोज खेलते हो? अच्छा, तो मतलब तैयारी एकदम जोरों में है। और
2: इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आज तक पर लगातार जारी हैं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चाचा।
2: एक कचौड़ी दो समोसा चकमक तेरा क्या भरोसा।
3: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
2: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, पूछ रहा ना।
3: लेकिन भैया नारा अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। अरे होते थे हमारे टाइम।
2: अच्छा
3: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
2: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी इन नेताओं की खत्म कहानी।
3: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में।
2: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
3: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
2: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे।
3: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
2: अरे लाल फूल नीला फूल जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
3: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
2: चाय गरम दूध गरम चकमक चाचा भी सरम।
3: है
2: हाँ,
3: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
2: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
4: हम जैसे, इधर आओ।
5: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

किंग्स वे कैंप से निकलने के बाद राहुल का पोस्ट, लोकतंत्र के गद्दारों को बचा रही है सरकार, एक भी देशद्रोही को छोड़ा नहीं जाएगा आज तक से बोली प्रियंका, ये है कायर सरकार। विपक्षी मार्च के बाद दिन भर चला है वोल्टेज ड्रामा, सीईसी से मुलाकात की मांग के साथ धरने पर बैठे थे राहुल गांधी, प्रियंका चुनाव आयोग की सफाई, नहीं मांगा गया मीटिंग का टाइम। राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी का हमला, कहा उनकी सियासी लॉन्चिंग लगातार हो रही है फेल, विपक्ष का झूठ हो चुका है बेनकाब, 300 सांसदों के साथ की बात भी झूठी। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, 2028 तक कार्यकाल, करगिल जंग में रहे शामिल। और दिल्ली एनसीआर में लगे भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 4.9, उत्तराखंड के चमोली में था एपिसेंटर। प्रेजेंटेड

आकाशवाणी में धरने पर बैठे राहुल गांधी को पुलिस ने जबरदस्ती हटाया, ले जाए गए किंग्सवे कैंप पर प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई और भी नेता मौजूद। विपक्षी मार्च के बाद दिन भर चला हाई वोल्टेज ड्रामा, सीईसी से मुलाकात की मांग के साथ धरने पर बैठे थे राहुल और प्रियंका। विपक्षी मार्च और धरने पर चुनाव आयोग की सफाई, नहीं मांगा गया मीटिंग का टाइम। राहुल गांधी का पोस्ट, लोकतंत्र के गद्दारों को बचाने के लिए बचे कुचे लोकतंत्र को घसीटा गया। राहुल के धरने पर बीजेपी का हमला, कहा उनकी सियासी लॉन्चिंग लगातार हो रही है फेल, विपक्ष का झूठ हो चुका है बेनकाब, 300 सांसदों के साथ की बात की झूठ। छोटे कारोबारियों के लिए मोदी सरकार का गिफ्ट, 10,000 करोड़ के निवेश का ऐलान, एमएससी ग्रोथ फंड बढ़ाने पर जोर। वाराणसी में बीजेपी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, नितिन नवीन की जनसभा में 50,000 लोगों के जुटने का दावा। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने हैं भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, 2028 तक कार्यकाल है, करगिल जंग में शामिल रहे। दिशा सालियान केस में पिता सतीश सालियान फिर से पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट, किसी को आरोपी न मानने वाली शर्त हटाने की मांग। ईडी ने चैलेंजर किंग महमूद भगाड़ के खिलाफ 157 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीसरी सप्लीमेंट्री शिकायत दाखिल की है। महाराष्ट्र के नांदेड़ समेत कई गांवों में नदियां और नाले सूखे, मराठवाड़ा विदर्भ सीमा पर पैन गंगा नदी सूखी, पैन गंगा नदी से सटे 100 से ज्यादा गांवों में पानी का संकट, जल संकट से बचाव ग्रामीणों की मांग। जालना में सूखे की भयावह तस्वीर सामने आई, ड्रोन कैमरों में कैद हुआ नजारा, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे लोग। संगरूर में 6,000 रुपए में परिवार पालन को मजबूर, आंगनवाड़ी वर्कर सरकार से इंसाफ की गुहार। रोहतास में सीएम सम्राट चौधरी ने 177 योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास भी, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ने खगोल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। बागेश्वर में बोलेरो गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मारी थी, 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। लुधियाना में ट्रैक्टर में स्कूटी को मारी गई टक्कर, हादसे में 14 साल की हैंडबॉल खिलाड़ी की मौत हुई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। देहरादून में ट्रक और पुलिस की वैन में टक्कर हुई, आईआरबी के 4 जवान और 2 बाइक सवार घायल हुए। करनाल में प्राइवेट स्कूल की मिनी वैन को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी थी, हादसे में 8 बच्चे घायल। ग्रेटर नोएडा में स्लीपर बस में भीषण आग लगी, धू धू कर जल गई पूरी बस, बस के सभी सवारियों को नीचे उतार लिया गया था। सूरत में कानपुर जा रही लग्जरी बस में हादसे का शिकार हुई बस, ओवरब्रिज में अधर में लटक गई थी यह बस। नागपुर में 17 साल की बेटी ने अपने 45 साल के पिता की हत्या कर डाली, लड़की की लकड़ी के बैत से हमला करके मौत के घाट उतारा। ओडिशा के बरगढ़ में तेज रफ्तार बोलेरो ने स्कूटर को टक्कर मारी है, महिला की मौत हुई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। देवगढ़ में चोरों ने पूरा एटीएम ही उड़ा डाला, फिल्मी अंदाज में वारदात, मशीन काट कर ले गए बदमाश, पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। देहरादून में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, लूट के इरादे से घर में घुस गए थे बदमाश, दंपति और नौकरानी को मार डाला। भावनगर में 2 गाड़ियों की भयंकर टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत हुई। बिजनौर में कारखाने में गैस सिलेंडर लीक होने से भयंकर आग लगी, एक साथ कई धमाके हुए, गोदाम में रखा था करीब 10 लाख का सामान, सब जलकर खाक। गुरुग्राम में हनी ट्रैप का बड़ा पर्दाफाश, प्यार के जाल में फंसाकर युवक से 90 लाख रुपए ईंटने वाले एमबीए पास युवती को गिरफ्तार किया गया, रेप केस में फंसाने की दे रही थी धमकियां। पुणे के लोनावला में प्रॉपर्टी विवाद बना हत्या की वजह, 83 साल के दादा पर 31 साल के पोते की हत्या के आरोप।

मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की। इंदौर में उज्जैन रोड पर सरकारी बस में आग लगी थी। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने नई बसें लिंक सेवाएं चालू की थी। रुद्रप्रयाग में अगस्त मुनि खेल मैदान में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे, सभी सुरक्षित। इंदौर में कचरा कलेक्शन वाली गाड़ी ने बच्ची को कुचल डाला, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। रतलाम में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी अतिथि शिक्षक को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल हुआ। कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज में पानी की टंकी से कूद गया था युवक, हालत गंभीर। पालघर में एक कार ने लगातार 4 से 5 वाहनों को टक्कर मारी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रामगढ़ की चुल्लुपाटी घाटी में अनियंत्रित होकर मछली लदा हुआ ट्रक पलट गया, चालक घायल हुआ, मछलियां बिखरी। बालोद एसिड अटैक केस के आरोपियों को कोर्ट ले जाते समय भारी हंगामा, लोगों ने फांसी की मांग की है। पुलिस सुरक्षा में हेलमेट पहनाकर भेजा गया जेल। लखनऊ में बाढ़ का कहर, 6 दोस्तों को बचाने के प्रयास में 19 साल के युवक की डूबकर मौत हुई। बीसीसीआई ने पुरुष चयन समिति के एक पद के लिए मांगे हैं आवेदन, 14 अक्टूबर तक सब अप्लाई कर सकते हैं। टीम इंडिया की लगातार 10वीं T20 जीत, वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। कप्तान श्रेयस अय्यर के पहले शतक से जीता भारत, उन्होंने 42 बॉल में शतक लगाते हुए 10 चौके और 6 छक्के लगाए थे। ईशान किशन ने नाबाद 37 रन बनाए, दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 67 बॉल पर 137 रनों की शानदार साझेदारी। भारत से डेब्यू कर रहे नमन धीर ने 3 विकेट लिए, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले। राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में 25 साल पूरे होने पर राजकोट में विशेष कार्यक्रम, 1500 विद्यार्थियों ने बनाई भारत के नक्शे की मानव श्रृंखला, मंत्री रिवाबा जडेजा भी मौजूद थी। अनाज बांधनी और साड़ियों से सजाई गई 80 फीट की अनोखी रंगोली, सौराष्ट्र की समृद्ध विरासत की झलक दिखाई गई। कोटा में इस बार खास होगा विजयदशमी का त्यौहार, 105 फीट से ज्यादा ऊंचा होगा रावण का पुतला, बनेगा आकर्षण का केंद्र। झारखंड के रामगढ़ में होमगार्ड की बहाली के लिए 1600 मीटर दौड़ के ट्रायल में साड़ी में दौड़ी महिलाएं, महिलाओं के हौसलों को देखकर दर्शकों ने सलाम किया। दूसरे चरण की केदारनाथ यात्रा में बन रहा है रिकॉर्ड, 15 सितंबर के बाद 1.5 लाख यात्री पहुंचे हैं धाम। नेवी को मिली पहली स्वदेशी फ्लीट सपोर्ट शिप विशाखापट्टनम में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुभारंभ किया। FSS-5 की भी आधारशिला। FSS-1 नौसेना के लिए बनाए जा रहे 5 बेड़ा सहायता जहाजों में से पहला जहाज है। इस्पात काटने के महज 18 महीने बाद यह बंगाल की खाड़ी के एक जल क्षेत्र में करेगा प्रवेश। नौसेना की पहली स्वदेशी फ्लीट सपोर्ट शिप है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित, यह भारतीय नौसेना का पहला फ्लीट सपोर्ट बोट। उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन की गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन किया गया। हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की लंबे समय तक काम करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शीर्ष नौसैनिक कमांडर्स के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल, वायुसेना ने दिखाया अपना दमखम, आसमान में गूंजा जाबाजों का शौर्य। वायुसेना दिवस समारोह की थीम पर अचूक अभेद्य सटीक हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जवानों ने किया शानदार प्रदर्शन। भारतीय वायुसेना की ताकत और जाबाजी की दिखी झलक, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस का ग्रैंड सेलिब्रेशन। जोधपुर में अभ्यास तरंग शक्ति में जर्मन वायुसेना की एंट्री, जर्मनी की वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास में हिस्सा लिया। जोधपुर के आसमान में दिखी भारत जर्मनी की ताकत तरंग शक्ति अभ्यास के दौरान जर्मन और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दिखाई हवाई युद्ध कौशल। यामी गौतम स्टारर नई नवेली फिल्म का दूसरा गाना रिलीज किया गया, फिल्म अक्टूबर में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की फिल्म तू है मेरी किरण का ट्रेलर लॉन्च किया गया, फिल्म 23 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। मराठी फिल्म 16 का ट्रेलर रिलीज किया गया, प्रवीण देवदत्त, प्रशांत घोष, वर्षा और का अहम रोल है, 16 अक्टूबर को फिल्म रिलीज होगी। हॉरर थ्रिलर 418 का हिंदी में ट्रेलर लॉन्च किया गया, 23 अक्टूबर को फिल्म को रिलीज किया जाएगा। मुंबई में सोनू निगम ने 17 करोड़ में खरीदी हैं 3 प्रॉपर्टी, कर्जत में बेची थी लगभग 2.5 हेक्टेयर जमीन, रियल एस्टेट में भी निवेश। अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया। दृश्यम 3 में अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग।

फिल्म बना दिया है। फिल्म हनुमान अंश की सफलता का असर उत्तराखंड के कैंची धाम में श्रद्धालुओं का और ब्लॉगर्स का पहुंचने का सिलसिला जारी। मशहूर गायक अरिजीत सिंह ने संगीत जगत में 20 साल पूरे होने के मौके पर 9 शहरों वाले इंडिया टूर का ऐलान किया, फैंस खुश। ये रिश्ता क्या कहलाता है, फिल्म अभिनेता मोहसिन खान ने तमन्ना के साथ निकाह किया, शादी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 का ट्रेलर हुआ है रिलीज, टाइगर पांडियन के किरदार में रजनीकांत का लुक सोशल मीडिया पर छाया। HSBC के मुताबिक मजबूत डॉलर और ऊंचे US यील्ड की वजह से सोने पर दबाव, एक्सपर्ट्स का मानना है कि गिरावट की आशंका के बीच अलग अलग फेजेस में सोना खरीदना फायदेमंद। इनेगो की फ्यूल सरचार्ज बढ़ोतरी से घरेलू उड़ानों पर 375 से 1300 रुपए तक का बढ़ गया है किराया, एयरलाइन कंपनियों ने सरकार से की है लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस घटाने की मांग। NSO के पहले नेशनल हाउसहोल्ड ट्रैवल सर्वे के मुताबिक करीब 42.5% वर्कर्स टू व्हीलर से जाते हैं ऑफिस, लोगों का रोज के आने जाने पर औसत खर्च होता है 785 रुपए महीना। 2 लाख रुपए से कम के नए लोन के लिए NBFC की हिस्सेदारी बढ़कर करीब आधी हो गई, कर्ज लेने वाले करीब आधे ग्राहकों के पास NBFC के लोन, 10 साल में 7 गुना बढ़ा NBFC का कंज्यूमर बेस। और आगे मुताबिक सितंबर में ऑटो रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 32% बढ़कर लगभग 25 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई है, पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर दोनों ही सेगमेंट्स में रिकॉर्ड ग्रोथ। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगले 3 से 6 महीनों में फूड इन्फ्लेशन 7 से 8% तक पहुंचेगा, प्याज खाने के तेल और दालों की कीमतों में तेजी से बढ़ सकता है दबाव। FMCG कंपनियां बिस्किट, साबुन और शैम्पू जैसे प्रोडक्ट्स में कर रही हैं कटौती, छोटे पैक होंगे हल्के जबकि बड़े पैक की सीधी कीमत बढ़ाकर दिया जा सकता है बड़ा झटका। सितंबर में सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट 36% गिरकर 4 साल में सबसे कम रहा है, पाम ऑयल का आयात बढ़कर 7 महीने के हाई पर पहुंच गया है, कोकोनट ऑयल का बजट बदलने का अनुमान। 2002 से 2013 के बीच में ग्रेटर नोएडा में जमीन देने वाले करीब 4,500 किसानों को मिलेगा 64% अतिरिक्त मुआवजा, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगा प्राधिकरण। ATM के जरिए रिकॉर्ड 2.5 लाख करोड़ रुपए की निकासी से नकद मुद्रा का आंकड़ा 43 लाख करोड़ के पार पहुंचा, मौजूदा समय में 4 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी चलन में है। फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ छात्रों का आंदोलन हुआ है हिंसक, कई जगहों पर हुई आगजनी, कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, कई छात्र हुए घायल। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को चुनाव में दखल न देने की चेतावनी दिया, कहा अगर हमास चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो जवाब देंगे। ब्रिटेन ने इसराइल को दी कड़ी चेतावनी, यरूशलम में ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास होने पर 27 इसराइली राजनयिकों को निष्कासित करने की धमकी दी गई। बुल्गारिया तट के पास ब्लैक सी में 2 मालवाहक जहाज पर ड्रोन से अटैक, हमले के बाद डूबा जहाज, 1 क्रू मेंबर को बचाया गया, 2 लोग घायल हुए। रूस ने नेटो देश लिथुआनिया को दी कड़ी चेतावनी, क्रेमलिन ने कहा परमाणु हथियारों पर लगी रोक हटाने से बढ़ सकता है तनाव। जर्मनी में जासूसी के आरोपों में खुफिया एजेंसी के प्रमुख अगस्त हैनिंग गिरफ्तार, करीब 2,000 गोपनीय दस्तावेजों की लीक करने के आरोप हैं। अमेरिकी सेना के पूर्व मेजर निदाल हसन को ट्रंप ने मौत की सजा को मंजूरी दी है, निदाल को गोली मारकर दी जाएगी मौत की सजा। तुर्की के इस्तांबुल में मिडिल स्कूल में चाकूबाजी हमले में 8 छात्र घायल हुए, 1 की हालत गंभीर है, पुलिस ने हमलावर छात्र को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रांसिस हल्जिन को मिला है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए मिला है सम्मान, उनके शोध ने ब्रह्मांड को समझने में मदद दी। केन्या में इबोला वायरस के पहले केस की पुष्टि हुई है, नैरोबी में इलाज के दौरान मरीज की मौत हुई है, कांगो से युगांडा होते हुए फ्लाइट से नैरोबी पहुंचा था यह मरीज।

मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम पूछेंगे, एक कचौड़ी दो समोसा, क्या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से लौटेगा भरोसा? देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आज जो हुआ उसे पूरी सियासत में भूचाल ला दिया है। चुनाव आयोग और SIR के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विपक्ष के तमाम सांसदों को दिल्ली पुलिस ने अब डिटेन कर लिया है। आकाशवाणी भवन के बाहर करीब 9 घंटे तक सड़क पर डटे रहने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी और दीपेंद्र हुड्डा समेत विपक्ष के तमाम बड़े चेहरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज सवाल यही है कि क्या CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से ही भरोसा लौट पाएगा? देखिए,

और अगली खबर, फ्लाई दुबई की फ्लाइट में हमला करने वाले ओमानी पायलट को लेकर नया खुलासा हुआ है। इजरायली मीडिया के दावे के अनुसार उसने कबूल कर लिया है कि उसका मकसद गाजा में हुई बमबारी का बदला लेने का था। इस बीच अमेरिका के सन न्यूज ने सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट किया जिसमें हमलावर पायलट को कट्टरपंथी बताया, लेकिन उस पर फोटो भारत के कैप्टन स्मिथ का लगा दिया। इधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की पत्नी उषा वैंस का हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त बैलेंस बिगड़ा। उनकी गोद में उनका 2 महीने का बच्चा भी था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके किसी भी सिक्योरिटी ऑफिसर ने, जो सामने खड़े हैं वीडियो में, मदद नहीं की। सवाल उठ रहे हैं कि प्रोटोकॉल ज्यादा जरूरी या इंसानियत।

अमेरिका में मुस्लिमों के बड़े संगठन काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस यानी CAIR पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसे आतंकी संगठनों की सूची में डाल दिया गया है। सवाल यह है कि अमेरिका को यह सब तभी क्यों याद आता है जब समस्या उनके खुद के घर तक पहुंच जाती है। और अगली खबर, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का नया चीफ नियुक्त किया गया है। आशुतोष दीक्षित अभी तक भारतीय वायुसेना में डेप्यूटी चीफ की भूमिका निभा रहे थे। उनके पास आसमान में करीब 3500 घंटे उड़ान भरने का अनुभव है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित 31 अक्टूबर को एयर चीफ मार्शल के पद पर कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह 31 अक्टूबर को रिटायर होंगे। इधर रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस के फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए एक बड़ी डील की है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ 661 करोड़ रुपए में ये डील हुई। ये नौसेना की समुद्री मारक क्षमता को और मजबूत करने के लिए किया गया है। इसके बाद नौसेना के युद्धपोतों पर ब्रह्मोस के बड़े स्तर पर तैनाती की जाएगी। इधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगा दिया है कि 2021 में चुनाव जीतने और सहानुभूति बटोरने के लिए ममता बनर्जी ने पैर में फ्रैक्चर का झूठा नाटक किया था। इसके जवाब में ममता बनर्जी के वकील ने सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग को कानूनी नोटिस भेजा है कि आखिर उनके मेडिकल रिपोर्ट्स शुभेंदु अधिकारी को दिए गए क्या। अगली खबर, आज दुनिया में लोगों के लिए चैन की नींद कितनी मुश्किल हो गई है इसके लिए प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जापान के टोक्यो में हाल ही में एक अनोखी स्लीप प्रतियोगिता आयोजित की गई। लोगों को 90 मिनट के भीतर सबसे जल्दी और गहरी नींद लेने की चुनौती दी गई। जीतने वाले के लिए भारी भरकम इनाम रखा गया था, लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह रही कि काम के तनाव और दबाव के चलते कई लोग चाहकर भी सो ही नहीं पाए।

अब साइबर ठगों से और सावधान होने की जरूरत है। वो वीडियो कॉल के जरिए ठगी कर रहे हैं, जैसे ही पीड़ित कॉल उठाता है दूसरी तरफ एक अश्लील वीडियो या न्यूड क्लिप चल रही होती है। ठग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए पीड़ित का चेहरा उस अश्लील वीडियो के साथ रिकॉर्ड कर लेता है और इसके बाद उस स्क्रीनशॉट या एडिटेड वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने या रिश्तेदारों को भेजने की धमकी देकर पैसे वसूले जाते हैं। गुजरात में अगली खबर, बीजेपी विधायक बच्चू भाई खाबड़, ये देखिए ये आया वीडियो, ये उनका घर है। विधायक जी हैं बच्चू भाई खाबड़, बंगला धुलवाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाने का आरोप लगा है। आरोप है कि बंगले की सफाई के लिए फायर सर्विस तैनात की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सामने आने के बाद विधायक से 2700 रुपए की फीस वसूली गई, लेकिन स्पेशल सर्विस देखिए

इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के लगातार शासन और सरकार के प्रमुख के रूप में काम करने के लिए कैबिनेट ने बधाई प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें उनके शासन की 10 उपलब्धियों को गिनाया गया है। इनमें गुजरात मॉडल, राष्ट्रीय योजनाओं, जन धन खाते, घर, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, गरीबी कम होने का जिक्र है। जबकि इसी बधाई प्रस्ताव में लखपति दीदी, महिला आरक्षण, स्टार्टअप, पीएम किसान और पीएम जनमन जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि संसद भवन के पास आकाशवाणी भवन के परिसर में 9 घंटे से इंडिया गठबंधन के सांसदों का जो धरना चल रहा था, उसे दिल्ली पुलिस ने सभी सांसदों को हिरासत में लेकर खत्म कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली पुलिस ने कैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया और हिरासत में ले जाने के बाद उन्हें कहां ले जाया जा रहा है, कितने घंटे ये पूरा आंदोलन उनका चला, दिल्ली की सड़कों पर वो किस किस हिस्से से गुजरे, कहां पर जाकर आकाशवाणी भवन में फिर वो बैठ गए। लगभग 9 घंटे तक वो इस विरोध प्रदर्शन में वहां पर डटे रहे। जब दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई शुरू की, तब राहुल गांधी ने वहां से स्वेच्छा से हटने से साफ इनकार कर दिया था और इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। सुरक्षा कर्मियों और दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और वहां मौजूद बाकी नेताओं को चारों तरफ से घेर कर उन्हें जबरन वहां से उठाया और हिरासत में ले गए। जिस बस में सांसदों को बैठाया गया उसका एक वीडियो भी हमारे पास आया है और ऐसा कहा जा रहा है कि इन सभी सांसदों को किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है और ये सभी विपक्षी सांसद अब भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं और केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, तो ये तस्वीरें इस वक्त की आप देख रहे थे। कुछ ही देर पहले बस में इन सांसदों को ले जाया जा रहा था और वहां पर जानकारी ये दी जा रही है कि किंग्सवे कैंप उन्हें हो सकता है ले जाया जा रहा हो। इधर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर चुनाव आयोग ने भी अपनी सफाई दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि शाम 4 बजे तक उसके पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि विपक्ष के सांसद चुनाव आयोग से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं। पहली बार शाम 4 बजे दिल्ली पुलिस के माध्यम से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को यह संदेश दिया कि वो आयोग से मिलकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। इस वक्त भारत की राजनीति में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जो महासंग्राम छिड़ा है, पूरी दुनिया उसे देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट में यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग पर विपक्ष का भरोसा खत्म हो चुका है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो क्या भारत के चुनाव आयोग में विपक्ष का यह भरोसा लौट पाएगा। आज हम इस खबर के ऐसे पहलुओं का विश्लेषण करेंगे जिससे आपको ये पूरी खबर और इससे जुड़े सभी विवाद ब्लैक और व्हाइट में समझ आ जाएंगे। और इस विश्लेषण में हम सबसे बड़ा सवाल यही पूछ रहे हैं जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सवाल है, क्या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से विपक्ष का चुनाव आयोग में भरोसा लौटेगा? देखिए,
सबसे पहले ये देखिए कि आज हम ये विश्लेषण आपको क्यों दिखा रहे हैं। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एक विशाल पैदल मार्च सुबह निकाला। नाम दिया था सेव डेमोक्रेसी मार्च, यानी लोकतंत्र बचाओ मार्च। संसद भवन से शुरू हुआ यह पैदल मार्च 1 किलोमीटर दूर जाकर चुनाव आयोग के दफ्तर पर समाप्त होना था, जहां सभी विपक्षी सांसद एक धरना देकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करना चाहते थे। हालांकि विपक्ष ने अपनी तैयारियां की थी तो दिल्ली पुलिस ने भी इस पैदल मार्च को रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए थे। जंतर मंतर और लटिन दिल्ली में धारा 163 लागू करने से लेकर दिल्ली पुलिस ने 5000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया था और चुनाव आयोग जाने वाले कई रास्तों को बैरिकेड लगाकर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब विपक्षी सांसदों का मार्च संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़ रहा था, तब दिल्ली पुलिस ने उन्हें नीति आयोग और आकाशवाणी भवन के बीच वाले मुख्य मार्ग पर भारी बैरिकेडिंग करके रोक दिया था। यहीं पर राहुल गांधी और टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी पुलिस के बैरिकेड पर ऊपर चढ़ गए और राहुल गांधी ने हाथ में तिरंगा लहराकर अपना विरोध भी जताया। इसी बीच पुलिस ने जब प्रियंका गांधी वाड्रा और बाकी नेताओं को हिरासत में लेने के लिए बस में बिठाया तो प्रियंका गांधी वाड्रा अचानक बस से नीचे उतर गई। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और दीपेंद्र हुड्डा ने पुलिस को चकमा दिया। वो आकाशवाणी भवन के मुख्य रिसेप्शन गेट से अंदर प्रवेश कर गए। आकाशवाणी भवन के परिसर में अंदर जाने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर बैठ गए बरगद के पेड़ के नीचे और धरने पर वो अड़ गए। इसी दौरान विपक्षी सांसदों ने पुलिस पर इस बात के लिए काफी दबाव बनाया कि वो प्रदर्शनकारी नेताओं को चुनाव आयोग तक जाने की इजाजत दे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन को आकाशवाणी भवन तक ही सीमित रखा। इस पूरे टकराव के बीच दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों की गाड़ियां भी आकाशवाणी भवन के अंदर पहुंच गई और पुलिस ने इस परिसर को चारों तरफ से घेर लिया। वहां प्रदर्शनकारी नेताओं और पुलिस के बीच काफी कहासुनी भी हुई और इस दौरान ये पूरा धरना चुनाव आयोग के दफ्तर की जगह इस पेड़ के नीचे ही केंद्रित हो गया था। देखिए,

0: विपक्ष के इस पैदल मार्च में कांग्रेस अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार गुट की एनसीपी, वामपंथी दल बीजू जनता दल के नेता शामिल हुए। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ा जो धड़ा है वो आज इस पूरे विरोध प्रदर्शन में शामिल रहा। हालांकि ममता बनर्जी के आप जानते हैं कि उनके 20 सांसद निकल गए हैं तो उनकी ताकत काफी कम हो गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सबसे चौंकाने वाला नाम उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी का रहा, जो औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी नवीन पटनायक के निर्देश पर बीजेडी संसदीय दल के नेता मानस मंगराज के नेतृत्व में उनके सांसदों ने इस मार्च में हिस्सा लिया और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। जो विपक्षी दल इस पैदल मार्च का हिस्सा नहीं बने उनमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और डीएमके का नाम प्रमुख रूप से शामिल रहा, और यही एक बार फिर से इस बहस को जिंदा कर देता है कि क्या विरोध प्रदर्शन जो चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हो रहा है उसमें अलग अलग धड़े बन गए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक दिन अलग प्रदर्शन करती है, फिर ये पूरा जो गुट है ये अलग प्रदर्शन करता है, उधर मुंबई में सीजेपी का अलग प्रदर्शन होता है। अब ये समझिए कि विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए आज का दिन क्यों चुना और आज ये पैदल मार्च क्यों निकाला गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। जब विपक्षी दलों ने फॉर्म 6 के साथ जोड़ी गई अतिरिक्त शर्तों का विरोध करना शुरू किया था, तब चुनाव आयोग ने 26 सितंबर 2026 को एक प्रेस नोट जारी किया। चुनाव आयोग का तर्क था कि मई 2026 में बिहार के एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके तहत इस प्रक्रिया को सही माना गया। यानी दावा है कि चुनाव आयोग इस प्रेस नोट के जरिए यह कह रहा था कि अगर एक अलग एनेक्सर जोड़कर फॉर्म 6 में वोटर्स से उनके माता पिता या दादा दादी के बारे में जानकारी मांगी जा रही है तो जब पूरे प्रोसेस को ही एसआईआर ने मंजूरी दी तो उसके साथ ये भी मंजूर हो गया। लेकिन जब यही बात सुप्रीम कोर्ट के सामने उठी और यह कहा गया कि चुनाव आयोग फॉर्म 6 में किए गए बदलाव को सुप्रीम कोर्ट की सहमति से मिलने की बात कह रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच नाराज हो गई। अदालत ने साफ कहा कि उसने संशोधित फॉर्म 6 को कोई मंजूरी नहीं दी है और यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी आई तो विपक्षी दलों को यह कहने का मौका मिला कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार झूठ बोल रहे थे और अब तो उन्होंने इस्तीफा दे ही देना चाहिए। हालांकि यहां चुनाव आयोग की दलील यह है कि इस मामले में झूठ राहुल गांधी बोल रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक फॉर्म 6 में उसने कोई बदलाव या संशोधन नहीं किया है, अलग से एक एनेक्सर को इसमें जोड़ा है। इस पर फैसला चुनाव आयोग के भीतर सर्वसम्मति से लिया गया है। लेकिन जो भी हो फॉर्म 6 में इस एनेक्सर को भरना कंपलसरी है तो ये उसके साथ जुड़ गया। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने विपक्षी दलों को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने का एक नया मौका दे दिया, इसीलिए आज का यह विशाल पैदल मार्च निकाला गया और इसमें अखिलेश यादव को हिरासत में लेने पर भी काफी हंगामा हुआ। देखिए
1: ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो,
2: इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।
3: चुनाव वोट से हराएंगे इन लोगों को, चुनाव बायकॉट नहीं होगा।
0: राहुल गांधी ने भी पुलिस की कार्रवाई और चुनाव आयोग के रवैये को लेकर तीन बड़े सवाल उठाए। पहली बात उन्होंने ये कही कि जब 300 सांसद यहां ज्ञानेश कुमार से मिलने आए हैं तब ज्ञानेश कुमार डरे हुए हैं और वो उनसे मिलने से छिप रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव आयोग से नहीं मिल सकते तो फिर इस देश में लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि वोट डालने के अधिकार को गैर कानूनी तरीके से छीनना एक राष्ट्र विरोधी काम है और अब ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना ही होगा। सुनिए,
4: हम देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम देश की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। पता नहीं क्यों 300 एमपीज को यहां पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहां बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को ठीक से चलाने का है। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं, तो पता नहीं देश में क्या हो रहा है। अगर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन कमीशन नहीं मिलेगा तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है।
0: आज राहुल गांधी जिस प्लकार्ड को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उस पर लिखा था ज्ञानेश इट्स डन ब्रो। और इस शैली के पीछे दो बातें हो सकती हैं। पहला, इस मुद्दे पर जेंजी युवाओं को अपने साथ जोड़ना या इस मुद्दे को इस तरह पेश करना जिसमें आज की युवा पीढ़ी खुद को इस मुद्दे से जोड़कर देख सके और विपक्ष के खेमे में युवाओं का समर्थन बढ़े। क्योंकि आपको याद होगा जब युवाओं का पेपर लीक पर प्रदर्शन हो रहा था तो उन्होंने इस तरह के कई नारे लगाए थे। और दूसरा, ज्ञानेश कुमार को सिर्फ उनका पहला नाम लेकर संबोधित करना और उन्हें ब्रो कहना यह भी संकेत देता है कि विपक्ष अब ज्ञानेश कुमार को संवैधानिक पद पर होने की गंभीरता नहीं देना चाहता और यह दिखाना चाहता है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था निष्पक्ष नहीं रह गई है। देखिए, ये मुद्दा उन 13 करोड़ वोटर्स से जुड़ा है जिनके नाम रिवीजन की प्रक्रिया में वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। और 13 करोड़ की का जो आंकड़ा है वो कोई छोटा आंकड़ा तो है नहीं। अगर रशिया जैसे देश की बात करें तो यह आंकड़ा उसकी कुल आबादी के लगभग बराबर है, 13 करोड़। जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, फिलीपींस, इजिप्ट, वियतनाम, ईरान, इनको मिलाकर दुनिया के 185 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 13 करोड़ या फिर उससे कम है। और इसीलिए अगर 13 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं तो यह मुद्दा शायद आपसे जुड़ा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं आपको अब स्क्रीन पर भी दिखाना चाहती हूं कि जिन 13 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो 13 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए हैं उनमें आप एक एक करके जब देखेंगे तो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर वोटर्स का नाम सबसे ज्यादा कटा है। तो सीक्वेंस में आपको दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं तीन जगह है। सबसे पहले है महाराष्ट्र, ठीक है, ये है एक कर्नाटक जो करोड़ में है, वो नंबर्स में आपके लिए सिंगल आउट कर रही हूं, ठीक है, जिससे आपको अंदाजा लगेगा। एक और देखिए उत्तर प्रदेश जहां पर करोड़ में है, ठीक है, तो ये हो गया कुल मिलाकर ये 3 राज्य है जहां पर करोड़ में कटा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है जहां पर 2 करोड़ 4 लाख, उसके बाद है महाराष्ट्र जहां 2 करोड़ 7 लाख, उसके बाद है कर्नाटक जहां 1 करोड़ 7 लाख। उसके बाद से अगर आप देखिए तो कई ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा यहां पर आपको दिखेगा पश्चिम बंगाल में 88 लाख, मतलब 89 लाख आप कह सकते हैं, 89 लाख के आसपास। उसके बाद से आप पहुंच जाइए सीधा तेलंगाना, तेलंगाना में देखिए 73 लाख के ऊपर है, ठीक है, 74 लाख तमिलनाडु में कटे हैं। हालांकि यहां पर देखिए विपक्ष की सरकार बनी हुई है, ये है तेलंगाना है इन तमाम जगहों पर। केरलम में लगभग 9 लाख वोट कटे हैं, इसी के साथ 34 लाख मध्य प्रदेश में कटा है, ठीक है, गुजरात में 68 लाख है, तो ये पूरा राजस्थान में 31 लाख, दिल्ली में 47 लाख, लगभग 48 लाख, 47.5 लाख, हरियाणा में 33 लाख 83 हजार, फिर यहां पर पंजाब में देखिए 20 लाख 67 हजार है, उत्तराखंड में लगभग 8.5 लाख, छोटे राज्य ये हैं तो उन छोटे राज्यों में कम संख्या में घटा है। ये बिहार भी देख लीजिए 47 लाख, यहां पर अरुणाचल प्रदेश 1 लाख 69 हजार, मेघालय 1 लाख 80 हजार, मणिपुर 1 लाख 59 हजार, त्रिपुरा में 2 वोट कटे हैं, इसी के साथ झारखंड में 43 लाख 62 हजार, उड़ीसा में 20 लाख 13 हजार, छत्तीसगढ़ में 25 लाख, तो ये और आंध्र प्रदेश में 44 लाख 90 हजार। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया कि किस राज्य में कितना वोट कटा है। इनमें जो सबसे ज्यादा कटे हैं उसमें कर्नाटक में भी देखिए विपक्ष की सरकार है और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने हैं। अब जो अगली चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये पूरा मामला कितना सीरियस है और इसको कितनी सीरियसनेस के साथ लेने की जरूरत है आज, तो उसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि एसआईआर में जो 13 करोड़ लोग हैं भाई ये कौन से लोग हैं और इनका मतलब ये इसी पर चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है ना। ये जी 13 करोड़ लोग, ठीक है, SIR में 13 करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें पहला जो नंबर है वो ये है जिसमें 2,77,00,000 लोग मृत हैं। तो ये तो वाजिब भी है कि भाई जिन जो मृतक हैं उनका वोटर आई कार्ड क्यों बना हुआ है, उनको हटाया गया है। जो अपनी जगह से शिफ्ट कर गए हैं यानी कहीं और चले गए हैं वो 7,91,00,000 हैं। पता नहीं लग रहा, सारा मामला इसी का है। ये जो 1,48,00,000 है जिनका पता नहीं लग रहा, अब ये कौन लोग हैं? भाई ये बात कही गई थी कि अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश से आए हुए हैं, तो फिर कौन है, उनकी पहचान कैसे होगी, इसमें कितनी संख्या उनकी है और कितने ऐसे वाजिब वोटर्स हैं जिनका वोट कट गया है किसी वजह से, है ना। ऐसा भी मुमकिन है कि आपने देखा ही होगा एक ही परिवार में कुछ का बन रहा है कुछ का कट रहा है, क्या उनमें से भी लोग इसमें हैं? तो फिर तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इधर डुप्लीकेट वोट जिनके हैं 1 करोड़ वो आप देख रहे हैं और अन्य जो है वो 8,40,000 डुप्लीकेट उनका ही है जो भाई दो जगह पे उनका वोट बना हुआ है, मतलब यूपी में रहते हैं तो यूपी में भी उनका बना हुआ है, पहले उससे दिल्ली में थे दिल्ली में भी है, तो दिल्ली यूपी दोनों जगह का उनका है। तो डुप्लीकेट जिनका वोटर कार्ड है वो इतने लोग हैं। तो ये लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला जो पूरा मामला है वो सबसे बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है कि ये जो लोग हैं 1,48,00,000 वो कौन है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बताना चाहते हैं, राहुल को लेकर किंग्सवे कैंप थाने पहुंची है दिल्ली पुलिस। जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी को लेकर किंग्सवे कैंप थाने पुलिस पहुंची है और राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है और थाने में इस वक्त लेकर दिल्ली पुलिस बैठी हुई है। राहुल गांधी को लेकर किंग्सवे कैंप थाने पहुंची है पुलिस। आकाशवाणी भवन जहां से उनको पुलिस ने हिरासत में लिया था, ये कुछ देर पहले की आप तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद से अब जानकारी आ रही है। मौसमी क्या जानकारी है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या दोनों को वहां किंग्सवे कैंप ले जाया गया है?
2: किंग्सवे कैंप पहुंच गए अंजना, ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को
5: किंग्सवे कैंप में ही रखा गया है और रास्ते में हम लोग उनकी बस के पीछे पीछे चल रहे थे और जाहिर तौर पे जहां पे धरना हो रहा था उससे काफी दूर यहां पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लाया गया है। मुझे लगता है रात को उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन पुलिस के लिए ये सवाल था कि आखिर कितने देर तक ये धरना चलने देना है। लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी कहा था कि वो नहीं हटेंगे, तमाम आला अधिकारियों ने आके उनसे बातचीत की, उनको बोला कि जनता को ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, वो वीडियोस भी आउट आए हैं जिसमें प्रियंका गांधी कह रही कि आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपने बैरिकेडिंग कर दी है। फिर बीच में इंडिया ब्लॉक के भी कुछ सदस्य आए और उसके बाद एकाएक पलक झपकते ही बैरिकेड लग गई, अलग अलग डिविजन हुए आकाशवाणी भवन के बाहर और उसके बाद पीछे के रास्ते से राहुल गांधी को ले जाया गया। ये देखिए हम पहुंच गए किंग्सवे कैंप, भाई सब हम उतरना चाहेंगे तो ये देखिए बाहर आप देखिए, संजीव आप भी उतरने की कोशिश कीजिए। ये किंग्सवे कैंप में यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, तमाम कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, अंदर राहुल गांधी हैं। आइए आपको तस्वीर दिखा, यहाँ पे बहुत भयंकर जाम था और कैमरामैन संजीव जो है ये तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे किंग्सवे कैंप में क्या तस्वीर है। ये आप देखिए तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं और ये पूरा गेट जो है जो फाटक है वो बंद कर दिया गया। ये देखिए राहुल गांधी की बस अभी आई है, ये हमारे पीछे एक और बस आ गई है जिसमें आप राजा वॉरिंग को देख रहे हैं, मानिकम टैगोर को देख रहे हैं और क्या राहुल गांधी भी इसमें बैठे, सवाल यही है। यहाँ पे देखिए मानिकम टैगोर, संजीव इधर आइए, कौन कौन है इस बस में, मानिकम कौन कौन है बस में, बस में
6: प्रियंका गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, ऑल ऑफ एमपीज हैज बीन डिटेन्ड फ्रॉम देयर एंड प्रियंका गांधी इज देयर एंड वी हैव बीन डिटेन्ड एंड वी हैव शी इज देयर।
5: की बस आई है,
7: प्रियंका गांधी मौजूद है बस में, प्रियंका गांधी मौजूद है बस,
6: या प्रियंका गांधी जी इज देयर,
5: तो प्रियंका गांधी इस बस में मौजूद है, प्रियंका बैठी
0: हाजी भैया भैया
8: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,
9: मोदी जी ने ताना चाही नहीं चलेगी, राहुल गांधी जी ने
0: इस तरीके से डिटेन किया गया, यू वर डिटेन इन द
10: डिटेन ओनली दे टेक अस हियर वन आवर लॉन्ग जर्नी दे टेक हियर फार अवे फ्रॉम सिटी देयर एजेंडा इज टू save Ganesh Kumar. Nothing is going to be happened. We will fix him. India will fix him.
0: Ganesh Kumar को कह रहे केसी वेणुगोपाल कि we will fix him. प्रियंका गांधी आगे बैठी है. संजीव दिखाइए, प्रियंका गांधी आगे बैठी है. बताया जा रहा है यहाँ पे राजा वॉरिंग भी है. केसी सर, राहुल गांधी was taken in another bus. And he has been also put on
9: Kendrick.
10: हमारे पास जानकारी नहीं है.
0: यहाँ पे देखिए इस बस में ऊपर की तरफ, इस बस में आप देखिए कि ऊपर की तरफ आप देखिए कि तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और यहाँ पे राजा वॉरिंग जो है और बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी इस बस में है. उस तरफ मैं कोशिश करती हूँ गांधी से बात करने की यहाँ पे कि जिस तरीके से उनको ले जाया गया है. आइए संजीव भैया थोड़ा आगे करिए.
9: मोदी
0: जी इस तरह से ले जाया गया है, क्या लगता है आपको कि डरी हुई है?
11: मुझे लगता है कि एकदम कायर सरकार है. इससे कायर सरकार इस देश में कभी नहीं रही है. नरेंद्र मोदी जी कायर हैं. ये कोई तरीका है? हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम इसी से मिले. उनका कर्तव्य है कि हमसे मिले. 250 जनप्रतिनिधि लोकसभा के, राज्यसभा के, पूरी ऑपोजिशन की पार्टियां और मिलने की हिम्मत नहीं है.
0: हमारे साथ जुड़ी हुई है वहाँ, बता रही हैं विपक्ष का लगातार हमला, मोदी सरकार पर हमला, कायर सरकार कह रही है, प्रियंका गांधी वो कह रही है. बात कीजिए मौसमी. सरकार में इस्तीफे नहीं
11: देना चाहिए.
0: कि प्रियंका गांधी बाहर निकल रही हैं और ये कह रही है कि मजबूर कर सकते. यहाँ पे बस जो है वो बुरी तरह से फंस गई है. प्रियंका गांधी यहाँ पे खड़ी हुई है. ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये तस्वीर प्रियंका गांधी की आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, बिल्कुल खिड़की पे आधा लटकी हुई है. और ये वो वक्त है जब यहाँ पे लगातार आधे घंटे 45 मिनट के फासले में नारेबाजी करते हुए प्रियंका गांधी किंग पर उनको उतारा नहीं जा रहा है. यहाँ पे नारेबाजी चल रही है. और सर आप थोड़ा आगे हो जाना तो मैं थोड़ा सा
9: नहीं चलेगी.
0: तो मुझे बीच में कर लो. मैं देखिए यहाँ पे अंजना तस्वीर, सॉरी, ज्यादा भीड़ भड़का है और मीडिया देखिए मीडिया के ताते के बीच में पुलिसकर्मी, बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं. और यहाँ पे जब जब मोदी डरता है कि नारे जब लग रहे हैं तो प्रियंका गांधी यहाँ पे नजर आ रही हैं. कोशिश करते हैं कि प्रियंका गांधी से पूछें
12: प्रियंका गांधी जिंदाबाद
13: जिंदाबाद जिंदाबाद
12: सोनिया गांधी जिंदाबाद
13: जिंदाबाद
12: प्रियंका जी के संघर्ष करो।
0: मौसमी पूछे क्या बताया गया है कि कहां ले जाया जा रहा है इन लोगों को?
14: प्रियंका गांधी पुलिस कर्मियों से बात करते हुए यहां पे आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पे किंग्सवे कैंप के बाहर प्रियंका गांधी को लाया गया है अंजना, और यहां पे हम लोग से बात भी की प्रियंका गांधी ने और एक तरीके से कहा कि आप देखिए कि हम फिर कल जाएंगे ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करेंगे। और यहां पे एक तरफ राहुल गांधी को भीतर लाया गया है तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी यहाँ बस में अंदर है और यहाँ पे लगातार नारेबाजी करते हुए वो यहाँ पे आई है। उनके साथ मानिकम टैगोर, सुप्रिया शिले, केसी वेणुगोपाल, सब लोग इसी बस में हैं। और अब ये बस बिल्कुल रुक गई है। संजीव जरा लॉन्ग एंगल पे दिखाइए आप किस तरीके से बस यहाँ पे बिल्कुल रुक गई है और आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। और प्रियंका गांधी लगातार नारेबाजी में साथ साथ ताली पीटते हुए यहाँ पे
0: मौसमी, क्या किंग्सवे कैंप में इस वक्त आप लोग मौजूद हैं? क्या किंग्सवे कैंप के पुलिस थाने के बाहर आप लोग पहुंच गए हैं? कहां ले जाया जा रहा है इस बारे में बताएं।
14: आइए, अरे ये बस को बार बार अंदर बाहर किया जा रहा था अंजना, माफ कीजिएगा अगर थोड़ा शोर हो रहा था, लेकिन ये एब्सोल्युटली क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है क्योंकि पुलिसकर्मी चारों दिशा से होते हैं। और अब इस कैंप में अंदर ले जाया जा रहा है, यू टर्न मार रही थी बस और उसके बाद यहाँ पे भीतर उनको ले जाया जा रहा है। आपको मैं बता रही थी कि ये वो बस है जिसमें बाकी नेता भी मौजूद है और ये देखिए पुलिसकर्मी भी मौजूद है। आप देखिए दो चार नेता और बहुत सारे पुलिसकर्मी, ये तस्वीर यहाँ ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हुए जहाँ प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। और अब देखिए बस को बैक करा के यहाँ उनको अंदर ले जाया जा रहा है।
0: ये किंग्सवे कैंप,
14: जी बिल्कुल ये किंग्सवे कैंप है, यहाँ राहुल गांधी को भी अंदर ले जाया गया। आप देखिए यहाँ जो वीआईपी गाड़ियां खड़ी है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राहुल गांधी को पहले यहाँ पे पहुंच गए हैं और उसके बाद प्रियंका गांधी यहाँ पे ला रहे हैं। यहाँ राजा वॉरिंग देखिए आप कि राजा वॉरिंग ऊपर चढ़े हैं और वो बोल रहे हैं कि आप लोग नीचे उतरिए। यूथ कांग्रेस का वो बैनर आपको नजर आ रहा है क्योंकि यूथ कांग्रेस इस पे बैठ गई है तो बस भी बिल्कुल यहाँ पे बैठ गई है, यानी अंदर नहीं जा पा रही है क्योंकि तार वार है। अब कैसे ले जाया जाए, देखिए दिखाइए अंजना को, वो बोर्ड आपको दिख रहा है वो किंग्सवे कैंप का बोर्ड है, इसलिए पुष्टि होती है कि हम लोग कौन सी लोकेशन पे खड़े हैं क्योंकि लगातार दो घंटे से कभी इस गाड़ी में उस गाड़ी में हम लोग चलते चले आ रहे थे।
0: और जैसे ही और जानकारी आती है मौसमी, हम आपका रुख करेंगे कि आखिर क्या अगला कदम होता है पुलिस की तरफ से। लेकिन हम आपको दिखा रहे थे किस राज्य में कितने वोटर्स कटे हैं और हमने आपको बताया कि जो वोटर्स कटे हैं उनमें मृत लोगों का वोट करना स्वाभाविक है कटना, जो लोग कहीं और शिफ्ट कर गए हैं उनका कटना स्वाभाविक, जो लोग डुप्लीकेट मतलब एक जगह पर पहले थे वहां का भी वोटर आई कार्ड है, नई जगह गए वहां भी बना लिए, उनको भी काटना स्वाभाविक है। लेकिन जो अन्य में 8.5 लाख का नंबर है जिनका पता नहीं चला, अब सवाल तब उठता है जब हटाए गए वोटर्स खुद ये कहने लगे कि उनके पास कोई आया ही नहीं, या ये कहने लगे कि उन्हें मृत घोषित करके उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया है जबकि वो जिंदा है। अब यहीं पर ये पूरा सवाल, जैसे पश्चिम बंगाल पूर्वी बर्धमान के कालना नगर पालिका के निवासी पूर्णा शाह, उनको चुनाव आयोग की ड्राफ्ट मतदाता सूची में मृत दिखाया गया जबकि वो जीवित है और इस बात से वो इतना आहत हुए कि जीवित रहते हुए अपना डेथ सर्टिफिकेट लेने नगर पालिका पहुंच गए। इसी तरह दिल्ली में 7 साल के कुन्नेलाल, उनके मुताबिक वो अभी जिंदा है लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें मृत मानकर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है। और बात सिर्फ इन कुछ वोटर्स की नहीं है, द टेलीग्राफ, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, हिंदुस्तान टाइम्स और हमारी अपनी इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि एसआईआर में कई वोटर्स के नाम सिर्फ इस वजह से हट गए क्योंकि चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर ने उनका सही से आकलन नहीं किया। जैसे इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि जब चुनाव आयोग का नया सॉफ्टवेयर या डेटाबेस वोटर्स की पुरानी सूचियों को आपस में मिलाता है तब इस दौरान अगर पता या सरनेम में जरा सा भी अंतर आया तो यह सॉफ्टवेयर पूरे परिवार को एक यूनिट मानता ही नहीं और यही वजह है कि परिवार के दो लोगों का हो गया अप्रूवल और दो का नाम कट गया और इसका नतीजा यह होता है कि माता पिता का नाम उसी पोलिंग बूथ की लिस्ट में रह जाता है जबकि उनके साथ रहने वाला बेटा या बहू का नाम बिना किसी सूचना के लिस्ट से हटा दिया जाता है या किसी दूसरे सुदूर बूथ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा अब तक वोटर लिस्ट में लोगों के नाम क्षेत्रीय भाषाओं जैसे हिंदी, बांग्ला, तमिल, अंग्रेजी दोनों में लिखे होते थे लेकिन अब चुनाव आयोग का नाम जो नया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है इन नामों का अनुवाद करता है तो दावा है कि सॉफ्टवेयर की गलती से कई नाम वोटर लिस्ट से मान्य होते हुए भी हट जा रहे हैं और वो व्यक्ति मतदाता ही नहीं रहता है। जैसे कई बार मोहम्मद को अंग्रेजी में कैपिटल एम और डी और मोहम्मद दोनों तरीके से लिखा जाता है लेकिन आरोप है कि चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर उन्हें दो अलग व्यक्ति मान लेता है और इसी तरह चैटर्जी और चट्टोपाध्याय जैसी अलग स्पेलिंग्स को सॉफ्टवेयर लॉजिकल विसंगति यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की श्रेणी में डाल देता है और उस वोटर को या तो नोटिस भेजा जाता है या वोटर लिस्ट में उसके नाम पर तलवार लटकने लगती है। सरल शब्दों में कहें तो विपक्ष और कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा आरोप लग रहा है कि इस तकनीकी खामी के कारण सॉफ्टवेयर बिना इंसानी दिमाग लगाए लाखों लोगों को ड्यूप्लीकेट या गलत मानकर उन्हें नोटिस जारी कर देता है या सीधे नाम काट देता है जिससे 13 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से अब तक हट चुके हैं और इन्हीं वजहों से विपक्ष एक बड़ा मुद्दा इसको सामने रख रहा है। हालांकि ये सवाल भी कई लोगों के मन में है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है या लोग भी एसआईआर ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग में असहमतियों के मुद्दे पर दिलचस्पी ले रहे हैं तो जैसा हम अक्सर करते हैं हम डीप डाइव करते हैं कि सोशल मीडिया पर गूगल पर क्या हो रहा है। इसे समझने के लिए आज हमने कुछ आंकड़े निकाले और इन आंकड़ों में से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि एसआईआर सिर्फ विपक्ष का मुद्दा है या सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में खूब चर्चा हो रही है। पहले गूगल सर्च की बात करते हैं जहां 20 सितंबर से पहले ज्ञानेश कुमार का सर्च इंटरेस्ट जीरो था। इसका मतलब यह हुआ कि गूगल पर कोई भी यूजर कोई भी व्यक्ति ज्ञानेश कुमार या उनसे जुड़ी खबरों के बारे में कुछ नहीं सर्च कर रहा था। इसके बाद 23 सितंबर को एक अंग्रेजी अखबार ने यह खुलासा किया, इंडियन एक्सप्रेस ने, कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ज्यादातर फैसले बिना सर्वसम्मति से ले रहे हैं। इसी के बाद गूगल सर्च पर ज्ञानेश कुमार का नाम सर्च करने का इंटरेस्ट रेट अधिकतम 100 पर पहुंच गया, 100 पर पहुंच गया। उनके बारे में सर्च करने वाले लोगों की संख्या 5000% तक बढ़ गई और इसके बाद से गूगल पर लोग लगातार उनके बारे में सभी खबरें सर्च कर रहे हैं और आज भी उनका सर्च इंटरेस्ट 40 पर है जो अच्छा खासा माना जाता है। इसके अलावा गूगल पर ज्ञानेश नाम का सर्च इंटरेस्ट भी लगातार अपने उच्चतम स्तर पर है, लोगों ने उनके बारे में गूगल सर्च करना बंद नहीं किया है। इसके बाद चुनाव आयोग के बारे में गूगल पर भारत के लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। 20 सितंबर से अब तक गूगल पर भारत के चुनाव आयोग का सर्च इंटरेस्ट 60 से 100 के बीच रहा है जो ज्यादा माना जाता है और चुनाव आयोग से भी ज्यादा लोग एसआईआर को गूगल सर्च कर रहे हैं। आज जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं तब भी गूगल पर एसआईआर का सर्च इंटरेस्ट 90 से ज्यादा है और 23 सितंबर से ही लगातार ये 90-100 इसी के बीच में बना हुआ है और इन नतीजों से आप ये समझ सकते हैं कि भारत में गूगल पर एसआईआर चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के बारे में लगातार सर्च किया जाता रहा है और यहां बात सिर्फ गूगल की नहीं है। सिर्फ आज ही आज में इंस्टाग्राम पर हैशटैग ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश ब्रो बाय बाय पर 500 से ज्यादा पोस्ट किए गए जबकि चुनाव आयोग के अलग अलग हैशटैग पर 40 लाख से ज्यादा पोस्ट हुए। सिर्फ एसआईआर के अलग अलग हैशटैग पर 1 करोड़ से ज्यादा पोस्ट अकेले इंस्टाग्राम पर किए गए और यही हाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एसआईआर का मुद्दा अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा बल्कि इसके बारे में सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। अब इस सवाल पर आते हैं कि जब सोशल मीडिया पर कई लोग भी इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, विपक्ष भी इस मुद्दे की प्रमुखता से उठा रहा है, तब क्या ऐसी परिस्थितियों में ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देने के बारे में सोच सकते हैं और क्या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा देने से भारत के चुनाव आयोग में विपक्षी दलों का भरोसा लौट जाएगा? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग पर विपक्ष का यह अविश्वास सिर्फ ज्ञानेश कुमार के कारण पैदा नहीं हुआ है यानेश कुमार फरवरी 2025 में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त बने, जबकि चुनाव आयोग में विपक्षी दलों का अविश्वास 2017 से ही पैदा हो गया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, इनमें भी यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी की इस जीत पर बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने ईवीएम की भूमिका पर सवाल उठाए थे, जबकि अखिलेश यादव ने भी कहा था कि अगर मायावती ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं तो उसकी जांच कराई जानी चाहिए। उसी वक्त पंजाब विधानसभा के नतीजे पर भी आम आदमी पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। अप्रैल 2017 में मध्य प्रदेश के भिंड जिले में यह आरोप लगा कि ईवीएम में किसी भी बटन को दबाने पर वोट बीजेपी को जाता है, जबकि चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। सभी राजनीतिक पार्टियों को यह चुनौती दी थी कि वो ईवीएम को हैक करके दिखाएं, लेकिन उस वक्त कोई भी पार्टी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आई। यानी वहां से चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी दलों में गहरा अविश्वास दिखा, जो आगे भी शायद ही कहीं भी बाकी राज्यों के चुनाव में भर पाया। प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं वहां पर, एक बार आपको दिखा देते हैं।
15: तेरा नाम पता लगाऊंगी मैं, वो ना तू, तेरा नाम पता लगाऊंगी मैं। यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं
16: 50% चिकन को एनीवेयर शॉट।
17: हाँ मोदी मीडिया है,
16: पुलिस उन्हें रोक नहीं सकती है, वो जहाँ जाना चाहेगी वो जाएगी।
0: जैसे ही साफ स्पष्ट उनकी आवाज आती है हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन 2017 से अब तक कुल 61 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव हुए, इनमें जिन भी चुनावों में विपक्षी दलों की हार हुई वहां चुनाव आयोग पर भेदभाव करके बीजेपी को जिताने के आरोप लगाए गए, जबकि वहां विपक्षी दल जीते वहां ये आरोप नहीं लगे। कुल 43 चुनाव ऐसे रहे जहां बीजेपी की जीत को विपक्ष ने शक की नजरों से देखा, चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े हुए। 2024 में जब ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त और फरवरी 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने, तब इस दौरान कुल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हुए और 1 लोकसभा चुनाव हुआ। इनमें 15 में से जिन 10 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की जीत हुई वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष ने वोट चोरी और धांधली का आरोप लगाया। लेकिन बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती है कि जहां जहां पर विपक्षी पार्टियों को जीत मिलती है वहां पर वो एक भी सवाल खड़े नहीं करते। कुल 5 राज्यों में विपक्षी पार्टियों को जीत मिली लेकिन वहां विपक्ष पर ने कोई सवाल नहीं उठाए। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जिंदगी से कुछ बातों को, कुछ यादों को, कुछ लहजों को डिलीट करते रहिए, वरना हैंग हो जाएंगे। नमस्कार।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मंगलवार दिनभर हंगामा चलता रहा। दिल्ली के किंग्स वे काम से निकलने के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि गद्दारों को सरकार बचा रही है। राहुल प्रियंका को हिरासत में ले लिया गया था। दोनों को करीब 2 घंटे तक किंग्स वे कैंप में रखा गया, हालांकि बाद में दोनों को छोड़ दिया गया। राहुल गांधी के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर विपक्ष के 300 सांसदों ने सीईसी के खिलाफ मार्च निकाला है, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके अखिलेश यादव समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। इसी बीच पुलिस को चकमा देकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच गए आकाशवाणी परिसर में और वहीं से शुरू कर दिया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष एक साथ उबला, तो राजधानी दिल्ली में संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर के रास्ते

0: मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है।
1: जो गलत तरीके से हुकूमत में उन्होंने आए हैं और जो गलत तरीके से उन्होंने आज कुर्सी पे बैठा, इसीलिए हम कर रहे हैं, पहले गद्दी छोड़ो, नहीं तो देश में हंगामा होगा, देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये मेरा वार्निंग है उनको।
2: चुनाव ने 17 में बेईमानी की, 19 में बेईमानी की, 22 में बेईमानी की, 24 में बेईमानी की, और बंगाल का तो पूरा का पूरा खुला खेल किया उन्होंने, किसको नहीं दिखाई देता है।
3: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर भले ही ये इंडिया गठबंधन के 19 दलों का मार्च था, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी भवन के परिसर में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं से धरना शुरू कर देते हैं, ऐसे में सारी निगाहें राहुल गांधी पर जम जाती हैं। हम आपको विपक्षी सांसदों का पूरा मार्च दिखाएंगे, लेकिन पहले बात राहुल गांधी की करते हैं। उधर दिल्ली पुलिस विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेकर बस में बैठाकर ले जाती है और आकाशवाणी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक पेड़ के नीचे बैठकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों से मिलने की जिद करने लगते हैं।
0: कुछ समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के MPs आए थे और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे। यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका, 300 MPs को यहाँ पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। 300 MPs ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं।
3: दोपहर करीब 12:30 बजे से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आकाशवाणी भवन के परिसर में धरना शुरू होता है और उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की दौड़ आकाशवाणी की तरफ लगने लगती है।
4: यहाँ पे आप लोग का होना बिल्कुल ही गैर कानूनी है।
3: ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच जैसे एक जंग सी छिड़ जाती है और फिर पुलिस प्रदर्शनकारियों को जबरन हिरासत में लेती है।
5: हमारे नेता नरेंद्र राहुल जी ये लोगों की गलत जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। हम लोगों बार बार डिटेन कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को बचाने का काम कर रहे हैं मोदी और शाह,
6: मेरे भाई और गणेश को बचाने के लिए पूरे क्राइम कर रहे हैं, ये गलत है, गैर कानूनी है।
3: धरने के करीब 2 घंटे बाद राहुल गांधी और आक्रामक होते हैं और सीधे सरकार, संघ और चुनाव आयोग पर वार करते हैं।
0: बीजेपी जो बोले उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के को बचाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कुछ घंटे पहले 300 लोकसभा और राज्यसभा के MPs आए थे, वो भी देश में लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। इनमें से सारे के सारे किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आप देखना, इनमें से एक व्यक्ति बच के नहीं जाएगा।
3: आकाशवाणी में 3 घंटे से ज्यादा बीतने पर राहुल गांधी और प्रियंका वहीं बरगद के पेड़ के नीचे चटाई बिछा लेते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा आकाशवाणी में पवन खेड़ा और KC वेणुगोपाल समेत कई और बड़े नेता भी पहुंच जाते हैं। धरने के 5 घंटे बाद राहुल गांधी फिर से मीडिया के सामने बोलते हैं और कहते हैं कि जब तक उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलने नहीं दिया जाता वहीं बैठे रहेंगे। वो कहते हैं कि आकाशवाणी में लंबा धरना देने का इंतजाम कर लिया है,
0: हमने यहाँ पे गद्दे भी लगा दिए हैं, ठीक है, टॉयलेट भी है, चाय भी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हमें बैठना है हम बैठ लेंगे।

0: छह घंटे बाद भी धरना जारी रहता है। इस बीच आकाशवाणी में दिल्ली पुलिस पहुंचती है। इस दौरान प्रियंका तिरंगे के सामने हाथ फैलाकर खड़ी नजर आती है, जबकि राहुल ने पुलिस अफसर से कहा इन्हें मत छूना,
1: इसको मत छुओ झंडे को।
2: हम कह रहे हैं झंडा तुम्हारे सर में लगेगा,
1: कुछ नहीं लगेगा।
0: धरने के 7.5 घंटे बाद दिल्ली पुलिस फिर से आकाशवाणी पहुंचती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धरने से उठने के लिए कहती है, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे जमे रहते हैं तो काफी बहस होती है और आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जबरन उठाकर आकाशवाणी से ले जाती है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: राहुल गांधी और प्रियंका को आकाशवाणी भवन में धरने से उठाने के काफी मशक्कतें करनी पड़ी। राहुल और प्रियंका गांधी ज्ञानेश से मिलने के लिए अड़े हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया, जबकि इंडिया गठबंधन ने सुबह 10:30 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू किया। अखिलेश यादव से लेकर टीएमसी के अभिषेक बनर्जी इस धरने में शामिल हुए, लेकिन विपक्ष के इस मार्च को पुलिस ने बीच में रोक दिया और सांसदों को हिरासत में ले लिया गया।

0: 2 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक 4 दिन तक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी, आयसा, आप और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के विरोध प्रदर्शन के बाद अब बारी इंडिया गठबंधन की आती है, क्योंकि सब कुछ 30 सितंबर की इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली की बैठक में तय हो चुका था। ऐसे में विपक्ष के 19 दलों के सांसद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलने सड़क पर उतरते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 300 सांसद एक साथ इकट्ठा होते हैं और पोस्टरों, बैनरों के साथ निकल पड़ते हैं। राहुल जेन जी के कनेक्ट के लिए प्रदर्शन में ज्ञानेश इट्स डन ब्रो का पोस्टर लेकर पहुंचे थे। उनका मकसद इस वर्ग को सीधा मैसेज देना था। देश में आज हर चौथा वोटर जेन जी से है, तो अखिलेश यादव के हाथों में मुचुआ का पोस्टर रहता है। मुचुआ का मतलब अखिलेश यादव मुख्य चुनाव आयुक्त बताते हैं।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त, मुचुआ तो सुना था आपने यूपी में, जो एक रूमर फैला रहा था। ये देखिए मुचुआ हटाओ, पीडीए बचाओ।
2: अभी जब तक पैर चलेगा चलेगा।
3: चुनाव आयोग भेदभाव कर रहा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: देखिए, ये तो आपको सरकार से पूछना चाहिए कि बार बार पूरे विपक्ष को सड़क पे आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमारी सीधी सीधी 3 मांगे हैं। एक, ज्ञानेश कुमार का इमीडिएट इस्तीफा हो। दूसरा, एसआईआर रद्द हो। तीसरा, बैलेट पेपर से चुनाव हो।
0: इंडिया गठबंधन के सांसद संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नीति आयोग के दफ्तर के पास इस मार्च को बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता है। ऐसे में राहुल गांधी हाथ में तिरंगा लेकर बैरिकेडिंग पर चढ़ जाते हैं और बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश करते हैं।
4: ज्ञानेश गुप्ता की गद्दारी साबित हो चुकी है।
5: सीसी अंडरग्राउंड कहाँ छुपाया है, बीजेपी के दफ्तर में है और कहाँ है पता नहीं। सीसी जो है बीजेपी का एजेंट है, उनको बचाने की कोशिश चल रही है।
6: चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं कि गलत वोट काटे गए। लोगों के वोट काट के विपक्ष को हराना ही साबित करता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है।
7: कि ये इलेक्शन मशीन की तरह काम करते हैं, केवल चुनाव आयोग से नहीं जीतते हैं, पैसा इनके पास बहुत है। बंगाल में देखा कि फोर्स के माध्यम से कैसे बूथ लूट लिया, और बंगाल में नहीं लूटा था, उससे पहले यूपी में लूटा। आपका जो सेमीफाइनल होता है, या कहें कि कोई चीज करने से पहले टेस्ट करने के लिए, कुंदरकी का चुनाव इन्होंने लूटा, मीरापुर का चुनाव इन्होंने लूटा, आपका अयोध्या का चुनाव, अंबेडकर नगर का बाई इलेक्शन। तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है।
8: ये तो पहले से था कि बीजेपी की चोरों की सरकार थी, अब ये पता चल गया कि अब ये चोरी की सरकार है। मुझे ये लगता है अब तो यही करना चाहिए कि ये सरकार बर्खास्त हो और फिर से लोकसभा के चुनाव हो, और कोई तरीका नहीं।
0: अब विपक्ष के सभी सांसद नीति आयोग के दफ्तर के पास ही धरने पर बैठ जाते हैं।
9: समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष, पसीना से कभी घबराते नहीं है। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए बैरिकेडिंग लगाई हुई है।
0: पहले तो पुलिस ने विपक्षी सांसदों को बैरिकेडिंग से रोका, और जब इससे भी नहीं रुके तो उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर देती है और बस में भरकर ले जाती है। बस के अंदर अखिलेश यादव दिल्ली पुलिस पर तंज मारते हुए कहते हैं कि पुलिस उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलवाने के लिए चुनाव आयोग ले जा रही है।
10: चुनाव आयोग ले जा रही पुलिस, नहीं उन्हीं से मिलाने ले जा रही हम लोगों को, सीसी से मिलाने ले जा रही है। बीजेपी ने अब कह दिया कि बस जा सकती है चुनाव आयोग।
0: अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और अभिषेक बनर्जी समेत विपक्ष के कई सांसदों को दिल्ली पुलिस हिरासत में ले लेती है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी के दफ्तर के परिसर में घुस जाते हैं और वहीं से धरना देना शुरू कर देते हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
11: राहुल गांधी के प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, आपको सुनवाते हैं।
12: राहुल गांधी जी की ये आदत है, राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट को कोट करके राफेल के केस में राहुल गांधी जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल में धांधली हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही राहुल गांधी को बोला कान पकड़ के उठक बैठक करो। कान पकड़ के उठक बैठक करो और एफिडेविट सब दो कि तुमने झूठ बोला था। राहुल गांधी चुपके से जाके घर के पीछे उन्होंने एफिडेविट लिखा, मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट का नाम मैंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उसे सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। आज ठीक वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे, हम उन्हें एक्सपोज करते रहेंगे।
13: आज तक कांग्रेस ने देश की कितनी संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाया है? एक दर्जन, आधा दर्जन, डेढ़ दर्जन, दो दर्जन? भारत की थल सेना से लेके, भारत की वायुसेना से लेके, भारत के डिफेंस से लेके, भारत की LIC से लेके, भारत के HAL, SBI, SEBI, वैक्सीन, कौन सी ऐसी चीज है? भारत का न्यायालय, भारत का मीडिया? तो मैं कांग्रेस पार्टी से आज देश के सामने पूछना चाहता हूं, इस पे क्विज कॉन्टेस्ट होना चाहिए कि भारत के कितने संस्थानों को कांग्रेस ने अब तक, खासकर राहुल गांधी ने आरोपित किया है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड, चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में लोग ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहिए, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे।
11: ओमान के आरोपी पायलट हमामी ने कबूल किया है कि गजा का बदला लेने के लिए उसने इजरायली यात्रियों से भरे विमान को हाईजैक करने की आतंकी साजिश रची थी। पूछताछ के दौरान हमामी ने जांचकर्ताओं को यही बताया है कि आत्मघाती हमले में सभी इजरायली नागरिकों को बेमौत मारने का प्लान था, सब कुछ प्लान के हिसाब से था, लेकिन आतंकी हमले को अंजाम देने में नाकाम रहा।

0: पूछताछ में आतंकी पायलट का बड़ा खुलासा। इंतकाम की आग में पायलट से बना आतंकी। गाजा का बदला लेने के लिए रची थी साजिश। इसराइलियों को बेमौत मारने की तैयारी थी। तेल अवीव में विमान को क्रैश करवाना था। आतंकी पायलट का सनसनीखेज कबूलनामा। ओमानी नागरिक हमाम अल हमामी ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के सामने कई बड़े राज उगले हैं। पूछताछ के दौरान हमामी ने आतंकी साजिश की प्लानिंग से लेकर आत्मघाती हमले के पीछे मकसद का खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान हमामी ने क्या क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। सवाल, आतंकी साजिश के पीछे मकसद क्या था? जवाब, मैंने गाजा का बदला लेने के लिए ऐसा किया, मैं शहीद की तरह मरना चाहता था। सवाल, आतंकी साजिश में कौन कौन शामिल था? जवाब, मेरे साथ कोई नहीं, मैंने अकेले पूरी प्लानिंग की। सवाल, आखिर तुम्हारा प्लान क्या था? जवाब, प्लेन को हाईजैक कर 9/11 जैसी घटना को अंजाम देना। सवाल, क्या 9/11 हमले की तर्ज पर प्लान बनाया था? जवाब, मैं चाहता था कि वैसे ही हमले को अंजाम दूं। सवाल, क्या तुम किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हो? जवाब, नहीं, मेरा किसी आतंकी संगठन से लिंक नहीं। सवाल, क्या फ्लाई दुबई में काम करते वक्त प्लान बनाया? जवाब, नहीं, प्लान बनाने के बाद एयरलाइन से जुड़ा। पूछताछ के दौरान हमामी ने कबूल किया है कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने से पहले ही आत्मघाती हमले की स्क्रिप्ट लिख चुका था। प्लान को अंजाम देने के लिए ही फ्लाई दुबई से जुड़ा, क्योंकि उसे पता था कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने के बाद वो आसानी से 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। मतलब यही है कि हमामी आत्मघाती हमले की पूरी तैयारी कर चुका था।
1: He's lying there now. He's this attacker, and he calls out to the air crew, "Kill me, kill me!" All right. So it's clear he was suicidal. That's not a question. It was clear he was going to down that plane. Oh, it's not clear, but it looks very likely that he was going to down the plane, and with all the passengers in there. And if you couple that with the what I just told you about the Islamist. Tendencies that radicalization that are found in his background, I think that's that'll give us a pretty good clue. But again, I don't make final conclusions yet, but that's the indications we have now.
0: शुरुआती जांच में पता चला है कि हमामी ने कई मुल्कों का दौरा किया था, जिसमें अहम है सीरिया का दौरा। जांच एजेंसियों को शक है कि सीरिया में ही हमामी किसी आतंकी संगठन के संपर्क में आया या फिर किसी आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़ गया। मोसाद के हवाले से इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है।
2: हमें पता चला है कि हाल के सालों में उस आतंकवादी ने इजरायल के विरोधी देशों, जिनमें से कुछ दुश्मन देश भी थे, उनका दौरा किया था। ये दौरे कम समय के लिए थे। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उन दौरों के दौरान किसी व्यक्ति या संगठन ने उसे सक्रिय किया या भर्ती किया था।
0: टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिनबेट के एजेंट अल हमामी से पूछताछ में शामिल हैं। इजरायली अफसरों ने सवाल जवाब के लिए यूएई की यात्रा की थी। इसके पहले जानकारी मिली थी कि हमामी की कट्टरपंथी सोच के चलते एक बार उड़ान भरने से रोक दिया गया था। ये भी जांच का विषय है कि जब उसे ओमान की नेशनल एयरलाइंस से उड़ान भरने से रोका गया था, तो दुबई की एयरलाइंस में उसे मंजूरी कैसे मिली। बड़ी बात यह है कि अल हमामी ने 7 सालों तक ओमान एयर में काम किया और बीते साल फरवरी में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद जून 2025 में मोरक्को की नेशनल एयरलाइंस से जुड़ा, लेकिन सिर्फ 3 महीने तक नौकरी की। इसके बाद फ्लाई दुबई एयरलाइंस में बतौर को पायलट नौकरी करने लगा। हमामी की माने तो इसराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष का बदला लेने के लिए उसने आतंकी हमले की साजिश रची थी। ऐसे में इजरायली जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पायलट ने अकेले ही साजिश रची थी या फिर उसे किसी आतंकी संगठन ने इजरायली नागरिकों को मारने के लिए भेजा था। अभी तक इसराइल की तरफ से किसी मुल्क या आतंकी संगठन का नाम नहीं लिया गया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप यही है कि इस साजिश में ईरान का हाथ है। ट्रंप का ईरान पर यह आरोप नया नहीं है। हाईजैक की कोशिश के ठीक बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूरे मामले से ईरान का नाम जोड़ा था। तब ट्रंप ने शक जताया था कि इजरायली नागरिकों से भरे विमानों को हाईजैक करने के पीछे ईरानी सेना का हाथ हो सकता है। तब ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि साजिश 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम देने की थी।
3: I would say the answer based on what I'm hearing is yes, but we're working on it right now.
4: This guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tries to take down the plane.
3: It could have been, yeah.
0: वहीं ईरान की तरफ से ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया। ईरान का यही कहना है कि पूरा मामला यूएई और इजराइल की प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि ईरान ने पूरे मामले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। ईरान का आरोप है कि इजराइल और यूएई ने मिलकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की स्क्रिप्ट लिखी है। दावे के पीछे तर्क यही है कि विमान वाली घटना से ठीक पहले नेतन्याहू यूएई की सीक्रेट विजिट पर गए थे, जहां पर उनकी मुलाकात यूएई के राष्ट्रपति से हुई थी। ईरान इसे इजरायली साजिश से जोड़कर देखता है। ईरानी मीडिया का दावा नंबर एक, इजराइल और यूएई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ईरानी मीडिया का दावा नंबर दो, 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में फायदा लेना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर तीन, ईरान के साथ नए टकराव की स्क्रिप्ट लिखना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर चार, नेतन्याहू पर लगे घोटाले के आरोपों से ध्यान भटकाना। ईरान ने इस घटना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब देखना यही है कि जांच पूरी होने के बाद क्या सामने आता है, क्या आरोपी पायलट के तार ईरान से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी सच सामने आया है कि प्लेन से इमरजेंसी सिग्नल मिलने के बाद विमान को मार गिराने के लिए इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली थी, लड़ाकू विमानों को तुरंत भेजा था, लेकिन जब विमान ने सऊदी अरब की ओर मुड़कर आपातकालीन लैंडिंग की तो उन्हें वापस बुला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक 9/11 जैसी संभावित घटना के लिए लंबे वक्त से चले आ रहे प्रोटोकॉल के तहत विमान के करीब 14,000 फीट नीचे गिरने के बाद इजरायली वायुसेना ने कॉकपिट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो ऐसे मामलों को देखने वाली टीम को तुरंत बुलाया गया और एक कमांड सेंटर स्थापित किया गया। इसी कड़ी में लड़ाकू विमानों को भेजा गया और इजरायल ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। आज तक ब्यूरो।
5: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: किंग्सवे कैंप से निकलने के बाद राहुल का पोस्ट लोकतंत्र के गद्दारों को बचा रही है सरकार, एक भी देशद्रोही को छोड़ा नहीं जाएगा आज तक से बोली प्रियंका, ये है कायर सरकार। विपक्षी मार्च के बाद दिन भर चला है वोल्टेज ड्रामा, सीईसी से मुलाकात की मांग के साथ धरने पर बैठे थे राहुल गांधी, प्रियंका चुनाव आयोग की सफाई, नहीं मांगा गया मीटिंग का टाइम। राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी का हमला, कहा उनकी सियासी लॉन्चिंग लगातार हो रही है फेल, विपक्ष का झूठ हो चुका है, बेने कहा 300 सांसदों के साथ की बात भी झूठी। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, 2028 तक कार्यकाल, करगिल जंग में रहे शामिल। और दिल्ली एनसीआर में लगे भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 4.9, उत्तराखंड के चमोली में था एपिसेंटर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मंगलवार दिनभर हंगामा चलता रहा दिल्ली के किंग्सवे कैंप से निकलने के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि गद्दारों को सरकार बचा रही है। राहुल प्रियंका को हिरासत में ले लिया गया था, दोनों को करीब 2 घंटे तक किंग्सवे कैंप में रखा गया, हालांकि बाद में दोनों को छोड़ दिया गया।
1: सरकार में इस्तीफे नहीं, इस्तीफा देने के लिए
2: देना चाहिए।
0: राहुल गांधी के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर विपक्ष के 300 सांसदों ने सीईसी के खिलाफ मार्च निकाला है, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके अखिलेश यादव समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। इसी बीच पुलिस को चकमा देकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच गए आकाशवाणी परिसर में और वहीं से शुरू कर दिया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना।
3: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष एक साथ उबला तो राजधानी दिल्ली में संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर के रास्ते तक न सिर्फ विपक्ष ने एकता और एकजुटता दिखाई, बल्कि सरकार को गठघरे में खड़ा करके ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि चुनाव आयोग और सरकार के बीच मिलीभगत है और चुनावों में सरकार वोट चोरी करवा रही है।
4: अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है।
5: जो गलत तरीके से हुकूमत में उन्होंने आए हैं और जो गलत तरीके से उन्होंने आज कुर्सी पे बैठा, इसीलिए हम कर रहे हैं, पहले गद्दी छोड़ो, नहीं तो देश में हंगामा होगा, देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये मेरा वार्निंग है उनको।
6: चुनाव ने 17 में बेईमानी की, 19 में बेईमानी की, 22 में बेईमानी की, 24 में बेईमानी की, और बंगाल का तो पूरा का पूरा खुला खेल किया उन्होंने, किसको नहीं दिखाई देता है।
3: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर भले ही ये इंडिया गठबंधन के 19 दलों का मार्च था, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी भवन के परिसर में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं से धरना शुरू कर देते हैं, ऐसे में सारी निगाहें राहुल गांधी पर जम जाती है। हम आपको विपक्षी सांसदों का पूरा मार्च दिखाएंगे, लेकिन पहले बात राहुल गांधी की करते हैं। उधर दिल्ली पुलिस विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेकर बस में बैठाकर ले जाती है और आकाशवाणी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक पेड़ के नीचे बैठकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों से मिलने की जिद करने लगते हैं।
4: कुछ समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के MPs आए थे और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे। यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका, 300 MPs को यहाँ पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं।
3: दोपहर करीब 12:30 बजे से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आकाशवाणी भवन के परिसर में धरना शुरू होता है और उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की दौड़ आकाशवाणी की तरफ लगने लगती है।
2: यहाँ पे आप लोग का होना बिल्कुल ही गैर कानूनी है।
3: ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच जैसे एक जंग सी छिड़ जाती है और फिर पुलिस प्रदर्शनकारियों को जबरन हिरासत में लेती है।
7: हमारे नेता नरे राहुल जी ये लोगों की गलत जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। हम लोग बार बार डिटेन कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को बचाने का काम कर रहे हैं मोदी और शाह।
8: नरे और गणेश को बचाने के लिए पूरे क्राइम कर रहे हैं, ये गलत है, गैर कानूनी है।
3: धरने के करीब 2 घंटे बाद राहुल गांधी और आक्रामक होते हैं और सीधे सरकार, संघ और चुनाव आयोग पर वार करते हैं।
4: बीजेपी जो बोले उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के को बचाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कुछ घंटे पहले 300 लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज आए थे, वो भी देश में लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। इनमें से सारे के सारे सानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आप देखना, इनमें से एक व्यक्ति बच के नहीं जाएगा।
3: आकाशवाणी में 3 घंटे से ज्यादा बीतने पर राहुल गांधी और प्रियंका वहीं बरगद के पेड़ के नीचे चटाई बिछा लेते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा आकाशवाणी में पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल समेत कई और बड़े नेता भी पहुंच जाते हैं। धरने के 5 घंटे बाद राहुल गांधी फिर से मीडिया के सामने बोलते हैं और कहते हैं कि जब तक उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलने नहीं दिया जाता वहीं बैठे रहेंगे। वो कहते हैं कि आकाशवाणी में लंबा धरना देने का इंतजाम कर लिया है।
4: हमने यहाँ पे गद्दे भी लगा दिए हैं, ठीक है, टॉयलेट भी है, चाय भी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हमें बैठना है हम बैठ लेंगे।
3: छह घंटे बाद भी धरना जारी रहता है। इस बीच आकाशवाणी में दिल्ली पुलिस पहुंचती है। इस दौरान प्रियंका तिरंगे के सामने हाथ फैलाकर खड़ी नजर आती हैं, जबकि राहुल ने पुलिस अफसर से कहा इन्हें मत छूना,
4: इसको मत छुओ झंडे को।
3: धरने के 7.5 घंटे बाद दिल्ली पुलिस फिर से आकाशवाणी पहुंचती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धरने से उठने के लिए कहती है, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे जमे रहते हैं तो काफी बहस होती है और आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जबरन उठाकर आकाशवाणी से ले जाती है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी और प्रियंका को आकाशवाणी भवन में धरने से उठाने के काफी मशक्कतें करनी पड़ी। राहुल और प्रियंका गांधी ज्ञानेश से मिलने के लिए अड़े हुए थे लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया, जबकि इंडिया गठबंधन ने सुबह 10:30 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू किया। अखिलेश यादव से लेकर टीएमसी के अभिषेक बनर्जी इस धरने में शामिल हुए, लेकिन विपक्ष के इस मार्च को पुलिस ने बीच में रोक दिया और सांसदों को हिरासत में ले लिया गया।
3: दो अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक 4 दिन तक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी, आयसा, आप और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के विरोध प्रदर्शन के बाद अब बारी इंडिया गठबंधन की आती है। क्योंकि सब कुछ 30 सितंबर की इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली की बैठक में तय हो चुका था। ऐसे में विपक्ष के 19 दलों के सांसद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलने सड़क पर उतरते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 300 सांसद एक साथ इकट्ठा होते हैं और पोस्टरों बैनरों के साथ निकल पड़ते हैं। राहुल जेन जी के कनेक्ट के लिए प्रदर्शन में ज्ञानेश इट्स डन ब्रो का पोस्टर लेकर पहुंचे थे। उनका मकसद इस वर्ग को सीधा मैसेज देना था, देश में आज हर चौथा वोटर जेन जी से है। तो अखिलेश यादव के हाथों में मुचुआ का पोस्टर रहता है। मुचुआ का मतलब अखिलेश यादव मुख्य चुनाव आयुक्त बताते हैं।
6: मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुना था आपने यूपी में जो एक रूमर फैला रहा था, ये देखिए मुचुआ हटाओ पीडीए बचाओ।
9: अभी जब तक पैर चलेगा चलेगा।
10: चुनाव आयोग भेदभाव कर रहा है।
9: बिल्कुल बिल्कुल।
0: देखिए ये तो आपको सरकार से पूछना चाहिए कि बार बार पूरे विपक्ष को सड़क पे आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमारी सीधी सीधी तीन मांगे हैं। एक, ज्ञानेश कुमार का इमीडिएट इस्तीफा हो। दूसरा, एसआईआर रद्द हो। तीसरा, बैलेट पेपर से चुनाव हो।
3: इंडिया गठबंधन के सांसद संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नीति आयोग के दफ्तर के पास इस मार्च को बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता है। ऐसे में राहुल गांधी हाथ में तिरंगा लेकर बैरिकेडिंग पर चढ़ जाते हैं और बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश करते हैं।
11: ज्ञानेश गुप्ता की गद्दारी साबित हो चुकी है।
12: सीसी अंडरग्राउंड कहाँ छुपाया है, बीजेपी के दफ्तर में है और कहाँ है पता नहीं। सीसी जो है बीजेपी का एजेंट है, उनको बचाने की कोशिश चल रही है।
13: चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं कि गलत वोट काटे गए। लोगों के वोट काट के विपक्ष को हराना ये साबित करता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है।
14: कि ये इलेक्शन मशीन की तरह काम करते हैं, केवल चुनाव आयोग से नहीं जीतते, पैसा इनके पास बहुत है। बंगाल में देखा कि फोर्स के माध्यम से कैसे बूथ लूट लिया, और बंगाल में नहीं लूटा था, उससे पहले यूपी में लूटा। आपका जो सेमीफाइनल होता है, या कहें कि कोई चीज करने से पहले टेस्ट करने के लिए, कुंदरकी का चुनाव इन्होंने लूटा, मीरापुर का चुनाव इन्होंने लूटा, आपका अयोध्या का चुनाव, अंबेडकर नगर का बाई इलेक्शन। तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है।
15: ये तो पहले से था कि बीजेपी की चोरों की सरकार थी, अब ये पता चल गया कि अब ये चोरी की सरकार है। मुझे ये लगता है अब तो यही करना चाहिए कि ये सरकार बर्खास्त हो और फिर से लोकसभा के चुनाव हो, और कोई तरीका नहीं।
3: अब विपक्ष के सभी सांसद नीति आयोग के दफ्तर के पास ही धरने पर बैठ जाते हैं।
16: समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष पसीना से कभी घबराते नहीं है। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए बैरिकेडिंग लगाई हुई है।
3: पहले तो पुलिस ने विपक्षी सांसदों को बैरिकेडिंग से रोका, और जब इससे भी नहीं रुके तो उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर देती है और बस में भरकर ले जाती है। बस के अंदर अखिलेश यादव दिल्ली पुलिस पर तंज मारते हुए कहते हैं कि पुलिस उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलवाने के लिए चुनाव आयोग ले जा रही है।
6: चुनाव आयोग ले जा रही पुलिस, नहीं उन्हीं से मिलाने ले जा रही हम लोगों को, सीसी से मिलाने ले जा रही है। बीजेपी ने अब कह दिया कि बस जा सकती है चुनाव आयोग।
3: अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और अभिषेक बनर्जी समेत विपक्ष के कई सांसदों को दिल्ली पुलिस हिरासत में ले लेती है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी के दफ्तर के परिसर में घुस जाते हैं और वहीं से धरना देना शुरू कर देते हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी के प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं आपको सुनवाते हैं।
17: राहुल गांधी जी की ये आदत है, राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट को कोट करके राफेल के केस में राहुल गांधी जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल में धांधली हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही राहुल गांधी को बोला कान पकड़ के उठक बैठक करो, कान पकड़ के उठक बैठक करो और एफिडेविट सब दो कि तुमने झूठ बोला था। राहुल गांधी चुपके से जाके घर के पीछे उन्होंने एफिडेविट लिखा, मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट का नाम मैंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उसे सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। आज ठीक वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे, हम उन्हें एक्सपोज करते रहेंगे।
18: आज तक कांग्रेस ने देश की कितनी संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाया है? एक दर्जन, आधा दर्जन, डेढ़ दर्जन, दो दर्जन। भारत की थल सेना से लेके, भारत की वायुसेना से लेके, भारत के डिफेंस से लेके, भारत की LIC से लेके, भारत के HAL, SBI, SEBI, वैक्सीन, कौन सी ऐसी चीज है? भारत का न्यायालय, भारत का मीडिया। तो मैं कांग्रेस पार्टी से आज देश के सामने पूछना चाहता हूं, इस पे क्विज कॉन्टेस्ट होना चाहिए कि भारत के कितने संस्थानों को कांग्रेस ने अब तक, खासकर राहुल गांधी ने आरोपित किया है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड। चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में लोग ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहिए, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे।
0: ओमान के आरोपी पायलट हमामी ने कबूल किया है कि गजा का बदला लेने के लिए उसने इजरायली यात्रियों से भरे विमान को हाईजैक करने की आतंकी साजिश रची थी। पूछताछ के दौरान हमामी ने जांचकर्ताओं को यही बताया है कि आत्मघाती हमले में सभी इजरायली नागरिकों को बेमौत मारने का प्लान था, सब कुछ प्लान के हिसाब से था, लेकिन आतंकी हमले को अंजाम देने में नाकाम रहा।

0: पूछताछ में आतंकी पायलट का बड़ा खुलासा। इंतकाम की आग में पायलट से बना आतंकी। गाजा का बदला लेने के लिए रची थी साजिश। इसराइलियों को बेमौत मारने की तैयारी थी। तेल अवीव में विमान को क्रैश करवाना था। आतंकी पायलट का सनसनीखेज कबूलनामा। ओमानी नागरिक हमाम अल हमामी ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के सामने कई बड़े राज उगले हैं। पूछताछ के दौरान हमामी ने आतंकी साजिश की प्लानिंग से लेकर आत्मघाती हमले के पीछे मकसद का खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान हमामी ने क्या क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। सवाल, आतंकी साजिश के पीछे मकसद क्या था? जवाब, मैंने गाजा का बदला लेने के लिए ऐसा किया, मैं शहीद की तरह मरना चाहता था। सवाल, आतंकी साजिश में कौन कौन शामिल था? जवाब, मेरे साथ कोई नहीं, मैंने अकेले पूरी प्लानिंग की। सवाल, आखिर तुम्हारा प्लान क्या था? जवाब, प्लेन को हाईजैक कर 9/11 जैसी घटना को अंजाम देना। सवाल, क्या 9/11 हमले की तर्ज पर प्लान बनाया था? जवाब, मैं चाहता था कि वैसे ही हमले को अंजाम दूं। सवाल, क्या तुम किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हो? जवाब, नहीं, मेरा किसी आतंकी संगठन से लिंक नहीं। सवाल, क्या फ्लाई दुबई में काम करते वक्त प्लान बनाया? जवाब, नहीं, प्लान बनाने के बाद एयरलाइन से जुड़ा। पूछताछ के दौरान हमामी ने कबूल किया है कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने से पहले ही आत्मघाती हमले की स्क्रिप्ट लिख चुका था। प्लान को अंजाम देने के लिए ही फ्लाई दुबई से जुड़ा, क्योंकि उसे पता था कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने के बाद वो आसानी से 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। मतलब यही है कि हमामी आत्मघाती हमले की पूरी तैयारी कर चुका था।
1: He's lying there now. He's this attacker, and he calls out to the air crew, kill me, all right? So it's clear he was suicidal. That's not a question. It was clear he was going to down that plane. Oh, it's not clear, but it looks very likely that he was going to down the plane, and with all the passengers in there. And if you couple that with the what I just told you about the Islamist. Tendencies that radicalization that were found in his background, I think that's that'll give us the a pretty good clue. But again, I don't make final conclusions yet, but that's the indications we have now.
0: शुरुआती जांच में पता चला है कि हमामी ने कई मुल्कों का दौरा किया था, जिसमें अहम है सीरिया का दौरा। जांच एजेंसियों को शक है कि सीरिया में ही हमामी किसी आतंकी संगठन के संपर्क में आया या फिर किसी आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़ गया। मोसाद के हवाले से इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है।
2: हमें पता चला है कि हाल के सालों में उस आतंकवादी ने इजरायल के विरोधी देशों, जिनमें से कुछ दुश्मन देश भी थे, उनका दौरा किया था। ये दौरे कम समय के लिए थे। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उन दौरों के दौरान किसी व्यक्ति या संगठन ने उसे सक्रिय किया या भर्ती किया था।
0: टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिनबेट के एजेंट अल हमामी से पूछताछ में शामिल हैं। इजरायली अफसरों ने सवाल जवाब के लिए यूएई की यात्रा की थी। इसके पहले जानकारी मिली थी कि हमामी की कट्टरपंथी सोच के चलते एक बार उड़ान भरने से रोक दिया गया था। ये भी जांच का विषय है कि जब उसे ओमान की नेशनल एयरलाइंस से उड़ान भरने से रोका गया था, तो दुबई की एयरलाइंस में उसे मंजूरी कैसे मिली। बड़ी बात यह है कि अल हमामी ने 7 सालों तक ओमान एयर में काम किया और बीते साल फरवरी में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद जून 2025 में मोरक्को की नेशनल एयरलाइंस से जुड़ा, लेकिन सिर्फ 3 महीने तक नौकरी की। इसके बाद फ्लाई दुबई एयरलाइंस में बतौर को पायलट नौकरी करने लगा। हमामी की माने तो इसराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष का बदला लेने के लिए उसने आतंकी हमले की साजिश रची थी। ऐसे में इजरायली जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पायलट ने अकेले ही साजिश रची थी या फिर उसे किसी आतंकी संगठन ने इजरायली नागरिकों को मारने के लिए भेजा था। अभी तक इसराइल की तरफ से किसी मुल्क या आतंकी संगठन का नाम नहीं लिया गया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप यही है कि इस साजिश में ईरान का हाथ है। ट्रंप का ईरान पर यह आरोप नया नहीं है। हाईजैक की कोशिश के ठीक बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूरे मामले से ईरान का नाम जोड़ा था। तब ट्रंप ने शक जताया था कि इजरायली नागरिकों से भरे विमानों को हाईजैक करने के पीछे ईरानी सेना का हाथ हो सकता है। तब ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि साजिश 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम देने की थी।
3: I would say the answer based on what I'm hearing is yes, but we're working on it right now.
4: This guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down the plane.
3: It could have been, yeah.
0: वहीं ईरान की तरफ से ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया। ईरान का यही कहना है कि पूरा मामला यूएई और इजराइल की प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि ईरान ने पूरे मामले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। ईरान का आरोप है कि इजराइल और यूएई ने मिलकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की स्क्रिप्ट लिखी है। दावे के पीछे तर्क यही है कि विमान वाली घटना से ठीक पहले नेतन्याहू यूएई की सीक्रेट विजिट पर गए थे, जहां पर उनकी मुलाकात यूएई के राष्ट्रपति से हुई थी। ईरान इसे इजरायली साजिश से जोड़कर देखता है। ईरानी मीडिया का दावा नंबर एक, इजराइल और यूएई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ईरानी मीडिया का दावा नंबर दो, 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में फायदा लेना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर तीन, ईरान के साथ नए टकराव की स्क्रिप्ट लिखना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर चार, नेतन्याहू पर लगे घोटाले के आरोपों से ध्यान भटकाना। ईरान ने इस घटना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब देखना यही है कि जांच पूरी होने के बाद क्या सामने आता है, क्या आरोपी पायलट के तार ईरान से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी सच सामने आया है कि प्लेन से इमरजेंसी सिग्नल मिलने के बाद विमान को मार गिराने के लिए इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली थी, लड़ाकू विमानों को तुरंत भेजा था, लेकिन जब विमान ने सऊदी अरब की ओर मुड़कर आपातकालीन लैंडिंग की तो उन्हें वापस बुला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक 9/11 जैसी संभावित घटना के लिए लंबे वक्त से चले आ रहे प्रोटोकॉल के तहत विमान के करीब 14,000 फीट नीचे गिरने के बाद इजरायली वायुसेना ने कॉकपिट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो ऐसे मामलों को देखने वाली टीम को तुरंत बुलाया गया और एक कमांड सेंटर स्थापित किया गया। इसी कड़ी में लड़ाकू विमानों को भेजा गया और इजरायल ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। आज तक ब्यूरो।
5: मिडिल ईस्ट की जंग में पाकिस्तान और तुर्की की एंट्री होने जा रही है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों की बढ़ती ताकत ने सऊदी अरब को सीधे सैन्य कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया है, और इसीलिए अब पाकिस्तान और तुर्की भी सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अपने सैन्य बल तैनात करने की तैयारी में है।
0: अब मिडिल ईस्ट की जंग में उतरेंगे तुर्की और पाकिस्तान। हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी का साथ देंगे तुर्की पाकिस्तान। अब हूती का होगा काम तमाम, खाड़ी में तेज हुआ घमासान। हूती विद्रोहियों के कब्जे से मुक्त होगा बाब अल मंदेब। सऊदी के साथ आई यमन सरकार, हूती के ठिकानों पर बमबारी शुरू। ईरान अमेरिका और इसराइल की जंग आगे बढ़ी तो पूरे मिडल ईस्ट में फैल गई। ईरान पर जब जब अमेरिका हमले करता है, पलटवार में ईरान सीधे मिडल ईस्ट के देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले करता है, फिर चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो या फिर कतर और इराक। और जब से ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जंग छिड़ी है, ऐसे में सऊदी अरब को शक है कि ईरान ने तेल के दूसरे समुद्री रास्ते बाब अल मंदेब पर भी अपने प्रॉक्सी यमन के हूती विद्रोहियों को लाल सागर में उतार रखा है, क्योंकि हॉर्मुज में तनाव के बाद सऊदी अरब अपने तेल को लाल सागर के तट पर स्थित यानबू बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का उपयोग करता है। इसके बाद उस तेल को एशिया और यूरोप भेजने के लिए बाब अल मंदेब से गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, जिससे दुनिया का लगभग 10-12% समुद्री व्यापार और तेल की आपूर्ति होती है। लेकिन पिछले दिनों में हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी के कई तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। और तो और, सऊदी अरब ने यह भी आरोप लगाया कि हुती विद्रोहियों ने मक्का को भी निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि हुती विद्रोहियों ने मक्का पर हमले से साफ इनकार किया। अब एक तरफ से हुती विद्रोहियों और यमन में सऊदी के समर्थन वाली सरकार में आर पार की लड़ाई शुरू हुई है और पिछले 24 घंटों में यमन सरकार ने हुती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। साथ ही पहले हुती विद्रोहियों के साथ डील करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भी सऊदी अरब का साथ देने का ऐलान कर दिया है।
6: What's your view about the Saudis and Yemenis counterattack and offensive against the Houthis?
7: It'll all work out very well.
0: तो दूसरी तरफ सऊदी का साथ देने के लिए मक्का पैक की भी मीटिंग हुई है, जिसमें तुर्की और पाकिस्तान हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब को सैन्य मदद देने के लिए राजी हो गए हैं। आपको बता दें कि 7 अगस्त 2026 को हुए मक्का पैक के तहत ये तय हुआ था कि तीनों में से किसी एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। और जब हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी के तेल टैंकरों पर हमले किए तो उसने तुर्की और पाकिस्तान के सामने मक्का पैक की दुहाई दी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने मना कर दिया। लेकिन अब दोनों देश सैन्य समर्थन के लिए राजी हो गए हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मक्का रक्षा गठबंधन की रणनीतिक, राजनीतिक और रक्षा समिति की आपात बैठक में हमलों का सामना करने के लिए एकजुटता और साझे रुख पर मुहर लगाई गई। मक्का रक्षा गठबंधन के ढांचे के तहत इन हमलों और इनके पीछे खड़े सभी लोगों के खिलाफ सामूहिक जवाबी क्षमता को सक्रिय करने की पुष्टि की गई। इस समिति की बैठक में खासतौर पर पवित्र शहरों मक्का और मदीना को निशाना बनाने वाले हमलों की निंदा की गई। हालांकि उन्होंने हूतियों का नाम नहीं लिया और ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की सरकारी सेनाओं ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया है। यमनी सरकार के मुताबिक इस अभियान का मकसद उन सभी इलाकों को फिर से हासिल करना है जिन पर हूतियों ने 12 साल से जारी युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया है।
8: تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية والتي أضرت بالنسيج الاجتماعي الواحد وانتهكت الأعراف القبلية الثابتة وتخطت أضرارها اليمن إلى محيطه الإقليمي والدولي.
0: आपको बता दें कि पाकिस्तान के पहले से ही सऊदी अरब में सैकड़ों सैनिक तैनात हैं। रॉयटर्स ने पिछले सप्ताह खबर दी थी कि पाकिस्तान ने सऊदी समर्थित सरकार की मदद के लिए पोर्ट सिटी अदन में हथियारों से भरे 4 विमान भेजे थे। इस बीच संभावना ये भी है कि तुर्की की सरकार अगले 30 दिनों के भीतर मक्का समझौते या सैन्य तैनाती की मंजूरी को तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली के एजेंडे में लाएगी। जानकारों की माने तो तुर्की का शुरुआती योगदान यमन में लड़ाकू सैनिकों की तैनाती के बजाय सऊदी अरब की धरती पर वायु रक्षा, ड्रोन, खुफिया निगरानी और टोही से जुड़ी क्षमताओं के रूप में होने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है। अब इस मक्का पैक की चुनौती क्या है वो भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश है। उसने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ के रूप में भी भूमिका निभाई है और खुद को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, जबकि तुर्की नाटो का सदस्य है और उसने खुद को इसराइल के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर स्थापित किया है। और सवाल ये भी है कि जब यमन की सरकार हूतियों के खिलाफ निर्णायक अभियान छेड़ चुकी है तब जाकर पाकिस्तान क्यों जागा है? क्या वो सिर्फ मक्का समझौते की औपचारिकता बनाए रखना चाहता है? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि युद्ध छिड़ने पर ईरान अगर फिर सऊदी अरब पर हमले करता है तो फिर पाकिस्तान का रुख क्या होगा? आज तक ब्यूरो।
5: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: किंग्स डे कैंप से निकलने के बाद राहुल का पोस्ट लोकतंत्र के गद्दारों को बचा रही है सरकार, एक भी देशद्रोही को छोड़ा नहीं जाएगा आज तक से बोली प्रियंका, ये है कायर सरकार। विपक्षी मार्च के बाद दिन भर चला है वोल्टेज ड्रामा, सीईसी से मुलाकात की मांग के साथ धरने पर बैठे थे राहुल गांधी, प्रियंका चुनाव आयोग की सफाई, नहीं मांगा गया मीटिंग का टाइम। राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी का हमला, कहा उनकी सियासी लॉन्चिंग लगातार हो रही है फेल, विपक्ष का झूठ हो चुका है, बेनकाब 300 सांसदों के साथ की बात भी झूठी। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, 2028 तक कार्यकाल, करगिल जंग में रहे शामिल। और दिल्ली एनसीआर में लगे भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 4.9, उत्तराखंड के चमोली में था एपिसेंटर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मंगलवार दिनभर हंगामा चलता रहा, दिल्ली के किंग्सवे कैंप से निकलने के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि गद्दारों को सरकार बचा रही है, राहुल प्रियंका को हिरासत में ले लिया गया था, दोनों को करीब 2 घंटे तक किंग्सवे कैंप में रखा गया, हालांकि बाद में दोनों को छोड़ दिया गया।
1: सरकार में इस्तीफे नहीं
2: देना चाहिए।
0: राहुल गांधी के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर विपक्ष के 300 सांसदों ने सीईसी के खिलाफ मार्च निकाला है, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके अखिलेश यादव समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। इसी बीच पुलिस को चकमा देकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच गए आकाशवाणी परिसर में और वहीं से शुरू कर दिया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना।
3: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष एक साथ उबला तो राजधानी दिल्ली में संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर के रास्ते तक न सिर्फ विपक्ष ने एकता और एकजुटता दिखाई, बल्कि सरकार को कटघरे में खड़ा करके ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि चुनाव आयोग और सरकार के बीच मिलीभगत है और चुनावों में सरकार वोट चोरी करवा रही है।
4: अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है।
5: जो गलत तरीके से हुकूमत में उन्होंने आए हैं और जो गलत तरीके से उन्होंने आज कुर्सी पे बैठा, इसीलिए हम कर रहे हैं, पहले गद्दी छोड़ो, नहीं तो देश में हंगामा होगा, देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये मेरा वार्निंग है उनको।
6: चुनाव ने 17 में बेईमानी की, 19 में बेईमानी की, 22 में बेईमानी की, 24 में बेईमानी की, और बंगाल का तो पूरा का पूरा खुला खेल किया उन्होंने, किसको नहीं दिखाई देता है।
3: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर भले ही ये इंडिया गठबंधन के 19 दलों का मार्च था, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी भवन के परिसर में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं से धरना शुरू कर देते हैं, ऐसे में सारी निगाहें राहुल गांधी पर जम जाती है। हम आपको विपक्षी सांसदों का पूरा मार्च दिखाएंगे, लेकिन पहले बात राहुल गांधी की करते हैं। उधर दिल्ली पुलिस विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेकर बस में बैठाकर ले जाती है और आकाशवाणी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक पेड़ के नीचे बैठकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों से मिलने की जिद करने लगते हैं।
4: कुछ समय पहले तकरीबन 300

0: यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका, 300 एमपी को यहाँ पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं।
1: दोपहर करीब 12:30 बजे से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आकाशवाणी भवन के परिसर में धरना शुरू होता है और उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की दौड़ आकाशवाणी की तरफ लगने लगती है।
2: यहाँ पे आप लोग का होना बिल्कुल ही गैर कानूनी है।
1: ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच जैसे एक जंग सी छिड़ जाती है और फिर पुलिस प्रदर्शनकारियों को जबरन हिरासत में लेती है।
3: नेता अंदर है राहुल जी, ये लोगों की गलत जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। हम लोग बार बार डिटेन कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को बचाने का काम कर रहे हैं मोदी और शाह।
4: मेरे भाई और गणेश को बचाने के लिए पूरे क्राइम कर रहे हैं, ये गलत है, गैर कानूनी है।
1: धरने के करीब 2 घंटे बाद राहुल गांधी और आक्रामक होते हैं और सीधे सरकार, संघ और चुनाव आयोग पर वार करते हैं।
0: बीजेपी जो बोले उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के को बचाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कुछ घंटे पहले 300 लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज आए थे, वो भी देश में लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। इनमें से सारे के सारे किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आप देखना, इनमें से एक व्यक्ति बच के नहीं जाएगा।
1: आकाशवाणी में 3 घंटे से ज्यादा बीतने पर राहुल गांधी और प्रियंका वहीं बरगद के पेड़ के नीचे चटाई बिछा लेते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा आकाशवाणी में पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल समेत कई और बड़े नेता भी पहुंच जाते हैं। धरने के 5 घंटे बाद राहुल गांधी फिर से मीडिया के सामने बोलते हैं और कहते हैं कि जब तक उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलने नहीं दिया जाता वहीं बैठे रहेंगे। वो कहते हैं कि आकाशवाणी में लंबा धरना देने का इंतजाम कर लिया है।
0: हमने यहाँ पे गद्दे भी लगा दिए हैं, ठीक है, टॉयलेट भी है, चाय भी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हमें बैठना है हम बैठ लेंगे।
1: छह घंटे बाद भी धरना जारी रहता है। इस बीच आकाशवाणी में दिल्ली पुलिस पहुंचती है। इस दौरान प्रियंका तिरंगे के सामने हाथ फैलाकर खड़ी नजर आती हैं, जबकि राहुल ने पुलिस अफसर से कहा इन्हें मत छूना,
0: इसको मत छुओ झंडे को।
1: धरने के 7.5 घंटे बाद दिल्ली पुलिस फिर से आकाशवाणी पहुंचती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धरने से उठने के लिए कहती है, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे जमे रहते हैं तो काफी बहस होती है और आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जबरन उठाकर आकाशवाणी से ले जाती है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
5: राहुल गांधी और प्रियंका को आकाशवाणी भवन में धरने से उठाने के काफी मशक्कतें करनी पड़ी। राहुल और प्रियंका गांधी ज्ञानेश से मिलने के लिए अड़े हुए थे लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया, जबकि इंडिया गठबंधन ने सुबह 10:30 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू किया। अखिलेश यादव से लेकर टीएमसी के अभिषेक बनर्जी इस धरने में शामिल हुए लेकिन विपक्ष के इस मार्च को पुलिस ने बीच में रोक दिया और सांसदों को हिरासत में ले लिया गया।

0: ने राज ठाकरे के विरोध प्रदर्शन के बाद अब बारी इंडिया गठबंधन की आती है, क्योंकि सब कुछ 30 सितंबर की इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली की बैठक में तय हो चुका था। ऐसे में विपक्ष के 19 दलों के सांसद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलने सड़क पर उतरते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 300 सांसद एक साथ इकट्ठा होते हैं और पोस्टरों बैनरों के साथ निकल पड़ते हैं। राहुल जेन जी के कनेक्ट के लिए प्रदर्शन में ज्ञानेश इट्स डन ब्रो का पोस्टर लेकर पहुंचे थे। उनका मकसद इस वर्ग को सीधा मैसेज देना था। देश में आज हर चौथा वोटर जेन जी से है, तो अखिलेश यादव के हाथों में मुचुआ का पोस्टर रहता है। मुचुआ का मतलब अखिलेश यादव मुख्य चुनाव आयुक्त बताते हैं।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त वो नुचुआ तो सुना था आपने, यूपी में जो एक रूमर फैला रहा था, ये देखिए मुचुआ डाओ पीडीए बचाओ।
2: अभी जब तक पैर चलेगा चलेगा।
3: चुनाव आयोग भेदभाव कर रहा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: देखिए ये तो आपको सरकार से पूछना चाहिए कि बार बार पूरे विपक्ष को सड़क पे आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमारी सीधी सीधी तीन मांगे हैं। एक, ज्ञानेश कुमार का इमीडिएट इस्तीफा हो। दूसरा, एसआईआर रद्द हो। तीसरा, बैलेट पेपर से चुनाव हो।
0: इंडिया गठबंधन के सांसद संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नीति आयोग के दफ्तर के पास इस मार्च को बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता है। ऐसे में राहुल गांधी हाथ में तिरंगा लेकर बैरिकेडिंग पर चढ़ जाते हैं और बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश करते हैं।
4: ज्ञानेश गुप्ता की गद्दारी साबित हो चुकी है।
5: सीसी अंडरग्राउंड कहाँ छुपाया है, बीजेपी के दफ्तर में है और कहाँ है पता नहीं। सीसी जो है बीजेपी का एजेंट है, उनको बचाने की कोशिश चल रही है।
6: चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं कि गलत वोट काटे गए। लोगों के वोट काट के विपक्ष को हराना ये साबित करता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है।
7: कि ये इलेक्शन मशीन की तरह काम करते हैं, केवल चुनाव आयोग से नहीं जीतते हैं, पैसा इनके पास बहुत है। बंगाल में देखा कि फोर्स के माध्यम से कैसे बूथ लूट लिया, और बंगाल में नहीं लूटा था, उससे पहले यूपी में लूटा। आपका जो सेमीफाइनल होता है, या कहें कि कोई चीज़ करने से पहले टेस्ट करने के लिए, कुंदरकी का चुनाव इन्होंने लूटा, मीरापुर का चुनाव इन्होंने लूटा, आपका अयोध्या का चुनाव, अंबेडकर नगर का बाई इलेक्शन। तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है।
8: ये तो पहले से था कि बीजेपी की चोरों की सरकार थी, अब ये पता चल गया कि अब ये चोरी की सरकार है। मुझे ये लगता है अब तो यही करना चाहिए कि ये सरकार बर्खास्त हो और फिर से लोकसभा के चुनाव हो, और कोई तरीका नहीं।
0: अब विपक्ष के सभी सांसद नीति आयोग के दफ्तर के पास ही धरने पर बैठ जाते हैं।
9: समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष पसीना से कभी घबराते नहीं है। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए बैरिकेडिंग लगाई हुई है।
0: पहले तो पुलिस ने विपक्षी सांसदों को बैरिकेडिंग से रोका, और जब इससे भी नहीं रुके तो उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर देती है और बस में भरकर ले जाती है। बस के अंदर अखिलेश यादव दिल्ली पुलिस पर तंज मारते हुए कहते हैं कि पुलिस उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलवाने के लिए चुनाव आयोग ले जा रही है।
10: चुनाव आयोग ले जा रही पुलिस, नहीं उन्हीं से मिलाने ले जा रही हम लोगों को, सीसी से मिलाने ले जा रही है। बीजेपी ने अब कह दिया कि बस जा सकती है चुनाव आयोग।
0: अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और अभिषेक बनर्जी समेत विपक्ष के कई सांसदों को दिल्ली पुलिस हिरासत में ले लेती है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी के दफ्तर के परिसर में घुस जाते हैं और वहीं से धरना देना शुरू कर देते हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
11: राहुल गांधी के प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, आपको सुनवाते हैं।
12: राहुल गांधी जी की ये आदत है। राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट को कोट करके राफेल के केस में राहुल गांधी जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल में धांधली हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही राहुल गांधी को बोला कान पकड़ के उठक बैठक करो, कान पकड़ के उठक बैठक करो और एफिडेविट साहब दो कि तुमने झूठ बोला था। राहुल गांधी चुपके से जाके घर के पीछे उन्होंने एफिडेविट लिखा, मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट का नाम मैंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उसे सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। आज ठीक वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे, हम उन्हें एक्सपोज करते रहेंगे।
13: आज तक कांग्रेस ने देश की कितनी संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाया है? एक दर्जन, आधा दर्जन, डेढ़ दर्जन, दो दर्जन। भारत की थल सेना से लेके, भारत की वायुसेना से लेके, भारत के डिफेंस से लेके, भारत की LIC से लेके, भारत के HAL, SBI, SEBI, वैक्सीन, कौन सी ऐसी चीज है? भारत का न्यायालय, भारत का मीडिया। तो मैं कांग्रेस पार्टी से आज देश के सामने पूछना चाहता हूं, इस पे क्विज कॉन्टेस्ट होना चाहिए कि भारत के कितने संस्थानों को कांग्रेस ने अब तक, खासकर राहुल गांधी ने आरोपित किया है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड। चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में लोग ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहिए, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे।
11: ओमान के आरोपी पायलट हमामी ने कबूल किया है कि गजा का बदला लेने के लिए उसने इजरायली यात्रियों से भरे विमान को हाईजैक करने की आतंकी साजिश रची थी। पूछताछ के दौरान हमामी ने जांचकर्ताओं को यही बताया है कि आत्मघाती हमले में सभी इजरायली नागरिकों को बेमौत मारने का प्लान था, सब कुछ प्लान के हिसाब से था, लेकिन आतंकी हमले को अंजाम देने में नाकाम रहा।

0: पूछताछ में आतंकी पायलट का बड़ा खुलासा। इंतकाम की आग में पायलट से बना आतंकी। गाजा का बदला लेने के लिए रची थी साजिश। इसराइलियों को बेमौत मारने की तैयारी थी। तेल अवीव में विमान को क्रैश करवाना था। आतंकी पायलट का सनसनीखेज कबूलनामा। ओमानी नागरिक हमाम अल हमामी ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के सामने कई बड़े राज उगले हैं। पूछताछ के दौरान हमामी ने आतंकी साजिश की प्लानिंग से लेकर आत्मघाती हमले के पीछे मकसद का खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान हमामी ने क्या क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। सवाल, आतंकी साजिश के पीछे मकसद क्या था? जवाब, मैंने गाजा का बदला लेने के लिए ऐसा किया, मैं शहीद की तरह मरना चाहता था। सवाल, आतंकी साजिश में कौन कौन शामिल था? जवाब, मेरे साथ कोई नहीं, मैंने अकेले पूरी प्लानिंग की। सवाल, आखिर तुम्हारा प्लान क्या था? जवाब, प्लेन को हाईजैक कर 9/11 जैसी घटना को अंजाम देना। सवाल, क्या 9/11 हमले की तर्ज पर प्लान बनाया था? जवाब, मैं चाहता था कि वैसे ही हमले को अंजाम दूं। सवाल, क्या तुम किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हो? जवाब, नहीं, मेरा किसी आतंकी संगठन से लिंक नहीं। सवाल, क्या फ्लाई दुबई में काम करते वक्त प्लान बनाया? जवाब, नहीं, प्लान बनाने के बाद एयरलाइन से जुड़ा। पूछताछ के दौरान हमामी ने कबूल किया है कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने से पहले ही आत्मघाती हमले की स्क्रिप्ट लिख चुका था। प्लान को अंजाम देने के लिए ही फ्लाई दुबई से जुड़ा, क्योंकि उसे पता था कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने के बाद वो आसानी से 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। मतलब यही है कि हमामी आत्मघाती हमले की पूरी तैयारी कर चुका था।
1: He's lying there now. He's this attacker. And he calls out to the air crew, kill me. Kill me, all right? So it's clear he was suicidal. That's not a question. It was clear he was going to down that plane. Oh, it's not clear, but it looks very likely that he was going to down the plane and with all the passengers in there. And if you couple that with the what I just told you about the Islamist tendencies, that radicalization that are found in his background, I think that'll give us a pretty good clue. But again, I don't make final conclusions yet, but that's the indications we have now.
0: शुरुआती जांच में पता चला है कि हमामी ने कई मुल्कों का दौरा किया था, जिसमें अहम है सीरिया का दौरा। जांच एजेंसियों को शक है कि सीरिया में ही हमामी किसी आतंकी संगठन के संपर्क में आया या फिर किसी आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़ गया। मोसाद के हवाले से इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है।
2: हमें पता चला है कि हाल के सालों में उस आतंकवादी ने इजरायल के विरोधी देशों, जिनमें से कुछ दुश्मन देश भी थे, उनका दौरा किया था। ये दौरे कम समय के लिए थे। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उन दौरों के दौरान किसी व्यक्ति या संगठन ने उसे सक्रिय किया या भर्ती किया था।
0: टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिनबेट के एजेंट अल हमामी से पूछताछ में शामिल हैं। इजरायली अफसरों ने सवाल जवाब के लिए यूएई की यात्रा की थी। इसके पहले जानकारी मिली थी कि हमामी की कट्टरपंथी सोच के चलते एक बार उड़ान भरने से रोक दिया गया था। ये भी जांच का विषय है कि जब उसे ओमान की नेशनल एयरलाइंस से उड़ान भरने से रोका गया था, तो दुबई की एयरलाइंस में उसे मंजूरी कैसे मिली। बड़ी बात यह है कि अल हमामी ने 7 सालों तक ओमान एयर में काम किया और बीते साल फरवरी में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद जून 2025 में मोरक्को की नेशनल एयरलाइंस से जुड़ा, लेकिन सिर्फ 3 महीने तक नौकरी की। इसके बाद फ्लाई दुबई एयरलाइंस में बतौर को पायलट नौकरी करने लगा। हमामी की माने तो इसराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष का बदला लेने के लिए उसने आतंकी हमले की साजिश रची थी। ऐसे में इजरायली जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पायलट ने अकेले ही साजिश रची थी या फिर उसे किसी आतंकी संगठन ने इजरायली नागरिकों को मारने के लिए भेजा था। अभी तक इसराइल की तरफ से किसी मुल्क या आतंकी संगठन का नाम नहीं लिया गया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप यही है कि इस साजिश में ईरान का हाथ है। ट्रंप का ईरान पर यह आरोप नया नहीं है। हाईजैक की कोशिश के ठीक बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूरे मामले से ईरान का नाम जोड़ा था। तब ट्रंप ने शक जताया था कि इजरायली नागरिकों से भरे विमानों को हाईजैक करने के पीछे ईरानी सेना का हाथ हो सकता है। तब ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि साजिश 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम देने की थी।
3: I would say the answer based on what I'm hearing is yes, but we're working on it right now.
4: So this guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down the plane.
3: It could have been, yeah.
0: वहीं ईरान की तरफ से ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया। ईरान का यही कहना है कि पूरा मामला यूएई और इजराइल की प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि ईरान ने पूरे मामले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। ईरान का आरोप है कि इजराइल और यूएई ने मिलकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की स्क्रिप्ट लिखी है। दावे के पीछे तर्क यही है कि विमान वाली घटना से ठीक पहले नेतन्याहू यूएई की सीक्रेट विजिट पर गए थे, जहां पर उनकी मुलाकात यूएई के राष्ट्रपति से हुई थी। ईरान इसे इजरायली साजिश से जोड़कर देखता है। ईरानी मीडिया का दावा नंबर एक, इजराइल और यूएई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ईरानी मीडिया का दावा नंबर दो, 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में फायदा लेना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर तीन, ईरान के साथ नए टकराव की स्क्रिप्ट लिखना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर चार, नेतन्याहू पर लगे घोटाले के आरोपों से ध्यान भटकाना। ईरान ने इस घटना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब देखना यही है कि जांच पूरी होने के बाद क्या सामने आता है, क्या आरोपी पायलट के तार ईरान से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी सच सामने आया है कि प्लेन से इमरजेंसी सिग्नल मिलने के बाद विमान को मार गिराने के लिए इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली थी, लड़ाकू विमानों को तुरंत भेजा था, लेकिन जब विमान ने सऊदी अरब की ओर मुड़कर आपातकालीन लैंडिंग की तो उन्हें वापस बुला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक 9/11 जैसी संभावित घटना के लिए लंबे वक्त से चले आ रहे प्रोटोकॉल के तहत विमान के करीब 14,000 फीट नीचे गिरने के बाद इजरायली वायुसेना ने कॉकपिट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो ऐसे मामलों को देखने वाली टीम को तुरंत बुलाया गया और एक कमांड सेंटर स्थापित किया गया। इसी कड़ी में लड़ाकू विमानों को भेजा गया और इजरायल ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। आज तक ब्यूरो।
5: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: किंग्स डे कैंप से निकलने के बाद राहुल का पोस्ट, लोकतंत्र के गद्दारों को बचा रही है सरकार, एक भी देशद्रोही को छोड़ा नहीं जाएगा, आज तक से बोली प्रियंका, ये है कायर सरकार। विपक्षी मार्च के बाद दिन भर चला है वोल्टेज ड्रामा, सीईसी से मुलाकात की मांग के साथ धरने पर बैठे थे राहुल गांधी, प्रियंका चुनाव आयोग की सफाई, नहीं मांगा गया मीटिंग का टाइम। राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी का हमला, कहा उनकी सियासी लॉन्चिंग लगातार हो रही है फेल, विपक्ष का झूठ हो चुका है, मैंने कहा 300 सांसदों के साथ की बात भी झूठी। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, 2028 तक कार्यकाल, करगिल जंग में रहे शामिल। और दिल्ली एनसीआर में लगे भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 4.9, उत्तराखंड के चमोली में था एपिसेंटर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मंगलवार दिनभर हंगामा चलता रहा, दिल्ली के किंग्सवे कैंप से निकलने के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि गद्दारों को सरकार बचा रही है, राहुल प्रियंका को हिरासत में ले लिया गया था, दोनों को करीब 2 घंटे तक किंग्सवे कैंप में रखा गया, हालांकि बाद में दोनों को छोड़ दिया गया।
1: सरकार में इस्तीफे नहीं
2: देना चाहिए।
0: राहुल गांधी के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर विपक्ष के 300 सांसदों ने सीईसी के खिलाफ मार्च निकाला है, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके अखिलेश यादव समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। इसी बीच पुलिस को चकमा देकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच गए आकाशवाणी परिसर में और वहीं से शुरू कर दिया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना।
3: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष एक साथ उबला तो राजधानी दिल्ली में संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर के रास्ते तक न सिर्फ विपक्ष ने एकता और एकजुटता दिखाई, बल्कि सरकार को कटघरे में खड़ा करके ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि चुनाव आयोग और सरकार के बीच मिली भगत है और चुनावों में सरकार वोट चोरी करवा रही है।
4: अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है।
5: जो गलत तरीके से हुकूमत में उन्होंने आए हैं और जो गलत तरीके से उन्होंने आज कुर्सी पे बैठा, इसीलिए हम कर रहे हैं, पहले गद्दी छोड़ो, नहीं तो देश में हंगामा होगा, देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये मेरा वार्निंग है उनको।
6: चुनाव ने 17 में बेईमानी की, 19 में बेईमानी की, 22 में बेईमानी की, 24 में बेईमानी की, और बंगाल का तो पूरा का पूरा खुला खेल किया उन्होंने, किसको नहीं दिखाई देता है।
3: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर भले ही ये इंडिया गठबंधन के 19 दलों का मार्च था, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी भवन के परिसर में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं से धरना शुरू कर देते हैं, ऐसे में सारी निगाहें राहुल गांधी पर जम जाती है। हम आपको विपक्षी सांसदों का पूरा मार्च दिखाएंगे, लेकिन पहले बात राहुल गांधी की करते हैं। उधर दिल्ली पुलिस विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेकर बस में बैठाकर ले जाती है और आकाशवाणी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक पेड़ के नीचे बैठकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों से मिलने की जिद करने लगते हैं।
4: कुछ समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के MPs आए थे और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे। यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका, 300 MPs को यहाँ पे रोका गया। और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं।
3: दोपहर करीब 12:30 बजे से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आकाशवाणी भवन के परिसर में धरना शुरू होता है और उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की दौड़ आकाशवाणी की तरफ लगने लगती है।
7: यहाँ पे आप लोग का होना बिल्कुल ही गैर कानूनी है।
3: ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच जैसे एक जंग सी छिड़ जाती है और फिर पुलिस प्रदर्शनकारियों को जबरन हिरासत में लेती है।
8: हमारे नेता अंदर है राहुल जी, ये लोगों की गलत जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। हम लोग बार बार डिटेन कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को बचाने का काम कर रहे हैं मोदी और शाह।
9: मेरे भाई और गणेश को बचाने के लिए पूरे क्राइम कर रहे हैं, ये गलत है, गैर कानूनी है।
3: धरने के करीब 2 घंटे बाद राहुल गांधी और आक्रामक होते हैं और सीधे सरकार, संघ और चुनाव आयोग पर वार करते हैं।
4: बीजेपी जो बोले उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के को बचाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कुछ घंटे पहले 300 लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज आए थे, वो भी देश में लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। इनमें से सारे के सारे किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आप देखना, इनमें से एक व्यक्ति बच के नहीं जाएगा।
3: आकाशवाणी में 3 घंटे से ज्यादा बीतने पर राहुल गांधी और प्रियंका वहीं बरगद के पेड़ के नीचे चटाई बिछा लेते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा आकाशवाणी में पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल समेत कई और बड़े नेता भी पहुंच जाते हैं। धरने के 5 घंटे बाद राहुल गांधी फिर से मीडिया के सामने बोलते हैं और कहते हैं कि जब तक उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलने नहीं दिया जाता वहीं बैठे रहेंगे। वो कहते हैं कि आकाशवाणी में लंबा धरना देने का इंतजाम कर लिया है।
10: हमने यहाँ पे गद्दे भी लगा दिए हैं, ठीक है, टॉयलेट भी है, चाय भी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हमें बैठना है हम बैठ लेंगे।
3: छह घंटे बाद भी धरना जारी रहता है। इस बीच आकाशवाणी में दिल्ली पुलिस पहुंचती है। इस दौरान प्रियंका तिरंगे के सामने हाथ फैलाकर खड़ी नजर आती हैं, जबकि राहुल ने पुलिस अफसर से कहा इन्हें मत छूना,
10: इसको मत छुओ झंडे को।
3: धरने के 7.5 घंटे बाद दिल्ली पुलिस फिर से आकाशवाणी पहुंचती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धरने से उठने के लिए कहती है, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे जमे रहते हैं तो काफी बहस होती है और आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जबरन उठाकर आकाशवाणी से ले जाती है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी और प्रियंका को आकाशवाणी भवन में धरने से उठाने के काफी मशक्कतें करनी पड़ी। राहुल और प्रियंका गांधी ज्ञानेश से मिलने के लिए अड़े हुए थे लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया, जबकि इंडिया गठबंधन ने सुबह 10:30 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू किया। अखिलेश यादव से लेकर टीएमसी के अभिषेक बनर्जी इस धरने में शामिल हुए, लेकिन विपक्ष के इस मार्च को पुलिस ने बीच में रोक दिया और सांसदों को हिरासत में ले लिया गया।

0: 2 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक 4 दिन तक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी, आयसा, आप और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के विरोध प्रदर्शन के बाद अब बारी इंडिया गठबंधन की आती है, क्योंकि सब कुछ 30 सितंबर की इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली की बैठक में तय हो चुका था। ऐसे में विपक्ष के 19 दलों के सांसद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलने सड़क पर उतरते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 300 सांसद एक साथ इकट्ठा होते हैं और पोस्टरों, बैनरों के साथ निकल पड़ते हैं। राहुल जेन जी के कनेक्ट के लिए प्रदर्शन में ज्ञानेश इट्स डन ब्रो का पोस्टर लेकर पहुंचे थे। उनका मकसद इस वर्ग को सीधा मैसेज देना था। देश में आज हर चौथा वोटर जेन जी से है, तो अखिलेश यादव के हाथों में मुचुआ का पोस्टर रहता है। मुचुआ का मतलब अखिलेश यादव मुख्य चुनाव आयुक्त बताते हैं।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त मुचुआ तो सुना था आपने, यूपी में जो एक रूमर फैला रहा था, ये देखिए मुचुआ हटाओ पीडीए बचाओ।
2: अभी जब तक पैर चलेगा चलेगा।
3: चुनाव आयोग भेदभाव कर रहा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: देखिए ये तो आपको सरकार से पूछना चाहिए कि बार बार पूरे विपक्ष को सड़क पे आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमारी सीधी सीधी 3 मांगे हैं। 1, ज्ञानेश कुमार का इमीडिएट इस्तीफा हो। 2, एसआईआर रद्द हो। 3, बैलेट पेपर से चुनाव हो।
0: इंडिया गठबंधन के सांसद संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नीति आयोग के दफ्तर के पास इस मार्च को बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता है। ऐसे में राहुल गांधी हाथ में तिरंगा लेकर बैरिकेडिंग पर चढ़ जाते हैं और बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश करते हैं।
4: ज्ञानेश गुप्ता की गद्दारी साबित हो चुकी है।
5: सीसी अंडरग्राउंड कहाँ छुपाया है, बीजेपी के दफ्तर में है और कहाँ है पता नहीं। सीसी जो है बीजेपी का एजेंट है, उनको बचाने की कोशिश चल रही है।
6: चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं कि गलत वोट काटे गए। लोगों के वोट काट के विपक्ष को हराना ये साबित करता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है।
7: कि ये इलेक्शन मशीन की तरह काम करते हैं, केवल चुनाव आयोग से नहीं जीतते हैं, पैसा इनके पास बहुत है। बंगाल में देखा कि फोर्स के माध्यम से कैसे बूथ लूट लिया, और बंगाल में नहीं लूटा था, उससे पहले यूपी में लूटा। आपका जो सेमीफाइनल होता है, या कहें कि कोई चीज़ करने से पहले टेस्ट करने के लिए, कुंदरकी का चुनाव इन्होंने लूटा, मीरापुर का चुनाव इन्होंने लूटा, आपका अयोध्या का चुनाव, अंबेडकर नगर का बाई इलेक्शन। तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है।
8: ये तो पहले से था कि बीजेपी की चोरों की सरकार थी, अब ये पता चल गया कि अब ये चोरी की सरकार है। मुझे ये लगता है अब तो यही करना चाहिए कि ये सरकार बर्खास्त हो और फिर से लोकसभा के चुनाव हो, और कोई तरीका नहीं।
0: अब विपक्ष के सभी सांसद नीति आयोग के दफ्तर के पास ही धरने पर बैठ जाते हैं।
9: समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष पसीना से कभी घबराते नहीं है। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए बैरिकेडिंग लगाई हुई है।
0: पहले तो पुलिस ने विपक्षी सांसदों को बैरिकेडिंग से रोका, और जब इससे भी नहीं रुके तो उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर देती है और बस में भरकर ले जाती है। बस के अंदर अखिलेश यादव दिल्ली पुलिस पर तंज मारते हुए कहते हैं कि पुलिस उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलवाने के लिए चुनाव आयोग ले जा रही है।
10: चुनाव आयोग ले जा रही पुलिस,
11: नहीं
10: उन्हीं से मिलाने ले जा रही हम लोगों को, सीसी से मिलाने ले जा रही है। बीजेपी ने अब कह दिया कि बस जा सकती है चुनाव आयोग।
0: अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और अभिषेक बनर्जी समेत विपक्ष के कई सांसदों को दिल्ली पुलिस हिरासत में ले लेती है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी के दफ्तर के परिसर में घुस जाते हैं और वहीं से धरना देना शुरू कर देते हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
12: राहुल गांधी के प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, आपको सुनवाते हैं।
13: राहुल गांधी जी की ये आदत है, राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट को कोट करके राफेल के केस में राहुल गांधी जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल में धांधली हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही राहुल गांधी को बोला कान पकड़ के उठक बैठक करो, कान पकड़ के उठक बैठक करो और एफिडेविट साहब दो कि तुमने झूठ बोला था। राहुल गांधी चुपके से जाके घर के पीछे उन्होंने एफिडेविट लिखा, मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट का नाम मैंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उसे सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। आज ठीक वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे, हम उन्हें एक्सपोज करते रहेंगे।
14: आज तक कांग्रेस ने देश की कितनी संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाया है? एक दर्जन, आधा दर्जन, डेढ़ दर्जन, दो दर्जन। भारत की थल सेना से लेके, भारत की वायुसेना से लेके, भारत के डिफेंस से लेके, भारत की LIC से लेके, भारत के HAL, SBI, SEBI, वैक्सीन, कौन सी ऐसी चीज है? भारत का न्यायालय, भारत का मीडिया। तो मैं कांग्रेस पार्टी से आज देश के सामने पूछना चाहता हूं, इस पे क्विज कॉन्टेस्ट होना चाहिए कि भारत के कितने संस्थानों को कांग्रेस ने अब तक, खासकर राहुल गांधी ने आरोपित किया है? हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड, चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में लोग ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहिए, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे।
12: ओमान के आरोपी पायलट हमामी ने कबूल किया है कि गजा का बदला लेने के लिए उसने इजरायली यात्रियों से भरे विमान को हाईजैक करने की आतंकी साजिश रची थी। पूछताछ के दौरान हमामी ने जांचकर्ताओं को यही बताया है कि आत्मघाती हमले में सभी इजरायली नागरिकों को बेमौत मारने का प्लान था, सब कुछ प्लान के हिसाब से था, लेकिन आतंकी हमले को अंजाम देने में नाकाम रहा।

0: पूछताछ में आतंकी पायलट का बड़ा खुलासा। इंतकाम की आग में पायलट से बना आतंकी। गाजा का बदला लेने के लिए रची थी साजिश। इसराइलियों को बेमौत मारने की तैयारी थी। तेल अवीव में विमान को क्रैश करवाना था। आतंकी पायलट का सनसनीखेज कबूलनामा। ओमानी नागरिक हमाम अल हमामी ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के सामने कई बड़े राज उगले हैं। पूछताछ के दौरान हमामी ने आतंकी साजिश की प्लानिंग से लेकर आत्मघाती हमले के पीछे मकसद का खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान हमामी ने क्या क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। सवाल, आतंकी साजिश के पीछे मकसद क्या था? जवाब, मैंने गाजा का बदला लेने के लिए ऐसा किया, मैं शहीद की तरह मरना चाहता था। सवाल, आतंकी साजिश में कौन कौन शामिल था? जवाब, मेरे साथ कोई नहीं, मैंने अकेले पूरी प्लानिंग की। सवाल, आखिर तुम्हारा प्लान क्या था? जवाब, प्लेन को हाईजैक कर 9/11 जैसी घटना को अंजाम देना। सवाल, क्या 9/11 हमले की तर्ज पर प्लान बनाया था? जवाब, मैं चाहता था कि वैसे ही हमले को अंजाम दूं। सवाल, क्या तुम किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हो? जवाब, नहीं, मेरा किसी आतंकी संगठन से लिंक नहीं। सवाल, क्या फ्लाई दुबई में काम करते वक्त प्लान बनाया? जवाब, नहीं, प्लान बनाने के बाद एयरलाइन से जुड़ा। पूछताछ के दौरान हमामी ने कबूल किया है कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने से पहले ही आत्मघाती हमले की स्क्रिप्ट लिख चुका था। प्लान को अंजाम देने के लिए ही फ्लाई दुबई से जुड़ा, क्योंकि उसे पता था कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने के बाद वो आसानी से 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। मतलब यही है कि हमामी आत्मघाती हमले की पूरी तैयारी कर चुका था।
1: He's lying there now. He's this attacker, and he calls out to the air crew, "Kill me, kill me!" All right. So it's clear he was suicidal. That's not a question. It was clear he was going to down that plane. Oh, it's not clear, but it looks very likely that he was going to down the plane, and with all the passengers in there. And if you couple that with the what I just told you about the Islamist. Tendencies that radicalization that are found in his background, I think that's that'll give us a pretty good clue. But again, I don't make final conclusions yet, but that's the indications we have now.
0: शुरुआती जांच में पता चला है कि हमामी ने कई मुल्कों का दौरा किया था, जिसमें अहम है सीरिया का दौरा। जांच एजेंसियों को शक है कि सीरिया में ही हमामी किसी आतंकी संगठन के संपर्क में आया या फिर किसी आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़ गया। मोसाद के हवाले से इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है।
2: हमें पता चला है कि हाल के सालों में उस आतंकवादी ने इजरायल के विरोधी देशों, जिनमें से कुछ दुश्मन देश भी थे, उनका दौरा किया था। ये दौरे कम समय के लिए थे। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उन दौरों के दौरान किसी व्यक्ति या संगठन ने उसे सक्रिय किया या भर्ती किया था।
0: टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के एजेंट अल हमामी से पूछताछ में शामिल हैं। इजरायली अफसरों ने सवाल जवाब के लिए यूएई की यात्रा की थी। इसके पहले जानकारी मिली थी कि हमामी की कट्टरपंथी सोच के चलते एक बार उड़ान भरने से रोक दिया गया था। ये भी जांच का विषय है कि जब उसे ओमान की नेशनल एयरलाइंस से उड़ान भरने से रोका गया था, तो दुबई की एयरलाइंस में उसे मंजूरी कैसे मिली। बड़ी बात यह है कि अल हमामी ने 7 सालों तक ओमान एयर में काम किया और बीते साल फरवरी में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद जून 2025 में मोरक्को की नेशनल एयरलाइंस से जुड़ा, लेकिन सिर्फ 3 महीने तक नौकरी की। इसके बाद फ्लाई दुबई एयरलाइंस में बतौर को पायलट नौकरी करने लगा। हमामी की माने तो इसराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष का बदला लेने के लिए उसने आतंकी हमले की साजिश रची थी। ऐसे में इजरायली जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पायलट ने अकेले ही साजिश रची थी या फिर उसे किसी आतंकी संगठन ने इजरायली नागरिकों को मारने के लिए भेजा था। अभी तक इसराइल की तरफ से किसी मुल्क या आतंकी संगठन का नाम नहीं लिया गया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप यही है कि इस साजिश में ईरान का हाथ है। ट्रंप का ईरान पर यह आरोप नया नहीं है। हाईजैक की कोशिश के ठीक बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूरे मामले से ईरान का नाम जोड़ा था। तब ट्रंप ने शक जताया था कि इजरायली नागरिकों से भरे विमानों को हाईजैक करने के पीछे ईरानी सेना का हाथ हो सकता है। तब ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि साजिश 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम देने की थी।
3: I would say the answer based on what I'm hearing is yes, but we're working on it right now.
4: This guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tries to take down the plane.
3: It could have been, yeah.
0: वहीं ईरान की तरफ से ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया। ईरान का यही कहना है कि पूरा मामला यूएई और इजराइल की प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि ईरान ने पूरे मामले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। ईरान का आरोप है कि इजराइल और यूएई ने मिलकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की स्क्रिप्ट लिखी है। दावे के पीछे तर्क यही है कि विमान वाली घटना से ठीक पहले नेतन्याहू यूएई की सीक्रेट विजिट पर गए थे, जहां पर उनकी मुलाकात यूएई के राष्ट्रपति से हुई थी। ईरान इसे इजरायली साजिश से जोड़कर देखता है। ईरानी मीडिया का दावा नंबर एक, इजराइल और यूएई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ईरानी मीडिया का दावा नंबर दो, 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में फायदा लेना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर तीन, ईरान के साथ नए टकराव की स्क्रिप्ट लिखना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर चार, नेतन्याहू पर लगे घोटाले के आरोपों से ध्यान भटकाना। ईरान ने इस घटना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब देखना यही है कि जांच पूरी होने के बाद क्या सामने आता है, क्या आरोपी पायलट के तार ईरान से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी सच सामने आया है कि प्लेन से इमरजेंसी सिग्नल मिलने के बाद विमान को मार गिराने के लिए इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली थी, लड़ाकू विमानों को तुरंत भेजा था, लेकिन जब विमान ने सऊदी अरब की ओर मुड़कर आपातकालीन लैंडिंग की तो उन्हें वापस बुला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक 9/11 जैसी संभावित घटना के लिए लंबे वक्त से चले आ रहे प्रोटोकॉल के तहत विमान के करीब 14,000 फीट नीचे गिरने के बाद इजरायली वायुसेना ने कॉकपिट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो ऐसे मामलों को देखने वाली टीम को तुरंत बुलाया गया और एक कमांड सेंटर स्थापित किया गया। इसी कड़ी में लड़ाकू विमानों को भेजा गया और इजरायल ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। आज तक ब्यूरो।
5: मिडिल ईस्ट की जंग में पाकिस्तान और तुर्की की एंट्री होने जा रही है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों की बढ़ती ताकत ने सऊदी अरब को सीधे सैन्य कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया है, और इसीलिए अब पाकिस्तान और तुर्की भी सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अपने सैन्य बल तैनात करने की तैयारी में है।
0: अब मिडिल ईस्ट की जंग में उतरेंगे तुर्की और पाकिस्तान। हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी का साथ देंगे तुर्की पाकिस्तान। अब हूती का होगा काम तमाम, खाड़ी में तेज हुआ घमासान। हूती विद्रोहियों के कब्जे से मुक्त होगा बाब अल मंदेब। सऊदी के साथ आई यमन सरकार, हूती के ठिकानों पर बमबारी शुरू। ईरान अमेरिका और इजराइल की जंग आगे बढ़ी तो पूरे मिडल ईस्ट में फैल गई। ईरान पर जब जब अमेरिका हमले करता है, पलटवार में ईरान सीधे मिडल ईस्ट के देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले करता है, फिर चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो या फिर कतर और इराक। और जब से ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जंग छिड़ी है, ऐसे में सऊदी अरब को शक है कि ईरान ने तेल के दूसरे समुद्री रास्ते बाब अल मंदेब पर भी अपने प्रॉक्सी यमन के हूती विद्रोहियों को लाल सागर में उतार रखा है, क्योंकि हॉर्मुज में तनाव के बाद सऊदी अरब अपने तेल को लाल सागर के तट पर स्थित ग्यानवू बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का उपयोग करता है। इसके बाद उस तेल को एशिया और यूरोप भेजने के लिए बाब अल मंदेब से गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, जिससे दुनिया का लगभग 10-12% समुद्री व्यापार और तेल की आपूर्ति होती है। लेकिन पिछले दिनों में हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी के कई तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। और तो और, सऊदी अरब ने यह भी आरोप लगाया कि हुती विद्रोहियों ने मक्का को भी निशाना बनाने की कोशिश की, हालांकि हुती विद्रोहियों ने मक्का पर हमले से साफ इनकार किया। अब एक तरफ से हुती विद्रोहियों और यमन में सऊदी के समर्थन वाली सरकार में आर पार की लड़ाई शुरू हुई है, और पिछले 24 घंटों में यमन सरकार ने हुती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। साथ ही पहले हुती विद्रोहियों के साथ डील करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भी सऊदी अरब का साथ देने का ऐलान कर दिया है।
6: What's your view about the Saudis and Yemeni's counterattack and offensive against the Houthis?
7: It'll all work out very well.
0: तो दूसरी तरफ सऊदी का साथ देने के लिए मक्का पैक की भी मीटिंग हुई है, जिसमें तुर्की और पाकिस्तान हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब को सैन्य मदद देने के लिए राजी हो गए हैं। आपको बता दें कि 7 अगस्त 2026 को हुए मक्का पैक के तहत ये तय हुआ था कि तीनों में से किसी एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा, और जब हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी के तेल टैंकरों पर हमले किए तो उसने तुर्की और पाकिस्तान के सामने मक्का पैक की दुहाई दी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने मना कर दिया। लेकिन अब दोनों देश सैन्य समर्थन के लिए राजी हो गए हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मक्का रक्षा गठबंधन की रणनीतिक, राजनीतिक और रक्षा समिति की आपात बैठक में हमलों का सामना करने के लिए एकजुटता और साझे रुख पर मुहर लगाई गई। मक्का रक्षा गठबंधन के ढांचे के तहत इन हमलों और इनके पीछे खड़े सभी लोगों के खिलाफ सामूहिक जवाबी क्षमता को सक्रिय करने की पुष्टि की गई। इस समिति की बैठक में खासतौर पर पवित्र शहरों मक्का और मदीना को निशाना बनाने वाले हमलों की निंदा की गई। हालांकि उन्होंने हूतियों का नाम नहीं लिया, और ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की सरकारी सेनाओं ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया है। यमनी सरकार के मुताबिक इस अभियान का मकसद उन सभी इलाकों को फिर से हासिल करना है जिन पर हूतियों ने 12 साल से जारी युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया है।
8: تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية والتي أضرت بالنسيج الاجتماعي الواحد وانتهكت الأعراف القبلية الثابتة وتخطت أضرارها اليمن إلى محيطه الإقليمي والدولي।
0: आपको बता दें कि पाकिस्तान के पहले से ही सऊदी अरब में सैकड़ों सैनिक तैनात हैं। रॉयटर्स ने पिछले सप्ताह खबर दी थी कि पाकिस्तान ने सऊदी समर्थित सरकार की मदद के लिए पोर्ट सिटी अदन में हथियारों से भरे 4 विमान भेजे थे। इस बीच संभावना ये भी है कि तुर्की की सरकार अगले 30 दिनों के भीतर मक्का समझौते या सैनिक तैनाती की मंजूरी को तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली के एजेंडे में लाएगी। जानकारों की माने तो तुर्की का शुरुआती योगदान यमन में लड़ाकू सैनिकों की तैनाती के बजाय सऊदी अरब की धरती पर वायु रक्षा, ड्रोन, खुफिया निगरानी और टोही से जुड़ी क्षमताओं के रूप में होने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है। अब इस मक्का पैक की चुनौती क्या है वो भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश है। उसने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ के रूप में भी भूमिका निभाई है और खुद को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, जबकि तुर्की नाटो का सदस्य है और उसने खुद को इसराइल के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर स्थापित किया है। और सवाल ये भी है कि जब यमन की सरकार हूतियों के खिलाफ निर्णायक अभियान छेड़ चुकी है तब जाकर पाकिस्तान क्यों जागा है? क्या वो सिर्फ मक्का समझौते की औपचारिकता बनाए रखना चाहता है? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि युद्ध छिड़ने पर ईरान अगर फिर सऊदी अरब पर हमले करता है तो फिर पाकिस्तान का रुख क्या होगा? आज तक ब्यूरो।
5: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: किंग्स वे कैंप से निकलने के बाद राहुल का पोस्ट लोकतंत्र के गद्दारों को बचा रही है सरकार, एक भी देशद्रोही को छोड़ा नहीं जाएगा, आज तक से बोली प्रियंका, ये है कायर सरकार। विपक्षी मार्च के बाद दिन भर चला है वोल्टेज ड्रामा, सीईसी से मुलाकात की मांग के साथ धरने पर बैठे थे राहुल गांधी, प्रियंका चुनाव आयोग की सफाई, नहीं मांगा गया मीटिंग का टाइम। राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी का हमला, कहा उनकी सियासी लॉन्चिंग लगातार हो रही है फेल, विपक्ष का झूठ हो चुका है बेनकाब, 300 सांसदों के साथ की बात भी झूठी। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, 2028 तक कार्यकाल, करगिल जंग में रहे शामिल। और दिल्ली एनसीआर में लगे भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 4.9, उत्तराखंड के चमोली में था एपिसेंटर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मंगलवार दिनभर हंगामा चलता रहा, दिल्ली के किंग्स वे कैंप से निकलने के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि गद्दारों को सरकार बचा रही है, राहुल प्रियंका को हिरासत में ले लिया गया था, दोनों को करीब 2 घंटे तक किंग्स वे कैंप में रखा गया, हालांकि बाद में दोनों को छोड़ दिया गया। राहुल गांधी के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर विपक्ष के 300 सांसदों ने सीईसी के खिलाफ मार्च निकाला है, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके अखिलेश यादव समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। इसी बीच पुलिस को चकमा देकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच गए आकाशवाणी परिसर में और वहीं से शुरू कर दिया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष एक साथ उबला तो राजधानी दिल्ली में संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर के रास्ते तक न सिर्फ विपक्ष ने एकता और एकजुटता दिखाई, बल्कि सरकार को कटघरे में खड़ा करके ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि चुनाव आयोग और सरकार के बीच मिलीभगत है और चुनावों में सरकार वोट चोरी करवा रही है।
2: अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है।
3: जो गलत तरीके से हुकूमत में उन्होंने आए हैं और जो गलत तरीके से उन्होंने आज कुर्सी पे बैठा, इसीलिए हम कर रहे हैं, पहले गद्दी छोड़ो, नहीं तो देश में हंगामा होगा, देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये मेरा वार्निंग है उनको।
4: चुनाव ने 17 में बेईमानी की, 19 में बेईमानी की, 22 में बेईमानी की, 24 में बेईमानी की, और बंगाल का पूरा खुला खेल किया उन्होंने, किसको नहीं दिखाई देता है।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर भले ही ये इंडिया गठबंधन के 19 दलों का मार्च था, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी भवन के परिसर में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं से धरना शुरू कर देते हैं, ऐसे में सारी निगाहें राहुल गांधी पर जम जाती है। हम आपको विपक्षी सांसदों का पूरा मार्च दिखाएंगे, लेकिन पहले बात राहुल गांधी की करते हैं। उधर दिल्ली पुलिस विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेकर बस में बैठा कर ले जाती है और आकाशवाणी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक पेड़ के नीचे बैठकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों से मिलने की जिद करने लगते हैं।
2: कुछ समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के MPs आए थे और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे, यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका, 300 MPs को यहाँ पे रोका गया, और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं।
1: दोपहर करीब 12:30 बजे से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आकाशवाणी भवन के परिसर में धरना शुरू होता है और उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की दौड़ आकाशवाणी की तरफ लगने लगती है।
5: यहाँ पे आप लोग का होना बिल्कुल ही गैर कानूनी है।
1: ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच जैसे एक जंग सी छिड़ जाती है और फिर पुलिस प्रदर्शनकारियों को जबरन हिरासत में लेती है।
6: हमारे नेता अंदर है राहुल जी, ये लोगों की गलत जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। हम लोग बार बार डिटेन कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को बचाने का काम कर रहे हैं मोदी और शाह।
7: डरे हुए और गणेश को बचाने के लिए पूरे क्राइम कर रहे हैं, ये गलत है, गैर कानूनी है।
1: धरने के करीब 2 घंटे बाद राहुल गांधी और आक्रामक होते हैं और सीधे सरकार, संघ और चुनाव आयोग पर वार करते हैं।
2: बीजेपी जो बोले उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कुछ घंटे पहले 300 लोकसभा और राज्यसभा के

0: भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। इनमें से सारे के सारे सानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देखना, इनमें से एक व्यक्ति बच के नहीं जाएगा।
1: आकाशवाणी में 3 घंटे से ज्यादा बीतने पर राहुल गांधी और प्रियंका वहीं बरगद के पेड़ के नीचे चटाई बिछा लेते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा आकाशवाणी में पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल समेत कई और बड़े नेता भी पहुंच जाते हैं। धरने के 5 घंटे बाद राहुल गांधी फिर से मीडिया के सामने बोलते हैं और कहते हैं कि जब तक उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलने नहीं दिया जाता वहीं बैठे रहेंगे। वो कहते हैं कि आकाशवाणी में लंबा धरना देने का इंतजाम कर लिया है।
2: हमने यहाँ पे गद्दे भी लगा दिए हैं, ठीक है, टॉयलेट भी है, चाय भी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना हमें बैठना है हम बैठ लेंगे।
1: छह घंटे बाद भी धरना जारी रहता है। इस बीच आकाशवाणी में दिल्ली पुलिस पहुंचती है। इस दौरान प्रियंका तिरंगे के सामने हाथ फैलाकर खड़ी नजर आती हैं, जबकि राहुल ने पुलिस अफसर से कहा इन्हें मत छूना,
0: इसको मत छुओ झंडे को।
1: धरने के 7.5 घंटे बाद दिल्ली पुलिस फिर से आकाशवाणी पहुंचती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धरने से उठने के लिए कहती है, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे जमे रहते हैं तो काफी बहस होती है और आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जबरन उठाकर आकाशवाणी से ले जाती है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: राहुल गांधी और प्रियंका को आकाशवाणी भवन में धरने से उठाने के काफी मशक्कतें करनी पड़ी। राहुल और प्रियंका गांधी ज्ञानेश से मिलने के लिए अड़े हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया। जबकि इंडिया गठबंधन ने सुबह 10:30 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू किया। अखिलेश यादव से लेकर टीएमसी के अभिषेक बनर्जी इस धरने में शामिल हुए, लेकिन विपक्ष के इस मार्च को पुलिस ने बीच में रोक दिया और सांसदों को हिरासत में ले लिया गया।

0: 2 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक 4 दिन तक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी, आयसा, आप और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के विरोध प्रदर्शन के बाद अब बारी इंडिया गठबंधन की आती है, क्योंकि सब कुछ 30 सितंबर की इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली की बैठक में तय हो चुका था। ऐसे में विपक्ष के 19 दलों के सांसद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलने सड़क पर उतरते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 300 सांसद एक साथ इकट्ठा होते हैं और पोस्टरों, बैनरों के साथ निकल पड़ते हैं। राहुल जेन जी के कनेक्ट के लिए प्रदर्शन में ज्ञानेश इट्स डन ब्रो का पोस्टर लेकर पहुंचे थे। उनका मकसद इस वर्ग को सीधा मैसेज देना था। देश में आज हर चौथा वोटर जेन जी से है, तो अखिलेश यादव के हाथों में मुचुआ का पोस्टर रहता है। मुचुआ का मतलब अखिलेश यादव मुख्य चुनाव आयुक्त बताते हैं।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त मुचुआ तो सुना था आपने, यूपी में जो एक रूमर फैला रहा था, ये देखिए मुचुआ डाओ पीडीए बचाओ।
2: अभी जब तक पैर चलेगा चलेगा।
3: चुनाव आयोग भेदभाव कर रहा है।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: देखिए ये तो आपको सरकार से पूछना चाहिए कि बार बार पूरे विपक्ष को सड़क पे आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमारी सीधी सीधी तीन मांगे हैं। एक, ज्ञानेश कुमार का इमीडिएट इस्तीफा हो। दूसरा, एसआईआर रद्द हो। तीसरा, बैलेट पेपर से चुनाव हो।
0: इंडिया गठबंधन के सांसद संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नीति आयोग के दफ्तर के पास इस मार्च को बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता है। ऐसे में राहुल गांधी हाथ में तिरंगा लेकर बैरिकेडिंग पर चढ़ जाते हैं और बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश करते हैं।
5: ज्ञानेश गुप्ता की गद्दारी साबित हो चुकी है।
6: सीसी अंडरग्राउंड कहाँ छुपाया है बीजेपी के दफ्तर।

0: उत्तर में है और कहाँ है पता नहीं। सीएससी जो है बीजेपी का एजेंट है, उनको बचाने की कोशिश चल रही है।
1: चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं कि गलत वोट काटे गए, लोगों के वोट काट के विपक्ष को हराना ये साबित करता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है।
2: कि ये इलेक्शन मशीन की तरह काम करते हैं, केवल चुनाव आयोग से नहीं जीतते, पैसा इनके पास बहुत है। बंगाल में देखा कि फोर्स के माध्यम से कैसे बूथ लूट लिया, और बंगाल में नहीं लूटा था, उससे पहले यूपी में लूटा। आपका जो सेमीफाइनल होता है, या कहें कि कोई चीज़ करने से पहले टेस्ट करने के लिए, कुंदरकी का चुनाव इन्होंने लूटा, मीरापुर का चुनाव इन्होंने लूटा, आपका अयोध्या का चुनाव, अम्बेडकर नगर का बाई इलेक्शन। तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है।
3: ये तो पहले से था कि बीजेपी की चोरों की सरकार थी, अब ये पता चल गया कि अब ये चोरी की सरकार है। मुझे ये लगता है अब तो यही करना चाहिए कि ये सरकार बर्खास्त हो और फिर से लोकसभा के चुनाव हो, और कोई तरीका नहीं।
4: अब विपक्ष के सभी सांसद नीति आयोग के दफ्तर के पास ही धरने पर बैठ जाते हैं।
5: समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष पसीना से कभी घबराते नहीं है, बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए बैरिकेडिंग लगाई हुई है।
4: पहले तो पुलिस ने विपक्षी सांसदों को बैरिकेडिंग से रोका, और जब इससे भी नहीं रुके तो उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर देती है और बस में भरकर ले जाती है। बस के अंदर अखिलेश यादव दिल्ली पुलिस पर तंज मारते हुए कहते हैं कि पुलिस उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलवाने के लिए चुनाव आयोग ले जा रही है।
6: चुनाव आयोग ले जा रही पुलिस,
7: नहीं
6: उन्हीं से मिलाने ले जा रही हम लोगों को, सीसी से मिलाने ले जा रही है। बीजेपी ने अब कह दिया कि बस जा सकती है चुनाव आयोग।
4: अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और अभिषेक बनर्जी समेत विपक्ष के कई सांसदों को दिल्ली पुलिस हिरासत में ले लेती है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी के दफ्तर के परिसर में घुस जाते हैं और वहीं से धरना देना शुरू कर देते हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
8: राहुल गांधी के प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं आपको सुनवाते हैं।
9: राहुल गांधी जी की ये आदत है, राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट को कोट करके राफेल के केस में राहुल गांधी जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल में धांधली हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही राहुल गांधी को बोला कान पकड़ के उठक बैठक करो, कान पकड़ के उठक बैठक करो और एफिडेविट सब दो कि तुमने झूठ बोला था। राहुल गांधी चुपके से जाके घर के पीछे उन्होंने एफिडेविट लिखा, मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट का नाम मैंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उसे सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। आज ठीक वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे, हम उन्हें एक्सपोज करते रहेंगे।
10: आज तक कांग्रेस ने देश की कितनी संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाया है? एक दर्जन, आधा दर्जन, डेढ़ दर्जन, दो दर्जन। भारत की थल सेना से लेके, भारत की वायुसेना से लेके, भारत के डिफेंस से लेके, भारत की LIC से लेके, भारत के HAL, SBI, SEBI, वैक्सीन, कौन सी ऐसी चीज है? भारत का न्यायालय, भारत का मीडिया। तो मैं कांग्रेस पार्टी से आज देश के सामने पूछना चाहता हूं, इस पे क्विज कॉन्टेस्ट होना चाहिए कि भारत के कितने संस्थानों को कांग्रेस ने अब तक, खासकर राहुल गांधी ने आरोपित किया है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड। चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में लोग ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहिए, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे।
8: ओमान के आरोपी पायलट हमामी ने कबूल किया है कि गजा का बदला लेने के लिए उसने इजरायली यात्रियों से भरे विमान को हाईजैक करने की आतंकी साजिश रची थी। पूछताछ के दौरान हमामी ने जांचकर्ताओं को यही बताया है कि आत्मघाती हमले में सभी इजरायली नागरिकों को बेमौत मारने का प्लान था, सब कुछ प्लान के हिसाब से था, लेकिन आतंकी हमले को अंजाम देने में नाकाम रहा।

0: पूछताछ में आतंकी पायलट का बड़ा खुलासा। इंतकाम की आग में पायलट से बना आतंकी। गाजा का बदला लेने के लिए रची थी साजिश। इसराइलियों को बेमौत मारने की तैयारी थी। तेल अवीव में विमान को क्रैश करवाना था। आतंकी पायलट का सनसनीखेज कबूलनामा। ओमानी नागरिक हमाम अल हमामी ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के सामने कई बड़े राज उगले हैं। पूछताछ के दौरान हमामी ने आतंकी साजिश की प्लानिंग से लेकर आत्मघाती हमले के पीछे मकसद का खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान हमामी ने क्या क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। सवाल, आतंकी साजिश के पीछे मकसद क्या था? जवाब, मैंने गाजा का बदला लेने के लिए ऐसा किया, मैं शहीद की तरह मरना चाहता था। सवाल, आतंकी साजिश में कौन कौन शामिल था? जवाब, मेरे साथ कोई नहीं, मैंने अकेले पूरी प्लानिंग की। सवाल, आखिर तुम्हारा प्लान क्या था? जवाब, प्लेन को हाईजैक कर 9/11 जैसी घटना को अंजाम देना। सवाल, क्या 9/11 हमले की तर्ज पर प्लान बनाया था? जवाब, मैं चाहता था कि वैसे ही हमले को अंजाम दूं। सवाल, क्या तुम किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हो? जवाब, नहीं, मेरा किसी आतंकी संगठन से लिंक नहीं। सवाल, क्या फ्लाई दुबई में काम करते वक्त प्लान बनाया? जवाब, नहीं, प्लान बनाने के बाद एयरलाइन से जुड़ा। पूछताछ के दौरान हमामी ने कबूल किया है कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने से पहले ही आत्मघाती हमले की स्क्रिप्ट लिख चुका था। प्लान को अंजाम देने के लिए ही फ्लाई दुबई से जुड़ा, क्योंकि उसे पता था कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने के बाद वो आसानी से 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। मतलब यही है कि हमामी आत्मघाती हमले की पूरी तैयारी कर चुका था।
1: He's lying there now. He's this attacker, and he calls out to the aircrew, "Kill me, kill me!" All right. So it's clear he was suicidal. That's not a question. It was clear he was going to down that plane. Oh, it's not clear, but it looks very likely that he was going to down the plane, and with all the passengers in there. And if you couple that with the what I just told you about the Islamist. Tendencies that radicalization that are found in his background, I think that's that'll give us a pretty good clue. But again, I don't make final conclusions yet, but that's the indications we have now.
0: शुरुआती जांच में पता चला है कि हमामी ने कई मुल्कों का दौरा किया था, जिसमें अहम है सीरिया का दौरा। जांच एजेंसियों को शक है कि सीरिया में ही हमामी किसी आतंकी संगठन के संपर्क में आया या फिर किसी आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़ गया। मोसाद के हवाले से इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। हमें पता चला है कि हाल के सालों में उस आतंकवादी ने इजरायल के विरोधी देशों, जिनमें से कुछ दुश्मन देश भी थे, उनका दौरा किया था। ये दौरे कम समय के लिए थे। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उन दौरों के दौरान किसी व्यक्ति या संगठन ने उसे सक्रिय किया या भर्ती किया था। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के एजेंट अल हमामी से पूछताछ में शामिल हैं। इजरायली अफसरों ने सवाल जवाब के लिए यूएई की यात्रा की थी। इसके पहले जानकारी मिली थी कि हमामी की कट्टरपंथी सोच के चलते एक बार उड़ान भरने से रोक दिया गया था। ये भी जांच का विषय है कि जब उसे ओमान की नेशनल एयरलाइंस से उड़ान भरने से रोका गया था, तो दुबई की एयरलाइंस में उसे मंजूरी कैसे मिली। बड़ी बात यह है कि अल हमामी ने 7 सालों तक ओमान एयर में काम किया और बीते साल फरवरी में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद जून 2025 में मोरक्को की नेशनल एयरलाइंस से जुड़ा, लेकिन सिर्फ 3 महीने तक नौकरी की। इसके बाद फ्लाई दुबई एयरलाइंस में बतौर को पायलट नौकरी करने लगा। हमामी की माने तो इसराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष का बदला लेने के लिए उसने आतंकी हमले की साजिश रची थी। ऐसे में इजरायली जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पायलट ने अकेले ही साजिश रची थी या फिर उसे किसी आतंकी संगठन ने इजरायली नागरिकों को मारने के लिए भेजा था। अभी तक इसराइल की तरफ से किसी मुल्क या आतंकी संगठन का नाम नहीं लिया गया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप यही है कि इस साजिश में ईरान का हाथ है।
2: On Fly Dubai, do you think Iran was responsible for that terrorist attack?
3: I do, I personally do.
2: On Fly Dubai, do you think Iran was responsible for that terrorist attack?
3: I do, I personally do.
0: ट्रंप का ईरान पर यह आरोप नया नहीं है। हाईजैक की कोशिश के ठीक बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूरे मामले से ईरान का नाम जोड़ा था। तब ट्रंप ने शक जताया था कि इजरायली नागरिकों से भरे विमानों को हाईजैक करने के पीछे ईरानी सेना का हाथ हो सकता है। तब ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि साजिश 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम देने की थी। वही ईरान की तरफ से ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया। ईरान का यही कहना है कि पूरा मामला यूएई और इसराइल की प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि ईरान ने पूरे मामले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। ईरान का आरोप है कि इसराइल और यूएई ने मिलकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की स्क्रिप्ट लिखी है। दावे के पीछे तर्क यही है कि विमान वाली घटना से ठीक पहले नेतन्याहू यूएई की सीक्रेट विजिट पर गए थे, जहां पर उनकी मुलाकात यूएई के राष्ट्रपति से हुई थी। ईरान इसे इजरायली साजिश से जोड़कर देखता है। ईरानी मीडिया का दावा नंबर एक, इसराइल और यूएई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ईरानी मीडिया का दावा नंबर दो, 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में फायदा लेना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर तीन, ईरान के साथ नए टकराव की स्क्रिप्ट लिखना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर चार, नेतन्याहू पर लगे घोटाले के आरोपों से ध्यान भटकाना। ईरान ने इस घटना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब देखना यही है कि जांच पूरी होने के बाद क्या सामने आता है, क्या आरोपी पायलट के तार ईरान से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी सच सामने आया है कि प्लेन से इमरजेंसी सिग्नल मिलने के बाद विमान को मार गिराने के लिए इसराइल ने पूरी तैयारी कर ली थी, लड़ाकू विमानों को तुरंत भेजा था, लेकिन जब विमान ने सऊदी अरब की ओर मुड़कर आपातकालीन लैंडिंग की तो उन्हें वापस बुला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक 9/11 जैसी संभावित घटना के लिए लंबे वक्त से चले आ रहे प्रोटोकॉल के तहत विमान के करीब 14,000 फीट नीचे गिरने के बाद इजरायली वायुसेना ने कॉकपिट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो ऐसे मामलों को देखने वाली टीम को तुरंत बुलाया गया और एक कमांड सेंटर स्थापित किया गया। इसी कड़ी में लड़ाकू विमानों को भेजा गया और इसराइल ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। आज तक ब्यूरो।
4: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: किंग्स डे कैंप से निकलने के बाद राहुल का पोस्ट लोकतंत्र के गद्दारों को बचा रही है सरकार, एक भी देशद्रोही को छोड़ा नहीं जाएगा आज तक से बोली प्रियंका, ये है कायर सरकार। विपक्षी मार्च के बाद दिन भर चला है वोल्टेज ड्रामा, सीईसी से मुलाकात की मांग के साथ धरने पर बैठे थे राहुल गांधी, प्रियंका चुनाव आयोग की सफाई, नहीं मांगा गया मीटिंग का टाइम। राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी का हमला, कहा उनकी सियासी लॉन्चिंग लगातार हो रही है फेल, विपक्ष। राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी का हमला, कहा उनकी सियासी लॉन्चिंग लगातार हो रही है फेल, विपक्ष का झूठ हो चुका है बेनकाब, 300 सांसदों के साथ की बात भी झूठी। मार्शल और दिल्ली एनसीआर में लगे भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 4.9, उत्तराखंड के चमोली में था एपिसेंटर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मंगलवार दिनभर हंगामा चलता रहा, दिल्ली के किंग्सवे कैंप से निकलने के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि गद्दारों को सरकार बचा रही है, राहुल प्रियंका को हिरासत में ले लिया गया था, दोनों को करीब 2 घंटे तक किंग्सवे कैंप में रखा गया, हालांकि बाद में दोनों को छोड़ दिया गया। राहुल गांधी के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर विपक्ष के 300 सांसदों ने सीईसी के खिलाफ मार्च निकाला है, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके अखिलेश यादव समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। इसी बीच पुलिस को चकमा देकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच गए आकाशवाणी परिसर में और वहीं से शुरू कर दिया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष एक साथ उबला तो राजधानी दिल्ली में संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर के रास्ते तक न सिर्फ विपक्ष ने एकता और एकजुटता दिखाई, बल्कि सरकार को कटघरे में खड़ा करके ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि चुनाव आयोग और सरकार के बीच मिलीभगत है और चुनावों में सरकार वोट चोरी करवा रही है।
2: अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है।
3: जो गलत तरीके से हुकूमत में उन्होंने आए हैं और जो गलत तरीके से उन्होंने आज कुर्सी पे बैठा, इसीलिए हम कर रहे हैं, पहले गद्दी छोड़ो, नहीं तो देश में हंगामा होगा, देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये मेरा वार्निंग है उनको।
4: चुनाव ने 17 में बेईमानी की, 19 में बेईमानी की, 22 में बेईमानी की, 24 में बेईमानी की और बंगाल का तो पूरा का पूरा खुला खेल किया उन्होंने, किसको नहीं दिखाई देता है।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर भले ही ये इंडिया गठबंधन के 19 दलों का मार्च था, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी भवन के परिसर में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं से धरना शुरू कर देते हैं, ऐसे में सारी निगाहें राहुल गांधी पर जम जाती है। हम आपको विपक्षी सांसदों का पूरा मार्च दिखाएंगे, लेकिन पहले बात राहुल गांधी की करते हैं। उधर दिल्ली पुलिस विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेकर बस में बैठाकर ले जाती है और आकाशवाणी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक पेड़ के नीचे बैठकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों से मिलने की जिद करने लगते हैं।
2: कुछ समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के MPs आए थे और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे, यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका, 300 MPs को यहाँ पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं।
1: दोपहर करीब 12:30 बजे से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आकाशवाणी भवन के परिसर में धरना शुरू होता है और उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की दौड़ आकाशवाणी की तरफ लगने लगती है।
5: यहाँ पे आप लोग का होना बिल्कुल ही गैर कानूनी है।
1: ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच जैसे एक जंग सी छिड़ जाती है और फिर पुलिस प्रदर्शनकारियों को जबरन हिरासत में लेती है।
6: हमारे नेता अंदर है राहुल जी, ये लोगों की गलत जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। हम लोगों बार बार डिटेन कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को बचाने का काम कर रहे हैं मोदी और शाह।
7: नरे और गणेश को बचाने के लिए पूरे क्राइम कर रहे हैं, ये गलत है, गैर कानूनी है।
1: धरने के करीब 2 घंटे बाद राहुल गांधी और आक्रामक होते हैं और सीधे सरकार, संघ और चुनाव आयोग पर वार करते हैं।
2: बीजेपी जो बोले उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के को बचाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कुछ घंटे पहले 300 लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज आए थे, वो भी देश में लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। इनमें से सारे के सारे किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आप देखना, इनमें से एक व्यक्ति बच के नहीं जाएगा।
1: आकाशवाणी में 3 घंटे से ज्यादा बीतने पर राहुल गांधी और प्रियंका वहीं बरगद के पेड़ के नीचे चटाई बिछा लेते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा आकाशवाणी में पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल समेत कई और बड़े नेता भी पहुंच जाते हैं। धरने के 5 घंटे बाद राहुल गांधी फिर से मीडिया के सामने बोलते हैं और कहते हैं कि जब तक उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलने नहीं दिया जाता वहीं बैठे रहेंगे। वो कहते हैं कि आकाशवाणी में लंबा धरना देने का इंतजाम कर लिया है,
2: हमने यहाँ पे गद्दे भी लगा दिए हैं, ठीक है, टॉयलेट भी है, चाय भी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हमें बैठना है हम बैठ लेंगे।
1: छह घंटे बाद भी धरना जारी रहता है। इस बीच आकाशवाणी में दिल्ली पुलिस पहुंचती है। इस दौरान प्रियंका तिरंगे के सामने हाथ फैलाकर खड़ी नजर आती हैं, जबकि राहुल ने पुलिस अफसर से कहा इन्हें मत छूना,
2: इसको मत छुओ झंडे को।
1: धरने के 7.5 घंटे बाद दिल्ली पुलिस फिर से आकाशवाणी पहुंचती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धरने से उठने के लिए कहती है, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे जमे रहते हैं तो काफी बहस होती है और आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जबरन उठाकर आकाशवाणी से ले जाती है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी और प्रियंका को आकाशवाणी भवन में धरने से उठाने के काफी मशक्कतें करनी पड़ी। राहुल और प्रियंका गांधी ज्ञानेश से मिलने के लिए अड़े हुए थे लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया, जबकि इंडिया गठबंधन ने सुबह 10:30 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू किया। अखिलेश यादव से लेकर टीएमसी के अभिषेक बनर्जी इस धरने में शामिल हुए लेकिन विपक्ष के इस मार्च को पुलिस ने बीच में रोक दिया और सांसदों को हिरासत में ले लिया गया।

0: 2 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक 4 दिन तक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी, आयसा, आप और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के विरोध प्रदर्शन के बाद अब बारी इंडिया गठबंधन की आती है, क्योंकि सब कुछ 30 सितंबर की इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली की बैठक में तय हो चुका था। ऐसे में विपक्ष के 19 दलों के सांसद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलने सड़क पर उतरते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 300 सांसद एक साथ इकट्ठा होते हैं और पोस्टरों, बैनरों के साथ निकल पड़ते हैं। राहुल जेन जी के कनेक्ट के लिए प्रदर्शन में ज्ञानेश इट्स डन ब्रो का पोस्टर लेकर पहुंचे थे। उनका मकसद इस वर्ग को सीधा मैसेज देना था, देश में आज हर चौथा वोटर जेन जी से है। तो अखिलेश यादव के हाथों में मुचुआ का पोस्टर रहता है। मुचुआ का मतलब अखिलेश यादव मुख्य चुनाव आयुक्त बताते हैं।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुना था आपने यूपी में जो एक रूमर फैला रहा था, ये देखिए मुचुआ डाओ पीडीए बचाओ।
2: अभी जब तक पैर चलेगा चलेगा।
3: चुनाव आयोग भेदभाव कर रहा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: देखिए ये तो आपको सरकार से पूछना चाहिए कि बार बार पूरे विपक्ष को सड़क पे आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमारी सीधी सीधी तीन मांगे हैं। एक, ज्ञानेश कुमार का इमीडिएट इस्तीफा हो। दूसरा, एसआईआर रद्द हो। तीसरा, बैलेट पेपर से चुनाव हो।
0: इंडिया गठबंधन के सांसद संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नीति आयोग के दफ्तर के पास इस मार्च को बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता है। ऐसे में राहुल गांधी हाथ में तिरंगा लेकर बैरिकेडिंग पर चढ़ जाते हैं और बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश करते हैं।
4: ज्ञानेश गुप्ता की गद्दारी साबित हो चुकी है।
5: सीसी अंडरग्राउंड कहाँ छुपाया है, बीजेपी के दफ्तर में है और कहाँ है पता नहीं। सीसी जो है बीजेपी का एजेंट है, उनको बचाने की कोशिश चल रही है।
6: चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं कि गलत वोट काटे गए। लोगों के वोट काट के विपक्ष को हराना ये साबित करता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है।
7: कि ये इलेक्शन मशीन की तरह काम करते हैं, केवल चुनाव आयोग से नहीं जीतते हैं, पैसा इनके पास बहुत है। बंगाल में देखा कि फोर्स के माध्यम से कैसे बूथ लूट लिया, और बंगाल में नहीं लूटा था, उससे पहले यूपी में लूटा। आपका जो सेमीफाइनल होता है, या कहें कि कोई चीज करने से पहले टेस्ट करने के लिए, कुंदरकी का चुनाव इन्होंने लूटा, मीरापुर का चुनाव इन्होंने लूटा, आपका अयोध्या का चुनाव, अंबेडकर नगर का बाई इलेक्शन। तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है।
8: ये तो पहले से था कि बीजेपी की चोरों की सरकार थी, अब ये पता चल गया कि अब ये चोरी की सरकार है। मुझे ये लगता है अब तो यही करना चाहिए कि ये सरकार बर्खास्त हो और फिर से लोकसभा के चुनाव हो, और कोई तरीका नहीं।
0: अब विपक्ष के सभी सांसद नीति आयोग के दफ्तर के पास ही धरने पर बैठ जाते हैं।
9: समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष पसीना से कभी घबराते नहीं है। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए बैरिकेडिंग लगाई हुई है।
0: पहले तो पुलिस ने विपक्षी सांसदों को बैरिकेडिंग से रोका, और जब इससे भी नहीं रुके तो उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर देती है और बस में भरकर ले जाती है। बस के अंदर अखिलेश यादव दिल्ली पुलिस पर तंज मारते हुए कहते हैं कि पुलिस उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलवाने के लिए चुनाव आयोग ले जा रही है।
10: चुनाव आयोग ले जा रही पुलिस, नहीं उन्हीं से मिलाने ले जा रही हम लोगों को, सीसी से मिलाने ले जा रही है। बीजेपी ने अब कह दिया कि बस जा सकती है चुनाव आयोग।
0: अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और अभिषेक बनर्जी समेत विपक्ष के कई सांसदों को दिल्ली पुलिस हिरासत में ले लेती है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी के दफ्तर के परिसर में घुस जाते हैं और वहीं से धरना देना शुरू कर देते हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
11: राहुल गांधी के प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, आपको सुनवाते हैं।
12: राहुल गांधी जी की ये आदत है, राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट को कोट करके राफेल के केस में राहुल गांधी जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल में धांधली हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही राहुल गांधी को बोला कान पकड़ के उठक बैठक करो और एफिडेविट सब 2002 की तुमने झूठ बोला था। राहुल गांधी चुपके से जाके घर के पीछे उन्होंने एफिडेविट लिखा, मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट का नाम मैंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उसे सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। आज ठीक वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे, हम उन्हें एक्सपोज करते रहेंगे।
13: आज तक कांग्रेस ने देश की कितनी संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाया है? एक दर्जन, आधा दर्जन, डेढ़ दर्जन, दो दर्जन। भारत की थल सेना से लेके, भारत की वायुसेना से लेके, भारत के डिफेंस से लेके, भारत की LIC से लेके, भारत के HAL, SBI, SEBI, वैक्सीन, कौन सी ऐसी चीज है? भारत का न्यायालय, भारत का मीडिया। तो मैं कांग्रेस पार्टी से आज देश के सामने पूछना चाहता हूं, इस पे क्विज कॉन्टेस्ट होना चाहिए कि भारत के कितने संस्थानों को कांग्रेस ने अब तक, खासकर राहुल गांधी ने आरोपित किया है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड, चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में लोग ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहिए। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे।
11: ओमान के आरोपी पायलट हमामी ने कबूल किया है कि गजा का बदला लेने के लिए उसने इजरायली यात्रियों से भरे विमान को हाईजैक करने की आतंकी साजिश रची थी। पूछताछ के दौरान हमामी ने जांचकर्ताओं को यही बताया है कि आत्मघाती हमले में सभी इजरायली नागरिकों को बेमौत मारने का प्लान था, सब कुछ प्लान के हिसाब से था, लेकिन आतंकी हमले को अंजाम देने में नाकाम रहा।

0: पूछताछ में आतंकी पायलट का बड़ा खुलासा। इंतकाम की आग में पायलट से बना आतंकी। गाजा का बदला लेने के लिए रची थी साजिश। इसराइलियों को बेमौत मारने की तैयारी थी। तेल अवीव में विमान को क्रैश करवाना था। आतंकी पायलट का सनसनीखेज कबूलनामा। ओमानी नागरिक हमाम अल हमामी ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के सामने कई बड़े राज उगले हैं। पूछताछ के दौरान हमामी ने आतंकी साजिश की प्लानिंग से लेकर आत्मघाती हमले के पीछे मकसद का खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान हमामी ने क्या क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। सवाल, आतंकी साजिश के पीछे मकसद क्या था? जवाब, मैंने गाजा का बदला लेने के लिए ऐसा किया, मैं शहीद की तरह मरना चाहता था। सवाल, आतंकी साजिश में कौन कौन शामिल था? जवाब, मेरे साथ कोई नहीं, मैंने अकेले पूरी प्लानिंग की। सवाल, आखिर तुम्हारा प्लान क्या था? जवाब, प्लेन को हाईजैक कर 9/11 जैसी घटना को अंजाम देना। सवाल, क्या 9/11 हमले की तर्ज पर प्लान बनाया था? जवाब, मैं चाहता था कि वैसे ही हमले को अंजाम दूं। सवाल, क्या तुम किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हो? जवाब, नहीं, मेरा किसी आतंकी संगठन से लिंक नहीं। सवाल, क्या फ्लाई दुबई में काम करते वक्त प्लान बनाया? जवाब, नहीं, प्लान बनाने के बाद एयरलाइन से जुड़ा। पूछताछ के दौरान हमामी ने कबूल किया है कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने से पहले ही आत्मघाती हमले की स्क्रिप्ट लिख चुका था। प्लान को अंजाम देने के लिए ही फ्लाई दुबई से जुड़ा, क्योंकि उसे पता था कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने के बाद वो आसानी से 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। मतलब यही है कि हमामी आत्मघाती हमले की पूरी तैयारी कर चुका था।
1: He's lying there now. He's this attacker, and he calls out to the aircrew, "Kill me, kill me!" All right. So it's clear he was suicidal. That's not a question. It was clear he was going to down that plane. Oh, it's not clear, but it looks very likely that he was going to down the plane, and with all the passengers in there. And if you couple that with the what I just told you about the Islamist. Tendencies that radicalization that are found in his background, I think that's that'll give us a pretty good clue. But again, I don't make final conclusions yet, but that's the indications we have now.
0: शुरुआती जांच में पता चला है कि हमामी ने कई मुल्कों का दौरा किया था, जिसमें अहम है सीरिया का दौरा। जांच एजेंसियों को शक है कि सीरिया में ही हमामी किसी आतंकी संगठन के संपर्क में आया या फिर किसी आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़ गया। मोसाद के हवाले से इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। हमें पता चला है कि हाल के सालों में उस आतंकवादी ने इजरायल के विरोधी देशों, जिनमें से कुछ दुश्मन देश भी थे, उनका दौरा किया था। ये दौरे कम समय के लिए थे। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उन दौरों के दौरान किसी व्यक्ति या संगठन ने उसे सक्रिय किया या भर्ती किया था। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के एजेंट अल हमामी से पूछताछ में शामिल हैं। इजरायली अफसरों ने सवाल जवाब के लिए यूएई की यात्रा की थी। इसके पहले जानकारी मिली थी कि हमामी की कट्टरपंथी सोच के चलते एक बार उड़ान भरने से रोक दिया गया था। ये भी जांच का विषय है कि जब उसे ओमान की नेशनल एयरलाइंस से उड़ान भरने से रोका गया था, तो दुबई की एयरलाइंस में उसे मंजूरी कैसे मिली। बड़ी बात यह है कि अल हमामी ने 7 सालों तक ओमान एयर में काम किया और बीते साल फरवरी में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद जून 2025 में मोरक्को की नेशनल एयरलाइंस से जुड़ा, लेकिन सिर्फ 3 महीने तक नौकरी की। इसके बाद फ्लाई दुबई एयरलाइंस में बतौर को पायलट नौकरी करने लगा। हमामी की माने तो इसराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष का बदला लेने के लिए उसने आतंकी हमले की साजिश रची थी। ऐसे में इजरायली जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पायलट ने अकेले ही साजिश रची थी या फिर उसे किसी आतंकी संगठन ने इजरायली नागरिकों को मारने के लिए भेजा था। अभी तक इसराइल की तरफ से किसी मुल्क या आतंकी संगठन का नाम नहीं लिया गया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप यही है कि इस साजिश में ईरान का हाथ है। ट्रंप का ईरान पर यह आरोप नया नहीं है। हाईजैक की कोशिश के ठीक बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूरे मामले से ईरान का नाम जोड़ा था। तब ट्रंप ने शक जताया था कि इजरायली नागरिकों से भरे विमानों को हाईजैक करने के पीछे ईरानी सेना का हाथ हो सकता है। तब ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि साजिश 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम देने की थी।
2: I would say the answer based on what I'm hearing is yes, but we're working on it right now.
3: Mr. President, this guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down the plane.
2: It could have been, yeah.
0: वहीं ईरान की तरफ से ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया। ईरान का यही कहना है कि पूरा मामला यूएई और इजराइल की प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि ईरान ने पूरे मामले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। ईरान का आरोप है कि इजराइल और यूएई ने मिलकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की स्क्रिप्ट लिखी है। दावे के पीछे तर्क यही है कि विमान वाली घटना से ठीक पहले नेतन्याहू यूएई की सीक्रेट विजिट पर गए थे, जहां पर उनकी मुलाकात यूएई के राष्ट्रपति से हुई थी। ईरान इसे इजरायली साजिश से जोड़कर देखता है। ईरानी मीडिया का दावा नंबर एक, इजराइल और यूएई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ईरानी मीडिया का दावा नंबर दो, 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में फायदा लेना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर तीन, ईरान के साथ नए टकराव की स्क्रिप्ट लिखना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर चार, नेतन्याहू पर लगे घोटाले के आरोपों से ध्यान भटकाना। ईरान ने इस घटना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब देखना यही है कि जांच पूरी होने के बाद क्या सामने आता है, क्या आरोपी पायलट के तार ईरान से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी सच सामने आया है कि प्लेन से इमरजेंसी सिग्नल मिलने के बाद विमान को मार गिराने के लिए इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली थी, लड़ाकू विमानों को तुरंत भेजा था, लेकिन जब विमान ने सऊदी अरब की ओर मुड़कर आपातकालीन लैंडिंग की तो उन्हें वापस बुला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक 9/11 जैसी संभावित घटना के लिए लंबे वक्त से चले आ रहे प्रोटोकॉल के तहत विमान के करीब 14,000 फीट नीचे गिरने के बाद इजरायली वायुसेना ने कॉकपिट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो ऐसे मामलों को देखने वाली टीम को तुरंत बुलाया गया और एक कमांड सेंटर स्थापित किया गया। इसी कड़ी में लड़ाकू विमानों को भेजा गया और इजरायल ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। आज तक ब्यूरो।
4: मिडिल ईस्ट की जंग में पाकिस्तान और तुर्की की एंट्री होने जा रही है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों की बढ़ती ताकत ने सऊदी अरब को सीधे सैन्य कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया है, और इसीलिए अब पाकिस्तान और तुर्की भी सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अपने सैन्य बल तैनात करने की तैयारी में है।
0: अब मिडिल ईस्ट की जंग में उतरेंगे तुर्की और पाकिस्तान। हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी का साथ देंगे तुर्की पाकिस्तान। अब हूती का होगा काम तमाम, खाड़ी में तेज हुआ घमासान। हूती विद्रोहियों के कब्जे से मुक्त होगा बाब अल मंदेब। सऊदी के साथ आई यमन सरकार, हूती के ठिकानों पर बमबारी शुरू। ईरान अमेरिका और इजराइल की जंग आगे बढ़ी तो पूरे मिडल ईस्ट में फैल गई। ईरान पर जब जब अमेरिका हमले करता है, पलटवार में ईरान सीधे मिडल ईस्ट के देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले करता है, फिर चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो या फिर कतर और इराक। और जब से ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जंग छिड़ी है, ऐसे में सऊदी अरब को शक है कि ईरान ने तेल के दूसरे समुद्री रास्ते बाब अल मंदेब पर भी अपने प्रॉक्सी यमन के हूती विद्रोहियों को लाल सागर में उतार रखा है, क्योंकि हॉर्मुज में तनाव के बाद सऊदी अरब अपने तेल को लाल सागर के तट पर स्थित ग्यानवू बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का उपयोग करता है। इसके बाद उस तेल को एशिया और यूरोप भेजने के लिए बाब अल मंदेब से गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, जिससे दुनिया का लगभग 10-12% समुद्री व्यापार और तेल की आपूर्ति होती है। लेकिन पिछले दिनों में हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी के कई तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। और तो और, सऊदी अरब ने यह भी आरोप लगाया कि हुती विद्रोहियों ने मक्का को भी निशाना बनाने की कोशिश की, हालांकि हुती विद्रोहियों ने मक्का पर हमले से साफ इनकार किया। अब एक तरफ से हुती विद्रोहियों और यमन में सऊदी के समर्थन वाली सरकार में आर पार की लड़ाई शुरू हुई है, और पिछले 24 घंटों में यमन सरकार ने हुती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। साथ ही पहले हुती विद्रोहियों के साथ डील करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भी सऊदी अरब का साथ देने का ऐलान कर दिया है।
5: What's your view about the Saudis and Yemenis counterattack and offensive against the Houthis?
6: It'll all work out very well.
0: तो दूसरी तरफ सऊदी का साथ देने के लिए मक्का पैक की भी मीटिंग हुई है, जिसमें तुर्की और पाकिस्तान हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब को सैन्य मदद देने के लिए राजी हो गए हैं। आपको बता दें कि 7 अगस्त 2026 को हुए मक्का पैक के तहत ये तय हुआ था कि तीनों में से किसी एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा, और जब हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी के तेल टैंकरों पर हमले किए तो उसने तुर्की और पाकिस्तान के सामने मक्का पैक की दुहाई दी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने मना कर दिया। लेकिन अब दोनों देश सैन्य समर्थन के लिए राजी हो गए हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मक्का रक्षा गठबंधन की रणनीतिक, राजनीतिक और रक्षा समिति की आपात बैठक में हमलों का सामना करने के लिए एकजुटता और साझे रुख पर मुहर लगाई गई। मक्का रक्षा गठबंधन के ढांचे के तहत इन हमलों और इनके पीछे खड़े सभी लोगों के खिलाफ सामूहिक जवाबी क्षमता को सक्रिय करने की पुष्टि की गई। इस समिति की बैठक में खासतौर पर पवित्र शहरों मक्का और मदीना को निशाना बनाने वाले हमलों की निंदा की गई। हालांकि उन्होंने हूतियों का नाम नहीं लिया, और ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की सरकारी सेनाओं ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया है। यमनी सरकार के मुताबिक इस अभियान का मकसद उन सभी इलाकों को फिर से हासिल करना है जिन पर हूतियों ने 12 साल से जारी युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया है।
7: تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية والتي أضرت بالنسيج الاجتماعي الواحد وانتهكت الأعراف القبلية الثابتة وتخطت أضرارها اليمن إلى محيطه الإقليمي والدولي।
0: आपको बता दें कि पाकिस्तान के पहले से ही सऊदी अरब में सैकड़ों सैनिक तैनात हैं। रॉयटर्स ने पिछले सप्ताह खबर दी थी कि पाकिस्तान ने सऊदी समर्थित सरकार की मदद के लिए पोर्ट सिटी अदन में हथियारों से भरे 4 विमान भेजे थे। इस बीच संभावना ये भी है कि तुर्की की सरकार अगले 30 दिनों के भीतर मक्का समझौते या सैनिक तैनाती की मंजूरी को तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली के एजेंडे में लाएगी। जानकारों की माने तो तुर्की का शुरुआती योगदान यमन में लड़ाकू सैनिकों की तैनाती के बजाय सऊदी अरब की धरती पर वायु रक्षा, ड्रोन, खुफिया निगरानी और टोही से जुड़ी क्षमताओं के रूप में होने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है। अब इस मक्का पैक की चुनौती क्या है वो भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश है। उसने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ के रूप में भी भूमिका निभाई है और खुद को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, जबकि तुर्की नाटो का सदस्य है और उसने खुद को इसराइल के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर स्थापित किया है। और सवाल ये भी है कि जब यमन की सरकार हूतियों के खिलाफ निर्णायक अभियान छेड़ चुकी है, तब जाकर पाकिस्तान क्यों जागा है? क्या वो सिर्फ मक्का समझौते की औपचारिकता बनाए रखना चाहता है? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि युद्ध छिड़ने पर ईरान अगर फिर सऊदी अरब पर हमले करता है तो फिर पाकिस्तान का रुख क्या होगा? आज तक ब्यूरो।
4: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: किंग्सवे कैंप से निकलने के बाद राहुल का पोस्ट, लोकतंत्र के गद्दारों को बचा रही है सरकार, एक भी देशद्रोही को छोड़ा नहीं जाएगा, आज तक से बोली प्रियंका, ये है कायर सरकार। विपक्षी मार्च के बाद दिन भर चला है वोल्टेज ड्रामा, सीईसी से मुलाकात की मांग के साथ धरने पर बैठे थे राहुल गांधी, प्रियंका चुनाव आयोग की सफाई, नहीं मांगा गया मीटिंग का टाइम। राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी का हमला, कहा उनकी सियासी लॉन्चिंग लगातार हो रही है फेल, विपक्ष का झूठ हो चुका है बेनकाब, 300 सांसदों के साथ की बात भी झूठी। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, 2028 तक कार्यकाल, करगिल जंग में रहे शामिल। और दिल्ली एनसीआर में लगे भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 4.9, उत्तराखंड के चमोली में था एपिसेंटर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मंगलवार दिनभर हंगामा चलता रहा दिल्ली के किंग्सवे कैंप से निकलने के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि गद्दारों को सरकार बचा रही है, राहुल प्रियंका को हिरासत में ले लिया गया था, दोनों को करीब 2 घंटे तक किंग्सवे कैंप में रखा गया, हालांकि बाद में दोनों को छोड़ दिया गया।
1: सरकार में इस्तीफे नहीं
0: चाहिए। राहुल गांधी के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर विपक्ष के 300 सांसदों ने सीईसी के खिलाफ मार्च निकाला है, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके अखिलेश यादव समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। इसी बीच पुलिस को चकमा देकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच गए आकाशवाणी परिसर में और वहीं से शुरू कर दिया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना।
2: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष एक साथ उबला तो राजधानी दिल्ली में संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर के रास्ते तक न सिर्फ विपक्ष ने एकता और एकजुटता दिखाई, बल्कि सरकार को कटघरे में खड़ा करके ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि चुनाव आयोग और सरकार के बीच मिलीभगत है और चुनावों में सरकार वोट चोरी करवा रही है।
3: अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है।
4: जो गलत तरीके से हुकूमत में उन्होंने आए हैं और जो गलत तरीके से उन्होंने आज कुर्सी पे बैठा, इसीलिए हम कर रहे हैं, पहले गद्दी छोड़ो, नहीं तो देश में हंगामा होगा, देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये मेरा वार्निंग है उनको।
5: चुनाव ने 17 में बेईमानी की, 19 में बेईमानी की, 22 में बेईमानी की, 24 में बेईमानी की और बंगाल का तो पूरा का पूरा खुला खेल किया उन्होंने, किसको नहीं दिखाई देता है।
2: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर भले ही ये इंडिया गठबंधन के 19 दलों का मार्च था, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी भवन के परिसर में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं से धरना शुरू कर देते हैं, ऐसे में सारी निगाहें राहुल गांधी पर जम जाती है। हम आपको विपक्षी सांसदों का पूरा मार्च दिखाएंगे, लेकिन पहले बात राहुल गांधी की करते हैं। उधर दिल्ली पुलिस विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेकर बस में बैठा कर ले जाती है और आकाशवाणी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक पेड़ के नीचे बैठकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों से मिलने की जिद करने लगते हैं।
3: कुछ समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के MPs आए थे और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे। यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका, 300 MPs को यहाँ पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं।
2: दोपहर करीब 12:30 बजे से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आकाशवाणी भवन के परिसर में धरना शुरू होता है और उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की दौड़ आकाशवाणी की तरफ लगने लगती है।
6: यहाँ पे आप लोग का होना बिल्कुल ही गैर कानूनी है।
2: ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच जैसे एक जंग सी छिड़ जाती है और फिर पुलिस प्रदर्शनकारियों को जबरन हिरासत में लेती है।
7: हमारे नेता अंदर है राहुल जी, ये लोगों की गलत जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। हम लोग बार बार रिटर्न कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को बचाने का काम कर रहे हैं मोदी और शाह।
8: डरे हुए और गणेश को बचाने के लिए पूरे क्राइम कर रहे हैं, ये गलत है, गैर कानूनी है।
2: धरने के करीब 2 घंटे बाद राहुल गांधी और आक्रामक होते हैं और सीधे सरकार, संघ और चुनाव आयोग पर वार करते हैं।
3: बीजेपी जो बोले उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के को बचाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कुछ घंटे पहले 300 लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज आए थे, वो भी देश में लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। इनमें से सारे के सारे सानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देखना, इनमें से एक व्यक्ति बच के नहीं जाएगा।
2: आकाशवाणी में 3 घंटे से ज्यादा बीतने पर राहुल गांधी और प्रियंका वहीं बरगद के पेड़ के नीचे चटाई बिछा लेते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा आकाशवाणी में पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल समेत कई और बड़े नेता भी पहुंच जाते हैं। धरने के 5 घंटे बाद राहुल गांधी फिर से मीडिया के सामने बोलते हैं और कहते हैं कि जब तक उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलने नहीं दिया जाता वहीं बैठे रहेंगे। वो कहते हैं कि आकाशवाणी में लंबा धरना देने का इंतजाम कर लिया है।
9: हमने यहाँ पे गद्दे भी लगा दिए हैं, ठीक है, टॉयलेट भी है, चाय भी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना हमें बैठना है हम बैठ लेंगे।
2: छह घंटे बाद भी धरना जारी रहता है। इस बीच आकाशवाणी में दिल्ली पुलिस पहुंचती है। इस दौरान प्रियंका तिरंगे के सामने हाथ फैलाकर खड़ी नजर आती हैं, जबकि राहुल ने पुलिस अफसर से कहा इन्हें मत छूना,
9: इसको मत छुओ झंडे को।

0: धरने के 7.5 घंटे बाद दिल्ली पुलिस फिर से आकाशवाणी पहुंचती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धरने से उठने के लिए कहती है, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे जमे रहते हैं तो काफी बहस होती है और आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जबरन उठाकर आकाशवाणी से ले जाती है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: राहुल गांधी और प्रियंका को आकाशवाणी भवन में धरने से उठाने के काफी मशक्कतें करनी पड़ी। राहुल और प्रियंका गांधी ज्ञानेश से मिलने के लिए अड़े हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया, जबकि इंडिया गठबंधन ने सुबह 10:30 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू किया। अखिलेश यादव से लेकर टीएमसी के अभिषेक बनर्जी इस धरने में शामिल हुए, लेकिन विपक्ष के इस मार्च को पुलिस ने बीच में रोक दिया और सांसदों को हिरासत में ले लिया गया।

0: 2 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक 4 दिन तक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी, आयसा, आप और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के विरोध प्रदर्शन के बाद अब बारी इंडिया गठबंधन की आती है, क्योंकि सब कुछ 30 सितंबर की इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली की बैठक में तय हो चुका था। ऐसे में विपक्ष के 19 दलों के सांसद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलने सड़क पर उतरते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 300 सांसद एक साथ इकट्ठा होते हैं और पोस्टरों, बैनरों के साथ निकल पड़ते हैं। राहुल जेन जी के कनेक्ट के लिए प्रदर्शन में ज्ञानेश इट्स डन ब्रो का पोस्टर लेकर पहुंचे थे। उनका मकसद इस वर्ग को सीधा मैसेज देना था। देश में आज हर चौथा वोटर जेन जी से है, तो अखिलेश यादव के हाथों में मुचुआ का पोस्टर रहता है। मुचुआ का मतलब अखिलेश यादव मुख्य चुनाव आयुक्त बताते हैं।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुना था आपने यूपी में जो एक रूमर फैला रहा था, ये देखिए मुचुआ डाओ पीडीए बचाओ।
2: अभी जब तक पैर चलेगा चलेगा।
3: चुनाव आयोग भेदभाव कर रहा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: देखिए ये तो आपको सरकार से पूछना चाहिए कि बार बार पूरे विपक्ष को सड़क पे आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमारी सीधी सीधी तीन मांगे हैं। एक, ज्ञानेश कुमार का इमीडिएट इस्तीफा हो। दूसरा, एसआईआर रद्द हो। तीसरा, बैलेट पेपर से चुनाव हो।
0: इंडिया गठबंधन के सांसद संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नीति आयोग के दफ्तर के पास इस मार्च को बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता है। ऐसे में राहुल गांधी हाथ में तिरंगा लेकर बैरिकेडिंग पर चढ़ जाते हैं और बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश करते हैं।
4: ज्ञानेश गुप्ता की गद्दारी साबित हो चुकी है।
5: सीसी अंडरग्राउंड कहाँ छुपाया है, बीजेपी के दफ्तर में है और कहाँ है पता नहीं। सीसी जो है बीजेपी का एजेंट है, उनको बचाने की कोशिश चल रही है।
6: चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं कि गलत वोट काटे गए। लोगों के वोट काट के विपक्ष को हराना ये साबित करता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है।
7: कि ये इलेक्शन मशीन की तरह काम करते हैं, केवल चुनाव आयोग से नहीं जीतते, पैसा इनके पास बहुत है। बंगाल में देखा कि फोर्स के माध्यम से कैसे बूथ लूट लिया, और बंगाल में नहीं लूटा था, उससे पहले यूपी में लूटा। आपका जो सेमीफाइनल होता है, या कहें कि कोई चीज करने से पहले टेस्ट करने के लिए, कुंदरकी का चुनाव इन्होंने लूटा, मीरापुर का चुनाव इन्होंने लूटा, आपका अयोध्या का चुनाव, अंबेडकर नगर का बाई इलेक्शन। तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है।
8: ये तो पहले से था कि बीजेपी की चोरों की सरकार थी, अब ये पता चल गया कि अब ये चोरी की सरकार है। मुझे ये लगता है अब तो यही करना चाहिए कि ये सरकार बर्खास्त हो और फिर से लोकसभा के चुनाव हो, और कोई तरीका नहीं।
0: अब विपक्ष के सभी सांसद नीति आयोग के दफ्तर के पास ही धरने पर बैठ जाते हैं।
9: समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष पसीना से कभी घबराते नहीं है। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए बैरिकेडिंग लगाई हुई है।
0: पहले तो पुलिस ने विपक्षी सांसदों को बैरिकेडिंग से रोका, और जब इससे भी नहीं रुके तो उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर देती है और बस में भरकर ले जाती है। बस के अंदर अखिलेश यादव दिल्ली पुलिस पर तंज मारते हुए कहते हैं कि पुलिस उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलवाने के लिए चुनाव आयोग ले जा रही।

0: है।
1: चुनाव आयोग, चुनाव आयोग ले जा रही पुलिस, नहीं उन्हीं से मिलाने ले जा रही हम लोगों को, सीसी से मिलाने ले जा रही है। बीजेपी ने अब कह दिया कि बस जा सकती है चुनाव आयोग।
2: अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और अभिषेक बनर्जी समेत विपक्ष के कई सांसदों को दिल्ली पुलिस हिरासत में ले लेती है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी के दफ्तर के परिसर में घुस जाते हैं और वहीं से धरना देना शुरू कर देते हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: राहुल गांधी के प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं आपको सुनवाते हैं।
4: राहुल गांधी जी की ये आदत है, राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट को कोट करके राफेल के केस में राहुल गांधी जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल में धांधली हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही राहुल गांधी को बोला कान पकड़ के उठक बैठक करो, कान पकड़ के उठक बैठक करो और एफिडेविट साहब दो कि तुमने झूठ बोला था। राहुल गांधी चुपके से जाके घर के पीछे उन्होंने एफिडेविट लिखा, मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट का नाम मैंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उसे सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। आज ठीक वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे, हम उन्हें एक्सपोज करते रहेंगे।
5: आज तक कांग्रेस ने देश की कितनी संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाया है? एक दर्जन, आधा दर्जन, डेढ़ दर्जन, दो दर्जन। भारत की थल सेना से लेके, भारत की वायुसेना से लेके, भारत के डिफेंस से लेके, भारत की LIC से लेके, भारत के HAL, SBI, SEBI, वैक्सीन, कौन सी ऐसी चीज है? भारत का न्यायालय, भारत का मीडिया। तो मैं कांग्रेस पार्टी से आज देश के सामने पूछना चाहता हूं, इस पे क्विज कॉन्टेस्ट होना चाहिए कि भारत के कितने संस्थानों को कांग्रेस ने अब तक, खासकर राहुल गांधी ने आरोपित किया है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड। चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में लोग ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहिए, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे।
3: ओमान के आरोपी पायलट हमामी ने कबूल किया है कि गजा का बदला लेने के लिए उसने इजरायली यात्रियों से भरे विमान को हाईजैक करने की आतंकी साजिश रची थी। पूछताछ के दौरान हमामी ने जांचकर्ताओं को यही बताया है कि आत्मघाती हमले में सभी इजरायली नागरिकों को बेमौत मारने का प्लान था, सब कुछ प्लान के हिसाब से था, लेकिन आतंकी हमले को अंजाम देने में नाकाम रहा।

0: पूछताछ में आतंकी पायलट का बड़ा खुलासा। इंतकाम की आग में पायलट से बना आतंकी। गाजा का बदला लेने के लिए रची थी साजिश। इसराइलियों को बेमौत मारने की तैयारी थी। तेल अवीव में विमान को क्रैश करवाना था। आतंकी पायलट का सनसनीखेज कबूलनामा। ओमानी नागरिक हमाम अल हमामी ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के सामने कई बड़े राज उगले हैं। पूछताछ के दौरान हमामी ने आतंकी साजिश की प्लानिंग से लेकर आत्मघाती हमले के पीछे मकसद का खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान हमामी ने क्या क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। सवाल, आतंकी साजिश के पीछे मकसद क्या था? जवाब, मैंने गाजा का बदला लेने के लिए ऐसा किया, मैं शहीद की तरह मरना चाहता था। सवाल, आतंकी साजिश में कौन कौन शामिल था? जवाब, मेरे साथ कोई नहीं, मैंने अकेले पूरी प्लानिंग की। सवाल, आखिर तुम्हारा प्लान क्या था? जवाब, प्लेन को हाईजैक कर 9/11 जैसी घटना को अंजाम देना। सवाल, क्या 9/11 हमले की तर्ज पर प्लान बनाया था? जवाब, मैं चाहता था कि वैसे ही हमले को अंजाम दूं। सवाल, क्या तुम किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हो? जवाब, नहीं, मेरा किसी आतंकी संगठन से लिंक नहीं। सवाल, क्या फ्लाई दुबई में काम करते वक्त प्लान बनाया? जवाब, नहीं, प्लान बनाने के बाद एयरलाइन से जुड़ा। पूछताछ के दौरान हमामी ने कबूल किया है कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने से पहले ही आत्मघाती हमले की स्क्रिप्ट लिख चुका था। प्लान को अंजाम देने के लिए ही फ्लाई दुबई से जुड़ा, क्योंकि उसे पता था कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने के बाद वो आसानी से 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। मतलब यही है कि हमामी आत्मघाती हमले की पूरी तैयारी कर चुका था।
1: This attacker, and he calls out to the air crew, kill me, all right? So it's clear he was suicidal. That's not a question. It was clear he was going to down that plane. Oh, it's not clear, but it looks very likely that he was going to down the plane, and with all the passengers in there. And if you couple that with the what I just told you about the Islamist tendencies, that radicalization, that. Were found in his background, I think that's that'll give us a pretty good clue. But again, I don't make final conclusions yet, but that's the indications we have now.
0: शुरुआती जांच में पता चला है कि हमामी ने कई मुल्कों का दौरा किया था, जिसमें अहम है सीरिया का दौरा। जांच एजेंसियों को शक है कि सीरिया में ही हमामी किसी आतंकी संगठन के संपर्क में आया, या फिर किसी आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़ गया। मोसाद के हवाले से इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है।
2: हमें पता चला है कि हाल के सालों में उस आतंकवादी ने इजरायल के विरोधी देशों, जिनमें से कुछ दुश्मन देश भी थे, उनका दौरा किया था। ये दौरे कम समय के लिए थे। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उन दौरों के दौरान किसी व्यक्ति या संगठन ने उसे सक्रिय किया या भर्ती किया था।
0: टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के एजेंट अल हमामी से पूछताछ में शामिल हैं। इसराइली अफसरों ने सवाल जवाब के लिए यूएई की यात्रा की थी। इसके पहले जानकारी मिली थी कि हमामी की कट्टरपंथी सोच के चलते एक बार उड़ान भरने से रोक दिया गया था। ये भी जांच का विषय है कि जब उसे ओमान की नेशनल एयरलाइंस से उड़ान भरने से रोका गया था, तो दुबई की एयरलाइंस में उसे मंजूरी कैसे मिली। बड़ी बात यह है कि अल हमामी ने 7 सालों तक ओमान एयर में काम किया और बीते साल फरवरी में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद जून 2025 में मोरक्को की नेशनल एयरलाइन से जुड़ा, लेकिन सिर्फ 3 महीने तक नौकरी की। इसके बाद फ्लाई दुबई एयरलाइंस में बतौर को पायलट नौकरी करने लगा। हमामी की माने तो इसराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष का बदला लेने के लिए उसने आतंकी हमले की साजिश रची थी। ऐसे में इजरायली जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पायलट ने अकेले ही साजिश रची थी, या फिर उसे किसी आतंकी संगठन ने इजरायली नागरिकों को मारने के लिए भेजा था। अभी तक इसराइल की तरफ से किसी मुल्क या आतंकी संगठन का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप यही है कि इस साजिश में ईरान का हाथ है।
3: On Fly Dubai, do you think Iran was responsible for that terrorist attack?
4: I do, I personally do.
3: On Fly Dubai, do you think Iran was responsible for that terrorist attack?
4: I do, I personally do.
0: ट्रंप का ईरान पर यह आरोप नया नहीं है। हाईजैक की कोशिश के ठीक बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूरे मामले से ईरान का नाम जोड़ा था। तब ट्रंप ने शक जताया था कि इजरायली नागरिकों से भरे विमानों को हाईजैक करने के पीछे ईरानी सेना का हाथ हो सकता है। तब ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि साजिश 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम देने की थी। वही ईरान की तरफ से ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया। ईरान का यही कहना है कि पूरा मामला यूएई और इसराइल की प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि ईरान ने पूरे मामले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। ईरान का आरोप है कि इसराइल और यूएई ने मिलकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की स्क्रिप्ट लिखी है। दावे के पीछे तर्क यही है कि विमान वाली घटना से ठीक पहले नेतन्याहू यूएई की सीक्रेट विजिट पर गए थे, जहां पर उनकी मुलाकात यूएई के राष्ट्रपति से हुई थी। ईरान इसे इजरायली साजिश से जोड़कर देखता है। ईरानी मीडिया का दावा नंबर एक, इसराइल और यूएई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ईरानी मीडिया का दावा नंबर दो, 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में फायदा लेना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर तीन, ईरान के साथ नए टकराव की स्क्रिप्ट लिखना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर चार, नेतन्याहू पर लगे घोटाले के आरोपों से ध्यान भटकाना। ईरान ने इस घटना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब देखना यही है कि जांच पूरी होने के बाद क्या सामने आता है, क्या आरोपी पायलट के तार ईरान से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी सच सामने आया है कि प्लेन से इमरजेंसी सिग्नल मिलने के बाद विमान को मार गिराने के लिए इसराइल ने पूरी तैयारी कर ली थी। लड़ाकू विमानों को तुरंत भेजा था, लेकिन जब विमान ने सऊदी अरब की ओर मुड़कर आपातकालीन लैंडिंग की तो उन्हें वापस बुला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक 9/11 जैसी संभावित घटना के लिए लंबे वक्त से चले आ रहे प्रोटोकॉल के तहत विमान के करीब 14,000 फीट नीचे गिरने के बाद इजरायली वायुसेना ने कॉकपिट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो ऐसे मामलों को देखने वाली टीम को तुरंत बुलाया गया और एक कमांड सेंटर स्थापित किया गया। इसी कड़ी में लड़ाकू विमानों को भेजा गया और इसराइल ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। आज तक ब्यूरो।
5: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: किंग्सवे कैंप से निकलने के बाद राहुल का पोस्ट, लोकतंत्र के गद्दारों को बचा रही है सरकार, एक भी देशद्रोही को छोड़ा नहीं जाएगा आज तक से बोली प्रियंका, ये है कायर सरकार। विपक्षी मार्च के बाद दिन भर चला है वोल्टेज ड्रामा, सीईसी से मुलाकात की मांग के साथ धरने पर बैठे थे राहुल गांधी, प्रियंका चुनाव आयोग की सफाई, नहीं मांगा गया मीटिंग का टाइम। राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी का हमला, कहा उनकी सियासी लॉन्चिंग लगातार हो रही है फेल, विपक्ष का झूठ हो चुका है बेनकाब, 300 सांसदों के साथ की बात भी झूठी। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, 2028 तक कार्यकाल, करगिल जंग में रहे शामिल। और दिल्ली एनसीआर में लगे भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 4.9, उत्तराखंड के चमोली में था एपिसेंटर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मंगलवार दिनभर हंगामा चलता रहा, दिल्ली के किंग्सवे कैंप से निकलने के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि गद्दारों को सरकार बचा रही है, राहुल प्रियंका को हिरासत में ले लिया गया था, दोनों को करीब 2 घंटे तक किंग्सवे कैंप में रखा गया, हालांकि बाद में दोनों को छोड़ दिया गया।
1: सरकार में इस्तीफे नहीं, इस्तीफा देने के लिए
2: देना चाहिए।
0: राहुल गांधी के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर विपक्ष के 300 सांसदों ने सीईसी के खिलाफ मार्च निकाला है, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके अखिलेश यादव समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। इसी बीच पुलिस को चकमा देकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच गए आकाशवाणी परिसर में और वहीं से शुरू कर दिया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना।
3: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष एक साथ उबला तो राजधानी दिल्ली में संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर के रास्ते तक न सिर्फ विपक्ष ने एकता और एकजुटता दिखाई, बल्कि सरकार को कटघरे में खड़ा करके ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि चुनाव आयोग और सरकार के बीच मिलीभगत है और चुनावों में सरकार वोट चोरी करवा रही है।
4: अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है।
5: जो गलत तरीके से हुकूमत में उन्होंने आए हैं और जो गलत तरीके से उन्होंने आज कुर्सी पे बैठा, इसीलिए हम कर रहे हैं, पहले गद्दी छोड़ो, नहीं तो देश में हंगामा होगा, देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये मेरा वार्निंग है उनको।
6: चुनाव ने 17 में बेईमानी की, 19 में बेईमानी की, 22 में बेईमानी की, 24 में बेईमानी की, और बंगाल का तो पूरा का पूरा खुला खेल किया उन्होंने, किसको नहीं दिखाई देता है।
3: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर भले ही ये इंडिया गठबंधन के 19 दलों का मार्च था, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी भवन के परिसर में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं से धरना शुरू कर देते हैं, ऐसे में सारी निगाहें राहुल गांधी पर जम जाती है। हम आपको विपक्षी सांसदों का पूरा मार्च दिखाएंगे, लेकिन पहले बात राहुल गांधी की करते हैं। उधर दिल्ली पुलिस विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेकर बस में बैठाकर ले जाती है और आकाशवाणी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक पेड़ के नीचे बैठकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों से मिलने की जिद करने लगते हैं।
4: कुछ समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के MPs आए थे और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे। यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका, 300 MPs को यहाँ पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं।
3: दोपहर करीब 12:30 बजे से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आकाशवाणी भवन के परिसर में धरना शुरू होता है और उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की दौड़ आकाशवाणी की तरफ लगने लगती है।
2: यहाँ पे आप लोग का होना बिल्कुल ही गैर कानूनी है।
3: ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच जैसे एक जंग सी छिड़ जाती है और फिर पुलिस प्रदर्शनकारियों को जबरन हिरासत में लेती है।
7: हमारे नेता नरेंद्र राहुल जी ये लोगों की गलत जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। हम लोगों बार बार डिटेन कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को बचाने का काम कर रहे हैं मोदी और शाह।
8: मेरे भाई और गणेश को बचाने के लिए पूरे क्राइम कर रहे हैं, ये गलत है, गैर कानूनी है।
3: धरने के करीब 2 घंटे बाद राहुल गांधी और आक्रामक होते हैं और सीधे सरकार, संघ और चुनाव आयोग पर वार करते हैं।
4: बीजेपी जो बोले उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के को बचाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कुछ घंटे पहले 300 लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज आए थे, वो भी देश में लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। इनमें से सारे के सारे किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आप देखना, इनमें से एक व्यक्ति बच के नहीं जाएगा।
3: आकाशवाणी में 3 घंटे से ज्यादा बीतने पर राहुल गांधी और प्रियंका वहीं बरगद के पेड़ के नीचे चटाई बिछा लेते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा आकाशवाणी में पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल समेत कई और बड़े नेता भी पहुंच जाते हैं। धरने के 5 घंटे बाद राहुल गांधी फिर से मीडिया के सामने बोलते हैं और कहते हैं कि जब तक उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलने नहीं दिया जाता वहीं बैठे रहेंगे। वो कहते हैं कि आकाशवाणी में लंबा धरना देने का इंतजाम कर लिया है,
4: हमने यहाँ पे गद्दे भी लगा दिए हैं, ठीक है, टॉयलेट भी है, चाय भी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हमें बैठना है हम बैठ लेंगे।
3: छह घंटे बाद भी धरना जारी रहता है। इस बीच आकाशवाणी में दिल्ली पुलिस पहुंचती है। इस दौरान प्रियंका तिरंगे के सामने हाथ फैलाकर खड़ी नजर आती हैं, जबकि राहुल ने पुलिस अफसर से कहा इन्हें मत छूना,
4: इसको मत छुओ झंडे को।
3: धरने के 7.5 घंटे बाद दिल्ली पुलिस फिर से आकाशवाणी पहुंचती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धरने से उठने के लिए कहती है, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे जमे रहते हैं तो काफी बहस होती है और आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जबरन उठाकर आकाशवाणी से ले जाती है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी और प्रियंका को आकाशवाणी भवन में धरने से उठाने के काफी मशक्कतें करनी पड़ी। राहुल और प्रियंका गांधी ज्ञानेश से मिलने के लिए अड़े हुए थे लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया, जबकि इंडिया गठबंधन ने सुबह 10:30 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू किया। अखिलेश यादव से लेकर टीएमसी के अभिषेक बनर्जी इस धरने में शामिल हुए लेकिन विपक्ष के इस मार्च को पुलिस ने बीच में रोक दिया और सांसदों को हिरासत में ले लिया गया।

0: 2 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक 4 दिन तक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी, आयसा, आप और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के विरोध प्रदर्शन के बाद अब बारी इंडिया गठबंधन की आती है, क्योंकि सब कुछ 30 सितंबर की इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली की बैठक में तय हो चुका था। ऐसे में विपक्ष के 19 दलों के सांसद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलने सड़क पर उतरते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 300 सांसद एक साथ इकट्ठा होते हैं और पोस्टरों, बैनरों के साथ निकल पड़ते हैं। राहुल जेन जी के कनेक्ट के लिए प्रदर्शन में ज्ञानेश इट्स डन ब्रो का पोस्टर लेकर पहुंचे थे। उनका मकसद इस वर्ग को सीधा मैसेज देना था, देश में आज हर चौथा वोटर जेन जी से है। तो अखिलेश यादव के हाथों में मुचुआ का पोस्टर रहता है। मुचुआ का मतलब अखिलेश यादव मुख्य चुनाव आयुक्त बताते हैं।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त, मुचुआ तो सुना था आपने यूपी में, जो एक रूमर फैला रहा था। ये देखिए मुचुआ डाओ, पीडीए बचाओ।
2: अभी जब तक पैर चलेगा चलेगा।
3: चुनाव आयोग भेदभाव कर रहा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: देखिए ये तो आपको सरकार से पूछना चाहिए कि बार बार पूरे विपक्ष को सड़क पे आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमारी सीधी सीधी 3 मांगे हैं। 1, ज्ञानेश कुमार का इमीडिएट इस्तीफा हो। 2, SIR रद्द हो। 3, बैलेट पेपर से चुनाव हो।
0: इंडिया गठबंधन के सांसद संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नीति आयोग के दफ्तर के पास इस मार्च को बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता है। ऐसे में राहुल गांधी हाथ में तिरंगा लेकर बैरिकेडिंग पर चढ़ जाते हैं और बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश करते हैं।
4: ज्ञानेश गुप्ता की गद्दारी साबित हो चुकी है।
5: सीसी अंडरग्राउंड कहाँ छुपाया है, बीजेपी के दफ्तर में है और कहाँ है पता नहीं। सीसी जो है बीजेपी का एजेंट है, उनको बचाने की कोशिश चल रही है।
6: चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं कि गलत वोट काटे गए। तो लोगों के वोट काट के विपक्ष को हराना ये साबित करता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है।
7: कि ये इलेक्शन मशीन की तरह काम करते हैं, केवल चुनाव आयोग से नहीं जीतते हैं, पैसा इनके पास बहुत है। बंगाल में देखा कि फोर्स के माध्यम से कैसे बूथ लूट लिया, और बंगाल में नहीं लूटा था, उससे पहले यूपी में लूटा। आपका जो सेमीफाइनल होता है, या कहें कि कोई चीज करने से पहले टेस्ट करने के लिए, कुंदरकी का चुनाव इन्होंने लूटा, मीरापुर का चुनाव इन्होंने लूटा, आपका अयोध्या का चुनाव, अंबेडकर नगर का बाई इलेक्शन। तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है।
8: ये तो पहले से था कि बीजेपी की चोरों की सरकार थी, अब ये पता चल गया कि अब ये चोरी की सरकार है। मुझे ये लगता है अब तो यही करना चाहिए कि ये सरकार बर्खास्त हो और फिर से लोकसभा के चुनाव हो, और कोई तरीका नहीं।
0: अब विपक्ष के सभी सांसद नीति आयोग के दफ्तर के पास ही धरने पर बैठ जाते हैं।
9: समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष पसीना से कभी घबराते नहीं है। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए बैरिकेडिंग लगाई हुई है।
0: पहले तो पुलिस ने विपक्षी सांसदों को बैरिकेडिंग से रोका, और जब इससे भी नहीं रुके तो उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर देती है और बस में भरकर ले जाती है। बस के अंदर अखिलेश यादव दिल्ली पुलिस पर तंज मारते हुए कहते हैं कि पुलिस उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलवाने के लिए चुनाव आयोग ले जा रही है।
10: चुनाव आयोग ले जा रही पुलिस, नहीं उन्हीं से मिलाने ले जा रही हम लोगों को, सीसी से मिलाने ले जा रही है। बीजेपी ने अब कह दिया कि बस जा सकती है चुनाव आयोग।
0: अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और अभिषेक बनर्जी समेत विपक्ष के कई सांसदों को दिल्ली पुलिस हिरासत में ले लेती है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी के दफ्तर के परिसर में घुस जाते हैं और वहीं से धरना देना शुरू कर देते हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
11: राहुल गांधी के प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं आपको सुनवाते हैं।
12: राहुल गांधी जी की ये आदत है, राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट को कोट करके राफेल के केस में राहुल गांधी जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल में धांधली हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही राहुल गांधी को बोला कान पकड़ के उठक बैठक करो। कान पकड़ के उठक बैठक करो और एफिडेविट साहब दो कि तुमने झूठ बोला था। राहुल गांधी चुपके से जाके घर के पीछे उन्होंने एफिडेविट लिखा, मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट का नाम मैंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उसे सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। आज ठीक वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे, हम उन्हें एक्सपोज करते रहेंगे।
13: आज तक कांग्रेस ने देश की कितनी संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाया है? एक दर्जन, आधा दर्जन, डेढ़ दर्जन, दो दर्जन। भारत की थल सेना से लेके, भारत की वायुसेना से लेके, भारत के डिफेंस से लेके, भारत की LIC से लेके, भारत के HAL, SBI, SEBI, वैक्सीन, कौन सी ऐसी चीज है? भारत का न्यायालय, भारत का मीडिया। तो मैं कांग्रेस पार्टी से आज देश के सामने पूछना चाहता हूं, इस पे क्विज कॉन्टेस्ट होना चाहिए कि भारत के कितने संस्थानों को कांग्रेस ने अब तक, खासकर राहुल गांधी ने आरोपित किया है? हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड। चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में लोग ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहिए, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे।
11: ओमान के आरोपी पायलट हमामी ने कबूल किया है कि गजा का बदला लेने के लिए उसने इजरायली यात्रियों से भरे विमान को हाईजैक करने की आतंकी साजिश रची थी। पूछताछ के दौरान हमामी ने जांचकर्ताओं को यही बताया है कि आत्मघाती हमले में सभी इजरायली नागरिकों को बेमौत मारने का प्लान था, सब कुछ प्लान के हिसाब से था, लेकिन आतंकी हमले को अंजाम देने में नाकाम रहा।

0: पूछताछ में आतंकी पायलट का बड़ा खुलासा। इंतकाम की आग में पायलट से बना आतंकी। गाजा का बदला लेने के लिए रची थी साजिश। इसराइलियों को बेमौत मारने की तैयारी थी। तेल अवीव में विमान को क्रैश करवाना था। आतंकी पायलट का सनसनीखेज कबूलनामा। ओमानी नागरिक हमाम अल हमामी ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के सामने कई बड़े राज उगले हैं। पूछताछ के दौरान हमामी ने आतंकी साजिश की प्लानिंग से लेकर आत्मघाती हमले के पीछे मकसद का खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान हमामी ने क्या क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। सवाल, आतंकी साजिश के पीछे मकसद क्या था? जवाब, मैंने गाजा का बदला लेने के लिए ऐसा किया, मैं शहीद की तरह मरना चाहता था। सवाल, आतंकी साजिश में कौन कौन शामिल था? जवाब, मेरे साथ कोई नहीं, मैंने अकेले पूरी प्लानिंग की। सवाल, आखिर तुम्हारा प्लान क्या था? जवाब, प्लेन को हाईजैक कर 9/11 जैसी घटना को अंजाम देना। सवाल, क्या 9/11 हमले की तर्ज पर प्लान बनाया था? जवाब, मैं चाहता था कि वैसे ही हमले को अंजाम दूं। सवाल, क्या तुम किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हो? जवाब, नहीं, मेरा किसी आतंकी संगठन से लिंक नहीं। सवाल, क्या फ्लाई दुबई में काम करते वक्त प्लान बनाया? जवाब, नहीं, प्लान बनाने के बाद एयरलाइन से जुड़ा। पूछताछ के दौरान हमामी ने कबूल किया है कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने से पहले ही आत्मघाती हमले की स्क्रिप्ट लिख चुका था। प्लान को अंजाम देने के लिए ही फ्लाई दुबई से जुड़ा, क्योंकि उसे पता था कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने के बाद वो आसानी से 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। मतलब यही है कि हमामी आत्मघाती हमले की पूरी तैयारी कर चुका था।
1: This attacker, and he calls out to the aircrew, kill me, all right? So it's clear he was suicidal. That's not a question. It was clear he was going to down that plane. Oh, it's not clear, but it looks very likely that he was going to down the plane and with all the passengers in there. And if you couple that with what I just told you about the Islamist tendencies, that radicalization, that were found in his background, I think that'll give us a pretty good clue. But again, I don't make final conclusions yet, but that's the indications we have now.
0: शुरुआती जांच में पता चला है कि हमामी ने कई मुल्कों का दौरा किया था, जिसमें अहम है सीरिया का दौरा। जांच एजेंसियों को शक है कि सीरिया में ही हमामी किसी आतंकी संगठन के संपर्क में आया या फिर किसी आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़ गया। मोसाद के हवाले से इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। हमें पता चला है कि हाल के सालों में उस आतंकवादी ने इजरायल के विरोधी देशों, जिनमें से कुछ दुश्मन देश भी थे, उनका दौरा किया था। ये दौरे कम समय के लिए थे। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उन दौरों के दौरान किसी व्यक्ति या संगठन ने उसे सक्रिय किया या भर्ती किया था।
2: टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के एजेंट अल हमामी से पूछताछ में शामिल हैं। इजरायली अफसरों ने सवाल जवाब के लिए यूएई की यात्रा की थी। इसके पहले जानकारी मिली थी कि हमामी की कट्टरपंथी सोच के चलते एक बार उड़ान भरने से रोक दिया गया था। ये भी जांच का विषय है कि जब उसे ओमान की नेशनल एयरलाइंस से उड़ान भरने से रोका गया था, तो दुबई की एयरलाइंस में उसे मंजूरी कैसे मिली। बड़ी बात यह है कि अल हमामी ने 7 सालों तक ओमान एयर में काम किया और बीते साल फरवरी में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद जून 2025 में मोरक्को की नेशनल एयरलाइंस से जुड़ा, लेकिन सिर्फ 3 महीने तक नौकरी की। इसके बाद फ्लाई दुबई एयरलाइंस में बतौर को पायलट नौकरी करने लगा। हमामी की माने तो इसराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष का बदला लेने के लिए उसने आतंकी हमले की साजिश रची थी। ऐसे में इसराइली जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पायलट ने अकेले ही साजिश रची थी या फिर उसे किसी आतंकी संगठन ने इसराइली नागरिकों को मारने के लिए भेजा था। अभी तक इसराइल की तरफ से किसी मुल्क या आतंकी संगठन का नाम नहीं लिया गया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप यही है कि इस साजिश में ईरान का हाथ है।
3: On Fly Dubai, do you think Iran was responsible for that terrorist attack?
4: I do. I personally do.
3: On Fly Dubai, do you think Iran was responsible for that terrorist attack?
4: I do. I personally do.
2: ट्रंप का ईरान पर यह आरोप नया नहीं है। हाईजैक की कोशिश के ठीक बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूरे मामले से ईरान का नाम जोड़ा था। तब ट्रंप ने शक जताया था कि इजरायली नागरिकों से भरे विमानों को हाईजैक करने के पीछे ईरानी सेना का हाथ हो सकता है। तब ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि साजिश 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम देने की थी। वही ईरान की तरफ से ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया। ईरान का यही कहना है कि पूरा मामला यूएई और इसराइल की प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि ईरान ने पूरे मामले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। ईरान का आरोप है कि इसराइल और यूएई ने मिलकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की स्क्रिप्ट लिखी है। दावे के पीछे तर्क यही है कि विमान वाली घटना से ठीक पहले नेतन्याहू यूएई की सीक्रेट विजिट पर गए थे, जहां पर उनकी मुलाकात यूएई के राष्ट्रपति से हुई थी। ईरान इसे इजरायली साजिश से जोड़कर देखता है। ईरानी मीडिया का दावा नंबर एक, इसराइल और यूएई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ईरानी मीडिया का दावा नंबर दो, 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में फायदा लेना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर तीन, ईरान के साथ नए टकराव की स्क्रिप्ट लिखना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर चार, नेतन्याहू पर लगे घोटाले के आरोपों से ध्यान भटकाना। ईरान ने इस घटना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब देखना यही है कि जांच पूरी होने के बाद क्या सामने आता है, क्या आरोपी पायलट के तार ईरान से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी सच सामने आया है कि प्लेन से इमरजेंसी सिग्नल मिलने के बाद विमान को मार गिराने के लिए इसराइल ने पूरी तैयारी कर ली थी, लड़ाकू विमानों को तुरंत भेजा था, लेकिन जब विमान ने सऊदी अरब की ओर मुड़कर आपातकालीन लैंडिंग की तो उन्हें वापस बुला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक 9/11 जैसी संभावित घटना के लिए लंबे वक्त से चले आ रहे प्रोटोकॉल के तहत विमान के करीब 14,000 फीट नीचे गिरने के बाद इजरायली वायुसेना ने कॉकपिट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो ऐसे मामलों को देखने वाली टीम को तुरंत बुलाया गया और एक कमांड सेंटर स्थापित किया गया। इसी कड़ी में लड़ाकू विमानों को भेजा गया और इसराइल ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। आज तक ब्यूरो।
5: मिडिल ईस्ट की जंग में पाकिस्तान और तुर्की की एंट्री होने जा रही है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों की बढ़ती ताकत ने सऊदी अरब को सीधे सैन्य कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया है, और इसीलिए अब पाकिस्तान और तुर्की भी सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अपने सैन्य बल तैनात करने की तैयारी में है।
2: अब मिडिल ईस्ट की जंग में उतरेंगे तुर्की और पाकिस्तान। हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी का साथ देंगे तुर्की पाकिस्तान। अब हूती का होगा काम तमाम, खाड़ी में तेज हुआ घमासान। हूती विद्रोहियों के कब्जे से मुक्त होगा बाब अल मंदेब। सऊदी के साथ आई यमन सरकार, हूती के ठिकानों पर बमबारी शुरू। ईरान अमेरिका और इसराइल की जंग आगे बढ़ी तो पूरे मिडल ईस्ट में फैल गई। ईरान पर जब जब अमेरिका हमले करता है, पलटवार में ईरान सीधे मिडल ईस्ट के देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले करता है, फिर चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो या फिर कतर और इराक। और जब से ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जंग छिड़ी है, ऐसे में सऊदी अरब को शक है कि ईरान ने तेल के दूसरे समुद्री रास्ते बाब अल मंदेब पर भी अपने प्रॉक्सी यमन के हूती विद्रोहियों को लाल सागर में उतार रखा है, क्योंकि हॉर्मुज में तनाव के बाद सऊदी अरब अपने तेल को लाल सागर के तट पर स्थित जानबू बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का उपयोग करता है। इसके बाद उस तेल को एशिया और यूरोप भेजने के लिए बाब अल मंदेब से गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, जिससे दुनिया का लगभग 10-12% समुद्री व्यापार और तेल की आपूर्ति होती है। लेकिन पिछले दिनों में हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी के कई तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। और तो और, सऊदी अरब ने यह भी आरोप लगाया कि हुती विद्रोहियों ने मक्का को भी निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि हुती विद्रोहियों ने मक्का पर हमले से साफ इनकार किया। अब एक तरफ से हुती विद्रोहियों और यमन में सऊदी के समर्थन वाली सरकार में आर पार की लड़ाई शुरू हुई है, और पिछले 24 घंटों में यमन सरकार ने हुती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। साथ ही पहले हुती विद्रोहियों के साथ डील करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भी सऊदी अरब का साथ देने का ऐलान कर दिया है।
6: What's your view about the Saudis and Yemenis counterattack and offensive against the Houthis?
7: It'll all work out very well. It's going to work out very well.
2: तो दूसरी तरफ सऊदी का साथ देने के लिए मक्का पैक की भी मीटिंग हुई है, जिसमें तुर्की और पाकिस्तान हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब को सैन्य मदद देने के लिए राजी हो गए हैं। आपको बता दें कि 7 अगस्त 2026 को हुए मक्का पैक के तहत ये तय हुआ था कि तीनों में से किसी एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। और जब हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी के तेल टैंकरों पर हमले किए, तो उसने तुर्की और पाकिस्तान के सामने मक्का पैक की दुहाई दी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने मना कर दिया। लेकिन अब दोनों देश सैन्य समर्थन के लिए राजी हो गए हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मक्का रक्षा गठबंधन की रणनीतिक, राजनीतिक और रक्षा समिति की आपात बैठक में हमलों का सामना करने के लिए एकजुटता और साझे रुख पर मुहर लगाई गई। मक्का रक्षा गठबंधन के ढांचे के तहत इन हमलों और इनके पीछे खड़े सभी लोगों के खिलाफ सामूहिक जवाबी क्षमता को सक्रिय करने की पुष्टि की गई। इस समिति की बैठक में खासतौर पर पवित्र शहरों मक्का और मदीना को निशाना बनाने वाले हमलों की निंदा की गई। हालांकि उन्होंने हूतियों का नाम नहीं लिया, और ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की सरकारी सेनाओं ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया है। यमनी सरकार के मुताबिक इस अभियान का मकसद उन सभी इलाकों को फिर से हासिल करना है जिन पर हूतियों ने 12 साल से जारी युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया है।
8: تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية والتي أضرت بالنسيج الاجتماعي الواحد وانتهكت الأعراف القبلية الثابتة وتخطت أضرارها اليمن إلى محيطه الإقليمي والدولي।
2: आपको बता दें कि पाकिस्तान के पहले से ही सऊदी अरब में सैकड़ों सैनिक तैनात हैं। रॉयटर्स ने पिछले सप्ताह खबर दी थी कि पाकिस्तान ने सऊदी समर्थित सरकार की मदद के लिए पोर्ट सिटी अदन में हथियारों से भरे 4 विमान भेजे थे। इस बीच संभावना ये भी है कि तुर्की की सरकार अगले 30 दिनों के भीतर मक्का समझौते या सैनिक तैनाती की मंजूरी को तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली के एजेंडे में लाएगी। जानकारों की माने तो तुर्की का शुरुआती योगदान यमन में लड़ाकू सैनिकों की तैनाती के बजाय सऊदी अरब की धरती पर वायु रक्षा, ड्रोन, खुफिया निगरानी और टोही से जुड़ी क्षमताओं के रूप में होने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है। अब इस मक्का पैक की चुनौती क्या है वो भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश है। उसने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ के रूप में भी भूमिका निभाई है और खुद को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, जबकि तुर्की नाटो का सदस्य है और उसने खुद को इसराइल के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर स्थापित किया है। और सवाल ये भी है कि जब यमन की सरकार हूतियों के खिलाफ निर्णायक अभियान छेड़ चुकी है, तब जाकर पाकिस्तान क्यों जागा है? क्या वो सिर्फ मक्का समझौते की औपचारिकता बनाए रखना चाहता है? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि युद्ध छिड़ने पर ईरान अगर फिर सऊदी अरब पर हमले करता है तो फिर पाकिस्तान का रुख क्या होगा? आज तक ब्यूरो।
5: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: किंग्सवे कैंप से निकलने के बाद राहुल का पोस्ट लोकतंत्र के गद्दारों को बचा रही है सरकार, एक भी देशद्रोही को छोड़ा नहीं जाएगा आज तक से बोली प्रियंका, ये है कायर सरकार। विपक्षी मार्च के बाद दिन भर चला है वोल्टेज ड्रामा, सीईसी से मुलाकात की मांग के साथ धरने पर बैठे थे राहुल गांधी, प्रियंका चुनाव आयोग की सफाई, नहीं मांगा गया मीटिंग का टाइम। राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी का हमला, कहा उनकी सियासी लॉन्चिंग लगातार हो रही है फेल, विपक्ष का झूठ हो चुका है बेनकाब, 300 सांसदों के साथ की बात भी झूठी। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, 2028 तक कार्यकाल, करगिल जंग में रहे शामिल। और दिल्ली एनसीआर में लगे भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 4.9, उत्तराखंड के चमोली में था एपिसेंटर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मंगलवार दिनभर हंगामा चलता रहा, दिल्ली के किंग्सवे कैंप से निकलने के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि गद्दारों को सरकार बचा रही है, राहुल प्रियंका को हिरासत में ले लिया गया था, दोनों को करीब 2 घंटे तक किंग्सवे कैंप में रखा गया, हालांकि बाद में दोनों को छोड़ दिया गया। राहुल गांधी के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर विपक्ष के 300 सांसदों ने सीईसी के खिलाफ मार्च निकाला है, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके अखिलेश यादव समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। इसी बीच पुलिस को चकमा देकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच गए आकाशवाणी परिसर में और वहीं से शुरू कर दिया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष एक साथ उबला तो राजधानी दिल्ली में संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर के रास्ते तक न सिर्फ विपक्ष ने एकता और एकजुटता दिखाई, बल्कि सरकार को गठघरे में खड़ा करके ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि चुनाव आयोग और सरकार के बीच मिली भगत है और चुनावों में सरकार वोट चोरी करवा रही है।
2: अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है।
3: जो गलत तरीके से हुकूमत में उन्होंने आए हैं और जो गलत तरीके से उन्होंने आज कुर्सी पे बैठा, इसीलिए हम कर रहे हैं, पहले गद्दी छोड़ो, नहीं तो देश में हंगामा होगा, देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये मेरा वार्निंग है उनको।
4: चुनाव ने 17 में बेईमानी की, 19 में बेईमानी की, 22 में बेईमानी की, 24 में बेईमानी की, और बंगाल का तो पूरा का पूरा खुला खेल किया उन्होंने, किसको नहीं दिखाई देता है।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर भले ही ये इंडिया गठबंधन के 19 दलों का मार्च था, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी भवन के परिसर में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं से धरना शुरू कर देते हैं, ऐसे में सारी निगाहें राहुल गांधी पर जम जाती है। हम आपको विपक्षी सांसदों का पूरा मार्च दिखाएंगे, लेकिन पहले बात राहुल गांधी की करते हैं। उधर दिल्ली पुलिस विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेकर बस में बैठाकर ले जाती है और आकाशवाणी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक पेड़ के नीचे बैठकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों से मिलने की जिद करने लगते हैं।
2: कुछ समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के MPs आए थे और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे, यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका, 300 MPs को यहाँ पे रोका गया, और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं।
1: दोपहर करीब 12:30 बजे से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आकाशवाणी भवन के परिसर में धरना शुरू होता है और उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की दौड़ आकाशवाणी की तरफ लगने लगती है।
5: यहाँ पे आप लोग का होना बिल्कुल ही गैर कानूनी है।
1: ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच जैसे एक जंग सी छिड़ जाती है और फिर पुलिस प्रदर्शनकारियों को जबरन हिरासत में लेती है।
6: हमारे नेता अंदर है राहुल जी, ये लोगों की गलत जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। हम लोगों बार बार डिटेन कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को बचाने का काम कर रहे हैं मोदी और शाह।
7: मेरे भाई और गणेश को बचाने के लिए पूरे क्राइम कर रहे हैं, ये गलत है, गैर कानूनी है।
1: धरने के करीब 2 घंटे बाद राहुल गांधी और आक्रामक होते हैं और सीधे सरकार, संघ और चुनाव आयोग पर वार करते हैं।
2: बीजेपी जो बोले उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के को बचाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कुछ घंटे पहले 300 लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज आए थे, वो भी देश में लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। इनमें से सारे के सारे किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आप देखना, इनमें से एक व्यक्ति बच के नहीं जाएगा।
1: आकाशवाणी में 3 घंटे से ज्यादा बीतने पर राहुल गांधी और प्रियंका वहीं बरगद के पेड़ के नीचे चटाई बिछा लेते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा आकाशवाणी में पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल समेत कई और बड़े नेता भी पहुंच जाते हैं। धरने के 5 घंटे बाद राहुल गांधी फिर से मीडिया के सामने बोलते हैं और कहते हैं कि जब तक उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलने नहीं दिया जाता वहीं बैठे रहेंगे। वो कहते हैं कि आकाशवाणी में लंबा धरना देने का इंतजाम कर लिया है,
2: हमने यहाँ पे गद्दे भी लगा दिए हैं, ठीक है, टॉयलेट भी है, चाय भी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हमें बैठना है हम बैठ लेंगे।
0: राहुल गांधी और प्रियंका को आकाशवाणी भवन में धरने से उठाने के काफी मशक्कतें करनी पड़ी। राहुल और प्रियंका गांधी ज्ञानेश से मिलने के लिए अड़े हुए थे लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया, जबकि इंडिया गठबंधन ने सुबह 10:30 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू किया। अखिलेश यादव से लेकर टीएमसी के अभिषेक बनर्जी इस धरने में शामिल हुए लेकिन विपक्ष के इस मार्च को पुलिस ने बीच में रोक दिया और सांसदों को हिरासत में ले लिया गया।

0: 2 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक 4 दिन तक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी, आयसा, आप और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के विरोध प्रदर्शन के बाद अब बारी इंडिया गठबंधन की आती है, क्योंकि सब कुछ 30 सितंबर की इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली की बैठक में तय हो चुका था। ऐसे में विपक्ष के 19 दलों के सांसद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलने सड़क पर उतरते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 300 सांसद एक साथ इकट्ठा होते हैं और पोस्टरों, बैनरों के साथ निकल पड़ते हैं। राहुल जेन जी के कनेक्ट के लिए प्रदर्शन में ज्ञानेश इट्स डन ब्रो का पोस्टर लेकर पहुंचे थे। उनका मकसद इस वर्ग को सीधा मैसेज देना था। देश में आज हर चौथा वोटर जेन जी से है, तो अखिलेश यादव के हाथों में मुचुआ का पोस्टर रहता है। मुचुआ का मतलब अखिलेश यादव मुख्य चुनाव आयुक्त बताते हैं।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त मुचुआ तो सुना था आपने, यूपी में जो एक रूमर फैला रहा था, ये देखिए मुचुआ हटाओ पीडीए बचाओ।
2: अभी जब तक पैर चलेगा चलेगा।
3: चुनाव आयोग भेदभाव कर रहा है।

0: बैलेट पेपर से चुनाव हो।
1: इंडिया गठबंधन के सांसद संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नीति आयोग के दफ्तर के पास इस मार्च को बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता है। ऐसे में राहुल गांधी हाथ में तिरंगा लेकर बैरिकेडिंग पर चढ़ जाते हैं और बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश करते हैं।
2: ज्ञानेश गुप्ता की गद्दारी साबित हो चुकी है।
3: सीसी अंडरग्राउंड कहाँ छुपाया है, बीजेपी के दफ्तर में है और कहाँ है पता नहीं। सीसी जो है बीजेपी का एजेंट है, उनको बचाने की कोशिश चल रही है।
4: चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं कि गलत वोट काटे गए, तो लोगों के वोट काट के विपक्ष को हराना ये साबित करता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है।
5: कि ये इलेक्शन मशीन की तरह काम करते हैं, केवल चुनाव आयोग से नहीं जीतते, पैसा इनके पास बहुत है। बंगाल में देखा कि फोर्स के माध्यम से कैसे बूथ लूट लिया, और बंगाल में नहीं लूटा था, उससे पहले यूपी में लूटा। आपका जो सेमीफाइनल होता है, या कहें कि कोई चीज़ करने से पहले टेस्ट करने के लिए, कुंदरकी का चुनाव इन्होंने लूटा, मीरापुर का चुनाव इन्होंने लूटा, आपका अयोध्या का चुनाव, अंबेडकर नगर का बाई इलेक्शन। तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है।
6: ये तो पहले से था कि बीजेपी की चोरों की सरकार थी, अब ये पता चल गया कि अब ये चोरी की सरकार है। मुझे ये लगता है अब तो यही करना चाहिए कि ये सरकार बर्खास्त हो और फिर से लोकसभा के चुनाव हो, और कोई तरीका नहीं।
1: अब विपक्ष के सभी सांसद नीति आयोग के दफ्तर के पास ही धरने पर बैठ जाते हैं।
7: समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष पसीना से कभी घबराते नहीं है। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए बैरिकेडिंग लगाई हुई है।
1: पहले तो पुलिस ने विपक्षी सांसदों को बैरिकेडिंग से रोका, और जब इससे भी नहीं रुके तो उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर देती है और बस में भरकर ले जाती है। बस के अंदर अखिलेश यादव दिल्ली पुलिस पर तंज मारते हुए कहते हैं कि पुलिस उन्हें ज्ञानेश कुमार से मिलवाने के लिए चुनाव आयोग ले जा रही है।
8: चुनाव आयोग ले जा रही पुलिस,
9: नहीं
8: उन्हीं से मिलाने ले जा रही हम लोगों को, सीसी से मिलाने ले जा रही है। बीजेपी ने अब कह दिया कि बस जा सकती है चुनाव आयोग।
1: अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और अभिषेक बनर्जी समेत विपक्ष के कई सांसदों को दिल्ली पुलिस हिरासत में ले लेती है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पुलिस को गच्चा देकर आकाशवाणी के दफ्तर के परिसर में घुस जाते हैं और वहीं से धरना देना शुरू कर देते हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
10: राहुल गांधी के प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, आपको सुनवाते हैं।
11: राहुल गांधी जी की ये आदत है, राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट को कोट करके राफेल के केस में राहुल गांधी जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल में धांधली हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही राहुल गांधी को बोला कान पकड़ के उठक बैठक करो, कान पकड़ के उठक बैठक करो और एफिडेविट साहब दो कि तुमने झूठ बोला था। राहुल गांधी चुपके से जाके घर के पीछे उन्होंने एफिडेविट लिखा, मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट का नाम मैंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उसे सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। आज ठीक वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे, हम उन्हें एक्सपोज करते रहेंगे।
12: आज तक कांग्रेस ने देश की कितनी संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाया है, एक दर्जन, आधा दर्जन, डेढ़ दर्जन, दो दर्जन, भारत की थल सेना से लेके, भारत की वायुसेना से लेके, भारत के डिफेंस से लेके, भारत की LIC से लेके, भारत के HAL, SBI, SEBI, वैक्सीन, कौन सी ऐसी चीज है, भारत का न्यायालय, भारत का मीडिया। तो मैं कांग्रेस पार्टी से आज देश के सामने पूछना चाहता हूं, इस पे क्विज कॉन्टेस्ट होना चाहिए कि भारत के कितने संस्थानों को कांग्रेस ने अब तक, खासकर राहुल गांधी ने आरोपित किया है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप 13 करोड़ बोलते हैं तो आप 2.8 करोड़ मृतक, 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को और 6.8 करोड़ शिफ्टेड, चलिए उसमें शिफ्टेड वालों में

0: ये तय कर सकते हैं कि वो किस जगह वोट रखना चाहिए। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि 2.8 करोड़ डेड और 1 करोड़ डुप्लीकेट, ये भारत की इकोनॉमी को डेड बचाने वाले लोग ये डेड और डुप्लीकेट वोटरों को मताधिकार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? कांग्रेस से स्पष्ट हम पूछना चाहते हैं, वो इस बात का जवाब दे।
1: ओमान के आरोपी पायलट हमामी ने कबूल किया है कि गजा का बदला लेने के लिए उसने इजरायली यात्रियों से भरे विमान को हाईजैक करने की आतंकी साजिश रची थी। पूछताछ के दौरान हमामी ने जांचकर्ताओं को यही बताया है कि आत्मघाती हमले में सभी इजरायली नागरिकों को बेमौत मारने का प्लान था, सब कुछ प्लान के हिसाब से था, लेकिन आतंकी हमले को अंजाम देने में नाकाम रहा।

0: पूछताछ में आतंकी पायलट का बड़ा खुलासा। इंतकाम की आग में पायलट से बना आतंकी। गाजा का बदला लेने के लिए रची थी साजिश। इसराइलियों को बेमौत मारने की तैयारी थी। तेल अवीव में विमान को क्रैश करवाना था। आतंकी पायलट का सनसनीखेज कबूलनामा। ओमानी नागरिक हमाम अल हमामी ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के सामने कई बड़े राज उगले हैं। पूछताछ के दौरान हमामी ने आतंकी साजिश की प्लानिंग से लेकर आत्मघाती हमले के पीछे मकसद का खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान हमामी ने क्या क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। सवाल, आतंकी साजिश के पीछे मकसद क्या था? जवाब, मैंने गाजा का बदला लेने के लिए ऐसा किया, मैं शहीद की तरह मरना चाहता था। सवाल, आतंकी साजिश में कौन कौन शामिल था? जवाब, मेरे साथ कोई नहीं, मैंने अकेले पूरी प्लानिंग की। सवाल, आखिर तुम्हारा प्लान क्या था? जवाब, प्लेन को हाईजैक कर 9/11 जैसी घटना को अंजाम देना। सवाल, क्या 9/11 हमले की तर्ज पर प्लान बनाया था? जवाब, मैं चाहता था कि वैसे ही हमले को अंजाम दूं। सवाल, क्या तुम किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हो? जवाब, नहीं, मेरा किसी आतंकी संगठन से लिंक नहीं। सवाल, क्या फ्लाई दुबई में काम करते वक्त प्लान बनाया? जवाब, नहीं, प्लान बनाने के बाद एयरलाइन से जुड़ा। पूछताछ के दौरान हमामी ने कबूल किया है कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने से पहले ही आत्मघाती हमले की स्क्रिप्ट लिख चुका था। प्लान को अंजाम देने के लिए ही फ्लाई दुबई से जुड़ा, क्योंकि उसे पता था कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने के बाद वो आसानी से 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। मतलब यही है कि हमामी आत्मघाती हमले की पूरी तैयारी कर चुका था। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमामी ने कई मुल्कों का दौरा किया था, जिसमें अहम है सीरिया का दौरा। जांच एजेंसियों को शक है कि सीरिया में ही हमामी किसी आतंकी संगठन के संपर्क में आया या फिर किसी आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़ गया। मोसाद के हवाले से इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है।
1: हमें पता चला है कि हाल के सालों में उस आतंकवादी ने इजरायल के विरोधी देशों, जिनमें से कुछ दुश्मन देश भी थे, उनका दौरा किया था। ये दौरे कम समय के लिए थे। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उन दौरों के दौरान किसी व्यक्ति या संगठन ने उसे सक्रिय किया या भर्ती किया था।
0: टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के एजेंट अल हमामी से पूछताछ में शामिल हैं। इजरायली अफसरों ने सवाल जवाब के लिए यूएई की यात्रा की थी। इसके पहले जानकारी मिली थी कि हमामी की कट्टरपंथी सोच के चलते एक बार उड़ान भरने से रोक दिया गया था। ये भी जांच का विषय है कि जब उसे ओमान की नेशनल एयरलाइंस से उड़ान भरने से रोका गया था, तो दुबई की एयरलाइंस में उसे मंजूरी कैसे मिली। बड़ी बात यह है कि अल हमामी ने 7 सालों तक ओमान एयर में काम किया और बीते साल फरवरी में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद जून 2025 में मोरक्को की नेशनल एयरलाइन से जुड़ा, लेकिन सिर्फ 3 महीने तक नौकरी की। इसके बाद फ्लाई दुबई एयरलाइंस में बतौर को पायलट नौकरी करने लगा। हमामी की माने तो इसराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष का बदला लेने के लिए उसने आतंकी हमले की साजिश रची थी। ऐसे में इजरायली जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पायलट ने अकेले ही साजिश रची थी या फिर उसे किसी आतंकी संगठन ने इजरायली नागरिकों को मारने के लिए भेजा था। अभी तक इसराइल की तरफ से किसी मुल्क या आतंकी संगठन का नाम नहीं लिया गया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप यही है कि इस साजिश में ईरान का हाथ है। ट्रंप का ईरान पर यह आरोप नया नहीं है। हाईजैक की कोशिश के ठीक बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूरे मामले से ईरान का नाम जोड़ा था। तब ट्रंप ने शक जताया था कि इजरायली नागरिकों से भरे विमानों को हाईजैक करने के पीछे ईरानी सेना का हाथ हो सकता है। तब ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि साजिश 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम देने की थी।
2: I would say the answer based on what I'm hearing is yes, but we're working on it right now.
3: This guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down the plane.
2: It could have been, yeah.
0: वहीं ईरान की तरफ से ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया। ईरान का यही कहना है कि पूरा मामला यूएई और इजराइल की प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि ईरान ने पूरे मामले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। ईरान का आरोप है कि इजराइल और यूएई ने मिलकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की स्क्रिप्ट लिखी है। दावे के पीछे तर्क यही है कि विमान वाली घटना से ठीक पहले नेतन्याहू यूएई की सीक्रेट विजिट पर गए थे, जहां पर उनकी मुलाकात यूएई के राष्ट्रपति से हुई थी। ईरान इसे इजरायली साजिश से जोड़कर देखता है। ईरानी मीडिया का दावा नंबर एक, इजराइल और यूएई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ईरानी मीडिया का दावा नंबर दो, 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में फायदा लेना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर तीन, ईरान के साथ नए टकराव की स्क्रिप्ट लिखना। ईरानी मीडिया का दावा नंबर चार, नेतन्याहू पर लगे घोटाले के आरोपों से ध्यान भटकाना। ईरान ने इस घटना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब देखना यही है कि जांच पूरी होने के बाद क्या सामने आता है, क्या आरोपी पायलट के तार ईरान से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी सच सामने आया है कि प्लेन से इमरजेंसी सिग्नल मिलने के बाद विमान को मार गिराने के लिए इसराइल ने पूरी तैयारी कर ली थी। लड़ाकू विमानों को तुरंत भेजा था, लेकिन जब विमान ने सऊदी अरब की ओर मुड़कर आपातकालीन लैंडिंग की तो उन्हें वापस बुला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक 9/11 जैसी संभावित घटना के लिए लंबे वक्त से चले आ रहे प्रोटोकॉल के तहत विमान के करीब 14,000 फीट नीचे गिरने के बाद इजरायली वायुसेना ने कॉकपिट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो ऐसे मामलों को देखने वाली टीम को तुरंत बुलाया गया और एक कमांड सेंटर स्थापित किया गया। इसी कड़ी में लड़ाकू विमानों को भेजा गया और इसराइल ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। आज तक ब्यूरो।
4: मिडिल ईस्ट की जंग में पाकिस्तान और तुर्की की एंट्री होने जा रही है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों की बढ़ती ताकत ने सऊदी अरब को सीधे सैन्य कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया है, और इसीलिए अब पाकिस्तान और तुर्की भी सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अपने सैन्य बल तैनात करने की तैयारी में है।
0: अब मिडिल ईस्ट की जंग में उतरेंगे तुर्की और पाकिस्तान। हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी का साथ देंगे तुर्की पाकिस्तान। अब हूती का होगा काम तमाम, खाड़ी में तेज हुआ घमासान। हूती विद्रोहियों के कब्जे से मुक्त होगा बाब अल मंदिर। सऊदी के साथ आई यमन सरकार, हूती के ठिकानों पर बमबारी शुरू। ईरान अमेरिका और इसराइल की जंग आगे बढ़ी तो पूरे मिडल ईस्ट में फैल गई। ईरान पर जब जब अमेरिका हमले करता है, पलटवार में ईरान सीधे मिडल ईस्ट के देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले करता है, फिर चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो या फिर कतर और इराक। और जब से ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जंग छिड़ी है, ऐसे में सऊदी अरब को शक है कि ईरान ने तेल के दूसरे समुद्री रास्ते बाब अल मंदेब पर भी अपने प्रॉक्सी यमन के हूती विद्रोहियों को लाल सागर में उतार रखा है, क्योंकि हॉर्मुज में तनाव के बाद सऊदी अरब अपने तेल को लाल सागर के तट पर स्थित ज्ञानवू बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का उपयोग करता है। इसके बाद उस तेल को एशिया और यूरोप भेजने के लिए बाब अल मंदेब से गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, जिससे दुनिया का लगभग 10 से 12 प्रतिशत समुद्री व्यापार और तेल की आपूर्ति होती है। लेकिन पिछले दिनों में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी के कई तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। और तो और, सऊदी अरब ने यह भी आरोप लगाया कि हूती विद्रोहियों ने मक्का को भी निशाना बनाने की कोशिश की, हालांकि हूती विद्रोहियों ने मक्का पर हमले से साफ इनकार किया। अब एक तरफ से हूती विद्रोहियों और यमन में सऊदी के समर्थन वाली सरकार में आर पार की लड़ाई शुरू हुई है, और पिछले 24 घंटों में यमन सरकार ने हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। साथ ही पहले हूती विद्रोहियों के साथ डील करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भी सऊदी अरब का साथ देने का ऐलान कर दिया है।
5: What's your view about the Saudis and Yemenis counterattack and offensive against the Houthis?
6: It'll all work out very well.
0: तो दूसरी तरफ सऊदी का साथ देने के लिए मक्का पैक की भी मीटिंग हुई है, जिसमें तुर्की और पाकिस्तान हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब को सैन्य मदद देने के लिए राजी हो गए हैं। आपको बता दें कि 7 अगस्त 2026 को हुए मक्का पैक के तहत ये तय हुआ था कि तीनों में से किसी एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा, और जब हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी के तेल टैंकरों पर हमले किए तो उसने तुर्की और पाकिस्तान के सामने मक्का पैक की दुहाई दी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने मना कर दिया, लेकिन अब दोनों देश सैन्य समर्थन के लिए राजी हो गए हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मक्का रक्षा गठबंधन की रणनीतिक, राजनीतिक और रक्षा समिति की आपात बैठक में हमलों का सामना करने के लिए एकजुटता और साझे रुख पर मुहर लगाई गई। मक्का रक्षा गठबंधन के ढांचे के तहत इन हमलों और इनके पीछे खड़े सभी लोगों के खिलाफ सामूहिक जवाबी क्षमता को सक्रिय करने की पुष्टि की गई। इस समिति की बैठक में खासतौर पर पवित्र शहरों मक्का और मदीना को निशाना बनाने वाले हमलों की निंदा की गई, हालांकि उन्होंने हूतियों का नाम नहीं लिया। और ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की सरकारी सेनाओं ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया है। यमनी सरकार के मुताबिक इस अभियान का मकसद उन सभी इलाकों को फिर से हासिल करना है जिन पर हूतियों ने 12 साल से जारी युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया है।
7: تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية والتي أضرت بالنسيج الاجتماعي الواحد وانتهكت الأعراف القبلية الثابتة وتخطت أضرارها اليمن إلى محيطه الإقليمي والدولي।
0: आपको बता दें कि पाकिस्तान के पहले से ही सऊदी अरब में सैकड़ों सैनिक तैनात हैं। रॉयटर्स ने पिछले सप्ताह खबर दी थी कि पाकिस्तान ने सऊदी समर्थित सरकार की मदद के लिए पोर्ट सिटी अदन में हथियारों से भरे 4 विमान भेजे थे। इस बीच संभावना ये भी है कि तुर्की की सरकार अगले 30 दिनों के भीतर मक्का समझौते या सैनिक तैनाती की मंजूरी को तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली के एजेंडे में लाएगी। जानकारों की माने तो तुर्की का शुरुआती योगदान यमन में लड़ाकू सैनिकों की तैनाती के बजाय सऊदी अरब की धरती पर वायु रक्षा, ड्रोन, खुफिया निगरानी और टोही से जुड़ी क्षमताओं के रूप में होने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है। अब इस मक्का पैक की चुनौती क्या है वो भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश है। उसने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ के रूप में भी भूमिका निभाई है और खुद को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, जबकि तुर्की नाटो का सदस्य है और उसने खुद को इसराइल के प्रतिद्वंदी के तौर पर स्थापित किया है। और सवाल ये भी है कि जब यमन की सरकार हूतियों के खिलाफ निर्णायक अभियान छेड़ चुकी है, तब जाकर पाकिस्तान क्यों जागा है? क्या वो सिर्फ मक्का समझौते की औपचारिकता बनाए रखना चाहता है? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि युद्ध छिड़ने पर ईरान अगर फिर सऊदी अरब पर हमले करता है तो फिर पाकिस्तान का रुख क्या होगा? आज तक ब्यूरो।
4: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

कौन सा ग्रह किशोरावस्था में बच्चे को तेजस्वी बनाता है? कौन सा ग्रह किशोरावस्था में बच्चे की संगति बिगाड़ देता है? और कौन सा ग्रह बच्चे के अंदर भटकाव पैदा करता है? किशोरावस्था में किन ग्रहों का होता है प्रभाव? क्या आती हैं समस्याएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: किंग्स डे कैंप से निकलने के बाद राहुल का पोस्ट, लोकतंत्र के गद्दारों को बचा रही है सरकार, एक भी देशद्रोही को छोड़ा नहीं जाएगा, आज तक से बोली प्रियंका, ये है कायर सरकार। विपक्षी मार्च के बाद दिन भर चला है वोल्टेज ड्रामा, सीईसी से मुलाकात की मांग के साथ धरने पर बैठे थे राहुल गांधी, प्रियंका चुनाव आयोग की सफाई, नहीं मांगा गया मीटिंग का टाइम। राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी का हमला, कहा उनकी सियासी लॉन्चिंग लगातार हो रही है फेल, विपक्ष का झूठ हो चुका है बेनकाब, 300 सांसदों के साथ की बात भी झूठी। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, 2028 तक कार्यकाल, करगिल जंग में रहे शामिल। और दिल्ली एनसीआर में लगे भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 4.9, उत्तराखंड के चमोली में था एपिसेंटर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मंगलवार दिनभर हंगामा चलता रहा, दिल्ली के किंग्सवे कैंप से निकलने के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि गद्दारों को सरकार बचा रही है, राहुल प्रियंका को हिरासत में ले लिया गया था, दोनों को करीब 2 घंटे तक किंग्सवे कैंप में रखा गया, हालांकि बाद में दोनों को छोड़ दिया गया।
1: सरकार में इस्तीफे नहीं
2: देना चाहिए।
0: राहुल गांधी के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर विपक्ष के 300 सांसदों ने सीईसी के खिलाफ मार्च निकाला है, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके अखिलेश यादव समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। इसी बीच पुलिस को चकमा देकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच गए आकाशवाणी परिसर में और वहीं से शुरू कर दिया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना।
3: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष एक साथ उबला तो राजधानी दिल्ली में संसद से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर के रास्ते तक न सिर्फ विपक्ष ने एकता और एकजुटता दिखाई, बल्कि सरकार को कटघरे में खड़ा करके ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि चुनाव आयोग और सरकार के बीच मिली भगत है और चुनावों में सरकार वोट चोरी करवा रही है।